0: challenges in the life mein. So we started that we will give a second livelihood to the mint farming community, because mint is a seasonal crop, right? And I would like to know from you that how many mint farming communities you reached through your interventions, and how many have been benefited from that?
1: Ma'am, we have, as per you know, ma'am, we have reached to till 25 to 30 villages, and they have maximum population of mint farmers there. So, ma'am, if we calculate like this, that 80% of the population in each village is committed to the center. They are connected. They are coming to the center. They have learned the skills, and they have moved out. Ma'am, there are many children in mint. I remember one boy was there. His name was Ram, I think. So he was from farming communities, and he was working in the farms earlier. But when he came to the center and he said, ma'am, I have passed out my 12th. Now what should I do? So I asked him to learn computers, because you're a boy, you can learn computer and do something, and you can search for a job also. But not only computer, but you should continue with your studies. So he asked me, ma'am, should I do graduation? So I said, yes, please go and get admission in graduation and come to the center. We will teach you computer, take English classes from here, take the books, use the library. Because, and when he came to the library, he was like, ma'am, itni sari kitabe hain yahan par, ma'am, aap ye bhi kitabe hain, ma'am, ye bhi book hai, ma'am, agar main kuch mangaun to mil jayega. I was like, yes, please, aap order dijiye, hum ma'am ko list forward karte hain, ma'am, mujhe sari book provide karwa diye, ma'am, hamari demands par sari book India mein deta hai. Head office turant approve karta hai books ki jab bhi demand jaati hai. आप प्लीज मुझे बताइए आपको कौन से बुक्स चाहिए. तो मैम ही डिमांड है, और बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, बुक के लिए हमने डाला था. फिर अप्रूवल होके मैम बुक्स भी आ गई थी हमारे पास. एंड मैम वो लाइक ही वो सिटिंग इन द लाइब्रेरी फॉर 3 to 4 hours रेगुलरली. एंड आफ्टर दैट आई डोंट बिलीव ही वाज इन सेकंड ईयर ओनली, एंड ही गॉट द जॉब इन लखनऊ इन फन मॉल, एंड ही इज अर्निंग 15,000 to 18,000 पर मंथ राइट नाउ. एंड ही वाज लाइक ही केम विद टू मी विद अ बॉक्स विद अ स्वीट बॉक्स, एंड ही वाज लाइक, हाँ ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है. मैंने कहा ये मैंने नहीं कहा, ये विलिंडिया ने कहा, प्लीज से टाइम से. मैम दीज आर द स्टोरीज दिस इंस्पायर मी अ लॉट.
0: नो सना, दिस इज योर कंट्रीब्यूशन. टीड इंडिया इज जस्ट अ फैसिलिटेटर, बिकॉज़ यू आर सिटिंग देयर एंड यू आर इन टच विद द विलेजेस. आई आल्सो वांटेड टू नो कि बड़ा गांव में तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो आसपास के कितने और गांव हैं जिससे कम्युनिटी इतनी दूर दूर से चलकर आती है आपके सेंटर पे, और कोई ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है जहां तक मुझे नॉलेज है. तो आई वुड आल्सो लाइक टू लिसन बैक टू रिवाइव माय मेमोरीज अबाउट दैट.
1: यस मैम, टुडे ओनली आई विजिटेड वन प्लेस, हसनापुर मैम, एंड दैट मैम आई वाज टायर्ड बाय गोइंग बाय कार, बट मैम द चिल्ड्रन द गर्ल्स फ्रॉम that village is coming to the center on bicycles. Ma'am, I was so shocked ke, ma'am, aaj main soch rahi thi ki wo jab bacche aayenge to maine puchungi ki aap 25 km cycle chalakar aate ho sir center ke liye. To abhi to wo aaye bhi nahi, barish hone lagi, but ma'am itne aise se villages hai. This is the latest distance I'm telling you ki ye 25 km, 30 km, ma'am 25 to 30 km bahut tough hai cycle chalakar center तक आ पाना. एंड मैम दे आर कमिंग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, मैम इतने इतने डिस्टेंस से लड़कियां आती हैं, और मैम वो आके बस इतना ही करती है, मैम प्लीज हमारा टाइमिंग मॉर्निंग के बैचेस में लगा दीजिए, हम इवनिंग में जाएंगे तो देर हो जाएगी हमें. तो मैम वो सारे बच्चों को हम लोग मॉर्निंग में एंटरटेन करते हैं, सॉरी क्लासेस की हम लोग मॉर्निंग में ही लेते हैं.
0: सना, ये बात सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स भी कितने सपोर्टिव हैं, बिकॉज वो भी अलाउ करते हैं कि हमारी बेटियां इतनी दूर साइकिल चला के चली जाए, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि एक सेफ स्पेस पे जा रहे हैं. और रास्ते में भी क्योंकि वो ग्रुप में आती हैं इकट्ठी, तो उनको कोई ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता. दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज यू मोटिवेट देम फॉर कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन, एंड दे फाइंड दिस स्पेस सेफ प्रोटेक्टेड. सपोर्ट इतना मिलता है, बुक्स उनको यहाँ से मिलती हैं, नॉलेज सपोर्ट मिलता है, आप उनके इश्यूज रिजॉल्व करती हैं. तो यही एक कम्युनिटी लाइब्रेरी का जो सर्विसेज हैं, यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन व्हाट इज नीडेड एक्चुअली, सो दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड. मैं और भी मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर मैं थोड़ा और भी आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो आप कम्युनिटी को हैंडल करती हैं, जिनको समझाना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना और फिर उनको टाइम भी देना, और दूसरी तरफ है आपके विजिटर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल डोनर्स हैं और जो विजिटर्स हैं, क्योंकि कैलिसंस हैव द ऑफिस इन पुणे, दे कम टू यूपी क्वाइट ऑफन बिफोर कोविड, तो आप कैसे अपना दोनों तरफ बैलेंस बना के रखते?
1: मैम समटाइम्स तो वी हैव द इन्फॉर्मेशन दैट दे आर कमिंग एंड समटाइम्स दे कम लाइक दिस ओनली. तो मैम आई एम वेरी पंक्चुअल, मैं हमें मैम आई एम रेगुलर इन द ऑफिस बिकॉज आई डोंट लाइक टेकिंग लीव्स एट ऑल एंड आई डोंट अलाउ द स्टाफ ऑल्सो टू टेक लीव्स अननेसेसरली. सो दिस इज द थिंग दैट व्हेन दे कम विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वी ऑल आर हियर, वी ऑल आर प्रेजेंट इन द सेंटर. सो वी नो दैट कि अभी वो आए हैं तो आई हैव टू गिव माई एटलीस्ट दे टेक माई 1 आवर. सो आई हैव टू स्टॉप ऑल द चिल्ड्रेन कि आप लोग लाइब्रेरी में जाके बैठिए, अभी मैं कोई सेशन नहीं लूंगी, अभी मैं इन लोगों के साथ बात कर रही हूँ. फिर मैम उनके साथ पूरा उनको एक्सप्लेन करना पूरे सेंटर के बारे में, कैसे हम काम करते हैं. मैम दे आस्क सो मच अबाउट एवरीथिंग अबाउट इन इंडिया अबाउट बिकॉज दे आर नॉट द डोनर्स एग्जैक्टली बिकॉज दे आर कमिंग विद द डोनर्स. सो दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो. सो दे डोंट नो वॉट इज इन इंडिया. सो आई हैव टू एक्सप्लेन देम ईच एंड एवरीथिंग अबाउट रीड, अबाउट द कम्युनिटी, अबाउट द चिल्ड्रेन कमिंग टू द सेंटर, वॉट सर्विसेज वी आर गिविंग एट द सेंटर, वॉट आर द फेसिलिटीज दैट आर बींग ऑफर टू द स्टूडेंट्स इन रीड इंडिया. सो दिस इज दिस हैपन्स एवरी टाइम एंड दर वेरी फ्रीक्वेंट इन बड़ागांव सेंटर. तो लास्ट ईयर लाइक पेंडेमिक से तो अभी तक सिर्फ दो ही विजिट हुई है, बट 2018 एंड 19 वॉज फुल ऑफ विजिटर्स. मीन एवरी मंथ देयर इज समबडी हैज टू कम टू द सेंटर एंड वी समटाइम्स सी लाइक सरप्राइज दैट दे आर सीइंग विजिटिंग ओवर हियर इन द ऑफिस एंड वी सी समबडी मूविंग इनसाइड द ऑफिस एंड आई वाज लाइक गुड आफ्टरनून सर. तो मीन आप काम कर रहे हो तो एकदम डिस्टर्ब माइंड में एंड एवरीबडी कोई आगे सामने से खड़ा हो जाता है, वो लाइक आई टेक 2 मिनट टू थिंक दैट हु आर देयर. मीन लाइक कभी कभी चेहरे नहीं याद आता कि कौन है ये. So it happens sometimes with me.
0: And when you deal with the community, then you just simply motivate them, encourage them, listen to their issues, problems, and then you inspire them to come to the center regularly, right? So these
1: Yes,
0: two
1: ma'am.
0: things go parallel, right?
1: Exactly, ma'am. Ma'am, I
0: एक और
1: remember one
0: जो
1: story.
0: या प्लीज प्लीज कंटिन्यू.
1: Ma'am, I remember one story. There was one girl in my beauty section. She was a trainer in beauty and bar. So she was coming from like 7 to 8 kilometers far away. Ma'am, the one boy was there was continuously उसको परेशान करने जा रहा था मॉर्निंग में आने के टाइम पे, मॉर्निंग शाम को जाने के टाइम पे. Then ma'am she complained 2-3 times to me कि ma'am मैं नहीं आऊंगी सेंटर, ma'am मुझे नहीं सिखाना because अभी घर में पता चल जाएगा तो ma'am बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए. And she was a trainer, so even though she was a student also, then I had to take care of it. Then ma'am, हमारे पास एक trainer था हमारा जो हमारे लिए committees में जाके session लेता था. I asked, I told her कि अभी घर पे कुछ मत बोलो. Then I have told Deepak, आप जाओ आज ma'am को लेके घर bike से और आप देखो कि ma'am को कौन परेशान कर रहा है. फिर ma'am उन्होंने वो जाके घर पे छोड़ के आया, फिर उसने मुझे आकर बताया कि ma'am ये है. फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला एक बार को कि आप जाइए, आप एक घर में जाकर कंप्लेन करके आइए कि ये क्यों परेशान कर रहे हैं. मैम एक बार हिमसेल्फ वेंट टू फ्रेंड देयर और उसके बाद ही रिजॉल्व दैट इशू. तो मैम ये सारे चैलेंजेस गांव में बहुत आते हैं क्योंकि मैम बिल्कुल सन्नाटा होता है, एकदम रास्ता अंधेरा होता है, बाघ होती है आसपास, बहुत सारे फार्म होते हैं, बाघ होती है जिसमें रोड पे भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, सारे पेड़ इधर उधर से कवर होते हैं. तो मैम वी फेस दीज चैलेंजेस एवरी टाइम विद गर्ल्स विद बॉयज.
0: Major of the population in Barabanki and Badagam are Muslim population, right? And many girls come from these families to your center. Are there any stories of delayed age at marriage or continuing higher education, convincing their parents that they want to learn more from the Reed Center and establish themselves, then they'll get married?
1: Yes, ma'am. And there was one girl, She was coming to the center from 2018 only. So in 2019, when she was about to get married, she came to me कि मैम मैंने तो पहले अपने मम्मी पापा को बोल दिया कि आप शादी तो मेरी कर रहे हो, बट मैं जब तक अपना अपना एडवांस टीचिंग का कोर्स सेंटर से मेरा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना वहाँ. तो मैम शी वॉज लाइक शी स्टेड हियर फॉर 6 months, शी लर्न कम्प्लीटेड हर कोर्स एंड देन शी वेंट बैक. मुस्लिम कम्युनिटीज में तो स्पेशली जैसे बच्चे 10th 12th में लड़कियाँ आ जाती है, पेरेंट्स स्टार्ट सर्चिंग फॉर देयर मैरिज. बट मैम अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हैज ऑल्सो कम हियर बड़ागांव. आई हैव ऑल्सो अर्लियर डिस्कस दैट कि अभी तो पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज दे सी ऑल अदर कम्युनिटीज की उनके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं देन दे गेट मैरिज. यहाँ पर भी मैम लोगों का काफ़ी माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ है. जितने मेरे कम्युनिटी विजिट्स के, जितना मेरा पेरेंट्स के साथ इंट्रैक्शन हुआ है, हम सब लोगों ने उनको यही बोला है कि आप पहले अपने बच्चे को एटलीस्ट फिजिकली फिट हो जाने दीजिए, देन लेट हर गेट मैरिड. एजुकेशन तो बाद में आती है, आपको ये स्किल्स सीख रहे हो वो भी बाद में आता है, बट लेट हर गेट फिजिकली फिट टू गेट मैरिड. एटलीस्ट वो 18-19-20 साल की होनी चाहिए किसी की भी शादी करने के लिए. मतलब 20 इज वेरी यंग इफ यू काउंट एज पर द करंट सिचुएशन, 20 इज ऑल्सो वेरी यंग टू गेट मैरिड. सो दिस हैपेंस एवरी टाइम that we have to counsel the parents, we have to counsel the girls, and they come and they you know they discuss with me everything, especially the Muslim communities.
0: Very nice. It's very satisfying to know all these things, because it's not only about Muslim community or a Hindu community. The jo hamare regulations bane hue hain ki mentally, physically, socially the girl should be prepared to get married, only then she should get married. Aur jo the component jo bhi add ho raha hai ki she should be economically independent also, because COVID has taught us many things to be independent and be ready to support the family when any emergencies come in the family. So wo bhi hamare center ki taraf se aap hamesha unko karne karti rehti hain. Sana, अभी हम जो फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम सैटेलाइट्स भी बना देंगे, राइट? और जब हम सैटेलाइट्स बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, और बाय चांस अगर थर्ड वेव आ जाती है और जो बच्चे 25-30 किलोमीटर दूर से आपके सेंटर में आते हैं शायद वो ना आ पाए, तो उनके लिए जो हम सैटेलाइट्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप तो कम्प्लीटली तैयार हैं उस काम को करने के लिए, तो हम कब तक ये सैटेलाइट्स बना देंगे सना?
1: यस मैम, आई वुड लाइक टू से दैट मैम, इफ वी आर गोइंग फॉर द सब सेंटर द सैटेलाइट्स, वी शुड पे यू नो वी शुड मेक द सैटेलाइट फॉर अ टाइम पीरियड लाइक 6 months फॉर या ओवर ईयर फॉर एट वन प्लेस, देन वी मूव इन अदर डायरेक्शन इन द अदर विलेज. लाइक इफ विद बड़ागांव इन द सेंटर, देन इट हैज in its stages there are many villages, so we should rotate from everywhere after 1 year here and after 1 year in the different villages, because that will help us to build good relations with the community. We will get more people benefited from the center, because it will be moving, like it will be a mobile center, then it will help many people over there. And if you talk about the district library, it will be a very very good option if we are going with them and we are partnering with them, because that will make an image of Free India more powerful and more accessible to people, because they will know what Free India is and what facilities what we are giving to the children everywhere.
0: Very nice. Actually, the thought process which we are having is also matching, and we can do much more whatever we are committed to. And I'm sure that Barabanki Community Library and Resource Center can do wonders, that I am sure under your guidance and commitment what you are showing to Read India from the past 3 years. And we will also do the impact studies and collect the stories what you are sharing on this platform,
1: sure,
0: so that we can share with the wider community also. At this point, thank you so much for having the brief discussion with me. I would hand over to Smita now.
2: Thank you, ma'am. Thank you for your inspiring interaction with Sana. So, Sana, बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो जर्नी है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करके. आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. anything that you want to share with your children? Kaise aapke bacche, I know you have four beautiful children, so itni strong mother ko, itni strong family ko dekhke, how they are feeling, especially both of your girl, the twins, the beautiful twins that you have. Anything that you want to share about them, how their lives have been impacted due to this entire, you know, REAP initiative being in your village and you being an inspiring person in your own community?
1: Yes, ma'am. During last year, if we talk about COVID only, and they were like, kuch karne ke liye nahi hai, mama, kya karenge? So, maine bola, kuch nahi. Jab center khul raha, aap center mein aake baitho. Ab bachche aate hain, aap unko padhao. इससे क्या होगा, आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, उन बच्चों को भी आपसे सीखने का मिलेगा, बिकॉज आप लोग अच्छे स्कूल्स में जाते हो तो आप उन्हें ज्यादा बेटर पढ़ा सकते हो, आप उनका पर्सपेक्टिव समझ सकते हो कि वो क्या है एंड दैट वर्ल्ड. सारे छोटे बच्चों को अभी तक नवाल दे वर टेकिंग द क्लासेस देयर एंड दे टेक सो गुड क्लासेस ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन एंड दे आर लाइक, मैम आप पढ़ाइए, दीदी को बोल दीजिए पढ़ाने के लिए. तो आई एम लाइक ओके जाओ पढ़ा दो आप. यस मैम, आई एम It helps, ma'am. Every child, you know, if they share their knowledge with each other, they learn also, and everybody learns. I am learning till date, ma'am. I have learned so much from you, from Geeta, ma'am, from everybody. So, you know, the learning is never ends. I believe that.
2: And aapke parents ko kaisa lagta hai aaj wo Sana hai jo shayad kahin pe apni education bhi complete nahi kar pa rahi thi aur aaj wo logo tak education ko pahuncha rahi hai.
1: Ma'am, actually, my parents are separated. That was the reason I got married earlier. So, ma'am, papa ke saath aisa koi connection hi nahi hai. But my mother feels very proud of us because the three of us are very, you know, active. And my other sister, you know, my sister who's living in Hong Kong also, she's also working for an NGO only. And very she's nice. Working from past 7 years. So, we both are very social and we help each other a lot in everything.
2: Very nice, Anna. Any last message that you want to give to young girls or women who are in the same position or your community?
1: Yes, ma'am. Ma'am, only I can say only one thing. If you're getting married, if your parents want you to get married early, maybe any because of any reason, aapko ye chahiye ki aap give up mat karo. Kisi bhi lifestyle, kisi bhi, you know, life stage par, just don't give up and keep learning. That will help you for your entire life. Nothing else,
2: ma'am. On those inspiring lines, if there's nothing else, then we can, you know, close this session for today. Thank you so much, Sana, for sharing your such a beautiful and inspiring journey. Thank you, Geeta ma'am, for constantly mentoring us. And thanks to Shushank for moderating the session. We wish you all the very best, Sana. Hopefully, you reach all the communities. और जो आपकी सैटेलाइट सेंटर्स हैं वो भी उतने ही सक्सेसफुल हों जितना आपका प्रेजेंट सेंटर है. थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी थैंक आवर व्यूअर्स आल्सो फॉर पेशेंटली ड्यूरिंग आवर प्रोग्राम. वी कैन एंड द सेशन. वी विल जॉइन यू अगेन ऑन फ्राइडे विद अनदर एक्साइटिंग प्रोग्राम ऑन कल्चर नॉलेज.

विविधता में एकता वाला हमारा देश भारत, ये पूरे देश की एकजुटता ही थी जिसने सालों की गुलामी से उबरने में अहम भूमिका निभाई। उन दिनों उत्तर भारत में जहां क्रांति की ज्वाला प्रबल थी, वहीं दक्षिण भारत में क्रांतिवीर ब्रिटिश शासन की नींवें हिलाने का काम कर रहे थे। इन्हीं में से एक थी वीरांगना अकम्मा चेरियन। ट्रावणकोर की झांसी की रानी के नाम से मशहूर अकम्मा का साहस ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े थे। कांजीरपल्ली ट्रावणकोर में जन्मी अकम्मा चेरियन ने 1931 में शिक्षा पूरी कर सेंट मेरीज अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में बतौर शिक्षिका शुरुआत की। प्रतिभाशाली अकम्मा जल्द ही स्कूल की प्रिंसिपल बन गईं, लेकिन दिल में आजाद भारत का सपना था। 1938 में अकम्मा नौकरी छोड़कर ट्रावणकोर कांग्रेस की सदस्य बन गई। राज्य कांग्रेस ने ट्रावणकोर के लोगों के साथ एक उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किया। आंदोलन को दबाने के लिए राज्य के दीवान ने कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। विरोध में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद राज्य कांग्रेस के एक एक करके 11 अध्यक्ष गिरफ्तार कर लिए गए। 12वीं अध्यक्ष अकम्मा चेरियन बनी। अकम्मा ने कोडियार राजमहल तक रैली निकालने का फैसला किया और तय दिन प्रदर्शनकारियों का एक दल ट्रावणकोर शाही महल की तरफ मार्च करने लगा। ब्रिटिश अफसरों ने रैली को रोकने के लिए आगजनी करने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही अकम्मा आगे आ गईं और दूसरों से पहले खुद को गोली मारने के लिए ललकारने लगी। अकम्मा के साहस ने अंग्रेज अफसर को आदेश वापस लेने पर मजबूर कर दिया। एक बड़ा नरसंहार टल गया। समाचार सुनकर महात्मा गांधी ने अकम्मा को ट्रावणकोर की झांसी की रानी कहकर सम्मानित किया था। अंग्रेजों के लिए लगातार खतरा साबित हो रही अकम्मा को 24 दिसंबर 1939 को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहाई के बाद आजादी के लिए जारी संघर्ष में अकम्मा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गिरफ्तार हुई। 1947 में देश की आजादी के बाद अकम्मा चेरियन ट्रावणकोर से विधानसभा की सदस्य चुनी गई। अन्याय का आजीवन विरोध करने वाली उच्च नैतिक मूल्यों वाली इस वीरांगना ने 5 मई 1982 को आखिरी सांस ली।

आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं। लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे बाय हुक एंड क्रुक, वेदर दे स्टैंड अलोन, वेदर दे हैव चैलेंजेस, वेदर दे हैव पीपल दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे वॉक थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं, चेजिंग योर गोल्स। हम अपने गोल्स को चेज करते हैं कि हम कैसे उनको फुलफिल करें। तो जब हम अपने गोल्स चेज करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस, तो हमें डिसरिगार्ड द पीपल हु टेल यू इट कैन नॉट बी डन। जो लोग बोलते हैं कि ये तो हवा में बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने लाइक वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट, राइट? तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चाहिए, और इसका यही मकसद है। डिसरिगार्ड मींस, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बायकॉट कर दो उनके साथ। डिसरिगार्ड मींस डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर टाइम, योर पेशेंस टू लिसन टू देम, दोज हु आर सेइंग इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यू एज अ लीडर हैज सम मिशन, मीनिंगफुल काम करना है आपको। तो अगर आप मीनिंगफुल काम करने में कोई भी ऐसे बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो वो हमें नजरअंदाज कर देना, हमें सुनना ही नहीं है। टर्न अ डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, राइट? बिकॉज क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है। तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे, तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं।

So, what you achieve in life will be limited only by your ambitions. कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है. तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है तो हमारे एम्बिशंस तो है ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे. और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे और नेचुरली रिजल्ट आएगा. क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस. गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क. बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें. हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है. मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है, राइट? होता है ना ऐसे हमारे साथ. और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे. 3 4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप. नो, आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू, एनी इंटरेस्ट, एनी थिंग इन इट, बिकॉज वी आर नॉट विजनरीज, राइट? दोज हु डिफाइन द गोल्स विद वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन गो अहेड टू देयर लैडर अप. हम बोलते हैं, मतलब कि हम कमिट करते हैं, हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस की तरफ. तो हम समहाउ वी आर एबल टू रियलाइज आर ड्रीम्स, समहाउ वी आर एबल टू यू नो एम्बिशियसली डू द थिंग्स व्हाट वी वांट टू डू. डू यू ऑल एग्री विद मी व्हाट आई हैव सेड, चेजिंग योर गोल्स? बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी है यहाँ पे, सारी ये प्रैक्टिकल डे टू डे हमारी लाइफ में हमारे साथ ऐसे ही होता है. तो हम एक स्टोरी छोटी सी, मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में, आई विल जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू. सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत. एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे और अगर अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टॉवर है, एंड दे कलेक्टिवली डिसाइडेड कि आज हम टीवी टॉवर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं, राइट? तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में. थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे. कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे ही छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा. मतलब कि देवर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. तो 3 4 ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टॉवर तक पहुंच गए, एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टॉवर, ऊपर टॉप में पहुंच गए, एंड दे सेड ओ गॉड इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड. और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी. वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टॉवर के टॉप पे पहुंच गए. जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे, जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे. और उन्होंने वो दो तीन जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे. और जो
भी हमने तो इतना शाउट किया था, मत जाओ, डर रहे थे हम लोग। तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना, वो फ्रॉग कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बहरा था, वो फ्रॉग ही बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं। लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसने आसपास परवाह ही नहीं करी कि क्या हो रहा है, क्या शोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। बस उसके माइंड में तो एक ही था कि मुझे टीवी टावर पे जाना है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसके टर्न है डेफ ईयर टू क्रिटिक्स। तुम सुनो ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा मिशन इतना क्लियर है, तुम्हारा तुम्हारा गोल इतना क्लियर है कि आपको वो कंबाइन करना है। बाकी के दोस्त से पूछा कि तुम्हारा क्या था, मतलब कि तुम कैसे चले गए ऊपर, तो उसने बोला कि हमने ये जो डेफ फ्रॉग था उसको फॉलो किया, बिकॉज हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर ये हमारा लीडर है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम तो इसके पीछे पीछे चलेंगे, तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर। तो हमने तो क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया, रास्ते में हमने किसी की परवाह नहीं करी, और हम इसके पीछे पीछे पीछे पीछे चल के ऊपर पहुंच गए इसके साथ। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और फ्रॉग बहुत टिमिड होता है, देखा जाए तो बहुत छोटा सा होता है, तो वो क्या टीवी टॉवर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टॉवर पे मैं चढ़ जाऊंगा। पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है। और दो लोग जो उसके साथ चढ़े, वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे। तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना, और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से, बहुत इजी स्टोरी है, और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे। तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई थॉट लेट मी शेयर विद यू। बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको। तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आर बिग गोल्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है। वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स, वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आर प्रोग्रेस। बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और हमारी जो अचीवमेंट है उसको वो ब्लॉक कर देती है। वी ऑलवेज डिस्कस एंड हाईलाइट द हर्डल्स एंड आर ऑब्सेस्ड बाय देम एंड फेल टू ऑब्जर्व द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ अस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जब मैं पढ़ रही हूँ तो सुबह मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रही थी, तो ये बहुत फिट बैठती है वहां पे, कि हम हाइलाइट्स करते हैं जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और हम उस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ कि हम हमेशा फेलियर्स की ही बात करते हैं, पर उसमें से एक जो रे ऑफ होप है, जो एक सनशाइन की छोटी सी किरण है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ। तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था, कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है। हम अपने आप को इतना स्ट्रांगली बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में,
हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस दिस दैट, बट द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस, विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू, राइट? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन द सॉल्यूशंस. The psychologists have proved that what your mind focuses on that tends to grow. साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80% जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देते, पर हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें. और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी चेज करना पड़ता है. और अपॉर्चुनिटीज को चेज हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ कि हमें ये करना ही करना है. अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं. ये सारे जार्गन्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना कि हम एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज. अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ खुल रहा है, तीसरा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, हम कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम अपने जो पड़ाव है उनको पार कर लें. सो द प्रॉब्लम्स लुक बिगर, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स. द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर गैप्स को एनालाइज कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन गैप्स को कैसे रिजॉल्व करें, तो हमारे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर्स आर विजन. ग्रेट लीडर्स हैव अ विजन. They can see into the future. They have a clear, exciting idea of where they are going and what they are trying to accomplish and are excellent at strategic planning. मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में पहली दो स्लाइड्स में बताया. ये डेफिनेशन है कि ग्रेट लीडर्स विजन होती है, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसकी. They can see the future. वो जो मैं रे ऑफ सनलाइट की बात कर, दे हैव अ वेरी क्लियर एक्साइटिंग आइडियाज. उनके आइडियाज बहुत क्लियर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, एंड दे आर गोइंग वेयर दे आर गोइंग एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, वो उनको सब क्लियर है. एंड दे हैव वेरी एक्सलेंट, वेरी गुड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑल्सो. तो जो लीडर्स हैं उनमें ये सब हुनर हैं और इन हुनर को शेप दे के वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही विजनरी कहलाते हैं. दूसरा क्या है? करेज. वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज. अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से, जमीन से, खड्डे में से निकल के टीवी टॉवर पे क्लाइम कर गया. हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स दैट यू आर विलिंग टू टेक रिस्क इन द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स With no assurance of success. अब आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ, मैं प्रपोजल लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा. मैं बिल्कुल नहीं डिफाइन कर पाती हूँ. क्या मुझे पता था कोविड आ जाएगा जब हम प्रपोजल लिख रहे थे? पर हमने क्या किया, कोविड में हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी. हम ICT प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम बेटर अचीव कर पाए क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कनेक्ट कर लिया और हमारे कार्यक्रम कहीं पे भी रुके नहीं. तो करेज था कि हम कैसे करें. अभी बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं वो बंद पड़े हैं जो सितंबर 2020-21 में खुलेंगे, बट हम सेंटर्स भी खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं. Because we are taking the risk. Why risk? Risk is not only for my own job. Risk is for the work, the whole, all the centers of Read India is doing in India. They are reaching to 400,000 plus people. Unka kya hoga? Wo kaam kahan jayega? Wo goal to achieve karna hai hame.
तो वो कलेक्टिव गोल है जो हमें अचीव करना है, तो हम रिस्क भी ले रहे हैं, राइट? और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की, मुझे आज नहीं पता कि रीट इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या होगा, बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे, कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं, क्या है? ट्रस्ट है। क्या देखते हैं? कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने, जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं। कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन, बट हम आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गए, आईटी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, इमीडिएट नीड्स क्या है, कम्युनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए, इमीडिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स। किसने उनको बोला करने के लिए? हम ही ने बोला। तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया। और कोई ऐसा डोनर नहीं है एक्सेप्ट 1 or 2 अमॉन्ग 13-14 डोनर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कि किसी ने एक साल में ही हमारे साथ काम करके बंद कर दिया हो। दे ऑल आर कंटिन्यूइंग विद अस। सो बिकॉज देर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ और बिजनेस, एवरी कमिटमेंट यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक एंटेल्स अ रिस्क ऑफ सम काइंड। हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क तो है ही है, पर हम रिस्क को सोच के बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम करके उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, वो हमारा एक्शन है, राइट? तो जब हम कहते हैं वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन, तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हम रिस्क को साथ में लेके चलते हैं, और रिस्क को मिटिगेट करना भी हमें सिचुएशंस सिखाती हैं, राइट? तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर। आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपको नहीं पता। आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था। आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि 1 साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे। तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही है, चाहे 2,000 कमाए, चाहे 4,000 कमाए, चाहे 6,000 कमाए, राइट? और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2,000 से 6,000 तक लेके जाए, 6,000 से 12,000 तक लेके जाए, ये कोशिश हमने करनी करनी है। सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है, हम कैसे करें उसको हमें करना है। जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन। ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे, क्योंकि हम मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है, इवन बिजनेस में भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस में तुम झूठ बोल सकते हो, जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट? इट मीन्स दैट यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस टू रिकोगनाइज
द वैल्यू ऑफ अदर्स विद

taking those, right? So humility personality milana bahut zaruri hai. This is one of the rarer attributes or traits of good leaders because it requires containment of one's ego. अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे. पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट? इट मींस दैट यू आर विलिंग टू एडमिट यू कुड बी रॉन्ग, दैट यू रिकॉग्नाइज यू मे नॉट हैव द आंसर्स, बट इट मींस दैट यू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, विच मैनी पीपल स्ट्रगल टू डू. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्लैग तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए. हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ. मैं तो ठीक था, बिल्कुल, मैं तो टीवी टावर पे चढ़ रहा था, अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता, जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टावर पे चढ़ के क्या करेंगे. पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े, पर उसने क्रेडिट किसको दिया? जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया? जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं श्योर, और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए. लीडर एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं. तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है, और ये अपनी पर्सनालिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं. ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ, ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन. इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट? और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की, वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनैलिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ही वही बन जाती है. तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए, और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं. बिकॉज इफ यू हैव दिस ह्यूमिलिटी एज योर पर्सनालिटी ट्रेट, देन द रिस्पॉन्स इज 100% श्योर. यू विल डेफिनेटली गेट द रिस्पॉन्स, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है. द बेस्ट क्वालिटीज में तीसरा आ रहा है ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. लीडर्स हैव द एबिलिटी टू एंटिसिपेट ट्रेंड्स वेल इन एडवांस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स तो हर एक जगह पे ही होते हैं, एनजीओस मशरूम कर रहे हैं इतनी, पर हम उनको थ्रेट ना मान के अगर हम उनके ट्रेंड्स को समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करें, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें तो ये बहुत अच्छी बात होती है. दे कॉन्टिन्यूअली आस्क बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग टुडे, वेयर इज द मार्केट गोइंग, वेयर इज इट लाइकली टू बी इन 3 months, 6 months और 1 year और 2 years. दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. फॉर एग्जाम्पल, अब आप सब लोग प्रोडक्शन यूनिट्स भी चला रहे हैं और वोकेशनल सेंटर्स भी चला रहे हैं. अब आने वाले टाइम में जो एनजीओस पॉलिसी लेवल पे काम कर रही हैं उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज सरकार कहती है हमें तो अभी मतलब कि ग्रास रूट्स में काम चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या है, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है. तो दैट्स व्हाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले

साल से 6 साल से सपोर्ट करें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है। और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं, राइट? हम आज के बारे में सोचते हैं और 1 महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस, ओनली द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन एक्यूरेटली एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट्स कैन पॉसिबली सर्वाइव। ओनली लीडर्स विद फोरसाइट कैन गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे लोन कैसे, सबसे आगे कैसे स्टैंड करें। तो ये जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? क्या आप लोग मुझे एक पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं दैट यू रिफाइन एंड मेक एज योर गोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेकिंग लीडरशिप ट्रेनिंग्स। दिस इज द प्रैक्टिकल एक्शन विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, राइट? तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कि आप जहाँ बैठे हो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो, उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो, क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे? दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? दे फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द थिंग्स दैट द कंपनी डज बेस्ट इन सेटिस्फाइंग डिमांडिंग कस्टमर्स इन ए कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस। आप किस पे फोकस कर रहे हो? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हो। जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, कभी आपने उनको बोला कि आगे आने वाले टाइम पे देखो कोविड ने ही हमें सिखा दिया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए। जिनको नहीं आता, दे आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएजुकेटेड। बिकॉज अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे? मुझे पेटीएम नहीं आता था, मैंने पेटीएम सीखा। मुझे बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं आती थी, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखी। बिकॉज बैंक कह रहे थे कि 60+ के लोगों को हम बैंक आना अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं एनकरेज करते। तो टाइम ने मुझे सब कुछ सिखाया। इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज, राइट? और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं, दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड, राइट? Your ability as a leader to call the shots and make sure that everyone is focused and concentrated on the most valuable use of their time is essential to the excellent performance of the enterprise. मैंने जान के ये business language लिखी है यहाँ पे, because हमारा 1/3 focus organization का enterprise ही है। तो
इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माई ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है। ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे, राइट? द लास्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन। गेन द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स बाय मेकिंग ए कमिटमेंट टू गेट अलोंग वेल विद ईच की पर्सन एवरी सिंगल डे। रोज आप अपने कनेक्शंस, अपनी नेटवर्किंग, अपने स्टाफ का लाइक यू नो टीम वर्क को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे रिफाइन करें इसको, हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किस में क्या स्ट्रेंथ्स हैं। आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है 5 है 6 है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन। सी दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। These 5 qualities I have the strength, I can contribute additionally. Do this exercise. This will really help you to do that, right? You always have a choice when it comes to a task. You can do it yourself or you can get someone else to do it for you. Which is it going to be? ये exercise आपको बहुत बहुत help करेगी। मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ठीक है, आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये 7ों पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें, और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर, राइट? 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर, राइट? लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल हम कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको। अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 ईयर्स ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज। झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना। इज ऑफन डिफाइंड एज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल। This style was first described during the late 1970s and later expanded upon by researcher Bernard M. Bass. मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है? These leaders tend to be emotionally intelligent, energetic and passionate. They are not only committed to helping the organization achieve its goal, but also to helping group members fulfill their potential. ये सेंटेंस में मैंने समराइज किया है जो लास्ट 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं एक लीडर की क्वालिटीज के बारे में। अब लीडर की क्वालिटीज तो बता दी कि लीडर को करना क्या है। पहले तो हमने गोल्स भी चेज करे, फिर हमने अपने वो पॉइंट्स भी यहाँ पे हाईलाइट करे बेस्ट क्वालिटीज के। फिर अभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेस्ट है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। इमोशनली इंटेलिजेंट का मीन्स है कि मैं दूसरों के पर्सनालिटी की कदर करती हूँ, उनके थॉट्स की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग आई रिस्पेक्ट दैट। और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है, तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये हमें बहुत ध्यान रखना है। रिसर्च शोज दैट दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस।
अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हाई रहेगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन, आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं

0: वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है। तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है, क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं हैं। हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं। तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है। द लास्ट स्लाइड इज कि जब हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, मैंने अभी मोटिवेशन वर्ड यूज करा था, तो मोटिवेशन है क्या चीज? हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि हम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। इट इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट। मोटिवेशन ये नहीं कि हमने दो बात कर दी तो मोटिवेट हो गए हम। हमें उसको एक्शन में कैसे लाना है, अपने बिहेवियर में कैसे लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 पॉइंट्स हैं इसके, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। हम मोटिवेट तो करके, हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा। उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम। और परसिस्टेंस जो मैंने बोल रहा था, परसिवेरेंस, एक स्लाइड में पिछले 3-4 सेशन में मैंने बात की थी परसिस्टेंस की, हम कितना उसको कंटिन्यूअसली करते हैं, चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं। अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं, तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट। हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है। बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट, हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को, हम चल रहे हैं, हम 2 मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं, अब हम नहीं और भाग सकते। वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो। तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो, हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है, तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है, राइट। दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या। हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन 3ों पॉइंट से नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीपल एज दे वर्क टूवर्ड्स गोल। एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की जरूरत है। हेल्प पीपल टेक एक्शन, एनकरेज पीपल टू एंगेज इन हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स। हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं, राइट। हेल्प पीपल अवॉइड अनहेल्थी एंड मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स। ये दूसरा रिस्क मैं बात कर रही हूँ कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है उसको रोकने की जरूरत है, राइट। बहुत जरूरत है रोकने की, क्योंकि हम, हमारा माइंड इतना नेगेटिव भागता है कि हम छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, हमें विश्वास ही नहीं बैठता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी हैं, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है यहाँ पे. हेल्प पीपल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स, बहुत इस पे हम बात कर चुके हैं, 10 स्केल फॉर्मूला ही इस पे है. इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस. तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 प्रेजेंटेशंस थोड़ी लाइट थी, ये थोड़ी सी मैंने टफ की है. बिकॉज किस लिए टफ की है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए. एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए. अगर मैं इसको रिट्रेट करूं, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले बात की, फिर मैंने एक लाइट सी स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम नेगेटिव ना सोचें, हम प्रॉब्लम्स को ना फोकस करें, हम उसमें जो एक सूर्य की किरण आ रही है उसकी तरफ देखें और आगे बढ़ें. फिर मैंने बेस्ट क्वालिटीज क्या है लीडरशिप की, उस पे मैंने 7 क्वालिटीज की बात की, विजनरी, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन. ये एक संस्था के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं. ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी. फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है. इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है, पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे, राइट. और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करें तो हम मोटिवेशन की बात करें, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है. आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है. एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, राइट. इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी कि हम अपनी पूरी एनर्जीज उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें. दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन. दैट्स ऑल. आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं. तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसका. ठीक है, 5 मिनट है
1: यस
0: हमारे पास. हाँ, और ये स्लाइड्स रो हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं. मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा. अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, राइट. आप प्लीज ये करिए, आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे. पर अगर 8 स्लाइड्स है, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के लिए. आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होएगी और आप एनकरेज फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपने शार्प कर लेंगे अपने विजन को, और एक्शन उसी तरीके से लेंगे. ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की, आप करके देखिए. ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इन टू ए डिस्कशन लेवल कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स, आई एम ओपन फॉर दैट.
2: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। ब्लेम करके ही हम अपने अपने अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग।
0: हाँ
2: तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, पर्सनल लाइफ में भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी.
0: बिल्कुल,
2: हमेशा
0: पर्सनल
2: कोई चीज
0: लाइफ
2: हो
0: में
2: जाती है, घट
0: तो
2: जाती है.
0: बहुत बहुत मायने रखता है ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम ना सुनने
2: जी
0: की अपनी जो स्किल है ना, उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं। हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं। ये ह्यूमन
2: हाँ जी,
0: बिहेवियर है, टेंडेंसी है। वेरी नाइस, कंटिन्यू।
2: यस मैम. हाँ जी, हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है तो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा. तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है. तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में, पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट, और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें. ये आप
0: वेरी
2: बता रहे थे, दिस वाज वेरी नाइस
0: वेरी
2: मैम,
0: नाइसली समराइज
2: थैंक यू सो
0: किया।
2: मच.
0: थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस, वेरी वेल। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी। मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.
1: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से. जी मैम, जैसे सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को एक क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं. आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में, आपका ये एग्जाम्पल देके, और मैंने उसको ना एक टेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3-4 दिन से. मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था, और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता था कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा. बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है. तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पे करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा. वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है. उससे मुझे बहुत फायदा हुआ. रियली थैंक यू मैम, आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है.
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना, वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो। पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे, तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए। तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है। देयर एंड देन यू फाइंड अ सोल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
1: बिल्कुल. और एक चीज और, कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे. तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था. लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो.
0: बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी। हम
1: जी
0: तो डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको। हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने की, राइट?
1: यस
0: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है,
1: यस मैम,
0: थैंक यू सो मच. और मैं इनकरेज करूंगी अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट? बिकॉज
3: थैंक
0: लीडर तो आपको बनना ही बनना है, राइट?
4: ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.

0: नमस्कार सभी को, मेरा नाम शशि है और मैं रीड इंडिया से पिछले 9 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक विद्यार्थी के रूप में रीड इंडिया में आई और मैंने देखा घर पे, जैसे मैंने बात की कि मुझे भी कोई कोर्स करना है, तो फैमिली ने काफी मेरे को रोका और बोला कि नहीं, बच्चे पालो, बच्चे संभालो और घर का खाना बनाओ, यही काम होता है लेडीजों का। मैं वजीराबाद गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वजीराबाद गांव में थोड़ा घूंघट प्रथा बहुत ज्यादा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया कि मुझे एडमिशन कराना है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पहले मैं जाके देखता हूँ कि माहौल कैसा है। और वो आए और उन्होंने विजिट किया सेंटर को, तो उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी और बोले कि मैं पापा को मम्मी को मैं मनाऊंगा, तुम जाओ। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल था, बट उसी दौरान जब मैं कोर्स कर रही थी, मैंने पहले बेसिक कोर्स किया, फिर उसके बाद मैंने अपना एडवांस कोर्स किया। लेकिन एडवांस कोर्स करते करते मेरे हस्बैंड की हालत बहुत खराब हुई और कंडीशन यहां तक आ गई कि डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपके हस्बैंड शायद ना बचे। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने अपना हाथ मेरे हाथ में रख के बोला कि आगे तुझे बच्चों को तुझे संभालना है। वो टाइम मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था। मैंने अपने आप को संभाला, मैंने बात की मैं संभालूंगी, बच्चों को भी संभालूंगी, बट आप अपनी हिम्मत मत छोड़िए। उसी दौरान मेरा बेटा 11th में था और हालात इस कदर आ गए कि मैं उस टाइम पे अपने हस्बैंड का सपोर्ट करूं, बच्चों को पढ़ाऊं या मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही थी। उस टाइम मैं बिल्कुल एकदम से टूट गई थी, बट मैंने रीड इंडिया में मैम से बात की और अपनी जॉब के लिए मैम से पूछा, तो मेरे को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। उसी दौरान फिर मेरे बेटे ने मेरे को बोला कि मैम, वो मम्मी हमारा तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा अगर हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो। उस दौरान एक माँ के लिए मरने की नौबत आ गई थी, क्योंकि बच्चे की एजुकेशन मैं पूरी नहीं करवा पा रही थी। लेकिन मैंने रीड इंडिया में ज्वाइन किया और आज मेरा बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और MNC कंपनी में आज वो जॉब कर रहा है। और उसी दौरान मेरे बड़े बेटे को भी ऑफर मिला और उसने भी आज MNC ज्वाइन कर ली है और उसकी भी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है। थैंक यू फॉर इंडिया, थैंक यू गीता मैम, थैंक यू सो मच मैम।
1: स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली असंख्य महिला क्रांतिकारी हुईं, जिन्हें इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थीं। ऐसी ही एक वीरांगना थी गुलाब कौर। पंजाब के बेहद गरीब परिवार में जन्मी गुलाब कौर ने विवाह के बाद बेहतर जीवन के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। पैसों की कमी के कारण पति मान सिंह के साथ गुलाब कौर पहले मनीला पहुंची, जहां से पैसे कमाकर आगे अमेरिका जाने की योजना थी। इसी दौरान गुलाब गदर पार्टी के नेताओं के संपर्क में आई। गदर पार्टी एक भारतीय क्रांतिकारियों का संगठन था, जिसकी स्थापना अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से पंजाबी सिख प्रवासियों द्वारा की गई थी। गदर पार्टी ने गुलाब कौर को क्रांतिकारी साहित्य छापने की जिम्मेदारी दी। जल्द ही भारत की आजादी के लिए गदर पार्टी ने वतन वापसी का फैसला लिया। गुलाब कौर भी भारत लौटने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन तय दिन उनके पति मान सिंह फैसले से पलट गए। गुलाब अपने इरादे पर डटी रहीं और भारत जाने वाले जहाज पर सवार हो गईं। जहाज पहले हांगकांग पहुंचा, जहां प्रवासी भारतीयों की सभाओं में गुलाब कौर गदर की गूंज कविता की पंक्तियां गाती और अपनी चूड़ियां उतार कर लोगों को ललकारती। जहाज भारत पहुंचा और पहुंचते ही गदर पार्टी के कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन गुलाब बचकर पंजाब आ गईं। उन्होंने होशियारपुर, जालंधर और कपूरथला में लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। गुलाब क्रांतिकारी साहित्य छापती और उसे स्वतंत्रता सेनानियों में बांटने का काम करती। गुप्त रूप से वो क्रांतिकारियों तक हथियार भी पहुंचाती थीं। धीरे धीरे गुलाब कौर के प्रेरक व्यक्तित्व और अथक प्रयासों से पंजाब में एक मजबूत आंदोलन खड़ा हो गया। कई बार ब्रिटिश पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार गुलाब कौर गिरफ्तार कर ली गईं। राजद्रोह के मामले में उन्हें लाहौर के शाही किले में कैद कर लिया गया, जहां उन्हें गंभीर यातनाएं दी गईं। 1931 में आजादी का सपना दिल में ही लिए ये महान वीरांगना हमेशा के लिए अमर हो गई।

नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी रसोई में मौजूद साधारण दिखने वाला ड्रमस्टिक, जिसे सहजन भी कहते हैं, सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। ये सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि पोषण से भरपूर एक सुपर फूड है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रमस्टिक के जबरदस्त फायदे, इसे खाने का सही तरीका और कुछ खास टिप्स। ड्रमस्टिक, जिसे मुनगा या सहजन के नाम से भी जाना जाता है, एक पौष्टिक पेड़ का फल है। इसके पत्ते, फल, फूल और यहाँ तक कि इसकी छाल भी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसे आयुर्वेद में एक वरदान माना गया है और इसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। ड्रमस्टिक के स्वास्थ्य लाभ। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हड्डियों को मजबूत करता है। ड्रमस्टिक में कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। पाचन में सुधार करता है। ये फाइबर से भरपूर होता है, जिससे पेट की समस्याओं जैसे गैस, अपच और कब्ज से राहत मिलती है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। दिल की सेहत के लिए फायदेमंद। इसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखते हैं और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। त्वचा और बालों के लिए लाभकारी। ड्रमस्टिक का सेवन करने से त्वचा चमकदार बनती है और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। ड्रमस्टिक का उपयोग कैसे करें? अब जानते हैं कि इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करें। सब्जी। ड्रमस्टिक को आलू, टमाटर और हल्दी के साथ मिलाकर स्वादिष्ट सब्जी बनाई जा सकती है। सूप। इसका सूप बनाने से आपको इसके पोषक तत्व पूरे मिलते हैं। पाउडर। ड्रमस्टिक की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं, जिसे स्मूदी या दूध में मिला सकते हैं। चाय। ड्रमस्टिक की पत्तियों की चाय भी बहुत फायदेमंद होती है। ध्यान देने योग्य बातें। दोस्तों, हालांकि ड्रमस्टिक सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अत्यधिक सेवन से पेट में जलन या डायरिया हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। अगर आपको कोई एलर्जी हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों, ये थे ड्रमस्टिक के अद्भुत फायदे।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: ओजेर के पास कुछ इनपुट्स आए थे, उन इनपुट्स के बेसिस पे हमने जब काउंट किया तो स्टेज फियर या फिर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही कॉमन इश्यू निकल के आया था, जिसपे कि सभी लोगों को लगा कि एक सेशन होना चाहिए। तो ये जो सीरीज में हमारा ये सेशन में नया सेशन है आज, और दिस इज फोकस्ड ऑन स्टेज फियर एंड फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। किसी को पता है ये किसी के साथ होता है स्टेज फियर या पब्लिक स्पीकिंग का, मतलब किसी के सामने अगर बात करनी है, एक जन या दो जन से ज्यादा अगर लोग हैं और बात करनी है, खड़े होके बात करनी है, किसी को लाइफ में कभी घबराहट हुई है, किसी ने कोशिश करी है स्टेज पे बोलने की, या फिर जब शुरू में स्टेज में क्लास में बोलते थे, स्कूल में करते थे?
1: मेरा नाम फातिमा है। मुझसे बात नहीं होती है, घबराहट होती है सबके सामने बात करने में,
0: तो अभी तो
1: बात
0: आप
1: करने
0: इतने अच्छे से
1: जाती
0: बात कर रहे हो, घबराहट क्यों होती है फातिमा जी?
1: स्टेज पे, मुझसे बात नहीं हो पाती है।
0: स्टेज पे जाके बात नहीं हो पाती, ठीक है? अभी हम ये आप मानते हैं कि स्टेज पे जाके बात करने में घबराहट होती है, लेकिन अभी देखो आपको मिला के शायद 51 लोग आपको सुन रहे हैं, 51 people are listening to you। अभी क्यों घबराहट नहीं हो रही है आपको?
1: वो तो रही थी अभी, लेकिन अब
0: हो
1: आपसे
0: रही
1: बात
0: थी?
1: हुई तो कम हो
0: अच्छा, घबराहट हो रही थी, फिर भी हिम्मत करा आपने और आप आगे आई और आपने उसको
1: गई।
0: ओवरकम किया और फिर
1: जी
0: भी अपनी बात कहने की कोशिश करी। तो क्या फरा मैम ने इनकरेज किया आपको? क्या उन्होंने कहा कि यू नो यू कैन टॉक, ऐसा नहीं है कि तुम भी अपनी बात आगे रख सकती हो? तो अगर कोई हमें इनकरेज करे या अगर हम थोड़ा सा उस पर काम करें, तो शायद धीरे धीरे करके हम उस स्टेज फियर या लोगों के सामने बात करने का जो फियर होता है उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्या हम सभी ये बात मानते हैं? अगर
1: जी
0: हम
1: मैम,
0: मानते हैं तो हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे।
1: जी मैम, मुझसे पराही मैम ने कहा था आपको घबराहट होती है, आप मैम को बोलिए, वो आपको सोल्यूशन बताएंगी।
0: देखिए, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता, लेकिन टिप्स और टेक्निक्स होती हैं जिसके ऊपर हमें खुद काम करना पड़ेगा। ऐसा कोई गोली नहीं है कि मैं आपको बोलूं आप इसकी दो डोज सुबह ले लीजिएगा, दो डोज शाम को ले लीजिएगा, तो आपका जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं और आपको खुद पे अपनी मेहनत करना होगा, जिससे कि ये कोशिश करके धीरे धीरे हो सकता है ये फियर कम हो जाए। आप इतने अच्छे से बात करती हैं, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप जब बात करती हैं तो आपकी आंखों में एक चमक रहती है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको खुल के बात करना चाहिए। और कोई है हमारे साथ जिसको डर लगता
1: थैंक
0: है स्टेज फियर? कभी अभी नहीं, हो सकता है पहले लगता हो। मुझे बहुत डर लगता था, स्टेज फियर बहुत ज्यादा था एकदम, मैं किसी के सामने तो शायद बिल्कुल ही नहीं बोल पाती थी, स्कूल से ही ऐसा फियर था। इवन रीड में आके भी बहुत फियर था, वो तो मैम ने इनकरेज किया लगातार कि नहीं तुम लोग कर सकते हो, यू कैन डू। तो अगर कोई इनकरेज करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, हम खुद पे काम करते हैं, तो वो काम आसान होता है धीरे धीरे। क्या कोई और कुछ कहना चाहता है? किसी और को ये फियर है या हम ये टॉपिक पे नहीं बात करना चाहते? गुड
1: मैम,
0: आफ्टरनून।
1: आविदा रामपुर के घर से।
0: अच्छा आबिदा जी,
1: जी मैम, जैसे आपने अभी बोला कि सेम यही मेरे साथ होता था कि जब मैंने न्यू न्यू रीड ज्वाइन किया था, उस टाइम में लड़कियों तक से बात नहीं कर पाती थी, बहुत घबराहट फील होती थी कि मैं लड़कियों से अपनी बात समझा पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब मैं रीड के साथ लगातार जुड़ी रही, बात करती रही, लाइफ स्किल्स के सेशन लेती रही, तो मेरे अंदर काफी घबराहट दूर हुई। और फिर अकबर सर ने काफी मुझे इंकरेज किया, बताया कि आबिदा आपके अंदर इतनी स्किल्स है और आप क्यों नहीं बताते हो, क्यों नहीं बोलते हो। तो फिर मैंने कोशिश की और आज मैं अच्छे से बात कर पाती हूँ आपसे।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने कहा आपको ये फीडबैक मिला और आपने उस पर कोशिश करी। अच्छा, आपको ये पता है कि सभी से मैं बात कर रही हूँ कि ये जो स्टेज फियर है या फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है रिसर्च का। और एक स्टडी हुई थी फॉरेन कंट्री में, इंडिया से बाहर ये स्टडी हुई थी, शायद इंडिया में भी हुई हो। ये 75% लोगों में रहता है किसी ना किसी लेवल पे, यानी कि 100 में से 75 लोग ऐसे होंगे। कुछ लोग पैदा होते हैं और उनको कॉन्फिडेंट होता है, वो शुरू से ही बहुत आउटस्पोकन होते हैं, उनको कोई झिझक नहीं होती अपनी बात रखने में, वो एक कैटेगरी है। बट उसके अलावा 75% लोग हैं, अगर 100 लोगों में गिनती करेंगे, उनको किसी ना किसी लेवल पे स्टेज फियर जरूर होता है। और इसका एक साइंटिफिक नाम है, कोई मुझे बता सकता है बिना गूगल करे कि उसका नाम क्या है? किसी को पता है? इस फियर का नाम है ग्लॉसोफोबिया। ग्लॉसो फोबिया, यानी कि ये कोई, आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपको ही है या सिर्फ गिने चुने लोगों को ही है, इसको एक साइंटिफिक नाम भी दिया गया है, इसका नाम है ग्लॉसोफोबिया। अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन एंजाइटी है या फियर है ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है जब आप स्टेज पे जाते हैं, कोई बता सकता है क्या होता है? अगर आपको स्टेज पे भेज दिया गया है, माइक दे दिया गया है, तो क्या फियर होता है? क्यों आपको लग रहा है कि आपको स्टेज फियर है? क्या ऐसी चीजें होती हैं? हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी होने लगती हैं, लोगों से आई कांटेक्ट करने में मुश्किल होता है, जो बोलना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, ऐसा होता है किसी के साथ?
1: जी मैम, अर्चना बोल रही हूँ
0: हाँ जी,
1: मैम। एक्चुअली वो क्या होता है, पैर एकदम से कांपने लगता है, और हम जो बोल रहे होते हैं ना, तो बस पता नहीं लाइन गैप होने लगता है, उसके वर्ड जो है हम भूलने लगते हैं, पीच का लेवल हाई हो जाता है, और अजीब बहुत ही नर्वस फील होने लगता है।
0: वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड, एग्जैक्टली ऐसा।
1: अभी अभी मैं आपको, इवन मैं अभी आपको बोल रही हूँ तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, कि मैं यदि आप सामने रहते तो शायद मैं नहीं इतना बोल पाती।
0: अच्छा, बिल्कुल, ये बिल्कुल यही बात होती है कि जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो हमें लगता है कि मुंह सूख रहा है और क्या बोलना चाह रहे हैं ना, जो बोलना चाह रहे थे वो भूल गए हैं हम। अच्छा, बात जो है आधी ही बीच में रह जाती है और हम उस पॉइंट से कहीं और डाइग्रेस हो जाते हैं, ऐसा होता है। फिर हाथ एकदम कांपते हैं, पैर एकदम ठंडे ठंडे होने लगते हैं, कि आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी से आंख मिलाते हुए डर लगता है। अच्छा, भी ऐसा होता है कि ये टीचर ना मुझसे क्वेश्चन ना पूछे, मैं पीछे बैठ के आराम से, मतलब मुझे बस आई कांटेक्ट नहीं करना, जैसे ही आई कांटेक्ट होगा तो टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगी। ये भी एंजाइटी हुई है किसी को? ये भी पार्ट ऑफ ग्लॉसोफोबिया ही है। तो हमें ये स्टेज फियर होता क्यों है, या पब्लिक स्पीकिंग में जो ये फियर होता है हमें क्यों होता है? ज्यादातर अगर मोटे मोटे उसको भागों में बांटा जाए तो हमें ये लगता है कि जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन, जो हमारा फर्स्ट या सेकंड सेशन था लाइफ स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल, वो हमारी वीक है। यानी कि हम बोलते हुए घबराते हैं, या हमें बोलने में कौन से शब्दों को इस्तेमाल करना है उसमें हम घबराते हैं, हमारी प्रैक्टिस नहीं है बोलने के लिए, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो बात हम रखना चाह रहे हैं दूसरे के सामने वो दूसरे के इंटरेस्ट की है, वो दूसरे को, हम ये जजमेंटल होना शुरू कर देते हैं कि क्या पता उसको मेरी बात पसंद नहीं आए, क्या पता वो मुझे जज जज करना शुरू कर दे, और इस चीज से घबरा के हम एंग्शियस हो जाते हैं, और फिर जो है हम शब्द भूलने लगते हैं, और हमें लगता है कि शायद जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ ये दूसरे के सामने मैं बोलने की काबिल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। ये भी हो सकता है कि शुरुआत में या बचपन में हमने कभी कोशिश करी हो और मजाक बना दिया गया हो हमारा, हमारी बात का मजाक बना दिया हो, तो वो दिमाग में ना कहीं सबकॉन्शियस में यहाँ पे पीछे फिट हो जाता है कि अगर मैं बात करूंगा या बात करूंगी लोगों के सामने तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो पुराने बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से भी कभी कभी हमें वो स्टेज फियर पैदा होने लगता है। शुरुआत में हो सकता है ना हो, लेकिन आप कभी स्टेज पे गए अपनी असेंबली में, या अगर आप ट्रेनर हैं, आप ट्रेनिंग करते हुए कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, या आपको माइक दिया है स्टेज पे कुछ बोलने के लिए और आपके साथ कुछ आप नहीं बोल पाए, तो वो भी हमारा कॉन्फिडेंस और कम कर देता है। ऐसा होता है किसी के साथ या हुआ है किसी के साथ? मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, शायद इसी वजह से ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं आपके साथ। और किसी वजह से स्टेज फियर आपको लगता है होता है बच्चों में, हम में, या फिर इन जनरल पब्लिक में स्टेज फियर होता है? किसी के पास कोई इनपुट है? क्योंकि यही 5 रीजंस नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी रीजंस हैं। कई बार हमें बोलने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया जाता जब हम छोटे होते हैं, या हमारे घर में, या हमारे स्कूल में अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो सबको तो कॉमन नहीं दिया जाता ना, जो वॉलेंटियर करेगा, हाँ बेटा तुम बोलो असेंबली में, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में शुरुआत से, छोटे से ही शुरू होनी होती होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये जो फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है ये और बढ़ता जाता है कम होने की बजाय, अगर हम इस पे काम नहीं करें या हम प्रैक्टिस नहीं करें। क्या सब मानते हैं इस चीज को?
2: नमस्ते नमस्ते मैम।
0: नमस्ते ईशा जी।
2: मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चे को खड़ा करते हैं जैसे प्रेयर वगैरह में कुछ बोलने के लिए असेंबली में, कि कुछ पोयम सुनाओ, तो बच्चों को आने के बावजूद भी वो नहीं बोल पाते, अपने घर पे तो सुना देते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं सुना पाते क्योंकि उनमें एक डर सा पैदा होता है कि हम सबके सामने बोलेंगे तो हमसे बोला नहीं जाएगा या मैम से डर लग रहा है, इस चक्कर में बच्चे बोल ही नहीं पाते, एक फियर सा रहता है हर समय।
0: तो वो फियर ऑफ जजमेंट है, यानी कि दूसरों का ओपिनियन जो है, जो नेगेटिव ओपिनियन है उसको हम पहले से ही सोच लेते हैं हम बोलेंगे और लोग हमें नेगेटिव जज करेंगे, है ना। फियर ऑफ जजमेंट जो होता है दूसरे लोगों के ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन को हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं, बल्कि जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस है, आप कह रहे हो कि बच्चे को पोयम आती भी है कभी भी वो सुनाने में झिझकता है, क्यों? क्योंकि वो जब आसपास के बच्चों को देखता है या दूसरे टीचर्स खड़े हैं या और पेरेंट्स खड़े हैं असेंबली में, तो उसको लगता है कि ये मेरे अंदर जो है मेरे को जज करेंगे और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो मुझे हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे या कुछ करेंगे। इसे कहते हैं फियर ऑफ जजमेंट। अभी तो आप बच्चे की बात कर रहे हैं लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना, ये फियर ऑफ जजमेंट मतलब दूसरों की ओपिनियन की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती रहती है और हम अपने कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि हम बोले ही नहीं ताकि हमें जज ही ना किया जाए। क्या ऐसा होता है? जब हम बोलेंगे तो हमें जज कौन करेगा? नहीं, बात सही है। जब हम हाथ ही नहीं खड़ा करेंगे आंसर देने के लिए तो हमें कोई जज ही नहीं करेगा। तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की बजाय वो फियर को और बढ़ावा देते हैं। बट हमारा मकसद यही है कि जब हमारे यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं या जो हमारे यहाँ से महिलाएं आगे काम करने जा रही हैं, एटलीस्ट वो अपनी बात को कह सकें। पब्लिक स्पीकिंग मतलब अगर 10 लोग भी खड़े हैं, जरूरी नहीं है कि पूरी रैली हो या पूरा ऑडिटोरियम भरा हो, उन लोगों के सामने ही बात करनी है। अगर 10 लोग भी खड़े हैं और अपनी बात को अगर हम सही से नहीं रख पा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं फेयर है, मतलब हम कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। इस फियर को कम कौन करेगा? अगर ये हमारे अंदर है तो हमको ही इस पे काम करना पड़ेगा, राइट? इसके लिए हम कुछ टिप्स और टेक्निक्स कर सकते हैं कि पहले तो हम इसकी बहुत ज्यादा ये ना करें कि हम जो दूसरे हमें देख रहे हैं या जो दूसरों का ओपिनियन है वो वही सच है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे पैदा होगा? पहले तो ये है कि जो टॉपिक पे आपको बात करनी है, मान लीजिए कोई टॉपिक अगर ऐसा है जिसपे कि आपको पता है आपको बोलना है, तो आप उस टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करके जाइए। अगर आपको पता है आपने क्या बोलना है, अगर 10 पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं तो आपको पता है कि एक एक मिनट आप इन 10 पॉइंट्स पे बोलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन करना है ऑडियंस से तो क्वेश्चन करेंगे और आपका स्पीच खत्म हो जाएगा। अगर डिबेट है या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको अपनी व्यू पॉइंट देने हैं तो आप उस टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करके जाइए। जब आपको पता है आपने क्या बोलना है तो आप स्टैमर नहीं करेंगे, यानी कि सोचेंगे नहीं। ऐसा होता है ना, हम बात बात करते करते ऊपर देखने लगते हैं, फिर हमें याद नहीं आता, फिर हम करते ये सब चीजें भी हम अवॉइड करेंगे, कर सकते हैं अगर हम अपने टॉपिक, जैसे मुझे आज आपके साथ ये वाला टॉपिक पे बात करना था, तो मैं 2 दिन से रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक के ऊपर और इस टॉपिक के ऊपर मेरे को लगा कि हम एक बिगनर्स लेवल के लिए कितने पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं। अब एक दिन के अंदर किसी का कॉन्फिडेंस तो बिल्ड नहीं हो सकता कि वो स्टेज पे जाके और पूरा अपना स्पीच दे दें, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स छोड़ सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस छोड़ सकते हैं। तो मैंने अपने टॉपिक पे रिसर्च करी, अब मुझे पता है और फिर मैंने प्रैक्टिस करी कि अच्छा इस पॉइंट पे मुझे क्या बोलना है, अगले पॉइंट पे मुझे कौन सा एग्जाम्पल देना है। तो इससे क्या है, आपको भी आसानी है और मैं टाइम भी वेस्ट नहीं कर रही और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि मैंने क्या बोलना है आपके साथ। तो फर्स्ट इज कि आप अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है और आपको इम्प्रॉम्प्टू नहीं, पहले से पता है आपका टॉपिक, तो आप उस पर रिसर्च करके जा सकते हैं, ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं अपने पॉइंट्स को सिंपल रखिए, बहुत बड़े बड़े शब्द और बहुत सारा डेटा मत यूज करिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े शब्द और डेटा हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। जब आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे तब आप कोशिश करके उसको अपने टॉक में इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर आप शुरुआत में पब्लिक स्पीकिंग पे या स्टेज पे बोलने पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो आपकी बात आप रखना चाह रहे हैं उनको छोटे छोटे सरल सेंटेंसेस में तोड़ के आगे बोलने की कोशिश करें। अगर आप अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं उसको आपने लिख लिया छोटे छोटे शब्दों में, उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़ दिया, तो अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि शीशे के सामने प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि शीशे में आप देख पाते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं। आजकल तो आप मोबाइल में भी अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो, और देख सकते हैं कि जब मैं अपनी बात कह रही हूँ स्टेज पे या पब्लिक स्पीकिंग में, कुछ मेरे को किसी बात पे चर्चा करनी है तो मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। और हो सकता है मैं हाथ ज्यादा मूव कर रही हूँ, जैसे मेरी आदत है मैं हाथ काफी मूव करती हूँ, तो क्या वो अच्छा लग रहा है, क्या वो बुरा लग रहा है। कई लोग होते हैं वो ऐसे पेन को भी, पेंसिल को भी ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे ऐसे भी करते हैं, तो इवन स्टेज पे भी, या माइक पकड़ा है तो माइक को ऐसे ऐसे कर लेंगे, तो माइक पे आप जो बोल रहे हैं ना वो लॉस्ट हो जाता है। जब आपने माइक छोड़ा तो माइक इधर उधर करा, क्योंकि हाथ का मूवमेंट का आदत होता है, तो वो माइक से जो आप कहना चाह रहे हैं वो लॉस्ट हो जाएगी आवाज। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज को आप माइक बना लीजिए, इसको माइक बना लिया, अब मैं शीशे के बात करना, तो पहला हो गया कि हमने अपने पॉइंट्स बना लिए कि जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है वो टॉपिक कि मैंने अच्छे से डेटा बनाया, उसको सिंपल पॉइंट्स में लिखा, बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो शब्द बोलने में ना टंग ट्विस्ट हो जाती है, जब आप बहुत लोगों के सामने है, जबान सूख रही है और आप में थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो बड़ा शब्द आया तो आप डर गए, अरे बाप रे मैं इसको कैसे बोलूंगा या बोलूंगी, तो उसको सरल रखिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने शब्दों को आराम से बोलिए, बहुत जल्दीबाजी में बोलने से भी फंबल हो जाता है। फंबल पता है क्या होता है, मतलब जो कहना चाह रहे हैं वो शब्द ठीक से बन के बाहर नहीं आता, फंबल हो जाता है। अगर आप किसी स्टेज पे पहुंच बोलने वाले हैं ना, तो कोशिश करिए कि वेन्यू, वेन्यू मतलब जहां पे आपने बोलना है, स्कूल का वेन्यू है या कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू में पहले से पहुंच जाइए ताकि आप एनवायरमेंट को पहले से देख लें। अच्छा जगह कैसी, कई बार क्या होता है जगह इतनी इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग मतलब वो प्रभावित कर लेती है आपकी सोच को, और आपको जो है आप जो कहना चाह रहे हैं उसको आप नहीं कह पाते ठीक तरीके से, क्योंकि आप इंटिमिडेट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उस एनवायरमेंट से। बट अगर आप पहले से ही वहां पहुंच जाएं, 5-7 मिनट पहले पहुंच जाएं, वहां बैठ जाएं, बैठ के आप देखें अच्छा अच्छा यहाँ से लाइट आ रही है, तो यहाँ से मेरे को यहाँ पे खड़े होके बोलना है, ये 10 लोग हो सकता है सामने, अगर 10 चेयर्स पड़ी हैं तो अच्छा ये 10 लोग यहाँ से देखेंगे, तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है। क्या आप मानते हैं इस चीज को कि अगर पहले से ही आप चले जाते हैं कहीं किसी जगह पे और फिर धीरे धीरे 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइए, कहने का मतलब है कि अगर आपको बात करनी है या कुछ बोलना है तो इमीडिएटली, कभी कभी हम एंटर करते हैं किसी रूम में ना तो वो रूम के एनवायरनमेंट से भी हम कंफर्टेबल नहीं होते, तो जाकर आप चाहें तो अपने वेन्यू पे पहले से पहुंच जाइए, उसके साथ आप एक अपना रिश्ता बना लीजिए कि हाँ मेरे को पता है कि ये इस तरह से दिखाई देता है और इस तरीके से लाइटिंग है और यहाँ पे खड़े होके मुझे बोलना होगा और ये मेरा टॉपिक है, इसको मैंने प्रिपेयर करा है, प्रैक्टिस करा है। अपनी सांस, ब्रीदिंग को हमने पुराने कई सेशंस में, मेंटल हेल्थ के सेशंस में, इवन जो योगा का सेशन था उसमें ब्रीदिंग के ऊपर बात करी थी कि ब्रीदिंग से जो हमारे नेगेटिव एनर्जी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो कई हद तक कम हो जाता है। अगर आपको किसी टॉपिक पे बोलने को बोला जा रहा है और आपको घबराहट हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम ब्रीदिंग पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, इससे क्या होगा कुछ हद तक हमारी जो एंजाइटी है वो कम हो सकती है। हमने प्रिपेयर तो पहले ही कर लिया, हमारे पास हमारे पॉइंट्स भी हैं बोलने के लिए, हमने प्रैक्टिस भी कर ली शीशे के सामने, हमने ये भी देख लिया कि वेन्यू कैसा है, मैं कहाँ जाके बोलना है मुझे, या बोलना किस जगह पे खड़े होके बोलना है, और अब अगर घबराहट कम करनी है तो हम आंखें बंद करके या वैसे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इससे भी कई हद तक हमारा जो है मेंटल एक स्टेबिलिटी आ जाती है। कभी कभी हाथ ठंडे हो जाते हैं तो आप हाथ को भी ऐसे रब कर सकते हैं, जब आपका शरीर कंफर्टेबल होगा ना तो आपका जो घबराहट है कई हद तक कम हो जाएगा। समझ आ रही है सभी को?
3: यस बेटा जी।

0: किसी ने देखा है क्यू कार्ड? क्या होता है क्यू कार्ड?
1: नहीं, देखा नहीं कभी।
0: क्यू कार्ड क्या होता है? छोटा कार्ड होता है, उस पे आप जो बोलने वाले हैं उसके मेन मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं। मान लीजिए आज मुझे लाइफ स्किल्स पे बोलना है, तो लाइफ स्किल्स पे मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है? पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग पे मुझे कौन से टॉपिक कवर करने? पब्लिक स्पीकिंग क्यों होता है? पब्लिक स्पीकिंग के लिए हम कौन से टिप्स एंड टेक्निक्स कर सकते हैं? पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, फियर ऑफ पीपल जजिंग यू, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमने अभी पढ़ा था ना, ग्लॉसोफोबिया। ग्लॉसोफोबिया बोलते हैं इसको, है ना? तो ये चीजों को हम क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन हो सकता है हर हर किसी के पास वो ना हो। आप जहाँ पे बोलने जा रहे हैं हो सकता है वहां पे पीपीटी ना हो। अगर मेरे पास पीपीटी नहीं होती तो मैं छोटे छोटे क्यू कार्ड माने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे अपने की पॉइंट्स को छोटे शब्दों में, और जो मैं कहना चाह रही हूँ उसके अलग अलग पॉइंट्स बना के मैं छोटे छोटे 5 या 6 क्यू कार्ड्स रख लेती, ताकि जो पॉइंट मैं बोलना चाह रही हूँ वो मिस ना हो जाए। आप अपने जैसे अगर सेशन ट्रेनर्स हैं जो हमारे, वो ट्रेनर्स अपने सेशन को प्लान करते हैं, सेशन को प्लान करते हुए वो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। आज मुझे ब्लाउज बनाना सिखाना है, तो मैं कटिंग सिखाऊंगी, मैं उसकी ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी और मैं उसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी, फिर उसको मेजर कैसे करना है और अलग अलग ब्लाउज कैसे बनाना है। ये 5 पॉइंट लिखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, उसी को अगर हम एक छोटे कागज पे लिख रहे हैं तो उसे क्यू कार्ड बोलते हैं। क्यू कार्ड मतलब अगर मैं पॉइंट भूल रही हूँ तो वो मुझे क्यू कार्ड एक क्यू एक एक आइडिया दे देगा कि अच्छा मुझे इस पॉइंट पे भी बात करनी थी, कहीं मैं भूल ना जाऊं। समझ में आया? अदरवाइज मैं एग्जाम्पल्स या फोटोग्राफ्स के थ्रू और भी बता सकती हूँ। किसी को समझ में आया क्या? कोई बता सकते हैं क्यू कार्ड्स क्या होते हैं? कभी किसी ने यूज करा है क्यू कार्ड अपने ट्रेनिंग सेशन में? हमारे साथ बहुत सारी टीचर्स जुड़ी हुई हैं, क्या टीचर्स ने यूज किया है क्यू कार्ड कभी?
2: हेलो जी मैम, सुमन।
0: जी सुमन जी।
2: हाँ जी मैम, जैसे अगर हमें कहीं पे बोलना होता है तो पहले मैं क्यू कार्ड का मतलब तो मुझे खैर आज ही पता लगा है। हाँ जी, पर मैं अपने नोट्स हमेशा लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है वहां पे, ये मैं हमेशा करती हूँ उस चीज के लिए। हाँ जी, और बोलते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है मैं ना बीच बीच में रुक जाती हूँ कभी कभी। हाँ जी
0: कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से होता है। जितना ज्यादा आप खुल के कोशिश करेंगे वो रुकना, पॉज इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। अगर आप अपनी बात कह रहे हैं और अननेसेसरी पॉज नहीं है, एक पॉज दिया है आपने अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए, तो वो गलत नहीं माना जाता। वो
2: जी
0: माना
2: मैम,
0: जाता है कि आप अपनी सोच को 2 सेकेंड दे रहे हैं और उसको रिकलेक्ट करके फिर से उस मुद्दे पे आ रहे हैं, है ना? और
2: जी
0: क्यू कार्ड मतलब वो
2: मैम,
0: आपको इशारा देता है। क्यू का मतलब होता है इशारा देना कि अच्छा ये टॉपिक था, इस पे ये वाला पॉइंट भी आपको बोलना था। तो अगर आपके
2: हाँ जी
0: टॉपिक
2: मैम,
0: में 6 पॉइंट्स हैं तो आप हर एक पॉइंट को अलग अलग क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं बड़ा बड़ा, ताकि आपको मेहनत ना लगे उसको पढ़ने में, क्योंकि इतने सारे 50 लोग आपको घूर रहे हैं और ऐसे सबकी आंखें ऐसे हो रही कि अच्छा ये
2: जी
0: क्या
2: मैम,
0: बोलने वाला है, आगे क्या बोलेगा या बोलेगी, तो घबराहट हो जाती है। अगर बड़ा बड़ा लिखा
2: जी
0: हो कि अच्छा अब मुझे ये बोलना है, तो वो आपका जो अगर ध्यान भटक रहा है या कॉन्फिडेंस कम हो रहा है ना, तो यू कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मैंने रिहर्सल करी थी, इसके तो मैंने बात करी थी, तो मैंने प्रैक्टिस
2: जी
0: करी
2: मैम,
0: थी, तो मैं ये बात कह सकती हूँ। तो वो क्यू क्यू का मतलब इशारा करना कि अच्छा ये जो है आप ये वाला पॉइंट भूल रहे हैं और ये भी आपको बोलना है।
2: जी मैम,
0: अगर
2: इसीलिए मैं लिख
0: प्रेजेंट,
2: लेती हूँ हमेशा।
0: हाँ एब्सोल्युटली, हाँ आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो जरूर लिख लीजिए या क्यू कार्ड्स का यूज करिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आपको सारी बात कवर करने में और सारे की पॉइंट्स कवर करने में। अगर प्रेजेंटेशन है भी तभी भी आप लिख के जाएगा, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में भी ऐसा होता है कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई, मेहनत करके 2-3 दिन लगा के प्रेजेंटेशन बनाई, प्रैक्टिस भी करी, और जब प्रेजेंटेशन को लगाया तो टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, वो प्रेजेंटेशन चली ही नहीं या
2: जी
0: कोई
2: मैम,
0: और प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप घबराने लग जाएंगे, अरे अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या बोलना है, मेरे तो पॉइंट्स ही लॉस्ट हो गए। तो अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है या आपके पास ऐसे छोटे छोटे कार्ड है, क्योंकि बड़ा सा पर्चा लाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में कि अच्छा ये तो लिख के लाए हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट टू बिकम अ बेटर

0: या टू बिकम अ मतलब अच्छा और अच्छा स्पीकर बनने के लिए आप क्यू कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख के भी ला सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: थैंक यू मैम।
0: और कोई कुछ शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस?
2: जी एक बार मेरे साथ क्या हुआ, हम लोग का यहाँ पे 26 जनवरी का फंक्शन था हमारे सेंटर पे, तो मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं कर रही थी, बट मेरे स्टाफ ने और गांव वाले सब इकट्ठे थे, देयर वाज ऑलमोस्ट 800-1000 पीपल वर देयर, और चेयर सब भर गई, लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इधर, तो मेरे को एकदम से माइक पकड़ा दिया गया, एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, आई वॉज अबाउट टू स्पीक, तभी मैंने देखा मेरे जो जेठ हैं वो सामने खड़े हैं, उनको देख के मैं एकदम घबरा गई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत खिंचाई करते हैं, वो ना बहुत मजाक बनाते हैं चीजों को लेकर,
0: फियर ऑफ जजमेंट,
2: राइट राइट, तो मैंने एकदम से इमेजिन किया वो सामने है ही नहीं,
0: Absolutely.
2: और मैंने उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके आई स्पोक सो वेल, सारी चीजें मैंने कल उसमें कलेक्ट करी और पूरा सबको डिटेल में बताया कि हु वी आर, व्हाट वी आर डूइंग हियर, सब कुछ सबको बताया, दैट वाज रियली वेरी नाइस, बट वो एक मिनट के लिए तो मैं घबरा गई थी तो फिर मैंने वही वही चीज मैंने सोचा वो है ही नहीं सामने,
0: है ही नहीं, बिल्कुल, जो चीज आपको घबराहट दे रही है, यहाँ पे सीमा जी के साथ क्या हुआ, उनको वो फियर ऑफ जजमेंट आ गया कि तो मेरी फैमिली है, अच्छा ये मेरी खिंचाई करेंगे बाद में जाके, लेकिन अब इतनी बड़ी ऑडियंस थी, 800-1000 लोग थे, उनको भी लगा कि भाई वो इम्पोर्टेंट है या मेरा कॉन्फिडेंस, जो मेरी नॉलेज है, जो मैं दिन रात काम करती हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपकी फैमिली है, लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहे थे, वो नेगेटिव फियर आपने पैदा कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके ही दिमाग ने आपको बोला कि सीमा देखो हो सकता है वो कल को तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बट यू हैड दैट कॉन्फिडेंस, आपने वो कॉन्फिडेंस था जिसने उसको ओवर पावर किया, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज व्हाट द स्टेज फियर इज, कि दूसरे के जजमेंट को लेके हम इतना बड़ा अपने दिमाग में खवा बना लेते हैं कि हम अपना जो बात कहना चाह रहे हैं उसको भूल जाते हैं, दूसरी बात ये भी होती है कि हमें पता ही नहीं हमें क्या कहना, तो नेचुरली स्टेज फियर होगा ही, अगर हमें पता ही नहीं हमें बोलना क्या है तो स्टेज फियर आ ही जाता है, तो इस पे पैनिक नहीं करें, इस पे वर्क करें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू वर्क ऑन इट स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, कुछ टिप्स जो हमने अभी शेयर करी हैं उसको फॉलो करें, जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं उससे पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शीशे के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, कोशिश करिए कि छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए, अगर आप न्यू स्पीकर हैं शुरू शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए, और ये मत सोचिए कि आपका दूसरे लोग कितना हंसेंगे या कुछ, तो आप कहना चाह रहे हैं प्रिपेयर इट वेल एंड ट्राई एंड डिलीवर इट, और फीडबैक आप ले सकते हैं, फीडबैक से डरिए मत, फीडबैक पे काम करना सीखिए, अगर आपके दोस्त ने या आपके फैमिली में किसी ने बताया है कि आप बात करते हुए ऐसे, ये कुछ भी पॉइंट्स आपको अगर बताए हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं, उससे घबराना नहीं है, सो स्टार्ट विथ स्मॉल ऑडियंसेस, टेक पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक लीजिए और उस पर काम करिए, बहुत हद तक अगर आप दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनते हैं तो हम जरूर सीखते हैं, क्योंकि हम जो सीखते हैं ना वो हमारी एक इंद्री है बोलने वाली, बट और जो बाकी की इंद्रियां हैं जब हम सुनते हैं तो वो भी हमारे काम में आती हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो हम जब दूसरे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं ना उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है, आप किसी को हिंदी में बोलते हुए सुन सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हुए सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उनका टॉकिंग स्टाइल क्या है और एक अपना टॉकिंग स्टाइल डिवेलप कर सकते हैं, तो अगर आपको फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है तो आप जरूर जो मोटिवेशनल वीडियोज हैं, फ्री वीडियोज हैं ऑनलाइन, उनको देखिए, उससे काफी हद तक आपको टिप्स मिलेंगी कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है, जब आप कहीं पे बोलने जा रहे हैं आप अपने आप को कंफर्टेबली ड्रेस करिए, अगर आपका ड्रेस अप कंफर्टेबल नहीं है ना, अगर आप उस ड्रेस अप में कंफर्टेबल नहीं है आप कभी भी अच्छी बात नहीं रख पाएंगे, आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ, दैट डजंट मीन कि बहुत मेकअप करके या बहुत डेकअप होके जाइए, अगर आप प्रोफेशनली बोल रहे हैं तो हमने आई थिंक फिफ्थ या सिक्स सेशन में टिप्स दी कि हाउ टू ड्रेस अप प्रोफेशनली, प्रोफेशनली ड्रेस अप होके जाइए और अवॉइड करिए ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, बड़ी बड़ी बालियां चूड़ियां, जब आप पहनेंगे ना तो वो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है. आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दिस, आई एम सेइंग कि अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आपको लग रहा है वो आपको स्पीकिंग में या जो स्टेज शो है उसमें प्रॉब्लम देगा, तो आप अपना कंफर्ट पहले देखिए कि मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूँ. ऐसा भी नहीं है कि चप्पल में चले जाए, प्रोफेशनल ड्रेसअप में जाएंगे लेकिन एक कंफर्टेबल चीज में जाएंगे. कोई बहुत टाइट कपड़े, बहुत ऐसे कपड़े जो पब्लिकली हम नहीं पहनने चाहिए या एक प्रोफेशनली नहीं पहनने चाहिए, वो अवॉइड करने चाहिए. जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं तो खाना अच्छे से खा के जाइए, क्योंकि अगर आपका शरीर जो है वो कंफर्टेबल होगा, अगर उसे भूख लग रही है या आपने बहुत सारा चाय कॉफी पी लिया है और एसिडिटी हो रहा है, तो जब आप कंफर्टेबल फिजिकली नहीं है तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए. एम आई राइट? अगर आप बहुत सारा खाना खा लेंगे तो क्या होगा, नींद आने लग जाएगी, हमारी एनर्जी खुद ही कम हो जाएगी. अगर हमारी एनर्जी कम हो गई तो हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो उतने अच्छे से हम नहीं कह पाएंगे. खाना खाइए, हल्का खाना खाइए. अगर आप एक लार्ज गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं या अगर आपको पता है कि आप में नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, आलस आ सकता है, उबासी आ सकती है, अब आप स्टेज पे बात करें और बीच में ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा. नहीं तो कोशिश करिए कि बहुत हैवी ऑयली खाना ना खाएं अगर आप नेक्स्ट स्पीकर हैं या आप आपका जल्दी ही बारी आने वाला है. लेकिन भूखे भी मत रहिए, पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी तो वैसे ही हाथ पांव सब ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल हम बोल नहीं पाएंगे. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, प्रैक्टिस वेल, दैट इज द ओनली, मैंने पहले भी बताया कोई गोली नहीं है कि दो डोज सुबह लीजिए, दो डोज शाम को लीजिए और अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे. नहीं, हमें खुद पे काम करना होगा. टिप्स हमने शेयर करी, इन टिप्स पे काम करेंगे डेफिनेटली. मैं बता रही हूँ कि ये प्रैक्टिस से ही बेटर हो सकता है. तो अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे तो ही आप अच्छे से बात कर सकते हैं. कभी कभी जो अच्छे स्पीकर होते हैं ना वो ऑडियंस के साथ एंगेज करते हैं, मतलब जैसे हम कोशिश करते हैं आप लोगों से बात करने की ताकि ऐसा ना हो कि ये बोरिंग हो जाए. हो सकता है आपके ऑडियंस आपसे एंगेज नहीं करना चाहते, तो उसमें आपकी कोई कमी नहीं है. हो सकता है टॉपिक उनका इंटरेस्ट का ना हो सकता है उनको समझ नहीं आ रहा या उनके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं वो उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके साथ इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है. तो घबराइए मत. अगर आप अपने कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कोई आंसर नहीं आता है तो घबराइए मत, स्टिल ट्राई एंड एंगेज विद योर ऑडियंस. सो उससे क्या होगा, आपको एक इंटरेक्टिव सेशन करने में आसानी होगी और कंफर्टेबल एनवायरमेंट होगा. बट ये सब चीजें तब पॉसिबल नहीं है अगर आपको एक टॉपिक पे बोलने को बोला जाए. ये तभी पॉसिबल है अगर आप ट्रेनिंग में हैं या आप टीचर हैं, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है. बट अगर आपको एक लेक्चर, मतलब एक टॉपिक पे बोलना है, डिबेट है या फिर किसी टॉपिक पे आपको सिर्फ बोल के जाना है, तब आप एंगेज नहीं कर सकते. वो तो सिर्फ ऑडियंसेस को सुनना है और वो दैट इज अबाउट इट. तो अपने जो ऑडियंस है ना उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आप जो अपनी बात कहना जा रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं. जैसे अभी मुझे पता था कि ये हमारे लाइफ स्किल का जो सेशन है वो किस एज ग्रुप के लिए है, तो जो हमने अपने सेशंस प्रिपेयर करे और जो इसका नंबर ऑफ स्लाइड्स रखा वो इसी हिसाब से रखा कि हम इसको एक घंटे में खत्म भी कर ले, ये सरल भाषा में भी हो, इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं की पॉइंट्स वो कवर हो जाएं. बहुत इसमें पता है लोगों ने बहुत रिसर्च करी है पब्लिक स्पीकिंग पे, इसके बहुत सारे टूल्स एंड टिप्स हैं. अगर हम इसी एक फर्स्ट सेशन में ही वो सारी चीजें करेंगे ना तो वो इफेक्टिव नहीं होगा. तो हमारे ऑडियंस कौन है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी हमें हेल्प करता है हमारे टॉपिक पे प्रिपेयर करने के लिए. मेरी आदत है जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग सेशन में हूँ तो मैं लोगों के बीच बीच में जाके भी क्वेश्चन पूछती हूँ. अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपके आसपास 10-15 लोग 25 लोग बैठे हैं और आप कंफर्टेबल हैं लोगों के बीच में जाके बोलने का, तो वो भी एक सही तरीका है. अगर आप कंफर्टेबल हैं एक पोजिशन पे खड़े होके बोलने का, वो भी कंफर्टेबल है. इसमें कोई सही या गलत नहीं है, बट आप ये देखिए कि अगर आप ज्यादा मूव अराउंड कर रहे हैं तो कहीं वो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा. कभी हॉल इतना बड़ा होता है कि पीछे के लोग क्या सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं, या अगर आप स्टेज पे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता. तो जैसे मैंने कहा, आप अपना एक तरीका अपना सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के टाइम आपको किस तरीके का तरीका अपनाना है. एक जगह पे खड़े होकर बोलना आपके लिए कंफर्टेबल है. अगर आप ट्रेनिंग सेशन में हैं तो एंगेज कर रहे हैं अपने ऑडियंसेस के साथ, तो आप थोड़ा बहुत चल के भी जा सकते हैं उनके पास, उनको माइक दे सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी सीमा जी ने कहा कि उनको आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम आया कि उनके जो फैमिली मेंबर थे वो आए और उनसे वो आई कांटेक्ट करा जब उन्होंने, तो उन्हें लगा कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ। अगर आई कांटेक्ट मतलब दूसरे की आंखों में डायरेक्टली देखने से आपको डर लगता है और आप शुरुआत में काम करना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, तो ज्यादा देर तक किसी एक आई कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को लगातार देखते रहते हैं ना, तो थोड़ी घबराहट होने लगती है, आप ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, आप ये मेरे बारे में कुछ तो गलत ही सोच रहा है, वो इतना ब्लैंक फेस, कभी कोई कुछ बोल रहा होता है और हम लोग ऐसे देख रहे होते हैं, होता है ऐसा, तो हमें लगता है अब ये पता नहीं क्या सोच रहा है मेरे बारे में। अगर ऐसा है तो आई कॉन्टेक्ट मोर देन 5 सेकेंड्स आप अवॉइड कर सकते हैं। आपके सामने अगर ऑडियंस है तो आप एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, फिर आप अवॉइड करके जब आप पे कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप आई कांटेक्ट करिए, उनके साथ इंटरैक्ट करिए, ये धीरे धीरे ही बिल्ट हो सकता है। कभी कभी बहुत अच्छे स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो कोई शेरो शायरी या कोई कोट, जैसे बड़े बड़े लोगों ने जो कोट बोला है उससे या तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं या अपने टॉपिक को एंड करते हैं। तो अगर आप में कॉन्फिडेंट है, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पहले के 30 सेकेंड बहुत जरूरी है कि आप क्या बोलने वाले हैं, और आखिरी के जो 2 मिनट हैं वो बहुत जरूरी हैं कि आप किस तरीके से उसको एंड कर रहे हैं, बीच का भी जरूरी है, बट अगर आपने पहले के 30 सेकेंड या 1 मिनट में अपने ऑडियंसेस को अच्छे से इंगेज करा है, तो ज्यादातर आपका जो स्टेज फियर है वो कंट्रोल में रहेगा। खत्म तो नहीं होता, किसी का भी खत्म नहीं होता, कंट्रोल में होता है, उसको हम मैनेज करना सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शेरो शायरी, लेकिन टॉपिक से हटके नहीं, कि टॉपिक तो कुछ और है और आप प्यार मोहब्बत पे शेरो शायरी करें, ऐसा भी मत करिएगा। एजुकेशन का टॉपिक है तो एजुकेशन पे बात करिए, स्किलिंग का टॉपिक है तो स्किलिंग पे बात, ये बात नहीं करेंगे कि वो आज ये हो गया था आज वो हो गया, ऐसे कहानी नहीं डालेंगे, नहीं तो लगेगा कि हम बेफालतू में ऐसे ही बोल रहे हैं खाली बोलने के लिए, पता चल जाता है कि हमने फिर प्रैक्टिस नहीं करी है, खाली हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं बस ऐसे, तो वो भी मत करिएगा। बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी की कोट है, और नॉट मतलब पॉलिटिकल नहीं हो लेकिन मोटिवेशनल हो, ऐसे लोगों की कोट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वो कोट को सही तरीके से बोलना, एग्जैक्टली जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही बोलना, अपने शब्द उसमें मिक्स ना करना, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। ओके हाँ, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी हमें धोखा दे देती है, हमने पीपीटी पे बना लिया सब कुछ हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया और जो हम कहने आए थे हमने पीछे पीपीटी देखी, पीपीटी तो चल ही नहीं रही और हम ब्लैंक, अब मैं क्या बोलू। तो उसके लिए हम कुछ चीजें, कुछ चिट्स चिट्स होते हैं ना, उसी को क्यू कार्ड बोलते हैं, क्योंकि हमने लिख के रखा हुआ है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं भी चली तो मेरे पास मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं कि मुझे इन पॉइंट्स पे बात करनी है। तो दिस वाज द फर्स्ट सेशन ऑन स्टेज फियर पब्लिक स्पीकिंग, कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने करीबन 2 दिन लगाए इसको क्रिएट करने में। आई होप दिस इज हेल्पफुल, ये प्रैक्टिस से ही जाएगा, और ये समझना कि सिर्फ मुझे स्टेज फियर है ऐसा गलत है, 75 से 80% लोगों को ये फियर रहता है और वो उस पे काम करते हैं और उसको अपने कॉन्फिडेंस में बदल के लाते हैं। तो डोंट थिंक दैट यू आर अलोन, ये सब में होता है, हर लेवल पे होता है, लेकिन हम जितना बात करते हैं दूसरे से ये फियर कम हो जाता है या मैनेज हो जाता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है। आई होप दिस इज हेल्पफुल। मेरे पास कोई शेरो शायरी नहीं है और कोई कोट नहीं है ये बंद करने के लिए सेशन को, बट एनी क्वेश्चन, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। एंड प्लीज आप ये सेशन बच्चों के साथ करिए, बेनिफिशियरीज के साथ करिए, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, आई होप सो।
1: नमस्ते मैम, फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली।
0: यस यस अंकल।
1: हाँ मैम, मुझे भी बहुत स्टेज फियर था मैम, अभी भी है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। और आपका लाइफ स्किल्स के लिए पहले जो मैंने सेशन अटेंड किया था मैम, मुझे आई कॉन्टेक्ट बहुत प्रॉब्लम है मैम, ये आदत ही नहीं थी, अभी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को. रियली वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू सो मच.
0: मोस्ट वेलकम संगीता जी. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, कि हम आपस में बातचीत करके हम ये महसूस कर सकें कि ये कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन चैलेंजेस हैं, और ये इसलिए है कि कहीं हम जब बचपन में थे तो छोटे होते हुए हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उतनी अपनी बात को कहने के लिए, या हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमें जजमेंटल बना दिया हमें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हमें उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है जिस टॉपिक पे बोलने को बोला गया है. इन तीन या चार मोटे मोटे वजहों से ही हमें स्टेज फियर आता है हमारे दिमाग में, पर बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती है, जरूरी नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली स्टेटेड सिंड्रम्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टेज फियर. सुनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं?
3: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून
3: मैम. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. मुझे याद आया अभी जब भी हमारे 2018 में आपके साथ ही इनोग्रेशन था हमारे स्कूल का, दैट वाज द फर्स्ट टाइम टू होल्ड द माइक इन माय हैंड एंड आई एम वेरी नर्वस एट दैट टाइम एंड यू आर विद मी एट दैट टाइम. आई रिमेम्बर दैट, सो दैट आई एम फेंट मैम, बट आई कैन से दैन यू हेल्प मी सो मच. Even speak your name, your family, about all that. And after that day, ma'am, I am very confident to handle a mic in any place.
0: कई बार ऐसा होता है कि ना माइक हमने पहली बार लाइफ में पकड़ा होता है, ऐसा होता है. जब मैंने पहली बार माइक अपने हाथ में पकड़ा मुझे लगा ये क्या है, और ऐसा बहुत बार होता है कि हम जब फर्स्ट टाइम माइक पकड़ते हैं तो हमें लगता है ये आवाज हमारी अपनी ही है, क्योंकि हमें आदत नहीं है सुनने की अपनी आवाज को. तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आपने फर्स्ट टाइम जब बोला तो वो एक फियर था, लेकिन वहां से आज आप इस स्टेज पे आ गई हैं कि खुद ही पेरेंट मीटिंग करती हैं, खुद ही बात करते हैं बच्चों की बात पेरेंट्स से, तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट ही है. आप इतनी अच्छे बड़े फोरम पे बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपने काफी वर्क किया है. रेखा ने कुछ कमेंट दिया, तो रेखा जी ने बताया कि है स्टेज फियर है, जैसे मैंने बताया सभी को ही होता है, तो उनको भी है. वो अपनी बात, हमने अभी कुछ सेमिनार किया था, वो कह रही कि वो अपनी बात रखना चाहती थी लेकिन वो इसी फियर की वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाई. तो रेखा क्यों डर लगता है आपको माइक पकड़ने से या इस चीज से कि लोगों के सामने बोलना है, क्यों डर लगता है?
4: मैम वैसे लोगों के सामने बोलने से डर नहीं लगता, क्योंकि जैसे हम मोबिलाइजेशन करने जाते हैं तो हम लोगों से बातें करते हैं, बट पता नहीं वो फर्स्ट टाइम था मेरा, तो बस थोड़ा सा नर्वस हो गई. मैंने जैसे आपने बोला अपने पॉइंट लिखो, तो मैंने अपने पॉइंट भी लिखे थे, बट मैं सामने जाके और बोल नहीं पाई.
0: मैं आपको एक मतलब पर्सनल टास्क दे सकती हूँ कि अब आप जाओगे ना, ये जो पॉइंट्स आपने लिखे थे प्लीज इसका वीडियो बनाओ या फिर मिरर के सामने जाके इसको प्रैक्टिस करो और देखो कि रेखा कैसी लगती है, क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए देखा है. रेखा आप साफ बोलती हो, आप सरल शब्दों का इस्तेमाल करती हो और जितनी बात कहनी है उतनी ही बात कहती हो, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं. सो यू ट्राई एंड नेक्स्ट टाइम वेन एवर हम कोई ऐसा सेशन कर रहे हैं, आई विल मेक श्योर दैट यू आर देयर टू टॉक नाउ. डोंट बी वरीड, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है. वहां सभी लोग अपने थे और वहां पे कोई भी आपको जज नहीं करने वाला था, और अगर जज कर भी रहा था तो वो उस इंसान के अंदर की भावनाएं हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज वो आपके रिलेशन में नहीं है, उनकी जजमेंट का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. रेखा तो वैसे ही रहेगी, उसकी लाइफ वैसे ही चलेगी.
4: हाँ जी मैम, इस बात का डर लगता है पता नहीं मेरी बात कुछ वैल्यूएबल है भी कि नहीं.
0: एग्जैक्टली
4: exactly. मेरे पॉइंट पे वो हंसेंगे किसने क्या बोल दिया, बस थोड़ा सा ये माइंड में चीज आती है तो अपनी बातें नहीं रख पाती.
0: जो आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना वो दूसरे के पास नहीं है. जो आपके चैलेंजेस थे या जो पॉइंट्स आपके पास थे रेखा, वो आपके ग्राउंड चैलेंजेस थे, उसको शेयर करने के लिए दूसरा बंदा जज ही नहीं कर सकता सही से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो आप कह रहे हो कि वो सही है कि गलत है. फॉर एग्जाम्पल जो और लोग थे जिन्होंने शेयर, जैसे फरा थी उन्होंने शेयर करा, सीमा जी ने शेयर करा था, उनकी जो बातें हैं वो उनको पता है कि उनकी कम्युनिटी में क्या चैलेंजेस हैं. तो आप जज भी कर लोगे तो क्या कर लोगे, सही और गलत तो है ही नहीं उसमें कुछ भी, है कि नहीं?
4: हाँ जी मैम.
0: तो वो कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप कहना चाह रहे हो वो वैल्यूएबल है, लेकिन वो तभी हो सकता है अगर आप पहले से अपने पॉइंट्स लिख के रखोगे और आपको उसमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, दो ही लाइनें बोलो, जरूरी नहीं है कि 10 लाइनें बोलोगे तभी इफेक्टिव होगा। अपनी बात को 2 लाइनों में करो, देखना धीरे धीरे करके वो 2 लाइनें, 4 लाइनें, 6 लाइनें, और फिर बोलना पड़ेगा रेखा चुप कर जाओ, बस करो और मत बोलो, ऐसा भी सिचुएशन आएगा। अभी आप बोले, इतने सारे लोगों के बीच में बोले, कोई आपको झिझक नहीं थी, तो आई कॉन्टैक्ट से डरना नहीं है। आई कॉन्टैक्ट से अगर आपको डर लगता है तो अपनी आईज को आप 5-7 सेकंड के बाद मूव आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर 1-to-1 डिस्कशन हो रही है तो आई कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है। ये बातें हमने इंटरव्यू स्किल्स में करी थी कि अगर इंटरव्यू स्किल्स चल रही हैं और सामने बैठ के कोई बात कर रहा है तो आई कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है। बट पब्लिक स्पीकिंग में क्या है ना, आप मूव आउट मूव इन कर सकते हो। अगर कोई कोई इंसान आपको लग रहा है कि अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा है या बोरिंग उसको लग रहा है, उसकी तरफ देखो ही मत। नहीं देखोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। उसकी तरफ देखो जो आपकी बात को समझ रहा है। कुछ लोग होते हैं करते हैं, उनको देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो उनकी तरफ देखो, ये धीरे धीरे करके आप में आ जाएगा।
5: गुड इवनिंग मैम, मैं ही बोल देती हूँ, कोई नहीं बोल रहा है तो।
0: गुड इवनिंग सारा।
5: तो स्टेज पे जाते हुए तो मुझे भी बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता है। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी स्टेज पे तो ऐसे दिल हो रहा था, बहुत दगदग, और जो अपनी बात में कहना चाह रही थी वो भी नहीं कह पा रही थी कि मैं कुछ कहूंगी, मतलब इतना डर लगता था कि स्टेज पे जाके जो बात कहनी थी वो सब भूल जाया करती थी। बट अब जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने आप में कि मैं वहां जाके अपनी बात भी रख लेती हूँ और बहुत अच्छे से लोगों को शायद समझा भी पाती हूँ।
0: एब्सोल्युटली फरा, तो आपने उसके ऊपर काम किया, ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में वो हुआ। वही बात हमें अपने बेनिफिशियरी से भी बतानी, घबराओ मत, दूसरे के जजमेंट से डरो मत। जो बात तुम कहना चाह रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस रखो और इधर उधर की बात मत। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाओगे और दूसरे टॉपिक को मिक्स कर दोगे तो नेचुरली यू नो इट विल बी नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड स्पीकर। तो इसलिए, क्योंकि आप पॉइंट्स लिख लेते हो, आपको क्या बातें करनी है आपके दिमाग में रहती है या नोट्स में रहती है, इससे आप अच्छा बोल पाते हैं। सेम
6: आई थिंक शायरी भी करती है
0: परा शायरी,
6: अब तो परा शायरी की शायरी से बंद करके अपना टॉपिक क्लोज करती है।
0: क्योंकि उनको ये था कि उनको अपने ऑडियंसेस को एंगेज करना है
5: जी।
0: और उनकी जो
5: जो सुन भी नहीं रहा है ना, मुझे मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, तो वो मेरी तरफ देखे कम से कम शायरी पसंद करके देखे।
0: Absolutely. किसी को अगर एक बात कहने में जो उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है शायरी में इंटरेस्ट हो। कई लोग गाना भी गाते हैं, मैंने ये देखा है कि शायरी के साथ वो स्टेज पे आएंगे तो मैं गाने के साथ शुरुआत करता हूँ। ऐसे
5: भी मिला था मैम, हमें रमाडा में ही मिला था फर्स्ट अवार्ड मैम ने दिया था, तो वहां पर मैंने गाने से एंड किया था अपना। मैंने सोचा शायद लोग कहेंगे फरा हर बार स्टोरी ले आती है और वही स्टोरी सब कुछ, शायद कुछ लोगों को बुरा बोरिंग लगता हो, तो मैंने कहा क्यों नहीं थोड़ा सा कुछ हो जाए, तो वहां मैंने एंडिंग जो की थी वो गाने पे की थी।
0: क्या आपने प्रिपेयर किया था उसके लिए पहले से?
5: हाँ मैम, मैंने प्रिपेयर किया था।
0: क्या आपने पहले अपनी दोस्त के सामने या मम्मा के सामने या भाई के सामने कभी किसी या शीशे के सामने उसको कोशिश करी
5: भाई के सामने तो नहीं, लेकिन एक दिन पहले जब हमारा दूसरे दिन को वो अवार्ड फंक्शन था तो एक दिन पहले स्वाति और ईशा मैम मेरे रूम में थी, तो मैंने उनको गा गा के सुनाया था, मतलब पहले सर्च किया फिर मैंने उन्हें गा गा के सुनाया, तो थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उन्हें सुनाया तो उन्हें भी अच्छा लगा, तो फिर वो मैंने
0: अगर मुझे कोई बोल दे कि गाने के लिए स्टेज पे तो मैं तो भाग जाऊंगी वहां से। तो इट्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं उस पे प्रैक्टिस करिए और उस पे काम करिए, तो जरूर अच्छा स्पीकर बनेंगे और स्टेज फियर जो है उसको आप मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमने परा के एग्जाम्पल में देखा।
5: वही है ना कि एक बार गलत होगा, दो बार होगा, तीसरा आके हम लोग ठीक हो जाएगा। हमें नहीं देखना चाहिए लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं उनको इतना मतलब वो कर दो कि वो मजबूर हो जाए सुनने में कि हाँ भाई कोई बंदा बोल रहा है।
0: Absolutely, absolutely. I like that. दयाराम जी, आपने भी बताया था कि आपको मुश्किल होती थी पहले बोलने में और अभी।
7: जी मैम, जैसे इंटरव्यू में कहा था वैसे कि जैसे प्रार्थना सत्र में जब हमारा नंबर आता था तो हम भाग जाया करते थे और घंटे लेट आया करते थे, बोलने में झिझक थी और लोगों के सामने, जैसे स्कूल में तो बहुत सारे लड़के या लड़कियां होती थी, तो कुछ फ्रेंड्स भी होते थे क्लास के, तो वो के आवाज में मजाक उड़ाते थे, तो ऐसे तो झिझक रहती थी। लेकिन जैसे काम किया है तो किया, जैसे कम्युनिटी में जाते हैं और महिला पुरुष रहते हैं अक्सर, शायद सभी बड़े रहते हैं, तो जैसे हम करते गए तो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी जो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता गया, तो भी कोई भी, जब मैं कंप्यूटर क्लास जाता तो उसमें 11th और 12th लड़कियां हैं।
0: अच्छा।
7: वो करीब 17 या 18 से ऊपर, तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत ना बताऊं, लेकिन नहीं, मेरे ऊपर मुझे विश्वास रहता कि जो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या, मैं यहाँ पे भी प्रिपेयर होता हूँ कि हाँ मुझे ये आज बताना, इसलिए शायद वो भी कुछ बातें पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रिपेयर अगर आप करके जा रहे हैं तो जरूर आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। तो मैंने भी बताया जैसे कि जरूर आप अपने टॉपिक पे काम करिए, अगर आपको टॉपिक पहले से पता है, अगर एकदम से किसी टॉपिक पे बोलने के लिए बोला गया है तो घबराहट हो सकती है, लेकिन आप 2 मिनट लगा के अपना ख्याल तैयार कर सकते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं और फिर आप अपनी बात कहें। अगर किसी और को कोई शेयर नहीं करना तो वी कैन क्लोज दिस सेशन। आई होप इट इज ऑफ एनी यूज। अगर छोटा सा भी इसमें एक टिप भी अगर ऐसी थी जो आपके लिए हेल्पफुल थी, सो इट्स माय वर्क डन। सो प्लीज मुझे शेयर करिएगा और अपनी कम्युनिटीज के साथ प्रैक्टिस करिएगा शीशे के सामने। मुझे वीडियोस भेज सकते हैं, मैम को भेज सकते हैं फीडबैक के लिए, शिवम सर को भेज सकते हैं कि हम कैसा बोल रहे हैं, अगर किसी को सपोर्ट चाहिए।

0: गुड आफ्टरनून,
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। काफी हम लोग बात कर चुके हैं लाइफ स्किल्स के ऊपर, और कुछ सेशंस आई बिलीव आप लोग खुद कर रहे हैं, खुद से बना के, या कुछ सेशंस जो हम लोगों ने दिए हैं उनको भी आप शायद यूज करते होंगे। क्योंकि ये नॉन यूनिक है, और ज्यादातर हम चाहते हैं कि जितने लोगों के साथ आप ये कुछ शेयर कर सकें, उनकी सॉफ्ट स्किल्स बिल्डअप हो सकें। इंटरनेट से भी वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं सेशंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है। एक मेजर लाइफ स्किल जो हमें एज ए इंडिविजुअल भी आनी चाहिए और एज अ फैमिली पर्सन भी आनी चाहिए, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर हम मनी को लेके हम सबको कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं, चैलेंजेस रहते ही हैं। चाहे आज हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम आज अर्न कर रहे हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं। सो वी थॉट दैट इट कुड बी इम्पोर्टेंट टू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू अ लाइफ स्किल, बिकॉज ज्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस पे बात होती है, लेकिन ये लाइफ स्किल ऐसी है जो जब हम लाइफ में जब इस इसके अंदर उतरते हैं तभी वो धीरे धीरे करके बिल्डअप होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें प्रॉबेबली हैं जो अगर हम शुरू से ही अपने दिमाग में रखें तो हम एक बेटर फंड मैनेजर या बजट मैनेजर या इंडिविजुअल जो अकाउंट की जो हमारी अपनी वेल्थ मैनेजमेंट है उसको हम बेटर कर सकते हैं। सो टेकिंग दैट आई कैन शेयर सम स्लाइड्स। मैंने अपनी जो एक फोटो है वो लिखी हुई एक लगाई हुई है, बट आई बिलीव जब आप ये सेशन अपने बेनिफिशरीज के साथ करेंगे, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें औरतें भी होंगी, उसमें यूथ भी हो सकता है, उसमें हो सकता है बुजुर्ग भी होंगे। सो सबसे पहले हमें ये जरूरत है उस चीज की मैपिंग की कि मुझे एज एन इंडिविजुअल मनी चाहिए क्यों। सो कैन एनीबडी टेल कि मनी हमें लाइफ में चाहिए क्यों होता है? पहले जब रुपए नहीं आए थे तभी भी तो जिंदगियां चलती थी ना, बार्टर सिस्टम से चलती थी, या फिर उसके अलग तरीके होते थे। अब क्योंकि मनी है, करेंसी आई है, तो ये और अब हम क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरीज बैंक में क्रेडिट होती है, हम मनी को फिजिकल फॉर्म में तो देख ही नहीं पाते, वो आती है ईएमआईज में चली जाती है, पेमेंट्स में चली जाती है, स्कूल फीस में चली जाती है। सो एज एन इंडिविजुअल मनी हमें चाहिए क्यों, कोई बता सकते हैं? एज एन इंडिविजुअल इसमें कुछ सही कोई गलत नहीं है, हमारी जिंदगी में मनी हमें क्यों चाहिए? इफ समबडी कैन डिफाइन दैट।
1: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली।
0: हेलो जी,
1: एक बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए मैम,
0: मनी हमें बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए। वेरी गुड
1: अच्छे से
0: सर।
1: कंफर्टेबल
0: मैं
1: लाइफ
0: सत्यम
1: के
0: फतेहपुर जी। मैम मनी की हमें आवश्यकता, मैम हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए भी बहुत जरूरी थी आज के टाइम में, क्योंकि एक तौर पर ये एसेट के तौर पर इसे आइडेंटिटी दी गई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिक नेसेसिटी यानी कि खाना, कपड़े हो गए, हमारी एजुकेशन हो गई। एजुकेशन तो राइट टू एजुकेशन के अंदर फ्री है, लेकिन फिर भी हमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए काफी मनी चाहिए होता है। डू वी अग्री ऑन दैट?
0: यस मैम।
1: तो एनीथिंग एल्स? एक तो बेहतर लाइफ के लिए हमें चाहिए, बेसिक लाइफ के लिए चाहिए, जो कि अभी हमारे दोस्त ने हमें बताया, संगीता जी ने बताया कि बेटर लाइफ के लिए चाहिए, और किस चीज के लिए मनी चाहिए हमें?
0: मैम प्रिया वर्मा, बाराबंकी सेंटर। मैम जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए
1: हाँ
0: हमें
1: जी
0: मनी की नीड होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारे फतेहपुर सेंटर से किसी ने बताया था शायद कि बेसिक नीड्स, और आप भी वही बोल रहे हैं, दैनिक दैनिक नीड्स जो हैं, जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमें चाहिए, पैसा चाहिए, यानी कि पेट भरा होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, बेसिक जो हमारी नीड्स हैं उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है। ये दो चीजों के अलावा किसी और चीज के लिए हमें मनी चाहिए होता है? आप अपनी जिंदगी में किसी और चीज के लिए पैसा चाहते हैं? दैनिक नीड में क्या हमारे और कुछ जरूरतें आती हैं, या ऐसी कोई चीज जिसके लिए आपको मनी चाहिए होता है?
0: इसमें हमारा
1: हेल्थ
0: स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुई,
1: हेल्थ के लिए चाहिए। वेरी गुड।
0: एक्चुअली मैम
1: एजुकेशन
0: इनफैक्ट हर एक चीज के लिए हमें मनी चाहिए ही है। एट प्रेजेंट
2: सब कुछ के लिए, इवन
1: तो
2: पानी भी अभी तो पैसे से ही है, सब कुछ के लिए।
1: वो तो बेसिक नीड्स में कवर हो जाता है ना, पानी हो गया, रोटी कपड़ा मकान हो गया, राइट।
3: मैम
1: जी बताएं।
3: मैम फतेहपुर मैम, हमें मैम मनी की आवश्यकता मैम, कोई स्टार्टअप करने के लिए भी पड़ती है, जैसे हम
1: बिल्कुल
3: एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कर रहे हैं के
1: बिल्कुल,
3: लिए।
1: तो हमें बेसिक से उठ के अगर हमें कोई रोजगार शुरू करना है, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह के
2: मैम
1: इनपुट्स की कोशिश कर रही थी। जी
2: मैम
1: बताइए।
2: फार्मिंग के
1: फार्मिंग
2: लिए भी चाहिए होती है, मैंने हमारे
1: के
2: काफी।
1: लिए, बिजनेस के लिए चाहिए, ठीक है। और
2: हाँ
1: बताएंगे क्या आपको, अगर अच्छा फोन चाहिए उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। यहाँ तो सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम मनी खर्च किन किन चीजों पे करते हैं आजकल। हम एक्सपेंसिव कपड़ों पे खर्च करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अलग अलग जगह पे घूमने जाएं, उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि कभी कभी की अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाने जाएं, करीबन मतलब कभी कभी तो हम जाएं अच्छी जगह पे, कोई हमें बहुत फैंसी सा रेस्टोरेंट पसंद है तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास मनी हो। क्या ऐसा होता है हमारे साथ?
4: यस मैम, पर्सनल ग्रूमिंग पर भी मैम इस टाइम पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि जो बहुत जरूरी है आपको प्रेजेंटेबल लगना जब आप बाहर जा रहे हो, तो इन सब चीजों पे काफी एक्सपेंसेस आते हैं।
1: बिल्कुल, तो ये जो सना ने बोला ये बहुत हटके है हमारी बेसिक जरूरतों से। बेसिक जरूरतें यानी कि हमारा रोटी कपड़ा मकान हो गया, एजुकेशन हो गई, इसके लिए तो हमें ये तो हमारी बेसिक नीड्स में आ जाता है। जो सना ने बोला या जो फतेहपुर से बोला था अभी किसी ने, कि हमें एंटरप्राइज शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस या लघु उद्योग शुरू करने के लिए सीड मनी चाहिए होता है, यानी कि हमें अपना कुछ ऐसा पैसा चाहिए जो हम अपना उद्योग शुरू कर सकें या अपना बिजनेस शुरू कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि सना ने बोली है, कि आजकल हम बेसिक से उठ के अपनी एक इमेज मैनेजमेंट, जिसको कह सकते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए, उसके लिए भी हम काफी पैसे खर्च करते हैं एज एन इंडिविजुअल। हो सकता है सभी नहीं करते हो, बट बहुत आजकल ये जो सोशल मीडिया की वजह से ना, हमें ये बहुत लगता है कि अच्छा ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा मेकअप होना चाहिए, इस तरह का फोन होना चाहिए, इस तरह के कपड़े, इस तरह की जगहों पे मुझे जाके फोटोज लेना है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक बेसिक जरूरत नहीं है, लेकिन आज के दौरान में ये एक फैशन या फिर एक ऐसी जरूरत बन गई है जो कि हमारी शायद इमेज मैनेजमेंट, इसको हम कह सकते हैं कि हम चाहते हैं हमारी इमेज ऐसी हो, तो हम उस इमेज मैनेजमेंट के लिए भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। उसकी जरूरत है नहीं है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, उसमें सही या गलत कुछ भी नहीं हो सकता या है। तो अब जब हम मनी की बात करते हैं ना, तो अभी देखिए सबने अलग अलग जवाब दिए, तो मनी की वैल्यू मेरे लिए कुछ और हो सकती है, सना के लिए कुछ और हो सकती है, संगीता जी के लिए कुछ और हो सकती है, हाँ हमारे जो और दोस्त जुड़े हैं सभी के लिए मनी की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। आज मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी जरूरत हो सकता है कुछ और होगी, आज मैं हाउसवाइफ हूँ या मैं एज ए मदर हूँ तो मेरी जरूरत कुछ और हो सकती है। तो मनी की जो नीड है वो समय समय पर चेंज होती है, और अमाउंट ऑफ मनी क्या चाहिए वो भी चेंज होता है। तो जब हम अपने बेनिफिशरीज के साथ मनी की बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है कि हर इंडिविजुअल इसकी विशेषता अपने हिसाब से डिफाइन करे, और इसमें कोई सही या कुछ गलत नहीं है। बिकॉज किसी के पास थोड़ा है तो उसमें भी शायद वो खुश है या ना खुश है, किसी के पास बहुत है तो उसमें भी वो खुश है ना खुश हो सकता है। सो मनी इज टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, द नीड ऑफ दैट मनी इज ऑल्सो टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर फ्यूचर, यू नो पेरेंट्स और योर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ योर नियर एंड डियर वंस। एवरीबडी अग्रीज, या इसमें किसी की कोई और सोच है या कोई और हेल्प करना चाहता है इसको डिफाइन करने के लिए? तो पहले तो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ मनी समझना है। यहाँ पे थोड़े बच्चे भी हैं, ये प्रिया वर्मा के जो सेंटर से हैं,
5: मैम 12 बंकी सेंटर।
1: बाराबंकी से हैं, ओके फाइन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट दिस एज ग्रुप टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ये टीओटी सेशन ज्यादा है, सो आई बिलीव जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इस बात को समझ पाएंगे, और अगर इन बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उस पर आज बात कर सकते हैं, या फिर आपके सेशंस के दौरान भी आप इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। सो जैसे अगर हम अपना एक मंथली बजट बनाएंगे, मनी मैनेजमेंट की बात हम ये कर रहे हैं कि ठीक है एज ए स्टूडेंट मुझे क्या मैनेज करना है, कितना मुझे बजट चाहिए एज ए हाउसवाइफ मुझे क्या चाहिए, एज ए एंटरप्रेन्योर अगर हम अपना कोई उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं तो मुझे किस तरह का बजट चाहिए, वो बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो हम जब एक महीने का भी बजट बनाएंगे ना, तो मोटा मोटा हमें पता चलेगा कि हमारा मेजर खर्चा वो किस चीज के लिए रहा है। कभी किसी ने बजट बनाया यहाँ पे अपने, जेन्युइनली बताना कि किसी ने भी बजट बनाया है अपने घर का या फिर बिजनेस का या फिर सेंटर का, तो आप बनाते ही होंगे, सेंटर का बजट बनाया है। कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश करी है कि मेरी जो सैलरी आती है या मेरी जो इनकम आती है वो जाती कहाँ। जब जब मैं 10 साल पहले काम कर रही थी या कर रहा था, तो शुरुआत में जो मेरी इनकम थी मुझे वो भी कम लगती थी, आज भी जो इनकम है वो भी कम लगती है, आगे आने वाले मुझे जो चीजें हैं उनके लिए भी जरूरतें कम पड़ रही हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ, बनाया है किसी ने बजट अपने घर का या अपना खुद का, एज ए स्टूडेंट आपने कभी बनाया है कि ठीक है मुझे
3: यस
1: अपनी
3: मैम
1: हायर एजुकेशन के लिए, कोई कोई एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहते हैं
3: जी मैम
1: बताएं।
3: मैम क्योंकि मैम कभी कभी मैम ऐसा होता कि मैम हम जो बनाते अचानक से कोई जरूरत पड़े, जो मैम कॉलेज की फीस हो गई, सेमेस्टर वही पड़ जाती है, जिम की फीस अलग जाती है, ये सब मैंने बना कर रखा है, और कभी कभी अचानक भी ज्यादा पैसों की जरूरत लग जाती है, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल सही,
3: थोड़ा मैनेजमेंट करना।
1: बिल्कुल सही। हम पूरा बजट बनाते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं जो हमने शायद प्लान भी नहीं करी होगी। तो बहुत जरूरी है पहले तो अपनी नीड्स को समझना। नीड्स हो गई जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, कितना कितना बजट की जरूरत है, पहले तो हमें वो समझना है अपनी लाइफ में, अपने इंडिविजुअल लाइफ में। और फिर दूसरी आ गई वॉन्ट्स, जिसकी वॉन्ट्स मतलब जिसकी हमारी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम जी सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा आउटलुक मेंटेन करने के लिए हमें वो चीजें चाहिए। मुझे अच्छा फोन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा जगह पे खाना खाना चाहती हूँ। खाना तो मैं बेसिक भी खा सकती हूँ, घर पे बना हुआ, खुद का बनाया हुआ, मम्मी के हाथ का बनाया हुआ, या बहन के या भाई के हाथ का, किसी के भी हाथ का बनाया हुआ खाना मैं खा के खुश रह सकती हूँ। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊँ, वहां जाके अच्छे कपड़े पहनूं और फिर वहां जाके अच्छा सा खाना खाऊं और टाइम स्पेंड करूं, थोड़ी सेल्फीज लूं, वो सेल्फीज को मैं पोस्ट करूं, तो वो हो गई मेरी वॉन्ट। तो ये नहीं कहना है कि नीड्स और वॉन्ट्स जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। नीड्स मतलब अगर मेरी जरूरतें पूरी हैं तो मैं जी सकती हूँ, मैं वॉन्ट्स पे तब जाती हूँ जब मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जरूरतों को कम करके अपनी वॉन्ट्स को पूरा करूं। जब हम वो करना शुरू करते हैं तब हमारा बजट जो है वो हिल जाता है कि भाई बेसिक नीड, राशन तो घर में आया नहीं महीने का, लेकिन हमने जाके बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा लिया और एक ही बारी में 10,000 रुपए खर्च हो गए, तो अब राशन तो आएगा नहीं क्योंकि वो हमने पैसा खर्च कर दिया। तो एक दिन तो मैंने अच्छी जगह पे खा लिया, मेरे पास फोटोज भी आ गई, मैंने उसको पोस्ट भी कर दिया, मेरे पास 10,000 लाइक्स भी आ गए, बट क्या वो मेरी जरूरत थी या नहीं थी, ये आप इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे अपने लिए। इसमें अगेन कुछ सही या कुछ गलत नहीं है, आपकी जिंदगी की क्या क्या नजरिया है आपकी जिंदगी के लिए वो यू कैन ओनली डिफाइन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल टू अंडरस्टैंड। ये बहुत जरूरी है एक लाइफ स्किल होना कि पैसे की अहमियत आज समझिए, कल बेहतर, आज और बेहतर कल के लिए। चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम अभी नया नया जॉब शुरू किया है, या चाहे हम एक लघु उद्योग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे हम हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, काम भी कर रहे हैं और एक हायर एजुकेशन भी करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अपनी कुछ बिजनेस यहाँ पे कर रही हूँ और थोड़े टाइम में मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पर्सनल ग्रोथ हो और मैं कुछ आगे जाके एडवांस कोर्सेज करूँ, तो मुझे उसके लिए भी सेविंग्स करनी है। तो बहुत जरूरी है हम एक बजट बनाएं। कुछ लोग मंथली बनाते हैं, कुछ लोग 2-3 महीने का बना सकते हैं, कुछ लोग साल का बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट डू मेक अ बजट एंड डू ट्राई एंड ट्रैक कि जो बजट आपने बनाया एट द एंड ऑफ द मंथ आप कहाँ पे थे, तब आप अपने आप को पहचान पाएंगे। कभी कभी हम क्या कहते हैं, इम्पल्स इम्पल्स खर्चे भी कर देते हैं, कभी कभी इमरजेंसी खर्चे हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो हमारे फ्रेंड फतेहपुर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि कभी कभी वो कोशिश करते हैं कि इन इन चीजों पे खर्चा करें, बट ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है या ऐसी कोई फीस आ जाती है जो उन्होंने शायद प्लान नहीं करी थी और इमिडिएटली उनको पे करना पड़ा, तो उस चीज में उनका बजट हिल जाता है। जब आप ये 3, 4, 5, 6 बारी करेंगे ना, तो आप खुद इफेक्टिवली अपना बजट, जो मंथली बजट्स हैं या जो साल के या 6 महीने के आपका जो एक प्लान है बजट को लेके, वो आप अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, और जो भी मनी आपके पास है उसको आप एक बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे किसी के पास सैलरी आती है, मान लीजिए जो काम कर रहे हैं, जब सैलरी आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं?
3: मैम सबसे
6: हेलो मैम,
3: पहले जो
6: नमस्ते मैम
1: नमस्ते जी
6: जी गजराज बोल रहा मैम, बारा से।
1: हाँ जी गजराज सर,
6: वैसे मैम अभी जो सेशन चल रहा बड़ा अच्छा, अभी तक किसी अभी तक जो योजना है बजट को लेकर, पारिवारिक खर्चों को लेकर किसी, मैं मेरी बताऊं तो मैंने अभी फोकस नहीं किया, बाकी ये आज का सेशन से आगे के लिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और जिनके साथ हम काम करेंगे उनको भी ये समझाने की जरूरत है मैम। अब जो आज अभी आप पूछ रहे हो कि क्योंकि जैसे जो सैलरी मिलती है तो सबसे पहले तो जो राशन पर खर्चा कितना होता है, राशन पर खर्च होता है नंबर एक, तो 1 महीने में जितना भी जो अपन को जरूरत
1: बिल्कुल
6: होती है,
1: बिल्कुल, पेट
6: और
1: भरना
6: दूसरा
1: सबके लिए
6: पानी और
1: जरूरी।
6: बिजली,
1: ठीक है, पानी हो गया और बिजली हो गया।
6: बिजली और फिर एजुकेशन बच्चों के उस पर, क्योंकि ये तो मनुष्य की जो अति जरूरत चीज है, जब तक राशन नहीं होगा जब तक उसका जीवन नहीं चलेगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल
6: तो ये है मैम। इसलिए सबसे पहले राशन यानी कि 1 महीने का कितना खर्च, तो जो सैलरी मिलती है वो उस पर नॉन तेल घी जो भी है जरूरतों पर चला जाता है मैम।
1: बिल्कुल
6: दूसरा
1: सर,
6: फिर फोकस करते हैं कि क्योंकि बिजली नहीं है तो भी अंधेरा है, तो वो बिजली का बिल जो भी चुकाना होता है, पानी पर खर्च है, फिर उसके बाद में बच्चों के एजुकेशन पर मिनिमम जो भी जितना बचता है वो धीरे धीरे ऐसे मतलब इस खर्चे होते चले जाते हैं मैम।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और कोई बताना चाहेगा? थैंक यू गजराज सर, गजराज सर ने बहुत सिंपल और सरल तरीके में बताया कि सबसे पहले तो जरूरतों को हम पूरा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसे सैलरी आती है या जिनका कोई बिजनेस है, कुछ मनी आती है, तो महीने में सबसे पहले वो अपना राशन पूरा कर लेते हैं कि ठीक
6: जी
1: है, पूरा राशन, पूरे परिवार का पेट भरा होना चाहिए, तो हमने उसको राशन पूरा कर दिया। उसके बाद बिजली पानी होना चाहिए, हमारे ऑब्वियसली घरों में बिजली पानी का खर्चा है, वो खर्चे पूरे हो जाते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, तो ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं। हमारा हर मंथ मंथ दर मंथ ऐसे चलता रहता है, महीने दर महीने, महीने दर साल दर साल, बिल्कुल इन जरूरतों को हम पूरा करते रहते हैं। कोई और एग्जाम्पल शेयर करना चाहेगा इसके बाद? इसके साथ साथ किसी का कोई अलग नजरिया है, कुछ कोई अलग तरीके से अगर अपनी सैलरी को मैनेज करते हैं, कोई शेयर करेंगे?
3: मैम, हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं पहले हम उनको पूरा कर लेते हैं, जो फिर मनी बचती है उसको हम अपने पास सेविंग्स रखते हैं, क्योंकि वो जो आगे मनी आएगी वो आगे भी काम कभी आ सकती है।
1: वेरी गुड, सो पहले हम बेसिक्स पूरा कर लेते हैं और जो बचा हुआ मनी है उसको सेविंग्स में रख लेते हैं। तो सेविंग्स में आप क्या सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें रखते हैं, या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं?
3: सेविंग अकाउंट में,
1: सेविंग अकाउंट में रखते हैं, भाई कभी भी जरूरत पड़े तो हम उस सेविंग अकाउंट में से वो मनी निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, कुछ 3% के करीब हमें सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो जो सैलरी हमारी आई उसमें हमने बेसिक खर्चे निकाल लिए और जो बचा हुआ पैसा है वो हमारा सेविंग में पड़ा रहा, बहुत ही बढ़िया आई। और कोई कुछ बताना चाहेगा? थैंक यू
4: मैम। सबसे पहले प्रायोरिटी सैलरी आने के बाद होती है कि फीस जमा करनी है बच्चों की,
1: बिल्कुल
4: मैम वो एक प्रायोरिटी है जो करना ही करना है। उसके अलावा जो ईएमआई है वो पे करना है, प्लस मैम 5% मेरी सैलरी का हम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख देते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, कभी भी कोई फंक्शन हो गया स्कूल में या किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़ गई या बच्चों की कोई हेल्थ का इश्यू हो गया, तो वो अर्जेंट नीड के लिए वो पैसे सेव करके रखने पड़ते हैं 5% ऑफ द सैलरी,
1: इमरजेंसी, आप उसको
4: इमरजेंसी के
1: इमरजेंसी
4: लिए।
1: फंड कह सकते। तो ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा पहलू आ गया जो सना ने बोला। अभी तक हमारे पास सिर्फ दो पहलू थे कि पहले हम अपनी बेसिक नीड्स जो है रोटी कपड़ा मकान उसके उसके ऊपर करते हैं, दूसरा था एजुकेशन, अभी तीसरा आ गया इमरजेंसी फंड, यानी कि एजुकेशन से बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि सना एक यंग कपल है तो वो अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई कुछ भी खर्चा आए तो बच्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अब हमारे पास मोटे मोटे तीन पहलू आ गए, पहला रोटी कपड़ा मकान, दूसरा हमारी एजुकेशन, तीसरा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हेल्थ के लिए भी हो सकता है, एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, कुछ भी। एक हमने इमरजेंसी फंड के लिए खुद से, वो कह रही है कि हमने बाय डिफॉल्ट 5% अपनी इनकम का, सेविंग्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक इमरजेंसी फंड में उसको रख देते हैं 5%। बहुत ही बढ़िया। और कोई कुछ, किसी और का कोई और तरीका है अपनी सैलरी को मैनेज करने का, कुछ अलग, इससे कुछ अलग, अगर इसके कुछ एडिशन में अगर कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके तरीके से, जैसे मैं कभी इमरजेंसी फंड में शायद नहीं करती हूँ, लेकिन आज सना की बात सुन के शायद मैं आज से 2%, 1%, 3%, 5% इमरजेंसी फंड में हो सकता है रखना शुरू कर दूं। कोई कुछ और करता है अलग सा, ऐसा कोई डब्बे के नीचे छुपाता है पैसे, हस्बैंड से आटे के अंदर, चावल के अंदर, ऐसा नहीं करते?
2: ऑल द लेडीज मैम,
1: ऑल द लेडीज डू दैट। सो उसको, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको उसको भी हम एक सेविंग के तौर में, मतलब हमने कहीं बैंक में नहीं रखा, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन एज ए, वो भी एक इमरजेंसी फंड ही है, लेकिन वो हमने एज ए सेविंग के तरीके से उसको अपने बचत की तरीके से रखा। यानी कि हो सकता है हमने घर की इनकम के लिए 100 रुपया निकाला हो सैलरी में से, लेकिन हमने घर को इतने अच्छे तरीके से चलाया कि 80 रुपए में उस महीने के खर्चे हो गए, और जो 20 रुपए बचे उसको हमने एक बचत के तौर पे रख दिया। यानी कि बजट बनाया और उसको भी बजट के तौर पे रख दिया। ये हम सब करते हैं, खासकर लेडीज करती हैं, शायद जेंट्स नहीं करते हो, या करते हो, या इससे भी इफेक्टिवली करते हो, तो ये भी एक सेविंग्स का तरीका है।
7: चंद्रप्रकाश बोल रहा हूँ।
1: जी सर,
7: मैं तो खुद तो मेरी बस बचत करता ही हूँ, पर लेकिन जो मेरे व्यूवर स्टाफ है जो भी साथ काम के, सबको 20% राशि की आरडी का पोस्ट ऑफिस में आरडी करवा रखी मैंने सबकी।
1: वेरी गुड। सो पोस्ट ऑफिस में जो कि सेफ भी माना जाता है, अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर, और एक कंपल्सिव सेविंग भी हो जाती है,
7: स्वीपर से लगा,
1: दैट इज अनदर।
7: स्वीपर करता है उसकी भी मैंने उसके हिसाब से आरडी करा रखी है। बी बार है महिला है उनकी भी आरडी करा रखी है। तो सबकी जितना पैसा आता है एजेंट वही बुला लेता हूँ सेंटर पे, सबको जमा करवा देता हूँ। तो उनके लास्ट में 100 रुपये पे उनको 6,500 करीब मिलेंगे उनको 5 साल में। तो एक उनकी सबकी सेफ बचत आदत पड़ गई, सबकी बचत होने की।
1: तो छोटी छोटी बजट से आपने देखा किस तरीके से स्मॉल सेविंग्स कैन यील्ड टू अ बिग अमाउंट। एक 5 साल के, हमें सोचने में लगता है कि 5 साल बहुत दूर है, लेकिन वो छोटी छोटी छोटी छोटी सेविंग्स करते करते लमसम मनी हमको एंड में मिल जाता है। थैंक
2: मैम
1: यू
2: कैन आई
1: चंद्रप्रकाश
2: से
1: जी।
2: समथिंग मैम?
1: जी जी मैम, बिल्कुल।
2: मैम आई डोंट नो इफ आई कैन से लाइक दिस, आई सेव एवरी मंथ सम मनी टू गिफ्ट माय डॉटर एवरी ईयर समथिंग इन गोल्ड मैम, सो एवरी मंथ आई सेव।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक अलग से फंड क्रिएट करते हैं, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी वो है कि यू हैव टू गिव समथिंग टू योर डॉटर, राइट? अभी आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो शायद आप प्रोबेबली उस एज में पहुंच गए हैं, उस स्टेज में पहुंच गए हैं आपकी लाइफ में जहां पे बेसिक नीड्स के बियॉन्ड, क्योंकि आपके बच्चों की एजुकेशन पूरी हो चुकी है, यू हैव मेड कमिटमेंट्स टू देयर यू नो मैरिज एंड अदर अदर थिंग्स दैट यू हैव, यू माइट हैव सेविंग्स फॉर योर हेल्थ एंड एमरजेंसी। तो आपको लगा कि आपको एक ऐसा फंड क्रिएट करना है जो कि लमसम हो एंड यू कैन गिफ्ट टू योर डॉटर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो हम गोल की बात कर रहे थे कि आपको मनी क्यों चाहिए, ये आपको खुद को डिफाइन करना, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उसका। शायद मेरी जिंदगी में अभी वो नीड नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, जैसे सना ने बोला उनके बच्चे छोटे हैं, तो हमारी नीड्स अभी इस वक्त है उनके एजुकेशन को लेके, फ्यूचर को लेके। बट शायद जो हमसे थोड़े बड़े हैं, जो हमसे थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी नीड बदल गई है क्योंकि उनको एक अलग लेवल की जरूरत है। सो आई थिंक, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल जो मैं कहना चाह रही थी कि नीड हम सबकी मनी को लेके हर वक्त अलग होती है और वो नीड बदलती रहती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट नीड एंड वर्क योर बजट अकॉर्डिंग टू योर नीड। एज ए स्टूडेंट हमारी नीड अलग हो सकती है, हमें उसे पहचान के अपना डिफाइन करना है कि मुझे लाइफ में कितना मनी चाहिए अपनी स्टूडेंट या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। जब वो हो जाता है, हमें कितना बजट चाहिए अपने घर
2: हेलो,
1: परिवार को चलाने के लिए। हाँ जी,
2: नमस्ते मैम, कैसे
1: नमस्ते जी,
2: हो मैम? ठीक
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: है मैम, हम भी और आपको देख के और ज्यादा ठीक हो गए।
1: अच्छा, हम भी आपको देख के खुश हो गए और आप
2: अच्छा
1: बोल रहे हैं
2: मैम,
1: कि सबसे अच्छी बात है जी।
2: मैं सुन सेंटर से बोल रही हूँ। हाँ जी, मोबिलाइजेशन का काम करती हूँ मैम, शोभा नाम है मेरा।
1: जी जी जी
2: मैम,
1: बताओ
2: हमने
1: शोभा
2: जो
1: जी,
2: हमारी सैलरी मिलती है ना, हम उसमें से अपने पैसे निकाल के हम बचत जमा करते हैं मैम।
1: कहाँ पे करते हैं आप बचत जमा?
2: हमने 10 महिलाओं का ग्रुप बना रखा है,
1: अच्छा ठीक है,
2: 10 महिलाओं का ग्रुप बना के हम उसमें से 200 रुपये पर मंथ निकाल के अपनी बचत जमा करते हैं, सेव करते हैं
1: तो फिर वो आपको मिलता कैसे है, वापस कैसे मिलता है?
2: मैम। वो पैसा हमको, जैसे हमें कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, घर में जरूरत पड़ती हो, तो हम एक प्रस्ताव बनाते हैं मिलके 10 लेडीज इकट्ठा होके, तो उसमें से जिसको जितनी जरूरत होती है उसमें से पैसे निकालते हैं और अपना काम चलाते हैं हम। और फिर
1: वेरी
2: वो
1: गुड,
2: 200 रुपये बचत तो हमेशा ही जमा होती है, लेकिन पर उसकी किस्त बन जाती है,
1: वेरी
2: 1% का
1: गुड।
2: ब्याज है, 1% का
1: अच्छा,
2: ब्याज है मैम इसमें।
1: 1% का ब्याज। तो
2: हाँ
1: आपने
2: जी,
1: ये एक लोकल लेवल पे जो सेविंग स्कीम है अपनी महिलाओं के साथ, एक महिला ग्रुप के साथ वो शुरू किया है, राइट?
2: हाँ जी,
1: तो ये जो है, ये आपको एट ए टाइम ऑफ जो इमरजेंसी है या ऐसी कोई बेसिक जरूरत है जो यकायक आ जाती है, उसके लिए आप उसको, इस फंड को यूज कर लेते हैं,
2: हाँ जी,
1: बहुत बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये आपने दिया। तो जब हम अपने बेनिफिशरीज के साथ बात करेंगे, जैसे चंद्र प्रकाश जी ने भी बताया कि हर किसी को ये जो स्किल है एज ए लाइफ स्किल आना बहुत जरूरी है, स्पेशली आने वाली जेनरेशन को, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना वो इससे भी ज्यादा जो है स्ट्रेसफुल होने वाला है इमेज मैनेजमेंट के ऊपर,
2: बिल्कुल
1: कि अच्छा मुझे किस तरीके से अपने आप को दुनिया को दिखाना है। उस चीज में कहीं ना कहीं हम अपनी बेसिक जरूरतों को काट के हम अपनी इमेज मैनेजमेंट में लग जाते हैं, और हम फिर क्रेडिट कार्ड्स पे या फिर लोन्स लेके या फिर

रहेगा। जैसे कि चंद्र प्रकाश जी ने बताया, अभी हमें सुन से जो एग्जाम्पल मिला है, सना ने जो बताया एंड शैलजा मैम ने बताया, स्टार्ट स्मॉल। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम 10,000 रुपए की एफडी करें या 50,000 की एफडी करें या बहुत बड़े म्यूचुअल फंड में, आजकल हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है, बहुत बहुत आसान है, ऐसे करके एड्स आती हैं। अगर इस समय पे हमें वो बड़ी चीजें नहीं समझ में आ रही या हम नहीं कर पा रहे, इट डज नॉट मैटर। हमारी पहले की जो पीढ़ी थी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी दादी या उनकी जो मदर थी, उनको उनकी कहानियां सुनेंगे तो ये होगा कि अच्छा, उन्होंने अपनी जो मंथली उनके पैसे आते थे, उनको मिलते थे हाथ में, उस टाइम पे तो लेडीज अर्न नहीं करती थी ना ज्यादा, उनको जो भी उनके हस्बैंड्स ने दिया या कुछ दिया, वो घर के खर्चों में से बचत करके साल 2 साल 10 साल में इतने पैसे इकट्ठे कर लेती थी कि कभी कभी उनको खुद नहीं रियलाइज होता था कि इतने पैसे उनके पास पड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि स्टार्ट स्मॉल। आज आप छोटा भी अगर सेविंग कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स भी हैं आजकल गवर्नमेंट के अंदर। हम स्कीम्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, आज हम एटीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं, पैसे को लेके जो एटीट्यूड है हमारा, उस लाइफ स्किल की बात कर रहे हैं। लेकिन उसकी बात करते करते भी हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स मिल गए हैं कि कुछ जो अभी फतेहपुर से थे, उन्होंने बताया कि वो सेविंग बैंक में रखते हैं, सना ने बताया वो इमरजेंसी फंड में रखते हैं, शैलजा मैम, संगीता हमारे साथ और चंद्र प्रकाश जी जो और 2-3 लोगों ने बताया कि वो अलग अलग तरीके के, कुछ उन्होंने नॉन फॉर्मल या फिर फॉर्मल जो सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गई, प्रोविडेंट फंड है, आजकल तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो हम छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा लेवल एज इन, अगर आज हम 100 रुपए भी बचा सकते हैं, 200 रुपए भी बचा सकते हैं, तो 5 साल 10 साल के बाद हमें वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। कई स्कीम्स ऐसी होती हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी देते हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स स्कीम्स हैं, उनको अगर अभी हम नहीं भी समझ पा रहे हैं, तो हम सिंपल सेविंग, जो सिंपल सेविंग स्कीम्स हैं, उनके उनको समझ के उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें रिस्क कम है, और अगर जब हमें इमरजेंसी में जरूरत हो तो हम वो फंड निकाल सकते हैं। लेकिन आदत सेविंग्स की होनी चाहिए। सेविंग्स की आदत ऐसे पड़ सकती है कि हम कंपल्सरीली कुछ परसेंट, 1%, 2%, 5%, 10% अपनी सेविंग्स का, अपने इनकम का सेविंग्स में रखें ही रखें। उस एटीट्यूड को बनाने की आज हम कोशिश कर रहे हैं, उस एटीट्यूड पे बात करने की आज कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो करीबन मतलब एक ऐसी एज पार कर चुके हैं जहां पे उनको सेविंग्स की आदत लग गई है। बट ये सेशन हम अपने बेनिफिशियरी के साथ करेंगे जो 15 से लेके हो सकता है 30 तक की एज में होंगे। वो एज ग्रुप जो है ना, वो बहुत वनरेबल है। मैं अपने बेटे को भी देखती हूँ, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके भी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स स्पेंडिंग, ठीक है, अर्बन है, यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है, बट ये एक्सपोजर हर जगह पे है, क्योंकि जो फोन के जरिए से मीडिया है ना, वो सब तरीके से फैला हुआ है। तो ये चीज जो मनी को लेके हमारा एटीट्यूड है ना, कंजम्पशन का, मतलब आज अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे कंज्यूम करके खुश हो जाएं, कहीं ना कहीं वो हैबिट आ रही है। कुछ हमारी जनरेशन में भी है, कुछ हमारी आने वाली जनरेशन में भी है। हमारे से पहले वाली जनरेशन तो पूरा ही बचत की तरफ चलते थे, कभी कोई नीड उन्होंने पूरी करी ही नहीं। एक नई शर्ट लेने के लिए भी मुझे लगता है वो 100 बार 10 बार सोचते थे, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, मतलब बहुत ही सेविंग्स की तरफ वो, उनका रुझान अलग ही लेवल का था। जब हमारी जनरेशन आई तो हमने एक मिक्स्ड, कुछ हम कंज्यूम करते हैं, कुछ हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, और कुछ हम सेविंग्स करते हैं। तो अगेन, सही या गलत कुछ भी नहीं है, द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई योर नीड्स एंड वॉन्ट्स। पहले नीड्स को पूरा करके हम कुछ सेव करेंगे इमरजेंसी के लिए या ऐसी कोई प्लानिंग के लिए, जरूरी नहीं है इमरजेंसी के लिए हम सेव करेंगे। अगर मेरा शौक है कि मुझे आज से 20 साल के बाद मुझे किसी बाहरी देश में घूमने जाना है, तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते। छोटा छोटा छोटा छोटा इन्वेस्ट करें, कहीं स्मॉल स्मॉल सेविंग्स करें।

5 साल 10 साल के बाद एक फंड ऐसा आ जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। हो सकता है आपका यही ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि शारजा मैम ने बोला उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो एक गिफ्ट करना चाहती हैं हर साल के एंड पे अपनी डॉटर को। सो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका फंड है, आप उसे मैनेज करेंगे, बट तभी कर पाएंगे अगर आप अपने फंड को तरीके से समझ पाए, अपनी नीड्स और वॉन्ट्स को दो मोटे मोटे भागों में बांट पाए। कभी कभी ना हम किसी चीज को देखते हैं और हमारे पास पैसा है, हमारे पास सेविंग्स भी है, कभी कभी लगता है हमें ना ये चीज खरीद लेनी चाहिए। तो जब मैं ये सेशन बना रही थी, बहुत प्यारी सी 30 डे रूल मेरे सामने आई, सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। हो सकता है किसी को ये हेल्पफुल हो। तो ये रूल ये कहता है कि अगर मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, मेरा खाना पानी बिजली, मेरी एजुकेशन भी हो गई, बच्चों की एजुकेशन भी हो गई, अब मेरा दिल कर रहा है कि एक बड़ी सी कोई चीज लेने का, मान लीजिए मोबाइल फोन है, बहुत अच्छा सा नया मोबाइल फोन आया मार्केट में और मुझे वो लेना है, या एक बहुत सुंदर सी साड़ी आई है वो लेनी है, या एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट खुला है, सब उसमें जा रहे हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, मुझे भी उसमें जाना है, लेकिन वो बहुत खर्चा हो जाएगा उसमें। जितनी मेरी सेविंग्स है करीबन उसकी आधी जो सेविंग्स है वो निकल जाएगी। तो ये 30 डे रूल ये कहता है, बचत का ये रूल है कि आप जो ये डिसीजन लेना चाहते हैं ना, 30 दिन के लिए रुक जाइए। 30 दिन आज आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ये चीज मेरे को लेनी है, वो पैसा आप अलग से 30 दिन के लिए डाल दीजिए, किसी एक FD में डाल दीजिए, तो 30 दिन की FD भी आती है आजकल। 30 दिन के बाद आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आप सिर्फ उसका ध्यान नहीं करेंगे। आपको ये पता है कि 30th डे ही मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो 30 डे रूल ये कहता है कि अगर 30 दिन के बाद भी आपकी वो जरूरत उतनी ही प्रोमिनेंट है, तब तो आप उस चीज में इन्वेस्ट करिए। अगर आपके 30 दिन के बाद वो जो जरूरत है वो कम हो जाती है, या आपको नहीं लगता कि ठीक है ये तो वेस्ट हो सकता है, इसे बोलते हैं इम्पल्सिव परचेज। इम्पल्सिव मतलब मुझे मेरी जो आज की सोच है या आज के इमोशंस है ना, कभी कभी हम उससे बहुत बड़ा खर्चा कर देते हैं, जो आगे जाके हमें अफसोस होता है कि अरे इसकी शायद इतनी जरूरत नहीं थी। इसके बारे में, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आई वॉन्टेड टू लीव दिस विद यू, बट अगर आप चाहें तो बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं इसके बारे में, ऑनलाइन स्टोरीज हैं 30 डे सेविंग्स रूल के बारे में। आप चाहें तो ये स्टोरीज आप देख सकते हैं अपने बेनिफिशरीज के साथ, जब आप ये सेशन करेंगे यू कैन शेयर दो स्टोरीज। एंड मुझे लगता है ये वाकई मैंने खुद भी कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये बहुत आई थिंक प्यारा रूल है कि अगर कोई चीज हमें आज लग रहा है कि मुझे वो खरीद लेनी चाहिए, या मुझे उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मुझे घूमने चले जाना चाहिए, इस जगह पे तो मुझे जाना ही जाना है, सारे लोग जा रहे हैं, 30 दिन के बाद भी अगर आपका दिल, आपका मन, आपकी जरूरत अभी भी वैसी ही है, ये हम इम्पल्सिव परचेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ की हमारी सेविंग्स जो है वो खर्च हो जाती है, कभी कभी हमारा बजट पूरा हिल जाता है, उस चीज के बारे में हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। किसी के कोई एग्जाम्पल्स, कभी किसी ने ऐसा किया हो, कोई बहुत जरूरत की चीज लग रही हो और उसको 5 दिन के लिए रख दिया कि नहीं अच्छा 5 दिन के बाद सोचूंगी या सोचूंगा, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? नेक्स्ट टाइम लेट्स ऑल ट्राई, अगर ऐसा होता है, अगर हमें लगता है तो वी कैन ट्राई दिस, एंड दिस माइट हेल्प अस बिल्ड आवर सेविंग्स अलॉट, और हम उस मनी को हो सकता है किसी और अच्छी चीज पे खर्च करने के लिए बचा लें। सो दिस इज वन टेक्निक। दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि जो हमारी इनकम है उसको हम खर्च करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है कि जैसे ही हमारी सेविंग्स आती है हम अपने बेसिक खर्चों में उसे खर्च कर देते हैं और जो बचा हुआ है उसको सेविंग्स में डाल देते हैं। ये एक ट्रेडिशनल वे है अपनी बजट मैनेजमेंट का। एक प्रोग्रेसिव वे और एक ऑल्टरनेट वे ये है कि जैसे ही हमारी इनकम हमारे पास आती है हम कंपल्सरीली सबसे पहले बचत में डालें उसको, और जो बचा हुआ पैसा है उससे हम खर्चे पूरे करें। तो ये अब अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं इसके बारे में, बट जो सेविंग्स करने का तरीका है वो उल्टा होना चाहिए। पहले हम अपने 100 रुपए में से 5 रुपए 10 रुपए जो जितना भी मेरा जितने भी मुझे लगता है कि मैं सेव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ पर मंथ,
वो एंड में नहीं करेंगे, वो सबसे पहले करेंगे, जिसका एग्जाम्पल सना ने भी हमें दिया कि इनकम आते ही हम सबसे पहले अपना बचत का जो पोर्शन है उसको अलग कर लेंगे और खर्चे बाद में करेंगे। दैट इज अनदर वे ऑफ यूजिंग आवर मंथली बजट, या हमारे साल दर साल का जो हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। देर वॉज अनदर रूल कि ये 50-30-20 का रूल है। इसके अलावा मुझे 70-20-10 का भी रूल मिला है। इसका कहने का मतलब वही है कि किस चीज पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकता है। तो 50% जो है हमारी बेसिक नीड्स के लिए हम हमेशा उसको रखें, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब चीजों पे आप समय समय पे अपना जो है एक्सपेंसेस, जो भी आपकी सालाना इनकम है उसका 50% आप खर्च करते हैं। हम सब खर्च करते हैं। 20% सेविंग कर सकते हैं, 10% सेविंग कर सकते हैं, 5% सेविंग कर सकते हैं। और कुछ आप देखिए, हर वक्त सेविंग करते रहेंगे, इतना तो कोई हम साधु का जीवन नहीं जी रहा, कोई भी नहीं जी रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त सेविंग मोड में ही रहना है। हमें कुछ अपने शौक भी पूरे करने हैं, हमें कुछ अपने इच्छाएं भी पूरी करनी है उस मनी के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ समय समय पे अपने आप को, अपनी फैमिली को, या अपने जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं उनको मैं कुछ अलग रिवॉर्ड सा दूं। वो आती है बॉन्ड्स में, वो आती है हमारी लग्जरी में। हो सकता है कुछ लोग दिवाली पे नए कपड़े खरीदते हैं, कुछ लोग ईद पे नए कपड़े खरीदते हैं, हो सकता है कुछ लोग मंथली बोलते हो कि ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ बचत करके अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नया खरीदना ही है। तो उसके लिए भी आप पहले से प्लानिंग करके चलें। जब आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आप इफेक्टिवली यूज करेंगे, इंपल्सिवली नहीं यूज करेंगे। इंपल्सिव में फिर हमारा 30-day रूल आ जाएगा कि अगर इम्पल्स बाय है तो 30 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, 15 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, अगर 15 दिन के बाद भी मुझे वो जरूरत लगती है तो हम वो चीज को परचेज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं। अगेन आई वुड से कि हम हो सकता है कर रहे हो इसको, लेकिन ये सेशंस हमने अपने बेनिफिशरीज के लिए भी बनाए हैं, जिसमें कि बच्चे भी हैं, यूथ भी है, शायद उन्होंने अभी कमाना शुरू नहीं किया, लेकिन 20-25 साल की उम्र में जो कमाने लगेंगे, अगर पहले से ही, शुरू से ही वो आदत डल जाए कि हाँ हमें बचत करते हुए चलना है, तो आप ये सोचिए जब 20 साल में सेविंग्स करना शुरू कर देगा, जब तक कि वो 50 साल का या 60 साल का हो जाएगा, कितनी सारी सेविंग्स उनके पास इकट्ठी हो जाएंगी। सो दिस इज अ हैबिट मैनेजमेंट, दिस इज अ बिहेवियर मैनेजमेंट, जो कि हमें खुद से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट सेशन। आई थॉट कि दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल जिसके बारे में हमने फॉर्मली कभी बात नहीं करी है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर। आई जस्ट स्टॉप शेयर। ऑल राइट, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल सेशन ऑन फाइनेंस मैनेजमेंट। कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी, दिस यू कैन शेयर विद द बेनिफिशरीज, स्पेशली जैसे कि चंद्र प्रकाश जी ने बोला, वो उन्होंने आदत डलवाई है, ना कि सिर्फ अपने बेनिफिट, ना कि खुद को, बल्कि अपने स्टाफ को भी, इंक्लूडिंग एवरीबडी, जितने लोग उनके साथ जुड़े हैं सेंटर पे। सेविंग्स की अहमियत उन्होंने वहां पे हाईलाइट करी है। आई वुड से सेविंग्स जो है हम छोटे से शुरू कर सकते हैं, जितना जल्दी शुरू करें, आई वुड से सेविंग्स जो है हम छोटे से शुरू कर सकते हैं, जितना जल्दी शुरू करें, जितना इनफॉर्मल करें फॉर्मल करें। इनफॉर्मल मतलब हम सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखें, एफडी में उसको रखें, या फॉर्मल तरीके से किसी इन्वेस्टमेंट में रखें। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में रख रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ आप अपना फंड इन्वेस्ट करिए, पूरी समझ बूझ के साथ करिए, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। किसी के बहकावे में आके या किसी के कहने के ऊपर, किसी गलत स्कीम में मत उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं अच्छा 30% का इंटरेस्ट मिलेगा, इतना हमें रिटर्न मिलेगा, उसके धोखे में आके गलत जगह पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है हम कम इन्वेस्ट करें, कम इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें, लेकिन जो हमारे को समझ में आता है उस चीज पे हम इन्वेस्टमेंट करके चलें। और जितना हम प्लानिंग से चलेंगे उतना हम लोन्स की तरफ कम हमारा रुझान रहेगा, जितना लोन्स की तरफ कम रुझान रहेगा
उतना हम इंटरेस्ट कम पे करेंगे और उतनी हम मनी सेव्ड इज मनी अर्न,

0: अभी हमने सुना है, तो जितना हम सेविंग्स और जितना हम अपने से सक्षम होकर चलेंगे उतना हमारा आगे आने वाला वक्त सही तरीके से गुजरेगा। सो दिस वाज सम टिप्स, सम सेशन ऑन दैट। कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, वी कैन टेक दैट आल्सो।
1: मैम, इट वॉज सच अ वंडरफुल सेशन मैम, एंड मोस्ट नीडेड ऑफ द आवर मैम. वी कैन रियली, एज यू सजेस्टेड, वील रियली टेक इट टू द बेनिफिशरीज ऑल्सो.
0: यस यस, क्योंकि मैम सभी लोग काम इसीलिए करते हैं कि अपना फ्यूचर ब्राइट करके चल सके, खुद का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, अपनी फैमिली का। कोई इमरजेंसी हो तो हमेशा पैसे को लेके हर किसी का चैलेंज ही रहता है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, हमेशा चैलेंज ही रहता है। सो दिस इज वन थिंग जिसमें हम कितनी ही बात कर लें वो बात कम ही, मतलब उसमें कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है, लेकिन हम जितना आपस में शेयर कर सकते हैं तरीके, उससे हमें कुछ ना कुछ टिप्स ऐसी मिलेंगी शायद कि हम बेटर फंड मैनेज कर सकें अपने खुद के, अपने परिवार के। एंड दिस शुड बी अ हैबिट, मोर मोर ऑफ अ हैबिट टू मैनेज, टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज आवर नीड्स, बिकॉज आजकल काफी इम्पल्स परचेजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, स्पेशली यूथ यूथ को लेके ये कंसर्न है काफी पेरेंट्स का। जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनका भी ये कंसर्न रहता है, हमारा खुद का ये कंसर्न रहता है कि आगे जो बच्चे हैं वो बहुत मनी की जो रियल वैल्यू है उसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर काफी डिबेट चलता है। तो दिस इज अ बिहेवियर चेंज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मनी फॉर अस, फॉर एज ए इंडिविजुअल। थैंक यू मैम, मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अभी कोई और बोलना चाह रहा है? Anybody wants to add, please do that.
1: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून अर्चना जी।
1: जी मैम, मैम अभी आपने बात करी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे सेंटर पे मेकअप आर्टिस्ट की ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें से तीन बच्चे बहुत ही अच्छी तरह, उसमें उनको पहले से भी आता था कुछ, और फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली तो उनको बहुत अच्छे से आ गया। तो अभी तो जो बात हुई कि घर में हम किस तरह से मैनेज करते हैं, सबका अपना अपना नीड है, बेसिक नीड के अलावा भी बहुत सारे नीड होते हैं, फिर बहुत सारे वे हैं जहाँ पे वो सेविंग कर सकते हैं, करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा, और ये सुन के कि हमारे पास नए आइडियाज भी आए। और मैम वो आपने अभी बात करी थी, तो हम मेट्रो सिटी का तो नहीं पता, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें मैं उनकी बात बता रही हूँ, फिर मैं अपनी बेनिफिशरीज की बात बताऊंगी कि उन्होंने क्या किया है। तो मैम मेरी सोसाइटी में, मैंने आपने भी बात जो की हुई थी उससे ही है कि पहले के जो हमारे पहले के जनरेशन के थे, पिछले जनरेशन के, वो अपनी सारी नीड को किल करके, मतलब जो जो बहुत जरूरी है, सर्वाइव करना, खाना पीना, ये सब, यहाँ तक कि मैंने देखा वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, अपने सारे नीड को किल करके और पैसे जमा करते थे।
0: बिल्कुल
1: फिर जो हमारा जनरेशन है, उन्होंने देखा कि अरे वो तो सारे कुछ ही नहीं करते थे और फिर ऐसे ही चले गए दुनिया से। नहीं, हम लोग को ना अपना भी करना चाहिए और सेविंग भी करना चाहिए, यानी हम खाएंगे पियेंगे अच्छे से रहेंगे और थोड़ा सा सेविंग भी करेंगे। तो
0: बिल्कुल
1: हमें लगता है अभी का जो जनरेशन है ये दोनों चीज और इंजॉय भी कर रहे हैं ठीक ठाक। मैं मैम मिडिल क्लास, और मतलब मैं जो कम्युनिटी में रहती हूँ उसकी बात कर रही हूँ, और दूसरे जगह मुझे उतना नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं से मैथ्स तो करता ही होगा, तो उसने करी। अब जो हमारा अगला जनरेशन आने वाला है उनको तो मनी वैल्यू पता ही नहीं है, वो जो भी अर्न करेंगे वो सारा का सारा खर्च करेंगे जैसे दिख रहा है। तो मैम हमें, मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को और जो भी हमारे आसपास जुड़े हैं उनको ये सिखाना चाहिए कि वैल्यू क्या होती है, मनी वैल्यू। इसके लिए तो हमको घर से लेकर के और जहां भी हम काम करते हैं वहां तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैम, मतलब ऐसे ही हम कहीं भी किसी भी चीज के लिए एक बार मन किया खरीद लिए, तो हमको जो खुद
0: बिल्कुल
1: वैल्यू नहीं है तो वो बच्चे क्या सीखेंगे। वो तो मेरी मेरी सिंगल चाइल्ड है तो वो तो यही समझेंगे ना, मम्मी को जब जरूरत होता है तब खरीद लेती है तो मेरे भी पास ही आ जाएगा, क्योंकि पैसा इसके पास है तभी तो आ रहा है। जब हम अपने
0: बिल्कुल
1: ऊपर नहीं कमांड करेंगे तो बच्चे तो यही सीखेंगे कि अच्छा मम्मी ने 20,000 का फोन लिया, ठीक है मैं भी जब कभी बोलूंगी मुझे तो 10,000 का आ जाएगा। तो मैं बच्चों के लिए भी ये करती हूँ कि मैं अपने, मेरी सिंगल चार्ज है, मैं फिर भी देर करती हूँ थोड़ा सा कि देखो अच्छा ठीक है आ रहा है, आ जाएगा 1-2 महीने में आ जाएगा या 15 दिन में, बहुत ज्यादा नीड है, एजुकेशन से जुड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इंजॉय करने की चीज है तो आ जाएगा। तो ये हुई, तो मैम सबके अपने अपने वो नीड है और अपने अपने तरीके हैं, तो सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैं करती हूँ वो करते हैं एक ही पर्टिकुलर, सभी आजकल करते हैं सेविंग, जो अपना स्टेज वो पार कर चुके हैं 25 वाला। क्योंकि 25 तक तो सब, हाँ हाँ जी मैम, तो मैंने बेनिफिशरीज को मैम देखा, वो मैं कर रही हूँ, और मैं सभी से आपसे भी मैम गुजारिश करती हूँ कि यदि कोई बहुत अच्छा टिप हो तो वो आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो बेनिफिशरीज ने तो हमारे यहाँ क्या हुआ, मैंने वो एसटीएस से शेयर किया हुआ था, जो हम 4 जन जिसमें से 3 बच्चे बेनिफिशरीज और एक मैं हूँ, 4 का ग्रुप बनाई और फिर हमने प्लान किया और हमने अपना पार्लर खोल लिया।
0: अरे वाह,
1: हाँ हाँ मैम, तो पार्लर में खोल लिया। अब इसका ये आया कि भाई सेटअप तो मेरे पास पहले से, जो सेंटर का ये दिया हुआ है, तो सेटअप सारा मेरे पास पहले से था, उसमें कुछ प्रोडक्ट लाने थे और जैसे बोर्ड बनाना, कुछ बेसिक जो होता है थ्रेडिंग वगैरह के लिए, फेशियल के लिए, वो सारे प्रोडक्ट लाने थे, और फिर थोड़ा सा वो एडवर्टाइज के लिए कुछ पैसे खर्च करने थे। तो हम लोगों ने प्लान किया कि घर से यदि लाओगी तो बेनिफिशरीज के तो गार्जियन पूछेंगे कि भाई तुम क्या कर रही हो, ये वो सब कुछ तो है,
0: अरे
1: हमारे यहाँ रूम है, इलेक्ट्रिसिटी है और बच्चे भी आ रहे हैं। तो हम लोग ये काम करते हैं, कुछ पैसे हम लोग अपने में जितना भी सेविंग है, 500 या 1000, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट की हूँ मैम, तो हम लोग ले आते हैं। इसके बाद हमारा जो पैसा आएगा, तो उसमें से एक बेनिफिशियरी जो ग्रेजुएट है वो बोली कि हमारे पास जो कमाई के कुछ पैसे आएंगे, जैसे कि अभी दिवाली छठ चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आएंगे ही हमारे पार्लर में, क्योंकि अभी उतना ज्यादा मैम प्रचार नहीं हुआ है, बहुत कम लोगों तक पहुंचा है कि पार्लर खुल गया है। तो उस पैसे से हम और प्रोडक्ट जो भी मतलब जरूर है थोड़ा बड़ा करेंगे उसको, फिर हम पैसे शुरू करेंगे अपने पास रखना। तो मुझे आइडिया ये अच्छा लगा मैम, और इस छठ में मुझे लगता है उन लोगों ने 500 कुछ अर्न किया है, और उससे वो सामान ही लाई है, कभी फेशियल का कुछ, तो मैनिक्योर का, पेडिक्योर का कुछ प्रोडक्ट सभी। तो मुझे लगा कि वो ग्रेजुएट बच्ची है, गांव की है, लेकिन फिर भी इतना मतलब कि सोच रही है, तो मुझे अच्छा लगा कि आजकल के बच्चे भी थोड़ा सा ये ध्यान दे रहे हैं कि मुझे अभी उसमें से खर्च नहीं करना है, अभी मुझे अपना वो पार्लर सेट करना है।
0: वेरी नाइस अर्चना जी, थैंक यू सो मच. एग्जैक्टली जो मैंने कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कि मैं जो बोल रही हूँ शायद मैं सही से नहीं समझा पा रही, लेकिन आपकी इनपुट से मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि यही बात हम लोग करना चाह रहे हैं कि जनरेशन दर जनरेशन एक तो नीड्स और वांट्स बदलती जा रही हैं, और जब हम खुद पे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं कभी कभी खर्चा करने के लिए, तो हम अपने बच्चों को कैसे बोल सकते हैं, या अपने जो हम जो जो हमें अपना एज ए मॉडल देखते हैं, या जो हमें सोचते हैं कि ठीक है अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी फिर ऐसा ही करना है, चाहे वो बेनिफिशरीज हो गए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे आप सेंटर में अगर एक लीडर के आप सभी लीडर हैं अपने अपने सेंटर्स के, तो चाहे आप सेंटर पे एज ए लीडर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो वेरी ब्यूटिफुली शेयर्ड एग्जाम्पल की किस तरीके से हम एक तो खुद को एज ए रिप्रेजेंटेटिव मान के हम खुद से अपनी मनी मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से करें, और दूसरा जो आपने एग्जाम्पल दिया कि छोटे से ग्रुप ने कैसे एक फंड क्रिएट किया आपस में मिलके और एक छोटा सेंटर शुरू किया, लेकिन आइडिया है कि उसको धीरे धीरे करके उसी फंड से कैसे हम बड़ा करेंगे.
1: हाँ जी
0: दैट इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ यू नो बजट मैनेजमेंट. घर का भी आपने बता दिया और अपने एंटरप्राइज का भी बता दिया. थैंक यू अर्चना जी.
1: थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम प्लीज सजेस्ट कीजिएगा आप इसमें कि बच्चे कर रहे हैं, इससे भी कोई अच्छा होगा कि हम कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं, तो मैम इसके लिए बहुत ये रहेगा।
0: ठीक है जी, ठीक है, विल टॉक सेपरेटली फॉर दैट.
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू. ओके, सो आई होप दिस सेशन वॉज अ लिटिल हेल्पफुल टू समबडी. हो सकता है शायद किसी ने कुछ सीख के इससे कुछ अपने आज से या पहले से कर रहे हो तो उसको रीइंस्टेट करें और उसको अपने बिहेवियर में लेके आए. एंड आई होप यू शेयर दिस सेशन विद योर बेनिफिशरीज, स्पेशली टू द यूथ, क्योंकि जैसे अर्चना जी ने कहा जो 25 साल से ऊपर है उनको तो कहीं ना कहीं हैबिट लग गई है, लेकिन ये हैबिट हमें शुरू से ही अपने, मैं सेविंग्स की बात नहीं कर रही, मैं आइडेंटिफिकेशन और उसमें फर्क की बात कर रही हूँ कि हमारी जरूरतें क्या हैं और हमारी इच्छाएं क्या हैं. इन दोनों चीजों में, जरूरतों में और इच्छाओं में फर्क करना बहुत जरूरी है, और अपने लेवल को पहचानते हुए, लेवल एज इन अपने सिचुएशन को एज ए स्टूडेंट, अपने सिचुएशन एज अ होम मेकर या एज अ एंटरप्रेन्योर या फार्मिंग को लेके जो हमारी जरूरत है उसको पहचानते हुए अपने बजट्स को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर हमने आज बात करी है. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इट एट शॉर्ट नोटिस. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल. बाय बाय. थैंक यू.
1: वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू मैम.
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू.

0: कहानी कायर पोस्ट की, परमवीर चक्र नायब सूबेदार बाना सिंह 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कादियाल गांव में जन्मे सूबेदार बाना सिंह शुरू से ही भारतीय सेना का अंग बनना चाहते थे। उनका सपना 6 जनवरी 1969 को पूरा हुआ और इन्हें जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में पहली तैनाती मिली और फिर 26 जून 1987 को पाकिस्तानी सेना से उनका सामना हुआ। हुआ यूं कि करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन ग्लेशियर पर बनी कायद पोस्ट को पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। भारत के सामने इस पोस्ट को दोबारा जीतना एक बड़ी चुनौती थी और इस मिशन की जिम्मेदारी सूबेदार बाना सिंह को मिली। कायद पोस्ट मतलब -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान, बर्फीले तूफान और हाड़ कपा देने वाली तेज सर्द हवाएं, जहां रहना तो दूर खड़े रहना भी आसान नहीं था। इसके बावजूद 26 जून 1987 को नायब सूबेदार बाना सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार किया।
1: दुश्मन को ये था कि मुश्किल है यहाँ आना हिंदुस्तान, मगर हिंदुस्तानी भी ठान रखी थी कि इसको लेना ही लेना है।
0: अपने मिशन के लिए उन्होंने एक ऐसे रास्ते को चुना जो कि जोखिम से भरा हुआ था और उसी रास्ते से उन्होंने पाकिस्तानी टुकड़ी पर औचक हमला बोला और उनके पैर उखाड़ दिए। देखते ही देखते विरोधियों की लाशें बिछ गईं। इस बेजोड़ साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 31 अक्टूबर 2000 को कैप्टन की मानक रैंक के साथ बाना सिंह रिटायर्ड हुए और आज पूरे देश के लिए वो एक मिसाल हैं।

नमस्कार, मेरा नाम मीना है और मैं राजस्थान के बारा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बारा डिस्ट्रिक्ट जो कि एक पूरे उसमें बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में शहरीय जाति निवास करती है। और मेरे को रीड इंडिया से जुड़े हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं और जो मेरे घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ और मैंने बीए तक पढ़ाई की और उसके बाद मेरी शादी हुई। मेरी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ पे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसा भी कुछ होगा। हर चीज में रोक टोक, आप घर से नहीं निकल सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के सामने ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते। तो मैंने 7-8 साल तक बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया, मारपीट, लड़ाई, झगड़ा सब कुछ होता था। फिर मैं रीड इंडिया से जुड़ी और जो गीता मल्होत्रा जी हैं और एक मोती जी थे जो जिनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया। आज वो इस दुनिया में तो नहीं है मोती जी, पर उनकी प्रेरणा से मैं काम कर रही हूँ। और जो गीता मैम है उनके साथ जुड़कर मुझे बहुत ही मतलब एक तरह से मैं इतनी मजबूत हुई कि मैंने मतलब बहुत सारी चीजों में कभी सोचा नहीं कि मैं जो कर सकती हूँ। मैं आज बहुत अच्छे से अकाउंट्स बना सकती हूँ। मैंने 15 साल तक अकाउंटेंट का काम किया है और मेरी एक बेटी है जो अभी 11th क्लास में पढ़ती है, मैं उसकी परवरिश भी खुद कर रही हूँ। पूरी कोशिश कर रही हूँ कोई उसको भी एक अच्छा माहौल दे सके। रीड इंडिया का जो सबसे अच्छा काम मुझे लगता है महिलाओं के साथ काम करना और महिलाओं को मजबूत करना, उनको सशक्त बनाना, खासकर मतलब महिलाओं के अंदर जो छुपे हुए हुनर होते हैं उनकी पहचान करना। जब वो अपने हुनर को एक बार पहचान लेती हैं तो वो आगे 2 पैसे कमा सकती हैं और अपने परिवार की मदद कर सकती हैं, परिवार की इनकम को बढ़ा सकती हैं और अपने पति के एक तरह से सहयोगी के रूप में भी काम करती हैं। रीड इंडिया ने महिलाओं के बहुत हद तक जीवन बदल दिया और आज जितनी भी महिलाओं के साथ हम लोग काम कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ कर रही हैं, अपने परिवार की आमदनी बढ़ा रही हैं, अपने परिवार की अच्छी परवरिश कर रही हैं। और मैं भी आज उन्हीं में से एक हूँ कि मैं 12 का जो हमारा सेंटर है उसको चला रही हूँ, सेंटर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही हूँ और बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे सीखी हैं। और गीता दीदी को मैं एक तरह से अपना आदर्श मानती हूँ कि वो इतनी सारी महिलाओं को लेकर काम कर रही हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए और कैसे उस माहौल से उनको निकालना है और आगे बढ़ाना है वो मैंने सीखा है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी इसी तरह काम कर सकूँ और जो बहुत सारी मेरी जैसी महिलाएं उनको आगे बढ़ा सकूँ और उनके लिए कुछ कर सकूँ। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

റീഡ് ഇന്ത്യ മാനെ റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീൺ ശിക്ഷ എവം വികാസ് ഹമാരാ കാം തോ ലൈബ്രേരീസ് ബനാന ഹൈ ഓർ ആജ് കേ സമയ മേ ജോ ചർച്ച ഹോ രഹി ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഖാലി കിതാബ് പഢ്നേ കേ ലിയേ നഹീ ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഏക് ഐസീ ജഗഹ ഹൈ ജഹാൻ ഹം ബഹുത് കുഛ് അപ്നേ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ ഓർ സമുദായ കേ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ മാനെ പഢേ തോ ഹം അപ്നേ ബച്ചോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ബഡോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ഛോട്ടേ ബച്ചോ കേ സാഥ് ഭി ആക്ടിവിറ്റീസ് കരേ കി കിതാബ് ക്യാ ചീസ് ഹൈ ഓർ കിതാബ് ഉൻകേ ജീവൻ മേ ക്യാ മഹത്വ രഖതി ഹൈ പർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജർണി ഇസ് സമയ കേ സാഥ് സാഥ് ഹംനേ യേ സോചാ കി ഹമേ മഹിലാഓ കേ ലിയേ ഭി കുഛ കാര്യക്രമ കർനേ ചാഹിയേ അഗർ മഹില അപ്നേ ആപ് കോ നിഖാർ സക്തി ഹൈ അപ്നേ ആപ് കോ സക്ഷം ബനാ സക്തി ഹൈ ഓർ ജിമ്മേദാരി അപ്നേ ഷോൾഡർസ് പേ ലേ സക്തി ഹൈ കി അപ്നേ ബച്ചോ കാ വികാസ് കൈസേ കർനാ ഹൈ വോ ഭി റീഡ് ഇന്ത്യ അപ്നേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈബ്രേരീസ് ഓർ റിസോർസ് സെന്റർസ് മേ കർതി ഹൈ ഹംനേ ഔരതോ കേ ലിയേ ബഹുത് ഹി അച്ഛേ അച്ഛേ കാര്യക്രമ കിയേ ജൈസേ സിലായി സിഖാനാ ബ്യൂട്ടി പാർലർ കി ട്രേനിംഗ് ദേനാ ഓർ ഭി ബഹുത് സാരി ഐസീ ട്രേനിംഗ്സ് ഹൈ ജോ ഹം അപ്നേ സെന്റർസ് മേ കർതേ ഹൈ പർ ഉസ്കാ जो आउटकम है जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

0: पर्यावरण प्रदूषण। आज सभी की एक ही पुकार, पर्यावरण में अवश्य करो सुधार। हमारे पर्यावरण को मुख्य रूप से चार तरह के प्रदूषण से खतरा है। भूमि प्रदूषण, बनावटी खादों के प्रयोग से भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। भूमि बचाओ, नहीं तो बीमारियां पाओ। जल प्रदूषण, बड़े बड़े कारखानों का गंदा पानी तथा कूड़ा कचरा नदियों में मिलकर उसके जल को प्रदूषित कर रहा है। हमें इसे रोकना होगा। जल है तो कल है। वायु प्रदूषण, पेड़ों के काटने से, कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण फैल रहा है। मनुष्य को इससे सांस की कई बीमारियां हो रही हैं। पेड़ लगाओ, देश बचाओ। ध्वनि प्रदूषण, बड़े बड़े कारखानों, वाहनों के शोर, विवाह शादी में ऊंची आवाज में बजते गाने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे उच्च रक्तचाप तथा बहरेपन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। बंद करो ये शोर शराबा, नहीं तो सुनोगे आधा आधा। प्रदूषण के कारण ही भूकंप, सूखा, बाढ़ आदि का प्रकोप भी झेलना पड़ रहा है। पर्यावरण पर बड़ी बड़ी बातें करने से पहले हमें खुद कई प्रयास करने होंगे, जैसे कि घरों में पानी की टैंकियां ओवरफ्लो ना हो, इसका तो हमें अवश्य ध्यान रखना होगा। कारों को धोना बंद करें और सिर्फ गीले कपड़े से ही पहुंचें। कूड़ा खाली प्लाट तथा सड़कों पर ना डालकर कूड़ेदान या कूड़े वाली गाड़ी में ही डालें। अपने आसपास पेड़ लगाएं, उन्हें पानी दें, उनकी देखभाल करें। कम से कम अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं। बाजार जाते समय अपने पास कपड़े या जूट का एक थैला अवश्य रखें। कहीं आसपास जाना हो तो पैदल जाएं या साइकिल पर। घर में पानी, बिजली, ईंधन आदि की बचत करने का प्रयास करें। घर में सभी एक साथ खाना खाएं ताकि खाना बार बार गर्म ना करना पड़े। आइए आज हम सभी मिलकर प्रण लें कि हम पर्यावरण दिवस सिर्फ 5 जून को ही ना मनाकर हर रोज ही मनाएंगे।
1: डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
2: एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी भी कहते हैं, इसकी खेती आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है क्योंकि इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके गुणों की अब पहचान हो गई है, जिसके चलते अब इसकी मांग में लगातार हम बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं, जिसका फायदा हमारे किसान भी उठा रहे हैं इसकी खेती को अपनाकर। जी हाँ, अगर आप भी करना चाहते हैं एलोवेरा की खेती, तो क्या है इसका सही तरीका, आइए आपको बताएं विज्ञान और किसान सेगमेंट के माध्यम से।
3: एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच एक एक मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह एक हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे, टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे। फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म है, लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी।
4: डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, एक उपचारक जिसने पुनर्जीवित किया एक खत्म होती विरासत को, हिमालय की खामोशी में 2500 साल पुरानी उपचार परंपरा दम तोड़ रही थी। सोवा रिग्पा, नाड़ी देखकर बीमारी समझना, दुर्लभ जड़ी बूटियों से इलाज करना। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद मानते थे कि कुछ विरासतों को बचाना बेहद जरूरी है। सोवा रिग्पा को बचाने का उनका सफर बड़ी ही कम उम्र में शुरू हुआ। वो अक्सर अपने पिता को दवाइयाँ बनाते और लोगों का इलाज करते हुए देखा करते थे। उन्होंने सोवा रिग्पा को नहीं चुना, सोवा रिग्पा ने उन्हें चुना। शुरुआत में वो इसे सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया। डॉक्टर ग्योरमेद ने अपना जीवन इस चिकित्सा पद्धति को बचाने में समर्पित किया। उन्होंने सोवा रिग्पा पर कई किताबें भी लिखी, लेकिन परंपरा को बचाना आसान नहीं होता।
5: शुरुआत में इस सिस्टम को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल था। अपने ही लोगों को समझाना कि ये भारत की विरासत है, काफी घुटन भरा था। छात्रों के लिए सोवा रिग्पा आखिरी विकल्प होता था। हमारी परंपरा दम तोड़ रही थी।
4: डॉक्टर ग्योरमेद ने कई सोवा रिग्पा चिकित्सकों को एक साथ लाया, अनेक सम्मेलन आयोजित किए और पुराने ग्रंथों को इकट्ठा किया। उनकी पहल पर माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से लेह में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान की स्थापना हुई। पर संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ।
5: 2014 में मुझे भारत में चीनी दूतावास से एक प्रेस रिलीज मिली, जिसमें लिखा था कि वो इस चिकित्सा पद्धति को यूनेस्को में अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज कराएंगे।
4: डॉक्टर ग्योरमेद ने सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए, फाइल बनाई और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस लंबे सफर में कई लोगों ने डॉक्टर ग्योरमेद का साथ दिया।
5: मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है। 25 सालों में मैंने शायद ही कभी छुट्टी ली होगी। जब मेरे पिता स्वस्थ थे, वो मुझसे कहते थे, मेडिसिन बुद्धा तुम्हारे साथ है, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो एक दिन जरूर सफल होगे।
4: आज एक नई पीढ़ी इस प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रही है। डॉक्टर ग्योरमेद की अथक मेहनत से सोवा रिग्पा सिर्फ बचा ही नहीं, उसे मिली एक नई जिंदगी। एक उपचारक के बेटे से भारत में सोवा रिग्पा सूत्रधार तक का सफर वाकई प्रेरणादायक है। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
6: कैसे हैं सभी लोग?
7: गुड मैम, गुड है मैम।
8: गुड आफ्टरनून मैम। बहुत गर्मी के बाद बहुत अच्छी बारिश हो रही है।
6: और सब कैसे हैं?
9: ठीक है मैम।
6: ठीक है, कोई और कैसे हैं?
10: गुड आफ्टरनून मैम, सब ठीक है। आप कैसी हैं मैम?
6: सब ठीक है जी। और कैसे हैं सब?
11: गुड आफ्टरनून मैम,
7: हम अच्छे
6: अच्छे हैं। और कैसे हैं?
12: आपको देख के थोड़ी एनर्जी फील होने लगी अब।
6: एनर्जी है। और कैसे हैं सब?
13: ठीक है मैम।
6: ठीक है, और कैसे हैं सब? क्या इमोशन
14: है मैम? बहुत बढ़िया
6: बढ़िया है। और कैसे हैं
14: मैम? को आज सबकी वॉइस सुननी है।
6: मुझे ये जानना है सब हैं कैसे। अभी तक मुझे ये पता है कि 5-6 लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं।
15: मैम सब कुछ ठीक है, बट मौसम खराब है तो गला खराब हो जाता है मैम सबका।
6: गला खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वैसे ठीक है ना
15: मैम।
6: आपको सिर्फ सुनना है, ज्यादा बोलना तो है ही नहीं, तो कम से कम वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना? कैसे हैं? मेरे को अभी भी जवाब नहीं मिला है, सिर्फ ठीक है, अच्छे हैं, 4-5 लोगों ने बोला है यहाँ पे, तो 30 से ज्यादा लोग हैं, कुछ तो और महसूस कर रहे होंगे, कुछ कोई तो होगा जो अच्छा नहीं फील कर रहा है, कि सब अच्छे हैं,
9: सब अच्छे हैं मैम।
6: सब अच्छे हैं। यहाँ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्वर्णा जी आपके साथ, मेरे ख्याल से आपका ही आंखें दिख रही है शायद, है ना?
9: हाँ
6: हाँ जी, बच्चे कैसे हैं आप लोग?
9: अच्छे।
6: सांगले, सांगले का
9: मराठी
6: क्या?
9: में बात करते मैम वो।
6: हाँ तो सांगले का क्या मतलब होता है?
9: अच्छे हम सब।
6: अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। और कैसे हैं? मरण,
9: बोला
6: आपके पीछे मुझे है, तो सब अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे के अलावा और किसी को नहीं पता कि वो कैसे हैं, उनका फीलिंग कैसा है, आज मन में क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं अच्छा और कैसे हो, तो हम बोलते हैं सब ठीक है, या फिर जैसा ऋतु जी ने बताया सब ठीक है लेकिन मौसम खराब है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, देर से पहुंचे कि जहां पहुंचना था, खांसी जुकाम हो गया। बट हम कैसे फील कर रहे हैं ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता, या तो अच्छे हम बोलते हैं कि हम अच्छा ही फील कर रहे हैं, है ना? अभी ये सवाल मैंने कम से कम 15 से 20 बार ही पूछा और सिर्फ यही जवाब मिला कि हम अच्छे हैं। सब मानते हैं यही जवाब मिला हमको, यस।
14: यस मैम,
9: यस मैम,
6: तो
9: यस
6: आज
9: मैम।
6: इसी चीज पे बात करेंगे जिस पे मैम ने कल छोड़ा था। मैम ने कल अपने सेशन में 10 E's की बात करी थी। जो लोग इस सेशन में थे कल, हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैम ने बताया था कि हम किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे, इन डेप्थ हम जानना चाहेंगे हर एक चीज का मतलब क्या है हमारी जिंदगी से। ये जो सेशंस हैं इसमें हम कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ सीख नहीं रहे, बस कोशिश ये है कि अपने आप को थोड़ा बेहतर हम पहचान सके और थोड़ी जो हमारी शक्तियां हैं, जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम उसको और पॉलिश कर सके, ताकि हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके, सोशली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली। क्योंकि सभी यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में या तो कुछ कर रहे हैं या तो कुछ करना चाहते हैं। जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी राह ढूंढ रहे हैं। सही बात है या कोई और भी जुड़े हैं किसी और रीजन से? सही
13: सही बात है मैम, बिल्कुल।
6: बात। चुप तो रह नहीं सकते ना, मैं 5 बार बार पूछती रहूंगी ताकि खुद देखूं सो तो नहीं गया कोई, है ना? तो आज का हमारा ये 40-45 मिनट होंगे, हम उस चीज पे बात करेंगे जो पहला ई था। पहला ई क्या था, किसी ने सुना था ना कल? सबने 10 E नोट किए होंगे। पहला ई क्या था बता सकता है कोई?
9: एम्पावर
6: पावर ऑफ वॉट?
16: मैम, इमोशनल स्ट्रेंथ।
6: एब्सोल्युटली, मैं तब से यही बात कर रही हूँ कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हम कैसा फील करते हैं, हमारी जिंदगी में इमोशंस क्या रोल फील करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। हम सुबह उठने से लेके जब तक सोने जाते हैं और सोने के बाद भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे सपनों में भी हमारे इमोशंस प्ले करते हैं, हाँ कि ना? अगर आप उदास हैं, अगर आप दुखी हैं और उस फॉर्म में हम सो जाते हैं, तो हमारे सपने भी हमें उसी तरीके के आते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? अगर हम खुश हैं, हमारा दिन अच्छा बीता है, हमने जो चाहा था हमें मिला है, या जो हम अचीव करना चाहते थे, अच्छा सा परिवार भी सुखी है, तो हम अच्छी नींद अगर सोते हैं तो हमें सपने भी अच्छे आते हैं, ऐसा होता है? तो इसका ये मतलब है कि इमोशंस का रोल हमारी जिंदगी में सबसे बढ़ के है। जितना जरूरी खाना पीना, अपने कपड़े, हमारे रहन सहन, हमें अपने फिजिकल नीड्स, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं उनको पहचानना है, उतना ही या शायद कभी कभी उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें हमारी इमोशनल नीड्स को पहचानना। मुझे कोई बता सकता है कि कितने इमोशंस हैं ह्यूमन, एक इंसान में कितने इमोशंस हैं? आपको क्या पता है इस बारे में? कोई गूगल नहीं करेगा इस वक्त? ये नहीं कि जो लोग स्क्रीन पे नहीं है आप गूगल करना शुरू करें, गूगल में सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप सच्चे हैं तो प्लीज गूगल मत करिए, क्योंकि सबकी स्क्रीन ऑन नहीं है। आप, ये कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने, बस आप अपनी समझ से, जितना हम पढ़े हैं, कोई यहाँ पे 20 साल का है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50 साल का है, इन 50, 20, 30 सालों में आपने कितने इमोशंस महसूस करे होंगे, कोई भी बोल सकता है। और जो नहीं बोल रहे मैं इनकरेज करूंगी वो भी बोले, क्योंकि यहाँ कोई गलत और सही जवाब नहीं है। कितने
9: मैम बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लाइक
6: होते
9: खुशी
6: हैं? 5, 6। खुशी होती है, और बताइए।
9: हम जैसा फील करते हैं वैसा इमोशनल हो जाते हैं हम।
6: जैसे कि दुखी हो गए, खुश हो गया, गुस्सा हो
8: गुस्सा
6: गया।
8: आ जाते हैं, कभी कभी अंदर से नाराजगी होती है, बोल नहीं पाते हैं,
6: छह
8: तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी कभी कभी दिक्कत भी होता है।
6: आठ, आठ इमोशंस हो गए, तो बिल्कुल ठीक। सात या आठ कोर इमोशंस होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमें रूल करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, होस्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन प्लीज। तो अब कायदे से तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन ही नहीं अलाउ हो रही आज शेयर करने के लिए, है ना। मेरा इमोशन इस वक्त क्या होना चाहिए, मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई और होस्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहे स्क्रीन शेयर करने को, या मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए कि अब मैं आगे क्या बोलूंगी, मैंने तो स्क्रीन से देख के पढ़ना था और अब तो मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मैं आगे क्या बोलूंगी, लेकिन मैं फोन करके स्क्रीन शेयर के लिए बोलती हूँ। सो राहुल ने मुझे अलाउ करा है स्क्रीन शेयर करने के, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं?
16: यस मैम,
8: यस मैम।
6: सो आज हम पहले ई पे बात करेंगे जो मैम ने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम EQ भी बोलते हैं, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ये एक प्रॉपर स्टडी है साइकोलॉजी में, इमोशनल कोशेंट इसको बोलते हैं, लेकिन हम इस पे बहुत ही बेसिक लेवल पे बातचीत करने जा रहे हैं। ये कोई साइकोलॉजी का सेशन नहीं है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट प्रैक्टिकली इस चीज के क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम इस पे आपस में बात करेंगे। मैं कुछ आपको सिखा नहीं सकती क्योंकि आपके इमोशंस आपके हैं, मेरे इमोशंस मेरे हैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि इमोशंस का रोल क्या है और इसको पहचानना और इसको मैनेज करना। हम इमोशंस चेंज तो कर नहीं सकते, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन गुस्से में क्या मैं किसी को थप्पड़ मार रही हूँ, क्या मैं किसी पे चीख चिल्ला के बात कर रही हूँ, या मैं समझ बूझ के समझ से सिचुएशन को हैंडल करके बातचीत कर रहे हैं। और हर बार ही जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन होता है, हर एक सिचुएशन में हमारे इमोशन अलग होते हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा हम ये सेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई हमारे एक ख्वाब है, हमारा एक गोल है लाइफ में, उसको हमें अटेन करना है, बट उस गोल को अचीव कैसे करना है। तो हमने सोचा चलो हम वो ईज की बात कर रहे हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस से बात करते हैं। जैसा कि सना ने बताया, हमारे कुछ आठ या नौ जो कोर इमोशंस हैं वो हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि हो गया हैप्पी हूँ, सैड हूँ, वरिड हूँ, नर्वस हूँ, गुस्से में आ गई मैं। ये सारे इंग्लिश के, मैंने जो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ 12-14 अलग अलग इमोशंस हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इसके हमारे को हर भाषा में कोई ना कोई इसका एक वर्ड जरूर मिल जाएगा। तो हम आमतौर पे, हमें लगता है कि हमारे करीबन 12 या 13 अलग अलग इमोशंस होते हैं जो हमारी लाइफ, कुछ इमोशंस नेगेटिव होते हैं और कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिहेवियर को दर्शाते हैं। अगर मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसको कहते हैं ना, अरे इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इससे ज्यादा बात मत करो, ये तो एकदम बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी, इससे ज्यादा ज्यादा इससे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारा बिहेवियर हो गया है। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को बहुत उसपे हमारे हमारे जो एक्शन है उसको हमारे को गाइड करता है। कुछ लोग होते हैं इसे कितना भी बात कर लो ना इसे गुस्सा नहीं आता। अब ये तो कहना गलत है कि गुस्से वाला इंसान ठीक नहीं है और जो प्यार से बात कर रहा है वो ही ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है जो गुस्से वाला इंसान है वो ज्यादा समझदारी की बात कर रहा हो, लेकिन उसका बताने का तरीका ऐसा है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इमोशंस को दो भागों में बांटा है, आमतौर पे नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस बोला जाता है। नेगेटिव इमोशंस में गुस्सा आ गया, शर्मिंदा हूँ, उदास हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे नफरत है किसी से, मुझे अफसोस है, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव इमोशन में मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने ऊपर मुझे प्राइड है, यानी कि मुझे गुरूर है अपने काम पे, मुझे गर्व है अपने काम पे, मुझे आशा है, होप है, खुशी है, जॉय है, लव है, ये हमारे अच्छे इमोशंस होते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका यहाँ मैंने नाम दिया है, रॉबर्ट इन्होंने जब स्टडी किया, ये साइकोलॉजिस्ट, माननीय साइकोलॉजिस्ट ने, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, इन्होंने ये प्रूफ किया अपनी थ्योरी से कि जो ये 7 या 8 इमोशंस होते हैं, ये करीबन 34,000 इमोशंस ह्यूमन बीइंग में कॉम्बिनेशन में पैदा कर सकते हैं। हमें ये सब जानने की जरूरत इस वक्त पे नहीं है, हम कोई स्टडी नहीं कर रहे, हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इमोशंस का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे एक्शंस इन्हीं से दर्शाए जाते हैं। इसलिए हमें इनको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी और आप अपने इमोशंस मैनेज करना शुरू करोगे, लेकिन हम सबको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरा प्राइम इमोशन क्या है। कोई भी चीज अगर खराब होती है दिन भर में, तो क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या मैं उदास रहती हूँ, या मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं उस सिचुएशन के, मैं कोशिश करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकूं। मकसद यही है कि हम अपने इमोशंस को पहचाने, इसको हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में या फॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन जब हम उठते हैं, उठने से सोने तक, सोने के बाद भी हम इसी 34,000 के जो चक्र है इसमें फंसे रहते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहता है या किसी को कुछ लग रहा है कि गलत है या सही है? हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसकी फीलिंग कैसी होती है? हम इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, नर्वसनेस होती है हमें, जैसे एग्जाम देने जाना है और नेगेटिव इमोशन है, डर है हमारे अंदर, तो डर से क्या होगा? वरी होगी, नर्वसनेस होगी, तो क्या कोई फायदा होगा हमें एग्जाम देने में? नहीं। लेकिन अगर हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, हमने बार बार अपना रिविजन किया है, तो उस नेगेटिव इमोशन को हम पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं? वरी को हम कॉन्फिडेंस में लेके आ सकते हैं, हम वरी जो है हमारी उसको बदल के हम कॉन्फिडेंस में डाल सकते हैं। क्यों? हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं पहले से तैयारी करो, आखिरी मोमेंट पे कुछ मत छोड़ो, लिखित में प्रैक्टिस करो, बार बार उसका रिविजन करो, ताकि जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो हमारा एक्शन क्या होगा कि हम आधा पेपर भूल जाएंगे, पेपर देख के डर जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा आंसर क्या लिखना है, हो सकता है गलत मलत लिखा है। लेकिन अगर हमने उस नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में अपने एक्शन से बदला हो, तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए उसकी तैयारी हमने नहीं करी, तो भी चैप्टर्स तो हमने सारे पढ़े हैं, तो अपनी समझ बूझ से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ना कि रिएक्ट करेंगे। घर से निकलने से पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पर भी हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती, पूरा दिन खराब हो जाता है, या रास्ते में जा रहे हैं, आजकल बारिश का मौसम है, गाड़ी तेज निकली, कपड़े खराब हो गए, कीचड़ कीचड़ हो गया, गुस्सा आ गया, बस इतना अच्छे से मैं बन ठन के जा रही थी और सारा खराब हो गया, मेरी तो मीटिंग थी, मेरा मेरा तो अच्छा काम होने जा रहा था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हो गया, ये तो सिचुएशन सामने आ गई, अब ये मेरे ऊपर है, मैं अपना इमोशन कैसे संभालूंगी? गाड़ी वाला तो निकल गया, हो सकता है उसकी भी कोई इमरजेंसी हो, तो हम एम्पैथी में बदल सकते हैं अपने इमोशन को, क्योंकि भाई अब तो ये हो गया ना, अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ, अब अगर मेरे को अच्छे मीटिंग में जाना है तो मुझे सॉल्यूशन निकालना है ना उसका, हो सकता है मैं रुक के धो लूं उसको, मेरे चलते चलते तक शायद वो सूख जाए, लेकिन उससे जो मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम करना है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम इमोशनल क्वोशन बोलेंगे कि सिचुएशन आने के बावजूद हम उसको मैनेज कर पाए। ये कोई गुट्टी नहीं है कि हमने घोली, पानी में डाली और पी गए, ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा, और अगर हम चाहेंगे तभी ये होगा, अगर हमें लगेगा कि इसके कोई फायदे

0: उसमें उस पिक्चर में सलमान खान को बहुत गुस्सा आता है, वो मारना मारता रहता है सबको, लेकिन बाद में शायद जो हीरोइन होती है वो बोलती कि तुम 10 तक गिनती करो तो शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। देखिए किसी ने ये मूवी, या मैं ही सबसे पुरानी हूँ यहाँ पे? देखिए
1: मैंने देखी है मैम, देखी
0: सबने देखी है। तो वो क्यों करता है,
1: है मैम।
0: उसको उसने एक मैनेजमेंट टेक्निक बना ली कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में रिएक्ट कर जाता हूँ, तो रिएक्ट ना करके मैं कैसे उसे कंट्रोल करूं और उसको मैं पॉजिटिव, मैंने ये एज ए एग्जाम्पल ही दिया है, लेकिन ये कोई सिंगल तरीका नहीं है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इमोशनल कोशेंट के ऊपर हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारा मेटीरियल अवेलेबल है, जिनको कि लगता है उनकी जिंदगी में नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाएं और कुछ कुछ स्पीकर्स हैं या कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं, आप पढ़ने की कोशिश करिए उनको, वो आपको शायद एक बेहतर सोशली एंड पर्सनली वो आपको हेल्प करेगा। और जहां तक लीडरशिप की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी है। आपने मैम को कभी रेयर ही गुस्से में देखा होगा, आपने हमेशा देखा है कि वो कितनी बारीकी से इमोशंस को, सिचुएशंस को सिचुएशन पे रखती हैं, पर्सनलाइज नहीं करती। ये बहुत मेहनत से आता है, बहुत एक्सपीरियंस से आता है, ओवरनाइट नहीं आ सकता, बट एज ए लीडर ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोल पे फोकस करना है, इमोशन पे नहीं। मेरे को कैसे बोल दिया इसने, अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मुझे बोल कैसे दिया इसने। बट वो आप उसे पर्सनलाइज ना लीजिए। अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियां, अपनी वीकनेस को पहचानिए एज ए लीडर और उस पर वर्क करिए। अगेन आई वुड से इट इज अप टू अस कि हम इसकी वैल्यू पहचानना चाहते हैं कि नहीं पहचानना चाहते। इस स्लाइड में हम ये बोल रहे हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, इसके ऊपर हम कई चीजें बात कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव इमोशंस खराब होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा भी स्टडी किया है कि जरूरी नहीं है हर बार और हर नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए नेगेटिव ही रिजल्ट लेके आए। कभी कभी आपने सुना होगा ये इंसान ना स्ट्रेस में बड़ा अच्छा काम करता है, ऐसे सुना है किसी ने कि भाई इसको जब बिल्कुल सर पे आ जाती है ना, तब इसकी, ये किसी की नहीं सुनता, ये देखना बहुत अच्छा काम करता है तब, क्योंकि उनको मैनेज करना आ गया है ये आर्ट कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। पूरा दिन कुछ, कई हमारी फ्रेंड ऐसी होती थी कुछ नहीं पढ़ती थी, सारा साल ऐसे ही इधर उधर डोलती रहती थी, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आता था तो दिन रात पढ़ाई करके, क्योंकि उनको डर था कि मैं पीछे ना रह जाऊं, तो उस डर को उन्होंने पॉजिटिव इमोशन बनाया और दिन रात पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट लेके पास हो गए, है ना। और कुछ लोग हैं पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बना लेते हैं, हाय मतलब प्रैक्टिस करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि डर आ गया है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसी को बैलेंस करने की जो कला है उसको इमोशनल क्वोशेंट हम कहते हैं। तो हमें हर बार नहीं सोचना कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, कई बार ही नेगेटिव इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में, हमें सीख देने के लिए, ये समझाने के लिए कि शायद हम कहीं गलत जा रहे हैं, शायद हमें जरूरत है अपने कोर्स करेक्शन की। कभी कभी फेलियर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब फेलियर ही नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम राह पे, किसी राह पे चल भी रहे हैं कि नहीं, ऐसे अंधाधुंध चले जा रहे हैं, एक रैट रेस में सब सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो हमने EQ समझा, इमोशनल क्वोशेंट समझा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो पजल है जो हम 10 E's की बात कर रहे हैं, वो हमें हेल्प करेगा हमारा गोल डिफाइन करने में, हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो इमोशनल क्वोशेंट को अब हम लिंक करेंगे कि हम गोल्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने बात करी कि यहाँ सभी लोग किसी ना किसी गोल से या किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए ही यहाँ पे जुड़े हैं। किसी को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी को ग्रेजुएशन करना है, किसी को कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, नर्सिंग का करना है, पार्लर का करना है, स्टिचिंग का करना है, कोई एम्ब्रॉयडरी करके कुछ करना चाहता है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ क्या है वो भी तो हमें डिफाइन करना है ना। लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस में ही घिरे रहेंगे, मेरे घर में तो बहुत परेशानी है, मेरे को तो निकलने नहीं दिया जाता, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अरे जाके भी मुझे काम करना पड़ता है, मुश्किल से 1 घंटा निकालती हूँ, अगर हम इन सब चीजों में फंसे रहेंगे तो हम लाइफ में गोल ही सेट नहीं कर पाएंगे, और अगर गोल ही सेट नहीं होगा तो हम उस राह पे चलेंगे कैसे। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन, कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है?

ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम अपना गोल डिफाइन कर कैसे सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, ये स्लाइड हम आपसे शेयर कर देंगे। अगर हम इन 10 क्वेश्चन के आंसर करने शुरू करें तो हो सकता है हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये हम खुद से पहचान पाए। ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं ये वो ही डिफाइन करें, तभी वो लाइफ में खुश रहेंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि गोल उनका होना चाहिए। हम गाइड कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उस राह पे चलने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर तो हमें ही पता है ना, क्योंकि हम सच्चाई से आंसर देंगे इन इन सब क्वेश्चंस का। मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे खुश क्या करता है? किसी को सिलाई खुशी देती है। अभी हम पीछे किसी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला मुझे, मैं सीख तो स्विंग रही हूँ लेकिन मुझे बनना पार्लर का काम करने में बहुत मजा आता है, तो मैं स्विंग सीख के पार्लर भी करूंगी। ठीक है, आप स्विंग सीख रहे हो, बट वो बहुत क्लियर थी कि मुझे ब्यूटी का काम करने में बहुत मजा आता है, बट हो सकता है उनके परिवार वाले इस वक्त अलाउ ना कर रहे हो या सीट खाली ना हो ब्यूटी और वेलनेस में, तो इसलिए उन्होंने अभी अपना ब्यूटी का बाद में रखा। तो उनको बहुत क्लियर था कि उनको मजा किस चीज में आता है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को एडवांटेजेस में कैसे बदल सकती हूँ, मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए फाइनेंसेस क्या क्या चाहिए होंगे, और इन फाइनेंसेस को मैं अरेंज कैसे कर सकती हूँ। क्या कभी कभी हमारा गोल ऐसा होता है कि हमें लगता है ये फुलफिल नहीं हो सकता, कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन वो तो महंगी होती है, मैं पायलट बनना चाहती हूँ लेकिन वो तो बहुत महंगी होती है। उसको आप पहले डिफाइन करेंगे तभी तो, आप पहले पहचानेंगे तभी तो आप उसको ब्रेक डाउन करके उस लेवल तक लेके आएंगे कि उसे पूरा किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको पहचानना कि वो ऐसा काम क्या है जो आप रोज उठ के करीबन 30, 40, 50 साल तक आगे करना चाहते हैं। जो बच्चे आज 20 साल के हैं वो कम से कम 60 साल तक काम करेंगे, तो 20 से 60 साल की जो जर्नी, यानी कि 40 साल अगर आपको काम करना है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, आजकल तो 80, 90 साल के भी जो हमारे मेंटर्स हैं वो भी हमें गाइड करते हैं अभी तक। तो आप सोचिए, काम करने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। तो अगर आपको 40, 50, 60 साल तक आगे काम करना है, तो ऐसा क्या काम है कि रोज सुबह उठेंगे तो उतने ही खुशी से आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस रोज आएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी का काम होगा तो चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज तो रोज आएंगे, क्योंकि चैलेंज के बिना तो आई थिंक लाइफ का सर्कल पूरा नहीं है। लेकिन उन चैलेंजेस को हम तभी एंजॉय करेंगे अगर काम हमारी पसंद का है। अगर आज वो काम हम नहीं कर सकते तो मैं उनकी तरफ आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, उनको भी हमें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। बट ज्यादातर लोग जो है ना, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, अगर मैं सिलाई सीखने गई और मेरी सिलाई सबसे अच्छी नहीं हुई तो शायद मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा। अगर मैंने अचार बनाना सीखा और मेरे अचार खराब हो गए तो हो सकता है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। हो सकता है मैंने बिजनेस करना शुरू किया और मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया तो मेरे पैसे तो खराब हो जाएंगे, तो मैं नहीं करूंगी। ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है, और फियर ऑफ फेलियर हम सब में ही है। ये लाइफ स्किल के सेशन देने से पहले मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर था। अगर लोगों को मेरे सेशन में नींद आने लग गई तो मैं क्या करूंगी, अगर उनको मेरे सेशन अच्छे नहीं लगे, अगर मेरी बातें समझ नहीं आई, अगर वो सिर्फ स्क्रीन ऑन करके बैठे रहे और मेरी बात का कोई मतलब नहीं समझे तो मुझे कैसे लगेगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर था मेरे अंदर, पर मैंने अपना काम पूरी जस्टिफिकेशन से किया, जो टॉपिक था उसे समझा, उसमें जितनी मेरी समझ थी उसके सारे जो पॉइंट्स थे मैंने लिखे। हो सकता है एक बच्चे को भी या एक बेनिफिशियरी को भी उससे फायदा हो जाए, तो वो जो फियर ऑफ फेलियर है ना मेरे, उससे मैं मोटिवेट हुई कि चलो एक, शायद मेरी 4-5 घंटे की मेहनत से हो सकता है एक इंसान को कुछ मोटिवेशन मिल जाए और वो अपने इमोशंस को पॉजिटिव की तरफ मोड़ना चाहे, और हो सकता है वो अपना गोल डिफाइन करने में सक्षम हो सके। तो इसलिए फिर वो फियर ऑफ फेलियर को मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो मुझे अच्छे से करना है, फियर ऑफ फेलियर से उसको बांध के नहीं रहना। बट हम सभी आगे बढ़ने से डरते हैं, कुछ नया काम करने को बोलो तो हमें डर लगता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, हमारे ऊपर हमारे लिए ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। सो नेवर बी शाय, नेवर बी अफ्रेड, मतलब कभी डरिए मत कि
हम हार जाएंगे, हमें हमें लोग हंसेंगे, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। फेल होंगे ही होंगे। आप कितने बड़ी कंपनी के लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी है, हमारी लाइब्रेरी में इतनी बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ऐसा कहीं भी नहीं। लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी है, हमारी लाइब्रेरी में इतनी बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा। बड़ी कंपनी उठा लीजिए जिसके जो बायोग्राफी है उसमें ये नहीं लिखा होगा, ये ऑटोबायोग्राफी में, कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ या मैं कभी फेल ही नहीं हुई। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ होगा। कुछ ना कुछ कदम तो गलत हुए ही होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बन गए और एक छोटी सी गलती से भी वापस नीचे आ गए। ऐसे बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं कि कैसे बड़े बड़े एम्पायर्स जो हैं वो नीचे आ गए। तो फेलियर तो पार्ट ऑफ सक्सेस है ही। अगर आप सक्सेस का कर्व पढ़ेंगे तो सक्सेस में फेलियर कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन क्या हम उससे डर के रुक जाए? ये आपकी मर्जी है। अगर आपको डर के रुकना है तो आप डर के रुकिए, बट अगर आपने हमारे सेशन ज्वाइन किया है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप फियर ऑफ फेलियर से रुक जाएं, थम जाएं। कोशिश करिए, उसको आइडेंटिफाई करें, उन जो फेलियर्स हो सकते हैं पहले से उसकी तैयारी करके हम चले आगे। रास्ते में अगर रुकावटें आएंगी तो उसको मैनेज करना हमें सीखना है। आप जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं, मैम ने भी सबको बताया, एक डायरी जरूर मेंटेन करिए। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में अगर तोड़ेंगे, यानी कि हमें एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं अपनी बुटीक खोल लूंगी, तो उसको मुझे ये स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बुटीक खोलूंगी तो आज से 3 महीने तक तो पहले मैं बेसिक स्टिचिंग सीखूंगी। बेसिक स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे 10 या 15 लोगों के फ्री में बनाने पड़ेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है। हो सकता है मुझे पैसे मिले उस चीज के, हो सकता है मुझे मेरे मुंह पे आके फेंक दे कि ये क्या क्वालिटी तुमने दिया है। क्या मैं रुक जाऊंगी तब? ये आपकी मर्जी है। अगर आप सीख के आप बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं दोबारा ठीक करके देती हूँ, मैं इसके कोई पैसे भी नहीं दूंगी, ये आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा ही करिए, लेकिन अपने लक्ष्य को ब्रेक करिए कि अगर 1 साल में बुटीक खोलना है तो पहले 3 साल में मेरे को बेसिक स्टिचिंग सीखनी है। अब मैं बेसिक स्टिचिंग पे करके सीख रही हूँ कि रीड के सेंटर पे जाके सीख रही हूँ, जहाँ पे मैं सेफ भी हूँ, मुझे अच्छे टीचर मिले हैं। बेसिक के बाद मैंने 3 मंथ्स का एडवांस स्टिचिंग लिया, उसके बाद मैंने छोटा बुटीक खोला, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बड़ा बुटीक खोला। 1 साल में नहीं खोल पाई, हो सकता है 1.5 साल में खोला। अपने गोल को रीएडजस्ट करिए। तो मेरा मतलब यह है कि अपने गोल को पहले डिफाइन करिए और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, और हमेशा उसे रिविजिट करिए कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई कि नहीं कर पाई। जहां फेलियर हुआ उस फेलियर को एक्सेप्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए, उससे कुछ सीखिए। एवरी टाइम वी हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स, फ्रॉम द रोड ब्लॉक्स। जो भी बीच में रोड ब्लॉक्स आए हैं, अनहैप्पी सिचुएशंस आई हैं, कोविड आ गया, कोई प्रॉब्लम और आ गई, तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए हमें उसको पॉजिटिव में ही बदलना है। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल की बात करें, बार बार इमोशन आ जाते हैं कि हमें घबराना नहीं है, उनको नेगेटिव इमोशंस में नहीं बदलना है। सॉरी मैंने टाइम भी नहीं देखा। यहाँ पे कुछ किताबें हैं, जरूरी नहीं है ये सारी किताबें हमारे लाइब्रेरी में हो, लेकिन इसके कई कई जो एक्सर्ट्स हैं, यानी कि जो जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं, वो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाकी किस लैंग्वेजेस में है मैं रिसर्च कर सकती हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हम चाहें तो उनको पढ़ के हम और अच्छे से अपना गोल डिफाइन करके आगे खुद से बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट नॉट टू फॉलो योर ड्रीम्स, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, कि अपना गोल आइडेंटिफाई करिए और अपने पॉजिटिव इमोशंस को पहचानिए। नेगेटिव इमोशंस को हम किस तरीके से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेशन ऑन द 10 E's। जो पहला ई था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का, आज हमने वो कवर किया है। अगले सेशन में मैम का लीडरशिप का सेशन होगा, सेकेंड ई पे हम उसके बाद बात करेंगे, राइट?

0: इसके साथ कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है या कोई गोल या आप जिसने डायरी रखनी शुरू करी है कोई फीडबैक देना चाहता है, बिकॉज क्या है ना, हम सुन के बंद कर देंगे ये जूम सेशन और कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहां थे वहीं पे ही रहेंगे। इसलिए वी शुड बी एनकरेजिंग ईच अदर टू इंटरैक्ट। सो आई एम स्टॉपिंग नाउ एंड आई एनकरेज एवरीबडी, आपके साथ बेनिफिशरीज भी अगर हैं तो उनको भी एनकरेज करिए कि कुछ इस इन सेशन से अगर समझ में आया या कुछ सीखा, और मुझे भी फीडबैक दीजिए कि अगर ये सेशन बहुत वर्बोस था, यानी कि वर्ड्स बहुत ज्यादा थे, तो मैं इसे और कम और सरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी।
1: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बाइरेडीपल्ली.
0: हेलो संगीता जी।
1: यस मैम, जो आपने अभी इमोशंस के बारे में बताया, आई डोंट रिमेम्बर कोविड टाइम पे मैंने एक चैप्टर था घृणा का महत्व, हिंदी में किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना था. दैट वाज अ डिग्री स्टूडेंट, मुझे याद नहीं है. बट वो इमोशंस जो हमारा हेट्रेड इमोशंस है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रही थी, उसको बहुत डिटेलली उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम घृणा नहीं करेंगे तो जो बुराई है उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं तो उससे डर के, अरे लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, इससे डर के गलत काम नहीं करेंगे. वो पूरा बहुत अच्छे से था. तो आप जब समझा रहे थे तो वो चैप्टर में रिकॉल कर रही थी मैम.
0: एब्सोल्युटली राइट। हम कभी कभी इतना डर जाते हैं नेगेटिव इमोशन से ना। जब मैंने पूछा, मैं 100% ये श्योर हूँ कि आज जो 60 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी अच्छा नहीं फील कर रहे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें परेशान कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी परेशानी। सबको ये टाइम सूट करता है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोग अपना वक्त निकाल के एग्जैक्टली 3 बजे आ गए और वो अच्छा भी फील कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हम नहीं बोला नहीं, क्योंकि हम डरते हैं कि हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही सोचा जाएगा। भाई मेरे को नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैंने सुबह खाना नहीं खाया वक्त से, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मेरा नहीं मन है सेशन अटेंड करने का, मेरा नहीं मन है वीडियो पे आने का, मेरा नहीं मन है कुछ बोलने का। तो वो हमारा मन है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। मैं आपकी जिंदगी में आके उसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये हम पे है कि हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। ये हम पे है कि दिन भर में जो हमारे सामने आता है हम उसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सब हमारे हाथ में, क्योंकि ये हमारी लाइफ है।
1: नाउ फॉर दिस आंसर मैम, कि आप कैसी हैं. मैं खुश हूँ मैम.
0: आप खुश हैं? अच्छा, वेरी गुड। और आप खुश हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पॉजिटिव इमोशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है, मतलब इमोशन से हमारे एक्शन होते हैं। मैं जब ये सेशन बना रही थी तो मैंने कई वीडियोस और कई साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज थी उनको पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मेरे ब्रदर ने तो इस सब्जेक्ट पे पीएचडी, डबल पीएचडी करी है ह्यूमन साइकोलॉजी पे, तो वो अभी भी पढ़ रहा है, उसको करीबन 12 साल हो गए हैं ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए, और अभी भी वो पढ़ रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो हम आधे घंटे के सेशन में तो इस चीज पे बात भी नहीं कर सकते, और मैं तो इस चीज पे बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो जब हम इन चीजों पे मैं पढ़ रही थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई कि जो पॉजिटिव इमोशन है, इमोशन जो बना है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेराइवेटिव है। इंग्लिश का जो वर्ड है इमोशन, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेरिवेटिव है। इमोशन यानी कि जो हम फील कर रहे हैं उससे हमारा मोशन होगा, उससे हमारा रिस्पॉन्स होगा। जो हमारा इमोशन है उससे हम रिस्पॉन्ड करेंगे। हम खुश हैं तो सब खुश हो जाएगा, हमारे आसपास के लोग खुश होंगे, हम खुशियां फैलाएंगे। अगर हम उदास हैं, गुस्सा है, अब ये इमोशन भी जरूरी तो है हमारे लिए, ये हमारी लाइफ से कोई ले नहीं सकता। तो अगर मैं चिड़चिड़े मूड में हूँ तो अगर कोई बच्चा आके, मेरा बेटा आके मुझे हग भी करता, मेरे को नहीं करना, मेरा मूड नहीं आता, तो उस बेचारे की क्या गलती है? दिन तो मेरा खराब गया है और चिड़चिड़ी तो मैं हूँ, इमोशन तो मेरा खराब था, मैंने अपना खराब इमोशन उसको भी पास ऑन कर। ऐसे ही सेम रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो इमोशन से ही पैदा होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बने ही इमोशन पे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल इमोशन है, सोशल इमोशन है, फैमिली इमोशन है, घर के हैं, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, मदर डॉटर, मदर सन, जितने हैं रिलेशनशिप वो इमोशन पे ही बने, तो इसकी अहमियत तो हम हटा नहीं सकते। इसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, आपके लिए मैं नहीं मैनेज कर सकती, आप मेरे लिए नहीं मैनेज कर सकते, अपने अपने पहचान की और अपने अपने मैनेज करने। मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोग प्लीज कुछ शेयर करिए। हेलो
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
0: स्वाति जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे?
0: मैं अच्छी हूँ, मुझे खुशी हो रही है। इतना सारा इंफॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठा किया था पिछले 1.5 दिन में, मैंने सारा शेयर कर दिया। कुछ कुछ चीजें बच गई हैं, मैंने बहुत सारा पढ़ा था लेकिन फिर भी काफी कुछ शेयर कर दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा है।
1: यस मैम, काफी टाइम ना, मतलब कुछ चीजों पे ऐसी धूल सी जम जाती है, तो वो सेशन के जरिए आगे चल के आता है हमारे सामने, और फिर से लगता है कि नहीं, हमें ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। और काफी टाइम पे तो मैम ऐसे होता है कि निगेटिव जो चीजें हमारे साथ घटती है सुबह से लेकर शाम तक, वो ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में घूमती रहती है, और जो कुछ अच्छी बातें होती है ना, तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। तो ऐसा कुछ बताइए कि हम निगेटिव चीजों के जल्दी से भूल जाए।
0: ये जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे, ये सबसे पहले उठ के आ रहा था कि नेगेटिव इमोशंस जो है ना वो सबसे ज्यादा भारी हो जाते हैं। हो सकता है नेगेटिव इमोशन एक होगा, वो इमोशन या सिचुएशन हुई, मान लीजिए लड़ाई हो गई सुबह सुबह किसी से, तो वो हमारा इमोशन नेगेटिव हो गया, या कोई बीमार हो गया घर में तो नेगेटिव इमोशन हो गया हमारा। अब वो नेगेटिव इमोशन पूरा दिन हमारे साथ रहता है, पूरा दिन, पूरे दिन में चाहे 100 से भी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस आए हों, लेकिन जो उसका भार है, जो उसका बोझ है यहाँ पीछे दिमाग में, वो घर कर जाता है, उसको हम जाने ही नहीं दे सकते। अब ये डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने नेगेटिव इमोशन पे बहुत ज्यादा स्टडी करी है। इस पे आप काउंसलर्स जो होते हैं, जो आपने सुना होगा कि काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है, हमारे यहाँ तो इंडिया में मेंटल इलनेस को तो मतलब इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसकी इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करी जाती, लेकिन बाहरी देशों में ये एक कॉमन टॉपिक है। अगर मुझे डिप्रेशन है या मुझे दुख है या मैं नेगेटिव इमोशन से घिरे रहती हूँ, तो हम वो लोग डरते नहीं हैं अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में या फिर ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाने में जिनसे वो अपनी बात कर सके। 1-1 घंटे का सेशन होता है और वो उनसे बात करते हैं। हम यहाँ पे अपनी सहेलियों से बात करके मन हल्का कर लेते हैं, ऐसा होता है। एक सहेली सबकी होती है जिससे इतना पूरे दिन की भड़ास निकाल दो, ऐसा ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अब ठीक लग रहा है, अब मुझे ठीक लग रहा है, अब ठीक। तो ये एक्चुअली हम रियलाइज नहीं करते, ये हमारा नेगेटिव इमोशन मैनेजमेंट का तरीका बन गया है। कुछ कुछ लोग होते हैं अपनी मदर से बात करके बहुत खुश होते हैं, या कुछ अपनी डॉटर से, क्योंकि वो एक ऐसा बॉन्ड है कि कोई चेंज नहीं कर सकता, तो हम किसी से बात कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई कई लोगों को देखा है कि वो भगवान की मूर्ति से बात करते हैं कि भाई हम किसी से नहीं बात कर सकते, कभी कभी ना भगवान के पास बैठ के वो अपने मन की पूरी बात कह देते हैं कि अब मैंने आपको बता दिया, अब आप देखो कि क्या हो सकता है। वो और कुछ नहीं है, वो अपने दिल की जो बातें हैं वो बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे मतलब उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये चीजें मुझे तकलीफ दे रही है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोझ कम होने लगता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कई बार कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, वो एक सिचुएशन प्रॉब्लम है, ये क्या मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती? अगर मैं उसे नहीं सॉल्व कर सकती तो वैसे भी दुखी होने का मेरा कोई रीजन ही नहीं। अगर मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ तो मुझे ये देखना है कि परेशान होने की बजाय मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं अपने दिन भर की, जो भी दिन भर की परेशानियां हैं, अच्छी चीजें उसमें जरूर लिखते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो सीक्रेट डायरी मेंटेन करते हैं, वो किसी को भी पता नहीं होता, सीक्रेट डायरी होती है, आज के दिन की ये 4 बातें हैं वो उसमें मैंने लिख दी और मेरी सीक्रेट डायरी सिर्फ मेरे पास रहेगी। ये भी एक तरीका होता है कुछ लोगों का। अब ये तरीका आपका क्या है ये तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, राइट? लेकिन नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देना एक वक्त से ज्यादा वो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ चारों को खराब कर सकता है। फिजिकल हेल्थ कैसे? आप परेशान रहेंगे, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, सिर में दर्द, चक्कर आना, डिप्रेशन होना। फिजिकल कैसे? भूख नहीं लगेगी आपको, गुस्से में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तो फिजिकल हेल्थ वैसे ही खराब हो जाएगी। इमोशनल हेल्थ कैसे, सब आप दुखी हैं, आपके बच्चे दुखी रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपके हस्बैंड आपकी मदर सब आपसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा दुखी, क्यों तो दुखी रहती है, पता नहीं क्या है, बोलती भी नहीं है क्या प्रॉब्लम है ना। प्रोफेशनल कैसे, आप अपने काम पे ही ध्यान नहीं दे पाएंगे, अब आपके इमोशंस तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन उसे आइडेंटिटी उसको पहले अपनाना बहुत जरूरी है कि, और ये मानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ शायद कि जिसको इतनी बड़ी दिक्कत है, और भी लोग हैं दुनिया में जो शायद इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतों से, इसमें अमीर गरीब का कोई वो नहीं है, हो सकता बहुत अमीर लोग हैं पैसा भरपूर है फिर भी नेगेटिव इमोशन बहुत सारे हैं, और एक इंसान है जो अपना काम करता है, सिंपल लिविंग है, रोजी रोटी है, घर परिवार है, और आप देखेंगे वो इतना खुश है कि पूछे ही मत, वो कोई मेटीरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं कभी कभी भी बंधी होती। नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस सारे हमारे अंदर हैं, कितनी तवज्जो हमें किसको कब किस वक्त पे देनी है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी, जैसा कि संगीता जी ने भी कहा कि जो नेगेटिव इमोशन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टू कम बैक टू से कि पॉजिटिव इमोशन की महत्व क्या है हमारी लाइफ में, उनसे दोस्ती करने के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होना भी बहुत जरूरी है।
1: एंड वन मोर थिंग मैम, मेरे साथ तो ऐसे होता है मोस्टली, आई थिंक सबके साथ, जब हम हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से जब दुख है किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो कम हो जाता है, एंड हैप्पीनेस वो डबल हो जाती है व्हेन आई शेयर विद समबडी एल्स।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये फॉर्मूला भी है कहीं पे, मैंने ये भी पढ़ा था, ऐसा हैप्पीनेस का फॉर्मूला एंड जो नेगेटिव एंगर का जो फॉर्मूला है, बिल्कुल आपने जो बोला ऐसा है, एक उन्होंने डिराइव करके लिखा हुआ, मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ साइकोलॉजी में कि वो फॉर्मूला डिराइव कर दूं, लेकिन आई रेड अबाउट इट।
1: यस मैम, जब गुस्सा होता है बर्स्ट हो जाता है तो वो अपने आप कम हो जाता है, और दुख रहते हैं किसी से बोल के रो देते हैं तो भी वो इमोशन बस कम हो जाता है, और हैप्पीनेस किसी से
0: लेकिन
1: भी कितना भी शेयर करो डबल ट्रिपल होता जाता है।
0: हमें ये ध्यान रखना है कि गुस्से में हम गुस्सा कर किस पे रहे हैं, कहीं गुस्से में हम ऐसा गुस्सा किसी पे ना कर दें कि जो हमारा पूरा रिलेशनशिप उससे खराब है, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, उस पॉइंट पे, उस ट्रिगर पॉइंट पे हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन यानी कि हमारा एक्शन क्या है, उसको पहला ई जो मैम ने कल बताया था, ई क्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट, उस बैलेंस को कि नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन का जो वो बैलेंस है, कहाँ भाई नेगेटिव इमोशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा, या तो मैं रो के निकालूंगी, गुस्सा करके निकालूंगी, भड़कूंगी किसी पे, या लिख के, या किसी को बोल के, या किसी और तरीके से नेगेटिव इमोशन तो निकलेगा ही निकलेगा, नहीं निकलेगा तो वो प्रेशर कुकर हो जाएगा, फट जाएगा किसी को, तो उसको निकलना भी जरूरी है, बट उसको मैनेज कैसे करेंगे, और मैनेज करने का तरीका हम सबका अपना है, और उसका रिएक्शन का एक्शन भी हमारा अपना है, और उसका रिजल्ट भी हमारा अपना है, राइट? बट इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे को गोल डिफाइन करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव की तरफ कैसे लेके जाना है। तो आज हमने दो चीजों को रिलेट करा है, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, हम दोनों चीजों को अलग अलग भी समझ सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और गोल सेटिंग, कि हमें लाइफ में गोल कैसे सेट करना चाहिए। हाँ
1: हेलो मैम,
0: जी ज्योत्सना जी,
1: मुझे भी आज ये फील हुआ है कि मैं भी अपना जो नेगेटिव इमोशन है वो मतलब कैसे यूटिलाइज करती थी। आज तक पहले मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, जैसे मैं मुझे कभी बहुत ज्यादा किसी से लड़ाई हुई, गुस्सा हुआ तो मैं बहुत ज्यादा काम करती थी, जितने मेरे पेंडिंग्स काम होते थे मैं सारे कंप्लीट कर देती थी उस दिन, जबकि मैं वैसे भी बहुत अच्छा करती थी ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे किसी से गुस्सा हो गया या किसी से फाइट हो गई या कोई बात हुई तो मैंने उस दिन सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिए। तो मुझे आज पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जब मैं गुस्से में आती थी तो मैं ज्यादा काम करती थी, तो अब मुझे ये चीज और आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि मुझे अपने नेगेटिव इमोशन को और कैसे बैलेंस करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मैम जो लोग बहुत डरते हैं कुछ भी मतलब करने से पहले, करना चाहते हैं प्रैक्टिस करते हैं और करने के बाद उन्हें ये डर लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे, वैसे तो ये डर सबके अंदर होता है,
0: हम सब
1: लेकिन सबके अंदर होता है वन टू ऑल, अपने अपने लेवल पे मैम सबके अंदर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, पर ठीक है आज हमें और गाइडेंस मिली है कि वो अपना स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, थैंक्स
0: मेरी
1: यू।
0: मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर जब गुस्से में आती थी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो जिस दिन उसका खाना बहुत अच्छा बना होता था ना, तो हम उसको कहते हैं आज मम्मा गुस्से में थी क्या। ऐसा बहुत होता है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को भी पॉजिटिव में चेंज कर पाते, हमें पता नहीं होता लेकिन हम वो कर सकते हैं।
1: जी
0: हाँ जी तुषार, आप बोलना चाह रहे।
2: जी 1 साल पहले आप हमारा जो कारेगांव का सेंटर था पुणे में, वहाँ आप इस समय आई थी, तब आपसे जो बात हुई थी मैम, उससे जो पॉजिटिव वाइब्स हमें मिले थे, वो आज भी हमें काम करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। हर हमारा जो सेंटर है सर मैम, यहाँ पर इंडस्ट्री लेबर और माइन वर्कर्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो उन बच्चों में जो पुअर बैकग्राउंड होते हैं, उनका कोई भी एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती उनके घर वालों को, तो यहाँ पर काम करने पर जो बच्चे आते हैं, तो उनको नहीं क्या पुराने जमाने में जो टीचर थे, हाथ में लाठी लेकर बड़ा बड़ा चश्मा पहनते थे और गुस्से से बोलते थे, ऐसा ऐसा कंसेप्ट उनके दिमाग में बैठ गया था। लेकिन जब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड के साथ, तो जो तारे जमीन पर में जो आमिर खान सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, कि ऐसा भी टीचर होता है जो बच्चों के साथ उनका उनके जैसा रहकर काम करता है, और जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डरते हैं सभी चीज़ों से, नई चीज़ें करने में, तो उनके साथ वैसा रहकर इनकरेज करके उनके अंदर भी जो क्वालिटी होती है वो बाहर निकलने का काम आपके जो सेशंस होते हैं मैम, उससे हमें इनकरेजमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, आप जो मोटिवेट करते हैं हमें और गाइडेड करते हैं, इसलिए
0: थैंक यू तुषार। हमने ये देखा है कई बार बच्चे डरते हैं साइकिल चलाने से क्योंकि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, लेकिन पेरेंट्स जो है वो छोड़ तो नहीं देते ना, वो फिर भी इनकरेज करते, नहीं आप साइकिल चलाओ, गिरोगे तो क्या हुआ, कोई वहां पे कुछ बांध देता, कपड़ा बांध देता, अच्छा घुटने नहीं छिलेंगे, कभी हेलमेट पहना देते, अच्छा चोट नहीं लगेगी, तो हम उसको मैनेज करने का तरीका, लेकिन हम रुक तो नहीं जाते ना, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम फियर ऑफ फेलियर नहीं लेके आएंगे, फेल तो होना ही है, लेकिन फियर ऑफ पहले से ही क्यों मान ले कि हम फेल होंगे। अभी पीछे कोई बातचीत चल रही थी तो हमने ये सुना था कि हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं क्योंकि अर्थ की जो रेडिएशंस है वो खींच रही है हमको अपनी तरफ, ग्रेविटी खींचती है ना, तभी तो हम उड़ते नहीं रहते, हम अर्थ से चिपक के रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, तो हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और जो हम सोचते हैं पावर ऑफ माइंड, वो बात कभी कभी सच हो जाती है। हम कहते हैं ना कि हम आज ये सोच ही रहे थे, अरे वो तो हो ही गया, क्यों, क्योंकि ये साइकोलॉजी में या कई कई किताबों में आप देखो कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हम सोचते हैं वो हम खींचते हैं अपनी तरफ, वो रेडिएशंस हमारी तरफ आती हैं और हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पहले ही सोच लेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो वैसे ही नहीं कर पाओगे आप तो, है ना, आप मैं कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, मैम ने मुझे बताया कि हम इस तरीके से करते हैं, हमने कल पढ़ाई करी, थोड़ा सा तो कुछ मैं निकाल के ला पाई, मैं नहीं कह रही कि मैं एक्सपर्ट हो गई इस टॉपिक में, बट मुझे भी नहीं पता था कि 34,000 इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, मुझे लगता था गुस्सा हंसी खुशी यही 4 5 8 10 इमोशन होते हैं, पर सोचे मुझे भी कुछ पता चला, मैं अब और पढ़ूंगी इस बारे में, हो सकता है मैं भी जान पाऊं कि मैं हमेशा हंसती तो नहीं रहती, गुस्सा मुझे भी आता है, लड़ती मैं भी हूँ, बट इन चीजों का हमारी जिंदगी पे क्या असर हो रहा है वो चीज समझना बहुत जरूरी। तो आज पहला ई हम समझ के गए हैं, और अगर आप चाहें तो आज से लेके अगले सेशन तक आप ये लिख सकते हैं कि हर दिन के एंड सुबह आप कैसा फील करते थे और शाम को आप कैसा फील करते थे, जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं हम लिखते हैं, हम भी देखेंगे 34,000 इमोशन होते कैसे हैं, है ना। सो थैंक यू एवरीबॉडी मेरी बहुत सारी बातें सुनने के लिए, आई विश यू अ वेरी गुड वीकेंड, और आप एंजॉय करिए, अच्छा काम करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए, ये सेशन जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं करिए। हाँ
1: मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ 2 मिनट।
0: जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए सुमन जी।
1: जी मैम, सबसे पहले तो थैंक यू रीड इंडिया का और आप सबका, क्योंकि जो रीड से जुड़ जाता है तो मुझे नहीं लगता वो उसमें नेगेटिविटी इतनी रहती है, और हर वक्त रीड कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हम लोगों के साथ तैयार खड़ा रहता है, और इतना कुछ सिखाया कि कभी कुछ उदासी हो जाती है, कुछ नेगेटिविटी होती है हमारे साथ, तो हम उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी, मुझे नहीं पता ये क्या है, कि जब मैं कभी उदास होती हूँ, कभी नेगेटिविटी मेरे अंदर आती है, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, तो उस चीज में मुझे हैप्पीनेस दिखाई देने लग जाती है अपनी आप ऑटोमेटिक ही। और ये सब शायद मैंने रीड से ही सीखा है और आप लोगों से सीखा है। थैंक यू मैम इसके लिए।
0: थैंक यू सुमन जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। चलिए अब वक्त हो गया, आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट काम करने होंगे, तो अब हम सेशन क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, बाय टू एवरीबॉडी।
3: पपीता खाने के जबरदस्त फायदे। पपीता स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसका सेवन न सिर्फ पाचन तंत्र को मजबूती देता है, बल्कि ये मोटापे को कम करने में भी सहायक है। हर रोज पपीता खाने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं इसके सेवन के फायदों के बारे में। पेट की बीमारी के इलाज में है पपीता लाभकारी। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो रोजाना पपीते का सेवन करें, इससे पेट साफ होगा। आंखों की रोशनी बढ़ाने में पपीता लाभकारी। पपीते में विटामिन सी तो भरपूर होता ही है, साथ ही विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ ही बढ़ती उम्र से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में भी कारगर है। हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज में पपीता लाभकारी। पपीते में फाइबर, पोटेशियम और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसलिए आपको रोजाना पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। पपीते का सेवन गठिया की बीमारी में भी फायदेमंद है। दरअसल इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, जो गठिया के कारण होने वाले दर्द को दूर करने में मदद करता है। एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग नियमित रूप से पपीते जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, उन्हें गठिया होने की संभावना ज्यादा होती है। मोटापे को कम करने में भी सहायक। एक मध्यम आकार के पपीते में 120 कैलोरी होती हैं। ऐसे में अगर आप वजन घटाने की बात सोच रहे हैं तो अपनी डाइट में पपीते को जरूर शामिल करें। इसमें मौजूद फाइबर्स वजन घटाने में मददगार होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में पपीता फायदेमंद। पपीते में उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, साथ ही ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। अपने इन्हीं गुणों के चलते ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफी असरदार है। इसी तरह से पपीते के सेवन करने से और भी अनेक फायदे हो सकते हैं, जैसे डेंगू बुखार को ठीक करने में कारगर, लीवर को रखे स्वस्थ, इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार, त्वचा के लिए फायदेमंद और बालों के लिए भी फायदेमंद।
4: सुर्खियों में
5: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधानों और उनके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
6: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य 20 वर्ष पुराने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान प्रणाली में विलंब दूर करना और विवाद समाधान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस विधेयक के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
7: धन्यवाद।
6: दिलीप जी, ये जो बिल आया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप कैसे आंकते हैं पूरे एमएसएमई सेक्टर में मजबूती बढ़ाने के लिए? और इसी संदर्भ में अगर आप हमें ये भी बता सकें कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसका हमारे अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है?
7: धन्यवाद। अगर आप देखें तो पहले वो करीब 31% जो है देश के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा अगर आप देखें तो 48.5% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अगर देखें खास तौर में तो 35.4% जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो भी एमएसएमई सेक्टर के द्वारा एक शेयर है। और सबसे ज्यादा एक लगभग 40 करोड़ व्यक्ति एमएसएमई में एम्प्लॉयड है और ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा श्रेय है। ये एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन इकोनॉमी में। तो अगर संक्षेप में बताऊं कि इकोनॉमी में क्या है, ये चार आंकड़े हैं, जीडीपी का 31%, मैन्युफैक्चरिंग में जो है और 39.6% करोड़ एम्प्लॉयमेंट, ये अगर आप देखें, और 48.5% एक्सपोर्ट्स, तो ये आंकड़े हैं।
8: तो इसलिए इसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है हमारी।
7: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है इंडियन इकोनॉमी में। और आपने इसी जुड़ा हुआ सवाल था कि ये जो बिल लाया गया है और जो राज्यसभा ने भी इसको पास किया है, इसकी क्या महत्वपूर्ण है इस पूरे होल सेक्टर में। तो जो एमएसएमई सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत है, जो हर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर बेशक गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स में करें या कुछ भी करें, वो है डिलेड पेमेंट। तो ये डिलेड पेमेंट के लिए कई साल पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम किया था, ट्रेड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, उसको हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म करते हैं। उस प्लेटफॉर्म में उन्होंने पहले तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। अभी उन्होंने जो भी कंपनी 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर में है वो वहां पे रजिस्टर करना जरूरी है। और जितने भी एमएसएमईज के जो बिल्स हैं, जो उनके सप्लाईज हैं, वो बिल्स जो एमएसएमईज उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक लार्ज कंपनी है और मैंने आपको 1000 रूपये का सामान दिया है, तो मैं 1000 रूपये का बिल अपलोड करूंगा और उसके बदले थोड़ा से पैसे वो ट्रेड प्लेटफॉर्म रखेगा, बाकी मुझे कर देगा, तो मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ट्रेड प्लेटफॉर्म का। और इसके अंतर्गत जो ये जो बिल में जो संशोधन लाए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
8: तो जैसे आपने कहा कि कोई भी एमएसएमई होता है उनके लिए जो पेमेंट समय पर मिलना बहुत जरूरी होता है, लिक्विडिटी उनकी जो फ्लो बना रहे वो बहुत जरूरी होता है। सो आपको लगता है कि जो ये नया अमेंडमेंट बिल आया है, ये पुराने जो एक्ट था 2006 का, 20 वर्ष पुराना, उसमें जो बदलता परिवेश है उसके मुताबिक संशोधन करके लिक्विडिटी फ्लो को ज्यादा स्मूथ करेगा?
7: बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। तो देखिए, एक तो पहला जो है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, इस बिल का जो सारा जो फोकस है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे है और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडर पब्लिक एंटरप्राइजेस पे है। ट्रेड्स अभी प्लेटफॉर्म ही एक नया ही प्लेटफॉर्म है, उसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का एनुअल टर्नओवर होता है। उसमें जो है वो एमएसएमई का ट्रांजैक्शन का छोटा सा हिस्सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप देखें तो ये डिलेड पेमेंट्स जो एमएसएमई को कैपिटल ब्लॉक करता था उसको एड्रेस करता है, क्योंकि उनको बस पैसे नहीं होते थे, वो मार्केट से पैसा लेते थे हाई इंटरेस्ट रेट पे। और सबसे बड़ा जो संशोधन आया है इस बिल में, वो जो अगर डिस्प्यूट हो जाता था तो वो नॉर्मल कोर्ट के प्रोसेस में सालों लगते थे एक लीगल प्रोटेक्शन के लिए, तो चार जो है, और कैश फ्लो का जो पूरा परिस्थिति पैदा हो जाती थी क्योंकि पेमेंट्स ब्लॉक हो जाते थे, तो इन चार चीजों को सॉल्व करने में एक ये बहुत बड़ा कदम है।
8: तो जैसे आपने कहा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि कोई भी विवाद है उसका समाधान, उसमें बहुत समय लगता था, तो अब जो टाइम बाउंड उन्होंने बताया है, साइकिल बताई है कि पहले मध्यस्थता होगी, मीडिएशन होगी जो 90 दिन के अंदर खत्म होनी है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती तो 30 दिन में अपील मैक्सिमम, और फिर 90 दिन में आर्बिट्रेशन। तो ये थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो तीन स्टेजेस हैं, ये किस तरह से एक जो कॉमन एमएसएमई ओनर है, एक मान लीजिए एक माइक्रो एंटरप्राइज का ओनर है, वो कैसे इन स्टेजेस को समझे?
7: तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और अगर आप देखें तो कोई लीगल डिस्प्यूट होता है तो सबसे कम जो खर्चा होता है और सबसे कम टाइम में जो रेजोल्यूशन हो सकता है वो मीडिएशन द्वारा, और वो एक उसमें लॉयर्स की जरूरत नहीं है, आप आपस में बैठ करके एक मीडिएटर के द्वारा बैठ करके आप अग्री कर सकते हैं। और अगर आप दोनों ने मीडिएशन अग्रीमेंट को अग्री कर दिया,
8: कोर्ट से बाहर,
7: कोर्ट से बाहर, मीडिएशन सेंटर्स कोर्ट्स के साथ भी लगे हुए हैं, जैसे अगर दिल्ली में तो हर कोर्ट के साथ लगा हुआ है, तो वो मीडिएशन अग्रीमेंट अगर साइन करते हैं तो वो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर जो लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मीडिएशन में नहीं होगा, तो जो आर्बिट्रेशन है, और उन्होंने नया आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट लेके आए थे, उसको मीडिएशन एक्ट के अंदर ही एक आर्बिट्रेशन एक्ट है और एक मीडिएशन एक्ट है। सो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, कि अगर आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो आप ज्वाइंटली एक आर्बिट्रेटर या तीन आर्बिट्रेटर डिपेंड करता है उसको अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन जो है एक कोर्ट के द्वारा फंक्शन करता है, लेकिन एविडेंस रूल और सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं, तो सिंप्लीफाइड सिस्टम है, लेकिन वो एक जजमेंट है और वो जजमेंट बाइंडिंग है, उसको अपील करना मुश्किल अगर कोई प्रोसीजरल गैप है, नॉर्मली कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इसके जो तीन जो आंकड़े बोले थे, पहले तो मीडिएशन, अगर मीडिएशन ना हो तो फिर आप आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो आर्बिट्रेशन जो है ये बिल कहता है कि 30 दिन के अंतर्गत ही आर्बिट्रेशन शुरू हो जाना चाहिए, और अगर आर्बिट्रेशन शुरू हो गया, जब आर्बिट्रेशन शुरू हो गया 90 डे में उसका अवार्ड आना चाहिए। तो यानी कि 120 या 6 महीने में और मीडिएशन के 2 महीने लगा लो तो 8 महीने में कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल कमर्शियल कोर्ट में भी जाएं तो 8 महीने में या 6 महीने में आपके 2 तारीख मिलेंगे और कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो ये सालों चलते थे अर्ली डिस्प्यूट, तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और टाइम की बचत है, सबसे ज्यादा बचत टाइम है। और नॉर्मल केसेस में तो अजर्नमेंट्स होते हैं, कुछ होता है, नॉर्मली मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में अजर्नमेंट्स नहीं होते।
8: सो इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि एकदम टाइम बाउंड कर दिया है कि इतने समय में समाप्त होना ही होना है विवाद और उसका कुछ निर्णय निकलना है, सो ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है। बिकॉज नॉर्मली जैसा आप कह रहे हैं कि कई बार बहुत लंबे चलते हैं केसेस, आगे बढ़ते जाते हैं। सो इसको आप इस अमेंडमेंट बिल का एक बहुत बड़ा एक पहलू कहेंगे?
7: हाँ, वो तो एक बड़ा पहलू है, लेकिन एक इसके बाद एक बहुत ही और छुपा हुआ एक पहलू है। ये उन्हें बिल ने ये कहा है कि आप इसको ऑनलाइन मीडिएशन या ऑनलाइन आर्बिट्रेशन और डिजिटल प्रोसेसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर 2 घंटे लगाते थे आर्बिट्रेशन सेंटर पहुंचने में या कुछ, वो आपका टाइम बच जाता है। और इससे अच्छा है कि अगर 6 महीने से ज्यादा आपका केस पेंडिंग है तो 50% अवार्ड अमाउंट जो है वो एमएसएमई को मिलना चाहिए। तो ये पूरा एक सिंप्लीफाई कर दिया है और एक प्रोसेस बना दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक ये बहुत ही बड़ा पहलू है।
8: सो ऐसा लगता है जैसे कि अभी तक जो आपने पहलू डिस्कस किए हैं कि ये एमएसएमई फ्रेंडली अमेंडमेंट बिल है, ताकि एक कोलैबोरेटिव आपको लगता है अप्रोच लिया है सरकार ने?
7: बिल्कुल कोलैबोरेटिव अप्रोच लिया है, एमएसएमई फ्रेंडली अप्रोच है, लेकिन आप एमएसएमई की भूमिका जो देश की इकोनॉमी में है इतनी बड़ी है कि इकोनॉमी फ्रेंडली एक बिल है। और इसमें उन्होंने एक अच्छी चीज भी की है जो खासतौर लोग ध्यान ही देते
8: जी।
7: पहले अगर आपको एमएसएमई की डेफिनेशन अमेंड करनी होती थी ना, तो आपको एक्ट में अमेंड करनी चाहिए। इस बिल में उन्होंने बोला कि एक्ट के बाहर आप उसको अमेंड कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है।
8: सो ये फ्लेक्सिबिलिटी की जो आप बात करें वो बहुत जरूरी भी है। जैसा हम जानते हैं कि आजकल जो हमारा पूरा वातावरण है, खासकर टेक्नोलॉजी की वजह से, बहुत तेजी से बदल रहा है। सो जरूरत अनुसार जो एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू कहेंगे आप?
7: बिल्कुल सही। तो अगर देखें तो पहला जो है लिक्विडिटी इम्प्रूव होगा, दूसरा जो एमएसएमईज के पैसे हैं उनको बहुत जल्दी मिलेंगे, तीसरा अगर उनको पेमेंट मिलेंगे तो बैंक के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा, चौथा तो बेटर वर्किंग कैपिटल जो मैंने आपको कहा था। और जो अभी जो है एमएसएमईज में लोग काम करने से थोड़े से हिचकिचाते थे क्योंकि ये डिलेड पेमेंट्स के सैलरी टाइम पे नहीं मिलते थे, रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते, जीएसटी में डिफॉल्ट हो जाता था, और ये पूरा लोअर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। और न्याय का ये एक फास्टर रूट है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस जो अनसर्टेनिटी निकाल देती है, और सप्लायर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस होगा कि लार्जर सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग्स को सप्लाई करे और लार्जर कंपनीज सप्लाई करे, तो ये एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था।
8: और एक डीक्रिमिनलाइजेशन के ऊपर भी सरकार ने हमेशा, वर्तमान सरकार ने बल दिया है। सो यहाँ पर जो प्रावधान लाए गए हैं, ग्रेडेड सिस्टम ऑफ वार्निंग्स एंड मॉनिटरी पेनल्टीज, आपको लगता है कि ये भी जो डर का एक, अभी आपने डर शब्द यूज किया, वो कम होता है और ज्यादा एक फ्रेंडली एनवायरमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलता है?
7: डीक्रिमिनलाइजेशन का एक पहलू बहुत आगे पहले से चल रहा था, जनविश्वास 1.0 और जनविश्वास 2.0 हमने उस पर भी चर्चा की थी।
8: बिल्कुल।
7: तो अगर आप देखें तो इसमें जो है डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, बट वो ऐसे इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम और नॉन पेनल्टीज और वार्निंग्स जो लार्जर कंपनीज के लिए है वो एक है। तो इसमें जो वो इम्पोर्टेंट सिग्नल जो क्या है ना, सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना चाहिए। अगर आपने किसी सप्लायर ने माल बेचा है और आप उसको पैसा देना है, आप प्लीज उसको पैसा दीजिए क्योंकि एमएसएमई होगा। दूसरा है कि डिले तो अब अनएक्सेप्टेबल है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस टाइम में, ठीक है, पहले ये नहीं था। और तीसरा है जो एमएसएमई का जो कमर्शियल जस्टिस है वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए, श्योर होना चाहिए, अश्योर्ड होना चाहिए और मिनिमम इनकन्वीनियंस से डिजिटल मीडिएशन, डिजिटल आर्बिट्रेशन। तो ये अगर आप तीन इम्पोर्टेंट चीजें इस बिल को ले जाएं और जो एमएसएमई के डेफिनेशन में ही फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है।
8: तो डिजिटलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन जो करने होती है एमएसएमईज को, उसमें भी वो उनको सहूलियत होगी, अब एक इंसेंटिवाइज होंगे कि और एमएसएमईज भी उभर के आए। एक आपको लगता है कि ग्रोथ ऑफ एमएसएमईज या स्केलिंग अप जो है एमएसएमईज की, उसको भी बढ़ावा मिलेगा?
7: पहले जो है अगर आप देखें तो एमएसएमईज का जो डेफिनेशन बढ़ा गया है, पहले लोग छोटा रहते थे और छोटा से ग्रो करने से हेजिटेट करते थे क्योंकि कंप्लायंस ज्यादा है, तो वो डेफिनेशन चेंज करने का एक बहुत बड़ा ग्रोथ पैटर्न है। दूसरा जो आपने कहा था कि आप पूरा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एमएसएमईज बिजनेस नहीं कर सकते थे और एमएसएमई को कहां रजिस्टर करें, तो एक उद्यम पोर्टल रजिस्टर किया था, अभी उसमें 8.9 करोड़ लगभग एमएसएमईज रजिस्टर्ड है। और अभी कंपनीज एक्ट में भी अगर आप देखें, आप लार्ज कंपनी और मैं, आप एमएसएमई आपके साथ रजिस्टर्ड हूं तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हमारे पास ड्यूज नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा जो आप देखें तो जेम गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, उसमें एमएसएमईज बिजनेस कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट परचेसेस में। ट्रेड ई फाइनेंसिंग के लिए ट्रेड्स है, तो ये अलग अलग ई प्लेटफॉर्म अगर वहां देखें तो ई नैम भी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है, ONDC भी आ रहा है। तो डिजिटल इकोनॉमी और सबसे बड़ा जो फायदा है एमएसएमईज के लिए UPI है और जो हमारा फाइनेंशियल स्टैक है, तो डिजिटली एमएसएमईज को काफी अच्छा होना चाहिए। और अब AI आ रहा है तो गवर्नमेंट ने एमएसएमईज के लिए AI के भी काफी एक सुविधा की है, तो वो डिजिटली अवेयर रहे और डिजिटली उसको यूज कर सके।
8: सो एमएसएमईज जो सेक्टर है उसका बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है पिछले 12 वर्षों में, आपको लगता है कि ये जो विकसित भारत का हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक, उसमें एमएसएमईज का बहुत बड़ा रोल होने वाला है?
7: देखिए, अगर एमएसएमईज 31% ऑफ द इकोनॉमी है और अगर हमें ग्रो करना है, तो अगर ये 31% ग्रो नहीं करेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य बिल्कुल असंभव है। और ये 31% को वो दूसरे परसेंट से ज्यादा ग्रो करने का एक सुविधा दें तो विकसित भारत का लक्ष्य आगे सामने नजर आता है।
8: सो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये जो संशोधन बिल आया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, आपको लगता है कि ये समय की मांग है और बहुत ही उपयुक्त समय पर ये लाया गया है?
7: बिल्कुल उपयुक्त समय पे लाया गया है और गवर्नमेंट जो है निरंतर एमएसएमई सेक्टर के लिए स्टेप वाइज प्रोग्रेस कर रही है। और ये जो अभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे, शायद ये आगे जाके स्टेट अंडरटेकिंग्स पे लागू करे और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू करे, तो ये स्टेप वाइज एक इंटीग्रेशन और एक डेवलपमेंट है, ये बहुत अच्छा कदम है।
8: दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमएसएमई इकोसिस्टम के लिए जो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है उसके विभिन्न पहलुओं पर हमसे बात करने के लिए।
7: धन्यवाद।
5: अभी आप सुन रहे थे एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधानों और उनके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम इन टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है, मतलब अभी हमारा 12th नंबर सेशन था, जैसे देखिए अभी तक के सेशंस में हम करियर से रिलेटेड काफी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कई स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, और मेरे हिसाब से कई स्ट्रीम्स आपको ऐसी नहीं भी पता चली होंगी अभी, जो शायद पहले आपको नहीं पता हो, या कई स्ट्रीम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी, जो हो सकता है आपको आगे अपना करियर बनाने में काफी हेल्पफुल रहे। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कि 10th के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, उनमें क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस टाइप के डिप्लोमाज होते हैं। आप सब जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में। ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है और इक्वलेंट टू 12th माना जाता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है आपका, एक तरह से 12th के इक्वलेंट होता है। तो जो लोग 10th के बाद, मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या ले, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्वलेंट टू क्लास 12th। अब डिप्लोमा की जो फिलोसफी थी, ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया, और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है वो हम ये कह सकते हैं, जैसे A to D क्लास में अगर हम जॉब्स को डिवाइड करें तो सी कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलती हैं, और वही अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपकी जॉब जो है वो आपकी बी कैटेगरी की हो जाती है। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में देखिए, वर्कशॉप में, या इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर भी कहां कहां वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, आज ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि डिप्लोमाज, मतलब वैकेंसीज आफ्टर डिप्लोमा, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निकलती हैं, या प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज, आप देखेंगे NCR एरिया के अंदर, गुड़गांव के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पर डिप्लोमाज की जॉब काफी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है, और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। थोड़ा ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं 10th के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल, जो हमारे फैमिली जो है, वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका कहना ये होता है भी 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए, जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें। तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगनिंग, ठीक है। मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की, और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट PSUs में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है, ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत स्ट्रीम है। अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 5-6 स्ट्रीम की हम बात करते हैं,
बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती है, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे, बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती है वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद में। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज की 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और ये इक्वलेंट टू 12th क्लास होता है, तो इसका मतलब 3 साल में आपकी 12th भी हो जाती है और प्लस में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आप सीख जाते हैं जिस स्ट्रीम में आप अपना काम करना चाहें। इसके कई सारे किन किन स्ट्रीम में ये रहता है आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, एनिमेशन में, फैशन एंड टेक्सटाइल में, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। यस, टीचिंग में है, ब्यूटी कल्चर में है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वोकेशनल में आती है। आप देखते हैं जैसे रीड के ऊपर भी एक तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आप स्टिचिंग, जैसे बहुत आप में से लेडीज ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे मतलब जो यहाँ रहता है वो इट्स इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि 10th के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है। तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं या

स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमा की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस है वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहां से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है। जैसे आप सोच के देखिए, गुड़गांव में या एनसीआर के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है, मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती है काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं। और स्मॉल स्केल पे आप देखिए आज के टाइम के अंदर जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स है। देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमाज होते हैं ना, देखिए 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सभी 3 साल के होते हैं, ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्विवेलेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है। क्वेश्चन था जिसे मैंने आंसर किया उसका। हाँ जी, मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक, ठीक है, छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए एसेंशियल आइटम है, ठीक है। आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती है, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना 17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है, तो उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स है। आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं। प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है। मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल है, बट भाईपाल जी ने आंसर किया कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए, ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है बीएससी इन होटल मैनेजमेंट। उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं
होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग।

0: का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने ट्वेल्थ किया और ट्वेल्थ के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद सेकंड आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे एक तरह से जो टेक्निकल हम कहें जिसको, कि ज्यादातर बच्चे जिस लाइन में जाके डिप्लोमा करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जब जहां भी हम वोकेशनल कोर्सेज या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है। आप देखेंगे इंडिया में इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली। स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो। रेलवेज में पीछे हमने बात किया था, जैसे रेलवेज में तो डिप्लोमाज की वैकेंसी ज्यादा आती है, जैसे आपको ध्यान हो मैंने अभी पीछे एक सेशन लिया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे, जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो रेलवे में जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उन टेक्निकल पोस्ट में काफी पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपसे डिप्लोमा मांगती है, तो उसमें अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं, पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है इसके अंदर 3-3 साल का, अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमाज को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, 3 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे जैसे मैं आपको एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे गो फॉर ITI, वो क्या करते हैं ITI भी करते हैं, ठीक है, अब वही चीज देखिए जो ITI है वो डिप्लोमा से भी लो लेवल में काउंट किया जाता है, मतलब ये 3 आपकी लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जैसे सबसे लो लेवल पे अगर हम बात करें तो ITI आता है, सेकेंड लेवल पे आपके डिप्लोमाज होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज होते हैं, और थर्ड लेवल पे आपका बीटेक होता है। तो एक तरह से ये तीनों ही टेक्निकल एजुकेशन की लेयर्स हैं, राइट, तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी करना चाहें, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसमें ये सारे इस फील्ड्स में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद अगर आप उसी में अपना करियर बनाना चाहें आगे फर्दर, आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है, उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब से अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं एनसीआर एरिया में स्पेशली जो डिप्लोमा करने के बाद में एक ठीक ठाक कंपनी में जिनकी सेटलमेंट हो जाती है और एक अच्छा लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी फील्ड्स हैं जिसमें डिप्लोमा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग है, हेयर एंड स्किन केयर में। आप देखते हैं आजकल VLCC का नाम आप सबको पता ही होगा, VLCC एक तरह से आपका जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, या उसमें आपका हेयर या जो स्किन केयर के कोर्सेज रहते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमाज होते हैं, ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है। तो मतलब इट्स अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में। डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, देखो डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूं। वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोग की जो वेबसाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। साइट्स जो बनती हैं वो आप बन सकते हैं बना, जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं। आप देखो मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है, और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं लेवल 1 लेवल 2, और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है, मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था पीछे हो गया मुझे साल सवा साल, तो वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जांपल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टाइप से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था आपका माने, मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं। तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं द करियर। SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप देखते हैं आजकल लोग यूट्यूब के थ्रू फेसबुक के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है, अगर आपने ये किया हुआ है SEO का कोर्स किया हुआ है तो फिर आप एज ए SEO पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए। हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रीम। मैं आपको बताऊं, जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है। हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है, अभी इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। आप देखते हैं, सुनते भी होंगे कि जो मोदी जी जितनी बार भी स्पीच देते हैं, कई मैक्सिमम टाइम चाहे वो अपने मन की बात में दे चाहे कहीं भी दे, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए। मतलब हम ये ना माने कि सरकार हमें जॉब देगी, हम खुद ही अपने एंड के ऊपर जॉब क्रिएशन की बात करें, ठीक है। मतलब अभी हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है, हम चाहते हैं कि हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, अपना कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो हमें जॉब देते, एक तरह से ये हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है, जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो हमें खुद कुछ भी कोर्स, कोई भी टेक्निकल स्किल लेने के बाद में हमें अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए और खुद भी हम अपने पैरों पे खड़ा हों, और उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को अपने साथ में एम्प्लॉय भी करा, उनको भी हमने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो ये एक तरह से मतलब ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, जो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एक तरह से अपना काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको किसी की नौकरी करने की नीड नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है। मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के हमें शो करता हूँ, किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब मिलती है या गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए, आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जिसमें सेल या आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है। तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ठीक है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है। अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए, और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशंस के हैं, हायर क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है। तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। आप देखिए, कहीं भी JEE की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जहां भी JEE की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है। तो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सर, जो बीटेक में हाँ उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से, कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन PSU में जाना है, तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं, पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए, ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स हैं। होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है, मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में, इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई हुई है, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है। जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे सीएमपीडी आई है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, सीएमपीडीआई, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना, अलग अलग पूरे इंडिया में पीएसयू फैली हुई है। आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, पर इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास हैं, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नजर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई है, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है। हाँ, दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए अपना एनसीआर एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गावा की बात करते हैं तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज है, तो बहुत इजीली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती हैं। जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है, ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी, कहां से आपको पता चल पाए कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई हुई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर है या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ, जिसे हम कहते हैं कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी हैं जो आपको एक टाइप से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है, बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर एनसीआर में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है के बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज हैं। आप देखिए ये 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो हैं ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है। कहीं पर 500 वैकेंसीज हैं, कहीं 42 हैं, कहीं 21 है, कहीं 36 है, राइट। किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कोई फ्रेशर के लिए है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी प्राइवेट का नाम नहीं लिखा इसके अंदर, ये बताने के लिए आपको कि गवर्नमेंट में भी डिप्लोमाज की काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, बशर्ते अगर हम उसमें थोड़ा सा अवेयर हो उनके बारे में, ठीक है, और अवेयर होने के साथ साथ हम अप्लाई भी करें, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अप्लाई नहीं करते जॉब्स के लिए। आप मतलब मैं हम कई बच्चों को जानते हैं कि उनका एम तो है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट उनसे पूछे अगर भाई कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, कहता जी मैंने तो कभी फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया, फिर फॉर्म अप्लाई करता है तो वो तैयारी नहीं करता। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अवेयरनेस होना भी, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बातें आपको समझा दी कि क्या क्या डिप्लोमा में रहता है, और कुछ चीजें और भी हैं भी, जैसे जो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप प्रोफेशनल स्किल साथ साथ सीख जाते हैं, ठीक है भाई। आपने जो टेक्निकल जो भी आपने ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल आपने सीख लिया तो जॉब लेने में आसानी रहती है। स्किल्ड एम्प्लॉयज की डिमांड हमेशा से रही है इंडिया में स्पेशली, और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम में तो स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा अभी कोविड के बाद में, जैसे कोरोना का अटैक हुआ कोविड-19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे, जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल, और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इनटू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे जिसमें जापान था, यूएसए था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से, दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना, ठीक है। अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहाँ पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहां पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूं जो DMRC है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों एम्प्लॉयज ऐसे हैं DMRC के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं DMRC में, और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद। काफी वैकेंसीज निकलती है, आप तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है, क्योंकि DMRC ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है, बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था उसमें जब नई नई वैकेंसी निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो DMRC के अंदर लग गए, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे। और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है, तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं, तो अगर आपने 12th, 10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का, तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंटी हो जाता है, किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले 12th किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी, वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है। जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीट का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीट का पेपर होता है। हर स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो अपना एक एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में, और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है, भी आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा 3 साल के अंदर। अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीट कहते हैं, लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं, और आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होगा। तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं, फिर साल दो साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट। तो ये एक एक अच्छी आपके लिए वो हो जाता है, भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो ये भी एक स्कोप रहता है। और हर स्टेट में पेपर होता है, मैंने तो हरियाणा का आपको बताया जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही DTE केरला के अंदर होता है। वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है, एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था, मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं PSU की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ONGC, गेल, इन सब के बारे में बताया। देखिए उनमें क्या होता है ONGC में, गेल में, कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की तो बीटेक आप करते हैं, तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड, टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है, और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है तो वो आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिटर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते। जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर तो आप फॉरेन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत रहती है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करें।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना दो तीन पॉइंट ऐड था। टेंथ के पास, टेंथ पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, टेंथ पास
0: जी, जी सर जी बिल्कुल सर।
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में है, आपको ऑलरेडी चेन्नई में भी है, जैसे ज्वेलरी पर भी आपको डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। प्लस सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है टेंथ पास करके 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो टेंथ पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं, प्लस टू करके भी, जैसे इंडो डेनिश टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों टेंथ पास करके या प्लस टू पास आउट करके, टेंथ पास करके जाएंगे तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लस टू करके जाएंगे तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं। तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात यह है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है, ठीक है, वो पर एक आप स्कोप है, मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना आपने जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफी वाइड एरिया होता है।
1: कंट्री में भी सर आपने बताया भी, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड होती है डिप्लोमा के।
0: गोल्फ कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत सर। मेरा है कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहाँ पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, इंटरनल वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या? जैसे जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर के जो कंडक्ट जो जहाँ पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं।
0: क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं, एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं और सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं। जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो आपकी एडहॉक इन नेचर होती है, एक साल की, दो साल की, या जो टेम्परेरी पोस्ट होती है, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, बट एक्चुअल जो आपकी परमानेंट जॉब्स हैं जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है, टेंथ पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं यादें स्वाधीनता संघर्ष की, बातें राष्ट्र की पहचान हमारे अभिमान की।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

भारत हिंदुस्तान। हम भारतीयों के लिए विश्व शब्दकोश का ये सबसे महान शब्द है, जिसके ध्वनित होते ही मन गौरव से भर जाता है, श्रद्धा से झुक जाता है। यूं लगता है कि भारत इस धरती पर उजाले की किरण से लिखी एक अद्भुत कविता है, एक लुभावनी सी कहानी है, जिसकी रोशनी हर अंधेरे से लड़कर फिर जाग उठी। और भारत की इस महागाथा के उन 90 वर्षों की कहानी जो सन 1857 से 1947 के बीच से बहते हुए समय को कहती है, हर भारतीय के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कहानी अंग्रेजी राज के विरुद्ध जन गर्जना की है। ये कहानी है अनगिनत क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान की, आजादी के दीवानों के अद्भुत साहस और पराक्रम की। पराधीन भारत जिन पगडंडियों पर चलता हुआ, पथरीले रास्तों को सहता हुआ 15 अगस्त 1947 की गौरवपूर्ण तारीख तक पहुंचा, उस महामार्ग पर अनगिनत गाथाएं बिखरी पड़ी हैं। कैसी कैसी महान तस्वीरें हैं उस संघर्ष गाथा की। 1857 का महासमर, मंगल पांडेय की बगावती हुंकार, रानी लक्ष्मीबाई का अद्भुत पराक्रम, कमल और रोटी के बहाने एक विराट जन आंदोलन का उद्भव, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के इस नारे से जागती हुई भारत भूमि, गुलामी के अंधेरे के विरुद्ध महात्मा गांधी के स्वर से फूटता सत्य का प्रकाश, जो दुनिया को सिखा रहा था कि युद्ध बिना अस्त्र शस्त्र के अहिंसा के बल पर भी लड़े और जीते जा सकते हैं। इन्हीं अविस्मरणीय तस्वीरों में शामिल है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों हजार युवाओं की बुलंद आवाज में गूंजती मुकम्मल आजादी की मांग, कि जहां मानव द्वारा मानव का शोषण पूरी तरह से बंद हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आगे बढ़ती आजाद हिंद फौज और ब्रिटिश सरकार के समानांतर भारतीयों की सरकार, जंगल पर्वत शहर गांव देश परदेश, कहां नहीं पहुंची विद्रोह की चिंगारी, कहां नहीं गूंजा आजादी का महामंत्र वंदे मातरम। इसी कथा को श्रद्धापूर्वक बार बार बांचने का शुभ अवसर है आजादी का अमृत महोत्सव। 15 अगस्त सन 2022 को भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होंगे। इसके 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को आजादी के 75 वर्षों का ये जश्न शुरू हुआ साबरमती आश्रम से। आजादी के इस अमृत महोत्सव में स्वाधीनता के इतिहास से जुड़ी घटनाओं, स्थानों और अमर सेनानियों का स्मरण किया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव में शामिल है भारत के सांस्कृतिक गौरव की झलक और आधुनिक भारत की चमक, इंडिया एट 2047, यानी 25 वर्ष बाद के भारत का एक स्वप्न, एक विजन। अपनी आजादी के 75 साल को समारोहित करने का उद्देश्य यही है कि आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, हर मन का पर्व बने। तो आइए इस उत्सव को मनाते हुए हम भी गुनगुनाएं आजाद तराना।

ऊंचे आसमान में आजाद तिरंगा अपना कौमी झंडा फहराते हुए जनमन गौरव से भर जाता है। इन तीन रंगों से ही रचते हैं हम भारतीय भरा पूरा सा इंद्रधनुष। हमारे जीवन का हर रंग इन तीन रंगों में ही समाया हुआ है। देश की आन बान और शान है ये तिरंगा, हमारी पहचान है ये तिरंगा। राष्ट्रध्वज किसी भी देश के स्वतंत्र होने का संकेत होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमारे लिए ये अनिवार्य होगा कि हम भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य सभी जिनके लिए भारत एक घर है, एक ही ध्वज को मान्यता दें और उसके लिए मर मिटें। और आजादी के अनगिनत मतवालों ने इस पर अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। उन्होंने कितनी ही बार अलग अलग स्थानों पर अपना झंडा फहराकर बगावत का बिगुल बजाया, यूनियन जैक के समकक्ष भारत का झंडा फहराकर ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी। ये शंखनाद था स्वातंत्र्य समर का, ये उद्घोष था स्वराज का। हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे की भी एक विकास यात्रा है। अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने से पहले ये कई पड़ावों से गुजरा है। 7 अगस्त सन 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में जो झंडा फहराया गया, इसमें लाल, पीली और हरी आड़ी पट्टियां थीं। ऊपर 8 कमल, नीचे सूरज चांद और बीच में वंदे मातरम अंकित था। सन 1907 में भीकाजी कामा द्वारा बर्लिन में जो झंडा फहराया गया, वो भी पहले के ध्वज के समान ही था, सिवाय इसके कि इसकी सबसे ऊपर की पट्टी में केवल एक कमल था, बाकी 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। इसके बाद सन 1917 में डॉ एनी बिसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान जिस झंडे को फहराया था, उसमें 5 लाल और 4 हरी आड़ी पट्टियों पर सप्तऋषि के विन्यास में 7 तारे, ऊपर बाईं ओर यूनियन जैक और दाईं ओर अर्धचंद्र और सितारा था। इसके बाद सन 1921 में विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के एक युवक ने लाल और हरी पट्टी का एक झंडा गांधी जी को दिया। गांधी जी ने इसमें एक सफेद पट्टी और बीच में एक चलता हुआ चरखा जोड़ा। सन 1931 हमारे राष्ट्रध्वज के इतिहास का एक यादगार वर्ष है, जब तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये ध्वज हमारे राष्ट्रध्वज का पूर्वज कहा जा सकता है। केसरिया, सफेद और हरी आड़ी पट्टियां और बीच में चलता हुआ चरखा। और फिर बना हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा। केसरिया, सफेद और हरी आड़ी पट्टी और सफेद पट्टी के बीच गहरे नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र। इस झंडे को आजादी के कुछ दिन पूर्व ही 22 जुलाई सन 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया और आज शांति और सत्य जैसे जीवन मूल्यों को संजोए भारत की शक्ति और साहस, देश की उर्वरता और विकास का उद्घोष करता हमारा राष्ट्रध्वज हमारी पहचान, हमारा अभिमान है।

आजादी एक स्वाभाविक भाव है जो मनुष्यों में ही नहीं जीव जंतुओं और वनस्पतियों तक में होता है। बीज को धरती में दबा दें तो वो उसे फाड़कर कोंपल बनकर धूप हवा की तलाश में बाहर झांकने लगता है। जड़ें गमलों मकानों किलों पहाड़ों तक को तोड़ फोड़ डालती हैं। फिर मनुष्य तो मनुष्य है, अपनी जमीन अपने आसमान को लेकर उसका अंतर्मन हमेशा भीगा रहता है। अपने इतिहास अपने दर्शन अपनी संस्कृति से उसका आत्मिक जुड़ाव होता है। और तब राष्ट्र चेतना जागृत हो कवि के शब्दों में कहती है कि भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द है, जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। यूं अपने देश के गौरव को जन मन गाता रहा है और राष्ट्रगान किसी भी देश की आत्मा का संगीत होता है। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1911 में एक कविता लिखी थी जिसके 5 पद थे। इसी कविता के पहले पद को हमने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। जन गण मन की रचना बांग्ला भाषा में हुई जिसमें संस्कृत के शब्द भी शामिल हैं। गुरुदेव ने राष्ट्रगान के बोल और धुन को आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में तैयार किया था। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में इस गीत को पहली बार गाया गया और 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से इसे राष्ट्रगान के तौर पर अपना लिया गया। राष्ट्रगान के साथ साथ हमारा एक राष्ट्रगीत भी है, जिस गीत को मंत्र की तरह गाते हुए अनगिनत क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए। वही गीत वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत बना, जिसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम की अवधारणा बंकिम चंद्र चटर्जी को तब सूझी जब अंग्रेजों ने ब्रिटेन का राष्ट्रगान गॉड सेव द क्वीन को गाना अनिवार्य कर दिया। 7 नवंबर सन 1875 को बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की थी। वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। सन 1882 में जब उनका उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ तब ये गीत उसमें शामिल कर लिया गया। लिखे जाने के बाद जदुनाथ भट्टाचार्य ने इसकी धुन बनाई थी। तब बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि मैं इसकी लोकप्रियता देखने के लिए चाहे जीवित न रहूं, लेकिन ये गीत हर भारतीय द्वारा गाया जाएगा। और उनका ये कथन अक्षरशः सत्य साबित हुआ। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लोगों में जोश भरने के लिए ये गीत गाया जाने लगा। आगे चलकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसकी धुन बनाई और सन 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया। इसके बाद सन 1901 में इसे एक अन्य अधिवेशन में चरण दास ने गाया और सन 1905 में बनारस अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी ने जब इसे गाया तो ये अत्यंत सराहा गया। ये गीत इस कदर लोकप्रिय हो गया कि ब्रिटिश सत्ता इस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने लगी। वंदे मातरम जैसे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत का बीज मंत्र बन गया। ये एक ऐसा कालजयी गीत बन गया जिसकी लोकप्रियता आज भी वैसी ही बनी हुई है। अलग अलग राग रागिनियों में ये गीत स्वरबद्ध हुआ। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने भी राग काफी में इसकी धुन बनाई और लाहौर में इसे गाया था। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय स्वाधीनता संग्राम में वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करते हुए इसे भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी अपना वक्तव्य पढ़ा, जिसे सहर्ष स्वीकार किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हम नमन करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के सभी अमर बलिदानियों को और वंदन करते हैं अपनी मातृभूमि का।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

एपिसोड्स लिख दिए, मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं, और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है, तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें, और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं, रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक गरीब परिवार में जन्मा अब्दुल कलाम। खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अब्दुल कलाम कभी अखबार बांटता या कभी कोई दूसरा काम करता। वो पढ़ना चाहता था, लेकिन दिलचस्पी विज्ञान में थी। किसी तरह तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में स्नातक परीक्षा पास की। हालात साथ नहीं दे रहे थे, मगर मन ऊंचे आसमान में छलांगे लगा रहा था। चेन्नई गए और अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ा। इसके बाद DRDO ज्वाइन किया और वैज्ञानिक पारी शुरू की। जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में काफी कुछ सीखा। सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर बनाया। 1969 में अब्दुल कलाम ने भारतीय उपग्रह संस्थान केंद्र यानी इसरो में काम शुरू कर दिया। उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट SLV-3 बनाने का काम मिला और कलाम ने कमाल कर दिखाया। अब्दुल कलाम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 1980 में रोहिणी 1 लॉन्च करने के बाद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर अब्दुल कलाम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 1980 में रोहिणी 1 लॉन्च करने के बाद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। और संयोग देखिए, 80 के दशक में आर वेंकटरमन रक्षा मंत्री थे और अब्दुल कलाम उनके वैज्ञानिक सलाहकार। दोनों ही आगे जाकर देश के राष्ट्रपति बने। वेंकटरमन के जमाने में उन्हें एकदम नई मिसाइल तकनीक पर काम करने को कहा गया। फिर तो भारत की अग्नि और पृथ्वी श्रृंखलाओं ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को चौंका दिया। वो भारत के मिसाइल मैन बन चुके थे। उन्हें पहले पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर उनकी पारी बेमिसाल थी। पोखरण में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण उनकी अगुवाई में हुआ और एक बार फिर दुनिया ने भारत की परमाणु क्षमता का लोहा माना। ९७७ का साल अब्दुल कलाम की सेवाओं के मूल्यांकन का साल था। उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला और शायद यही वजह है कि 2002 में उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित हुआ तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया। 25 जुलाई 2002 को वो देश के नए राष्ट्रपति बन चुके थे। एक बेहद सक्रिय राष्ट्रपति के तौर पर उनको याद किया जाता है। राष्ट्रपति भवन को उन्होंने इको फ्रेंडली बनाया और अपने आप को बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान दे रहे थे, तभी अचानक दिल का दौरा पड़ा और इस महानायक ने हमसे हमेशा के लिए विदाई ले ली।

मैं शुक्रिया अदा करती हूँ गीता मैम और रेड इंडिया का, क्योंकि मुझे ये फील्ड के दौरान ही पता चला था कि यहाँ पर एक सेंटर है, और मैंने उस सेंटर में जाकर कंप्यूटर सीखा, और उसके बाद मैंने दिल्ली महिला आयोग में जॉब ज्वाइन की, और जो मैं दीपशिखा में ही दूसरे प्रोजेक्ट में काम करती हूँ दिल्ली महिला आयोग में, वो सब संभव हो पाएगा आपकी वजह से। तमाम थैंक यू।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

वो जो जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त रूप से साहसी नहीं है, वो जीवन में कुछ भी पूरा नहीं कर सकता। अप्रतिम साहस से भरा हुआ ये कथन था 1942 की रानी झांसी कही जाने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न अरुणा आसफ अली का। इसी साहस से भरी अरुणा आसफ अली 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का झंडा फहराती हैं। देश भर के युवाओं में जोश भर जाता है, करो या मरो का नारा गूंज उठता है और शुरू होता है ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन। वो आंदोलन जिसने अंततः देश को आजादी का तोहफा दिया। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को तत्कालीन ब्रिटिश पंजाब यानी आज के हरियाणा के कालका नामक स्थान में एक सम्मानित बंगाली परिवार में हुआ था। नाम रखा गया अरुणा गांगुली। उनके पिता का नाम उपेंद्रनाथ गांगुली और माता का नाम अंबालिका देवी था। पिता उपेंद्रनाथ गांगुली प्रखर विचारों के पत्रकार थे। अरुणा आसफ अली ने लाहौर और नैनीताल के पब्लिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और पढ़ाई लिखाई में तन्मय रहने वाली बालिका थी। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद अरुणा जी गोखले मेमोरियल स्कूल कोलकाता में अध्यापिका के तौर पर काम करने लगी। इसी बीच उनकी मुलाकात दिल्ली के आसफ अली से हुई। आसफ अली एक सुविख्यात वकील और कांग्रेस के नेता थे। ये वही आसफ अली हैं जिन्होंने असेंबली में बम फोड़ने के बाद गिरफ्तार हुए अमर शहीद सरदार भगत सिंह का मुकदमा लड़ा था। अरुणा आसफ अली ने माता पिता के विरोध के बावजूद सन 1928 में 19 वर्ष की आयु में आसफ अली से शादी की और अरुणा गांगुली से अरुणा आसफ अली बन गईं। इस विवाह ने उनके जीवन की दिशा बदलकर रख दी। वे राजनीति में रुचि लेने लगीं। 1930 के नमक सत्याग्रह के समय ही वो अखिल भारतीय स्तर की नेत्री बन गई थीं। वो जुलूसों की अगुवाई करतीं, सभाओं में जोशीले भाषण देतीं। उनकी इन गतिविधियों को देखकर दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने उन्हें चेतावनी भी दी। पर अरुणा जी कब डरने वाली थीं? वो आगे बढ़ती रहीं। परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। गांधी इरविन समझौते के बाद वो जेल से छूटी तो सन 1932 में फिर से सत्याग्रह करके जेल चली गईं। पहली बार भी उनकी रिहाई अन्य नेताओं के साथ वैसे ही नहीं हो गई थी, बल्कि जनमत के दबाव में सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा था और इस बार भी सजा के साथ जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर पुलिस उनके घर का सारा कीमती सामान उठाकर ले गई। तिहाड़ जेल में कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। तब जेल अधिकारियों ने उनकी मांगे तो मानी, पर उन्हें दिल्ली जेल से हटाकर अंबाला की महिला जेल में भेज दिया गया और वहां उन्हें अकेले ही रखा गया। देश की आजादी उनका एकमात्र स्वप्न था, जिसे पूरा करने हेतु वो कृत संकल्प थीं।

अरुणा आसफ अली ने सन 1930 और 1932 के साथ ही सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय भी जेल यात्रा की और अब साल आया 1942 का। अंग्रेजों का अत्याचार भारतीयों के भीतर ज्वालामुखी बनकर उबल रहा था और उधर द्वितीय विश्व युद्ध जारी था। इसी समय भारत से सहयोग की उम्मीद लिए क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन इस मिशन द्वारा दिखाए गए गुलाबी सपनों को गांधी जी ने खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों से सभी नेताओं को धक्का पहुंचा और गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी और देशवासियों को मंत्र दिया, करो या मरो। इस अधिवेशन में अरुणा आसफ अली भी अपने पति के साथ शामिल हुई थीं। 8 अगस्त को रात 10:30 बजे ये ऐतिहासिक अधिवेशन समाप्त हुआ। सभी लोग ग्वालिया टैंक से अपने अपने ठिकानों पर पहुंचे तो लगभग आधी रात व्यतीत हो चुकी थी। चारपाइयों पर लेटते लेटते लगभग रात के 2 बज गए। ये अफवाह तो कई दिनों से उड़ रही थी कि यदि कोई ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया गया जो सरकार को अप्रिय हुआ तो सभी नेता शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लेकिन किसी को ये अनुमान नहीं था कि सरकार इतनी जल्दी गिरफ्तारियां करेगी। अभी सुबह के 5 भी नहीं बजे थे कि बिड़ला हाउस को, जिसमें गांधी जी ठहरे थे, पुलिस ने घेर लिया। दरवाजा खोलने में जरा सी देर हुई तो पुलिस के सिपाही दीवारें कूद फांद कर अंदर पहुंच गए और महात्मा गांधी के निवास स्थान पर घेरा डाल दिया। तब तक गांधी जी उठकर बकरी के दूध और संतरे के रस का नाश्ता कर चुके थे। इतने में ही पुलिस पहुंच गई। गांधी जी तो जैसे तैयार ही थे। उन्होंने वैष्णव जन तो तीर्णे कहिए तथा अपने कुछ अन्य प्रिय भजन सुने और फिर पुलिस के साथ चल दिए। इसके बाद गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया। करीब करीब आंदोलन का पूरा नेतृत्व ही जेल में चला गया। ऐसे समय में अरुणा आसफ अली जैसे साहसी देशभक्तों ने आंदोलन की कमान संभाली। 9 अगस्त सन 1942 को अरुणा आसफ अली ने अंग्रेजों के सभी इंतजाम को धता बताते हुए मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहरा दिया। इस तरह तमाम नेताओं की गिरफ्तारियों के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। पूरे देश में इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। कोई स्थिर नेतृत्व न होने के बावजूद देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ कड़े विरोध प्रदर्शन हुए। अरुणा आसफ अली ने जयप्रकाश नारायण और डॉ राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं के साथ मिलकर इस आंदोलन में एक नया जोश भर दिया। वो भारत छोड़ो आंदोलन में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गईं। उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश जारी कर दिया गया था। सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 5,000 रूपये के इनाम की घोषणा भी की, लेकिन बात बनी नहीं। अरुणा आसफ अली का मानना था कि जेल के बाहर रहकर ही इस आंदोलन को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, अतः गिरफ्तारी से बचने के लिए वो भूमिगत हो गईं और मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आदि स्थानों में घूम घूम कर उन्होंने लोगों में नव जागृति लाने का प्रयास किया। इस बीच अरुणा आसफ अली की तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांधी जी ने उन्हें पत्र लिखकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन वो भूमिगत ही रहीं और आंदोलन को हवा देती रहीं। मुंबई के जिस ग्वालिया टैंक मैदान में उन्होंने झंडा फहराया था, उसी मैदान को आज हम गौरव के साथ अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं।

1942 से 1946 तक अरुणा आसफ अली भूमिगत रहकर अपने काम में जुटी रहीं। उनकी संपत्ति को जब्त करके बेच दिया गया, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। 26 जनवरी 1946 को जब उनकी गिरफ्तारी का वारंट रद्द हुआ, तब वो भूमिगत जीवन से बाहर आईं। अंततः 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ। अनगिनत क्रांतिकारियों के साथ साथ अरुणा जी का स्वप्न भी साकार हुआ। 1947 में वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुईं। 1948 में वो सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुईं और 1950 में लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी बनाकर वो मजदूर आंदोलन में जी जान से जुट गईं। अरुणा आसफ अली ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सन 1958 में वो दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर चुनी गईं। दिल्ली के विकास, सफाई और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में उन्होंने अतुलनीय कार्य किए। अरुणा आसफ अली इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी, ऑल इंडिया पीस काउंसलिंग तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन जैसी संस्थाओं के लिए भी बड़ी लगन, निष्ठा, ईमानदारी और सक्रियता से कार्य किया। अरुणा आसफ अली एक पत्रकार और लेखिका के तौर पर भी याद की जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ अ नेशन, प्राइवेट फेस ऑफ पब्लिक पर्सन, रिसर्च ऑफ इंडियन वुमेन आदि। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इनकलाब नाम की मासिक पत्रिका में काम भी किया। मार्च 1944 में इनकलाब पत्र में उन्होंने लिखा था कि आजादी की लड़ाई के लिए हिंसा अहिंसा की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। क्रांति का ये समय बहस में खोने का नहीं है। मैं चाहती हूं कि इस समय देश का हर नागरिक अपने ढंग से क्रांति का सिपाही बने। उनके व्यक्तित्व पर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओं के विचारों का गहरा प्रभाव था। जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर उन्होंने दैनिक समाचार पत्र पैट्रियाट और साप्ताहिक समाचार पत्र लिंक का प्रकाशन भी किया। इन पत्रों में समय समय पर प्रकाशित महत्वपूर्ण संपादकीय लेखों, इनमें और अन्य लिखे उनके विचारपूर्ण लेखों तथा उनके भाषणों के कई संग्रह पुस्तक के रूप में प्रकाशित हैं। पहले आजादी के लिए और फिर देश निर्माण और सामाजिक पिछड़ेपन से मुक्ति के लिए अपने ढंग से निरंतर लड़ाई लड़ने वाली अरुणा आसफ अली ने 29 जुलाई सन 1996 को 87 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। देश और समाज के लिए किए उनके कार्यों को देखते हुए सन 1975 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार, 1991 में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1992 में पद्म विभूषण और सन 1997 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। स्वाधीनता संग्राम में उनकी साहसी भूमिगत मोर्चाबंदी के लिए उन्हें 1942 की रानी झांसी की संज्ञा दी गई। साथ ही आजाद भारत ने उन्हें सम्मान देते हुए बहुत प्यार से ग्रैंड ओल्ड लेडी कहकर भी पुकारा। ऐसी महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन।

0: आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।
1: ये वतन का
2: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
3: माय नेम इज नौशाबा अंसारी, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 10th है और मैंने हॉस्पिटल में जॉब की है। उसके बाद मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। फिर मैंने जॉब की 2 साल आगरा में ही हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, मेरा 1.5 साल का बेटा है। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो यहाँ पर मैंने TG का एंड NTT का कोर्स किया, कर रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ आकर के, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना फ्यूचर बना सकती हूँ, अपने बेटे का भी फ्यूचर बना सकती हूँ। मेरे इन-लॉज भी एग्री हैं, मेरे हस्बैंड भी एग्री हैं यहाँ के लिए। यहाँ पर अभी तक भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है NGO के सिवा, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर और भी खुलने चाहिए ऐसे, जो उससे सभी लेडीज़ को, लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिले, जिनके फादर मदर निकलने नहीं देते घर से। यहाँ अच्छा लगता है, टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ के सारे।
4: हेलो, मेरा नाम दीपा है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं मैरिड हूँ। मेरा 1 बेटा है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं 12th तक की पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर के फॉर्म भी भरे थे, पर मैं 6 मंथ का ही कोर्स कर पाई कि बीच में मेरी शादी आ गई, जिसके कारण मैं आगे की पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाई। शादी के 1.5 साल बाद मेरा बेटा हुआ। जैसे बेटे होने के बाद तो जैसे मैं डिप्रेशन में रहने लगी, उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो मैंने अपने इन लॉज को कन्वेंस करने की कोशिश की, पर वो राजी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड को मनाने में भी काफ़ी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा अभी 1.5 साल का ही हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो भी मान गए। उसके बाद मैं यहाँ आई तो मैंने NTT का कोर्स किया, उसके साथ साथ ही मुझे वहाँ पे सर्वे करने आए, तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी पता चला। फिर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर का कोर्स भी किया, उससे मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। उसके रीड इंडिया आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, मुझे काफ़ी कम महसूस होता था और मैं अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस करती थी। मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं शादी के बाद और बच्चों के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, उसमें भी मुझे काफ़ी ये लगा कि मेरा डिप्रेशन दूर हो रहा है, खुल के सांस ले पा रही थी मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे काम अपने आप से खुद कर सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे काफ़ी काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बिल पे करना, टिकट करना और भी काफ़ी बैंक में के काम सभी घर पे हो जाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद से अपना काम करके, या फिर भाई पहले बहुत बहुत देर तक धूप में लाइन में जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे ही अपना सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया।
5: मेरा नाम रिया है, मैं 10th में स्टडी करती हूँ और मेरी क्लास बीच में अभी कुछ दिनों से बंद हो गई थी, क्लास आना बंद हो गया था मेरा, और मेरे घर वाले एग्री नहीं थे, लेकिन मैम ने कॉल करके समझाया, फिर मेरे घर वाले एग्री हुए, मेरे को भेजा। मैम भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो भी कोर्स आता है, मैं पहले टीचर ट्रेनिंग भी कर रही थी, फिर उसके बाद अब मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया है। ये महसूस किया मैंने कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ फ्यूचर में बनना, अपने करियर में कुछ करना, उससे ये हुआ है कि हाँ, मैं बिल्कुल, मेरे को वो हो गया है, घर वालों का सपोर्ट हो गया है, टीचर्स ने समझाया था, कॉल की थी कि हाँ ये कर सकती है कुछ।
1: नमस्कार, आज हम मेवात की बात करने जा रहे हैं और मेवात में जो रीड इंडिया का प्रयोग है उसका बात करने जा रहे हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ है रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर गीता मल्होत्रा जी। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेवात। मेवात इज ए लोकेलिटी वेयर मेवातीज मोस्टली मुस्लिम्स आर लिविंग। This locality is just 35 kilometers away from Gurgaon, the mega city, and 50 kilometers away from Delhi, in the most developed, growing industrial state of Haryana. And if you go to that state, people are in a pathetic conditions. Most of the truck drivers, the maximum truck drivers that we have, are from Mewat. The rate of illiteracy is very high. Women are not allowed to go to the school and do the proper schooling. The situation of male literacy is also not very prominent. There is a complete sense of ignorance. People don't know how to do, what to do. And there is an inherent history of Mewat. They were the warriors. They fought against the Mughals. And Mughals didn't take care of them. They thought that they are the warriors, they are the looters, they are the nefarious people, they are not the good people, so they were always sidelined by the Mughals. Then came the British. They were the real freedom fighters. You can find many villages in Mewat where in one mound 30-35 men were buried because they were the freedom fighters. In 1857 and also in the later phase of Indian freedom movement, if the Mewat is being properly studied, explored, if the historians are taking interest into it, then you will realize the role of Mewat in the freedom struggles. There are many people in Mewat who often call me and say, Misra Sahab, बहुत सारी चीजें खत्म हो रही है, आप उनके बारे में कुछ कर लो, गीता मैम कुछ कर ले, नहीं तो सारे चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आप क्या करोगे। एंड बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस वी डू व्हाट एवर मैक्सिमम वी कैन डू इन दैट मेवात। रीड इंडिया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर गीता मल्होत्रा इंचर्ड into that locality where women were not even allowed to talk with the women. The every person outsider was kind of alien for them. They were not allowed, even the male were not allowed to have, you know, proper interactions with them. And with this situation, Dr. Gita Malhotra with her team went there and they have two things to convince them. Culture matters, number one, and understand that, respect that nativity, the native cultures. With these two things, they motivated the people. They said, we are not outsiders. They ate together. They talked together. They could somehow manage to convince them that we are not alien. We are an insiders. We have come here with the message to improve your lifestyle, the way you want to improve yourself. And that was the power of Dr. Gita Malhotra and the entire team of Read India and the Read Global. They changed the world. How do they change the world? That is also a very interesting, Dr. Gita ji will tell you. But I must tell you, after 1 year and so, they happily agreed to donate the land and they themselves constructed the library. Read India paid the cost of the library, not the land. And some of them also contributed significantly, nominal, but that contribution was significant. And then the library was made, women started reading. Now the women which were motivated by Read India, they are the representatives of the Gram Panchayat and they are powerful women. And the new beginning was made. and prevalence of rickettsia can easily be found in the locality of Mewat. Mewat is now divided into two districts. Initially, it was a Mewat district. There were Firozpur, Jhirka, Noh, Tavro, Punahana, Hathin and Nagina. Now the Hathin part is in Palwal district, and remaining is in the Mewat district. So before I go to invite Dr. Geeta Malhotra ji to talk about her experience and experience of Read India, her innovations and everything that she did. Now, without any delay, I would request Dr. Geeta Malhotra, the country director of Read India, the visionary, the leader, the master. She is a proper leader who works 24/7. And this is, I remember one thing, I am not exaggerating. I have been feeling her commitment. I am the witness from last 12 years, what she has been doing and how she has been motivating, energizing, emotionally evaporating the people who have been working with her. So, Geeta ji, aapka bahut bahut swagat hai. Humne chaha tha ki log jo hai, wo dekh le ki aap kaise karti hai. After presence, I have seen people stitching their vision, decision and future. I have seen women reading and writing. I have seen women, using the library. I have seen people using the computer. I have seen women reading. So, this is a new discovery that you have created. Please.
6: Thank you, Dr. Mishra, for such a elaborate description, which I don't need at all. But I am so thankful to you for giving this gesture to me. That I am very simple, very introvert person, but I do believe in doing. I do believe in action. That's what you have narrated. Thank you so much. Mera jo soch hai, aap mujhe apne 5 minute ki explanation mein 2012 mein le gaye mujhe. 2012 में जब मैं रीड ग्लोबल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रीड ग्लोबल के साथ बात कर रही थी 2012-14 कुछ ऐसे ही है, मुझे पक्का याद नहीं है, बट हाँ 7 साल पहले की बात है. मुझसे टीना शाबिका हमारी उस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी. शी वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट टाइम एंड द ईयर शी जॉइंड शी केम टू चाइसा विलेज टू डू द स्टोन लिंग सेरेमनी ऑफ द कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर. शी केम इन मे, इट वॉज वेरी हॉट एंड आई टुक हर टू चाइसा फॉर स्टोन लिंग सेरेमनी. But before stone laying ceremony, she asked me that Geeta, one of my very close friend settled in Singapore would like to dedicate one of the library in her mother's name. Her mother was live. She's live now also. But she said, "Ki I would like to build a community library, but let me know the area, the geography, who need the most." That time back home, I was interacting with Mewat people, the stakeholders there, and Asif Ali, who was the sarpanch that time, came to my house in Gurgaon and said that Geeta ji, we need the most. Hamari community ko bahut zarurat hai. Agar aap wahan aake study kare, जो डॉक्टर मिश्रा ने स्टडी करी, तो आपको पता चलेगा कि कितनी जरूरत है. तो आई वॉज कन्विंस्ड. आई विजिटेड द एरिया. आई सैट विद हिम. आई सैट विद अदर मेवाती स्टेक होल्डर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हाउस, द लैंड. आई वॉज द ओनली वुमेन. ऑल वर मैन. बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट that I have to come back again in this area. I have to work in that area. Mujhe wahi kaam karna hai. Mujhe unhi logon ke saath kaam karna hai. Because one thing which I experienced, because I am a great observer for culture and attitude of the people, they gave me lot of respect. Lot of respect. First time the woman came in one room, they gathered. They did not come out where I was sitting with the stakeholders. They told me later on that the women are waiting inside the room. When I went inside, there were more than 100 women sitting in just in each other's on each other's lap, and they welcomed me. They said, "Hum aapko dil se swagat karte hain aur aapka bahut bahut welcome hai. Aap hamare liye, hamare bachiyon ke liye, hamare bachchon ke liye, hamare samuday ke liye kuch kariye." That changed my mind 100%. I said, whatever challenging it would be, but I have selected a community. Next very day, I called my executive director in US and said, I have found a community where I would like to set up a community library and resource center. Then I started working there. And that Singapore friend of my executive director committed that she will come on the inauguration of the building, which was great emotional attachment with the building, which I'm going to show you the inauguration also. Then we did the stone laying ceremony. Asif Ali had a house on the main road of Hathin block in Chansa village. He said, ma'am, the whole land, whole building is for you. You decide what you want to take. Then I said, okay, main road part I will not take because the children will come. It will be risky for them to cross the road and come through the main road because it was part of the highway. I said, give me the backyard. And he divided completely half of his land. उन्होंने वो प्रोग्राम देख भी रहे होंगे जरूरी, मैंने उनको लिंक भेजा है. एंड ही वो इतने जेनरस थे, मैं ये एक्नॉलेजमेंट हिंदी में बोलना चाह रही हूँ उनके लिए. वो इतने जेनरस थे, उन्होंने अपने प्लॉट की जो लंबाई थी उसको बिल्कुल आधा करके उसमें दीवार बना दी और बोला, ये पीछे वाला लैंड आपका, आप जो मर्जी करिए, आप बिल्डिंग आप सेंटर बनाइए, मेरी 100% सपोर्ट आपके साथ है. तो दैट वाज द कमिटमेंट ही गेव मी एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट एंड वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन एरिया. मैं मिस्टर आर एस दलाल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी इस फोरम पे, क्योंकि he was the one who encouraged. He is the retired police commissioner of Haryana. When before the building was inaugurated, I went to him and I said, sir, आपके एरिया में हमने एक कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर बनाया है और मैं आपको इन्वाइट करने आई हूँ कि आप उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करिए. एंड ही वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी और उन्होंने बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया और दैट वॉज द जर्नी वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड दैट वॉज ग्रेट ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड फॉर अस बिकॉज एट द बैक ऑफ अस उनका हाथ था, उनका आशीर्वाद था, उनकी सपोर्ट थी और आज तक हर रोज जो एक मैसेज वो नहीं भेज लेते हमें एनकरेजमेंट का, वो आराम से नहीं बैठते हैं. तो मैं उनकी एसोसिएशन को यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहती हूँ. और उन्होंने खाली हथीन ब्लॉक में हमारे सेंटर को इनॉग्रेट नहीं किया, हरियाणा में हमने जितने भी सेंटर बनाए हैं उन्होंने उनको इनॉग्रेट किया है, क्योंकि वो दिल से बोलते हैं, दिल से वो रीड को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ग्रास रूट्स की के साथ जुड़ी हुई एक संस्था है जो काम करती है और लोगों को साथ लेके चलती है, लोगों के दिलों तक पहुंचती है अपने कार्यक्रम से, ये वो बहुत अच्छे से जान गए हैं। तो डॉक्टर मिश्रा अलोंग विद यू आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज मिस्टर आर एस दलाल ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज ही सपोर्टेड अस अ लॉट एंड टिल टुडे ही इज सपोर्टिंग अस। तो आपने लॉन्च में
1: He's a bubbling star and energized, you know, he's an energizer. He's emotionally charged. He makes you work and work for the community. That is the power that we have learned from him. He has donated his entire haveli for the Reed activities, you know.
6: So, Jhajjar, उन्होंने कैसे हमें अपनी पूरी हवेली दे दी कि गीता जी एक सेंटर मेरी कम्युनिटी के लिए भी बना दीजिए. तो दैट इज he extended to us and till now he is working towards making that Jhajjar village, Mehndipur village, the Bodha village, a beautiful village where one can go and even, you know, spend days together. The community is so, you know, welcoming, and the plants, the gardens he has created there, it's worth visiting that place also. तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि रीड इंडिया के जितने भी सेंटर हैं वो कम्युनिटी टूरिज्म को भी सपोर्ट करते हैं बिकॉज होम स्टेज आर वेलकम देयर बाय द कम्युनिटीज एंड वी ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट पीपल कम देयर एंड होम स्टे तो है ही है पर जो खाना वो लोग हमें परोसते हैं, जो खाना हमें वो खिलाते हैं घर में बिठा के, घर में फ्रेश खाना कुक करके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी वेलकमिंग आई शुड से दैट। और आसिफ अली जी के घर में तो मैंने कम से कम 100 बारी खाना खाया होगा। उनके घर में उनकी वाइफ को मैं नहीं मिल पाती थी पर उनके ड्राइंग रूम में बैठ के खाना जरूर खाती थी, इतना तो मैं कह सकती। और मैं वेजिटेरियन थी और उनके घर में तो नॉनवेज इट्स अ कल्चर देयर, आई शुड से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर। बट व्हेन सपोज टू गो विद माय टीम स्मिता राय, नाहिद जुबेर एंड अदर्स, ही मेड इट अ पॉइंट कि दो डिशेस तो वेजिटेरियन होनी ही हैं क्योंकि स्मिता और मैं दोनों ही वेजिटेरियन थे। तो ये हमारी बिगनिंग थी मेवात में चाइसा के सेंटर के साथ। और अभी डॉक्टर मिश्रा यू कैन से समथिंग अबाउट द बेसलाइन।
1: जब आपने मुझे बोला कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है तो मेरी एक आईएएस फ्रेंड हुआ करती थी डॉक्टर निरुपमा अनुपमा, तो जो डॉक्टर अनुपमा थी शी वॉज एन आईएएस ऑफिसर और शी वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मेवात डेवलपमेंट एजेंसी व्हाट यू कॉल इट MDA। और उस समय बाद में जो भारत के उपराष्ट्रपति बने अंसारी साहब, उनकी पत्नी भी मेवात में कुछ काम करना चाह रही थी। सी ऑल्सो टोल्ड मी कि डॉक्टर मिश्रा लेट अस गो टू मेवात एंड डू समथिंग देयर। मैं दोनों के साथ मेवात गया और मैं आपको और अपने दर्शकों को बहुत ही विनम्रता और निष्ठा पूर्वक ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे हिम्मत नहीं हुआ मेवात में काम करने का। लेकिन जब डॉक्टर गीता जी हमको बोली कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है तो पता नहीं मुझे कहाँ से एनर्जी मिली और मैंने कहा कि मैम लेट अस वर्क देयर। और हम वहां गए, जब हम वहां गए तो मैं एक महिला से मिला और वो महिला अनाज को हिला रही थी। उस महिला के साथ उसके 17 बच्चे थे जो फोटोग्राफ मेरे पास है। तो और And she was expecting one more baby. उसके बाद मैंने देखा वहां का सिचुएशन, वहां की गंदगी देखी, वहां का बहुत

0: दूध वाला होता है जिसको दूधिया कहते हैं, उनसे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनके दूध को बहुत ही थ्रो अवे प्राइसेस में खरीदते थे। हमने सारा रिपोर्ट इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो गीताजी ने कहा कि एक प्रपोजल आया, और वो प्रपोजल 2011 में ही आ गया था मैं, और 12 में वो बन गया था। तो वो प्रपोजल आया और गीताजी वर्क डे एंड नाइट, वो एक विजन ही कह सकता है कि अगर कोई दूसरा कंट्री डायरेक्टर होता तो रोड के साइड का ही जगह ले लेता। लेकिन गीताजी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि ये इन्होंने कहा कि हमें रोड के साइड का जमीन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? The mother was hidden inside her and the mother said, look, बच्चे एक्सीडेंट में कुछ हो सकता है, बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो पीछे का वहां भी रास्ता है, पक्की रास्ता हो गया है लिया, और वहां पे काम शुरू करने लगे। बाद में धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिला और लोगों ने ये महसूस किया कि रीड जो है, ये रीड कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, कोई धर्मांतरण की संस्था नहीं है, कोई पॉकेट की संस्था नहीं है, यह कमिटमेंट की संस्था है। इस संस्था में ज्यादातर महिलाएं हैं जो बहुत मातृस्नेह के भाव से काम करना चाहती हैं। और वैसा ही जिस तरह से ये कहने की तो जरूरत है कि गीता जी ने बहुत ही मातृभाव से अपनत्व को लगाते हुए वहां पर काम करना शुरू किया, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। और उससे हमें ये लगता है कि इफ यू वर्क ऑनेस्टली, नो मैटर आप दुनिया के किसी भाग में काम करें, लोग आपको उसी समर्पण से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको गिव बैक आपको मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा। वो जो कंसेप्ट था वो गजब कंसेप्ट था और वो आपने देखा।
1: ओवर टू स्मिता। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर मिश्रा। एज राइटी सेड, इट्स अ वेरी वेरी रिच कल्चर इन दिस कम्युनिटी, वेरी वेरी वार्म वेलकमिंग कम्युनिटी। As shared in the PPT, there are many, many programs that we have done in partnership with this community. We've done the setting up of community library and resource center. There are many, many women who've been trained on livelihood skills. Then we've had trainings on as advanced computer skilling. This was done through Adobe IT skilling program for youth. Then since past 4 or 5 years, we have been doing Skills to Succeed program in this area and skilling women on enhancing their livelihood skills. We are having programs for mother and girl child literacy in this community. So each household have one mother and her girl child get coming to the center and walking towards a more literate future. So this is beautiful Mewat for us. As far as culture is concerned, they have very beautiful crafts such as they make changeris, the baskets made out of moonj grass. This grass is eco-friendly and it helps in keeping. They normally use it to store food. Like, we have covered more than 12 villages as Kamlesh is rightly.
2: Thank you, Smita. जैसा कि स्मिता ने कहा, लिटरेसी से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके महिलाओं की पढ़ाई तक हमने काम किया, महिलाओं को हमने सक्षम बनाया, उनकी जो कल्चरल स्किल्स थी उसको एनहेंस किया। और कल्चरल स्किल्स को एनहेंस करने के लिए अब रीड तो बहुत छोटी सी संस्था है, तो हमने सृष्टि स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएट्स मंगवाए जो डिजाइनिंग ग्रेजुएट्स थे, और उन्होंने मेवात में लाइब्रेरी में रह के रात को वहीं बिस्तर बिछा के सोना और महिलाओं के साथ चर्चा करनी और महिलाओं के जो हुनर था, जो छिपा हुआ हुनर था, उसको उभारा। और उन्होंने इतने सुंदर प्रोडक्ट्स बनाए, जो दरी था और तापर से उन्होंने बास्केट्स और बहुत सारे हमारे गिफ्ट आइटम्स बनाए जो हमने कॉर्पोरेट्स को गिफ्ट दिए, बिकॉज हमें फंड रेज भी करना था और मेवात के लिए फंडिंग लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज।

0: था हमारे लिए, पर मैं उन डोनर्स का भी शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को, हमारे कमिटमेंट को रिकग्नाइज किया, और सीरीज ऑफ डोनर्स आए जिन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं मेवात में काम करने के लिए. तो ये एक मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज वर्क स्पीक्स वॉल्यूम. जब हमने काम किया, डोनर्स ने अप्रिशिएट किया, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर एक साल का एमओयू साइन होता है, और कुछ ऐसे डोनर्स हैं जो हमारे साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं उस एरिया में. बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं मेवात में. मैं सबका बहुत ही, मतलब कि आई नो देम वेरी वेल, दे आर डूइंग एंड आई एम अप्रिशिएबल ऑफ देयर वर्क ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम गोइंग टू द ग्रास रूट्स, कैचिंग देयर कल्चर, अंडरस्टैंडिंग देयर एटीट्यूड्स एंड ब्रिंगिंग वैल्यू टू देयर लाइफ वॉज वॉट रीड हैज डन. दीज आर द 3 मेजर अचीवमेंट्स वी हैव डन इन दिस एरिया. Dr. Mishra, would you like to add something here, what I have said?
1: Without any political motive, you know, yeah. Reed has gone there as an organization to work without any political motivation, without any political inclination, without any interest. The only interest was to see that people are raising their social economic status, their livelihood, they are well-respected people, well-educated people, well-cultured people, their culture glory is restored. So these the women are well-respected. There is a continuous harmony, you know, visible harmony between men and women, between husband and wife. So these are the things that are clearly visible, tangibly see. People can go and view. You know, that is the USP of working Reed in the Mewat, you know, area. That is really very, very great. That is
0: all they wanted to. Memory goes back when we saw power to hai nahi, to computer kaise seekhenge bachche?
1: Yes.
0: Oh, power, how they will read the books. Then we requested Bill and Melinda Gates Foundation. They gave us a special grant to put solar panels in the areas where we are facing problems with regard to the power. So you could see in the film also, we put solar panels on top of the building so that 24/7 there is a power in the library, and there is no power cuts, and the children can come, enjoy it there, talk to each other, learn from each other, study the books, and 50% of the books are in their own language. Because we did not want to put the book, they cannot touch, they cannot read.
2: बिगावली की रहने वाली हूँ और ताराक्षर में मैं जुड़ी हुई हूँ. मेरे को पढ़ने लिखने में बड़ा मन लग रहा है, अच्छा लगता है. ऐसा है कि हमारे पास में ताराक्षर का अध्यक्ष लेके आए थे सुनील कुमार, तो इन्होंने कहा कि अब पढ़ाई कर लो. हमने कहा ऐसे बुढ़ापे में क्या हो, कौन पढ़ पावेगो. उसने कहा नहीं जी, कोशिश करके देखो एक बार. तो हमने कोशिश करी तो हमको अच्छा लग रहा है पढ़ने में लिखने में, हमारा मन भी लग रहा है. फिर वो हम तो हर जगह पे कर लेंगे, कोई हिसाब है, किताब है, घर का धंधा है, घर के बच्चे हैं, घर की पढ़ाई है, काम है, कोई भी सब में काम आती है पढ़ाई, मतलब ठीक है ना, हर चीज में आती है. अब छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको भी बैठा के पढ़ा सकते हैं. बच्चे ये है हर को, इसे पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, वो करो.
3: पहले भैया हमने इसलिए पढ़ा मान पाते, तो हमने आवाज दी की भैया हम पढ़ लिख जाएंगे, तो हम बैंक में भी काम करते हैं, चाहे घर बैंक करते हैं, आदमी का नाम भी लिखने सीख जाते हैं, अपना भी सीख जाते हैं. बैंक में जाते अपने पैसा निकाले तो अपने हिसाब करे आते हैं बैंक में जाके. इसीलिए हम भैया के पास पढ़े थे, यही बारे हम अनपढ़ते थे, भैया पढ़ा देंगे तब इससे सीख जाएंगे.
2: मेरा नाम गजना है और हमारे ये भैया आए पढ़ाने के, सुखवीर सिंह, और इनने पढ़ाई पूछी कि तुम पढ़ सको. एक बार आए, दो बार आए, तीसरा के हम बोले अब तो हम पढ़ेंगे. जब ये भैया पढ़ान लगे हैं यहाँ स्कूल नहीं खुल दी हो तो आगे पढ़ाने.
4: आपको क्या फायदा हुआ इससे?
2: अब हम सीखने लग गए, जो भी हम पे आ गए यहाँ पे देखे चैट में पहले हम पे आ गई ना हो कुछ तो हम नाम भी लिख लें। अब हम अपने काम कर ही ले जाइए भैया बताऊ
3: सर्वे और पढ़ से पढ़ना चाहते अपने बच्चे ने पढ़ा ले घर का काम कर ले कोई काम काज आ जाए उसे कर ले और सेंटर आ जाए कोई काम आ जाए इसलिए
2: मेरा सीख लूंगी कुछ तो कुछ काम कर बैठूंगी मैं परेशान आदमी आंगनबाड़ी लग जाए या कुछ सिलाई में लग जाए कुछ भी काम जो तुम खिलाओगे वो करने
3: यशोदा पढ़ाने आवे हम लोग न पढ़े पर दो बार आए तीन बार आए हम बोले हम पढ़ेंगे हमको पहले कुछ नहीं आवे हम नाम भी लिख ले और जो काम दे पूरा काम कर ले
4: हम पता एन आर भी ना आवे अब तो एन आर ने भी सीख ले अरे बेचारा आया पढ़ने सुखबीर लगो ना भाई लाली पढ़ लियो माता जी पढ़ लियो हम बोले हम ना पढ़े हम बुराते में कहा पढ़ेंगे तो बेचारा कई बार आया फिर हम पढ़ने लग गए कई सीखो हमने पढ़नो हम पे अनार भी नहावे या फिर या भी सीख गई नाम भी सीख गई अपनो।
3: मेरा नाम ममता है आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं ताराक्षर में पढ़ती हूँ। पहले इन लोगों ने आकर हमारे गाँव में सर्विस करी थी हमने जानी क्यों कर रहे और जब हमारे सब आई थी तो पढ़ाई करने के लिए पहले हम पढ़ाई नहीं जानते थे और अब इससे पढ़ के नहीं पढ़ना सीखे हैं और इससे पढ़ने से हमें बहुत कुछ आने लगा है और हमारे गांव के अंदर तीन ताराक्षर एक ज्ञान चौपाली खुली हुई है और हम बचत पढ़ते हैं सभी और उसके बारे में भी जानते हैं पहले जानते नहीं है कुछ।
5: मेरा नाम भगवती है मैं स्वामी के रहने वाली मुँह पे कुछ भी नहीं आता है मैं अक्षर समाज जान गई नाम हाँ अक्षर जान गई मैं अक्षर समझ गई नाम लिख लेती हूँ।
6: मेरा नाम रजनी है मैं स्वामी के रहने वाली हूँ मैं पहले से कुछ नहीं जानती थी और यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ और बहुत कुछ जान सकती हूँ।
7: मेरा नाम आशा है मैं स्वामी के में रहने वाली हूँ मुझे तारा अक्षर से जुड़कर बहुत अच्छा लगा हमने हम पर पहले अपने साइन भी करने नहीं आते थे हम पर साइन कर सकते हैं अक्षरन की पहचान कर सकते हैं।
8: मेरा नाम सरस्वती है गाँव में तारा अक्षर का स्कूल खुला है ये लोग आए तो कहने लगे हम पढ़ाएंगे हमें बात समझ में आई और पढ़ा लिखना शुरू कर दिया ये इनसे पढ़ के हमें बहुत नॉलेज मिली और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ हम कुछ भी नहीं जानते थे और ये गांव के अंदर जो समूह खुली रहती है उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते बैंक में जाते थे पैसे भरना निकालना कुछ नहीं जानते थे अब हम खूब पैसे भी निकाल लेते हैं फार्म वार्म भर देते हैं। पढ़ाई से ये फायदा है कि अपने बच्चे जहाँ भी कहीं पढ़ने जाते पहले कुछ नहीं जानते उसकी किताब कॉपी वगैरह देख सकते हैं क्या लिखा है कहीं हम भी काम करते हैं तो हमारे लिए पैसे वैसे मिलते हैं तो हमें पता नहीं लगता था कितने दे रहे कितने नहीं दे रहे तो अब हम उसे पढ़ के बता सकते
2: अपना नाम कांति
9: और कौन से गाँव से यहाँ
2: छाए से
9: तो आपको पहले और अब में क्या फर्क नजर आ रहा
2: है इतना फर्क है पहले हम 100-200 रुपया का हिसाब लगा सके अब हम 500 रुपए तक हिसाब लगा लें पढ़ाई इतने जब थोड़ी बहुत पढ़े अब थोड़ी बहुत अक्षर मिला के मात्रा मिला के सब कुछ अब हम कर लें मात्रा लगा दें डंडा लगा दें।
10: मेरा नाम मीना है झांसे के रहने वाली पहले कुछ आवे ना हो अब हम लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत आन लगो हिसाब जोड़ 100-200 रुपए आए 500 है उन्हें भी जोड़ सके।
11: मेरा नाम बबीता जी है छाए से रहने वाली पहले कुछ नहीं आता था अब बहुत कुछ सीख गई बहुत अच्छा लगा पढ़े के इन्होंने नीतू जी ने बहुत अच्छा सिखाया हमें लोकेश जी की बात पे अच्छा पढ़ाने सुनाया वो
12: हम तारा सर में ट्रेनिंग ली थी हमने जो कि मतलब अनपढ़ लोगों को पढ़ाना जिन अक्षर होते हैं अब वो पढ़ लिख थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने जान गई है और अपना नाम लिखना सीख गई है अपने गांव का नाम कहीं भी आ जा सकती है हिसाब किताब लगा लेती है। इस प्रोग्राम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है इनको भी और हमको भी।
13: तो सबसे पहले हमने औरतों को मोटिवेट किया पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं उनको मैंने फिर क्लास में बुलाया बिगाड़ी में मेरी ड्यूटी है वहाँ पे मैं 3 बैच चलाता वहाँ पर 10-10 महिला आती है प्रत्येक बैच में 10 महिला होती है बहुत ही अच्छी तरह से वो पढ़ रही है और उनसे मैं बातें करता हूँ अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है मैं उनके घर जा करके अगर कोई मना करता है तो उनके घर जा करके परिवार वालों से मिलता हूँ और उनसे समझाता हूँ पढ़ाई के फायदे क्या होते हैं तो वो भी क्लास में आ जाती हैं ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप बहुत खुश हैं इसमें आकर।
14: ताराक्षर जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि हम इसमें जो निरक्षर महिलाएं हैं उसको साक्षर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी अम्बेवात इलाके के 3 गांवों में चला हुआ है, छायसा, बिघावली और स्वामी का। इसमें लगभग 90 से 100 महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं इस कार्यक्रम का, और ये तीनों गांवों में कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक गांव में 3 बैचेस चलते हैं, इसे कुल मिला के 9 बैचेस चलते हैं। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, पहले जो महिलाएं बोल नहीं पाती थी किसी के सामने, आज अब वो महिलाएं बोलने लगी हैं और अपने आप पे आत्मनिर्भर हो गई हैं, और वो किसी के सामने भी खुलकर उनको जवाब देने लगी, अच्छे से बोलने लगी हैं। और वो पहले उनपे कुछ भी नहीं, लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, अब वो क्या नाम है, पढ़ने लगी हैं, लिखने लगी हैं, अपना खुद का नाम लिख सकती है, पति का नाम, अपने बच्चे का नाम, और अखबार भी पढ़ने लगी हैं। इस कार्यक्रम से महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं और हम सभी खुश हैं कि ये कार्यक्रम हमारे इस पिछड़े इलाके मेवात में चलाया जा रहा है।
15: मैं पूरे अपने गाँव की औरतों से, बड़े बूढ़ों से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी ये स्कीम है, जो भी संस्थाएं यहाँ आ रही हैं, वो हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे गांव के हित में, हमारे गांव को अच्छा समझ के इस गांव में वो काम कर रही हैं। इसमें हर एक जन जन को इसमें जुड़ना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। मैं गीता मल्होत्रा जी का और मैडम मई जी का तह दिल से, अपने गांव की तरफ से, अपने तीनों चारों गांव की तरफ से बहुत बहुत दिल से, तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और इनका एहसान मंद हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे गांव और हमारे अड़ोस पड़ोस को चुना।

0: Wonderful, wonderful. So much to be shown. We have so much of content to be shown to the audience, but the time is so short that we have to move further also. इसके अलावा आप कमेंट्स में भी पढ़ रहे हैं कि मेरी टीम लिखती जा रही है कि हमने क्या क्या और काम किए. तारा अक्षर के अलावा हमने स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एक कार्यक्रम किया यहाँ पे मैजिक बस के साथ मिलके, क्योंकि हमें उनके एटीट्यूड को बदलना था कि हमें लाइफ स्किल्स सिखाने थे. अगर हम लाइफ स्किल्स की बात करें तो वो डायरेक्टली ट्रेनिंग लेने नहीं आते थे. हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से यूथ को लाइफ स्किल्स सिखाए कि कैसे एक लड़की लड़के की इज्जत करती है और लड़का लड़के की इज्जत करता है, कैसे फैमिली में हम एक एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं. तो ये हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को सिखाया था. और इन सब कार्यक्रम को बंद करने का दिल नहीं करता है क्योंकि बहुत बहुत जरूरत है. मैं कहती हूँ जितनी भी पॉपुलेशन है मेवात की, उन सबको इन सब प्रोग्राम्स की बहुत बहुत जरूरत है. इसके आगे की जर्नी में हमने औरतों को स्पिनिंग सिखाई, धागा लेके कैसे धागा बुनते हैं ये उनको सिखाया, चरखा कैसे चलाते हैं, उस धागे से कपड़ा कैसे बनता है, उस कपड़े की सिलाई कैसे करते हैं, ये पूरी जर्नी हमने कंप्लीट करी. यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं, यही सोच के सब कुछ किया कि कभी औरत को काम करने की जरूरत पड़े तो वो अपने हुनर को निखार सके और अपने हुनर को पहचान सके और अपने बुरे टाइम पे इस हुनर को यूज करके अपनी आमदनी को इंक्रीज कर सके. यही हमारा सोच थी और कंट्रीब्यूशन था. अभी हम छायसा से आगे तारू में जाएंगे. तारू में हमने एक और सेंटर लॉन्च किया था तो हमें Amazon ने सपोर्ट किया. आई वुड लाइक टू शो दैट फिल्म डॉक्टर मिश्रा रीड इन तारो.
1: इस फिल्म के में जो अभी हमने दिखाया उसके बारे में एक चीज मैं गीता मैम ये कहना चाह रहा हूँ कि जो परिवर्तन आपने देखा वो तो हुआ. सबसे बड़ी बात है कि जो समाज को ये भी, जिस महिलाओं को ये भी नहीं मालूम था कि हम अपने पैसे को कैसे रखें, क्या करें, कहाँ रखें, उनको न्यूमरेसी लिटरेसी का ज्ञान हो गया. इतना ही नहीं, आपने देखा होगा उनके कपड़े साफ हो गए, उनमें हाइजीन का सेंस आया, उनमें हेल्थ और क्लीनिनेस के प्रति एक बहुत बड़ी जवाबदेही का है ना निर्माण हुआ. तो ये जो छोटे छोटे विजिबल चेंज है, वो कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये चेंज अगर आप डे वन से उस दिन तक को देखें तो महिलाओं में जो स्वच्छता, निर्मलता, लिटरेसी न्यूमरेसी, काउंटिंग करना, ये सब चीज में, और एकाएक सारे महिलाओं के चेहरे पे एक गजब ही नैसर्गिक हंसी, उल्लास का भाव था जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है.
2: Partnered with Read India in 2015 to set up Amazon Care Community Outreach Centers in Taulu in the villages Chamwar, Dingaveri and Gujarat. Through these centers, we are covering 5 villages, including Nihalgarh and Sheikhpura. The center focuses on education, women empowerment and livelihood, skill development and entrepreneurship, and health awareness and advocacy. We do focus on education by designing programs on improving reading and writing habits of children, starting in government schools, training Anganwadi teachers on teaching small children through playful activities and the same activities are the people at the Reed Center. We have a library with more than 1,000 books where children, youth and other community members come and have access to books for reading and reference. We conduct classes to enable youth for competitive examination and do career counseling. Solar panels for regular and uninterrupted supply of power. We have special workshops with women on women empowerment and provide them a safe space to learn, teaching in PB to start with and enable them to learn how they can start their small enterprise and also collectively join the group for working together to reach center. We have also designed the programs to make them learn financial and adult literacy. Women have started moving out from their villages to other read centers and also to other organizations to learn from other women how they are involved in these programs and enhance their networks. Job-oriented workshops are organized for youth, girls and boys, to focus on their future careers and learn specific skills for suitable jobs. Farmers' meetings are conducted on a regular basis with planned visits to other parts of Haryana, including meeting with government officials so that they themselves realize where they are and where they have to reach in relation to profit-making agribusiness they can do. Health intervention is the important component. We do regular workshops on best practices and also partner with other organizations to organize health camps. Audio workshops are being organized at the center to enable youth one voice modulation, and exposure visits are done at community radio stations. Various visuals are displayed at the centers, Anganwaris and the villagers to constantly remind the villagers about best practices. Women and men are understanding the gaps in their lives and uniting together for the progress of their villages, and also focusing on their children's growth by creating positive environment at the read centers and at their homes. Read India and Amazon Care work closely with local government, completing the collective efforts. Within 1 year, this partnership was extended to another village, Tamaspur in Sonipat. The center is creating the same activities through effective community mobilization, effective involvement of the school teachers and other stakeholders.
3: एक दिन ज्योति ने बताया कि यहाँ सिलाई सेंटर गांव में आया हुआ है जो रीड इंडिया एंड अमेजोन मिलकर चला रहे हैं, तो मैंने आके देखा कि यहाँ सिलाई हो रही है और सिलाई का काम ज्योति सिखाएगी। तब मैंने ज्योति से बात की कि मुझे भी सिलाई सीखनी है। तब ज्योति ने सिलाई सिखाई मुझे, तो मैंने 3 महीने तक सीखी और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कार्यशाला भी होती है, जो फार्मर भी की भी मीटिंग्स हुई, हेल्थ वर्कशॉप भी हुए और पढ़ाई के बारे में बताया, आगे कैसे बढ़ते हैं, सरकारी नौकरियों के बारे में भी बताया। तब मैंने 10वीं के ओपन पेपर फॉर्म भरे और अपनी पढ़ाई चालू की फिर से, और फिर आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ।
4: मैंने सिलाई सीखना मुझे बहुत फायदा हुआ और मैंने देखा कि मैं अपने भी कपड़े सिल सकती हूँ और दूसरों के भी, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है।
5: मैं रीड इंडिया अमेजन सेंटर में लाइब्रेरी कम कंप्यूटर ट्रेनिंग की जॉब कर रहा हूँ। मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ बच्चों को सिखा पा रहा हूँ और उनके साथ कुछ सीख भी पा रहा हूँ। यहाँ पे रीड की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम कार्यशाला की जाती है, जैसे इस्लामी सर ने कैरियर गाइडेंस के बारे में बताया, उस प्रोग्राम से बच्चों ने कुछ सीखा और साथ में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है।
6: रीड इंडिया अमेजन तरफ से जो सेंटर चल रहा है, इसमें मैं जो छोटे बच्चों का ईसीडी का सेक्शन है वो देती हूँ। यहाँ सेंटर पे नई नई एक्टिविटी होती है, जैसे हेल्थ की भी हुई है, लोगों के बारे में भी होती है, तो उसमें भी क्योंकि मैंने खुद ही बी अगर के बी एड कही हुई है तो उससे मेरे को भी बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ को कह रही थी कोई ट्रेन मीटिंग हो रही है तो उसमें मैं भाग ले रही हूँ, तो उससे मेरे को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा।
7: मैंने प्लस टू करने के बाद जेबीटी किया है और सरकारी नौकरी के लिए स्टेट हरियाणा का एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करना जरूरी है। वो क्लियर करने के लिए किताबों की आवश्यकता थी। मैंने रीड इंडिया एंड अमेजन की सामुदायिक लाइब्रेरी है, वहां से मैंने मुबारक सर से संपर्क कर 2 बुक्स प्राप्त की और वहां 2 बुक्स लेकर मैंने उनकी पढ़ाई की और टेस्ट आने पर मैंने टेस्ट दिया जिससे मेरा पहली बार में टेस्ट क्लियर हो गया।
8: यहाँ पर पहले मैंने सिलाई सीखी थी, उसके बाद मैं कंप्यूटर के और फिर बच्चों को कंप्यूटर सिखाते, जिससे उसे सिखाने में मुझे भी बहुत फायदा हुआ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा है उसे सिखाते सिखाते। बहुत अच्छा है वैसे यहाँ पे सब चीज, क्योंकि यहाँ पे सिलाई सेंटर कंप्यूटर का भी है, लाइब्रेरी भी है, ECD का भी है, यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें सुधार की गई है। मैं आंगनवाड़ी में भी जाती हूँ और रीड एंड राइटिंग का कोर्स चल रहा है, बच्चों को कराती हूँ और इससे इधर मीटिंग होती है, इससे किसानों की मीटिंग होती है, इधर डॉक्टर आते हैं और इधर हमने सिलाई भी सीखी है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। मैं रीड इंडिया अमेजोन को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।
9: रीड इंडिया अमेजोन सेंटर में सिलाई सिखाती हूँ, अब तक मैं 10 लड़कियों को सिलाई सिखा चुकी हूँ, जो कि वो अपना काम आराम से कर लेती है और घर में दिन महीने में 2-4 हजार रुपए भी कमा लेती है। अब उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो हर कार्य को अच्छे से कर लेती है।
10: मेरा नाम राम बाबू, आठ जिला में पढ़ता हूँ। अब मैं जब छुट्टी हो जाए सेंटर में आता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, फिर खिलौना से खेलता हूँ, फिर कंप्यूटर पे बैठ जाता हूँ।
11: पहले ये सिलाई सेंटर यही नहीं था, तो अब इसके आने से हमारी जितनी लड़कियाँ हैं औरत है जो यहाँ पे सब सिलाई सीखने के लिए आ जाती है, इससे काफी सुविधा है क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, यही कपड़े सी जाते हैं तो अपना काम हल हो जाता है, पैसे की भी बचत है।

0: This is a beautiful journey of another village, few of the villages in Mewat. The picture speaks volume because आप देख सकते हैं कि मेवात में ही छाइसा भी है और मेवात में ही तारू भी है और कल्चर कैसे डिफरेंट है आपको बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है कि औरतें खुल के बात कर रही हैं और वहाँ पे हमें औरतों के साथ 3-4 साल काम करने के बाद औरतों ने अपने मुंह खोले और अपनी बात लोगों के सामने रखी. दैट इज द डिफरेंस यू कैन सी विद इन वन आई शुड से द डिस्ट्रिक्ट. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ रीड बिकॉज रीड अंडरस्टैंड्स द कल्चर ऑफ द पीपल द चैलेंजेस ऑफ द पीपल द डायनेमिक्स ऑफ द कम्युनिटी एंड वर्क अकॉर्डिंगली. That is how we are succeeding and walking step by step with very much consciousness and a great, you know, vision so that we can empower people, we can move from one village to another village. Aur ye wala center bhi inaugurate karne ke liye Gurgaon ke commissioner all the way Taru jinhone ye center inaugurate kiya tha aur unhone bahut si blessings di aur bola ki aap ऐसे नेक कार्यक्रम को कभी बंद मत करिएगा और ये चलता रहे. तो स्मिता को ये बात बहुत ही लाइक एक दिमाग में जैसे एक रेजिस्ट कर जाती है कोई बात तो वो रेजिस्ट कर गई एंड शी स्टार्टेड राइटिंग प्रपोजल्स फॉर अदर कम्युनिटीज आल्सो. और दिस जर्नी हैज नॉट येट स्टॉप. वी हैव गॉन फ्रॉम तारू टू मोहम्मदपुर आहिर विलेज where we are again setting up the community library and resource center which is already in operation and then we moved on to Nuh. covid ke time pe ke pehle center launch kiya tha February mein I think so. और उसके बाद कोविड आ गया तो कैसे हमने कोविड के दौरान एकदम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए थे. जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फोन था उनकी ट्रेनिंग तो हम अपने ऑफिस में बैठ के कर लेते थे और जिनके पास नहीं था वो हमारे कम्युनिटी ने स्मॉल स्मॉल बैचेस में बुला के उनके साथ ट्रेनिंग करी, उनको मैसेजेस दिए व्हाट्सएप के थ्रू, उनको फोन के साथ टच में रहे. और जब उनके पास काम नहीं था, उनकी फैमिलीज हार्डशिप में थी, तो हमने अपने डोनर्स से बात करी कि हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हमने उनको राशन पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे. और दिस इज नॉट आई वुड लाइक टू से हियर दैट प्रोग्राम्स आर वन थिंग बट रीचिंग आउट टू द कम्युनिटी व्हेन दे नीड अस बैडली दैट इज अनदर थिंग व्हिच वी डिड ड्यूरिंग कोविड एंड स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग प्रोवाइडिंग आवर सपोर्ट टू देम. श्रेष्ठा God is the coordinator who is the link between the community and us, and every day she shares with us what exactly the community needs, and Smita Rai speaks with the donors and we convince the donor that we have to strategize the needs of the community in a manner that they should not feel that need is not for them. That is very, very important for us, and we develop our linkages with each child, each woman, each person of the community so that they should see that read is at their back. That's all I just wanted to say, Dr. Mishra.
1: You compare from the day one to today's situations, one can easily find the difference. Difference in their dressing sense, difference in their, personality, the way they speak, the way they do the everyday things, the way they present themselves, the way they go to the center, the way they interact with the people, these are all visible changes. If a third party agency comes to evaluate the READ activities at Mewat, they will realize the power of presence of READ in the area. I am telling you as an honest student of anthropology, the change that we have experienced in past 10-12 years these changes are mainly among the women and also among the youth. You know, the perceptual change, what you see. They have changed their perception about the, you know, the divide between inside and outside agencies. Now there is no such divide in the locality. If you go there, you are being welcome. When initially first time we went there, we were doubtful. We were a doubtful element for them. They had doubt in everything that we were doing, you know. Now this doubt doesn't exist. Now there is a sense of, belonging. Ki wo hamare saath hai. Namita says, Reed has embedded impression the community and they welcome. Oh, really?
0: Educating donors is also very important. Donors wanted us to establish the center in Gurgaon, but Smita convinced them that there is a meeting in Mewat. So we took them to Mewat and they saw the area and they realized themselves, yes, there is a deeper and greater need in Mewat rather than establishing or investing in Gurgaon. And we as Reed team committed that we are ready to work in that area. Unfortunately, the pandemic came and we immediately switched over to the hybrid model. But we are ready to overcome the challenges. It's never late. And we are committed that we will be able to do justice with our programs, with the communities, wherever we are working. And we will continue with the struggle of reaching them with the programs they need the most.
1: Yes, that is true. I tell you one thing. It is not the issue of convincing or educating the donor. It is an issue of knowing what you are doing, confident on yourself. So you know what you were doing, you have the guts and power to tell them, look, we are the people who have been working there with their, you know, mind and spirit. You know, with their, you know, you can come anytime and see the, you know, visible changes. So then donor came and donor became happy with your performance there. Because they obtained the database directly from the people, interacted with the people, and they realized the visible changes. You know, that was the major thing that I think, you know, like anybody if go and you know that.
0: I would also like to mention here, during COVID, like in March when the lockdown was announced, we immediately conducted the workshops on mental health through Sonia Bhandari and reached to more than 200 women online. Women started walking half an hour, 1 hour to reach to the center where those who did not have Android phone. To listen to Sonia Bhandari, our consultant who is a mental health expert, to know how they can stable their minds during this pandemic. And it really paid us a lot because women were stable, women knew how to handle the challenges, women knew how to handle the attitudes of the family members. So nothing wrong happened in the harmony of the family that we explain to them with love and affection. That was really a hit program of Reed India, I should say that. This is the vision we carry along because we don't want to, create setbacks for the community. We really want to rejuvenate them time and again. Whatever they need, our support, we are ready to provide.
1: You see, we in anthropology, we call it native intelligence. You know, what is native intelligence? You create a sense of nativity within yourself. You, as I have told you, you go there as participant of German, as an insider, as a family member, as a member of society, get yourself connected with them, and then they open up. Once they are open up, they share their pains, their pleasures, their agonies, their shortcomings, their limitations, their power, their weaknesses. And then you realize, oh, these are the areas, these are the weak areas where we need to attack. These are the areas where we just need to sharpen them. These are the areas where the massive programs are required. And accordingly, you make up your mind to prepare the projects, identify the donors. Because every donor has its interest area. So accordingly you select everything, and that you and Smita and your entire team, you have been doing it very correctly. And this is something, bare minimum, resources. Because if you compare yourself with the government and other big agencies, you are very small, you are a small face. And even with this small, amount of money and with very little human resources, you go to the area and change the people. This is the exemplar for those who are working in the grassroots area with the most able community like Mewati. So it is very much needed such thing. Thank you everybody. Thank you Dr. Geeta Malhotra. It was the day today.
0: I would like to, sir, thank you Mahipal for making all these films on.
1: Yes.
2: He's a movie maker.
1: Yeah. Bye. God bless you.
3: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम। सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
4: हेलो, मेरा नाम नीलम है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बार रीड इंडिया वाले हमारे उधर सर्वे करने आए थे, उनके थ्रू मुझे रीड इंडिया के बारे में पता लगा। फिर मैं इधर आने लग गई, मैं रीड इंडिया से जुड़ गई। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से पार्लर भी सीखा है और कंप्यूटर भी। इस टैग के कोर्स में मैंने IT बनाना और किसी की लोकेशन सेंड करना, और पहले मैं घंटों उसकी लाइन में, बैंक की लाइन में खड़ी रहती थी। बट जब से फ़ोन, मतलब इसकी नॉलेज मुझे हुई है कंप्यूटर की, तब से मैं अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकती हूँ, पैसे भेज सकती हूँ, और उससे मतलब कैब करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीड इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है, वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लगी थी। अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होकर सोच सकती हूँ, और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी, और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन नहीं रहने लग गया था। अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए। आपको नहीं सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए, ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें, और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे। मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो कुछ अच्छा ही पता लगे, अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, बहुत कुछ आप यहाँ आके जान सकते हैं। थैंक यू रेड इंडिया।
5: हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लेंसी एंड आई पास 10th क्लास। देन आई थिंक टू जॉइन रीड इंडिया एकेडमी टू इम्प्रूव माय कंडीशन। मैंने एकेडमी ज्वाइन की रीड इंडिया, और उसमें हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ TEG, टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स। ये एक कोर्स है जो वुमेन और गर्ल्स के लिए है। ये वुमेन और गर्ल्स की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी, और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ये प्रोग्राम चला है, तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, और आगे भी ये प्रोग्राम चल रहा है। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज का भी, और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ। और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है, और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है। पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सबकी ज़रूरत होती थी, लेकिन आज कल मैं खुद कर रही हूँ ये सब, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती। बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी।
2: Good afternoon. My name is Tanu Tanwar. I passed 10th class and I joined Read India Academy in Shahabad, Mohammadpur. This is only one academy who teach us computer. This academy helps to be a woman independent. Read India starts tag program for girls and women only to improve the bad condition for women. And it helps us in form filling and also we helps our parents. Then we also reserve tickets. Thank you.
6: I'm Shweta. I study in IGNU University or I done NPTT course for Polytechnic Institute, Rajouri Garden. और हमारे जो यहाँ पे शाहबाद में ये है ना NGO, मैं यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ टैग की, तो इससे मेरे को काफ़ी चेंजेस आए हैं और थोड़ा सा लगा के भाई यहाँ पे आके हाँ बाकी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी हेल्प है, मतलब टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, और दूसरा फिर इससे ये है कि नॉलेज बढ़ती है यहाँ पे आके एक दूसरे को, मतलब हम जाके जैसे हम आ रहे हैं किसी को बता रहे हैं डिटेल दे रहे हैं, तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं, ऐसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए या कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है। और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो। और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो कुछ भी हो, जिससे लड़कियां घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इसमें लाइन में आने से, क्योंकि इनमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए, इसमें नॉर्मली होता है फाइनली, मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है, और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे मतलब भाई होती है कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनका आगे, तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा, मतलब चेंजेस आ जाते हैं। और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे ये कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में, और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं, तो इससे हमें हमारे लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं। एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में, मतलब जितना बढ़ो आगे उतना कम है, और हर किसी को बढ़ना चाहिए, किसी एक को नहीं, हर किसी को, जहाँ से जैसी हेल्प मिलती है जो मिलती है वो करनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यही कर सकता है, यही बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है, सबको है मतलब एक फ्रीडम होती है अपने आप में, लाइफ अपनी है, किसी का प्रेशर नहीं होता कोई के मतलब हम किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर दें, मतलब बोल ले नहीं, कुछ नहीं करें, आगे नहीं बढ़े। एक दो बार मतलब होता है भाई, डर होता है एक, लेकिन बार बार निकलने से ना सब डर खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है ख़त्म करने से ख़त्म होएगा, ऐसे डरने से तो डर बढ़ता ही है, कोई मतलब दूसरा उसको ख़त्म नहीं कर सकता आके। अब हम हैं जैसे कुछ होती हैं लड़कियाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को फ्रीडम होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था ट्वेल्थ कर लिया पास आउट हो गया स्कूल शादी कर दो ये वो, लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करें ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े और वो अपने पैरों पे खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो, तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है, उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए चलो भाई कोई नहीं, उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से, ऐसे भी नहीं कि लड़ लो ये कर दो वो कर दो, नहीं, प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है, तो इसलिए हमें जितना हो सके ना अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए, लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड और दुनिया में अपनी पहचान हो।

0: अभिता और फरा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे जिसका नाम है नीडल एंड थ्रेड, और जिससे आप रोजाना काम करती हैं। और आपको ये भी पता है और हम सबको पता है कि नीडल और थ्रेड के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है, बिकॉज सबको कपड़े सिलवाने हैं, पहनने हैं। और बहुत सारी औरतें जो हैं, जो रीड के साथ जुड़ी हैं या वैसे भी काम करती हैं, उनको स्टिचिंग करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो यू कैन नॉट इमेजिन दैट। और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी हैं अपैरल डिज़ाइनिंग के। और जैसे अबीदा ने भी छोटा कोर्स किया है अपैरल डिज़ाइनिंग पे, और आज की जो चर्चा है हम इसी पे बेस करेंगे। और अबिदा और फरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अबिदा, शशांक ने आपके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, और आपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बचपन से मेहनत करी है। आप अपना गांव छोड़ के दिल्ली में भी आई रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और फिर वापस जाके जब आपके मन में जुनून था कुछ करने का तो आपने उसको पूरा कर दिखाया। और मैं यहाँ भी ये भी कहना चाहूँगी कि जुनून अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है और जिंदगी बहुत लंबी है, और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करने की आप इच्छा भी रखती हैं, और उसके उसको पूरा करने के लिए आप में दृढ़ विश्वास भी है। तो चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। अबिदा, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, थोड़ी जानकारी दें, और फिर हम आगे इस चर्चा को लेकर जाएंगे। अबिदा प्लीज।
1: गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम आबिदा है और मैं रामपुर शहर के छोटे से मोहल्ले कलगत के रहने वाली हूँ। मैम, यहाँ का माहौल हमारे यहाँ मतलब ऐसा है कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। शुरू से ही हम अपने आसपास का माहौल यही देखते आए, अपने घर का भी, कि हमारे भाइयों को एजुकेशन दी जाती थी और अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। जैसे मैं अपनी बड़ी बहनों को देखती थी, वो घर का काम काज कर रही हैं और सिर्फ घर तक ही सीमित रहती थी, किचन तक, घर तक उनकी लाइफ रहती थी। लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही एक जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ कुछ चेंज करनी है। मुझे लड़कों से लड़कियों को क्यों अलग समझा जाता है, मुझे वो सोच हटानी है लोगों की, और मुझे भी पढ़ना है, आगे कुछ बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, लड़कियों का नाम रोशन करना है। ये सारी इच्छाएं मेरे अंदर बचपन से ही रहती थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत फोर्स किया कि मुझे आप पढ़ने दें, तो घर वाले ने यही कहा कि नहीं, आप लोग, आप जैसे लड़कियां यहाँ घर में रहती हैं, आप भी ऐसे रहिए और घर का काम काज सीखिए। हालांकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चाहत थी कुछ बनने की। तो मैं अपने घर वालों को कन्विंस किया, उन्होंने मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया, तबरलगा स्कूल, वहां से मैंने 8th क्लास पास की। फिर उसके बाद वहाँ रामपुर में कारोबार नहीं है, बहुत प्रॉब्लम थी, घर के खर्च की, पापा एक जॉब करते थे छोटी सी, और उसी से हमारा गुजर बसर काफी मुश्किल से होता था। तो इसी वजह से काम के लिए हम लोग दिल्ली चले गए, हमारे भाई ने वहाँ काम शुरू किया। मैंने अपने घर वालों को कोर्स किया बहुत ज्यादा कि मुझे आगे पढ़ने दें, कुछ बनने दें, ताकि मैं भी अपने भाइयों के साथ सपोर्ट करूँ घर का। तो मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प की और मुझे आगे पढ़ने दिया। मैंने मदरसा जामिया से अपनी एजुकेशन आगे की, और जिसमें मैंने बीए फाइनल किया, और अरबिक साइड से, अरबी लैंग्वेज सीखी उस साइड से मैंने किया। लेकिन फिर भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर एक सोच रहती थी कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं, किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ, किस तरह लड़कियों का नाम रोशन करूँ। ये सारी सोच मेरे अंदर हर टाइम रहती थी, लेकिन किस तरह, ये सवाल मेरे अंदर रहता था, बार बार ये सवाल मेरे अंदर उठता था कि मैं किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ। उसके बाद फिर इसके दौरान मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन किया, और मैंने वहां से स्टिचिंग कोर्स किया, काफी अच्छे से कोर्स किया, काफी मेहनत से, मन से, क्योंकि वो कोर्स सीखने के लिए मैंने, ये नहीं कि मैं शौक में कर रही हूँ, मुझे कुछ बनना है, आगे कुछ बनना है, कि सिलाई के करियर ही बनना है, लेकिन मुझे कुछ बनना है, ये सोचकर मैंने सेंटर ज्वाइन किया। और काफी मेहनत से, लगन से, जो लड़कियां मुझसे पहले की थी वहां पर, उनको भी पीछे छोड़ा मैंने, और इतनी मेहनत से मैंने वहां से कोर्स किया। और मुझे कहते बहुत खुशी है कि मैं वहाँ कोर्स आई, बहुत अच्छे से मुझे उन लोगों ने प्रेजेंट भी दिया, काफी लोग आए थे, उन्होंने मुझे सराहा, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिला जॉब का। उसी दौरान मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई, और शादी के बाद फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई, घर घर वालों ने जॉब के लिए नहीं मुझे सहारा दिया, उसके बाद फिर हम लोग रामपुर यहाँ आ गए, अब लोग हम शिफ्ट हो गए रामपुर। वहाँ उसी दौरान मेरे पापा काफी बीमार रहने लगे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने लगी, उसके पापा का काम छूट गया। और उसी सिलसिले में फिर मैं काफी टेंशन में रहने लगी कि मैं क्या करूँगी। तभी मुझे रेल नौकर अकबर सर आए जहाँ, और हमारा हॉल पसंद किया और रेल इंडिया ने मुझे ऑफर जॉब की। तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी भाइयों ने की, क्योंकि यहाँ इस हॉल में वो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे और मुझे चाहिए था हॉल। तो मेरे भाइयों ने अपना काम रोककर हॉल दिया मुझे, तो मैंने रेल इंडिया सेंटर चलाया। और मेरा ये सेंटर काफी अच्छे से चलाया। इस सेंटर में आने से पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और काफी दिक्कत मुझे थी, और लड़के से अच्छे से बोल नहीं पाती थी, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस मुझे सिखाने के साथ आया। मैंने जितना लड़कियों को सिखाया उतनी मेरी खुद की स्किल्स डेवलपमेंट होने लगी, और मुझे लड़कियों से बात करने का तरीका आने लगा, और सिखाने के साथ साथ लड़कियां मेरी काफी मेरी इज्जत करने लगी, मेरी वैल्यूज बढ़ी। मोहल्ले में मुझे कोई नहीं जानता था, मोहल्ले में मुझे काफी मेरी जान पहचान बढ़ गई और लोग मुझे जानने लगे। और मैंने 3 साल से सेंटर चला रही हूँ, जिसमें मैंने 400 तक लड़कियों को सिखा दिया है, और 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ गई, और इन 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ी है। और वो 400 लड़कियां और 400 लड़कियों को लेकर आई थी। हमारे यहाँ का अभी माहौल वही है कि लड़कियों को निकलने नहीं देते, लड़कियों को आगे कुछ बढ़ने नहीं देते। लेकिन मैंने लड़कियों के घरों पे गई, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजें और हमारे सेंटर भेजें, उनको कुछ सिखाएं। तो उन लोगों ने मेरी बात एग्री किया और मेरे पास में लड़कियों को भेजा, और यहाँ पर लड़कियों ने आकर सीखना शुरू किया, जिससे काफी इंप्रूवमेंट आया। हमारे मोहल्ले में भी काफी लड़कियां ऐसी थी जो घरों से निकलना नहीं जानती थी, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करने का तरीका नहीं आता था, वो सब उन्होंने सेंटर से ही सीखा। और यहाँ से उन्होंने देने के बाद कमाना शुरू किया और अपने पैर पर खड़ी हुई है, उन लोगों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया। काफी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे से कमा रही कमा भी रही हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फरा आपके साथ बैठी है फरा, और आप तो रीट से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, जब आप बहुत छोटी थी तब से ही रीट से जुड़ी हैं। और ये स्टोरी जो अबिदा अपनी बता रही है, आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी पे? और आपने अबिदा को अपने सेंटर में जोड़ा, कलघट में इन्हीं के घर में आपने सेंटर बनाया सी। जब आपके दिल में जुनून होता है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है उसी काम को करने के लिए। अब जब पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे किसी भी रीजन से, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रही हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, कि ये होता है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पेरेंट्स को, तो वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी टाइम से आता है, एकदम शुरू से नहीं आता है। और जब मैं अबिता की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे फरा की स्टोरी भी याद आ रही है सामने। तो फरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अबिता की स्टोरी में, क्योंकि आप इसको 2019 से देख रही हैं।
1: जी मैम, मैं ऐड करना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। आबिदा की स्टोरी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आबिदा बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है, जिनको मैं पहले दिन मिली थी और आज मिल रही हूँ। बहुत बड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे मेरी जर्नी थी रीट में, मैं यहाँ थी और अब यहाँ आ गई हूँ रीट से जुड़ने के बाद, ऐसे ही आबिदा ऐसी थी और आज यहाँ आ गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लाइव आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही है। जो कुछ मतलब जब हम फर्स्ट डे आए थे तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी, तो जब मेरी इनसे फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी तो ये नकाब में और बुरके वगैरह में थी घर में ही, और ऐसे ही मतलब रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि, इन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पर, हमारा ये थोड़ा सा घर का हिस्सा है और यहाँ पर हम ऐसे से कोई कुछ चलाना चाहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर लड़कियां वगैरह कैसी हैं और लड़कियां आ जाएंगी यहाँ तक, क्या घर में से पेरेंट्स निकलने देंगे, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप सिखा पाएंगी, लड़कियों से जुड़ पाएंगी और या लड़कियों से बातचीत कर पाएंगी। तो उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हाँ हम करेंगे।
2: मतलब इन्होंने मना नहीं करा, इनके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि कोई जॉब नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो मुझे लगा कि हाँ भाई फरा के जैसी भी कोई और है, करने के लिए जज्बा रखती है। तो वहीं से इन्होंने स्टार्ट करा और हमसे हामी भरी करने के लिए। तो हमें लगा कि हमारा यहाँ पर सेंटर चल सकता है रीड इंडिया का, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आबिदा के जैसी बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। तो जब हमने इनसे बात करी और इन्होंने मोबिलाइजेशन करा, तो जब भी हमारे पास 100-150 लड़कियां आई बाहर निकल के, और इन्होंने घर घर में जाके मोबिलाइजेशन करा, पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स हैं, मुस्लिम इलाका है, जो घर से बिल्कुल लड़कियां नहीं निकल पाती है। तो उन्होंने घर घर जाके, हमने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम भी दिया कि आप जाइए और हमें बताइए कि आप कर सकती हैं। तो इन्होंने हमें 150 लड़कियां लाके दी, और जब हमने उन लड़कियों से मुलाकात की, तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के किसी सेंटर पे आई थी। उन्होंने हमें बताया कि मैम हम फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं, हमें फर्स्ट टाइम इजाजत मिली है, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं और या फिर हम अपने घर पे रहते हैं, पढ़ाई के लिए भी हम अपने भाई या फादर के साथ जाते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं, तो वो बाहर खड़े होते हैं और फिर हम देकर उन्हीं के साथ आ जाते हैं वापस। लेकिन ये एक पहला सेंटर है जो हमारे घर के करीब, समझिए, या फिर एक

0: उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं और हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की है कि आप अपनी लड़कियों को बाहर तो कहीं जाने देते हो लेकिन हमारे सेंटर तक आप भेज रहे हो, क्या आपको हमारे सेंटर में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लग रही है? तो उन्होंने यही हमसे बोला है कि आपके सेंटर के अंदर एक तो लड़की कुछ सीखने आती है, कुछ सीख के जाती है, और दूसरा ये एक विश्वास और एक लड़की के लिए सेफ्टी वाला सेंटर है, जो हमें लगता है कि हमारी लड़की वहां जाके बिल्कुल सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमें बहुत खुशी हुई। कभी कभी लड़कियां ये भी होती है कि घर से पूरे दिन के लिए भी कही जाती है कि मम्मी हम वहां पूरे दिन रहेंगे, हमें मतलब कोई काम करना है या स्विमिंग का कोई काम है या फिर प्रोडक्शन में कुछ करना है या फिर कोई डिजाइनिंग सूट सिलना है, तो उनके पेरेंट्स वो भी अलाउ कर देते हैं। जब उनके पेरेंट्स का फोन आता है तब वो दिन भर में जाती है। तो यहाँ तक लड़कियों के अंदर फर्क आया और वो फर्क लाने के लिए आविता ने बहुत कोशिश की है और बहुत अच्छा कनेक्ट करती है लड़कियों से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जैसी और लड़कियां बन रही हैं, फरा से आबिदा, आबिदा से और 150, 150 से 400 लड़कियां बन जाएं और ऐसे ही हमारा सोशल वर्क कामयाब रहे हमेशा और हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों, औरतों, लड़कों तक पहुंचे और रीड का नाम बहुत रोशन हो। तो मैम ये आबिदा की जो अंदर की कॉन्फिडेंस था वो निकल के आया।
1: वेरी गुड फरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि रीड का मॉडल ही ऐसे है। रीड का मॉडल ये है कि हम गांव में जाके कैसे गांव की लड़कियों के साथ मिलके काम करें जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और उन्हीं के एरिया में हम ऐसे सेंटर खोलें जहाँ पे लड़कियाँ बड़े कॉन्फिडेंस से आ सकें और अपने हम उम्र की लड़कियों से बहुत कुछ सीख सकें और अपने परिवार को भी सपोर्ट करें, अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आएं और अपने आने वाले जिंदगी की सोच भी उनकी क्लियर बन जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है फरा। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी ये सोच नहीं है कि हम घर से लड़के घर की रजामंदी ना होने की वजह से या हम अपनी जिद से कुछ करें। जैसे फरा की स्टोरी थी कि फरा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, अपने गांव में ही सेंटर था और उस गांव के सेंटर में काम करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाई, अपनी सोच में बदलाव लाई, अपने पेरेंट्स की सोच में बदलाव लाई, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ऐसे अबिदा ने भी किया। अबिदा बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, कोई जिद नहीं थी कि मुझे घर से बाहर जाना है, पर ऐसे सरकमस्टांसेस में रीड का मॉडल उनके लाइफ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाया उसने कि उसने अपने घर में ही जगह दी और अपने घर में ही उसने सिलाई मशीन रखने के लिए इजाजत मांगी अपने पेरेंट्स से। और देखिए उसके ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि अपना काम बंद करके उसने अपनी बहन को जगह दी, क्योंकि उसकी भी यही सोच थी कि आज अगर मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूंगा तो मेरी बहन बहुत आगे बढ़ जाएगी और उसके दिल की जो ख्वाहिश है उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा कुछ करने के लिए। तो ये खाली अबिदा का रोल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अबिदा के पेरेंट्स का, अबिदा के भाई का, फरा एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर एंड ऑल्सो फरार्स पेरेंट्स और आसपास का माहौल जो पॉजिटिव बना, ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस सोच को समझने के लिए, इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो महिला को अपने दायरे में ही रह के अपने परिवार की सहमति से कैसे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सबका सलाम है, बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टफनेस अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करके, बहुत चैलेंजेस को फेस करके आता है और हम जब आगे बढ़ते हैं और जो इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो हम किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फरा और अबिदा, आपका जो जर्नी रही, जो दोनों ने जर्नी पार करी है, इस जर्नी को सलाम। और आपने जो लोगों को कन्विंस करा और जो लोगों को प्रोत्साहित करा आज के दिन में 400 लड़कियों को सिलाई सिखाना और उनके घर में इनकम ऐड करना,

0: ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है, इसको आप छोटा मत समझिए। आपने जो अपनी लाइफ में किया है, इसका बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनका पेरेंट का फैमिली, जो उनके माँ बाप हैं, उनके बहन भाई हैं, और जब उनकी शादी के बाद ससुराल गए हैं, और उनके माँ बाप, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली पे इसका क्या असर पड़ता है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज करती हूँ, तभी रीड गांव गांव में जाके, गांव गांव में लोगों से बात करके, गांव में ऐसी लड़कियों को तराशते हैं जिनमें हुनर है पर वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आज हमारे सामने इस प्रोग्राम में दो लड़कियां बैठी हैं, फरा और अबिदा, जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था, उसके ऊपर धूल थी, हमने खाली उस धूल को हटाया है, और आज ये ब्राइट स्टार बन के हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू अबिदा सो मच फॉर शेयरिंग योर, इस ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ।
1: थैंक यू
0: अभी
1: मैम।
0: मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां आपके पास सिलाई सीखने आती हैं, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया?
1: जी मैम, ऐसा है जैसे यहाँ हमारी लड़कियां कुछ ज्यादातर ऐसी हैं जिनके फैमिली को सपोर्ट ज्यादा नहीं था उन पर, लेकिन हमने उनके घर बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, तो उन्होंने यहाँ भेजा। उनकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, मजदूरी करती है, काफी लड़कियों के वालिद वालिद उनके पापा, तो लड़कियों को हमने हुनर दिया और स्किल्स दी उनको इतनी कि उन्होंने यहाँ सीखने के दौरान ही सिलाई करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने खुद के कपड़े सीकर और अपने पैसे बचाए, और फिर उसके साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला गया और उन्होंने बाहर की सिलाइयां भी लेना शुरू कर दी, और जिससे उन्होंने घर में अच्छा सपोर्ट किया उन लड़कियों ने। और अपने पेरेंट्स जो उनको इजाजत नहीं देते थे, वो खुद उनकी अम्मियों ने आकर मुझसे बात की और शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बेटियों को इस लायक बनाया है कि आज हमारी बेटियां इस लायक हैं कि अर्निंग कर रही हैं, अपना खर्च भी उठा रही हैं और अपने घर का खर्च भी उठा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी पढ़ाई भी रुक गई थी, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई रुक गई थी, और उन्होंने इतना कमाने लगी है वो लड़कियां कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा स्टार्ट कर दी है, और कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़की ऐसी है जिनकी डिवोर्स हो चुकी है, और वो अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ सिलाई सीखने के बाद वो खुशी से ये बात कहती है कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम अपना खर्च अपने बच्चों का खर्च खुद खुद उठा रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, आपने तीन पहलू यहाँ पे हमारे सामने शेयर कर रहे हैं। एक तो लड़कियों ने सिलाई सीख के अपने पेरेंट्स की जो फैमिली की इनकम थी उसमें योगदान दिया, दूसरा उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी। ये बहुत बड़ा स्टेप है अपनी लाइफ में, फरा ने तो करा ही है, पर और भी ऐसी लड़कियों ने करा जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे करी, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, सेल्फ सपोर्ट किया, और तीसरा जिनका डिवोर्स हो गया वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो ये तीन मेजर लाइफ चेंजर्स जो हैं, जो आए उनके लाइफ में, इसका श्रेय आपको जाता है, जो आपने बहुत सहनशीलता से, बहुत समझदारी से, और बिना इसकी शोर मचाए, शोर मचाए मतलब कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है इस चीज की, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गांवों में कैसे बदलाव आ रहा है। ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि हम कोई मीडिया में स्टोरी नहीं देते हैं, हम कोई इसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बट जो रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बातों से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर। हम कहते हैं ना कि हमने सोशल कैपिटल बिल्ड करा, हमने सोशल गेन्स की बात की, हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये तीनों का श्रेय आपने इतनी सरलता से किया और अपनी इतनी समझबूझ और मेहनत से किया, मैं इसका भी आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। फरा, ये हम इनके एरिया की बात कर रहे हैं, आपका सिमिलर स्टोरी पटवाई में भी है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे, पटवाई में ये तीनों

0: रीजन जो मैंने बात की है, सोशल गेन्स। सोशल गेन्स मतलब कि समाज में उनको कैसे इज्जत मिली, कैसे उनकी इज्जत बढ़ी परिवार में, समाज में, और कैसे उनको धन का भी लाभ हुआ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और जो लड़कियां बहुत ही डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस में थी, वो उन्होंने उन सरकमस्टांसेस को रिजॉल्व करा, उस कठिन समय से बाहर आई। तो फरा, आपके यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, क्या हमें सुना सकती हैं ऐसी स्टोरी आप?
1: जी मैम, बिल्कुल सुना सकती हूँ। पटवाई तो हमारा सेंटर अभी 6-5 ईयर्स हो गए चलते हुए, और उसमें लगभग 1,000-1,200 लड़कियों ने वहां पर सीखा है। स्विमिंग, ब्यूटी और कंप्यूटर है, और लाइब्रेरी भी है। तो कुछ लड़कियों की मैं स्टोरी बताऊंगी कि जैसे अभी हमारे पास लॉकडाउन में क्या हुआ कि कुछ बच्चे जूम ऐप के जरिए पढ़ नहीं पा रहे थे और मतलब पैसों से भी परेशान थे। तो अभी हमें दीदी दिया ने ऑनलाइन सेलिंग की एक ट्रेनिंग दी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और साइबर सेफ्टी की। तो वही ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन के जरिए लड़कियों को दी, कंप्यूटर की लड़कियां हैं, स्विंग की लड़कियां हैं, ब्यूटी की लड़कियां हैं, क्योंकि साइबर सेफ्टी से भी बचना जरूरी है। और ऑनलाइन सेलिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि घर पे रह के कोई भी लड़की कुछ भी अर्निंग कर सकती है। तो जब ये हमें ट्रेनिंग मिली तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि ऑनलाइन के जरिए भी हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। अभी लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है। तो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा उसके बाद हमारे सेंटर खुले, उसमें हमने वो ट्रेनिंग दी। सेकंड लॉकडाउन बाद में लगा था, तो कुछ लड़कियों को हमने जूम ऐप की ट्रेनिंग दी। जिस तरीके से हमारी रीड में ट्रेनिंग होती थी कि मीटिंग्स होती थी, वो लड़कियां वहां पर आके कंप्यूटर भी सीखती थी और वो देखती थी कि मैम आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये ऑनलाइन आप फेस टू फेस कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग में ही उनको एक ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से हम अपनी जीमेल आईडी बनाएं, उसके बाद हमारे पास अगर टच फोन है एंड्रॉइड का तो हम किस तरीके से जूम ऐप के जरिए बच्चों को भी क्लासेस दे सकते हैं जो हमारे स्क्रीनवुड स्कूल में चल रहा है, और किस तरीके से हम खुद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लड़कियां बहुत खुश हुई क्योंकि कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो अपने बुक से या फिर जो भी कॉपियां पहले की थी उससे पढ़ाई कर रही थी। जूम ऐप के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। जब उनको इस जूम ऐप के बारे में पता चला तो धीरे धीरे हमने उनके घरों से उनके फोन मंगाए, मतलब पापा के या भाई के जो भी घर में फोन रहते थे, उनके पास तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि आप 2 या 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पे फोन लेकर आओ, हम वो जूम ऐप आपको डाउनलोड करके देंगे, आपको पूरी मीटिंग बताएंगे किस तरीके से लेंगी आप, और इससे आप अर्न भी कर सकते हो घर पर बैठ के। जो भी बच्चों की क्लासेस छूट रही है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपकी क्लास छूट रही है आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सारी ही लड़कियां अपने फादर, अपने भाई, अपनी मदर का फोन लेकर हमारे सेंटर पे आ गई। जब दूसरे दिन आई तो हमें लगा कि काफी इच्छुक हैं लड़कियां ये करने में, तो हमने उनकी सभी की जीमेल आईडी बनवाई और जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग उनको बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो लड़कियां काफी खुश हुई। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बना लिया, पांच पांच बच्चों का, और उनको फीस रख दी 100 रुपए कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। गांव की लड़कियां जो मतलब बच्चे जो थे सिर्फ फेस टू फेस पढ़ते थे, उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हमारे वहां से जूम ऐप की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने देखा कि स्प्रिंगवुड स्कूल की भी क्लासेस ली जाती है, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने देती थी वो क्लासेस। तो उन्होंने 100-100 रुपए बच्चों से कहा कि आप फीस दो और हम आपके ऑनलाइन के जरिए आपकी पढ़ाई करेंगे। कोरोना के टाइम आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है। तो जब उन्होंने अपने गांव में एक एक बेस बनाया, हर लड़की ने पांच पांच चार चार लड़कियों बच्चों का या दो दो बच्चों का, वो 200 भी कमा रही हूँ तो उनके लिए बहुत है, वो फर्स्ट टाइम था उनका, वो बेस बनाया और उन्होंने उससे स्टार्टिंग कर दी। जब जूम ऐप से स्टार्टिंग कर दी तो जब वो अगले मंथ हमारे वहां आई ये सारी चीजें सीखकर और क्लासे लेके, तो बहुत खुश होकर आई और बोली मैम हमने तो अपनी क्लासेस इस पे स्टार्ट कर दी जूम ऐप के जरिए और हम बच्चों की क्लास ले रहे हैं, इस पे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई छूट गई थी वो भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लिंक भेज देती है मैम, और हम बच्चों की भी इसमें ट्यूशन जारी रखे हुए हैं जिससे हमें 200, 300 या 500 के लगभग हम बच्चों को क्लास दे देते हैं। अब हमने उनको इसके साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग के बारे में भी बताया कि आपके अंदर कोई भी हुनर है आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे अगर आपके अंदर स्विंग का बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, वो सूट बना के आप सिर्फ अपने घर में टांगोगे तो आपके मोहल्ले वाले देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे या एक दो गांव के लोग और आ जाएंगे वो चीज देखने के लिए। लेकिन आप इसी चीज को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी डालोगे तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अब आप व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो अपने रिश्तेदारों को, तो चैटिंग करते हो, हमने उन्हें बताया, बात करते हो फेसबुक से।

0: दोस्तों को बात करते हो, तो आप बात करते करते आप उसको अपना प्रोडक्ट भी भेजो कि हम तो ये बहुत अच्छी कुर्ती बनाने आती है, ये हमें सूट आता है, आप हमारे सूट भी देखो। वो अपने आगे और दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त उसके आगे को भेजेगा, तो इससे आपकी अर्निंग भी शुरू होगी और अपना काम आप स्टार्ट कर सकोगे। तो कुछ लड़कियों ने ये करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन उनको पैसे लेन देन में भी थोड़ी ज्यादा वो आई थी कि दिक्कत की कैसे लें, क्योंकि उन्हें गूगल पे का पता नहीं था। तो हमने धीरे धीरे उन्हें गूगल पे के बारे में बताया। अधिकतर लड़कियां जो पटवाई में हैं वो इतनी मतलब मेहनती हैं, एक जो हमारे यहाँ ये जो चुन्नी होती है माता की, वो चुन्नी बनने के लिए आती है, तो वो जो 1 रुपया 1.5 रुपया, तो दिन भर में लड़कियां 10 या 15 या 20 वो चुन्नियां निकाल लेती है उससे। तो एक लड़कियों ने ग्रुप बनाया और वो उन चुन्नी वाले अंकल से रामपुर में आई, बात करके गई, और हम मेरे साथ ही गई, मतलब हमें किसी ने बताया था कि वो चुन्नी वहां वहां से लेनी है। तो हमने लड़कियों का ग्रुप बनाया कि ये काम स्टार्ट करके देखते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग सब बस से रामपुर आए, रामपुर से हमने उन भैया से बात करी उस चुन्नी के लिए, तो उन्होंने बोला आप जितनी सिलवा सकते हो सिलवाओ और हमारे यहाँ से ये चुन्नी ले जाओ। तो उन्होंने हमें 500 चुन्नियां दी, वो 500 चुन्नियां लड़कियां हमारे पास बहुत थी, और हमने आपस में 20 20 30 30 चुन्नी बांट दी। लड़कियों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो चुन्नियां तैयार भी कर दी मैम, और आज की कंडीशन है लड़कियां खुद जाके वो चुन्नियां ला रही हैं माता रानी की, खुद सिलती हैं, खुद उनको देती हैं, और उससे जो भी अर्निंग होती है उनकी 1000 1500 ज्यादा तो नहीं हो पाती है, उससे वो अपनी कमाई कर रही है। तो पटवाई सेंटर में लड़कियों के आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बात करने का तरीका है, जब वो आती है तो उनके अंदर कुछ भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं होता हमें बस सिलाई सीखनी है। हम पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहती हो, मैम सिलाई सीखना है, उसके बाद हम अपने घर में करेंगे। उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग फिर जाते हैं आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं बता पाती है। फिर हमें उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे लाइफ स्किल है, लीडरशिप की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, आर्ट थेरेपी की है, तो हम उनको वो उनकी जो अंदर का जज्बा है ना वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और वो निकल के भी आता है। आज भी 1000 है हमारे वहां जो सीखी हुई है, 1000 में से हम सीना चौड़ा करके और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 300 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 500 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 300 ऐसी हैं जो मार्केट से भी काम लाके चाहे छोटा सा ही कर रही है वो कर रही है, और 500 ऐसी हैं जो अपने घर बैठ के ही सिलाई कर रही है, बट कुछ ना कुछ कर रही है, उनके अंदर जज्बा निकल के आया है कुछ करने का।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फरा, आपकी आपकी स्टोरी सुन के और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसे लगता है कि आप इतनी खुश होती हैं उसका आउटकम बयान करके कि आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। और अभिदा, आपने जो 400 लड़कियों को और उससे भी ज़्यादा लड़कियों को सिलाई सिखाई है, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं क्योंकि उनके जो फैमिली है उनको घर से बाहर तो जाने नहीं देती है। तो सीखने के बाद जो फरह ने बताया है वो आपके एरिया में भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं, अपने डिजाइन्स को प्रमोट कर सकती हैं। तो क्या अभी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई?
0: जी मैम, मैं हमारे सेंटर में 10 12 लड़कियों ने ग्रुप कराया था, जिसमें हमने प्रोडक्शन तैयार किए थे। लड़कियों ने आपस में ये ग्रुप बनाकर उसमें पैसे जमा किए और फैब्रिक लेकर आए, लेस वगैरह लेकर आए, और मैंने उनकी हेल्प की डिजाइन करने में। लड़कियों ने कुर्तियां डिजाइन की, प्लाजो दुपट्टे वगैरह डिजाइन किए, तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं काफी लड़कियों ने, और अभी कर भी रही है, उनको काफी अर्निंग भी हुई अच्छे से, और लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। तो एक दो लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी फिक्स हो गई थी और वो करना नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझसे बात की कि मैम हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, जब आपके बच्चों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, सिलाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो आप घर में घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। तो घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, लड़कियों ने बस हफ्ते में एक दो बार मेरे पास आ जाया करती थी ताकि मैं उनके हेल्प कर दूं। उन्होंने घर से ही काफी प्रोडक्ट बनाए और सेल करे, और अभी भी लड़कियां कर रही हैं, काफी लड़कियां कर रही
1: वेरी गुड, बहुत
0: हैं।
1: अच्छी बात है। और मैं फरा को बोलूंगी कि अबिदा के साथ मिलके यहाँ भी ग्रुप्स बनाए और लड़कियों को ऑनलाइन सेलिंग की ट्रेनिंग दे, बिकॉज ये हमारा कोर है। कोर इसलिए मैं बोलूंगी कि रीड इंडिया का मॉडल ऐसे ही है कि हर लड़की को सक्षम बनाना, हर लड़की को बताना कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकती है, अपने हुनर को कैसे आगे लेके जा सकती है, अपनी इज्जत कैसे कमा सकती है समाज में, फैमिली में और सोशल मीडिया अब हमारे लिए एक कंपल्शन बन गई है, बिकॉज कोविड ने हमें सोशल मीडिया के बारे में भी कंपेल कर दिया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाएं और उनको हम सपोर्ट करें काम करने के लिए, और हम एक इतना बड़ा कलेक्टिव एंटरप्राइज खड़ा कर दें रामपुर एरिया में कि सब लड़कियां मिलके इसको आगे लेके जाएं। और रीड इंडिया की गुड विशेस भी हैं, और रीड इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम, और इस थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंतर्गत मिलके हम कैसे एक बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं, ये आप अपनी सोच बनाइए और बहुत सारी लड़कियों को उसके साथ जोड़िए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक ट्विस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सिलाई की और कैसे हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं या कुछ, क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि अच्छे डिज़ाइन्स की कमी है और आप हमें बताएं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि किस तरह के वहाँ पे डिमांड आती है ड्रेसेस की या कुर्तीज की, या किस तरह के कपड़े वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके की सिलाई आना भी बहुत ज़रूरी है, और क्या वो जो डिमांड है आबिदा और फर्रा उसको पूरा कर पा रहे हैं या उनको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं?
0: यहाँ पर जो डिमांड है मैम, ज्यादातर प्लाजो कुर्ती की ज्यादातर डिमांड आती है लड़कियों के लिए और गरारों की, कि पार्टी वियर में अगर वो जाती हैं तो वो गरारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो सिंपल घर में भी पहनते हैं तो प्लाजो। प्लाजो और गरारे बहुत यहाँ पर चल रहे हैं, बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ टीचर बहुत ही मतलब अच्छी हैं और इनको सारी ही चीजें आती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट से कुछ स्विंग करवाना हो या फिर कोई स्विंग के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है तो हमें वापस भेजना हो, क्योंकि हमारी जो टेलर हैं और जो भी हमारी आबिदा स्विंग टीचर हैं बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती हैं, और पटवाई में भी फातिमा है, और जो चीज उन्हें नहीं आती है वो उसकी ट्रेनिंग लेने की भी कोशिश करती हैं। जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत अच्छा है कि हम कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल के देख सकते हैं। हमने इन्हें यही बताया है कि कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं करो, अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है या फिर कोई भी चीज स्विंग के लिए आया है या फिर कोई सिलवाने के लिए आया तो उसको ना नहीं करना है, चाहे भले ही आपको नहीं आता हो तो उसकी ट्रेनिंग लो, उससे मतलब सोचो कि हमें कैसे करना है। आज आप एक को मना करोगे कल फिर दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चाहे आप उसकी ट्रेनिंग लो या आगे बढ़ो या फिर आपके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करो, हमारे वहां जो भी आए गेस्ट उसको मना नहीं करो, जाना नहीं चाहिए यहाँ से।
1: बहुत
0: जी
1: बढ़िया
0: मैम,
1: फरा, आपने बताया कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का टेक्निक है कि किसी को मना नहीं करना है, और हमारा इसी तरीके से नेटवर्क भी बढ़ता है। अभी तक आपने लड़कियों को क्या-क्या सिखाया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे?
0: पहले मैं थोड़ा बेबी क्रॉक से करवाती हूँ। बेबी क्रॉप वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुर्ती सलवार और डिजाइनिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग नेट वगैरह, ये काफी पसंद है। यहाँ पर काफी डिमांड आती है इस चीज की। लड़कियाँ बस यही कहती है मैम हमें सिलाई के बाद अच्छे से हमें नेक डिजाइन सिखाइए, नेक डिजाइन लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और ब्लाउज पेटीकोट फरारे और पटियाला सलवार, ट्यूलिप सलवार, धोती सलवार, और यही सारा कुछ, साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना और लहंगा और शादियों के गरारे और चुनिया तैयार करना, ये सब हम सिखाते हैं।
1: वेरी नाइस। तो आपने पूरा ही एक कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो नहीं सिखाई, मेरा ये कहने का मतलब है,
0: जी
1: और बहुत अच्छे से सिखाई है। और क्या
0: जी
1: हम जरी जरदोजी को और सिलाई को मिक्स करके बना सकते हैं कुछ ऐसे ड्रेसेस, या आप ऑलरेडी बना रही हैं?
0: जैसे अभी जरी वर्क के हमने कुशन्स कवर बनाए थे तो स्विंग इन लोगों ने ही की थी, और अभी जैसे कुर्तियां मैंने भेजी थी ऑफिस में तो जो मैंने जरी वर्क का करवाया तो स्विंग इन्होंने की, बट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ से जरी वर्क करवा रहे हैं और ये लोग हमें स्विंग करके देते हैं।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक तालमेल बैठता है। जरी वर्क जो है, आप तो शादी के लहंगे से लेके बहुत भारी दुपट्टे से लेके एक नेक लाइन पे भी जरी करते हैं। ये जो आर्ट है ये बहुत कमाल का है और इसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जो लहंगे जहाँ तक मुझे पता है जो भी करोल बाग में या चांदनी चौक में लहंगे मिलते हैं वो सारे ज्यादातर रामपुर से भी बनकर आते हैं, और लड़कियां बहुत इसमें अपना कौशल दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बना सकते हैं। और जो दुपट्टे बनाती हैं आप, जाल वाले दुपट्टे या बॉर्डर वाले दुपट्टे, या अलग से बॉर्डर भी डिजाइन कर देती हैं और ऐसे गले में भी काट देती हैं डिजाइन थोड़ा सा करके, तो ये जो हुनर है इसको बहुत आगे जाने की जरूरत है। और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, ये एक टीम वर्क होता है, जैसे अबिदा है, फरा है, अकबर है, और भी बहुत सारा एक टीम है आपके पास, इसको आप आगे ले जाने की प्लानिंग करें, सोचें कैसे करेंगे, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी भी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अभी ये हमारा पुश्तों से चलता आ रहा है, आज आप कर रही हैं और आगे भी इसको ले जाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे, तो इसको आप बनाए रखिए, आगे लेके जाइए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड मॉडल का एक कंपोनेंट है वो एजुकेशन, अभी अबिदा ने भी बोला, फरा ने भी बोला, अबिदा ने भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, फरा ने भी कंटिन्यू करी, ये हमें पता। और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी दिए कि लड़कियां अपनी फीस खुद भर के अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रही हैं, पर एक बात का ध्यान आप रख भी रही हैं और आगे भी रखेंगी कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आके स्किल्स की ट्रेनिंग लेती हैं वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे और अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की डिग्री तो चाहिए चाहिए, पर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन, एंड्रॉयड फोन चलाना नहीं आता है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे पिछड़ जाएगा, और उसकी भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उस ट्रेनिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, रुझान है, और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग।
0: ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग को ना मैम,
1: ऑनलाइन ट्रेनिंग को, टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना और आगे बिजनेस को भी लेके जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है और उस टूल को हम कैसे यूज करें जिससे हम अपनी बात भी रख सके, जैसे ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग है, लैपटॉप को यूज कर सके आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सके फोन के द्वारा, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का और आपके हुनर का तालमेल बैठना आने वाले समय में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे, और जो 2 साल हम पीछे रह गए हैं उस 2 साल की जो टाइम है उसको भी पूरा करने की बहुत जरूरत है, तो डबल मेहनत करने की जरूरत है। तो वो मैं जानना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी में कितना रुझान है लोगों का।
0: टेक्नोलॉजी में मैम ज्यादातर रुझाव नहीं दिखा पाती हैं लड़कियां, उनको बहुत समझाना पड़ता है। ज्यादातर वो सोचती हैं कि हमें स्विंग आ जाए तो हम अपने घर पे बैठ के सिलाई करते रहें, जो भी हमें 100-200 रुपए घर के आस पड़ोस के कपड़े आ जाएं या फिर थोड़े से गांव के दूर के आ जाएं, हम यहीं पर करते रहें। बट जब उनसे बात करते हैं कि हम इस चीज से बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप ये सूट सिल के आपके घर में ही मतलब 2-3 लोगों को अर्न कर सकती हो, यही आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए बेचेंगी तो दिन में 10 सूट, 15 सूट, 20 सूट, 50 सूट, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो 100 सूट भी बेच सकती हैं। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादा रुचि मतलब अपनी लगाइए। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में सारी चीजें आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे थे, हमें उनसे ये भी बताना पड़ता है, हम किसी दुकान पे भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें क्या याद आ रहा था, सिर्फ ऑनलाइन की हर चीज याद आ रही थी कि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर दें, या फिर हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम ऑनलाइन पे करेंगे, या फिर हमें घर में कोई भी खान पीने की चीज चाहिए तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे, तो हर चीज का जरिया कहाँ था, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वाले ये सोचते कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता, और वो ऑनलाइन जो हम मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पाते। तो हम हर लड़की को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा काम है, तो आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए, अपने चाहे फोन से बढ़ाइए। कंप्यूटर है यहाँ पर, रीड इंडिया ने इतने सारे कंप्यूटर लैपटॉप दे रखे हैं, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से हम सेलिंग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ भी हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा उन्हें यही समझाना पड़ता है कि इसमें आइए। वो ऑनलाइन में आने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, आके बहुत कम रुचि दिखाते हैं।
1: पर फरा, अगर हम अगले 6 महीने इसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, और मुझे लगता है कि जब आपने इतने पड़ाव पार कर लिए, और ये पड़ाव कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप ज़रूर कर
0: नहीं
1: पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभिदा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फरा का फ्यूचर तो हमें पता है कि फरा अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, फरा के प्लान्स, फरा के थॉट्स बहुत क्लियर हैं। और आज मेरे को ये कहते हुए भी खुशी होती है कि फरा हमसे भी आगे निकल गई है, और फरा इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। और अमिता, आपके क्या प्लान्स हैं?
0: मेरे प्लान यही है कि मैं आगे और आगे बढ़ूं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ रीड के जरिए हूँ, और मैं रीड के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रीड इंडिया जैसे मेरा परिवार है, मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से, ऐसे ही मुझे रीड इंडिया हमेशा सपोर्ट करे, और मैं रीड इंडिया के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन मैंने खुद से फैसला किया घर वालों से कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे और बहुत कुछ करना है, और अपना नाम अच्छी तरीके से रोशन करना है। जैसे मुझे मेरा यहाँ मोहल्ला और पड़ोस जानता है, मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मुझे अच्छे से जाने, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे बुलंदियों तक पहुंचूँ और रीड इंडिया का नाम रोशन करूँ और अपने ख्वाब पूरे करूँ, अपने और अपने घर वालों।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबिदा, मैं थोड़ा सा इधर अगर बात करूं तो यूएन ने कुछ गोल्स डिफाइन करे हुए हैं, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ें कि हमारे प्रोग्राम्स सस्टेन हो जाएं। जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट है, आप तो रोल मॉडल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो लाइवलीहुड आप बहुत आगे लेके जा चुकी हैं। देखिए, अगर हम गांव की स्थिति को गांव से ही कंपेयर करें तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुकी हैं। कभी भी आंकड़ों को अर्बन और रूरल से जब हम कंपेयर करते हैं, वो रिसर्च के लिए होता है कि कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं। बट अगर हम गांव के आंकड़े गांव के लेवल तक ही एनालाइज करें, तो अगर आप 3,000 या 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कमाई है। इसको आप कभी भी शहर की कमाई के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, और आगे बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं। और जो मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप नोइंगली अननोइंगली उनको ग्रास रूट्स पे इस तरीके से एड्रेस कर रही हैं कि डेवलपमेंट है जो वो रूट से हो रही है, और जब रूट मजबूत होती है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता उस पेड़ को, और उस पेड़ पे फल लगने ही लगने हैं, और उस फलों का जो जो उसका फायदा है वो बहुत सारे लोग जो जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो उनसे कलेक्टिव फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आपको सैल्यूट भी करूंगी कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत की, जैसे मेहनत करके अपने सरकमस्टांसेस से आप बाहर आए, ऐसे आगे चल के बहुत सारी औरतों को सिखाएं और बहुत सारी औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आने वाली जनरेशन उन चैलेंजेस को फेस नहीं करे। तो इसी मैसेज से मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।

जिला झज्जर माजरी गांव और तन्नु की तरफ तय आप सब ने मेरी राम राम। तो प्रिय साथियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक छोटी सी कहानी और हमारी कहानी का शीर्षक कुछ इस प्रकार है कि दिल की कहानी और मेरी जुबानी। तो सुनिए किस प्रकार एक छोटी सी बच्ची अपने पापा से कहती है, शाम हो गई है घूमने चलो ने पापा, कि शाम हो गई है घूमने चलो ने पापा, चलते चलते थक गई हूँ कंधे पर बिठा लो ने पापा, मम्मा तो सो गई है अब आप ही थपकी देकर सुलाओ ने पापा, कि मम्मा तो सो गई है अब आप ही थपकी देकर सुलाओ ने पापा, पाला पोसा बड़ा किया कि पाला पोसा बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो ने पापा, आपने मेरी हर बात मानी एक बात और मान जाओ ने पापा, स्कूल तो पूरी हो गई है कॉलेज जाने दो ने पापा, कि स्कूल तो पूरी हो गई है कॉलेज जाने दो ने पापा, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है एक बार मुस्कुराओ ने पापा, कि आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है एक बार मुस्कुराओ ने पापा, इस धरती पर बोझ नहीं हूँ मैं, कि इस धरती पर बोझ नहीं हूँ मैं, दुनिया को समझाओ ने पापा, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है एक बार मुस्कुराओ ने पापा।

तो प्रिय साथियों, जैसा कि आपने इस छोटी सी कहानी में सुना कि किस प्रकार एक छोटी सी बच्ची शाम के समय अपने पापा के सामने अपनी बात रखती है और उनसे कहती है कि आपने मेरी सारी बातें मान ली, मैंने स्कूल भी पूरी कर ली है, लेकिन मैं अब आगे पढ़ना चाहती हूँ और अपने भविष्य में कुछ बनना चाहती हूँ, आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी बात समझ आई होगी और आप इस दुनिया की सभी उन बेटियों का साथ देंगे जो अपने जीवन में कुछ न कुछ जरूर बनना चाहती हैं और वो किसी न किसी वजह से पीछे रह गई हैं। तो प्रिय श्रोताओं, मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगी और कल फिर इसी समय आपसे जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।

0: हालोती रा लोगों और लोगाइयां ने रूही और
1: पुरुषोत्तम रा घना घना राम राम।
0: दोस्तों आपका अपना कार्यक्रम ज्ञान पुरखों का में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान का वो खजाना जो आप सबके पास है, लेकिन शायद हम उससे अनजान हैं।
0: भाई किस खजाने की बात कर रहे हैं आप?
1: रूही, आज हम ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे आसपास हर कहीं मिल जाता है, लेकिन उसके उपयोग के बारे में हम में से कई लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है।
0: अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं उस छोटे से कटीले गुदेदार पौधे की जिसे हम ग्वारपाठा कहते हैं।
1: जी हाँ, ये वही पौधा है जिसे हम हिंदी में घी कुंवर, संस्कृत में घृतकुंवारी और अंग्रेजी में एलोवेरा के नाम से जानते हैं।
0: ओह, कहीं तुम उसी एलोवेरा की तो बात नहीं कर रहे हो जो आजकल क्रीम, साबुन, शैम्पू और कई सारे सौंदर्य प्रसाधनों में इस्तेमाल किया जा रहा है?
1: हाँ रूही, ये वही ग्वारपाठा है। आज हम जानेंगे कि ये छोटा सा पौधा कितने सारे गुणों से भरपूर है।
0: तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक छोटा सा नाटक।
2: अरे मोनिका, ओरे मोनिका, अरे काहे कर रही छे तू?
3: काहे कर रही छे? क्रीम लगा रही छू मुंडा पर, मारा तो सारा मुंडा ही खराब हो रही छे।
2: अशो काहे हो गयो तारा थोबड़ा के, आंखों दनी कांच में मुंडो देखबो करे छे?
3: अरे मम्मी देख तो सही, सारा मुंडा पर फुंसिया ही फुंसिया हो रही छे। मने आज ही तो टीवी में देखो छे कि मुंडा पर लगावा की क्रीम आवे छे, उसे सारी फुंसिया मिट जावेगी।
2: अरे तू कशी क्रीम लावेगी? मुंह बताऊं तो नहीं को इलाज, यो गंवार पाटो छे नी, उन्हें चोल और हल्दी मिलार बिना मुंडा पर लगा ले, चार दिन में तारी फुंसे मिट जाओगी।
3: छी छी छी, मुंह नहीं लगा रही ग्वार पाटो, बड़ी बात आवे वो में तो मारा मुंडो और बगड़ जावेगो।
2: ओ हो, लो कर लो बात, आजकल का चोरा चोरी तो बात ही न माने, जमानो ही बदल गयो भाई।
4: अरे तू काहे पंचायत कर रही छे, छोरी ने काहे समझा रही छे, तू काहे डांगडर छे, छोरी रो मुंडो बगड़ गयो तो इसे शादी कौन करेगो?
3: पापा था तो मने पैसा दे दो, मुँ तो आज ही क्रीम लाऊंगी।
4: कतरा पैसा चाहे तन?
3: पापा मैंने तो पूरा 999 रुपए दीजो।
2: अरे वारे, अतरी महंगी, मारी 15 दिनारी मजदूरी तो तारी क्रीम में ही चल जाओगी।
4: ले जा तू तो, थारो इलाज ज्यादा जरूरी है।
2: क्यों री सॉरी, ले आएगा इधर दवाई।
3: बहुत बढ़िया क्रीम लाई छू, इसे फुंसिया भी मिट जावेगी और चेहरा भी सुंदर हो जाओगो मारो।
2: है री छोरी, ओ काई मंडरियो छे तारी क्रीम का डब्बा पर, यो तो गंवार पाटा की नाय लाग रियो छे।
5: अरे मम्मी, इस पर तो एलोवेरा लिख रखा हो छे, एलोवेरा तो ग्वार पाटो ने ही केवे छे।
2: अच्छा, तो फिर बाजार से खरीद लावा की काई जरूरत छे, या तो मैं पहले ही की छी?
3: तो मम्मी मने ग्वारपाटा के बारे में और बताओ ना, यू काई काई काम आवे छे, इगियर काई काई चीजा बने छे।
2: तो बात मारी मानी ने, जा पूछ दादी नानी ने, ग्वारपाटा में काई काई गुण है, जा लोगों की तू बात सुने।

0: सुना दोस्तों आपने ये नाटक?
1: हाँ पुरुषोत्तम, नाटक में तो बहुत मजा आया, लेकिन अब हमारे श्रोताओं को ये तो बताइए कि ग्वारपाठा और किस किस उपयोग में आता है।
0: दोस्तों, ये जानकारी के लिए हमने आज आमंत्रित किया है राम अवतार जी को। राम अवतार जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी जानकारी मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ वो सब हमारे पुरखों बूढ़े बुजुर्गों का ज्ञान है जो मैंने गांव-गांव घूमकर लोगों से सीखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्वारपाठा किसी भी तरह की जमीन में और कम पानी से भी उगाया जा सकता है। दुनिया भर में इसकी 300 से ज्यादा किस्में हैं और लगभग सभी का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है।
1: आपने अब तक ग्वारपाठे का उपयोग किन किन बीमारियों में किया है?
2: रूही जी, मैं अब तक ग्वारपाठे के कई प्रयोग कर चुका हूँ। चर्म रोग, पेट के रोग, दमा और गठिया के रोगों में ग्वारपाठा बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। मैंने ग्वारपाठे के गूदे का इस्तेमाल बालों के तेल, शेविंग क्रीम, साबुन आदि में भी किया है। ग्वारपाठे का रस तो पेट के लिए अमृत के समान माना जाता है। चमड़ी के जल जाने पर या कट जाने पर अगर आप ग्वारपाठे का रस लगाएं तो तुरंत जलन मिट जाती है और बहुत जल्दी घाव भी भर जाता है।
1: राम अवतार जी, ग्वारपाठे को चमड़ी पर लगाना तो ठीक है, लेकिन इसे खा कैसे सकते हैं? इसका रस तो बहुत कड़वा होता है।
2: रूही जी, हमारे क्षेत्र में ग्वारपाठे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक बहुत कड़वा होता है, लेकिन दूसरे में हल्के कड़वेपन के साथ थोड़ी मिठास होती है। तो मीठे ग्वारपाठे की आप कई सारी खाने की चीजें बना सकते हैं, जैसे इसका हलवा, लड्डू, सब्जी, चटनी और अचार पहले गांव में खूब बनाए जाते थे। इनके अलावा ग्वारपाठे के पापड़, मुठिया, नमकीन सेव, कड़ी आदि भी बनाए जा सकते हैं।
1: राम अवतार जी, आजकल तो बाजार में भी ग्वारपाठे से बनने वाली बहुत सारी चीजें बिक रही हैं। हमारे युवा साथी ग्वारपाठे का सीधा उपयोग करने के बजाय बाजारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आप हमारे युवा दोस्तों को इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: साथियों, आजकल विदेशी कंपनियां हमारी स्थानीय चीजों और लोक ज्ञान को चुराकर उनसे बेशुमार पैसा कमा रही हैं। आज ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान को जानें और समझें, ताकि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए बाजार पर निर्भर ना होना पड़े।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम अवतार जी, आपने श्रोताओं को बहुत उपयोगी जानकारी दी।
0: चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि गांव के लोग ग्वारपाठा के बारे में क्या जानते हैं।
3: मेरा नाम ग्यारसी थे और गांव बावरगढ़ थे, और ये ग्वारपाठो छे ने उका बारा में जानकारी है। तो एक तो जो मुंडा पे फुनसिया सीखो जाओ, मुंडा पे भी चेहरा पे लगा सके छी ने। दूसरा के जिसे ये घुटना दुखबा करे छे तो उमे भी इन्हें खा सके छे ग्वारपाठा ने। और दूसरी बात के ये जानकारी भी है कि इको आलू बना के भी खा सके छे, कि इन्हें बारीक करके और इमें घी में थोड़ा थोड़ा घी में सेक और शक्कर डाल के और आलू बना के खा लेचे तो बाई बादी रहे छे तो उको दर्द भी इसे हट जाओ छे। काम में लिया था के जिसे ये घुटना में दर्द हो रहा था तो ग्वारपाठा और हल्दी मिला के और वे थोड़ी थोड़ी गर्म करके ये घुटना के बांधे थे ग्वारपाठा, तो उसे दर्द कम हो गयो। इसे कहते के ग्वारपाठा थोड़ी मार सीखी में तो मार भी निकल गई ग्वारपाठा से और ये दर्द बंद हो। ग्वारपाठा को पहले तो चक्कू से छील के और वो भीतर को वो छे ने वो गुर्दो सोक उन्हें निकाल के और बारीक करके बारीक बारीक काट के और कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा सेक ले, सेक और उमे घी डाल दो। घी तो कितना भी डाल दो, 100 ग्राम के बराबर भी डाल सके, 50 ग्राम भी डाल सके, और शक्कर आधो किलो में अध पाव भी डाल सके। तो अध पाव शक्कर में कहिए के वो ज्यादा नो होगी शक्कर, तो शक्कर फिर वो ग्वारपाठो काम करेगो। तो इको हलवो भी बन जाओ छे, और हलवो बना लिया ना तो इन्हें खा के एक दो बार हलवो बना के खा कर देखो तो अपने बाई बादी छे ने वे अपने शरीर में से निकल जाओगी, अच्छो शरीर हो जाओगा। तो ये बाई बादी में भी काम दे छे ग्वारपाठो।
4: मेरा नाम बेनी बाई है और गांव हमारा पीजनी है। हमारा भाई था जैसे पहले जंगलों में ज्यादा काम करती थी, तो वो बैल के पीछे पड़ा नहीं, वो तो एक पेड़ की फटकार लगी उसकी आंख में, ये वो आंख लाल पड़ गई। फिर शाम के घर आए तो घर आके मेरे पापा ने वो गोंड़ फटाया उसके लिए चीर के और टुकड़ा कर कर के बीच में से अच्छे बढ़िया निकाल के उसमें से और उस पर थोड़ी सी हर्द पटक दी, उसमें थोड़ा थोड़ा घी और मामूली मामूली आँच लगा के और फिर उसकी आंख में बांध दी तो उसका दर्द भी कम हो गया और वो लाल लाल थी वो भी साफ हो गई, उससे ज्यादा परेशानी नहीं आती। ये हमारे पापा की देखा हमने, हमारा पापा ने किया था मेरे भाई से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ग्यारसी भाई बेनी भाई। आज हमने यह जाना कि छोटा सा पौधा ग्वारपाटा हमारे लिए कितना उपयोगी है। अगले हफ्ते नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे,
1: तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, नमस्कार।

सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद आजाद आबो हवा में लहराता तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि देश का पहला राष्ट्रीय ध्वज पहली बार विदेशी धरती पर फहराने का साहस किया था मैडम भिकाजी कामा ने। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने देशभक्ति के आगे सारे निजी हितों और सुखों को ताक पर रख दिया और 3 दशकों तक निर्वासित जीवन बिताते हुए भी विदेशी भूमि पर स्वाधीनता की अलग को जलाए रखा। भिकाजी का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता सुराजजी पटेल मुंबई में एक समृद्ध व्यापारी थे। बचपन से ही तीव्र बुद्धि वाली भिकाजी को विभिन्न भाषाएं सीखने में रुचि थी। भिकाजी के मन में लोगों की मदद करने की भावना भी कूट कूट कर भरी थी। 3 अगस्त 1885 को वकील रुस्तम कामा से विवाह के बाद भिकाजी समाज सेवा के कार्यों से पूरी तरह जुड़ गई थी। 1896 में मुंबई में भयानक प्लेग फैला। मैडम कामा दिन रात प्लेग पीड़ितों की सेवा में लग गईं, लेकिन वो खुद भी इस बीमारी से बच नहीं पाई। बीमार भिकाजी को परिवार ने सेहत की बेहतरी के लिए 1902 में लंदन भेज दिया। लंदन प्रवास के दौरान वो 2 बड़ी राष्ट्रवादी हस्तियों के संपर्क में आई। एक दादा भाई नौरोजी जो लंदन में ओवरसीज कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और दूसरे श्यामजी कृष्ण वर्मा जो लंदन के भारतीय समुदाय में हाइट पार्क में दिए गए उग्र राष्ट्रवादी भाषणों के लिए जाने जाते थे। मैडम कामा कृष्ण वर्मा की इंडियन होम रूल सोसाइटी से जुड़ गईं। फरवरी 1905 में ब्रिटिश सरकार ने मैडम कामा को राष्ट्रवादी गतिविधियों में हिस्सा न लेने की शर्त पर देश वापस लौटने की बात कही, जिसे मैडम कामा ने सिरे से नकार दिया और लंदन से ही स्वाधीनता की क्रांति का परचम बुलंद कर दिया। साल 1906 में इंडिया हाउस की स्कॉलरशिप पर लंदन पहुंचे विनायक दामोदर सावरकर से मैडम कामा की पहली मुलाकात हुई। सावरकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की गुलामी का मुद्दा उठाना चाहते थे। इसके लिए 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में होने वाली इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस एक अच्छा मौका था। सावरकर ने मैडम कामा को स्टुटगार्ट जाने के लिए तैयार कर लिया और साथ ही तैयारी शुरू हुई भारत के पहले राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की, जिसे मैडम कामा अपने साथ ले जाने वाली थी। 22 अगस्त 1907 को इस ध्वज के साथ मैडम कामा जर्मनी में स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लेने पहुंच गईं। भिकाजी ने ध्वज फहराया और सभा में मौजूद लोगों से भारत की स्वाधीनता के ध्वज को सैल्यूट करने का आह्वान किया। इस अपील का असर इतना था कि वहां मौजूद सभी लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। फिलहाल मैडम कामा दोबारा लंदन लौटी। इसी बीच 1 जुलाई 1909 को सावरकर के शिष्य मदनलाल ढींगा द्वारा ब्रिटिश अधिकारी विलियम कर्जन वाइली की हत्या से हड़कंप मच गया। ढींगरा पकड़े गए और लंदन की पेंटेविले जेल में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस प्रकरण के बाद मैडम कामा फ्रांस चली आई। फ्रांस में इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना में योगदान दिया और 2 प्रकाशन वंदे मातरम और तलवार शुरू कर अपने क्रांतिकारी विचार प्रकट करने लगी। कई फ्रांसीसी अखबारों में इनका चित्र रोमन कैथोलिक चर्च में संत माने जाने वाली फ्रांस की वीरांगना जोन ऑफ आर्क के साथ आया, जिससे साफ था कि यूरोप के राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक समाज में मैडम कामा गहरी छाप छोड़ रही थीं। 1910 में मिस्र के काहिरा में एक सभा के संबोधन के दौरान नारी सशक्तिकरण को लेकर मैडम कामा का बेहद दृढ़ रवैया सामने आया। इन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ पुरुषों को ही देख रही हूँ जो मुल्क की आधी आबादी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ हैं मिस्र की माताएं बहनें? आपको नहीं भूलना चाहिए जो हाथ पालना छुलाते हैं वो राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं। कई क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने फ्रांस सरकार से मैडम कामा के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया, जिससे फ्रांसीसी सरकार ने नकार दिया। हालांकि 1914 में विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस और ब्रिटेन की दोस्ती के बाद मैडम कामा को फ्रांस सरकार ने
नजर बंद कर दिया था और करीब 3 बरस बाद खराब स्वास्थ्य के कारण नवंबर 1917 को इन्हें छोड़ा गया। 3 दशकों तक निर्वासित रहने के बाद 1935 में 74 बरस की उम्र में भीकाजी कामा को वतन लौटने की इजाजत मिली। अब तक मैडम कामा बहुत बीमार हो चुकी थीं और बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते वतन लौटने के कुछ महीने बाद 13 अगस्त 1936 में इनका देहांत हो गया। 1962 में गणतंत्र दिवस के दौरान मैडम भीकाजी कामा की याद में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। 1997 में भारतीय तटरक्षक बल ने मैडम कामा के नाम पर प्रियदर्शनी क्लास फास्ट गश्ती पोत ICGS भीकाजी कामा कमीशन की। मैडम कामा का स्टुटगार्ट में फहराया ध्वज आज भी पुणे की मराठा और केसरी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। यूरोप और अमेरिका में भाषणों और क्रांतिकारी लेखों के जरिए देश के आजादी के हक की मांग बुलंद करने वाली इस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर आज देश भर में कई मार्ग और इमारतें हैं।

अपने समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, पर पूरे पूरे जहान में मैं सबसे अच्छी हूँ, क्योंकि मैं रोज रात को सोने से पहले ये सोचती हूँ कि आज मैंने अच्छा काम किया क्या। और अगर मैं 10 काम भी रोज अच्छे कर लेती हूँ, तो साल के एंड में अगर मैं अपनी डायरी देखूंगी, जो मैंने पहले कभी बहुत बारी बोला है कि अपनी डायरी लिखनी चाहिए, तो एंड ऑफ द ईयर मेरे पास इतने अच्छे कामों का खजाना हो जाएगा कि मैं कभी कुछ गलत करना ही नहीं चाहूंगी। मेरी सोच में से ही निकल जाएगा कि मुझे कुछ गलत करना है, तो नेचुरली देन आई एम द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। यू कैन सी हाउ वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड टू रीचिंग अप टू दीस पॉइंट्स। दिस इज पॉसिबल इफ यू हैव अ पैशन। और पैशन क्या है? कंटेजियस है, एक बीमारी है छूत की। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आज पैशनेट हूं कुछ करने के लिए, और जब तक मैं उसको कर नहीं लूंगी, मेरे को अंदर इरिटेशन होएगी, मुझे अंदर ये फीलिंग आएगी कि व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। वॉचिंग ए पैशनेट लीडर एनर्जाइजेस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो लीडर होता है वो दूसरों में भी पैशन की वो आग लगा देता है कि यू शुड

I should say that keeping the organization in the front line, uski progress ke liye hum baat karte rahe. The result is pure magic. When you will do this, you will not realize ki aapke results kya aa rahe hain. आप देख लो, रीड इंडिया को देख लो. अगर हमारे में पैशन नहीं होता, अगर मेरी टीम एनर्जाइज नहीं होती, तो क्या हम 1 करोड़ की बैलेंस शीट से 13 करोड़ तक पहुंच जाते या 10 करोड़ तक पहुंच जाते 13 साल में? पॉसिबल ही नहीं था. बिकॉज काम ने अपने आप को दिखाया, हमने काम किया, हम एक्सपैंड हुए, हमने इतने सारे सेंटर्स बनाए, तो जो रिजल्ट अभी हमारे सामने आया है, तो हम उसको डॉक्यूमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं. वो इतना मैजिक आउटकम आ गया हमारे सामने. हमें जो भी कोई कहता है कि आप इतना काम कैसे कर रहे हो, पर हम कर रहे हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है. काम तो नजर आ रहा है ग्राउंड पे, आपके सामने है जो आप काम कर रहे हो. और अगर आप लोग भी डॉक्यूमेंट हमारे लिए, तो इट्स टू लेट टू डॉक्यूमेंट नाउ कि आप मुझे पिछले 13 साल का वो लिखना पड़ेगा, पर आप लोग तो अभी से लिखना शुरू कर दो. आप क्या कर रहे हो, लिखना क्या है, आप लोगों के टच में हो. कोई भी स्टोरी आपको अच्छी लगती है आप अपनी डायरी में लिख लो. कोई भी काम आपको अच्छा लगता है आप अपनी डायरी में लिख लो. किसी की भी लाइफ आपने ट्रांसफॉर्म करी है जो आपके सामने आके बता रहे हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये चेंज आ गया, आप उसको लिख लो. आपने जो ट्रेनिंग करी उसके बारे में लिख लो. जो भी आपने काम किया उसका क्या आउटकम आया, अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप उसको लिखते जाओ. तो ये क्या होगा, आपका एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि आप किसी भी ऑथर को दोगे वो बोलेगा अच्छा मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको. ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी है जो ग्रास रूट से उभर के आई है, जो एक्चुअली द नेक्टर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, आई शुड से द एसेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो है वो आप लोग कर रहे हो. एंड इट्स अ फैक्ट, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जो सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो काम करते हैं, जो फंड रेज करते हैं, पर मैं उन सबको एक साइड पे रखूंगी. पर जो काम आप लोग कर रहे हो उसको मैं बहुत ही हाइट पे रखूंगी, बिकॉज डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ काम करना ही एक सोशल डेवलपमेंट का मकसद है. ठीक है, जो रिजल्ट्स नेचुरली दे विल बी मैजिकल रिजल्ट्स, तो हमें उस सिचुएशन तक अपने आप को लेके जाना है. नेगेटिविटीज आती हैं, गुस्सा मुझे भी आता है, मैं भी बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, पर मैं इमीडिएटली अपने आप को करेक्ट कर लेती हूँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके कि नहीं, मुझे राइट स्टेप लेना है, मुझे नेगेटिव नहीं जाना. और अगर इस चीज को मैं डिले कर देती हूँ ना, तो उतना ही जो मैजिकल रिजल्ट्स हैं वो वापस आने शुरू हो जाते हैं. आपको पता है नेगेटिविटी कितनी स्पीड से चलती है, पर पॉजिटिविटी को पकड़ के हाथ में रखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है. ये सबको पता है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड नेगेटिव हाईएस्ट स्पीड से भागता है, पर उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है. तो ये पैशन और जो मैं बात कर रही हूँ हंगर और डिसिप्लिन, ये बहुत तीनों चीजें लिंक करती हैं. आर यू एमिंग टू बी बेस्ट यू? ठीक है, तो चलो हम हंगर की बात करते हैं. यू वॉन्ट टू विन एंड यू हैव टू विन, ये सबको पता है. ये तो मैं अभी पिछले स्लाइड्स में भी मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि हमें विन तो करना ही है. इफ यू वॉन्ट टू विन यू मस्ट फर्स्ट फील हंगरी फॉर यू. हंगर जब तक नहीं आएगी हम कैसे विन करेंगे. When we swim, we keep our mouth out of water to breathe. We cannot put our head in water for long time as we need air to breathe. अगर हम अपना सिर पानी में डुबो के ही तैरते जाएंगे तो हमें सांस कैसे आएगा. Even fish भी अपना मुंह थोड़ा सा बाहर करती है पानी से, कभी कभी उसको हवा चाहिए होती है. When you want to win and need wisdom as badly as you need the

0: air. When you are underwater, you will get it because you struggle to get the air and relaxed when you got it. तो ये बहुत एग्जाम्पल डायरेक्टली रिलेटेड है आपके विजडम से. जब आपको कुछ चाहिए और आप बैडली उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि जब अपना सर आप पानी में डुबा के तैरते हो तो आपको उस समय क्या चाहिए, हवा चाहिए, एयर चाहिए ब्रीद करने के लिए, तो आप डेस्परेटली अपना सिर बाहर करते हो एयर लेने के लिए. और जब आप चल रहे हो एंड यू वॉन्ट टू विन, यू वॉन्ट टू अकॉम्प्लिश, एंड वेन you are struggling to accomplish and you get the results, then you feel relaxed. usme gap kya tha, jab hum swim kar rahe hain air ka gap tha, aur jab hum apna kaam karte hain to hamare samne koi bhi gap aa sakta hai, aur us gap ko fill karne ke liye, us cheez tak pahunchne ke liye hame struggle karni padti hai, aur jab hum struggle karte hain to hum relaxed feel karte hain ki maine ek maqam या दो मकाम या तीन मकाम अपने पार कर लिए अपनी हार्डशिप से, अपने स्टेप से. सिमिलरली व्हेन यू वांट टू रियलाइज योर पैशन यू नीड हंगर, एंड व्हेन यू आर एबल टू गेट द फूड यू रिलिश यू रिलैक्स. अगर सिंपल सिंपलेस्ट वर्डिंग में मैं बोलूं, हम रोज सुबह उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, किसके लिए? लेबर को देख लो, हमें देख लो, बड़ों को देख लो, एक्सेप्ट जो माल फंक्शनल है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ. हम सब लोग अपने घर से निकलते हैं एक गोल के लिए कि हमें पैसा चाहिए सर्वाइवल के लिए. पैसे से हमने खाना खरीदना है, अपनी फैमिली को चलाना है, अपने परिवार को चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है. हम ये सब अचीव कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं. किसी को नौकरी नहीं मिलती, वो भी स्ट्रगल करता है. किसी को कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो उनके लिए स्ट्रगल करता है. पर जब हम उनको अचीव कर लेते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं. यही पैशन हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होना चाहिए. ठीक है, तो ये मैं फिर ये मैं पैशन और हंगर को कोरिलेट कर रही हूँ. तो लास्ट में मेरा एक ही पॉइंट है कि डू नॉट गिव अप. कोई भी चैलेंज आता है तो प्लीज डू नॉट गिव अप, जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व इट. अब तीसरा पॉइंट क्या है, डिसिप्लिन. हमने हंगर की बात कर ली, पैशन की बात कर ली. द मैजिक इन योर हेड फॉर एक्शन. वंस यू हैव द पैशन एंड हंगर, यू विल सी अ रोड एमर्ज इन फ्रंट ऑफ यू लीडिंग यू टू योर गोल. ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था. There will be obstacles on the way. There will be roadblocks. You need discipline to do right things at right time again and again. जितने भी लीडर्स हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में एक ही बारी काम करके सक्सेसफुल नहीं हो जाते. उनको बार बार एक्शन लेना पड़ता है, बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है, बार बार अपने रोड ब्लॉक्स को रिमूव करना पड़ता है. पर जब हम राइट एक्शन एट राइट टाइम लेते हैं तो हमारे जो रोड ब्लॉक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं. सो यू नीड डिसिप्लिन टू स्टे ऑन द राइट ट्रैक. दोज हु विन द गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद डिसिप्लिन. वो ये तो नहीं कहते अच्छा आज तो नींद नहीं खुल रही, आज हम नहीं जॉगिंग के लिए जाते. वो ये भी नहीं कहते कि आज तो मैं पिक्चर देखने चला जाता हूँ, आज अपने फुटबॉल की क्लास मिस कर देता हूँ. कितना वो डिसिप्लिन रखते हैं अपनी लाइफ में, कितना उनके अंदर पैशन होता है, कितना उनके अंदर हंगर होता है उस गोल्ड मेडल को लेने के लिए. सिमिलरली जो बच्चे ब्राइट हैं, जो स्कूल में स्कॉलरशिप्स और आगे बढ़ते हैं, उनकी मेहनत और जनरल एक किसी भी बच्चे की मेहनत को हम कंपेयर करें तो फर्क होता है. बिकम अ पैशनेट हंगरी एंड डिसिप्लिन पर्सन. Success is calling. Are you ready? You have to ask this question to yourself. ये तीनों points पे passion, hunger और discipline में कोई सुझाव और देना चाहते हैं? किसी के दिमाग में कोई और बात आ रही है या कोई suggestion देना चाहते हैं या कोई question पूछना चाहते हैं? हम ऐसा करते हैं, 5 मिनट devote करते हैं इस पे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. ठीक है, तो आप अपना mic on करके बोल सकते हैं.
1: गुड आफ्टरनून मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से. मैम, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपका जो ये प्रेजेंटेशन थी जो आपने हमें समझाया, एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल थी, इनलाइटनिंग थी. हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक मोटिवेशन फील हो रहा है कि डिसिप्लिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको मेंटेन करना आदमी के लिए बहुत मुश्किल है. एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ डिसिप्लिन में अपनी लाइफ लाने की, लेकिन कभी ना कभी ऐसा मुझे हो जाता है कि वो फिर ब्रेक हो जाता है और फिर उसको रीगेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, मतलब ट्रैक पे वापस आने के लिए. अब वो कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं प्रे करूँ, मैं नमाज के लिए अगर बोलता हूँ कि मैं अपनी एक स्पेसिफिक टाइम से नमाज पढ़ता रहूँ, वो नहीं होता है, बीच बीच में छूट जाता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है. लेकिन आपने जैसा बोला कि उसको कंटिन्यू रखो, एक कंसिस्टेंसी में अगर लाना है तो उसको मेंटेन रखना पड़ेगा. लेकिन मेरा एक आपसे सवाल भी है, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास पैशन भी है, हंगर भी है, हम डिसिप्लिन में मेंटेन आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन और बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं कि यार हमने इतना कुछ करा और फिर भी हमें ये चीज नहीं हासिल हुई, तो उसके लिए हम क्या करें फिर?
0: एक तो जो मैंने पॉइंट बोला है ना कि आप लिखो जरूर आप क्या कर रहे हो, दैट इज रेफरेंस बैक, रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन द पास्ट। और जब हम नहीं एनालाइज करते, स्मिता मेरा सेशन अटेंड कर रही है, हम दोनों एक ही कमरे में बैठते हैं, और स्मिता आपको बता सकती है कि कितनी बार मैं ऑफिस में कोई गलती होती है और वो गलती मैं अपने ऊपर लेती हूँ और मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ, और इंट्रोस्पेक्ट करके अगले दिन सुबह ही 6 बजे या 7 बजे ऑफिस आने से पहले उसके ऊपर मेल लिखती हूँ और मैं डिस्कस करती हूँ स्मिता से, शिवम से, और मैं इनको भी बोलती हूँ कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट मतलब कि खुद सोचना है कि हम कहाँ गलत थे, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि द अदर्स वर रॉन्ग। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, नॉट सेइंग दैट यू कोरिलेट विद योर थिंग, बट दिस इज द प्रैक्टिस आई डू एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। और जो मैं बात करती हूँ ऑफिस में, वो कोई इलॉजिकल नहीं होती है, उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक होते हैं। और मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं ये आपके सामने रख रही हूँ, आप बताओ कि ये ठीक है कि। तो व्हाट आई एम डूइंग, ए आई एम रियलाइजिंग वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग, दैट्स व्हाई आई से दैट वी शुड रन राइट। सेकेंड पॉइंट, आई एम डिस्कसिंग माई मिस्टेक विद एवरीवन, प्लीज टेल मी वेदर आई वॉज रॉन्ग और नॉट। और क्या मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मैं दूसरों को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ अपने साथ, फिर मैं उनसे पूछती हूँ, फिर हम कलेक्टिवली एनालाइज करते हैं कि हम ठीक है या गलत है, फिर उसके ऊपर जो कलेक्टिव डिसीजन आता है हम उसको आगे लेके जाते हैं। नाउ इन योर केस, पैशन इज देयर, हंगर इज देयर, डिसिप्लिन इज देयर, बट समवेयर वी आर पुशिंग आर सेल्फ बैक। और वो क्या चीज है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, क्योंकि हम ये पैशन, हंगर और डिसिप्लिन को अपने माइंड और ब्रेन के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं राइट। मैं भी ये गलत करती हूँ, मैं बहुत बार ही सोचती हूँ कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मैं नहीं कर पाती हूँ, मे बी बिकॉज लैक ऑफ टाइम, मे बी आई एम नॉट एबल टू सिंक्रोनाइज ऑल दीज थ्री थिंग्स विथ माई ब्रेन एज वेल एज माई माइंड। और मैंने अभी बोला है ब्रेन और माइंड नेगेटिव बहुत स्पीड से भागता है, पॉजिटिव की लेस स्पीड होती है, और इसकी रेशियो होती है 80:20। 80% तो नेगेटिव चला जाता है, हमारा माइंड सेकेंड्स में नेगेटिव चला जाता है। पर हमें साथ साथ वो भी प्रैक्टिस अपनानी है कि हम अपने नेगेटिव माइंड को कैसे कंट्रोल करके रखें, और ये प्रैक्टिस से आता है, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, मैं आपको इसके ऊपर बता भी नहीं सकती कुछ, क्योंकि आपका अपना माइंड है, हर एक का अपना अपना माइंड है, हर एक का अपना अपना ब्रेन है, तो उसको कैसे सिंक्रोनाइज करना है इन तीनों चीजों के साथ और कैसे उसको डिसिप्लिन में लाना है, ये आपके हाथ में। एम आई एबल टू आंसर योर क्वेश्चन?
1: Yes, ma'am, very right. मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल।
0: तो ये प्रैक्टिस से आएगा अकबर। ये अभी तो 3 हफ्ते हुए आपको ये सेशन अटेंड करते हुए, और आपको ये चीजें शायद पहले, हम अपनी रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि इन चीजों के ऊपर हम बात भी नहीं करते हैं, तो ये इसीलिए हफ्ते में 2 सेशन रखे गए। ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस भी सिंक्रोनाइज हो रहा है हर एक चीज के साथ, राइट?
1: यस मैम।
0: और किसी का कोई क्वेश्चन? और जो मैंने अभी बताया है, आप लोग सहमत हैं उस चीज के साथ या हवा में लग रहा है कुछ? गीता मैम हवा में बात कर रही है कि आपका लिंक इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए कि हर एक लिंक आपके साथ आगे बढ़ता जाए, तो ये मेरी कोशिश होती है। तो इसलिए मैं इधर रुक गई पैशन हंगर और डिसिप्लिन में। अब आगे मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ठीक है? जैसे आप टी बैग नहीं भूल पाए, जैसे माउंटेन की क्लाइंबिंग नहीं भूल पाए, ऐसे आप ये स्टोरी रखेंगे और बहुत सारे लोगों को सुनाएंगे और सबसे पहले घर के लोगों को भी सुनाएंगे। तो हम ये स्टोरी सुनते हैं, ठीक है? मैं क्यों ये स्टोरी हाईलाइट कर रही हूँ कि वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बीइंग अ मदर आई कैन वेरी वेल कोरिलेट माई सेल्फ विद दिस स्टोरी, एंड बीइंग अ फादर ऑल्सो in future you can also very well correlate with this story. To ek jo baby giraffe hota hai gaon mein, Seema can very well correlate kyunki wo ek forest ke sath rehti hai. To hum ek baby giraffe ki mother se ye story sunte hain, aur jab baby giraffe paida hota hai na, to giraffe to bahut uncha hota hai, to jab baby womb se nikalta hai to wo patak karke zameen pe girta hai. चोट तो उसको तब लगती है जब वो पटैक करके जमीन पे गिरता है। उसकी मदर उसको प्यार करती है, उसके फोरहेड पे अपनी गर्दन नीचे करके किस करती है, पर इमीडिएटली वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है और वो उसको जोर से नीचे उठा के ऊपर हवा में फेंकती है न्यू बॉर्न बेबी को, और वो फिर पटैक से गिरता है। और वो कांपता हुआ जब जमीन पे गिरता है, उसकी मदर को अंदर बहुत पीड़ा होती है, पर वो उसको बार बार रिपीट करती है, बार बार रिपीट करती है, जब तक उसके हाथ और टांगे उसके वो जो गोल बॉडी, जैसे वो गिरता है बच्चा जब पैदा होता है, एवरीबॉडी नोज कि जब उसके हाथ और पैर खुल नहीं जाते, तब वो इतनी खुश होती है कि मैंने अपनी एक सीढ़ी क्लाइंब कर ली, अपने बच्चे को पैर करके उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दिया। Seeing the child standing on its feet, another kick is given till the child starts running. फिर वो उसको दोबारा से किक करती है ऊपर उठा के, you can imagine the giraffe height. वो इतना ऊपर हवा में फेंक के वो फिर newborn baby को नीचे फेंकती है, जिससे वो बच्चा दौड़ना नहीं शुरू कर देता। पर उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ी सोच होती है जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। और हम क्या करते हैं कंट्रारेरी, जब हमारा बच्चा पैदा होता है और जब तक बड़ा नहीं हो जाता, हम उसको इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं, इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं हर एक चीज से कि उसकी जो सेल्फ लर्निंग है हम कहीं ना कहीं उसको किल कर रहे हैं। यही एक लीडरशिप क्वालिटी को जब मैं कोरिलेट करती हूँ, तो हमें सबको ग्राउंड पे काम कैसे करना है उसकी एक सैक्रिफाइसिंग नेचर होनी चाहिए। कैसे हमने ग्राउंड में लोगों को एम्पावर करके आगे लेके जाना है, और इस स्लाइड से मैं आपको एक स्टेप आगे लेके जाऊंगी कि अगर हमें मुश्किलों में भी काम करना हो और दूसरों को भी मुश्किल में डाल के काम करवाना हो, उसमें हिचकना नहीं चाहिए, आप हमेशा उनको जिराफ की स्टोरी सुनाए, ठीक है? और वो क्यों ऐसे करती है, उसके पीछे उसकी कोई गलत इंटेंशंस नहीं होती है, उसकी कोई गलत भावना नहीं होती है। नेक्स्ट स्टोरी में हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द गोल ऑफ मदर जिराफ। मदर जिराफ कहती है कि वो सोचती है कि मेरा बच्चा पैदा हो रहा है, ये जैसे ही पैदा होगा अगर ये भागा नहीं, अगर ये चला नहीं, तो इसको लायन या लेपर्ड्स खा जाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट मीट है, मीट बहुत डिलीशियस है, और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से भाग जाऊंगी। पर वो अगर कंपैरिजन करेंगे, मैं अगर लायन को कहती हूँ या लेपर्ड को कहती हूँ तो मेरे बच्चे को छोड़ दे, तो मेरा मीट खा ले, तो वो बच्चे का मीट ही प्रेफर करेगा, बिकॉज दैट इज सॉफ्ट, दैट इज फ्रेश, एंड उसको वो टेस्टी लगता है। तो मदर जिराफ कंसीव करने से पहले ही ये हैबिट डाल लेती है कि जैसे ही मेरा बच्चा पैदा होगा उसको मैंने कैसे सड़क पे दौड़ाना है, कैसे जंगल में दौड़ाना है। तो अनलेस द बेबी जिराफ क्विकली लर्न्स टू स्टैंड एंड रन, इट हैज नो चांस ऑफ सर्वाइवल। जिराफ की पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज ये सब लोग आपको पता है फॉरेस्ट में इकट्ठे रहते हैं, और ये जिराफ जो है मदर जिराफ का एक कमिटमेंट होता है अपने बेबी की तरफ कि जैसे ही पैदा होगा मुझे इसको दौड़ाना है, राइट। सो द टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी इज द लेसन्स वी लर्न अर्ली बिकम पार्ट ऑफ आवर हैबिट, आउट इंस्टिंक्ट एंड हेल्प अस स्टैंड इन बेटर पोजीशन ऑल थ्रू आवर लाइफ्स। तभी कहते हैं ना कि बच्चे का 8 साल तक ब्रेन चलता है। हम अपने मॉन्टेसरी स्कूल्स में भी कहते हैं कि अगर हम बच्चे को 8 साल तक अच्छा अच्छा पढ़ा दें, अच्छा सिखा दें, उसकी हैबिट्स बना दें, तो उसका ब्रेन नई चीजें एडॉप्ट करने के लिए तैयार रहता है, और 8 साल के बाद जब वो बुकिश नॉलेज तो वो उसी को ग्रहण करता है। तो ये हमारा लेसन है कि हम दूसरों के साथ जब काम कर रहे हैं, हम उनको उनके पैरों पे खड़े होने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनको उनके पैरों पे खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये सब ट्रेनिंग दे रहे हैं। रीड का मॉडल यही है। अगर उनको सेटबैक्स लगते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है, हमें औरतों को उनके जो ककून्स में है, जो अपने आप को कोजीनेस में रखती हैं, उनको हमेशा पहले यही, तभी ये क्वेश्चनर क्यों बनाया था कि आप उनसे पूछो कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहो, तभी आप ज्वाइन करो, उसको हॉबी नहीं समझो। तो ये कितनी स्टोरी कोरिलेट करती है इन सब बातों से। आप प्लीज ये सबको सुनाइए स्टोरी। वी नीड टू लर्न टू गेट बैक टू ऑन आवर फीट। वी लिव सच प्रोटेक्टेड कोकून लो रिस्क लाइफ्स इन आवर अर्ली इयर्स दैट वी आर नॉट क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर द बिग बैड वर्ल्ड देन वी एंटर इट। आप समझ के, हमने एज रखी हुई है लड़कियों के 20 से 45 साल तक। अब गांव की औरत जो है, लड़की जो है, वो 20 साल तक तो इतनी प्रोटेक्टेड रहती है कि उसके घर वाले भी उसको बाहर नहीं जाने देते। और रीड क्या कोशिश कर रहा है कि उनको घर में ही रख के उनको ट्रेनिंग दे रहा है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। हम उनके कल्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम उनको स्लोली एंड स्टेडिली बाहर आने की कोशिश करवा रहे हैं, और हम उनको फैमिली से अलग भी नहीं कर रहे हैं। हम उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके डायनामिज्म को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करते हैं। तभी तो हम उनके पास जाके आप लोगों को सबको सेंटर्स खोल के दिए कि आप उनकी लाइफ में बदलाव लाइए। यू हैव टू एक्ट एज अ जिराफ मदर। उनको किक करिए, किक इन द सेंस नहीं, उनको मारना नहीं है, पर उनको बोलो कि आपको टाइम निकालना है, ये आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। शायद सीमा जी की किस्मत में वापस जाना इसलिए लिखा था गुड़गांव से कि आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को बदलना था, राइट। आप इस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए, अपने अंदर जो वो मैं पैशन की बात कर रही हूँ, हंगर की बात कर रही हूँ, आप उसको लिखिए कि आप क्यों गए। सीमा जी, यू विल डू द बेस्ट वर्क व्हेन यू विल राइट द डे यू वेंट बैक टू योर विलेज, द डे यू ओपन द सेंटर, द डे यू स्टार्टेड वर्किंग विद दिस वुमन एंड यू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स। सो वी नीड टू कन्वर्ट आवर हैबिट्स टू आवर स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड वैल्यूज। Akbar, this sentence is for you. This is the answer for your question. हमारा जो 80% माइंड नेगेटिव चला जाता है उसको हम पॉजिटिव कैसे करें, उसको वैल्यूज के साथ कैसे कन्वर्ट करें, और विद इन आवर कल्चर हाउ वी कैन फोकस ऑन वैल्यूज कीपिंग इन व्यू द पैशन हंगर एंड डिसिप्लिन. इज इट ओके? आगे बढ़े. ये मेरी लास्ट स्लाइड है. लेसन्स लर्न फ्रॉम द स्टोरी को रिलेटेड विद लीडर्स. स्टडी द लाइव्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल. अब वो जिराफ मदर तो सक्सेसफुल हो गई ना, उसने अपने बच्चे को दौड़ना पहले दिन ही विद इन वन आवर ऑफ हिज और हर बर्थ उसने सिखा दिया कि चलो भाई दौड़ना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. तो कितना बड़ा रिस्क से वो अपने बच्चे को दौड़ना सिखा रही है. और जो हम अगर सक्सेसफुल लोगों की लाइफ पढ़े तो वो भी ऐसे ही एडवर्सिटी में आगे बढ़े हैं. अगर मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल दूं, मैं बहुत प्रोटेक्टेड थी जब मैंने 24 साल तक पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में काम करा था. बहुत सारे स्टालवर्ड्स या डिटाटा एस पी गॉडरेज सिंघानिया ये वो सब बहुत लीडर्स मेन भी वुमेन भी वी वर जस्ट प्रोटेक्टेड चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ देम. बहुत हमें प्यार करते थे नर्चर करते थे. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज 30s. शादी भी मेरी शायद PFI से पहले हो गई थी. उषा इंटरनेशनल नहीं PFI में पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर दैट इयर्स नाउ. बट मैं जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया, इवन PFI में भी मैं ट्रैवल करती थी पर हम इकट्ठे करते थे. पर जब मैंने वनवर्ड साउथ एशिया में ज्वाइन किया तो मुझे अकेले ट्रैवल करना था. एंड माय फर्स्ट ट्रैवल वाज टू नेपाल. फाइन, नेपाल में कंट्री ऑफिस था बट श्रीलंका हमारी वो कंट्री डायरेक्टर थी पर कोई ऑफिस नहीं था. अब रात को 12:30 बजे यहाँ से फ्लाइट जा रही है, मैं अकेले जा रही हूँ. कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया, डर लग रहा है एयरपोर्ट पे भी. फ्लाइट 2:30 बजे श्रीलंका पहुंचती है और श्रीलंका एयरपोर्ट से जो सिटी है वो 2.5 घंटे का डिस्टेंस है. मैं अकेली टैक्सी में रात को ड्राइव कर रही हूँ. यू कैन इमेजिन द स्टेट ऑफ माई माइंड. आई वॉज सो स्केर्ड पर भगवान को याद कर करके मैंने अपने ऑफिस में मैं अपने आप को वीक भी नहीं शो करना चाह रही थी. ठीक है भाई, अब पोजीशन लिया है तो ट्रैवल तो करना ही है. ट्रैवल कर रहा और वहां पे मैंने बोला मुझे ना होटल नहीं चाहिए, मुझे कोई गेस्ट हाउस बुक कर दो, जो कम्युनिटी स्टे वाले गेस्ट हाउस श्रीलंका में बहुत हैं बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस. एंड दे बुक्ड मी इन अ हाउस ऑफ ए तमिलियन फैमिली वेयर वन लेडी वॉज स्टेइंग अलोन. दैट लेडी वॉज ओल्ड लेडी. ओके फाइन, आई रीच देयर बाय 3:34 early morning. खोला दरवाजा, सामने इतना बड़ा शेर बब्बर जैसे डॉग. और मैं तो डॉग से इतना डरती हूँ कि ओ गॉड, मैं तो पूरी रात अपनी खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बार बार देख रही थी कहीं खुला तो नहीं है, कोई पक्का दरवाजा है या वो डॉग टांग मारेगा तो दरवाजा खुल जाएगा, कुंडी मजबूत है या नहीं है. तो these were adversities for me. I'm sharing the live example with you. वो औरत, मैं सुबह 6 बजे उठने वाली लड़की अपने कमरे से 8 बजे तक बाहर नहीं निकली क्योंकि मुझे यही डर था कि मेरे दरवाजे के बाहर ही वो डॉग बैठा होगा. Then I called my director there कि see I'm stuck in this situation, I'm scared of the dogs, so please call the owner of the house and tell her to keep the dog in the backyard so that I can have my breakfast and leave this place. That's how I solved my adversities. और बहुत सारी ऐसी situations, ये तो एक example, मैंने बहुत light example दिया है. To reach to this level to manage an organization, I can write books and books on the adversities I faced. Many adversities, many, many adversities, including some politics within the organization also. So it's not, the journey is not easy. So were they always successful in all they did? No, big no, capitals. हमेशा तुम गलतियां करके ही सीखते हो. डिड सक्सेस कम टू देम क्विक एंड इजी? नो, नॉट एट ऑल. आज मैं क्यों मैनेज कर पा रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मेरे पीछे कोई थ्योरी की नॉलेज नहीं है. प्रैक्टिकल नॉलेज है कॉम्बिनेशन विद कॉम्बिनेशन ऑफ माई एकेडेमिक नॉलेज, तभी मैं कर पा रही हूँ. तो एक्सपीरियंस, सेटबैक्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो हमें कभी भी हारना नहीं है. So there is another feather in your cap that you are going to register your NGOs. Few of the centers, those who have completed beyond 5 years, and the rest of the centers we will discuss one to one. So you are going to face many, many challenges. But think of yourself after 10 years, you will be the leaders. मुझे तो ये ट्रेनिंग किसी ने दी नहीं जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, फिर भी हमने सीखा. पर आप तो आधे सीख के चले हो आगे, बिकॉज आप यू आर वर्किंग डायरेक्टली विद द कम्युनिटी. आधा आप सीख रहे हो और आपके लिए जर्नी तो बहुत इजी है क्लेम करना कि आप लीडर बन गए, राइट? व्हाट मेड देम सक्सेस इज देयर एबिलिटी टू स्टैंड अप एवरी टाइम दे फॉल. ये सेंटेंस बहुत, आप अपने इसको बिल्कुल माइंड में बिठा लो कि गिरना तो है ही है, पर गिर के कैसे खड़े होना है, ये लीडरशिप की क्वालिटी है. द एबिलिटी दैट द बेबी जिराफ एक्वायर्स. द रोड ऑफ सक्सेस इज नेवर एन इजी वन. देयर आर रोड ब्लॉक्स, यू बाउंड टू फॉल. ठोकर तो लगेगी लगेगी, इसको तो आप समझ लो. बट सक्सेस लाइज इन बीइंग एबल टू गेट अप एवरी टाइम यू फॉल. किसी के ऊपर भी इतना निर्भर नहीं रहो कि कल को अगर आप गिरो तो आप इधर उधर देखो कि मेरा कोई हाथ पकड़ के मुझे उठा ले. वो सिचुएशन ना तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में लाओ और ना ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लाओ. लीडर खाली प्रोफेशनल नहीं होता, लीडर सारे स्फेयर्स में होता है, ऑल ओवर होता है. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फैमिली मेंबर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हस्बैंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, विद ड्यू लव विद ऑल ऑफ देम, ऑलवेज ट्राई कि हमारा हाथ हमें किसी की तरफ नजर जो उठा के ना देखना पड़े कि मैं गिर गया हूं या गिर गई हूं, मुझे प्लीज कोई उठाने आ जाए. अपने में इतनी हिम्मत रखो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ. तभी नेचर भी हेल्प करती है, तभी जो एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी है वो भी हेल्प करती है. दैट इज द क्रिटिकल लाइफ स्किल दैट ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव इंटरनलाइज्ड. और जो ये सेशन ले रहा है उसने तो बहुत ज्यादा इंटरनलाइज की हुई है ये बात कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पूरी लाइफ. अपनी अपनी लाइफ को ऐसे आगे बढ़ाओ कि हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो. बहुत ही किस्मत खराब होगी तो यू कांट हेल्प इट. मैंने लक वर्ड भी यूज किया था पहली स्लाइड में. पर अगर हम पैशनेट हैं, हम स्किलफुल हैं, हम हंगर है हमारे में, हम डिसिप्लिन हैं कुछ हद तक. मैं भी डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगी कि मैं डिसिप्लिन हूँ. बट यस, मैं एडवर्सिटीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ. मैं इमीडिएटली इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ अपने आप को और क्रिटिकल सिचुएशन से ऐसे एक एक को रिजॉल्व करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हूँ. तभी मैं इन सब चीजों को इंटरनलाइज भी कर सकती हूँ, कर रही हूँ और आगे भी कोशिश करूंगी. और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको भी ये लेसन दूंगी. That's all I just wanted to say. I'm looking at the watch. और मेरा ये टाइम का एक थोड़ा सा है कि मैं सेशन को टाइमली कंक्लूड करती हूँ. और मैं आप सबको ये बोलूंगी कि जिराफ की स्टोरी याद रखना अपनी लाइफ में हमेशा.

0: फैमिली के साथ, दादा दादी मम्मी पापा के साथ खेलते हैं, घरों में रहते हैं, लेकिन इससे जस्ट अपोजिट मेरा बचपन था। मैं जब छोटी थी तो मैं रीड इंडिया की लाइब्रेरी में ही, मैंने जैसे होश संभाला, मैं वहीं पर खेलती थी। इतने अच्छे वहां पर खिलौने होते थे, बुक्स होती थी, तो मैंने सब कुछ वहीं से सीखा है। रीड इंडिया में एक रेडियो भी चलता था जहाँ से मैंने सिंगिंग, एक्टिंग, स्क्रिप्ट लिखना ये सब भी सीखा। उसके बाद 2018 में मैंने एक्टिंग में अपनी स्क्रिप्ट लिखकर कंपटीशन में स्टेट लेवल पे थर्ड प्राइज भी अचीव किया। रीड इंडिया की लाइब्रेरी से मैंने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की। उसके बाद मैंने 2020 में 12 बोर्ड एग्जाम्स में 91% स्कोर किया। उसके बाद मैंने नर्सिंग की, निधि मैम ने जो सेशंस दिए थे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के, उनके सारे सेशंस लिए, क्लासेस ली, और उन्होंने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे वो सबसे मैंने पढ़ के 2022 में मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नर्सिंग में भी टॉप किया 82%। मेरी मम्मी सिंगल पेरेंट है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी दादी ने, पापा ने, इन लोगों ने मुझे एम्बुलेंस में छोड़ दिया था मरने के लिए, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तो मेरा सपना ये है कि मैं आगे चल के एक क्लिनिक खोलूं जिससे मैं लोगों का फ्री में इलाज कर सकूं। जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए मैं कुछ सपोर्ट उनको कर सकूं, और मैं गीता मैम जैसा बनना चाहती हूँ। यहाँ पे हम इतनी सारी लड़कियां होकर बोल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ गीता मैम। गीता मैम ने हम लोगों को इतना सपोर्ट किया है, एक कॉन्फिडेंस जो लेवल हम लोगों को मिला है वो रीड इंडिया से मिला है। और जब मैं हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी, वहां पर मेरे फादर उनका इलाज कराने आए थे, मैंने उनको 14 साल बाद देखा एंड ही लाइक ये मेरी बेटी है। तो जिन लोगों ने मुझे मारने के लिए छोड़ दिया था वो लोग कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी है। तो 50% तो मेरा सपना यही पूरा हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि जो लोग लड़की को बोझ समझते हैं वो लोग आगे चल के लड़कियों को बोझ ना समझ के सब कुछ समझे, और हम एक दिन विमेंस डे मनाते हैं, इसकी जगह हम पूरा साल विमेंस डे मनाते हैं।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: हेलो, मेरा नाम रजनेश देवी है और मैं सावाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ, और मैं यहाँ की सरकारी डिस्पेंसरी में आशा वर्कर का काम करती हूँ। मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लगता, और इस काम से अलावा अब मैं थोड़ा अपना टाइम बचा के मैं अभी इसमें रीड इंडिया में आती हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और मुझे यहाँ सीखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा और हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करता है। यहाँ पे लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस लगती है, सिलाई सेंटर है, और यहाँ पे पार्लर का काम भी सिखाया जाता है, जो कि बहुत ईमानदारी से और लगन से सिखाया जाता है। यहाँ का स्टाफ हमें सिखाने में हमारी बहुत मदद करता है, और मैं थोड़ा बहुत समय निकलता है तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं अपने एरिया में काम करती हूँ। मुझे वो काम करके बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं कुछ नहीं करती थी, घर में ही बस बच्चों के साथ रहना, अपना करना, लेकिन अब मैं जब से मैं डिस्पेंसरी में जाती हूँ वहाँ पे मैं लोगों की मदद भी करती हूँ, और हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और हम सीखते हैं और हम फील्ड में उसको बताते हैं। जिससे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ है जो हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप नहीं कराती है, हमारी मदद से वो लेडीज़ हॉस्पिटल में जाती हैं और अपना रूटीन चेकअप कराती हैं। बच्चों को इम्यूनाइजेशन कराते हैं हम 0 से 5 साल तक के बच्चों को, क्योंकि एक भी बच्चा टीके से छूटना नहीं चाहिए। और इसके अलावा हम फैमिली प्लानिंग पर भी ध्यान देते हैं। जिनकी फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है उनके लिए हम NSV जो कि पुरुष नसबंदी है, इसमें बिना चीरे बिना टाके के नसबंदी होती है, जिसे गवर्नमेंट उसको 1100 रुपए प्रोत्साहन राशि देती है, और महिला के लिए नलबंदी है जिसमें गवर्नमेंट उसको 250 रुपए देती है। ये एक दूरबीन द्वारा किया जाता है, एक टाका आता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है और महिला अपना आराम से रहती है। जिनकी फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है वो ये है कि बार बार अबॉर्शन ना कराए, अपना ये मेथड अपनाए और अपने सुखी जीवन रहे। कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। और पहले हम करते नहीं थे तो हमें भी अजीब सा लगता था, लेकिन जैसे जैसे हमने सीखा है हमें बहुत अच्छा फील होता है, और हम दूसरों की मदद करते हैं तो इसमें हमें अपने ऊपर भी गर्व होता है कि हम भी कुछ लायक हैं। जब उस टाइम पे जब हम पहली बार घर से बाहर निकले थे तो हमें डर सा लगता था कि हम कैसे पब्लिक से बोलेंगे, कैसे बातें करेंगे। हमें ऐसा डर लगता था, क्या पता ये बंदा हमको क्या कह दे, क्या पता ये बंदा हमको क्या कह दे, ये डर था। लेकिन अब जैसे जैसे हमें, मुझे यहाँ पे 6 साल हो गए काम करते करते, अब मुझे किसी से कोई भय नहीं है। मैं अपनी बात रख सकती हूँ और दूसरों की बात भी मैं पूछ सकती हूँ, उनको पूछती हूँ, अपना बताती हूँ, तो उससे लोगों को मेरे पर विश्वास है और मुझे अब लोगों के ऊपर विश्वास हुआ है, तो मैं बेहिचक घर से बाहर जा सकती हूँ। इसमें मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरा साथ देते हैं। हम अगर कोई मदद कर रहे हैं तो दिन में भी कर रहे हैं तो ठीक है, अगर रात है तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ मेरी मदद करते हैं। इससे महिलाओं को भी फायदा होता है और हमें भी ये महसूस होता है कि हम भी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। पहले जब हम नहीं करते थे तो हमें ऐसा लगता था क्या है, अब ऐसा है कि थोड़ा मैं भी कमाती हूँ, थोड़ा मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, तो मुझे खर्चने में कोई दिक्कत नहीं आती है, मैं अपने फैसले अपने आप भी ले सकती हूँ। और मैं महिला को ये ही समझाती हूँ कि वो भी अपने पैरों पे खड़ी होए और अपने लिए लड़े, अपने लिए तो कम से कम लड़े ही, कि क्या अच्छा है क्या बुरा उसमें ये होना चाहिए।

0: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून। सेशन के लिए सब तैयार हैं?
2: यस मैम।
1: आज का जो सेशन है बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस मैंने लिया है। थोड़ा हटके मैं बात करूंगी आज काम के बारे में, तो लिंक करूंगी करूंगी, बट हम बेसिक्स ऑफ लाइफ से शुरू करेंगे कि हमारी लाइफ क्या है और हमें लाइफ के साथ कैसे डील करना होता है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू जॉइन द सेशन वेल इन टाइम। मैं शुरू कर लेती हूँ, फिर बीच में कोई भी ज्वाइन करेंगे तो अपना हाथ खड़ा कर दें, तो फिर मैं रिपीट कर दूंगी कुछ पॉइंट्स, ठीक है? तो आज हम शुरू करते हैं बहुत ही एक बेसिक चीज से कि हम लोग सब, बर्थ होता है हमारा, है ना, और हम आज जो भी है यहाँ पे सबका किसी ना किसी टाइम पे बर्थ हुआ है और हमारी एक डेट ऑफ बर्थ भी है और ईश्वर ने हमें एक लाइफ दी है, राइट? और जो हमें लाइफ दी है ईश्वर ने, वो ही डिसाइड करता है कि हमें किस फैमिली में बर्थ लेना है, कौन सी फैमिली, कौन से पेरेंट्स हमें मिलेंगे, कौन से पेरेंट्स हमें पालेंगे, हम किस घर में रहेंगे, ये सब कुछ ऊपर से डिसाइड होकर आता है। पर भगवान हमें क्या देता है? एक जिंदगी, एक लाइफ। वो लाइफ को कैसे जीना है वो हमारे हाथ में होता है, बर्थ हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप अच्छे से समझे इस बात को, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बर्थ हमारे हाथ में नहीं है पर लाइफ हमारे हाथ में है, और जिस तरीके से हमें अपनी लाइफ जीनी है वो हमें डिसाइड करना है। हमारे पेरेंट्स, कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं है जो अपना बेस्ट अपने बच्चों को नहीं देता है ना। जो पेरेंट्स, और हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं और एक लाइफ की डायरेक्शन भी दिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में आप लोगों को जाना है, बट खाली 3% लोग हैं जो बर्थ के बाद अपनी लाइफ को बना सकते हैं। वो 3% जो लोग हैं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपनी लाइफ में किया होता है तभी वो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से बना पाते हैं। 97% ऑफ द पीपल लिव अ कॉमन रूटीन लाइफ। हम लोग भी कॉमन रूटीन लाइफ ही जीते हैं। सुबह उठते हैं, दिनचर्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ऑफिस आते हैं, ऑफिस का रूटीन का काम करते हैं। ज्योति, आपकी बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, मेरी स्क्रीन में आपके डिस्टरबेंस आ रही है। आप कभी आगे देखते हो, कभी पीछे, कभी इधर, कभी उधर, तो मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो रही
2: सॉरी मैम, वो थोड़ा सा ना बच्चे सिटिंग कर रहे थे, 2 मिनट की बस,
1: है।
2: अब नहीं
1: नहीं,
2: करेंगे,
1: वो
2: कोई
1: मेरी मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, तो
2: जी
1: मैं
2: मैम,
1: थॉट प्रोसेस लेके बोलना चाह रही हूँ, वो फिर हट जाता है दिमाग से, ठीक
2: नहीं मैम, सॉरी
1: है?
2: जी
1: हाँ, तो 97% लोग जो हैं इस दुनिया में कॉमन रूटीन लाइफ जीते हैं। जो एक एक रूटीन है कि सुबह उठना है, रात को रात होती है, हम सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हम नहीं दे पाते हैं। तो हमें एक सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है अपनी रूटीन लाइफ से और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हाँ, हमने आज बहुत कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। एट द एंड ऑफ द डे वी डिराइव अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन व्हाट वी डू नॉर्मली। जो हमारी लाइफ इस पे डिपेंडेंट रहती है और इसके ऊपर आसपास घूमती है, क्लीनिंग हो गया, ईटिंग हो गया, अर्निंग लाइवलीहुड हो गया, स्लीपिंग हो गया, मेडिटेटिंग हो गया, एंड वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ आर गुड हेल्थ एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। तो मेरे हिसाब से ये एक रूटीन लाइफ है। जब तक हम इस रूटीन लाइफ में रहते हैं, हम सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं अपनी लाइफ से, बट अगर हम कुछ हटके करने की सोचें तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। हम रूटीन लाइफ तो हर कोई जी रहे हैं, पर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लेते हैं अपनी लाइफ में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। जो विनर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो कोई डिफरेंट चीजें नहीं करते हैं, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो डिफरेंटली करते हैं, चीजें सेम होती हैं लाइफ की। सबको पैसा चाहिए, सबको नॉलेज चाहिए, सबको एजुकेशन चाहिए, सबको बिजनेस चाहिए। एवरीथिंग इज द सेम, ऑलमोस्ट द सेम, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो ये शिव खेरा की स्टेटमेंट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। वो कोई आसमान से कोई चीज तो उतरती नहीं है कि वो जो अलग से करते हैं, बट वो उन्हीं चीजों को डिफरेंट तरीके से करते हैं, तभी वो सक्सेसफुल हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालते हैं। हाउ यू डू थिंग्स डिफरेंटली, हम क्यों कैसे कर सकते हैं अलग से चीजें, वो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। अभी तक सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला है?
2: यस मैम,
1: शिव खेरा की स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रही हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। एंड हाउ दे डू थिंग्स डिफरेंटली, वो अपनी जो पावर्स हैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। नॉर्मली जो हम रूटीन में काम करते हैं, हम अपने पावर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, शायद ये मेरे बस का नहीं है, इट्स बियॉन्ड माई फैमिलीज डिसीजन, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। तो हम अपनी जो पावर्स हैं, जो इंटरनल पावर्स हैं, हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। द क्वेश्चन इज नॉट वॉट यू डू, बट आर फोकस शुड ऑलवेज बी वॉट यू कैन डू। मतलब कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ये करना चाहते हैं और हम ये कर रहे हैं, बट हम इसको कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो हमारे थॉट प्रोसेस में कभी कभी डेविएट हो जाता है। तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स, मैं ये कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं कॉमन स्टेटमेंट बोल रही हूँ, तो हम बेबी स्टेप्स लेते हैं जब, तो हम बहुत बड़े अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी कि हम सोचते हैं अच्छा आज मेरी सैलरी 5,000 है, अगर मैं 10,000 कमाना शुरू कर दूं तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं 50,000 या 1,00,000 रुपया कमाने की अपना गोल सेट कर लूं और उसकी वो गोल अचीव करने के लिए मैं कैसे चीजों को डिफरेंटली कर लूं, अगर वो प्लानिंग हम नहीं करते हैं, वो गोल सेटिंग हम अपनी लाइफ में नहीं करते हैं, तो हम एक रूटीन में ही रह जाते हैं। उस रूटीन से हटके हम अपने बड़े ड्रीम्स जो हम लेते हैं कभी कभी, हम उनको रियलाइज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास, सबके पास नॉलेज है, हम सब लोग नॉलेज गेन करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो सब रीड सेंटर से जुड़े हैं, और सबको नॉलेज दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटरशिप रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेटर्स, और हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। बट अगर हमारे पास नॉलेज है और अगर हम उसको सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी हम अपने लिए रोड ब्लॉक्स बना रहे हैं, हम सक्सेसफुल बनने की सीढ़ी से कहीं अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं। और ये नॉलेज, इंफॉर्मेशन और गोल सेटिंग के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है करेज। अगर मैं करेज नहीं रखती हूँ कुछ भी करने का, जो मैं अपनी नॉलेज को डिफरेंटली यूटिलाइज नहीं कर पाती हूँ और अपने पोटेंशियल को मैं हार्नेस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने रूटीन वर्क से ऊपर नहीं उठ पाती। यहां तक सबको समझ में आ गया मैंने जो बोला कि हमें जीवन मिलता है, पर जीवन और जिंदगी में बहुत फर्क है। हम जीवन तो जीते हैं, पर जिंदगी को कैसे शेप देनी है वो हम नहीं सोच पाते हैं। हम एक छोटी सोच लेकर ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, पर हम अगर अपनी लाइफ में बड़े गोल्स बनाएं, बड़ी सोच रखें, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि 5,000 से 50,000 का सैलरी कैसे हमने कमानी है, या कैसे अपने बिजनेस में 5,000 से 50,000 कमाने हैं, अगर उसमें हम नॉलेज के साथ साथ हम अपना करेज भी मेंटेन रखें और अपने पोटेंशियल को भी हार्नेस करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पीछे हट सकते हैं। हमारे पास जो डेटा आया है पिछले साल का, जो हमने रियलाइज करा आज ये प्रेजेंटेशन, ये सेशन मैंने बहुत सोच समझ के रखा है, मोर देन 50% ऑफ द कम्युनिटीज विद होम वी हैव वर्कड और हमने उनको ट्रेन करा है, उनकी मंथली इनकम है 2,000 से 5,000 तक। अगर उनमें से कोई भी ये सेशन सुन रहा है तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2,000 और 4,000 की रेंज में कमाने से मुझे 20,000 और 25,000 की रेंज में कैसे पहुंचना है। कोई फर्क नहीं है, आपके पास सेंटर है, आपके पास सुइंग मशीन है, आपके पास ट्रेनर है, आपके पास अपने टाइम भी निकाला है सीखने के लिए, पर आपने वो जो मोटिवेशन है, जो करेज है, नॉलेज को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है, कहीं ना कहीं वहां गैप। आप लोग सहमत है मेरी बात से, है ना? क्योंकि
2: जी
1: हम
2: मैम,
1: आपको सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ मेरी जरूरत जो है वो 4,000 में पूरी हो रही है, मेरे को ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, यही सोच है सब लोगों की। कोई हाथ खड़ा करेगा? सो देट आई गेट द रिस्पॉन्स कि कितने लोग ये सोचते हैं और कितने लोग ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है, मुझे कुछ डिफरेंटली करना है, तो हम अपनी लाइफ में नॉलेज, विजडम, करेज और पोटेंशियल का बैलेंस बना के रखते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के एग्जाम्पल दूंगी, मैं नाम नहीं लूंगी, जिन्होंने अपने लाइफ में रीड सेंटर के थ्रू बहुत आगे बढ़े हैं, अपनी एजुकेशन को भी आगे किया है, अपने मोटिवेशनल लेवल को भी आगे किया है, अपने करेज को भी आगे किया है, अपने पोटेंशियल को भी बढ़ाया है, बट समवेयर दे आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स डिफरेंटली सो दैट दे कैन मीट विद देयर गोल्स, दे कैन रियलाइज देयर ओन ड्रीम्स। कहीं ना कहीं गैप आ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो बेसिक स्टेटमेंट मैं कहना चाह रही थी वो सबको समझ में आ गई है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जो अपना जीवन जीते हैं, हम घर पे, सोसाइटी पे, अपने ऑफिस पे, अपने नेटवर्क पे, अपनी फैमिली पे, अपने रिलेटिव्स पे ही फोकस रहते हैं, और हमारा जो छोटा सा दायरा बना हुआ है हम उस दायरे से कभी बाहर सोचने के लिए, हिम्मत करने के लिए नहीं निकल पाते हैं। मोस्टली लोगों के साथ ऐसे होता है, बहुत एग्जाम्पल्स और भी हैं जो अपने दायरे से बाहर निकल के मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, पर नॉर्मली 70% जो मैंने पहले अपनी स्टेटमेंट में बोला था, 3% आगे बढ़ते हैं, 97% अपनी रूटीन में रह जाते हैं। वो इसलिए रह जाते हैं कि वो अपने घर की जिम्मेदारियों से, अपने समाज की जिम्मेदारियों से, अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों से वो अपने दायरे से बाहर नहीं आ सकते हैं, और वो ही उनकी एक दुनिया बन के रह जाते हैं। और जब तक हम उस दुनिया से, उस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकलेंगे, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं डालेंगे, हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने में कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए कि आप आसमान में उड़े, उड़े तो बहुत अच्छी बात है, पर हाँ अपनी रूटीन के दायरे से बाहर आने के लिए अपने ड्रीम्स को प्लान करना चाहिए, अपने गोल सेट करने चाहिए, और कोई बुरी बात नहीं है अगर हम ड्रीम्स देखें कि आज अगर मैं इस जगह पे हूं तो मुझे 15 साल बाद किस जगह पे होना है, और अगर 15 साल बाद हमें किस जगह पे होना है अगर आज हम नहीं सोचते हैं, तो ये 15 साल ऐसे ही बीत जाएंगे, आपके गोल्स वही के वही रहेंगे, 15 साल बाद आप उसी पोजीशन पे रहेंगे, उसी दायरे में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बहुत साइंटिफिक स्टेटमेंट बता रही हूँ। मैं अपना भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ। 30 साल पहले मैं पीएचडी नहीं थी, मैं बहुत लोअर पोजीशन से डायरेक्टर की पोजीशन पे आई हूँ, क्योंकि 30 साल पहले मैंने विजुअलाइज कर लिया था जब मैं टेबल के दूसरी साइड पे बैठी थी और मैंने कहा था मुझे तो इसी कुर्सी पे बैठना है जहां पे मेरे सामने बैठे, और वो सामने वाली कुर्सी पे आने के लिए मुझे जो मेहनत करनी थी मैंने वो करी। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ा, मैंने अपनी एजुकेशन को छोड़ा, मैंने अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं किया, बट द ओनली थिंग विच मेड मी सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल वॉज करेज। करेज बहुत जरूरी है हमारे में आना, जिससे हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते, और हमें बहुत ये पहचान भी होनी चाहिए, सोच भी होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ कंडीशंस कैसे क्रिएट करते हैं अपने लिए। लाइफ कंडीशंस क्या होती हैं, आज मैं आपको ये भी समझाऊंगी। लाइफ कंडीशंस होती हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोगों की सोच, हमारे आसपास जो लोग हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए वो, और हमारी अपॉर्चुनिटीज जिनको हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं, मे बी एनी ऑफ द रीजन। तो वो जो हमारी अपनी सोच है और जो हमारा अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, आज मैं पहले उसकी बात करूं। एक वर्ड है आपने सुना होगा, हेल्प, हम बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को। आई एम लिविंग इन अ हेल, माई एनवायरमेंट इज वेरी नेगेटिव, मेरे आसपास लोग वो सोच ही नहीं रखते जो मैं अपनी सोच रखती हूँ। ये जो हेल वर्ड है, जो हम अपने ही दायरे में अपने ही कुएं में गिरते हैं, वो किस तरीके से गिरते हैं, सिर्फ अपनी सोच से। हम एक नॉर्मल सोच से हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। सबके साथ बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जिन

जो फैक्टर्स हैं उनको ब्लेम करते हैं. माई मदर इन लॉ इज लाइक दिस, माई हस्बैंड डजंट लिसन टू मी, मेरे घर का काम खत्म नहीं होता, मेरे पे बहुत प्रेशर है, मेरे पे बहुत टेंशन है. वो किसकी सोच है? वो हमारी सोच है. हमने वो सोच अपने ऊपर इतनी जबरदस्त उसको हावी होने दिया है. उस हावी होने के कारण हम अपना करेज लूज कर सकते हैं, हम अपनी नॉलेज के ऊपर धूल छोड़ देते हैं, हम अपने जो एक्शंस लेने हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए उनको डाइल्यूट कर देते हैं. वो एक ही बहुत बड़ी चीज है जो हमारी सोच है, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी सोच के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं. ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, मैं कोई अलग से नहीं हूँ. बट हाँ, ये हमारे अपनी लाइफ में रूटीन में प्रैक्टिस करना है कि हम जितना अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने ऊपर प्रेशर ना क्रिएट करने दें, उतना ही हम हमारे लिए अच्छा है. तो ये हेल वर्ड आपको समझ में आ गया, नेगेटिविटी. नेगेटिविटी फैक्टर्स जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं. दूसरा है हंगर. हंगर क्या होता है? ग्रीन. हम हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है. वी डोंट ट्राई टू लिव विद इन द मीन्स वी हैव, और हम कंपैरिजंस में उन सब चीजों को लेने की एक जिज्ञासा रखते हैं, हंगर रखते हैं, और उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हम गलत काम भी कर लेते हैं. हम अपनी ट्रांसपेरेंसी पे, अपना जो ट्रूथफुलनेस है इनसाइड आउट, उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है हमारी लाइफ में, और हर कोई करता है ये. आई एम जस्ट ओपनिंग योर आईज ऑन दिस. हम कहते हैं कि हमें कोई नहीं देख, हम ये कर सकते हैं, बट अगर हम इनसाइड आउट एक ही हैं, हम फर्क नहीं हैं, तो हम इस जिज्ञासा से बाहर आ सकते हैं. तीसरा बहुत ही नेगेटिव पॉइंट, जो मैं रूटीन लाइफ की बात कर रही हूँ, वो एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो है एनिमैलिटी. एनिमैलिटी का मतलब होता है कि हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि हम दूसरों को प्रॉब्लम में देख के वी आर सेटिस्फाइड. चाहे हमारे से छोटे ऑफिसेस में भी यही होता है, रूटीन होता है कि मैनेजर अपनी जूनियर टीम के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में इतना आ जाता है कि वो अपने करेज को भी डाउन कर लेते हैं, अपने एम्बिशंस को भी किल कर लेते हैं, अपने पोटेंशियल को भी रियलाइज नहीं कर पाता है. तो ये जो एनिमैलिटी है, एनिमैलिटी मीन्स नॉट गिविंग स्पेस टू एनीवन, और अपने जूनियर्स को जूनियर समझना और अपने आप को बड़ा समझना, ये जो रोल होता है जो मेंटरशिप के आगे बिल्कुल उसको धुआं डाल देता है, उसको किल कर देता है. जो हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वो चीज हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकती है. वो हमारी एक नेगेटिव पर्सनालिटी हो जाती है. चौथा पॉइंट है एंगर. हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, हमारी लैंग्वेज फर्क हो जाती है, हम स्कोल्ड करना शुरू कर देते हैं दूसरों को, हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं, हम इतना नेगेटिव लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर देते हैं गुस्से में, और बहुत कुछ हम बोल जाते हैं जो असल में हमें नहीं बोलना चाहिए. तो वही होते हैं ना, गिव एंड टेक प्रोसेस. अगर हम नेगेटिविटी को एम्बाइब कर रहे हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, हम एनिमैलिटी की पर्सनालिटी में जाते जा रहे हैं कि हम दूसरों को छोटा समझते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, और हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है,

सारा कुछ मिला के हमारी पर्सनालिटी को नेगेटिव कर देता है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजों को समझना शुरू करते हैं, अपने आप को रिफाइन करना शुरू कर दें, अपने आप को हम इस दायरे से बाहर ले आए, तभी हम करेज जो है हमारा वो हमें अलाउ करेगा कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ के कुछ कर सकें। तो ये जो चार पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और दो और हैं जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी इन द सेंस ऑफ नेगेटिव अप्रोच, और दूसरा रैप्चर है, ये भी ऑलमोस्ट सेम चीज है जो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि अगर हमारी सोच ही नेगेटिव है, हम अपने आप को बेचारा समझते हैं कि ये बेचारी है, इस वर्ड से मुझे बहुत ही नफरत, कोई बेचारा नहीं है इस दुनिया में, कोई बेचारी नहीं है, सिर्फ ये हमारी सोच है जो हमें एक पॉजिटिव दायरे में रहने से बाहर खींचती है। और ये एक यूनिवर्सल नेचर एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, पर हमें अपने आप को स्थिर रखना है, हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, हमें अपनी लाइफ को अपने हाथों में रखना है। चाहे हम जिस जरूरी नहीं है कि हम एक महीने में स्काई लिमिट तक पहुंच जाएंगे, नहीं, पर अगर हम ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारे ये जो वैल्यूज हैं हमें लेकर जाएंगे। और अगर हम इन वैल्यूज को एक्सटर्नल सराउंडिंग से दबने नहीं दें तो हम अपनी लाइफ में राइज कर सकते हैं। और वो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? लर्निंग, जो आप लोगों को सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रियलाइजेशन कि आप क्या अपनी लाइफ में कर सकते हैं, ट्रू इनसाइड आउट जो मैंने ह्यूमैनिटी के साथ लिंक करा था, अगर वो है और हम इसको अपनी लाइफ के एक पहलू बना लेते हैं, अपने मंत्रा बना लेते हैं, और हम डिस्कवर करते हैं कि हम क्या अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, हम वी आर ऑलवेज एस्पायर्ड दूसरों को देख के जो अच्छा कर रहे हैं, और सेल्फ रियलाइजेशन की भावना हमारे में आ जाती है, विथ प्योर प्योर मतलब कि हमारी सोच बिल्कुल सही, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है हमें, इनडिस्ट्रक्टिबल हैप्पीनेस हम अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते। तो मैंने शुरू कहाँ से किया? अपनी बर्थ से। लाइफ को कैसे हमने सही रास्ते पे लेके जाना है, और सही रास्ते पे हमने अपनी नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है क्योंकि हमारा स्मूथ पाथ रहे लाइफ का, और लर्निंग से, रियलाइजेशन से, ट्रूथफुलनेस से हमने अपनी लाइफ को कैसे हैप्पीनेस की तरफ टर्न करना है, मैं ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब तक हैप्पीनेस नहीं है विद इन योर सेल्फ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आते हैं, बट अगर आपके करेक्टरिस्टिक्स इन पांच छह मुद्दों पे डिपेंडेंट हैं, तो आप बहुत जल्दी अपने आप को डेविएट कर लोगे दूसरी तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, और जैसे ही आप पॉजिटिविटी की तरफ टर्न करोगे आपको करेज आएगा, आपको एहसास होगा कि हाँ मेरा लाइफ का गोल तो फर्क है, मैं क्यों इन सब चीजों में उलझी हुई हूँ, मुझे इस उलझन से बाहर आना है। और मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। दो पॉइंट्स मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे कि हमें बहुत आदत होती है हम सेल्फ बूस्टिंग करते, मैं भी करती, मैं बहुत कभी कभी बोल देती हूँ, मैं अपनी फेस कर लेती हूँ, मैं अपने आप के बारे में दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को अच्छा साबित करती हूँ, जो नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को भी उसी दायरे में देखना चाहिए जिस दायरे में हम हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस ले लेते हैं, अपनी लाइफ का एक पैटर्न बना लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ही आसानी से लेकर

आ सकते हैं। हम कितने सच्चे हैं अपने लिए, ये एक एग्जामिनेशन है, सेल्फ एग्जामिनेशन है, जो हमें हर रोज अपने लिए करना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं अपनी लाइफ में कि हम दूसरे के मुंह के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ हिम और हर वी आर हैविंग डिफरेंट फेस, बट अंदर से हम उसके लिए नेगेटिव। तो ये ट्रूथफुलनेस जो है, ये एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है अपनी अचीवमेंट्स में। इनविजिबली वो ब्लॉकेट क्रिएट कर दे। हम कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी ही लाइफ की। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसने ये नहीं किया मेरे लिए, इसलिए मैं आज नहीं इस लेवल पर पहुंच पाई। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम आम वुमेन से बात करते हैं अपने सेंटर्स पे, जो हमारे सामने आती हैं, पर हमने कभी उनको समझाया नहीं इस लेवल पे आके कि ये मुश्किलें तो सबके साथ हैं। अगर हम इन मुश्किलों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और उसके लिए क्या जरूरी है? अपना आत्मविश्वास, अपने पे बिलीव करना कि यस आई कैन डू। अपने जो अंदर अंदरूनी पोटेंशियल है उसको हम हिलने नहीं दें, उसको डगमगाने नहीं दें, और अपनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें और पॉजिटिव स्पिरिट्स रखें, तो हम हमारा जो आगे का रास्ता है वो बहुत ही रोशनी वाला हो जाएगा और हम अपने लाइफ के गोल तक पहुंच सकते हैं। गोल कोई भी हो, मैं पैसे का गोल नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, पर यस पैसा सबको चाहिए, पैसा सबको कमाना चाहिए, और हमारा रीड इंडिया का मिशन यही है कि हम सबको इस लेवल तक ले आए कि वो किसी के आगे भी औरत हाथ नहीं फैलाए और वो डिपेंडेंट नहीं हो। यही हमारा बेसिक मुद्दा है जिसको हम सपोर्ट करते हैं नॉलेज से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, विजडम से, और उसको हम ये सेशंस लेके मोटिवेट करते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ करना है। हमें नॉर्मली सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको ये लगेगा कि मैम हवा में बातें कर रही है। मैं इसको फिर से दोहराना चाहूंगी कि हमें अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड से सपोर्ट नहीं मिलता और हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? उस सिचुएशन में जो इनविजिबल पावर है उसके ऊपर फेथ रखनी है, उसके ऊपर विश्वास रखना है, और वो इनविजिबल पावर ही जो है, अगर आप सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं, और जो मैंने 6 डेविल्स की बात करी है जो आपकी पर्सनालिटी को अटैक करते हैं, अगर आप उनमें ट्रुथफुल हैं तो आपके रास्ते, मैं गारंटी से कहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत खुल जाएंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में है, पर अपनी लाइफ को कैसे हमने डायरेक्शन देनी है वो हमारे हाथ में। मैं अपना ये सेशन बाद में हम डिस्कशन करेंगे, मैं हाफ एन आवर का सेशन रखती हूँ, और हाफ एन आवर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल्सो। मैं एक छोटी सी स्टोरी से कंक्लूड करूंगी और फिर आप लोग कन्वर्सेशन करेंगे मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगी आपके जो क्वेरीज हैं उनको आंसर करने के लिए। एक फिशरमैन था, वो सुबह सुबह अंधेरे में ही उठ के सी के शोर पे चला गया और वो अपनी तैयारी करने लगा कि आज उसने कहा कि मैं रोज जितनी मछलियां पकड़ता हूँ उससे मैं ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा और मेरे परिवार के लिए मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। अब वो अंधेरे में जब चला गया और उसको रेत में एक पैर के साथ टक्कर हुई किसी लिफाफे की, उसने वो लिफाफा अपने हाथ में उठा लिया और वो जाके शोर पे बैठ जाता है सी के, और अंधेरा होता है क्योंकि सूरज अभी रोशनी नहीं निकली होती,

0: उसमें से उस पत्थर को एक एक को लेके वो सी में फेंकता जाता है। बाय द टाइम जब लास्ट पत्थर उसके हाथ में आता है तो सूरज की पहली रोशनी पड़ती है उस पत्थर के ऊपर, तो वो देखता है ये तो हीरा है, ये पत्थर नहीं है। तो वो रियलाइज करता है कि मैंने बहुत सारे पत्थर आधा घंटा बैठ के यहाँ पे सी में फेंक दिए जो हीरे थे, और मैंने उन हीरों को अपने हाथ से, अपने ही हाथों से उनको किल कर दिया, मैंने उनको पानी में फेंक दिया। तो वो अफसोस करता है कि मैंने ये जेम्स जो थे मेरे, मैंने पानी में फेंक दिए। पर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप अपने जो जेम्स हैं, जेम्स ऑफ थॉट्स, आपकी सोच, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, आपका रिलेशनशिप, आप इनकी इम्पोर्टेंस रियलाइज किए बिना आप उनको अपनी लाइफ से दूर मत करिए। जैसे ही ये आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी पॉजिटिव सोच बनी रहेगी और आप भी हीरे की तरह शाइन करेंगे, और ये जो जेम्स हैं आपकी लाइफ के, आपको आपकी लाइफ के गोल तक पहुंचाने में बहुत मदद करें। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न?
1: मैम क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैम बहुत बहुत मोटिवेशन है। सीरियसली इस टाइम हम लोगों को इसकी बहुत जरूरत थी। आई रियली फील वेरी हैप्पी कि बहुत सारी चीजें ऐसे जो बीच बीच में छूटने लग जाती हैं, वो रिवाइज होने के बाद हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है।
0: तो ये बहुत एक सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है जिंदगी की, और अगर हम इस कड़वे घूंट को पी लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही एक डायरेक्शन वाली हो जाती है और हम भटकते नहीं हैं इधर उधर। किसी के कोई प्रश्न? प्लीज।
1: मैम आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन था कि आपने PhD साइकोलॉजी में की हुई है।
0: नहीं, मैंने PhD तो फैमिली वेलफेयर में की है, साइकोलॉजी में नहीं की है।
1: मैम अच्छा समझाते हैं आप लाइफ के बारे में।
0: अच्छा, ये एक्सपीरियंस से आता है, और जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम ऐसे माहौल में रहेंगे, जो मैं भी किसी से सीखती, हर कुछ तो आदमी लेके पैदा नहीं होता। तभी मैंने बर्थ और लाइफ के बारे में आपको डिफरेंस बताया है कि बर्थ इज समथिंग एल्स बट लाइफ इज समथिंग एल्स। ये सब कुछ जो है ये लाइफ के एक्सपीरियंस ही है।
2: हमारे सेंटर से ये कैंडिडेट है, ये कुछ शेयर करना चाहते
0: हाँ बोलिए।
3: हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग। माय नेम इज हाफिजा और हम यहाँ कंप्यूटर सीखने आते हैं। की मीटिंग हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी। आपने जो भी शेयर किया, जो बताया, वो सब बहुत अच्छा लगा। और आपने जो पॉइंट बताया उसमें बहुत ज्यादा ही अच्छे लगे। एक तो अपना गोल सेट करना चाहिए, और मतलब जो एनवायरनमेंट एक्सक्यूज होते हैं वो नहीं बनाना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग हमें, मतलब माहौल अच्छा नहीं है या कुछ भी। मतलब अपना गोल सेट करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए, और करके एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। अपने गोल पर काम करते रहना चाहिए।
2: जैसे पढ़ाई वाला
3: जैसे पढ़ाई, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं हम तो कुछ करते ही रहे, उस पर यह नहीं सोचें कि हमें आगे करना क्या है या हम बनना क्या चाहते हैं। ये सब सोच कर रखना चाहिए, अपना गोल सेट करना चाहिए।
0: बिल्कुल। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि जो विनर्स होते हैं, जो जीतते हैं, वो चीजें अलग नहीं करते हैं, चीजें वही हैं पर वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। कि अगर आपको पढ़ना है तो आम लोग 1 घंटा पढ़ते हैं पर आपको 3 घंटे पढ़ना है। अगर कंप्यूटर कोई 1 घंटा आपको अगर सेंटर में मिल रहा है तो उस 1 घंटे को कैसे जुडिशियली अच्छे से यूज करना है सीखने के लिए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं अपनी लाइफ में, हम भटक जाते हैं, और अगर हम हमेशा हमारी अलार्म बजता रहे कि हाँ हमें ठीक ढंग से अपनी लाइफ को जीना है, तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हम अनजाने में भी करते हैं ना, उन पे भी हम कंट्रोल कर पाते। अब सब लोग ये अपनी कॉपी में नोट करेंगे, मैंने आज जो बताया है कि मैं अपनी लाइफ में इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कैसे करूं। ठीक है, जब आप लिखना शुरू कर देंगे ना, तो आधी चिंता आपकी किस पे आ जाएगी, पेपर पे। अब जब आधी चिंता आपकी पेपर पे आ जाएगी तो आपका माइंड फ्री हो जाएगा कुछ अच्छा सोचने के लिए, कुछ अच्छा करने के।
1: नमस्ते मैम, जय गुरु जी मैम।
0: जी
1: हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक खुद मोटिवेशन है, आपको देख के अपने आप ही एक अंदर से निकलता है उस चीज के लिए। सेशन तो है ही बहुत जरूरी, पर आपको भी फिर शक्ल अगर याद भी कर लेते हैं या सामने भी आ जाती है, हम सोच भी लेना, तो आपसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। आपको देख के ही, सोच के ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई, और अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जो किया, एक अपना तो चलाया, चला लोगों के साथ, इतने लोगों को चला रहे हो, साथ में इतने लोगों की फैमिली चला रहे हो, तो कैसे चला रहे हो, वो चीज बहुत बढ़िया है मैम सोचने के लिए। तो वही चीज, एक छोटी सी कोशिश है मैम।
0: वो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, वो मैं नहीं चला रही हूँ। पर हाँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, मैं कभी सोचती भी हूँ ना कि मुझे छोड़ के जाना है, तो आप सब लोगों की शक्लें मेरे सामने आ जाती है, मैं फिर कहती हूँ नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगी।
1: मैम ऑर्गेनाइजेशन ठीक है चला रही है, पर आपके बिना जब तक कि घर तब तक नहीं चल सकता जिसमें जो कोई पावरफुल बंदा वहां पे ना हो, कोई भी चीज हो, तब तक कोई भी संस्था हो या कोई भी समाज हो आगे नहीं जा सकता। और वही मैं चीज में बहुत बार सोचती हूँ कि जब मैडम छोटे से लेके यहाँ तक ला सकती है, तो हम थोड़ा थोड़ा करें तो हम लोग कहाँ तक भी जा सकते हैं उस चीज के लिए जो आप लोग सोच
0: जो मैंने वैल्यूज की बात करी है ना,
1: रहे हैं।
0: नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की, वो क्रक्स है, वो एक
1: जी
0: दर्पण है हमारे लिए। अगर हम उस दर्पण पे, और हम उसको रोज साफ नहीं करेंगे, तो ये जो हमारे लाइफ के गोल्स हैं, हम उनको कभी अचीव,
1: नहीं कर सकते मैम हम लोग।
0: बल्कि अगर जो जैसे मैंने अपनी जॉब शुरू करी थी पहले, मैं वहीं पे रहती अगर मेरे गोल डिफाइन नहीं होते, है ना।
1: जी
0: हाँ, तो ये बहुत जरूरी।
1: थैंक यू मैम।
0: नमस्ते मैडम। नमस्ते
1: मैडम आपको तो हम हमेशा सुनते हैं, आपके विचार भी बहुत अच्छे रहते हैं और समझते भी बहुत है, हम अपने जीवन में उसका इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, इसी वजह से हम सक्सेस भी हैं। मगर मैं अपने महिलाओं को जब समझाना चाहती हूँ तो समझ नहीं पा रही है। अगर आप एक बार भी सेशन ऐसा महिलाओं के लिए ले तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो आप महिलाओं को ज्वाइन कराइए, उनको सुनने दीजिए, और मैं ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी सब सब सेंटर्स पे, जो आप जब महिलाएं काम कर रही होती है मशीन पे, आप ये रिकॉर्डिंग चला दें तो उनको सुनने दें, क्योंकि ये एक बार ही सुनने से नहीं आता। ये जो
1: नहीं
0: मैंने आपके साथ शेयर करा है, मैंने कम से कम 100 बार ही अपनी लाइफ में पढ़ा होगा, और
1: यस
0: उसको ये आधे घंटे में एक्सप्लेन करना और वो लैंग्वेज को चुनना, दिस इज एन आर्ट। तो आप लोग भी उनको बार बार सुनाइए, बार बार सुनाइए, और देखिए फिर आपको अपने सामने ही बदलाव नजर आएगा।
1: 100%। थैंक
0: हाँ,
1: यू, थैंक
0: रिकॉर्डिंग भेजेंगे हम सब, और
1: यू मैम।
0: आप मराठी में ट्रांसलेट कर लीजिए उसको, और मराठी में बताएं, ठीक है।
1: हिंदी भी समझती है महिलाओं को, लेकिन क्या होता है जो आपकी लैंग्वेज, आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो हम लोग नहीं उसमें पिरो सकते अपने शब्द को, तो इसीलिए ऐसे थोड़ा सा अलग रहता है। आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो बहुत ही अच्छा रहा, अट्रैक्टिव रहता है मैडम, रियली।
0: आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। हाँ
1: थैंक यू मैम। हेलो मैम। मैम
0: जी, हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: मैं
1: कैसे हो आप
0: बिल्कुल ठीक हूँ।
1: मैम? आपका मोटिवेशन बहुत बहुत अच्छा है। मेरी लाइफ में बहुत कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, घर की प्रॉब्लम भी होती है, यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, कॉलेज में पढ़ाई चल रही है उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। मोटिवेशन इंसान का होना बहुत जरूरी होता है, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाती, पढ़ नहीं पाते हैं। मैम आपने इतना अच्छा मोटिवेट किया है, थैंक यू सो मच सच में।
0: तो आप अब अपनी पढ़ाई खूबसूरती से अच्छे से करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। प्रॉब्लम्स
1: ओके थैंक यू मैम।
0: तो आएंगी, आप प्रॉब्लम्स को नहीं रोक सकते हैं, पर प्रॉब्लम्स से बाहर कैसे निकलना है वो आपके हाथ में।
1: पर मैम
0: इतनी सच।
1: सीरियसली आपकी मोटिवेशन की ना हमें सच में बहुत जरूरत होती है। ऑनेस्टली मैम ऐसे लगता है जैसे आपने भी हमें बताया ना कि हमें कभी कभी, मैं भी इतनी बार पढ़ी तो मुझे आज फर्स्ट टाइम फिर ऐसे फील आ रहा है। मैंने पहले आपका सेशन लिया था उसके टाइम हम बहुत टाइम मोटिवेट रहे, एक्टिवली वर्क किया, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम ऐसे हो जाता है कि आज ऐसा लग रहा था कि सीरियसली मैम लग के फिर दोबारा से री एनर्जाइज हो गए हम लोग। बहुत अच्छे से आगे इस पे कोशिश करेंगे
0: मैं कोशिश करूँ हर हफ्ते एक सेशन लेने का, तो
1: जी मैम, जी
0: दैट
1: मैम,
0: वो जो मोटिवेशनल लेवल है वो बने रहना चाहिए। प्लीज
1: जी मैम, जी
0: बना
1: मैम,
0: रहे।
1: जी
0: थैंक
1: मैम, जी मैम, थैंक यू सो मच मैम।
0: यू।
2: नमस्ते
0: मैम।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने हमारे लिए जो कीमती वक्त निकाला है इसलिए हम आपका आभारी है। और आपने जो हमें लास्ट में जो स्टोरी कही कि जो हीरे थे वो पानी में बहा दिए और लास्ट में उसे जब रियलाइज हुआ कि एक ही हीरा बच गया है। हमारे लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती है, हमें उसको समझना चाहिए। लेकिन जब उसके पास एक ही हीरा बचा तो आपसे हमें ये सीख मिली कि एक उस हीरे से भी हम कुछ भी कर सकते हैं। ओ थैंक यू मैम, और आप बहुत मोटिवेट करती है हमारे काम करने के लिए, इसके लिए आपको थैंक यू कहते हैं। ऐसा सेशन आप ऑर्गेनाइज कर दीजिएगा जो हमें मोटिवेट करता है और कितना भी काम करने के लिए प्रेरित हो रहता है। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू सो मच तुषार। और मुझे पता है कि पुणे का सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं सब लोगों को, खाली मैं नहीं करती हूँ, आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं।
1: थैंक यू मैम, इतना आगे तक लाने के लिए, उस चीज के लिए और एक बढ़ावे के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। कोशिश है, जो प्रॉमिस आपसे किया है उसको बिल्कुल पूरा करने की। बिल्कुल, गुरुजी ने चाहा तो बहुत जरूरी। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू सुमन। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड लिसनिंग टू मी।
1: नमस्ते मैम, आप जब जब ट्रेनिंग देते हैं तब तक तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कहने की बात नहीं है। बट जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो हम थोड़े से नीचे आ जाते हैं, लगता ही नहीं है कि कोई हमारे ऊपर है, या फिर हम ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई देख रहा है हमारे काम को। तो जब जब आप हमें ट्रेनिंग देते हो तो फिर एनर्जी आ जाती है हमें काम करने के लिए। थैंक यू सो मच, और आप हर हफ्ते ये लीडरशिप का एक सेशन रखिए।
0: ठीक है जरूर सर।
1: गुड
0: हेलो,
1: आफ्टरनून,
0: गुड आफ्टरनून, कैसी हो? ठीक है।
4: आप कैसे मैम? मैम आपका सेशन मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है लीडरशिप का, और आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो मैम।
0: आप बस फिर उसको याद रखना अपनी जिंदगी में, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई तुम मोटिवेशन से, है ना?
4: जी मैम, मैं और आगे पहुंचना चाहती हूँ मैम।
0: आप पहुंचोगी, तुम 100% पहुंचेंगे। ठीक है। गुड
4: थैंक यू मैम। नमस्ते मैम।
1: इवनिंग
0: हाँ जी, क्या हाल है मीना?
4: मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
4: आज मैं जो कुछ भी हूँ तो सब आपका ही सपोर्ट है, वरना मैंने सोचा नहीं कि मैं मेरी लाइफ में तीसरी बार भी घर बना लूंगी।
0: देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे बढ़ोगी तुम मीना, पीछे मुड़ के तुम देखने वाली नहीं हो आप, मुझे पक्का विश्वास
4: जी
0: है
4: मैम,
0: ना? हाँ, और गुंजन भी आगे बढ़ेगी बहुत।
4: जी मैम, अभी वैकेंसी निकली है तो गुंजन ने उसमें अप्लाई भी किया है अभी नर्सिंग की। जी,
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी।
4: और मैम मैं कोशिश भी करती हूँ, जो आप सेशन ले रही हो तो जो महिला ट्रेनिंग में आती हैं उनको भी मैं लीडरशिप के बारे में कोशिश कर रही हूँ सेशन देने की भी।
0: बहुत अच्छी बात है, सब लोग करिए, जो मीना कर रही है, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अगले हफ्ते बिफोर आई टेक अनदर सेशन, आप प्लीज इस सेशन को रिपीट करिए अपने बेनिफिशियरीज के साथ,
4: जी मैम,
0: तभी इस सेशन का फायदा है, नहीं तो आप मोटिवेट होते जाएंगे वो बेचारे पीछे रहते जाएंगे, उनको अपने साथ लेके चलना है। ठीक है। थैंक यू सो मच।

0: मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था, जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब ब्रजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया।
1: मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान,
2: मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
0: इसकी नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब की जियारत से होकर गुजरती थी। यही गंगा जमुनी तहजीब आगे जाकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गई। वे पिछले 55 वर्षों से नागदंडी के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम और विवेकानंद केंद्र के सानिध्य में सनातन धर्म के मूल मंत्र मानव सेवा और वैश्विक भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। 1996-97 के कठिन दौर में भट्ट साहब के नेतृत्व नागदंडी आश्रम ने माता खीर भवानी में भंडारा शुरू करने की ठानी।
1: शुरू में भंडारे में माता खीर भवानी मुश्किल से 400-500 लोग थे, पर बिना किसी परवाह के हम बस आगे बढ़ते गए और मेरी अर्धांगिनी हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही।
3: भरपूर साथ तावुन।
0: उनके उस निडर पहेल का रंग आज साफ नजर आता है। 2024-25 में उसी भंडारे की पंगत में 35,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। समाज को जोड़ने के साथ साथ अमेरिका से हॉर्टिकल्चर की उच्च शिक्षा प्राप्त भट्ट साहब ने कश्मीर की बंजर और वीरान जमीनों को भी संवारा। वैज्ञानिक सोच से सेब और अखरोट के लहलहाते बाग खड़े किए। कोल्ड चेन और नई पैकेजिंग से गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाया। युवाओं को योग शिक्षा शिविर, संस्कार वर्ग और युवा सम्मेलन द्वारा सही दिशा दिखाई, ताकि उनके हाथों में कलम हो। अब वे नागदंडी आश्रम का विस्तार कर रहे हैं, ताकि एक साथ 400 लोग वहां ठहर सके। आज कश्मीर का युवा जान चुका है कि असली ताकत आपसी भाईचारे में है। सम्मान और पुरस्कार तो बस एक पड़ाव है, उनकी असली वसीयत वो बीज है जो उन्होंने यहाँ के दिलों में बोए हैं।
1: जब हमारे युवाओं का जोश और माता पिता का होश एक साथ आएगा, तभी हमारा कश्मीर फिर से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर महकेगा।
0: उनकी ये यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है, जो सदैव चलती रहेगी। श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026।

0: मैं अब ऋतु को बुलाना चाहूंगी. ऋतु, ऋतु प्लीज कम ऑन माइक.
1: मैं आप सभी को नमस्ते करती हूँ. गुड इवनिंग एवरीवन. थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि एकदम से बोल दिया गया कि आपको बोलना है, और ये हमारे लिए एक गिफ्ट भी है कि एकदम से बगैर प्रिपरेशन के हमें बोलना, सबके सामने आना, ये एक बिग चेंज है हमारी लाइफ का. क्योंकि प्रिपरेशन करके तो बोलना बहुत इजी होता है, एकदम से कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल होता है. तो मेरे लिए बहुत सारे वर्डिंग है. अभी मैं बैठ के सोच रही थी कि क्या क्या बताऊं, क्योंकि मैम ने इतने लोगों की लाइफ चेंज की है, हम लोग बता नहीं सकते. सबसे पहले मैं अपने बारे में ही बताऊंगी. मेरी लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हो गई है. मेरी शादी हुई थी 2012 में, और 2014 में हमारा सेंटर ओपन हुआ था मेहंदीपुर झज्जर डिस्ट्रिक्ट के गांव में. तो मैं बिल्कुल भी किसी को भी नहीं जानती थी वहां पे, और जो हमारी हवेली है उसको सभी गांव वाले अभी लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं. रीड इंडिया सेंटर बहुत कम बोलते हैं, सभी लोग लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं. और ये बहुत अच्छा भी है कि एक बंजर घर, वो एक बिल्कुल बंजर घर पड़ा था वहां पे, लोग उस गली में जाना भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो हवेली ऐसी थी कि लोग वहां पे जाने से डरते थे. तो फर्स्ट टाइम मैं उस हवेली में गई, वो हमारे पूर्वजों की हवेली थी. तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, तो सबका जन्म यहाँ पे हुआ है. तो मैं भी देख के शौक हो गई. उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में शायद यहाँ पे कुछ ओपन हो, जैसे लाइब्रेरी है, या फिर देखते हैं क्या ओपन होता है. क्योंकि उस टाइम पे बातें ही चल रही थी 2012 में, जो रंजीव दलाल सर हैं उन्होंने बताया था. तो मैं देख के एकदम शौक हो गई कि ऐसी हवेली में कुछ खुलना, और फिर यहाँ इतने बीच गांव में वो चलना बहुत टफ है. तो मैंने देखा कि ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो गया. तो फिर जैसे ही वो लाइब्रेरी ओपन हुई, तो मैं कंटिन्यू स्टडी कर रही थी अपनी शादी के बाद भी. तो मैंने देखा कि लाइब्रेरी ओपन हुई है, तो क्यों ना मैं बीएड कर रही थी, तो मेरे बीएड के एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि लाइब्रेरियन का ही कोर्स क्यों ना कर लेती हूँ मैं. तो वो मैम ने ही मेरी लाइफ में इतना चेंज डाला है कि एकदम से लाइन चेंज हो गई. मैंने बिलीव किया, और उस टाइम मेरी जैसे कंटिन्यू स्टडी हो रही थी, तो मैं सेंटर पे आके ही मैं पढ़ती थी, और वहां से मुझे बहुत हेल्प मिली. जैसे घर पे गीता की बुक्स नहीं थी, तो मैम ने वहां पे गीता रखवाई हुई है. मतलब काफी सारी बुक्स हैं जो कि हेल्प मिलती है कि किसी भी टाइप की आप बुक पढ़ो. तो मैं उस टाइम गीता की बुक पढ़ती थी, और फिर उसके बाद अपने एग्जाम्स की तैयारी करती थी. तो इस तरह से डिलीवरी होनी थी मेरी, और ऑपरेशन के बाद 6 दिन के बाद मैंने एग्जाम भी दिया. क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप एग्जाम छोड़ दो, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप एग्जाम दो. लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं एग्जाम छोड़ दूंगी तो फिर लोग ये कहेंगे कि लिया था एडमिशन और छोड़ दिया. तो मैंने कहा नहीं, मैं एग्जाम दूंगी, कैसे ना कैसे करके मुझे एग्जाम देना है. तो मैंने एग्जाम दिया और मेरे अच्छे मार्क्स आए. मेरे 80% मार्क्स मैंने उस टाइम मेरे बिलिंग में आए थे. तो मैं बहुत खुश हुई कि मैम ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वहां बैठ के पढ़ी. क्योंकि घर पे नेट भी इतना अवेलेबल नहीं होता, वहां बैठ के नेट से नोट्स निकालती थी मैं और तब पढ़ती थी. फिर उसके बाद मैंने एमलिब किया. एमलिब में भी ऐसे ही मैंने सेंटर पे बैठ के पढ़ाई की, क्योंकि घर पे हम लोग काम होता है इतना सारा, फैमिली मेंबर्स होते हैं, सबको संभालना. तो एक सेंटर ही ऐसा था जहां पे बैठ के पढ़ती थी मैं. वहां से मेरी लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल ही. मतलब मुझे स्टडी मिली, हर एक चीज, चाहे मुझे किसी भी चीज का कोई भी बुक्स. अभी मेरा स्टाफ है, अगर वो बोलता है कि हमें क्या डिजाइन करना है, तो हम लोग वहीं से सब कुछ सीखते हैं, नए नए डिजाइन सीखते हैं. तो मेरी लाइफ तो बहुत चेंज हुई है. दूसरा, जो हमारी हवेली है, वो किसी ने नहीं सोचा था कि एक बंजर जगह इतनी अच्छी बन जाएगी. और आज गांव का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो वहां पे नहीं आता है. क्योंकि जो हमारा गांव है वो बिल्कुल अप्रोच रोड पे है, तो ट्रैवल के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. और बच्चों को शौक होता है कि स्टोरी बुक्स पढ़ना, या फिर कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं जिनको वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए मैंने जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स की बुक्स मंगवाई हैं, ऑनलाइन मैं ऑर्डर करती हूँ और उनके लिए लेके आती हूँ। और उन बच्चों ने 15-15 दिन में आते हैं वो, लेकिन पूरा साल मेरे से उन्होंने बुक ली है और वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये उनकी लाइफ का बिग चेंज है, क्योंकि वो ऐसे बच्चे हैं कि वो बुक नहीं खरीद पाते अगर लाइब्रेरी नहीं होती, और उनको बहुत हेल्प मिल रही है लाइब्रेरी से। और दलाल सर ने भी इतना सपोर्ट किया है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। सर हर टाइम बोलते हैं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो प्लीज आप मुझे बताइए बगैर झिझक के। अगर आप मुझे रात को 10 बजे भी फोन करोगे तो भी मैं आपका फोन उठाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम पूछूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या करना है, कैसे करना है। दलाल सर और गीता मैम, हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स गीता मैम और सर ही सॉल्व करते हैं। थैंक यू मैम सबकी इतनी लाइफ चेंज करने के लिए। अभी एक और स्टोरी बताती हूँ मैं, हमारी बेनिफिशियरी है, उन्होंने हमारे सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था और उनके हस्बैंड की एक साल के बाद डेथ हो गई जब उन्होंने कंप्यूटर सीखा था, तो उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था कमाने के लिए, तो वो मतलब तैयारी करती थी घर बैठ के, तो उन्होंने कंप्यूटर के थ्रू ही बैंक में गई वो, उन्होंने हमारे सर्टिफिकेट्स दिखाए, तो उनको अभी आज इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, वो बैंक में काम करती है और वो थैंक करती है मैम को कि मैंने सही टाइम पे कंप्यूटर सीखा, कि अब मैं जो कमा रही हूँ मेरे कमाने का जरिया ये सेंटर है, इसने मुझे इतनी ज्यादा मेरी मदद की है कि मैं यहाँ से सीख के अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अपने घर को चला रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी आपको हमारे गांव में, हम सभी के गांव में, क्योंकि वहां पे बहुत गरीब लोग हैं, किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो सेंटर पे आके स्टाफ के साथ शेयर करता है, और हम लोग भी अगर उनकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं उनकी सभी की प्रॉब्लम सोल्व करें किसी न किसी तरह। और अभी मैम को देख के ही हम लोगों में भी ये थॉट्स आए हैं कि शायद हम अगर कहीं प्राइवेट और जगह जॉब करते तो शायद हम लोग सेल्फी होते, हम अपने बारे में सोचते, लेकिन अभी हम रीड के साथ मैम को इतना अच्छा कि मैम सबके बारे में सोचती है, अभी हमारे भी बिल्कुल ही वैसे हो गई है हॉबी कि सबकी प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम लगती है, हम सबके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। थैंक यू।

नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंजू गौर है। मैं द्वारका सेंटर रीड इंडिया से हूँ। हम पिछले 12 सालों से साथ में हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि थैंक यू टू मैम एंड रीड इंडिया हमारे सपनों को उड़ान देने के लिए। इतना बस है कि जीरो से हीरो तक का सफर है हमारा रीड इंडिया के साथ। थैंक यू टू मैम इस मंच तक आने के लिए, क्योंकि हमारा सपना है जो आज सच हुआ है। थैंक यू।

गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अर्चना कुमारी बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बेनीपट्टी सेंटर से हूँ। गीता मैम और रीड इंडिया, मैं आपके आभार हमेशा रहूंगी क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे थोड़ी सी नर्वस भी हो रही है। और मैंने अपनी लाइब्रेरी में मैम एक ही बात शेयर करती हूँ कि ये फाइनेंशियल ईरा है तो सबको पैसे कमाने की चिंता लगी हुई है, लेकिन जो भी आ रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे पास एक रुपए है और मैं आपको दे देती हूँ तो आपके पास 2 रुपए जरूर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन नॉलेज यदि हम शेयर करते हैं तो मेरे पास भी एक है और आपके पास भी एक है, तो प्लीज हम शेयर करेंगे तो मेरे पास भी 2 हो जाएंगे और आपके पास भी 2 हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चे हमारी लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और अपने नॉलेज को शेयर भी करते हैं। और मैं आभारी रहूंगी हमेशा क्योंकि सर सब अपने स्टोरी के, सब अपने लाइफ के नायिकाएं हैं, सब स्ट्रगल करती हैं अपने लाइफ में। हमारी भी गवर्नमेंट जॉब जब छूट गई थी तो मैम ने मुझे पनाह दी, इसलिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी आजीवन। और मैम मैं तो इतनी लायक नहीं हूँ कि जी से स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं आपके ए को बरकरार रखूंगी जब तक। थैंक यू।

हेलो एवरीवन, दिस इज शरीन फ्रॉम लखनऊ लाइब्रेरी एंड मैं बस कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी कि दो शब्दों को मिला के बनने वाला बहुत ही सुंदर और प्यारा शब्द है पुस्तकालय. द लाइब्रेरी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. इस लाइब्रेरी ने बहुत लोगों की दुनिया को चेंज किया. एग्जैक्टली, बिल्कुल, नो डाउट. और मैं दो लाइन्स में अपनी बात कंप्लीट करूंगी कि ये बुक्स जो है ना, वो कभी हमें धोखा नहीं देती हैं, राइट? दूसरी थिंग ये है कि ये जो बुक्स हैं, वो कभी कभी हम इनकी स्टोरीज को पढ़ते हैं तो ऐसा फील होता है कि हमें ये हंसा रही हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ के जुड़े हुए इतने इमोशंस होते हैं जो उन स्टोरीज में निकल के आते हैं. कभी कभी ये बुक्स हमें रुला भी देती हैं, राइट? लेकिन कभी हमें इन बुक से, लाइब्रेरी से कभी धोखा नहीं मिला. और आपको पता है कि मैं ऐसी जगह से बिलोंग कर रही हूं जहां पे हमारा सेंटर है, वहां पे लाइब्रेरी की मतलब नहीं पता थी. मैंने कल भी बात बोली तो एक छोटा सा आइडिया मैंने लिया कि जब हम औरतों को जो कि 60 से भी ऊपर 70 ईयर्स की हैं, उन्हें मैं बोलती थी कि लाइब्रेरी आइए, तो वो ये बोलती थी कि मैं क्या करूंगी आगे लाइब्रेरी. तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब वो बूढ़ी औरतें लाइब्रेरी आई जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो मैंने उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने ये आइडिया अपनाया कि मैं उनको बैठाती थी अपने सेंटर में और बैठा के स्टोरीज को चूज करती थी. जस्ट लाइक कि वो ऐसी जगह से बिलोंग करती हैं कि जहां पे थोड़े से लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो मैंने जस्ट लाइक झांसी की रानी, मैं उसकी स्टोरी सुनाती थी. टीपू सुल्तान, मैं उनकी स्टोरी सुनाने लगती थी. तो जो बुजुर्ग लेडीज होती थी काफी इंटरेस्ट लेके वो सुनती थी क्योंकि वो पढ़ नहीं पाती थी. इससे रिजल्ट क्या मिला कि उन लेडीज ने जो लाइब्रेरी आने से डरती थी, लाइब्रेरी का मतलब नहीं समझती थी, उन्होंने क्या करा कि मैम बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बुक से देख के पढ़ती हैं, तो ऐसा करते हैं कि आज हमारे घर के बच्चे भी जाएं और जाके उस बुक्स को रीड करें. जो बच्चे क्लास 9th और 10th के आते हैं हमारी लाइब्रेरी में, उनको ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है कि वो इंटरेस्ट लेते हैं हिस्टोरिकल बुक्स में. तो आज हमारी लाइब्रेरी में आने वाले बच्चे करीब 70 से ऊपर हैं. थैंक यू सो मच एंड माय प्लेजर कि आज मुझे रीड ने इस लाइफ समझा कि मुझे इस अवार्ड को दिया. थैंक यू गीता मैडम, थैंक यू ऑल.

0: आपने सोनल को सुना, मिस्टर राय को सुना, यू नो हाउ वी आर ब्रिंगिंग इट टू द ग्राउंड लेवल. अब हम अपनी कम्युनिटी, अपने जो पार्टनर्स हैं, जो रियल ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको इनवाइट करना चाहेंगे टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. सो नाउ आई लाइक टू इनवाइट सीमा जी एंड आरती राणा टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस.
1: सबको मेरा नमस्ते. मैं लखीमपुर खीरी से सीमा सिंह और मेरे साथ आरती राणा है. ये ट्राइबल सेंटर से हैं और ये ट्राइबल्स की बहुत बड़ी एक लीडर भी रही हैं. और अभी आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस कि अभी हमारे साथ एज वीविंग ट्रेनर हमारे साथ काम कर रही हैं. पहले मैं हमारे सेंटर में, जैसे बाकी आपके सबके सेंटर्स में भी होता है, हम भी लाइब्रेरी और लाइवलीहुड के सारे ही प्रोग्राम्स करते हैं. और मुझे बहुत खुशी है कि मैं रूट लेवल से जुड़ी हुई हूं और रूट लेवल की सब अच्छी बुरी चीजों को हम लोग बहुत आगे लेके जा रहे हैं. अच्छी चीजों को हम लोग और इन्हेंस कर रहे हैं, वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं. अपनी छोटी छोटी छोटी मुहिम को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी. हम अपने सेंटर पे हर वीक एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, कोई मूवी दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं. एक हमारे सभी के गांव में एक प्रॉब्लम होती है कि ड्रिंक बहुत करते हैं. वहां पे एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बोला आप एक जैसे मूवी चलाते हैं तो मेरा हस्बैंड मुझे बहुत परेशान करता है, मैं उसके बारे में उस मूवी के टाइम पे अनाउंस कर दूंगी. वो इतना डर गया इस बात को लेके कि नहीं, अब मैं दोबारा फिर ये नहीं करूंगा. तो इस तरह की छोटी सी चीज से उसका पूरा घर सुधर गया. तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू रील इंडिया की इतनी छोटी सी चीज से एक लेडी का पूरा घर सुधर गया और वो और लोगों के लिए भी एग्जाम्पल बनी कि ये भी हो जाएगा. डरते हैं लोग कि नहीं, हम ऐसा कुछ करेंगे तो वहां प्रॉब्लम होगी. और अभी हम लोग बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में, बिल्कुल डीप इन द फॉरेस्ट हम लोग एक सेंटर हमने स्टार्ट किया है. वो आरती राणा उसको देखती हैं और वहां की वीविंग ट्रेनर हैं. और उधर हम हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि ओडीओपी का भी एक प्रोडक्ट जो है वो हम लोग वहां पे बना रहे हैं. ये हमारे ट्राइबल्स का एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जिसको कि हम डिफरेंट डिजाइनिंग करके, अच्छा उनको करा के और बेटर डिजाइनिंग देके हम लोग उसको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं. उसमें आरती हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रही हैं. और हनी बी वियरिंग की ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से वहां पे लेडीज ने अटेंड करी और हनी बी के प्रोडक्ट्स भी हम लोग बना रहे हैं वहां पे. और काफी अच्छा उधर इम्पैक्ट है क्योंकि बीच जंगल में है, लोगों को हनी बी के बारे में ज्यादा पता नहीं था और वहां बहुत अच्छा हम लोग काम करेंगे. इसके लिए भी हम लोग काफी चीजें आगे ट्राई कर रहे हैं. मैं आरती राणा से कुछ कहूंगी कि वो अपने बारे में थोड़ा बताएं. थैंक यू सो मच.
2: सभी लोगों को मेरा राम राम. मेरा नाम आरती राणा है. मैं किराम गुबरोला कोर चंदन चौकी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से. डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी एकदम नेपाल से सटा बॉर्डर सटा गांव है. जैसे वहां पे सटे गांव में जैसे हम लोगों का सन 2015 में मैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 350 स्वयं सहायता समूह बनाई थी. तो 16 में तुरंत रानी लक्ष्मी बाई वीरता पुरस्कार मिला था और 18 में ओडीओपी के अंतर्गत मेरा थारूई क्राफ्ट को चयन किया गया था मैं. तो 21 में मुझे नारी शक्ति सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिला था. 22 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था मैं. जो हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में सटे हुए नेपाल बॉर्डर जैसे हम लोगों के गांव में कई संस्था आया, जैसे कि ये हथकरघा उद्योग चलाने के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए. आज जैसे कि चलाने में तो चला दिए, फिर उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं था. फिर उसके बाद जैसे कि अभी तो हमें ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 6-7 महीना हुआ है. पहले मैं गीता मैडम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपने थारू जनजाति क्षेत्र की तरफ से और जैसे कि रीड इंडिया हम तक पहुंची. आज जितना हम लोग का पीछे काम था मैम, हम लोग 97 से मैं काम कर रही हूँ मैं. और जैसे काम करते करते करते पीछे जैसे चलाने वाला कोई नहीं रहा, सब बताने वाला कोई नहीं. अभी हम 6-7 महीने से रीड इंडिया से हम लोग जुड़े हैं. तो फिर से हम लोग को वापस आने का मौका मिला है और जैसे कि तेजी से महिलाएं जुड़ रही हैं, अच्छे से काम भी कर रही हैं. और जैसे कि हम लोगों का मार्केटिंग का कोई दिक्कत नहीं है. हमें ट्राइफेड ट्राइफ इंडिया एक भारत सरकार की संस्था है, उससे हमारा लिंक है और काफी अच्छा उनका ऑर्डर है मैम. तो हम रीड इंडिया के सपोर्ट से, और रीड इंडिया का सपोर्ट रहेगा, हम लोग का मेहनत रहेगा तो अच्छी सफलता मिल जाएगी मैम. ऑडियो इंडिया को फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपने थारू जनजात क्षेत्र की तरफ से और अपने जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद।
0: थैंक यू सीमा जी एंड आरती जी, बहुत ही सरलता से आपने बताया कि किस तरीके से हम अपने मिशन को ग्राउंड पे लेके आए हैं।

0: अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जो स्टार्स हैं, शाइनिंग स्टार्स, उनके जो लीडर्स हैं हमारे साथ, अंजू हैं, ऋतु हैं, फरा है, आप यू नो आप अपनी कुछ यू नो जर्नी बताएंगे शॉर्ट में, बिकॉज आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑन टाइम ऑल्सो, एंड देन वी विल टेक द नेक्स्ट सेशन. सो प्रॉब्ली विथ फरा.
1: आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा. तो थोड़ा सुबह से चलती हूँ, मैंने सोचा था शायद मुझे आज बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी दिल में था कि लास्ट मोमेंट पे 2 मिनट मुझे बोलना ही है. तो मैंने एक कविता भी लिख के फोटो खींच के रखी है कि अगर बोलने का मौका मिला तो जरूर आपको सुनाऊंगी. और एक और बात मेरे मन में सुबह से चल रही थी कि कब वो दिन आएगा कि मैं यहाँ स्टेज पे बैठूंगी. पता नहीं क्यों अंदर से ही फील हो रहा था कि कब मैं ऐसा कोई अच्छा काम करूंगी कि मुझे भी ऐसे बुलाया जाए. और जैसे सर का सारा दिखाया जा रहा था कि सर ने ये अचीव किया है, इतनी लाइब्रेरीज खोली हैं और लाइब्रेरीज के बारे में बताया है, तो वही मेरे मन में बहुत टाइम से सुबह से चल रहा था. बट जैसे ही स्मिता मैम ने मेरा नाम लिया, आई एम वेरी वेरी शॉक्ड कि मैं उठी फिर बैठी ही नहीं, मैं नहीं हो सकती, कोई और होगा. तो वही है कि हम सपने देखते हैं और लगता नहीं है कि कभी वो सपने साकार होंगे, लेकिन जैसे ही वो सपने साकार होते जाते हैं, हम एक छोटे से इतने से होते हैं, और जब हम इतना बड़ा बन जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये हमारी मेहनत का फल है या हम सबसे अलग हैं. मतलब समझ ही नहीं आता कि हमने ऐसा क्या किया है कि हम यहाँ तक पहुंच गए. तो आप सब मुझे तो जानते हैं, थोड़ी सी मैं अपनी जर्नी को भी लेके जाऊंगी, टाइम कम है तो शॉर्ट में ही बताऊंगी. 7 ईयर्स पहले, कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा सा बताते हुए चलूंगी. 7 ईयर्स पहले जो रीड इंडिया हमारे आगापुर में खुला था, तो उसको रीड इंडिया के नाम को सुनके ही मैं बहुत शौक थी. और वहां पर मैंने जब सुना कि लाइब्रेरी, सिलाई पार्लर, कंप्यूटर, लड़कियों के लिए काफी सारी चीजें सेंटर पे हमारे घर पर, घर के पास हमारे लिए आई है. बट एक मैं मुस्लिम इलाके से थी, वहां कोई भी लेडीजों को जाने का, कहीं भी घर से निकलने का कोई भी पेरेंट्स ने हुक्म नहीं दिया था. जाना है तो वही मुख्य से जाना है. जब हमारे सेंटर पे, जब हमारे घर के पास सेंटर खुला, तो वहां विजिट करने के लिए जब सेंटर पर गए तो वहां हमने बुक्स पढ़ी. और मुझे लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने का वहां बहुत शौक था, और जो वहां एक्टिविटीज होती थी तो उससे मन करता था, क्योंकि एक खुशी मिलती थी लाइब्रेरी से. वही है कि हमारा सेंटर ही लाइब्रेरी से स्टार्ट होता है. तो मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू किया. ऐसे ही मेरे पेरेंट्स का था कि 17 साल की उम्र में शादी कर देनी है और कुछ नहीं करना है, और वही जर्नी खत्म है, जाओ और रोटी बनाओ और खाओ पियो ऐश करो. तो वहीं से हमारी किताबें स्टार्ट हुई. मेरी मम्मी डैडी शुरू से ही बहुत मेहनत करते थे, और उन्होंने मेहनत करके ही मुझे पढ़ाया. मेरे रिलेशन में दूर दूर तक किसी भी लड़की ने पढ़ाई नहीं की थी, बहुत बातें बनाई लोगों ने, मतलब कि जो पास में लोग रहते थे उन्होंने भी, और जो मेरे रिश्तेदार थे उन्होंने भी, और जो मेरे सगे थे, मतलब सगे चाचा वगैरह, उनको उन्होंने मम्मी के ऊपर बहुत ज्यादा ऑप्शंस उठाए कि क्यों पढ़ा रही हो. मेरी मम्मी ने हाई स्कूल इंटर तक सुना कि ठीक है इंटर पढ़ा के बंद करके शादी कर देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वहां पर सोचा कि लेकिन मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने मुझे किस मेहनत से पढ़ाया है. जब वो रात को 8-8 बजे आके हमारे लिए खाना बनाती थी, और कैसे वो हमारी स्कूल की फीस भरती थी, हम तीनों बहनों को इतनी मेहनत से पढ़ाकर किसी की ना सुनकर आगे पढ़ती थी. तो मैंने एक मन में ठाना कि चाहे जैसे मेरी माँ ने सबकी सुन के हम लड़कियों को आगे बढ़ाया, ऐसे ही मुझे अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, शादी कैसे भी ना करके, कुछ भी किसी से लड़ाई हो, बट मुझे शादी नहीं करनी है. तो वही सपना मेरा साकार होता गया. मेरे लिए मेरी पहली सीढ़ी रीड इंडिया खुली, वहीं से मेरी लाइब्रेरी की स्टार्ट हुई, और ECD में मुझे वहां से जॉब मिली. मैंने ECD को शुरुआत करके फिर मैंने कंप्यूटर सीखा, फिर मुझे कंप्यूटर में वहां पर लड़कियों को सिखाने का मौका मिला. वहां तो मेरा 5-6 किलोमीटर मुझे दूर आगापुर जाना पड़ता था, लेकिन जब मैम ने पटवाई सेंटर 15 किलोमीटर दूर खोला, तो वहां पर मेरे कोऑर्डिनेटर मुझे बना दिया गया. और वहां पर मैं किसी लोगों को भी नहीं जानती थी, बहुत फर्स्ट टाइम डर लगा जाने में, लेकिन इतनी ट्रेनिंग से मुझे यहाँ पर मिली है, कॉन्फिडेंस मिलने की, आर्ट थेरेपी की, मोबिलाइजेशन करा लोगों से बातचीत करने की. तो वहां 15 किलोमीटर दूर जाके जब मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया और मैंने सेंटर को संभाला, तो बहुत ज्यादा लोग वहां पर, जितने आज 7 साल बाद 4-5 हजार लोग मुझे जानते हैं, और बहुत ही आदर से, सम्मान से मेरा वेलकम करते हैं. और हम जो भी लड़कियों को, लड़कियां ट्रेंड हैं, उनके घरों में जाकर उनको कैसे बाहर निकालते हैं, उनको हम अपनी सक्सेस स्टोरी बताने की कि हम किस तरीके से यहाँ पर आए हैं, जब उनके पेरेंट्स अपने घर से वहां भेजते हैं. तो शायद टाइम कम है, मैं अपनी एक छोटी सी पोएम सुनाकर एंड करना चाहूंगी। राह में मुश्किल होगी हजार, राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा, तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, सपनों के सागर में तुम कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह है चुनो तो सही, चुनो तो सही। तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ लेके जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ लेके जाओगे। गिरते पड़ते समझ जाओगे, गिरते पड़ते समझ जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।

0: Now I would like to call Dr. Sakshi. She is our partner, knowledge partner from Rishi Wood University.
1: Namaste everyone. First of all, मैं तहे दिल से गीता मैम का और मालवीय सर का दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आज इस स्टेज पे मैं इन दोनों की वजह से ही हूँ. और आज बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए गीता मैम. आई थिंक आपको भी याद होगा लास्ट ईयर 16 फरवरी को 2023 में वी हैव साइंड MOU विद रीड इंडिया फाउंडेशन. तो एक साल पूरा हुआ, मतलब एक ही महीना ऊपर है. तो ये भी बहुत अच्छा दिन है आज कि मैं स्टेज पे मैम के सामने हूँ. ड्यूरिंग MOU मैम से मैं फर्स्ट टाइम मिली थी और मुझे मैं ये कह सकती हूँ एक शेर मैं मैम के लिए बोलना चाहूंगी. इट्स नॉट शेर, इट्स अबाउट हिंदी की कुछ पंक्तियां. यूं ही नहीं बन जाती इमारतें आसमानों को लुभाते हुए, यूं ही नहीं बन जाती इमारतें आसमानों को लुभाते हुए, इसे बनाने में कुछ किरदारों को पसीना लहू की तरह बहाना पड़ता है. एंड गीता मैम इज वन ऑफ दैट पर्सन. मैम ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दी. आई थिंक आई हैव टेकन टू सेशंस ऑन गीता फॉर रीड इंडिया फाउंडेशन एंड मुझे आज ही पता लगा कि मैम आप टीचर इंडिया टीचर फॉर ट्रेनिंग का भी आप स्टार्ट करते हैं. तो आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ ऑन दैट ऑल्सो. हमारी यूनिवर्सिटी का मैम के साथ जो MOU साइन हुआ दैट इज बेसिकली ऑन डिजाइनिंग सम कैप्सूल प्रोग्राम्स फॉर दी कम्युनिटी. और आज मैंने बहुत रिनाउंड लोगों को सुना और अभी सर ने, मैं क्योंकि पार्टनरशिप की बात नहीं ज्यादा करूंगी, सर हैज कवर्ड एवरीथिंग. एक बात बोलूंगी, स्किल्स टू सक्सीड की बात रीड इंडिया फाउंडेशन करता है एंड मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि डूइंग PhD इन भगवद गीता तो मेरा लाइफ को देखने का परसेप्शन डिफरेंट हुआ. आई हैव रेड भगवद गीता फ्रॉम, मतलब मैं जब 10 साल की थी तब से अपने घर में सबसे सुन रही थी. तो जिंदगी में एक एम बनाया था मैंने भी कि लाइफ में PhD जरूर करूंगी, शादी होना हो PhD जरूर करूंगी, बट ऑन भगवद गीता. तो ये टचवुड भगवान जी ने मेरी ये चीज जरूर पूरी की. मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी स्किल अगर हम जिंदगी में सीखते हैं उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है हमें जिंदगी जीने के तरीके आने चाहिए, बहुत जरूरी है. तो गीता मैम के साथ एक और कोलैबोरेशन मैं चाहूंगी. मैम आई रिक्वेस्ट यू प्लीज वो भी अपॉर्चुनिटी देना. आई हैव डेवलप्ड द कोर्स ऑन सोल दैट इज स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ. मॉड्यूल्स हैं उसके 10-12 मॉड्यूल्स. जो स्किल्स आप लोग कर रहे हैं जिनसे आपको आपकी जीविका चलाने का आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो उससे पहले आपको ह्यूमन बींग बनना बहुत जरूरी है. हम देखते हैं बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग जो है मोबाइल पे कैप्चर करते हैं वो वीडियोस. और क्यों? क्योंकि वो फेसबुक पे डाल देते हैं कि हम लोग, मतलब डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स. वेयर इज दैट एम्पैथी, मतलब वेयर इज दैट सेंसिटाइजेशन. हम आज बातें AI की कर रहे हैं, AI हमें मशीन बना रहा है बहुत ज्यादा. जैसे एक अभी एक रिनाउंड पर्सनैलिटी ने एग्जाम्पल दिया था सर, शायद आप ही ने, कि आज सातवाले घर में किसी की डेथ हो जाए तो हम कहते हैं सानू की, लाइक इन पंजाबी. आई एम ऑल्सो पंजाबी पर्सन. वो क्यों आ रहा है आज हमारे मन में? आज हमारे बच्चों को क्यों नहीं पता रिलेशंस क्या है? क्योंकि हमने वो सॉफ्ट स्किल्स ही बच्चों में नहीं डाले. वो बहुत जरूरी है आज हमारे कल्चर में, बिकॉज आर यूनिवर्सिटी इज इंडियाज फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी एंड दिस इज द बेस्ट कोलैबोरेशन बिटवीन ऋषि हुड यूनिवर्सिटी एंड रीड इंडिया फाउंडेशन. बिकॉज रीड इंडिया फाउंडेशन इज ऑल्सो डूइंग द वर्क विच इज हैविंग दैट सोशल इम्पैक्ट. तो हम लोग भी, हमारी यूनिवर्सिटी इज ऑन द मिशन ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला. हम भी अपने बच्चों में वो गुरुकुल सिस्टम के थ्रू वो वैल्यूज इनकलकेट कर रहे हैं. बिकॉज वी वॉन्ट कि वो सॉफ्ट स्किल्स, वो जो स्किल्स, मतलब जो हम, मतलब आज हमारे बच्चे हमारे आगे से निकल जाते तो एक सेमेस्टर के बाद भूल ही जाते हैं कि हम उनके टीचर भी हैं. बट स्टिल, मतलब मेरे ख्याल से हम सभी की जनरेशन के हैं. आज भी हमारे प्रोफेसर्स का कॉल आता है, बैठे हुए होते हैं घर में, इवन हमारे बच्चे कहते हैं वो देख तो नहीं रहे आपको, हम स्टैंडिंग पोजिशन पे उन्हें विश करते हैं. फोन पे होकर भी हम कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर. क्यों? क्योंकि हमारे संस्कारों में वो चीजें डाली गई हैं, हमारी परवरिश में वो चीजें डाली गई हैं. आज मेड्स बच्चों को पाल रही है, नो डाउट इट्स ऑल्सो नेसेसिटी बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग. बट वो वैल्यूज तो पेरेंट्स ही देंगे ना. वो दर्द जो माँ ने बच्चा पैदा करने के टाइम सहा था, तो उस दर्द को क्यों भूल गई आज वो माँ? क्यों बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आ रहे? क्यों बच्चे जो है विदेश जाकर, जैसे अभी सर ने भी बोला, सॉरी सर मुझे आपका नाम नहीं पता, जिन्होंने कहा चार बार मेरा बेटा कनाडा से इंडिया आएगा, मेरी डेथ पे, मेरी वाइफ की डेथ पे, घर जब बिक जाएगा और वॉट एवर। हाँ, क्यों ऐसा हम सोचते हैं? हमने तो आज तक क्यों हमारे टाइम पे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे वृद्धाश्रम्स नहीं बने थे, आज क्यों है? हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है ना हमारे थ्रू ही हमारी जनरेशन को जाएगी, जो हमारे अपने बच्चे हैं। क्योंकि आज सिंगल चाइल्ड ना सुनने की आदत नहीं है, क्यों नहीं डाली हमने? ज्वाइंट फैमिली में एक ही बच्चे को चीजें मिलती थी, उसके कजन्स वही जो है आगे फॉरवर्ड करते थे। आज बच्चा कहता सब कुछ मेरा है, वो मेरे के चक्कर में उसके अंदर तो शेयरिंग रहा ही नहीं ना। तो हमें ये सब चीजें अपने बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। मैं अपने खुद अपने स्टूडेंट्स को, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 16 इयर्स आई एम हार्डकोर टीचर एजुकेटर, आई ट्रेन द टीचर्स, तो मैं अपने बच्चों को जरूर क्लास में ये कहती हूँ कि अपनी लाइफ के 24 घंटे में से एक घंटा अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करो। एक एक टाइम जो है मील अपने पेरेंट्स के साथ डाइनिंग टेबल धरती पर कहीं भी बैठ के खाओ, बट एक टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनसे सीखो, उनसे पूरे दिन की दिनचर्या जो है वो डिस्कस करो, बहुत जरूरी है। क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों से ही जिंदगी का एक्सपीरियंस मिलता है। हम जो कहते हैं ना कि पढ़ लिख गए, एजुकेशन इज नॉट ओनली टू अटेन डिग्रीज, टू हैव मोर एंड मोर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन इज अबाउट टू लिव लाइफ इन अ बेटर वे। और वो हमारे संस्कार, हमारे इंडियन टेक्स्ट, हमारी माइथोलॉजी और हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे बड़े सिखाते हैं। सो मैम के साथ मिलके हम और आगे बहुत सी चीजें करेंगे जो पाइपलाइन में है। मालवीय सर के बिहाफ में मैं यही बोलूंगी कि मैम आपके साथ मिलकर हम ऋषि होट यूनिवर्सिटी एज अ नॉलेज पार्टनर विद रीड इंडिया फाउंडेशन विल डेफिनेटली डू अ नंबर ऑफ माइलस्टोन्स इन द यू नो फील्ड ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच मैम।

0: कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती अंशी देवजी भाई को, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भुज से, और वो किस तरीके से इस ब्यूटीफुल कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं और एनहांस कर रहे हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
1: धन्यवाद, नमस्ते। मैं गुजरात से आया हूं, कच्छ भुज से। मेरा नाम देवजी भाई है। एक्चुअली मैं विविंग का काम करता हूं और 1997 में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है और 2016 में मेरे को संत कबीर अवार्ड मिला है। मेरे साथ मेरी वाइफ है, उनका नाम माया बेन है और उनको भी 2006 में नेशनल अवार्ड मिला है। मेरे फादर को 2005 में शिल्प गुरु अवार्ड मिला है। मेरे सन को 2014 में नेशनल अवार्ड मिला है। हम चार भाई है, चारों को नेशनल अवार्ड मिला है और चारों को जो औरत है उन सबको नेशनल अवार्ड मिला है। तो ये नेशनल अवार्ड की गिनना करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, लेकिन जो अच्छा काम करता है उनका अच्छा पुरस्कार मिलता है। मैं जब सुबह आया तो मेरे को पता नहीं था ये स्टेज पर सब जो बैठे हैं वो स्टेज छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो स्टेज छोड़ के हमको स्टेज पर बिठाया है वो रीड इंडिया का काम है। तो हमको जो स्टेज मिला है वो दूसरे के लिए भी हम खाली करें और इतना अच्छा काम करें कि दूसरा लोग भी इधर बैठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कच्छ में बारिश का बहुत कम आना होता है या तो फिर ज्यादा आ जाता है, तो ज्यादातर नुकसान ही नुकसान रहता है खेती वालों को। तो इसी सिलसिले में बहुत सारी कलाएं हैं जो हमारे कच्छ में लोग करते हैं, उसमें वीविंग है, टाई डाई है, ब्लॉक प्रिंट है, एम्ब्रॉयडरी है, लेदर वर्क है। ये सब कलाएं हैं जिसकी वजह से सबको रोजी रोटी मिलती है और बहुत अच्छा कारीगर है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं उस गांव में मैंने जो गिना, इतना हमको नेशनल अवार्ड मिला, इतना नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन 2000 की बस्ती है हमारे गांव का और 45 नेशनल अवार्ड है। तो कहने का मतलब है इतना अच्छा काम कर लेते हैं लोग कि उनको मार्केट ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है, मार्केट खुद इनके घर तक आती है। तो जो जैसे हमारे गांव की बात किया वो तो विविंग का है, लेकिन और गांव में भी बहुत सारे नेशनल अवार्ड है और वो भी एम्ब्रॉयडरी में है, लेदर वर्क में है, ब्लॉक प्रिंट में है, टाई डाई में है। लेकिन जो हमारा जो कच्छ का जो मेन सेंटर है वो भुज है। तो भुज के सिटी के अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनको सबको अच्छा काम मिल जाता है, अच्छी इनकम हो जाती है, लेकिन भुज के बाहर जो रहते हैं, जो सिटी के बाहर रहते हैं, जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर जो रहते हैं उनको काम मिलना मुश्किल होता है। या तो फिर हमारे जैसे जो ट्रेडर रहता है वो उनसे काम करवाता है और कम पैसों में उनसे काम लेता है और ज्यादा पैसा खुद कमाता है। तो जब रेल इंडिया से मैं जुड़ा तो मेरे को पता नहीं था कि रेल इंडिया का इतना बड़ा काम होगा। पहले मेरे को फोन आया कि आपको मिलने के लिए हम आते हैं। मैंने बोला इतना नेशनल अवार्ड मिला है, हर कोई मिलने के लिए आता रहता है, तो मैंने बोला आप भी आ जाओ। तो बोला नहीं, आपको यहाँ 2-3 दिन रहना है। तब मैंने पूछा कि 2-3 दिन रहना है तो क्या सब्जेक्ट क्या है? तो उसने बोला सब्जेक्ट कुछ नहीं, आपको मिलना है। मैंने बोला आ जाओ। तो सब मेरा काम दिखाया। मैं एक हॉस्टल चलाता हूँ स्टूडेंट के लिए, जिसमें जो मैं बात कर रहा हूँ 50-100 किलोमीटर के अंतर में जो गांव है उसी के बच्चे लोग यहाँ रहते हैं पढ़ने के लिए। तो वो मैं गीता मैडम को बताया और बोला कि यहाँ सब लड़के लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो उसने बोला यहाँ लाइब्रेरी खोलना है हमको। तो मैंने तुरंत तो कमरा दिखाया कि इधर खोलो, तो अच्छी बात है। लेकिन इतना बड़ा काम होगा वो भी तभी भी मेरे को पता नहीं था। फिर मेरे को बोला कि ऐसा कोई ट्रेनिंग हमको चालू करना है, जो कारीगर लोग हैं उनको जिसको स्किल है जिसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ तो कारीगर लोग जो गांव में जो कारीगर लोग रहते हैं ना, वो उसके घर में ही कारीगरी रहती है, उनको सब पता रहता है कैसे एम्ब्रॉयडरी करना है, कैसे वीविंग करना है। क्योंकि हमारा जब बच्चा पैदा होता है तो हमारा वीविंग का कपड़ा रहता है उसमें ही लपेटा जाता है, तो उनको पहले से पता है ये वीविंग का कैसे बनता है। तो फिर मेरे को आइडिया आया कि ये जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको मार्केट तक कैसे ले जाना। काम तो सबको आता है लेकिन वो अपने अपने कपड़े के हिसाब से सब काम करते हैं। तो मैंने उनको सबको बताया कि ऐसा है मार्केट में क्या चलता है, कौन सा कलर चलेगा, कौन सा डिजाइन चलेगा, क्या करने से हमको मार्केट में एंट्री मिलेगी, वो हमको करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में बहुत गांव में मैडम को भी ले गया था एक बार, बहुत गांव में ऐसी औरतें हैं जो जिसको काम की जरूरत थी, तो उसी औरतों को मैंने समझाया। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन औरतों का जो मर्द लोग थे वो उनको बताया था कि किसी को आधार कार्ड नहीं देने का, वो सब अपने नाम से लोन ले लेगा। तो उनको सबको बताया कि आधार कार्ड दो तो मैं उधर आपका रजिस्ट्रेशन कराऊं, तो बोले नहीं आधार कार्ड तो नहीं देंगे हम, क्योंकि वो तो आप लोन ले लेंगे या और कुछ कर लेंगे तो भी हम क्या करेंगे। तो बोले आप पहले ऐसे करो, क्लास चालू करो, आधार कार्ड बाद में देना। तो क्लास चालू किया, फिर 15 दिन एक महीना बाद बोला कि अब तो भरोसा है आपको, ये आपका क्लास चालू हो गया है, आपको काम मिल रहा है, आपको धागा ये सब मटेरियल्स है वो मिल रहा है, तो ठीक है आप तो ले जाओ बोले। तो तब मेरे को ये मिला। तो बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और एक गांव ऐसा है जिस गांव में जालिया लोग रहते हैं, वो तो बहुत पीने में 24 घंटा पीता है वो, तो औरत लोग हैं वो उनके पास पैसा नहीं रहता है घर चलाने के लिए भी। तो उस गांव में मैं गया, किसी ने बताया कि उस गांव में काम की बहुत जरूरत है और उधर आप जाओ। तो मैं उस गांव में गया तो उधर सब औरत लोगों को पहले से बताया था कि इतने बजे मैं आऊंगा, आप सब इकट्ठे हो जाना। तो वो सब इकट्ठे हो गए थे, मैं गया और मेरे साथ एक लेडीज भी थी, क्योंकि लेडीजों के बीच जाना है तो कोई चाहिए साथ में, तो लेडीज भी थी। तो सबको बिठा के ये बात कर रहा था कि हमको काम मिले तो कैसे मिले, हम क्या करेंगे तो हमको काम मिलेगा। ये बात चल रही थी तो वो जो इस घर का मालिक था वो पी कर आया। उसने बोला कि क्यों ये औरतों के बीच आप बैठे हो, कहां से आए हो, क्या काम करते हो, पैसा सब हमारा आप खा जाते हो। फिर मेरे हाथ में बैनर था रेड इंडिया का, तो वो खोल के दिखाया कि देखो ये एक एनजीओ है, उनसे हमको हमको काम मिलेगा, ये गाइड मिलेगी। तो उसने खोल के देखा तो बैनर तो इंग्लिश में था, वो पढ़ नहीं पाया। तो बोले ओ ये तो पार की कंपनी लगती है कोई। मैंने बोला हाँ पार की कंपनी है। फिर उसने वहां से भगाया, बोले मैं दो को मारूंगा आपको, आप चले जाओ यहां से। तो ऐसे गांव में हम कैसे काम कर पाएंगे ये भी सोचने की है, क्योंकि उस गांव के जो सब उनका घर ये सब देखा ना, तो ऐसा लगता है कि उनको खाना मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन जो रेड इंडिया का जो प्रयास है वो बहुत ही बढ़िया है, और साहब ने बताया हर घर दस्तक हर हाथ पुस्तक, तो सेम थॉट्स मेरे को आया था कि लाइब्रेरी तक कोई पढ़ने के लिए नहीं जाता क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं है, जाएगा ही नहीं, क्यों जाएगा। तो मैंने सोचा था कि जैसे सब्जी बेचने वाला जो जाता है सब्जी बेचने के लिए, ऐसे हफ्ते में एक बार गाड़ी निकालना गांव में घुमाना, उसमें बच्चों लोगों को जो कहानियां जो पसंद है ऐसी पुस्तकें ही रखना, और घर घर सबको कहना कि जिसको पढ़ना है वो ले जाओ, और वो दूसरे हफ्ते जब जाएगा तो पढ़ ले गया होता, उनके मम्मी को भी सुनाएगा, पापा को भी सुनाएगा, लाता लो तब उनको पता चलेगा कि पढ़ने में तो ये बहुत ज्ञान मिलता है, सारा कुछ जानने को मिलता है। तो दूसरे हफ्ते जाएगा तो वो पुस्तक जमा कराएगा, दूसरा पुस्तक ले जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग है मेरे ख्याल से कि हमको जो आदमी है उनको आदमी बनाने का है, जो आदमी आदमी बनेगा तो जो मैडम ने कहा जो पॉल्यूशन का जो हमारा काम है वो कुछ कंट्रोल में आएगा, क्योंकि बात समझ में नहीं आती ना क्या करना चाहिए। तो जिसको जितना काम हम करेंगे उतना काम कैसे फायदे में हम जाएंगे वो हमको थोड़ा सोचना चाहिए। तो मेरे को बोलना तो नहीं आता है, लेकिन जो कारीगर लोग है मैंने उनको ये ट्रेनिंग दी है, अभी 800-6000 मैडम को ट्रेनिंग दी है, उसमें से 200-250 लेडीज लोग ऐसा है जिसको काम मिलता रहता है रेगुलर, और सबको काम मिलता रहेगा। और दूसरा मेरा ऐसा है कि जो जिसको ट्रेनिंग मिल जाती है उनको मार्केट में जाके उस दुकानदार से मिलवा देता हूं कि ये कारीगर है इनको जितना काम चाहिए उतना आपको देगा, तो ये भी बेनिफिट है उनको क्योंकि दूसरी मार्केट ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, आप सबने मेरे को सुना और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।
0: थैंक यू देव जी भाई जी, आप जैसे पार्टनर्स की वजह से ही हमारा मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो पा रहा है। थैंक यू फॉर बीइंग आवर पार्टनर एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम आपकी और हमारे मिशन में कामयाब हो।

0: 何カリビアロ、立ち上げパリディアオ、リルセンサウナトイ、ディロロ。
1: पर्वतों की गान कोकिला श्रीमती कोकिला लेक टिपी पद्मश्री 2026 कार्बी अंगलोंग असम का एक सुंदर गांव जहां रहता है कार्बी समुदाय और पोकिला लेक टिपी। घुमंतू कलाकारों के परिवार में जन्मी पोकिला को कार्बी संगीत न सिर्फ विरासत में मिला बल्कि उन्होंने उसे जिया। बचपन से ही उनकी असाधारण प्रतिभा झलकने लगी थी। संगीत के इस स्वरूप से गहरे जुड़ाव ने उन्हें महसूस कराया कि ये विरासत संकट में है। कार्बी संगीत केवल बुजुर्गों तक सीमित था।
2: उन दिनों कार्बी गीत तो थे पर लोगों को उन्हें पेश करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था।
1: बाधाएं अनेक थी, लगातार निर्धनता की छाया थी और परंपरा ने महिलाओं को सार्वजनिक मंचों से दूर रखा। वर्षों तक पोकिला पृष्ठभूमि में रही, लुप्त होती कला की मौन प्रहरी बनकर, किंतु उनकी आवाज एक दायरे में नहीं बंध सकती थी। बंधन तोड़कर उन्होंने चर्च में अपना मंच पाया, समविचारी लोगों को साथ लिया और महिलाओं को साहस देकर अपने साथ जोड़। वे दुर्गम इलाकों में घूमी, बुजुर्गों से मिलकर लुप्त होती कला का दस्तावेजीकरण किया।
2: आप गीत के बोल लिखिए, उन्हें धुन में डालिए, हम हर संभव मदद करते थे और अपने सांगरी म्यूजिक सोसाइटी के माध्यम से हमने इन गीतों को पेश किया।
1: स्थानीय आकाशवाणी केंद्र के प्रसारणों से लेकर अपने पहले कैसेट कांधोन के साहस भरे निर्माण तक उन्होंने कार्बी आत्मा को राष्ट्रीय ताने बाने में पिरोना शुरू किया। महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब जुबिन गर्ग के साथ उन्होंने अपनी कला प्रदर्शित की। आधुनिक ऊर्जा के साथ प्राचीन मंत्रों को पेश करके नई पीढ़ी को आकर्षित किया। 50 वर्ष, 300 गीत, उन्होंने कार्बी संगीत को पहाड़ियों से निकालकर लोगों के हृदय तक पहुंचाया। आज पोकिला कार्बी संगीत की कुल माता है, लेखक, मार्गदर्शक और प्रस्तुति द्वारा अतीत सहेज कर सुनिश्चित कर रही है कि कार्बी आंगलोंग की महिलाएं अपना भविष्य स्वयं स्वरबद्ध करें।
2: मुझे आशा है कि हमारा कार्बी आंगलोंग और प्रगति करेगा। कार्बी आंगलोंग की महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही मेरा सपना है।
1: श्रीमती पोकिला लेक टिपी, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमन।
3: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ती वैश्विक पहचान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
4: जी राजा रमन, आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: थैंक यू सो मच, हमेशा अच्छा लगता है आकाशवाणी में।
4: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पदक तालिका में चौथे नंबर पर अपना कैंपेन खत्म किया है। 122 खिलाड़ी गए थे और 39 मेडल लेकर घर लौटे हैं, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में आप कैसे रेट करेंगे?
5: उम्मीद के अनुसार ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। गेम्स से पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं 30 मेडल का शायद टारगेट लगा था भारतीय टीम के लिए, लेकिन 39 मेडल से वापस आना, ये दिस इज अबाउट माई एक्सपेक्टेशन। और मैं सराहना करूंगा पूरी टीम की, चाहे वो एथलेटिक्स की टीम हो या फिर वेट लिफ्टिंग हो या फिर बॉक्सिंग हो या जूडो हो, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है और ये देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा ये कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रदर्शन।
4: राजा, आपने कहा कि खेलों से पहले आप 30 का टारगेट देते, लेकिन अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पिछले प्रदर्शन की बात करें तो 2002 से अब तक ज्यादातर 50 से ज्यादा मेडल्स लाए। बर्मिंघम की बात करें तो 61 मेडल थे, तो जब हम खेलों की बात करते हैं, ये सब आंकड़ों की बातें होती हैं, और स्टेटिस्टिक्स के बाद जैसे मैंने भी कहा कि 2002 के बाद ये पहली बार है कि 50 से कम मेडल लेकर आए हैं। पर इसके साथ ये बात भी है कि अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स के जो पिछला इतिहास है या हाल का भी जो रिसेंट हिस्ट्री है उसको देखें, तो ये पहली बार है कि जो खेल है काफी कम हो गए। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, शूटिंग, ये ऐसे खेल हैं जहां पारंपरिक तौर पर भारत जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, और ये खेल इस बार नहीं थे। तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है उनको सिर्फ नंबरों से, आंकड़ों से आंकना सही नहीं है इस परिप्रेक्ष्य में?
5: नहीं, ये नंबर तो हमेशा नंबर का खेल है, और मेडल तालिका में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के भी मेडल कम हो गए क्योंकि खेल कम हो गए थे। इधर शूटिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ऐसे खेल में हमारे लिए हमेशा बहुत ज्यादा मेडल मिलते थे, लेकिन ऐसा खेल का ना होना दुख वाली बात है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये गेम्स विक्टोरिया में होने थे ऑस्ट्रेलिया में, और फिर उन्होंने मना कर दिया था, और लास्ट मिनट में ग्लासगो आगे आए और फिर वो आयोजन किए हैं, तो तारीफ के काबिल है ग्लासगो। लेकिन क्योंकि सिर्फ 10 डिसिप्लिन थे यहाँ पर जहाँ हम हिस्सा लिए थे, ये मेडल नंबर कम दिखेंगे लेकिन ओवरऑल परसेंटेज मेरे को लगता है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के मेडल कम हुए, कनाडा के मेडल कम हुए, इंग्लैंड के मेडल कम हुए, हमारे भी कम हुए। और मैं नहीं इसको खराब प्रदर्शन नहीं मानूंगा। अगर आप 60 और 70 मेडल देखते हैं और फिर वहां से 39 देखेंगे तो खराब लगेगा, लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि यहाँ पे खेल कम थे, फ्यूअर डिसिप्लिन, इसीलिए शायद नंबर्स कम है।
4: जी, अब हम अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो बॉक्सिंग भारत के कैंपेन का स्टार रहा। हमने रिकॉर्ड 10 मेडल जीते हैं जिसमें से 7 गोल्ड भी हैं। ये किसी भी देश द्वारा किसी एक कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा मेडल है। तो ये कामयाबी बेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बॉक्सिंग की बढ़ती ताकत को दिखाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और कौन से वो बॉक्सर्स हैं जो आपको लगता है जो इसमें उभर कर आए हैं इन गेम्स में?
5: टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, जिस तरीके का कंपटीशन का स्तर रहा उस हिसाब से भारतीय टीम ने अपने 10 मेडल लाए, वहां पे 7 गोल्ड मेडल और फिर 3 सिल्वर मेडल है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि एशियन गेम्स जो महीने दो महीने में होना है, वहां पे अगर ऐसा प्रदर्शन होता तो बहुत ज्यादा उत्साह का जगह बन जाता है। कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग और फिर वेट लिफ्टिंग, इनके स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नहीं है, और इसीलिए शायद आपको समझना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि 10 मेडल खराब मेडल है, 10 बहुत बेहतरीन मेडल है, जो कॉम्पिटिशन है उसमें हम बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं, ये हमारी गलती नहीं है कि कॉम्पिटिशन कमजोर रहा
4: जी, क्योंकि ये भी एक बात हो रही थी कि जी बॉक्सिंग में हमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं मिला है इन गेम्स में।
5: हकीकत तो यही है, सच ये है कि कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन आपको फिर भी जाना पड़ेगा, रिंग में उतरना पड़ेगा और बाउट जीतने पड़ेंगे, और वो जीत के आए हैं तो दे डिजर्व प्रेस, तारीफ तो जरूर करनी चाहिए। लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि कुछ खेल ऐसे हैं जहां पे एशियाई खेल में हमको मेडल्स कम मिलते हैं। वेटलिफ्टिंग में वहां पे गोल्ड आ गया था, उसमें भी आपका प्रदर्शन आप देखेंगे तो 190 में गोल्ड मेडल लेकर आई है, सिल्वर मेडल जिसके पास था उनसे 20 किलो ज्यादा उठाई, तो दिखाता है कि कॉम्पिटिशन कमजोर ही रहा है, लेकिन आपको मैदान में फिर भी उतरना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मेडल्स बॉक्सिंग में और वेटलिफ्टिंग में आए मैं उनको कम नहीं आंकूंगा, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसा ही प्रदर्शन एशियन गेम में जब करेंगे तो बहुत खुशी वाली बात हो जाएगी।
4: जी, आप क्योंकि वेटलिफ्टिंग की बात कर रहे हो, जैसे भी आपने कहा कि जब वेटलिफ्टिंग की बात हो और मीराबाई चानू की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो भारत की सबसे महान एथलीट्स में क्यों शुमार हैं, और उन्होंने इनफैक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की जो हैट्रिक है टाइटल्स की वो पूरी की है। तो इसके अलावा उनकी तो ऑफकोर्स हमने भी बात की, पर बाकी और कौन से वो वेटलिफ्टर्स हैं जिन्होंने इन खेलों में, ग्लासगो खेलों में, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है वेटलिफ्टिंग की बात करें?
5: विद्या रानी देवी का प्रदर्शन सही रहा है, मुझे लगता है मुत्तुपांडी राजा जो मेन सेक्शन में मेडल जीते हैं, बहुत अच्छे लिफ्टर्स हैं, लेकिन एशियन स्टैंडर्ड अभी शायद नहीं आया इनका, लेकिन क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया है कईयों ने, अगर वहां पे हमें इतने सारे मेडल्स मिलते हैं, 8 मेडल लेकर आए हैं, अफसोस वाली बात है कि 1 या 2 हम यहाँ पे घर पे रखना पड़ा उनको, हमारे लिफ्टर्स जा नहीं पाए, अफसोस वाली बात है, लेकिन 8 मेडल के साथ वापस आना कॉमनवेल्थ गेम से ये अच्छी बात है, इट इज अ पॉजिटिव साइन। जो वेटलिफ्टिंग फेडरेशन है उनके सामने एक चैलेंज है कि जो खिलाड़ी वहां गए उनको और उठाए उनका स्टैंडर्ड और फिर एशियन गेम्स में कुछ अच्छा कर दिखाए।
4: एथलेटिक्स की बात करें तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें भारत की मेडल्स की गिनती में कई बड़े अचीवमेंट्स हमको मिले हैं। बेशक ऑफकोर्स स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने तो जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर जो देश को उन पर भरोसा था एक बार उसको फिर से पूरा किया है, पर उनके अलावा अगर हम बात करें कई ऐसी अचीवमेंट्स है, कई ऐसी सफलताएं मिली जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, तो वो मैं आपसे वो सक्सेस स्टोरीज जानना चाहूंगी कि एथलेटिक्स में वो कौन सी ऐसी सफलताएं थी जो इन खेलों में उभर कर आई है जिनके बारे में जैसे मैंने भी कहा कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमें यहाँ पर मेडल्स मिलेंगे।
5: सच बताऊं तो मेरी उम्मीद सिर्फ 3 मेडल की थी, नीरज चोपड़ा जैवलिन में, मुरली श्री शंकर लॉन्ग जंप में और फिर तेजस्विन शंकर डिकैथलॉन में। ये 3 मेडल की उम्मीद थी, तीनों मेडल लाए वहां से। बट मुझे लगता है कि तेजस्विन शंकर वाला डिकैथलॉन मेडल बहुत ही अहम मेडल है क्योंकि 4 दिन पहले ही वो हाई जंप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए थे, चोट लग गया था उन्हें, उनके नी में प्रॉब्लम था और फिर वो खेल नहीं पाए थे हाई जंप। लेकिन वहां से आना और फिर डिकैथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीतना और पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी डिकैथलॉन में मेडल जीत रहा था तो मेरे लिए बहुत बड़ा मेडल है। और फिर सर्वेश कुशारे हाई जंप में और कैसे हम बोले गुलवीर सिंह को,
4: बिल्कुल,
5: जिनके पास 10,000 मीटर में सिल्वर और 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज, 2 मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने एथलेटिक्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर कहे तो ही इज द फर्स्ट एथलीट जो जिनको 2 मेडल मिले। और फिर सीमा जो PhD की स्टूडेंट भी है और डिस्कस थ्रो चैंपियन भी रही है तो उनका ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत बड़ा मेडल है हमारे लिए। 10 मेडल ट्रैक एंड फील्ड से आना, एथलेटिक्स से आना और फिर 6 मेडल पैरा एथलीट्स के पास से आना, 16 मेडल एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स ने कंट्रीब्यूट किए हैं, इट इज मैसिव। और मुझे लगता है कि वेटलिफ्टिंग और फिर बॉक्सिंग से ज्यादा अगर मैं इम्प्रेस होता हूं तो एथलेटिक्स से होता हूं।
4: आपने पैरा एथलीट्स की बात की तो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जो भारत के पैरा एथलीट्स हैं वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इवेंट्स में भारत का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं और ग्लासगो में भी उन्होंने देश को निराश नहीं किया, तो उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए आप ओवरऑल भारत में पैरा स्पोर्ट्स की प्रोग्रेस को कैसे देखते हैं और अभी भी कौन से वो खेल हैं पैरा स्पोर्ट्स में जिसमें है तो भारत की काफी अच्छी सफलता मिली और हम उसमें और बेहतर कर सकते हैं?
5: बहुत सारे खेल हैं पैरा स्विमिंग में अच्छा कर सकते हैं, हालांकि हम स्विमिंग में भी अच्छा कर सकते हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में हमारे मेडल्स कम है, वहां और मेडल्स आ सकते हैं। पैरा एथलेटिक्स में हम लगातार अच्छा करते आए हैं, पैरा साइकिलिंग में बेहतरी हो सकती है, तो बहुत सारे खेल है, व्हील चेयर बास्केटबॉल हुआ है उसमें भी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन एक मुहिम चला है पैरा स्पोर्ट को सपोर्ट करने का जो भारत सरकार करता है, नॉट ओनली फॉर पैरा स्पोर्ट, एबल बॉडीड स्पोर्ट के लिए भी। अगर आज ओलंपिक स्पोर्ट अच्छे स्तर पर है भारतीय सरकार को क्रेडिट जाता है क्योंकि वो जितना पैसा वो लगाते हैं मार्केट से उतना बनता नहीं है, प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी नहीं लगा पाते, तो भारत सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा है इन प्रमोटिंग पैरा स्पोर्ट। और मुझे लगता है कि उसी के नतीजे, उसी के अंजाम हमको देखने मिल रहे हैं कि अच्छे अच्छे मेडल्स आए हैं। और सबको ये बताना भी होगा कि हमारा जो स्ट्रेंथ है पैरा एथलेटिक्स का, चाहे वो जैवलिन हो या फिर हाई जंप हो जहां हम लगातार मेडल जीते हैं, वैसे इवेंट नहीं थे इधर ग्लासगो में। विमेन शॉटपुट में शर्मिला मेडल लेकर आई, गोल्ड लेकर आई, ऐसे मेडल्स हमारे लिए संकेत देते हैं कि पैरा स्पोर्ट सही दिशा में चल रहे हैं।
4: एक और स्पोर्ट्स जहां से हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है वो है जूडो। जूडो में ऑफकोर्स एक बार फिर हमारे जूडो का जो है उन्होंने इतिहास रचा है, हर्ष सिंह और अस्मिता डे ने भारत के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो गोल्ड मेडलिस्ट वो दोनों बने, जबकि यामिनी मौर्य ने सिल्वर जीता और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण कदम है जूडो जैसे एक खेल में जो एक गैर पारंपरिक खेल हम कहेंगे भारत की दृष्टि से, कि इस तरह मेडल्स जीतना कितना महत्वपूर्ण है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अगर हम ओवरऑल बात करें देश की जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं वो युवा खिलाड़ियों को किस तरह प्रोत्साहित कर सकती हैं कि वो हॉकी, शूटिंग और ट्रैक एंड फील्ड जैसे खेलों से बाहर निकलकर इन गैर पारंपरिक खेलों में ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट करें।
5: जूडो के 4 मेडल बहुत अहम है क्योंकि आप देखें तो जूडो में हमारे मेडल्स एशियन गेम्स में भी कम मिलते हैं, उससे एक लेवल नीचे है कॉमनवेल्थ कॉम्पिटिशन, वहां पे गोल्ड लाना पहली बार आ रहा था गोल्ड भारत को, विच इज गुड, अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम हो रहा है जूडो को लेके। और हम सबको ये समझना चाहिए कि हम बहुत पैसा कोई ऐसे खेल में लगाते हैं जहां पे ज्यादा मेडल्स हैं, जैसे एथलेटिक्स में 40 इवेंट है और फिर 120 मेडल तक आपको एथलेटिक्स में आप जीत सकते हैं, कोई भी देश जीत सकता है। वैसे ही जूडो में आपके अगर 10 इवेंट मेन के और 10 इवेंट विमेन के हैं तो 20 मेडल आप जीत सकते हैं। तो ऐसे खेल को बढ़ावा देना शायद एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन रहा भारतीय खेल में कि जूडो को आगे बढ़ाया गया। और फिर कुछ प्राइवेट स्पॉन्सर्स आए हैं जो जूडो को अपनाए हैं और फिर वहां पे बेलारी में ट्रेनिंग करके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। भोपाल में एक बेहतरीन एकेडमी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वहां से भी बहुत बड़ा योगदान रहा।
4: आपकी नजर में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से वो ऐसे खिलाड़ी थे, भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने सबको चौंकाते हुए प्रदर्शन किया, जिसको हम एक कहते हैं ना ब्रेकआउट स्टार्स, जिन पर सबकी नजर आने वाले भविष्य पर रहेगी?
5: डिस्कस थ्रो सीमा जरूर मैं कहूंगा कि शी विल बी अ सुपरस्टार। कुछ साल पहले वो मां बनी, कुछ साल पहले वो खेलना भी बंद कर दी थी और फिर वहां से आना और अपना पढ़ाई करते हुए खेलना और फिर राष्ट्रमंडल खेल में मेडल जीतना और फिर गुलवीर का आगे बढ़ना, वर्ल्ड क्लास रेसिंग करके दो मेडल हासिल करना, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर आप मुझसे एक मेडल की बात करें तो वो तेजस्विन शंकर वाला मेडल होगा, क्योंकि मुश्किल काम होता है। हमारी सबकी नजर 100 मीटर धावक पे हो जाती है या जैवलिन थ्रोअर पे होती है, ये खेलते हैं 10 अलग अलग इवेंट और हमें पता भी नहीं चलता कि लीड कौन है, कौन सेकंड चल रहा है, कौन थर्ड चल रहा है। सबसे बड़ा मेडल मैं मानता हूं।
4: पूरी कैंपेन को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि इस ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारत की जो पारंपरिक ताकतें थी उससे आगे बढ़कर जो हमने गहराई दिखाई है, जहां सिर्फ कुछ खेलों पर निर्भर रहने के बजाय हमारी टीम्स ने कई अन्य खेलों में जो मेडल जीते हैं, इससे देश में बढ़ते हुए स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे?
5: पॉजिटिविटी फैलता है। हम सबको पता था कि बॉक्सिंग में कुछ अच्छे अंजाम आएंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स वेटलिफ्टिंग से आएंगे। हमेशा ये पीछे रह जाते थे क्योंकि हम शूटिंग के 15-20 मेडल देख लेते थे या फिर कुश्ती में 10 मेडल या 12 मेडल आ जाते थे, तो वो हमेशा पीछे हो जाते थे। उनके मेडल्स यही रहते थे, 7 या 8 मेडल होते थे उनके, लेकिन बाकी खेल आगे हो जाते थे। अब की बार फोकस उन पे रहा, सारा ध्यान उन पे रहा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव साइन यह है कि पिछले 10-12 साल में भारत सरकार बहुत पैसा लगाई है खेलों में और उन्हें प्रोत्साहित करेगा और ज्यादा पैसा लगाने में। 3 या 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है खेलो इंडिया मिशन को लेके, बहुत पैसे लगेंगे स्पोर्ट में और मुझे लगता है कि हर बच्चा इस देश में स्पोर्ट खेलने लायक हो जाएगा क्योंकि उनके अंदर एक उम्मीद रहेगी कि हम खेलेंगे तो कुछ पैसा बना सकते हैं।
4: आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एशियन गेम्स अब सिर्फ 1.5 महीना दूर है, जहां पर चीन, जापान, साउथ कोरिया, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वहां के बड़े बड़े नाम होंगे और इन बड़े बड़े नामों के साथ भारतीय एथलीट्स का मुकाबला होगा, तो ग्लासगो में जो हमारे एथलीट्स की परफॉर्मेंस है उन्हें देश और खेलों की संख्या के हिसाब से इस बड़े स्टेज के लिए तैयारी में कितनी मदद मिली है?
5: मदद तो बहुत मिलनी चाहिए, लेकिन आप एथलेटिक्स में देखेंगे कम से कम 30 मेडल आएंगे आपको एशियन गेम में, और शूटिंग जब वापस आ गया है और हमारे कुछ पहलवान मेडल लाएंगे तो मुझे लगता है फिर एक बार हम 100 मेडल के आसपास आएंगे, 100 भी पार करेंगे। पिछले बार 100 पार कर गए थे हैंगजो में, और जापान में जब जाएंगे मुझे लगता है कि 100 मेडल के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं। भारतीय टीम से तैयारियां सही रही है, कुछ अच्छे एथलीट्स विदेश में ट्रेन कर रहे हैं, कुछ को अपने ही घर में अच्छी शिक्षा मिल रही है, ओवरऑल पॉजिटिव है और मुझे लगता है एशियन गेम्स में भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और 2 महीने बाद हम शायद सेलिब्रेट करेंगे कि एशियन गेम में अच्छा प्रदर्शन रहा।
4: जी राजारमन, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ इस विषय पर अपनी जानकारी साझा की, अपने विचार साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू सो मच।
3: अभी आप सुन रहे थे कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ती वैश्विक पहचान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
6: सुर्खियों में
7: वो खिलाड़ी जिसने जानवरों की भलाई की राह चुनी, डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026। तंजावुर जिले के एक सुंदर गांव बल्लम में 1960 के दशक में एक युवा लड़का किसान परिवार में पला बढ़ा। उसे खेल बहुत पसंद थे। उसका सपना एथलेटिक्स और हॉकी का स्टार खिलाड़ी बनना था। वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वो अपने दादा के बहुत प्रिय थे।
8: कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब मैं अपने दादाजी के पास आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा सीखो जो किसानों के काम आए। वह मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। तब मैं सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में जानता था, मुझे वेटनरी साइंस की जानकारी नहीं थी। मेरे दोस्त और सहपाठी वीर पांडियन ने मुझे वेटनरी साइंस से परिचित कराया।
7: युवा पुण्यमूर्ति 70 के दशक के मध्य में मद्रास वेटरनरी कॉलेज पहुंचे। वो न केवल पढ़ाई में होशियार थे बल्कि वो लगातार 2 साल तक कॉलेज एथलेटिक्स चैंपियन भी रहे। कुछ वर्षों बाद वे इरोड के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हुए। वहीं एक घटना ने उनकी सोच को नई दिशा दी।
8: मैं इरोड में एक युगल द्वारा चलाए जा रहे पोल्ट्री फार्म पर गया। मुर्गियां स्वस्थ दिख रही थी, अच्छा खा रही थी, फिर भी अंडे नहीं दे पा रही थी। रिकॉर्ड से पता चला कि उन्हें कॉक्सिडियोसिस यानी परजीवी रोग के लिए सल्फानामाइड दवा 10 हफ्ते तक दी गई थी। इसका दीर्घकालीन असर उनके प्रजनन पर पड़ा और वे अंडे नहीं दे पाई। अगर हमें भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स बचानी है तो उनका समझदारी से उपयोग करना चाहिए या फिर उनके विकल्प खोजने होंगे। मुझे ये एहसास हुआ।
7: पौधों के औषधीय गुणों की मदद से डॉक्टर पुण्यमूर्ति ने पशु रोगों के उपचार और रोकथाम में औषधीय पौधों का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने एथनो वेटरिनरी को विकसित और प्रमाणित किया, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित पशु चिकित्सा पद्धति।
8: पशुपालकों के लिए मास्टाइटिस एक गंभीर बीमारी है। इसके उपचार के लिए 1 चम्मच एलोवेरा, 2 मुट्ठी हल्दी और थोड़ा सा चूना मिलाकर दवाओं के बिना सफल उपचार किया जा सकता है। ये पारंपरिक सिद्ध आधारित इलाज के असर को दिखाता है।
7: उनके इलाज से लाखों गायों और किसानों को फायदा हुआ। उन्होंने जानवरों की 34 बीमारियों के लिए 5 आसान इलाज विकसित किए।
8: एक जिम्मेदार पशु चिकित्सक के रूप में जितना जरूरी स्वस्थ दूध, अंडे और मांस मुहैया कराना है, उतना ही जरूरी गायों का स्वस्थ गोबर और मूत्र भी है, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स को बचाए रखना भी जरूरी है, जो हम एथनोवेटनरी चिकित्सा के जरिए कर रहे हैं।
7: डॉक्टर पुण्यमूर्ति की सभी खोजें सबके लिए निःशुल्क है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उनके काम को लाखों किसान तक पहुँचाया, जिससे उन्हें बहुत फायदा मिला।
8: मैं दिल से खिलाड़ी हूँ, इसलिए अपने काम से पूरा प्यार करता हूँ।
7: डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक और आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि इन परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में इसे अमली ढांचा पहनाने के लिए विधि सम्मत उपाय भी किए जाएंगे। यानी संभव है आने वाले दिनों में हम एक नया कानून इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आता हुआ दिखें। इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में राजनीतिक मामलों की वरिष्ठ विश्लेषक अदिति टंडन जी को। अदिति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती हैं उसमें कई में हमने देखा कि कुछ लापरवाहियां रही या उचित कदमों में कहीं तालमेल का अभाव दिखा और प्रश्न पत्र लीक हो गए, इसका अंजाम अच्छा नहीं निकला और अंततः सरकार ने कड़े कदम उठाने के आश्वासन दिए हैं। किन रूप में देख रही इन्हें?
3: देखिए, जैसा कि आपने कहा खुद ही अपने रिमार्क्स में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं और इवन राज्य के स्तर पर जो एग्जामिनेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज के लीक हो रहे हैं। सिस्टम में लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स होते रहे हैं, बहुत सारे हुए हैं, हर स्तर पर, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर हुए हैं और सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की जो कवायद है वो ये बहुत सालों से चल रही है। मैं खुद ही बहुत पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री पर लिखा करती थी, तब से ये कोशिश चल रही है। मुझे आज भी याद है कि AIEEE का एग्जाम लीक हुआ था 2011 में, जिसके बाद सबसे पहले एक संजीदा मसौदा तैयार करने की बात हुई थी कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को फूल प्रूफ बना सकते हैं। तो ये जो चैलेंज है मनोज जी, हर सरकार के टाइम पर आया है और हर सरकार ने अपने तरीके से इसको प्लग करने की कोशिश की है, पर हम सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जो इससे लाभान्वित होता है और इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत वेल एंट्रेंच हो चुके हैं सिस्टम में। जो लोग एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, पेपर लीक के डायनामिक्स को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, इसके जो तार हैं बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो कल मैंने देखी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 ऑफिशियल्स को सैक किया गया है और ये भी वक्तव्य आया है सरकारी सोर्सेस के हवाले से कि उनमें से बहुत लोगों पे अब मुकदमा भी चलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो लेटेस्ट नीट यूजी जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट MBBS एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, May 3 को पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स इन्वॉल्व हैं, अंदर के भी लोग कुछ इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए एक इस सिस्टम में ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम कल उठाया गया है। और आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने वक्तव्य में कही हैं सिस्टम को फूल प्रूफ बनाने के लिए। एक तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसा नहीं कि देश में है नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का मतलब है वो ये है कि डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ इस लॉ के तहत जो केसेस दर्ज होंगे उनको डे टू डे बेसिस पर सुनने के बाद 3 महीने में उनका ट्रायल खत्म करेंगे, चार्जशीट फाइल होने के बाद। और हम और आप आज बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ ही घंटों पहले जो बिल का मसौदा है, जो बिल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था अपने वक्तव्य में परसों रात को जब उन्होंने एक वीडियो सेल्फी बना के देश के युवाओं से संपर्क करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट में एक बिल लेके आने वाले हैं। जो पुराना बिल 2024 में सरकार ने पास किया है उसी को इम्प्रूव किया गया है और उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण बात उसमें ऐड की गई है वो ये की गई है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया परसों रात को अपने संदेश में, और कल कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। आज बिल का मसौदा भी हम सबके सामने आ गया है और पार्लियामेंट में ये बिल मंडे को पेश भी होने जा रहा है।
2: यहाँ पर थोड़ा हम श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि ये जो मसौदा बिल आया है उसमें क्या सब बातें रखी गई हैं और कैसे ये आने वाले दिनों में सुधार के कारक बनकर सामने आएंगे।
3: इस बिल का जो नाम है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। मैंने जैसे कहा कि ये नया बिल नहीं है, 2024 का बिल है, उसमें संशोधन लाएगी सरकार। संशोधन के माध्यम से नई पनिशमेंट्स घोषित करेगी और जो नए मसौदा तैयार किया है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, वो ये है कि पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। जो पुराना बिल था 2024 का, उसमें ये कहा गया था कि जब कोई इंडिविजुअल पेपर लीक के मामले में लिप्त पाया जाएगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 से 5 वर्ष की, और उस पे जो फाइन होगा वो 10 लाख का होगा। अब उसको बदल के कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की होगी और जो फाइन होगा वो 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक ले गए हैं। और सिमिलरली अगर यही क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से कोई कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस इन्वॉल्व है,

0: सकते हैं इस कानून के तहत दर्ज मामलों को निपटाने के लिए। और ये भी कहा गया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स इन मामलों में होंगी वो हर दिन होंगी, डे टू डे बेसिस पर चलेगा ट्रायल, और ट्रायल 3 महीने में कंप्लीट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर कर दिया गया है कि जब जब ऐसा कोई बड़ा मामला आए नजर में तो इमीडिएटली स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके उस एसटीएफ को ये मैंडेट होगा कि आपने 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। अभी क्या हो रहा है ना, सिस्टम में मिसट्रस्ट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि लंबित बहुत हैं केस। आप कानून लाकर सिस्टम को परिवर्तित नहीं कर सकते, आपको कानून को अमली जामा पहनाने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से बड़ा चैलेंज जो सरकार के सामने आएगा वो फाइनेंसिस का आएगा।
1: अच्छी बात कही है कि पिछले कानून से किस तरह ये कानून बदला हुआ होगा, अधिक सख्त होगा। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि एक मामला शुरू हुआ और आमतौर पर ये मामले दम तोड़ देते जब पुख्ता सबूत नहीं रखे जाते, वहां पर कैसे कह लें कि उस प्रक्रिया का ध्यान रखा जाएगा, यानी अदालतें बन गई। जैसे अभी यदि हाल का एक मामला लें तो उसमें जिस व्यक्ति को आरोपी ठहराया गया उसके विरुद्ध फिलहाल कोई सबूत नहीं मिलने से वह छूट गया, तो वहां पर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए?
0: इसमें मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन की बहुत बड़ी भूमिका है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट होता है ऐसे केसेस में वो कितना लायक है, वो कितने अच्छी तरीके से आर्ग्यू कर सकता है मैटर, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो कितनी क्विकली फॉरेंसिक एविडेंस गैदर कर सकती है, कितनी जल्दी डिजिटल इम्प्रिंट्स को देख सकती है, क्योंकि लीकेजेस तो अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सारा का सारा एग्जाम ऑनलाइन है, तो उससे क्या है, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को यह सोचना होगा कि जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा ऐसे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें आपको एक्सपर्ट्स भी कोऑप्ट करने पड़ेंगे। अब ये जो वक्त है, ये जो जमाना है, उसमें कन्वेंशनल पुलिसिंग मेथड से आप क्रिमिनल गैंग्स को नहीं हैंडल कर सकते, आपको बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज हर सेक्टर में चाहिए।
1: यहां पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस दिशा में एनटीए क्या कर रही है और किस रूप में अपने आप को पेशेवर बनाने के लिए पेशेवर लोगों की सलाह लेने की योजना बना रही है।
0: इनफैक्ट परसों हमने देखा कि सरकार ने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से नए पोस्ट्स घोषित किए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। उन्होंने ये कहा है कि नियुक्ति के लिए अब 4 जनरल मैनेजर्स बुलाए जाएंगे। अभी क्या है, अभी जो स्ट्रक्चर है बहुत सेंट्रलाइज्ड है, जैसे सबसे ऊपर एक चेयरमैन है, उसके नीचे सीईओ है, तो लेकिन अब डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों को भी भर्ती में शामिल किया जाएगा, उनकी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनटीए ने एक बयान में ये भी कहा है कि ये उपाय एजेंसी के जो संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा है उसके लिए हेल्प करेंगे।
1: यदि श्रोताओं, कुल मिलाकर सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि हमारी जो राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं या राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित की जाए, और इसके लिए जिस तरह तकनीक बदल रही है, तकनीक हावी हो रही है, उसके निदान के लिए जो हमारा वैधानिक ढांचा है उसमें वैसे ही दक्ष पेशेवरों की नियुक्ति की जाए। यहां पर अदिति जी, आपने कहा कि इसे वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा, ढांचा तैयार किया जाएगा, किस रूप में परिवर्तन होता देख रही हैं आप वहां उस स्तर पर?
0: देखिए, परिवर्तन कितना हो पाएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव सिग्नल इस वक्त है वो ये है कि परिवर्तन की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जो लड़ाई है मनोज जी, ये बहुत लंबी है, और ये जो पेपर लीक का मामला है, ये सिर्फ पेपर लीक का मामला चीटिंग से लिंक करके नहीं आप देख सकते। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स के माइंड पे, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट होता है। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस बच्चा पैदा होते ही पैसा जमा करना शुरू कर देती हैं कि देश में अच्छे एजुकेशन में या अच्छे कॉलेज में अगर बच्चे की भर्ती करानी है तो उसे अच्छे स्कूल में भेजना है, उसकी एक कॉस्ट है, अच्छी कोचिंग दिलानी है, वो कितनी एक्सपेंसिव है हम सब जानते हैं। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे को सीट मिलेगी। यही वजह होती है कि बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी पर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स फीड करते हैं।
1: थोड़ा इसे और विस्तार देकर बताएं कि सिस्टम में बदलाव किस तरह का और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में?
0: मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि एग्जामिनेशन सिस्टम तब फूल प्रूफ हो सकता है जब उसमें ग्रेडिंग हो। ये प्रामाणिक है। आप देखिए कौन कौन से एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारे देश में हैं, जिनमें या तो आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि लीक हुए हैं या बहुत नेग्लिजिबल हुए हैं। जैसे आप यूपीएससी का

0: एग्जाम देखिए, वो कभी क्यों नहीं लीक होता।
1: बिल्कुल,
0: आप उस मसौदे को समझिए,
1: आर्म फोर्स हैं उनके
0: आर्म फोर्सेस के लीक नहीं होते। आप और भी समझिए, जब से आपने आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ग्रेडेड बना दिया है, जैसे पहले क्या होता था कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था AI EEE। मुझे आज भी याद है 2011 में एक बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत त्रस्त हुए थे। उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ कि किस तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। आप जानते हैं पहले JEE मेन कंडक्ट होता है, उसमें एक पर्टिकुलर लेवल के बच्चे जो टॉप 25% आते हैं उनको मौका मिलता है IIT में जाने का। उससे होता क्या है, जब आप ग्रेडेड एग्जामिनेशन सिस्टम बनाते हैं कॉम्पिटिशन के लेवल पे, आप डिसइंसेंटिवाइज करते हैं कि बच्चे पैसा देके पेपर खरीदें। क्यों? क्योंकि पहले लेवल पर आप निकल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। जब कोई गारंटी नहीं है तो कोई इंसेंटिव नहीं है पैसा देने का, तो आप डिमांड और सप्लाई के साइकिल को तोड़ सकते हैं ग्रेडेड सिस्टम में। सिमिलरली यूपीएससी में 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रिलिमिनरीज होते हैं, उसके बाद मेन्स होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। किस किस लेवल पर कोई लीकेज के लिए पैसे देगा। सो ये एक सिंपल इजीली डूएबल एक फॉर्मूला है। जो AI PMT का एग्जाम भी पहले ग्रेडेड होता था, उस वक्त लीकेजेस मुझे लगता है कम होते थे। जब से आपने सिंगल एग्जाम बनाया है, ये जो NEET UG है, आपने जब से इसको सिंगल एग्जाम बनाया, 22 लाख बच्चे बैठते हैं, 500 सिटीज में होता है, जिसको कहते हैं बहुत बड़े स्केल पर ये एग्जाम होता है। 22 लाख बच्चों को एक साथ टेस्ट करना और उनको एक ही विंडो में MBBS की सीट देना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर हम ग्रेडेड एग्जाम करेंगे NEET UG को, जैसा कि पहले होता था 2 लेवल्स पर, पहले स्क्रीनिंग और फिर सिलेक्शन, तो शायद ये लीकेजेस का इंटेंसिटी कम होगा। ये प्रामाणिकता से मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है।
1: अच्छा, कुछ राज्यों की ओर से इस नीट परीक्षा प्रणाली को ही लेकर विरोध जताए जा रहे हैं, उस दिशा में कुछ सुधार की या एकरूपता लाने की कोई भूमिका बनती नजर आ रही है आपको?
0: बिल्कुल, देखिए, तमिलनाडु ने शुरुआत से NEET UG का विरोध किया है। उनका ये कहना था कि 12वीं कक्षा के एग्जामिनेशन के बेसिस पे हमारी स्टेट में एक MBBS की एडमिशन होती थी और वो चलती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन मॉडल स्टडी करेंगे, उसमें JEE मेन और JEE एडवांस्ड का मॉडल बहुत अच्छा है। IITs के टॉप डायरेक्टर्स ने मिलकर उसे बनाया है, उसमें बहुत लेवल हुई थी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की, और उसमें 12वीं के रिजल्ट्स का भी एक पोर्शन काउंट होता है। फिर वही मैं कहूंगी कि NEET UG बहुत बार लीक हुआ है, 3 बार तो रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है। तमाम मॉडल्स को स्टडी करने के बाद आप ये भी देखिए कि क्या कहीं NEET UG के स्ट्रक्चर को ही चेंज करने की जरूरत तो नहीं है।
1: यानी श्रोताओं, एक आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता परीक्षा प्रणाली को है, ऐसा लग रहा। बस यहीं पर हम श्रोताओं आपकी ओर से अदिति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सुर्खियों में
4: मृदंगम ही उनकी धड़कन है, श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026। तिरुवारूर 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, संगीत ममूर्ति की जन्मस्थली।
5: मैं एक संगीत के वातावरण में पला बढ़ा। मेरी माँ तिरुवारूर तंजावुर क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थी। जब मैं केवल 2.5 वर्ष का था तब मुझे पिता की अनुपस्थिति महसूस हुई। कहा जाता है माँ एक पवित्र मंदिर के समान होती हैं, और मेरे जीवन में यह बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। मेरी माँ ने अपने 3 भाइयों और हमारी जिम्मेदारी उठाई छोटे छोटे संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर।
4: हर सुबह बालक भक्त वत्सलम अपनी माँ आनंद वल्ली की प्रार्थना और भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों के साथ जगता था। वो संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाता। माँ ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। यही प्रारंभिक शिक्षा उनके जीवन भर की संगीत यात्रा की मजबूत नींव बनी। कुछ ही समय में वे अपनी माँ और मामा के साथ स्थानीय संगीत कार्यक्रमों में संगत करने लगे।
5: मेरे मामा तिरुवारूर कृष्णमूर्ति, मैंने उनसे जिद करके मृदंगम सीखना शुरू किया। वे मुझे सिखाना तो चाहते थे लेकिन हिचकिचाते थे। संगीतकारों की आय नियमित नहीं होती थी। वे नहीं चाहते थे कि मुझे भी उन्हीं संघर्षों का सामना करना पड़े जिनसे वे गुजरे थे।
4: उस समय चेन्नई भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र बन चुका था। देश भर के महान विद्वान और कलाकार वहीं आकर बस रहे थे।
5: जब मैं मद्रास आया तब मैं किसी को नहीं जानता था और न ही कोई सहारा था। मेरी माँ मेरे साथ आने में हिचकिचाई। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और बहुत आग्रह करके माँ को अपने साथ ले आया। मेरे लिए उन्होंने जो त्याग किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने मेरी खातिर उसी छोटे से कमरे में स्वयं को ढाल लिया। हम एक ऐसी बस्ती में रहते थे जहाँ छोटे छोटे घर एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाकर कमरे को ध्वनि निरोधित करता और घंटों मृदंगम का अभ्यास करता। लगातार 10 वर्षों तक यही मेरी दिनचर्या रही।
4: एक बार प्रसिद्ध गायिका M.L. बसंत कुमारी के साथ व्हाइट हाउस में प्रस्तुति के दौरान आयोजकों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने माथे पर लगा पारंपरिक विभूति चिन्ह हटा दें, लेकिन भक्तवत्सलम ने इनकार कर दिया। उनके लिए वो उनकी पहचान और आस्था का प्रतीक था और उन्होंने गर्व के साथ अपनी प्रस्तुति दी। वर्ष 1992 में उन्होंने बार्सिलोना ओलंपिक में अपनी प्रस्तुति की। इसके बाद महान कलाकार मैंडोलिन श्रीनिवास के साथ विश्व पटल पर संगत की। भक्तवत्सलम को प्रख्यात संगीतकारों के साथ ने भारतीय संगीत जगत की विशिष्ट पहचान बना दिया। एक नवाचारी कलाकार के रूप में उन्होंने विशाल तालवाद समूहों की ऐसी अनूठी प्रस्तुतियों की संरचना की जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया था। अपनी संस्था लय मधुरा स्कूल ऑफ म्यूजिक के माध्यम से वे 1000 से अधिक शिष्यों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। जो ज्ञान सीखने योग्य है उसे पूरी निष्ठा से सीखो और फिर जीवन भर उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करो।
5: संगीत मेरी सांस है, मैं अगले जन्म में भी मृदंगम ही बजाना चाहूंगा।
4: श्री तिरुवरूर भक्तवत्सलम, पद्मश्री 2026।

आज का जो सेशन है मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग हमेशा एक परफेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट? और जब हमें परफेक्ट आंसर नहीं मिलता है किसी भी चीज का, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये मेरे साथ भी होता है और ये हर एक इंसान के साथ होता है कि हम परफेक्ट आंसर अपनी लाइफ में नहीं ढूंढ पाते हैं। तो उस स्टेज में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे किसी के साथ होते हैं कि परफेक्ट आंसर ही नहीं पता चलता कि क्या गलत है क्या ठीक है, बट हम करते हैं कुछ भी, अपनी तरफ से हम बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड, जो पिछले सेशंस में मैंने बोला है कि माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि माइंड हमें गाइड करता है। वो बच्चे की स्टोरी मॉन्स्टर से लड़ने की, उसका माइंड ही उसको इंस्टिगेट कर रहा था, और माइंड में जो थॉट्स आ रहे थे कि मुझे एप्पल देना है, मुझे पानी देना है, मुझे स्माइल करनी है, तो माइंड वॉज एक्टिंग। तो हम बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में आती हैं कि हम वेदर वी आर डूइंग इट राइट, वेदर वी आर टेकिंग द राइट डिसीजन, बट फिर नॉर्मली हमारी ये टेंडेंसी हो जाती है कि हम परमात्मा पे छोड़ देते हैं। अच्छा, जो होगा ठीक ही होगा, गलत क्या होगा, हम एक्शन तो ले ही लेते हैं, राइट? मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी, अगर आप ये स्लाइड्स में देखेंगे कि मेरे पास एक गाड़ी है और मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैंने नई गाड़ी खरीदी है और उस पे स्क्रैच आ गया, तो मुझे बहुत एक अजीब सी फीलिंग होती है कि ओहो, मैंने इतने लाख की गाड़ी खरीदी और उस पे ये स्क्रैच आ गया। तो हमारी जो फीलिंग है वो बड़ी आई शुड से दैट नेगेटिव सी हो जाती है कि ओहो सच अ लॉस, वाई दिस स्क्रैच हैज कम। तो हम दूसरों से बात करते हैं तो हर कोई अपना अपना ओपिनियन देता है। नीचे देखो मैंने लिखा हुआ है, समवन वुड से यू शुड ड्राइव स्क्रैचलेस कार। अरे ये तो आपकी पर्सनालिटी के साथ सूट ही नहीं करता कि आपकी गाड़ी पे डेंट लगे हुए हैं। हमारे में भी ये फीलिंग आती है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने दिया है। और कोई दूसरा कहेगा तो क्या हुआ, गाड़ी सड़क पे लेके जाओगे तो स्क्रैच नहीं आएंगे, तो और क्या होगा, हवा में थोड़ा उड़ानी है आपने गाड़ी, स्क्रैच तो आएंगे ही आएंगे, इट हार्डली मैटर्स, वाई यू आर लिंकिंग दिस विद योर स्टेटस और पर्सनैलिटी। अब क्या हुआ, एक ने कह दिया अरे तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ तो स्क्रैच गाड़ी पे हो तो सूट ही नहीं करता, और दूसरा कह रहे क्या फर्क पड़ता है। तो हम जिसकी गाड़ी है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं स्क्रैच को ठीक कराऊं नहीं कराऊं, और लगने दो फिर एक ही बार करा लूंगा, या कोई बात नहीं ऐसे ही चलता रहे। तो हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम क्या करें, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन लाइफ देयर इज सेल्डम वन राइट आंसर। हमें आंसर सही नहीं मिलता है, बहुत डीप बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ, पर सिचुएशन तो हमारे हाथ में है। हम आंसर अगर ठीक नहीं ले पा रहे हैं पर सिचुएशन हमारे हाथ में है, हमारा माइंड हमारे हाथ में है, हमारी सोच हमारे हाथ में है, हमारी एनालिटिकल पावर्स हमारे हाथ में है, और ये सब कुछ जब सिंक्रोनाइज हो जाता है तो हम कॉन्शियसली राइट डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ, है ना? तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, हम किसको सुनते हैं? यू मे स्टैंड अलोन, मतलब कि तुम कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। लीडरशिप की क्वालिटीज में मैंने ये भी बताया था कि लीडर्स को कभी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे उसको स्टैंड अलोन करना पड़ता है, बट ही इज लिसनिंग टू हिज और हर इनर कॉन्शियंस। वो अपनी कॉन्शियंस को सुनता है और वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ और मैं ठीक कर रहा हूँ। तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम अपने अंदर जो व्हाट इज राइट फॉर यू, यू को मैंने कैपिटल वर्ड्स में लिखा है, जो मेरे लिए सही है वही मेरे लिए सही आंसर है। इज इट ओके? कोई इसके रिलेटेड कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहेगा?
ये बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है। बहुत बारी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि यू फेस द पीपल हु वोंट लेट यू ग्रो, हु वोंट एप्रिशिएट व्हाट योर वाइडर विजन इज, हु विल नॉट इवन थिंक पिन पिन जितना भी वो नहीं सोचते जो तुम सोच रहे हो, और वो इतनी बड़ी हर्डल खड़ी कर देते हैं आपके सामने। उस सिचुएशन में एक लीडर को क्या करना है, 10 लोग अगर वो बात सुन रहे हैं तो 10 लोग अपनी अपनी परसेप्शन रखते हैं, पर आपको क्या करना है, आपको वही करना है जो सच है, जो आपका जो इनसाइड यू है, जो आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको सुनना है और वही एक्शन लेना है। एम आई राइट? ये बात समझ में आ गई सबको? हम करते हैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करते हैं, पर इसको रिपीट करना और इसको बार बार इस सिचुएशन में जब हम आते हैं और इस स्लाइड को याद करना हमें बहुत मदद करेगा, बहुत ज्यादा मदद करेगा, अगर हम इसकी एक हैबिट बना लें और हम अपने आप को हमेशा एनालाइज भी करते रहें, सेल्फ एनालिसिस करें। यू लिसन टू योर इनर वॉइस, व्हाट योर इनर वॉइस इज टेलिंग यू, ये बहुत जरूरी है। और इनर वॉइस जो कहती है वो कभी भी ये नहीं कहती है, अगर हम लीडर हैं और अगर हम वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर को याद करें जिसमें पहला पॉइंट था कि ट्रूथफुलनेस, और अगर हम सच्चे हैं अपने साथ और अपने लोगों के साथ, तो जो हमारी इनर कॉन्शियस है वो हमेशा राइट डिसीजन लेने के लिए कहेगी। हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें किसी भी बात का हम ये नहीं कह सकते कि राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है, हमें हमेशा अपने ही कॉन्शियस को सुनना है। हम सलाह जरूर करें, हम लोगों से बात जरूर करें, और हमेशा जो अंदर से आवाज आती है उसको अगर हम सुने तो मुझे ये लगता है कि हमारे लिए वही राइट आंसर होता है। तो अगर मैं अपने कम्युनिकेशन को बिगाड़ लेती हूँ, नेगेटिविटी में ले जाती हूँ या आर्ग्यूमेंट में आ जाती हूँ, तो शायद काम बिगड़ेगा ही, काम सुधरेगा नहीं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और क्लैरिटी, कम्युनिकेशन के साथ क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम घुमा फिरा के बात नहीं करें, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, क्योंकि हमारा गोल बहुत क्लियर है, हमारी विजन बहुत क्लियर है, हमारा मिशन बहुत क्लियर है, हम अपनी आईज को एक फोकस्ड रख रहे हैं, हम इधर उधर देख ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है। इधर उधर देखना है इसलिए क्योंकि कोई नेगेटिविटी हमें इम्बाइब ना कर ले, अदरवाइज अगर हमारा मिशन क्लियर है, विजन क्लियर है, तो हम अपने गोल पे फोकस्ड ही रहते हैं। राइट? क्रिएटिव थिंकिंग, आप सब लोग कर रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग, अपने काम में भी कर रहे हैं, अपने सेंटर्स को कैसे चलाना है, कैसे करना है, ये अडेप्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं राइटली, और फिर उसको क्रिएटिव थिंकिंग से आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। देन डिपेंडेबिलिटी, बहुत जबरदस्त हम डिपेंडेंट है। अगर आज के सेशन में 55 लोग हैं तो मैं ये कहूंगी कि मैं 55 लोगों पे ही डिपेंडेंट हूँ अपनी बात सुनाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए, अपने मिशन को रियलाइज करने के लिए। आई कैन नॉट स्टैंड अलोन टू डू ऑल दीज थिंग्स। हम एक दूसरे पे इतने निर्भर हैं, और हमारा समाज ही ऐसे बना हुआ है कि हम एक दूसरे पे निर्भर होके रहते हैं। कोई भी इंसान आइसोलेशन में अकेले अपनी जिंदगी नहीं जी सकता है, ये तो पता ही है। वर्क एथिक्स, वर्क एथिक्स हम बहुत बार ही चर्चा करते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं, अपने काम को उसमें एथिकली कर रहे हैं या नॉन एथिकली कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें सब आपको पता है। बट सिर्फ हर एक पॉइंट को अपने कॉन्शियस के साथ जोड़ने की जरूरत है। टीम वर्क, हर कोई टीम में काम कर रहा है। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग से कर रहे हैं। देखो रोज एक नेगेटिविटी आ जाती है जब हम काम करते हैं, पर उसको सहज भाव से सोचना, उसको एनालाइज करना,
फिर अपनी सोच को बदलना कि मैं नेगेटिव ना होके इसको पॉजिटिव किस नजर से देख सकती हूँ, उस नजर से उसको देखना और फिर एक्शन लेना। ये चार स्टेप्स बहुत बहुत जरूरी हैं पॉजिटिविटी को मद्देनजर रख के और अपने गोल पे पहुंचने के लिए। टाइम मैनेजमेंट यस बहुत जरूरी है, मोटिवेशन एक दूसरे को मोटिवेट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम मींस अकेले अगर हमें नहीं समझ में आ रही, टीम वर्क में हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और कैसे अगर मैं इसको पहले वाली स्लाइड के साथ लिंक करूं तो हम अगर कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और अगर हमें दूसरे जो हमारा टीम मेंबर है उसकी बात से हम समहाउ नहीं कॉन्फिडेंट हैं तो हम बड़े सहज भाव से बोल सके हैं कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोच लें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग इस एनालिटिकल स्किल कि उसके अच्छाइयाँ क्या होंगी, बुराइयाँ क्या होंगी, और फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये सब ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं 10-12, इनके ऊपर कितनी बुक्स लिखी गई हैं, कितने ऑथर्स ने इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसको हम पढ़ भी सकते हैं। आजकल तो हिंदी वर्जन्स भी बहुत मिलते हैं इन किताबों के, तो ये हमें आई वुड से दैट कि अपने सबकॉन्शियस लेवल पे ये एक डिसिप्लिन में ले आना चाहिए कि ये हमारा एक डिसिप्लिन है हमारी पर्सनालिटी का, हमारी लाइफ का, और हम इन पॉइंट्स को अगर हर रोज अपने एक्शंस में एक्सपीरियंस करें तो आप देखना कि बड़ी जल्दी आप लोग एक डिफरेंट लेवल पे एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाओगे। आप लोग हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं हो, पर हर चीज को एक रिमाइंडर देने की जरूरत होती है क्योंकि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को एनालाइज करते रहे और अपने आप को एक रिमाइंडर देते रहे तो हमारी हमारी पर्सनालिटी ग्रो करेगी, हमारी पर्सनालिटी शाइन करेगी और हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है थिंकिंग का वो एक बहुत ऊंचे स्थान पे चला जाएगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, एक और स्लाइड है, मैं उसके ऊपर भी चर्चा करती हूँ। सॉफ्ट स्किल्स और नॉन टेक्निकल स्किल्स, जो जहाँ पे हम ये अब लीडरशिप की बात कर रहे हैं और मैंने सॉफ्ट स्किल्स की बात की है, ये तो नॉन टेक्निकल है, इसमें कोई हम डिग्री तो पास नहीं करते हैं, पर हमारी परफॉर्मेंस पे ये इतना इम्पेक्ट करती हैं सॉफ्ट स्किल्स हमारे वर्क प्लेस पे अगर हम इनको रोज प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, राइट। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर में और हम लोग भी सेशंस करते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इसके ऊपर अभी बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बिकॉज दैट इज द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन विच डिफाइंस। तो यू लाइकली ऑलरेडी हैव सॉफ्ट स्किल्स फ्रॉम योर स्कूल एंड वर्क एक्सपीरियंस, पर हम उसको कितना यूज करते हैं, हम उसको बॉक्स में बंद करके नहीं रखें, क्योंकि ये शिक्षा तो हम जब स्कूल जाते हैं हमें मिलनी शुरू हो जाती है, थोड़े थोड़े लेवल की इंक्रीज होती रहती है जब हम जाते हैं, पर हम जब बड़े होते हैं कहीं ना कहीं हम पीछे उस शिक्षा को छोड़ते आते हैं तो हम आगे आके कंफ्यूज पर्सनालिटी बन जाते हैं। पर अगर हम उसको अपने आप को रिमाइंडर देते रहे, अपने आप को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते रहे, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे उन्होंने सोशल सेक्टर में काम करने का मौका दिया जिसमें मैं अपनी ये सारी सॉफ्ट स्किल्स को हर रोज सुधारने का भी मुझे मौका मिलता है, इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलता है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैं कैसे इस पर्टिकुलर जो सॉफ्ट स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। और ये हमें सबको सोचना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डेवेलप सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क, स्कूल, वॉलेंटियर एक्टिविटीज एंड इन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप सब लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही कर रहे हो, आप सब लोग ज्ञान ही बांट रहे हो, आप सब लोग दूसरों को सक्षम ही बना रहे हो, और अगर ये सॉफ्ट स्किल्स आप
अपने सेंटर पे एक चार्ट में लिख के रख दोगे तो दैट इज अ रिमाइंडर टू एवरीवन, राइट। और इस पे अगर 10 मिनट रिफ्लेक्ट भी कर लेंगे तो पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाती है। सो इंक्लूड योर सॉफ्ट स्किल्स इन योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर ऑल्सो। जब आप एम्प्लॉयबिलिटी की, यूथ डेवलपमेंट की वर्कशॉप्स करते हो तो आप उनको बोलो, क्योंकि आप नॉर्मली, आप एक लाइन आती है रिज्यूमे में कि मुझे क्या हॉबीज हैं, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और सॉफ्ट स्किल्स की हार्डली कोई लाइन होती है। पर अगर हम इनको भी इक्वली इम्पोर्टेंस दें, जो यूथ है आजकल का जो जॉब ढूंढ रहा है, जो हमारे सेंटर्स पे आके ट्रेनिंग्स लेते हैं, कैरियर काउंसलिंग की क्लासेस होती हैं, इसके ऊपर भी हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो हम अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेट योर सॉफ्ट स्किल्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज ऑल्सो। कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, एक हरियाणा की लड़की आईएएस ऑफिसर की इंटरव्यू में बैठी थी। 6 लोग बैठे थे और कमरे में, और शी वॉज आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। और मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हाईलाइट करना चाहूंगी जो इंटरव्यूअर था जिसने उस लड़की को बोला। जब सबने क्वेश्चंस पूछ लिए तो उसने बोला, आप नर्वस हो रही थी। तो लड़की ने बोला, हाँ मैं नर्वस हो रही थी। तो उसने बोला, ये आपका पर्सनालिटी ट्रेट है या आप फर्स्ट टाइम नर्वस हो रही थी? आप देखिए सॉफ्ट स्किल्स से कितना लिंक करती है ये बात। उसने बोला कि ये मेरा पर्सनालिटी ट्रेट है, जब मेरे ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है तो मैं नर्वस हो जाती हूँ। पर उस लड़की ने उस पे अगर पहले काम किया होता तो उसका आंसर कभी और भी हो सकता था। बट शी थॉट कि दैट इज द राइट आंसर, बिकॉज मैं क्यों बताऊं कि मैं इंटरव्यू के दौरान नर्वस हो रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन, एक लड़की भी बैठी थी इंटरव्यूअर बोर्ड में, उसने उससे बोला कि आपको कुछ आंसर्स नहीं आते थे, पर आप 5-6 सेकेंड, 10 सेकेंड ले सकती हैं आंसर मतलब कि याद करने में, और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ओपनली बोल भी सकते हैं कि सॉरी मुझे ये आंसर याद नहीं आ रहा है, इंस्टेड ऑफ गिविंग रॉन्ग रॉन्ग आंसर। तो उस लड़की ने उसको एक्सेप्ट किया कि यस यू आर राइट, मुझे टाइम देना चाहिए अपने आप को सोचने के लिए। तीसरा क्वेश्चन एक लड़की ने जो उसको किया, आई वॉज रियली अमेज्ड। और हम अपने ऑफिस में भी कई बार ये कल्चर की बात करते हैं। उसने उसको बोला कि आप आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग मतलब कि इंटरव्यू के लिए आए हैं, आपको इतने हाई हील्स पहनने की क्या जरूरत है? आप नॉर्मल चप्पल पहन के भी आ सकती थी या शूज पहन के भी आ सकती थी, और आप अगर फाइनल राउंड पे आएंगी तो आप अपने इस चीज का ध्यान रखिए। इट वॉज नॉट अ बैड सजेशन, इट वॉज वेरी गुड सजेशन कि हम जिस कल्चर में रहते हैं, जिस कल्चर में हम काम करते हैं, हमें उस कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस कल्चर की इज्जत करनी चाहिए, और कल्चरली ओरिएंटेड हमें अपना लाइफस्टाइल भी बनाना चाहिए। तो ये जो आजकल हम बात करते हैं कि हम वेस्टर्निज्म को बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, करिए, मैं भी करती हूँ, मेरी फैमिली भी करती है। बट जब हम ऐसी सिचुएशन में ऐसा ट्रैवल करने जाते हैं, मैं क्यों ये आपको बता रही हूँ कि आप लड़कियों को बताइए ये सारी बातें जब आप उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, तो अपने कल्चर को कभी भी मत छोड़िए, अपने कल्चर को हमेशा बांध के रखिए, वही आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जाएगा। दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर टुडे।

नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखने के अंतर्गत आप तक लाया गया है। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। आज का मेरा विषय है लू लगना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हीट स्ट्रोक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, लू चल रही है। लू क्या होता है? लू गर्म हवाएं होती है, और हम अगर ज़्यादा देर गर्मी में या धूप में रहते हैं तो हमें लू लग जाती है, जिसे हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी लू लगने के क्या लक्षण होते हैं और कैसे बचाव कर सकते हो और क्या उपाय होते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि लू लगना क्या होता है या हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक अत्यधिक टेम्परेचर यानी कि तापमान में लंबे समय तक रहने के कारण होता है, और इसे तत्काल इलाज की जरूरत होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, गर्मी का मौसम साल का सबसे कठिन मौसम होता है। हालांकि हर कोई अपने आप को इसके लिए तैयार करता है, लेकिन ये गर्मी तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी आती है। सबसे प्रमुख हीट स्ट्रोक होता है, जिसको हम लू लगना कहते हैं। जब कोई इंसान ज्यादा देर तक धूप में या गर्मी में रहता है, उसके शरीर का जो तापमान होता है 102 या 104 डिग्री जब पहुंच जाता है, तो इसे हीट स्ट्रोक का लक्षण माना जाता है। हीट स्ट्रोक आमतौर पे तब होता है जब शरीर में पानी और नमक की मात्रा कम हो जाती है और पसीना आना भी बंद हो जाता है। सामान्य लक्षणों में घबराहट, बेचैनी, उल्टी और बेहोशी का लक्षण दिखते हैं। बेहोशी को पहला लक्षण माना जा सकता है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ और लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, सिर घूमना, गर्मी के बावजूद पसीने ना आना, लाल गर्म और सूखी त्वचा होना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, उल्टी होना, धड़कनों का तेज होना, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट और बेचैनी होना। श्रोताओं, अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पे हमें क्या करना चाहिए। हीट स्ट्रोक से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं मिलता है, तब तक उसको ठंडी जगह में यानी कि पंखे के नीचे रखना चाहिए। पैरों को ऊपर करके रखें। यदि इंसान होश में है तो उसे पानी पिलाएं। धीरे धीरे शरीर को बर्फ के या ठंडे पानी की पट्टियां करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय क्या होते हैं। अगर आप कोई व्यायाम कर रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद पानी पिएं। हमें कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास या 2 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में अगर ज़्यादा पानी पियेंगे तो अच्छी बात होती है। ठंडे पानी से नहाएं, हल्का व पौष्टिक खाना खाएं, जैसे कि ककड़ी, तरबूज, नारियल, खरबूजा, बेल को अपने आहार में शामिल करें। खूब सारा पानी पिएं, हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहनें। ज्यादा देर तक बाहर रहने पर शरीर और कपड़ों पे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं आप। छाता या टोपी का उपयोग करें। दिन में जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि हमें कोई काम नहीं करना चाहिए बाहर जाकर, जब तक वो जरूरी ना हो। बच्चों को और बूढ़ों को अगर कोई डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हों तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमें ORS का घोल देना चाहिए। अगर वो ORS का घोल आपके पास नहीं है तो नमक और चीनी का घोल बनाकर बच्चों को और बूढ़ों को और आप भी ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। श्रोताओं, हमें गर्मियों में अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। हल्का खाना चाहिए और पौष्टिक खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस गर्मियों में
अपना, अपने परिवार का, उन सब का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जेबी बब्बर और हम बात कर रहे हैं डेंगू पे। डॉक्टर बब्बर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है और आज हम आपसे अपने श्रोताओं को जानकारी देंगे कि डेंगू से कैसे बचाव करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा गीता जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल हमारे दिल्ली में डेंगू फैल जाता है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं और बहुत सारे लोगों को बुखार हो जाता है, डर फैल जाता है, फोबिया हो जाता है। किसी इंसान को जरा सा बुखार होता है वो डर जाता है कि उसको डेंगू तो नहीं हो गया। अगर डेंगू है और किसी को घर में तो वो ये सोचता है कि इससे मुझे तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत लोगों के मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं और ये आपने बहुत अच्छा किया कि जानकारी देने के लिए आपने ये लोगों को बताने के लिए कोशिश की है और मैं बड़ा आभारी हूँ कि लोगों को पता लगना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डेंगू फीवर है क्या।
0: हाँ जी,
1: डेंगू फीवर एक मच्छर के काटने से होता है और उसको हम टाइगर मॉस्किटो कहते हैं डिस, जो कि जो साफ पानी में होता है। जैसे कि आपने फ्लावर पॉट में पानी रखकर फूल रख लिए, कुछ लोग होते हैं वास्तु के चक्कर में पंखड़ियां रखकर फूल पानी रख लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो टायर फेंकते नहीं है और टायर को रखे रखते हैं उसमें पानी आ जाता है, कुछ गमलों में पानी आ जाता है, कुछ कूलर्स में पानी रख लेते हैं और कुछ वैसे पानी रख के रात को सोते हैं और वो भूल जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो मच्छर है वो पनपता है और मच्छर वो घर में फैल जाता है। वो मच्छर ज्यादातर दिन में काटता है और वो जब दिन में काटता है तो उसके लक्षण जो है उसको आने शुरू होते हैं। सबसे पहले उसको बुखार होता है।
0: हाँ जी,
1: बुखार में बड़ा हाई ग्रेड फीवर होता है और उसकी बॉडी में बहुत पेन होती है, उसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। उसके बैक पेन में बहुत होता है और गलती से अगर कोई आदमी उसको डिस्प्रिन या एस्प्रिन या ब्रूफेन, मैं फिर रिपीट करूंगा, डिस्प्रिन एस्प्रिन या ब्रूफेन खा लेता है और नहीं भी खाता तो उसको ब्लीडिंग होनी शुरू होती है। खून जो है उसके नाक से आ सकता है, मुंह से आ सकता है, लैट्रिन के रास्ते आ सकता है या उसके शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उसको पेटिकल हेमरेज कहते हैं। जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो हम आपको ये बताएंगे कि अगर किसी को बुखार है पहले तो वो सिंपल क्रोसिन खाए, इसके अलावा कॉम्बिफ्लेन या डिस्प्रिन ब्रूफेन नहीं खाए। क्रोसिन जो है 500 मिलीग्राम की गोली आती है और अगर आपका शरीर का वजन 60 किलो से ज्यादा है तो आप 1.5 गोली ले लीजिए। अगर छोटा बच्चा है तो उसको सिरप आता है, ड्रॉप्स आते हैं, उस हिसाब से दीजिए। और आसपास किसी भी डिस्पेंसरी में जाकर अपना प्लेटलेट काउंट और हीमोग्लोबिन काउंट टेस्ट कराइए। अगर आपका 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में प्लेटलेट काउंट है और हीमोग्लोबिन ठीक है तो डरिए मत। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना पानी जरूर पिए क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी किसी को डेथ हो सकती है। और इतना डरिए मत कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आप प्लेन पैरासीटामोल ले रहे हैं और आपको कोई हेमरेज नहीं हो रही तो कोई जानलेवा खतरा नहीं है। अगर आपने डिस्प्रिन ले ली और ब्लीडिंग ज्यादा हो गई और आपका प्लेटलेट काउंट 50 चला गया तो कुछ खतरा है, तो उसके लिए हॉस्पिटल जाइए। ज्यादातर लोग जो हैं थोड़ा बेहोश होते हैं या उनकी नसें सूख जाती हैं, कोलैप्स होने की कोशिश करते हैं, अगर अस्पताल में जाकर उनको पानी चढ़ा दिया जाता है, ग्लूकोज या प्लेटलेट दिए जाते हैं पैक्सल, तो जान बच जाती है। ऐसा टेंशन लेने की नहीं है, पर उपाय से जो है वो बहुत जरूरी है। उपचार से उपाय यही है कि अपने आसपास पानी मत इकट्ठे होने दीजिए, कूलर को साफ रखिए, कूलर में मिट्टी का तेल डालिए, हफ्ते में उसको एक बार साफ करिए। छत पे या इसके आसपास कोई भी टूटे हुए बर्तन है, साफ बर्तन है या फ्लावर पॉट में पानी है उसको फेंक दीजिए। जब बारिश बंद हो जाएगी तो अपने घर की सजावट जैसे मर्जी करिए, पर अपनी सजावट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह पानी मत इकट्ठे होने।
0: डॉक्टर बब्बर, बहुत ठेले वाले और खाने वाले जैसे बाहर खड़े रहते हैं और वो एक ड्रम पानी का भी भर के रख देते हैं जिससे वो बर्तन धोते हैं, और वो ड्रम भी खतरनाक हो सकता है।
1: नहीं नहीं, वो ड्रम जो धोता है पानी का वो उसको फेंक देता है, शाम को उसको फेंक के जाता है। क्योंकि एटलीस्ट जो साइकिल है वो उसका, पहले उसमें अंडा होगा, एग बनेगा, फिर लार्वा होगा, फिर प्यूपा होगा, फिर एडल्ट होगा, तो एक दिन तो नहीं होता ना, उसको टाइम लगेगा।
0: हाँ जी,
1: सुबह उसने पानी भरा और शाम को उसको फेंक दिया, तो ऐसी कोई डेंजर नहीं है। क्योंकि आप भी तो घर में पानी भरते हो,
0: बिल्कुल,
1: जो आप जो भी पानी भरते हो सबसे बेस्ट है उसको ढक के रखिए। अगर आपने पानी ढक के रखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं, खुला पानी है और वो लगातार 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन है तो वो टेंशन। एक दिन में नहीं है कि उसने पानी भर के रखा और बर्तन धो रहा है तो नहीं, आप सब लोग धोते हैं, ऐसा कोई टेंशन हवा नहीं है, बस यही
0: पर
1: है।
0: ये एक मैसेज उनको जा रहा है कि अगर पानी भर के रख रहे हैं तो रोज तो को उसको रोज बदलिए,
1: बिल्कुल रोज बदलिए, और हमेशा पानी, चाहे बर्तन धो रहे हैं कुछ क्या, पानी ढक कर रखिए, खुला पानी कहीं भी मत रखिए।
0: तो डॉक्टर साहब, ये जो पानी हम बाजार से पीते हैं या कुछ है जो मशीन में पानी आता है, हालांकि वो मशीन में ढका हुआ होता है, पर पहले कहाँ से वो डाल रहे हैं?
1: वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो लोग बर्फ से पानी लेते हैं और बाजार से रेडी से पानी पीते हैं, अगर उसने पानी टैप वाटर से नहीं लिया, स्टोर्ड वाटर से लिया हुआ है, और पानी में कुछ जर्म्स हैं जिसके बैक्टीरिया पहले ही पनप रहे हैं, या वायरस पनप रहा है, या फंगस वाला है, और उससे तो लोग बीमार हो जाएंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पानी यह है कि पानी उबाल के पीजिए, ढक के रखिए। अगर आप पानी नहीं उबाल सकते तो 1 लीटर में 1 क्लोरीन की टैबलेट डालिए और आधे घंटे तक उसको रहने दीजिए। आधे घंटे के बाद क्लोरीन का इफेक्ट आ जाएगा, आप पानी का सेवन कर सकते हैं, वरना आप बाजार से फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक्वागार्ड लगा सकते हैं, जीरो भी लगा सकते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट है खोंचे वाले से कुछ मत खाइए, खुला पानी मत पीजिए, हाथ धोकर कुछ भी खाइए। खुद भी और बच्चों को ये समझाइए कि हाथ धोए बगैर आप कुछ भी मत खाइए, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये जैसे घर के बाहर नालियां होती हैं, हालांकि वो नालियां प्रॉपर बनी नहीं हुई हैं, पर छोटी सी ऐसे जैसे एक धार पानी की बहती रहती है, पर पानी उसमें रुका हुआ है, क्या उसमें भी मिट्टी का तेल डालना
1: बहुत आवश्यक है? बहुत आवश्यक है, वहां से तो डेंगू का मच्छर बहुत ज्यादा हो सकता है। जहां भी कहीं भी पानी इकट्ठा हुआ है, आप ये सोच लीजिए कि मैं अपने लिए नहीं, देश के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो आप मिट्टी का तेल वहां जरूर डालें।

नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर निधि गुलाटी आपके साथ फिर से एक बारी सेहत के बारे में जानकारी देने के लिए। आज का जो हमारा विषय है वो एडोलेसेंस पे है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं किशोर अवस्था। ये जीवन का वो पीरियड होता है या वो टाइम होता है जब एक बच्चा बच्चा भी नहीं रहता है और बड़ा भी नहीं होता है। ये शरीर में मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक परिवर्तनों की अवधि है। ये परिवर्तन आमतौर पे 10 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्ति में होते हैं। किशोर अवस्था के तीन चरण होते हैं, अर्ली एडोलेसेंस जिसकी उम्र होती है 10 से 13 साल, मिडिल एडोलेसेंस जिसकी उम्र होती है 14 से 17 साल और लेट एडोलेसेंस जिसकी उम्र होती है 18 से 21 साल। आइए अब जानते हैं कि इस चरण में, इस एडोलेसेंस की चरण में, स्टेजेस में हमें क्या क्या चेंजेस नजर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली एडोलेसेंस के लिए। ये किशोर अवस्था 10 से 13 वर्ष की आयु में ही शुरू हो जाती है। कुछ लड़कियों में ये अवस्था 8 या 9 साल की ही उम्र में ही शुरू हो सकती है। यौवन, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं, ये चरण भी शुरू हो जाता है। लड़कियां और लड़के दोनों तेजी से शारीरिक परिवर्तन से गुजरते हैं। अर्ली एडोलेसेंस भी एक ऐसा समय होता है जब कुछ लड़के लड़कियां भ्रम के अनुभव में रहते हैं। इस आयु में कई लड़कियों को मेंसेस साइकिल भी शुरू हो सकती है। अर्ली एडोलेसेंस में बच्चे सही गलत का फैसला खुद नहीं ले सकते और इसी के साथ साथ वो अपनी सोच को खुद पे ही केंद्रित करते हैं। आइए अब बात करते हैं मध्य किशोर अवस्था, जिसको हम मिडिल एडोलेसेंस कहते हैं। इसकी उम्र 14 से 17 वर्ष तक होती है। ये लड़कों के लिए प्रमुख शारीरिक परिवर्तन का समय होता है, लेकिन लड़कियों में ज्यादातर शारीरिक विकास की समाप्ति हो चुकी होती है। लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, उनकी वृद्धि भी तेज हो जाती है और कुछ के लिए मुहासे विकसित हो जाते हैं। जब दूसरों से जुड़े रिश्तों की बात होती है तो वह अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। किशोर अवस्था में ये उम्र सामाजिक और भावनात्मक रूप से देखी जाती है। इस अवस्था में लड़के और लड़कियां अपनी आंतरिक पहचान विकसित करते हैं और अपने जीवन में निर्णयों को लेकर अधिक जिम्मेदारी स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। इस आयु वर्ग के लड़के और लड़कियां भी अलग अलग सोचने लगते हैं। वह अपनी प्राथमिकताओं से बाहर देखने और जीवन में बड़ी तस्वीर देखना शुरू कर देते हैं। आइए अब बात करते हैं लेट एडोलेसेंस के बारे में, जिसकी उम्र शुरू होती है 18 साल से 21 साल तक और आगे भी बढ़ती है। इस अवस्था तक लड़के और लड़कियां दोनों की शारीरिक विकास पूरा हो चुका होता है। इस आयु में बच्चे अपने लिए बेहतर और स्थिर निर्णय लेना शुरू करते हैं। वह अपने भविष्य को लेकर जागरूक हो जाते हैं, दूसरों के साथ रिश्ते गहरे और स्थिर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। इस उम्र में बच्चे अपना रोल मॉडल ढूंढते हैं। वह अपने माता पिता को अपना रोल मॉडल बनाकर उनसे अपनी जीवन की सारी कठिनाइयों को शेयर करते हैं। हर किसी की जिंदगी में ये किशोर अवस्था जैसी उम्र आती है।
और हम सबको ये अवस्था बहुत समझदारी से और सूझबूझ के साथ निकालनी है। हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि इस उम्र में बच्चे कहीं गलत काम में ना फंसे। अभी तक के लिए इतना ही। आगे वाले सेशन में हम बात करेंगे कि इस अवस्था में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं बच्चों को, और उस प्रॉब्लम्स के साथ हम कैसे इसका सलूशन निकालें। तब तक के लिए धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने सर्जन डॉक्टर आई के धवन। डॉक्टर धवन से हम बात करेंगे कैंसर के बारे में और खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। डॉक्टर धवन, कैंसर की बीमारी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन वो कैसे होती है, किस बीमारी को कैंसर कहा जाता है, इसके बारे में आप हमें बताइए।
2: ऐसे है कि बॉडी का जो नॉर्मल टिश्यू रिपेयर का सिस्टम या मैकेनिज्म है वो बड़ा रेगुलेटेड है, उसके रेगुलेटेड है और वो मतलब गलत नहीं होता, चलता रहता है। जैसे नेचर ने कहा है ऐसे ही रिपेयर सिस्टम होता रहता है। हर एक सेल मर जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, पर एक किसी ऑर्डर में आता है, किसी नियम से आता है। पर जब ये नियम टूट जाता है, जब सेल्स पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं और ट्यूमर बनते जाते हैं, तो फिर हम उसको कैंसर कहते हैं।
1: डॉक्टर धवन, क्या ये बात सच है कि ट्यूमर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं?
2: ये बात सच है कि दो किस्म के ट्यूमर होते हैं, एक तो जो मैलिग्नेंट होते हैं और एक जो बिनाइन होते हैं। जो बिनाइन होते हैं वो तो 100% इजीली क्योरेबल होते हैं, और जो मैलिग्नेंट होते हैं वो हर एक जगह, हर एक अंग के फर्क फर्क क्योर रेट्स होते हैं। और फर्क उनमें ये है, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो सेल्स अपना रूप छोड़ते नहीं हैं, वैसे ही रहते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर रहता है, डिसऑर्डरली नहीं होते। जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो अपना रूप छोड़ देते हैं, वो डिसऑर्डरली हो जाते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ब्लड वेसल में चले जाते हैं, लिम्फैटिक्स में चले जाते हैं, जो अपनी कैप्सूल होती है उसको तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। सो ये फर्क है दोनों में।
1: डॉक्टर धवन, इस बीमारी के साथ स्टेजेस हैं कि स्टेज वन का है, स्टेज टू का है, तो कई बारी पता चलता है जब तक कि इसको व्यक्ति को कैंसर है और ये कहा जाता है कि आखिर स्टेज का पता चला, तो ऐसा क्यों होता है?
2: ऐसे है कि ये सच है कि किसी किसी ऑर्गन्स में कैंसर जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए देर से महसूस होता है, पर जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ती है तो हर एक अंग में यही कोशिश है कि कैंसर जल्दी पकड़ा जाए, उस स्टेज पे पकड़ा जाए जिस स्टेज पे उसका इलाज हो सके, एक तो बात यह है। दूसरा बात यह है कि बहुत ज्यादा जोर और एम्फेसिस है अपनी लाइफस्टाइल पे, जो फैक्टर्स कैंसर को प्रमोट करते हैं, जो कैंसर को बढ़ाते हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल से निकाल देना चाहिए, जैसे स्मोकिंग एंड टोबैको यूज।
1: डॉक्टर धवन, अमूमन ये माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी उम्र की महिलाओं को ही होता है, क्या छोटी उम्र की महिलाएं भी इसकी शिकार होती हैं?
2: सच है कि ब्रेस्ट कैंसर यंग महिलाओं में भी, छोटी उम्र की महिलाओं में भी होता है, पर इतना कॉमन नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, महिलाओं को इसकी सही सही जानकारी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए?
2: थोड़ी सी गलतफहमियां भी दूर करना जरूरी है। सबसे दुनिया भर में अच्छा सिस्टम जो डेवलप और मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम जो डेवलप हुआ है कि औरतों को 50 साल की उम्र या 40 साल की उम्र की औरतों को ये सिखाना चाहिए कि अपना ब्रेस्ट को कैसे पैल्पेट करें या फील करें। हम लोग यही कहते हैं कि महीने में एक दफा जब आप नहा रहे हों, जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाएं, पीरियड्स के बीच में, मतलब पीरियड्स के वक्त तो गांठें महसूस हो जाती हैं, पीरियड से पहले महसूस हो जाती हैं, पीरियड्स के बाद हफ्ता भर बाद आप अपना ब्रेस्ट नहाते वक्त क्योंकि साबुन लगाएं ब्रेस्ट के ऊपर फिर अपना हाथ उसके ऊपर लगाएं तो गांठ जो हो वो अच्छी तरह महसूस हो जाती है। हमने देखा है कि जो अनपढ़ जिनको हम अनपढ़ कहते हैं औरतें उन्होंने भी कभी रेडियो में सुना हो तो वो आते हैं क्योंकि हमने रेडियो में सुना तो हमने अपना ब्रेस्ट को फील किया तो हमें ये गांठ मजर। सो ये बहुत सबसे अहम बात है कि औरतों को सिखाना। दूसरी बात ये है कि 50 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग या 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए क्योंकि जैसे मैंने कहा है 15 या 20 औरतों में से 50 साल की उम्र के बाद एक को जरूर होगा ब्रेस्ट कैंसर, इतना इसका इंसिडेंस हाई है। तो इसलिए हर एक की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ना स्क्रीनिंग में थोड़ी सी गलतफहमी ये है कि मैमोग्राम करा लो तो स्क्रीनिंग हो गई, ये नहीं है। स्क्रीनिंग के दो भाग होते हैं, एक तो कोई डॉक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर को देखते रहते हैं वो ब्रेस्ट को अच्छी तरह फील करें और दूसरा एक साल में या दो साल में मैमोग्राम कराएं। सो ये दोनों भाग हो तब स्क्रीनिंग इफेक्टिव होती है, अगर एक ही भाग करें तो स्क्रीनिंग आधी इफेक्टिव होती है।
1: डॉक्टर धवन, अगर हम कामकाजी महिलाओं को देखें तो बच्चा होने के एक दो महीने के बाद से ही वो ऑफिस जाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में बच्चे को दूध पिला पाना तो संभव नहीं है, इसका भी कोई असर होता है उनकी सेहत पर?
2: ये बिल्कुल कंसर्न है, एक तो ब्रेस्ट कैंसर के वजह से कंसर्न है और दूसरा बेबी के लिए भी कंसर्न है कि द बेबी डजंट गेट द मदर्स मिल्क, ही इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन और शी इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन। सो दोनों तरफ से कंसर्न है।
1: डॉक्टर धवन, आप हमारे स्टूडियो में आए और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर इतनी सारी जानकारी आपने हमारे लिसनर्स को दी, हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं तो जरूर बताइए।
2: सबसे अच्छा सिस्टम तो यही है कि अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखें। लाइफ स्टाइल में सबसे जरूरी चीज है कि टोबैको का इस्तेमाल या सिगरेट के रास्ते या तंबाकू खाने के रास्ते या नसवार रखने नाक में डालने के रास्ते ये तो बिल्कुल बंद करना चाहिए क्योंकि ना ही ये कई जगह कैंसर का रोग करता है। बाकी और लाइफस्टाइल ओवरवेट जो लोग होते हैं उनको

नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर निधि गुलाटी, एक बार फिर आपके साथ कुछ सेहत की जानकारी देने के लिए। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ किशोर अवस्था के बारे में जानकारी दी थी। आइए आज हम पढ़ते हैं कि किशोर अवस्था में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उस प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या होता है। किशोर अवस्था एक ऐसी स्टेज होती है सबकी लाइफ में जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो इन सब चेंजेस को बच्चों को डेवलप करने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत प्रोत्साहित करना पड़ता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम बच्चे क्या फेस करते हैं वो है शारीरिक बदलाव। टीनेजर में हार्मोन लेवल के बदलाव के कारण शारीरिक बदलाव होता है। लड़कियों में पूर्ण रूप से जब उनकी चेस्ट फॉर्मेशन होती है तो उनको बहुत अजीब लगता है। लड़कियां अपने फिगर को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हैं। इस उम्र में लड़कों की आवाज भी भारी हो जाती है और उनके चेहरे में बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये बदलाव सबसे प्रमुख बदलाव है किशोर अवस्था के दौरान होता है। मुंह पे मुहासे आने शुरू हो जाते हैं और ये प्रमुख कारण है फिजिकल चेंज का, शारीरिक चेंज का। इसी के साथ मांसपेशियां भी भारी हो जाती हैं तो वजन का बढ़ना भी शुरू हो जाता है। लड़के और लड़कियों की शरीर से गंदी बदबू भी जो पसीने की होती है वो आनी शुरू हो जाती है। और लड़कियों का जो प्रमुख बदलाव होता है वो उनके मेंसेस शुरुआत हो जाते हैं। इन सब का कोई सलूशन भी है। घर में जो बड़े हैं, चाहे भाई बहन हो चाहे माता पिता हो, हम सबका फर्ज होता है कि हम बच्चों को पहले से समझा कर रखें कि ये शारीरिक बदलाव कैसे होता है और क्या क्या आता है। बता दें कि शरीर में बदलाव होना सामान्य बात है क्योंकि हर किशोर इससे गुजरता है। उन्हें इन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करें और उनकी सहायता करें। पौष्टिक आहार और व्यायाम के माध्यम से उन्हें स्वस्थ और फिट रहने में सक्षम बनाएं। आइए अब दूसरी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी लेते हैं, वो है भावनात्मक परिवर्तन। हार्मोन ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी आपके किशोर को प्रभावित करते हैं। किशोर अक्सर इस उम्र में उलझे हुए रहते हैं कि वह बच्चे के रूप में अपनी इच्छाओं को पूरा करे या बड़े होकर जो जिम्मेदारियां हैं उनको देखें। वह अत्यधिक भावनात्मक महसूस करते हैं। कुछ भी और सब कुछ उन्हें उत्साहित, खुश और गुस्सा दिला सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि इस उम्र में लड़के लड़कियों में मूड स्विंग्स आम तौर से देखे जाते हैं। शारीरिक परिवर्तनों से वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। इस समय हीनता और श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि भावनात्मक परिवर्तन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हमारा कर्तव्य है कि लड़के और लड़कियों को किशोर अवस्था में उनकी देखभाल करने के लिए उनकी मदद करें। उन्हें ये बताएं कि जो वे महसूस कर रहे हैं उसे महसूस करना ठीक है। उन्हें शारीरिक गतिविधि के रूप में व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करें। इस उम्र में हमें उनको बोलने देना चाहिए। बिना जज किए उनकी बात को सुने और जब वे इसके लिए तैयार ना हो तो उन्हें सलाह ना दें।

यौवन के अपने अनुभव को साझा करें या उन्हें एक बड़े भाई या बहन से बात करने दें जो उसी से गुजरा हो। यह इस बात पर जोर देगा कि जिस तरह से वह उस दौर से गुजरे हैं, वह भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। एक रचनात्मक गतिविधि में लिप्त होने से उन्हें अपनी भावनाओं को प्रसारित करने की में मदद मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं कि व्यवहारिक चेंजेस क्या होते हैं। भारी भावनाएं अवैधपूर्ण व्यवहार का कारण बन सकती है, जो आपके बच्चे के साथ साथ दूसरों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। किशोर अवस्था वह समय है जब बच्चे अपनी स्वतंत्रता का विकास और प्रयोग करते हैं। ये माता पिता के नियमों पर सवाल उठाते हैं और ये जो समस्या आती है जब किसी की जिंदगी में, तो आर्ग्यूमेंट बन जाता है माता पिता और बच्चों के बीच में। कभी कभार बच्चे जिद्दीपन भी दिखाते हैं कि वो अपनी बातों को लेकर स्टबन हो जाते हैं कि वो सही है और बाकी सब गलत है। मस्तिष्क में परिवर्तन बच्चों को मूडी, थका हुआ और किसी भी सिचुएशन को डील करने में मुश्किल बनाता है। बच्चों की ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल और फैशन की भावना भी बदल जाती है। ज्यादातर कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें स्वीकार नहीं होता है। सबसे परेशान करने वाली जो बात माँ बाप के जीवन में आती है इस दौरान, जब बच्चे गंदी संगत में जाना शुरू कर देते हैं और अपने लाइफस्टाइल को भी उसी तरह धारण कर लेते हैं। ये उम्र में बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चाहे अपने आप को बचाने के लिए, चाहे किसी से बचने के लिए। चलिए आप जानते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। किशोरावस्था में व्यवहार संबंधित समस्या माता पिता के लिए जीवन को मुश्किल बना सकती है, लेकिन याद रखें कि ये एक गुजरता हुआ चरण है और पूरी तरह से सामान्य है। अपने बच्चे का विश्वास हासिल करना महत्वपूर्ण है। उनसे बात करें और उन्हें सुनें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चों को जज ना करें और उनको आलोचना ना करें, क्योंकि इससे उनका व्यवहार बिगड़ सकता है। उन्हें बताएं कि आप उन्हें वैसे ही प्यार करते हैं जैसे कि आप उन्हें बचपन में करते थे। उन्हें खुद के प्रति सच्चा होने के लिए प्रोत्साहित करें और दूसरों से अच्छा व्यवहार रखने के लिए भी प्रोत्साहित करें। याद रखें कि आपका बच्चा अपनी भावनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है और उन्हें आपकी सहायता की जरूरत है, आवश्यकता है। उन्हें ये बताकर उनकी मदद करें कि जब आप उदास, क्रोधित, ईर्ष्या आदि महसूस करते हैं तो आप क्या करते हैं। यदि आप उन्हें बुरी संगत में गिरते हुए देखते हैं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा और बुरा दोनों समझाना चाहिए। अंत में ये भी याद रखना चाहिए कि बच्चों को आलोचना पसंद नहीं है, तो हम माता पिता का ये फर्ज है कि उनको प्यार से सही और गलत का फर्क समझाएं। अभी तक के लिए धन्यवाद। हम आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स और उनकी सॉल्यूशंस के लिए बात करेंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड स्वाति स्वागत करती हूं आपका आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम किशोरियों की कहानी सुनो मेरी जुवानी में। आज का हमारा ये कार्यक्रम किशोरियों के स्वास्थ्य के ऊपर बना है। आज हम हमारे कार्यक्रम में किशोरियों में एनीमिया से बचाव के ऊपर परिचर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि आजकल की ज्यादातर लड़कियां खाना नहीं चाहती हैं, पौष्टिक आहार नहीं लेना चाहती, दूध नहीं पीना चाहती हैं, और जैसे कि पौष्टिक आहार में हरी सब्जियां नहीं खाना चाहती, जिसकी वजह से वो कमजोर होती हैं और उनके अंदर खून की कमी होती है। आज हम चर्चा करने वाले उनके स्वास्थ्य के ऊपर, उसके लिए हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया हुआ है डॉक्टर को और दो किशोरियों को और एक आंगनवाड़ी की बहन जी को। तो आइए हम किशोरियों से बात करते हैं और महामारी के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो आप हमें अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम पूर्णिमा है।
0: कहाँ से आई हैं आप?
1: मैं आगापुर से आई हूँ।
0: क्या उम्र है आपकी?
1: मेरी 17 साल।
0: तो पूर्णिमा जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आप महामारी होना किस उम्र में शुरू हुई थी?
1: मुझे 13 साल की उम्र में शुरू हो गई थी
0: जी। तो उसके दौरान आपको क्या क्या समस्याएं होती हैं?
1: मुझे महामारी के शुरुआत दिनों में काफी तेज दर्द आता है और दर्द काफी होता है, भूख नहीं लगती और पूरे 7 दिनों तक रहता है, प्रभाव होते रहता है और खून ज्यादा आता है
0: जी। तो ये हमने जाना हमारी पहली किशोरी दोस्त पूर्णिमा से उनकी महामारी के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में, और अब हम हमारी दूसरी दोस्त से बात करते हैं, दूसरी किशोरी दोस्त से बात करते हैं। नमस्कार, आप हमें अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम गौरी है।
0: कहाँ से आई हैं आप?
2: विकास नगर से।
0: आपकी उम्र क्या होगी?
2: 16 साल।
0: आप किस उम्र में आपकी महामारी होना शुरू हुआ था?
2: 14 साल की उम्र में।
0: तो आपको उस टाइम में क्या क्या समस्याएं हुई थी? महामारी के दौरान आपको क्या क्या समस्या होती है?
2: मुझे महामारी के दिनों में पेट में काफी दर्द होता है, भूख कम लगती है, पैरों कमर में गर्दन में दर्द होता है। मुझे महामारी सिर्फ 3 दिन होती है और खून कम आता है
0: जी। धन्यवाद। ये हमने हमारी दो किशोरियों से महामारी के दौरान होने वाली समस्याओं को जाना। अब हम इसके ऊपर डॉक्टर रंजना से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे प्रोग्राम में किशोरियों की कहानी सुनो मेरी जुवानी। अब आप प्लीज हमें अपना नाम बताएं।
3: मेरा नाम रंजना है।
0: धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और जैसा कि आपने सुना हमारी किशोरियों से कि उन्हें महामारी के दिनों में रक्त ज्यादा प्रवाह होता है, तो क्या आप हमें बताएंगे कि महामारी के दिनों में किशोरियों को रक्त ज्यादा या कम प्रवाह क्यों होता है?
3: जी हाँ, आजकल ज्यादातर किशोरियों में ये समस्याएं पाई जाती हैं।
0: ऐसा क्यों होता है?
3: इस एनीमिया की वजह से होता है।
4: एनीमिया क्या है ये?
3: एनीमिया ये खून की कमी के दौरान होता है। एनीमिया एक अवस्था है जिसमें शरीर में बहने वाला खून का रंग हल्का हो जाता है और अंगों को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है
0: जी। तो हमारी किशोरी को कैसे पता चलेगा कि उन्हें एनीमिया है? क्या आप हमें इसके लक्षण बताएंगी?
3: जी हाँ, एनीमिया के निम्न लक्षण हैं: जीभ, नखूनों और आंख के सफेद भाग में प्राकृतिक गुलाबीपन समाप्त हो जाना और पीला पड़ जाना, और गर्भवती महिलाओं के जैसे चेहरे पर सूजन आ जाती है
0: जी। तो क्या आप हमें अब ये बताएंगे कि हमारी किशोरियाँ वो एनीमिया से कैसे बचाव करें, ऐसा क्या करें जिससे एनीमिया से उन्हें बचाव मिले?
3: इससे बचाव के लिए किशोरियों को महामारी के आरंभ होने के उपरांत 3 माह तक आवरण फॉलिक एसिड की गोलियां लेनी चाहिए तथा पोषक तत्व ग्रहण करने चाहिए, और अगर किसी किशोरियों को ज्यादा खून आता है तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने चाहिए
0: जी। आपने अभी हमें बताया कि पौष्टिक आहार ग्रहण करने चाहिए, तो पौष्टिक आहार जैसे अगर हमारी कोई किशोरी इसे लेने में सक्षम नहीं है, उनके पास वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो पौष्टिक आहार ग्रहण कर सके या फल या हरी सब्जियां खा सके, तो वो क्या करें?
3: तो वह चना, दाल, गुड़ आदि सेवन कर सकती हैं।
0: जी, तो आपने अभी अभी हमें बताया कि अगर किसी स्त्री को ज्यादा रक्त प्रवाह होते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाए, पर यदि कोई डॉक्टर के पास नहीं जा सकती है तो वो क्या करे?
3: जैसे कि आप सभी जानते हैं आंगनवाड़ी गांव क्षेत्र में उपलब्ध होती है, तो आंगनवाड़ी से सुविधा ले सकते हैं।
0: जी, डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर कोई किशोरी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती है तो वो अपने क्षेत्र में मौजूद आंगनबाड़ी संस्था में जाके वहाँ पे मौजूद सहायता ग्रहण कर सकती है और वहाँ से सूचना प्राप्त कर सकती है। तो हमारे श्रोताओं के दिमाग में अभी ये प्रश्न भी चल रहा होगा कि आंगनबाड़ी क्या होता है, तो इसके लिए हमने हमारे स्टूडियो में आंगनबाड़ी की एक बहन जी को बुलाया हुआ है। आइए हम उनसे इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार, आप हमें अपना नाम बताएं।
5: मेरा नाम पूजा है।
0: जी पूजा जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे प्रोग्राम में। अब आप हमें बताएं कि आंगनबाड़ी क्या है?
5: आंगनबाड़ी एक संस्था है जो हर क्षेत्र में उपलब्ध है।
0: जी, तो और इसके कार्य क्या होते हैं?
5: देखिए, हमारे कार्य दिन के हिसाब से बटे हुए होते हैं। हमारे कुछ कार्य मुख्य हैं, जैसे कि क्षेत्र की सभी किशोरी बालिकाओं का विवरण रखना, किशोरी समूह की मासिक बैठकों के दौरान एनीमिया तथा उसकी गंभीरता पर विशेष सत्र आयोजित करना, किशोरी बालिकाओं की जांच करके एनीमिक लक्षण वाली बालिकाओं को आयरन तथा फोलिक एसिड टैबलेट अवश्य उपलब्ध कराना।
0: जी, और अभी आपने शुरुआती में हमें बताया था कि आंगनबाड़ी के जो कार्य होते हैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से बटे हुए होते हैं, तो क्या आप हमें बताएंगे कि दिन और प्रतिदिन के हिसाब से इसके क्या क्या कार्य होते हैं?
5: आंगनबाड़ी के प्रतिदिन के कार्य सफाई करना, प्रार्थना करना, वार्तालाप करना, पूरक पोषाहार वितरण करना आदि, ये हमारे प्रतिदिन के कार्य हैं। और हमारे कुछ साप्ताहिक कार्य भी होते हैं, जैसे गर्भवती व घात्रिक माताओं को पोषाहार देना, किशोरी बालिकाओं को प्रति सप्ताह आयरन की गोलियां, आंगनवाड़ी केंद्र और केंद्र पर टीकाकरण का आयोजन। मासिक कार्य जैसे जन्म से 5 वर्ष के बच्चों का वजन लेना, पोषक एवं स्वास्थ्य दिवस का आयोजन करना, एक निर्धारित मासिक पोषण एवं स्वास्थ्य विषय पर चर्चा करना आदि। वार्षिक कार्य हैं किशोरी बालिका व महिलाओं की प्रतियोगिता आयोजित करवाना।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें ये सब जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोतागण हमारे डॉक्टर रंजना और पूजा जी की बातों पर सहमत करेंगे और उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और उनके द्वारा दी गई हर जानकारी पे अमल करेंगे। इसी के साथ हम हमारे प्रोग्राम का यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी जगह पर इसी समय पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।

के पास बहुत सा कार्यक्रम होता है। वह एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में जब जाते हैं तो वह खाने को और आराम को लेकर सुध-बुध खो जाते हैं। उन्हें खाने का और आराम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। अस्वस्थ खाना, जिसको हम जंक फूड कहते हैं, उनकी पोषण पे रोक बन सकता है। उनके शरीर के बारे में चेतना, क्योंकि वो अपने शरीर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उनका खाने पर ध्यान हट जाता है, खासकर लड़कियों का। तनाव से छोटे बच्चों में भूख ना लगना और नींद ना आना भी हो सकता है। अनहेल्दी खाने की आदतें और कम व्यायाम करना मोटापे का कारण बन सकती है। ये अक्सर तब होता है जब बच्चे बहुत सारा जंक फूड लेते हैं या बहुत सारा सोडा ड्रिंक्स लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी कैलोरीज इनटेक बहुत ज्यादा हो जाती है और वह मोटापे का शिकार हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है। माता पिता का मार्गदर्शन एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए बच्चों में स्वास्थ्य समस्याओं में मदद कर सकता है। उदाहरण के साथ अपने बच्चों को स्वस्थ भोजन खाने के लिए प्रेरित करें, सही व्यायाम करने का और समय पर सोने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें अपने भोजन के माध्यम से पोषण मिले, उन्हें संतुलित आहार दें, भावनात्मक और शारीरिक रूप से उनमें जो बदलाव आया है उनके साथ खड़े होकर उनकी मुश्किलों पर उनका साथ दें। आइए अब जानते हैं कि आखिरी समस्या क्या आती है इस उम्र में। ये समस्या का नाम है मनोवैज्ञानिक समस्या। यदि आपका बच्चा अत्यधिक मूडी है या बिल्कुल भी खा या सो नहीं रहा है, तो ये जरूरी है कि आप उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से संपर्क करें। इस उम्र में देखे जाने वाले मानसिक समस्याएं सबसे आम जो है वो एंजाइटी है और मूड डिसऑर्डर्स है। इस उम्र में सामाजिक भय आमतौर से देखा जाता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में डिप्रेशन डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होता है। बच्चों में आमतौर से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की समस्या भी देखी जा सकती है। आमतौर से एक और चीज भी बच्चों में देखी गई है इस उम्र में, जिसको हम बोलते हैं इन्फियोरिटी एंड सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स। बच्चों के रंग रूप ढंग से बच्चे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। इस उम्र में डिप्रेशन सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक समस्या पाई जाती है। चिंता एंड प्रेशर इस उम्र में एंजाइटी इश्यूज भी दे सकते हैं। आइए जानते हैं अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। मूड में चेंज आमतौर से देखा जाता है तो वो हमेशा सेम नहीं रहता है। कभी उनको गुस्सा आ सकता है, कभी वो बहुत खुश हो सकते हैं, तो हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ज्यादातर समय समस्याओं के बारे में बात करना या स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उनको डिप्रेशन से आप दूर लेकर जा सकते हो। यदि आपका बच्चा अत्यधिक मूडी है तो आप मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से संपर्क करें और उनकी मदद लें। अक्सर ये भी देखा गया है कि लड़का या लड़की केवल घर पे ही ना खुश होते हैं और बाहर ठीक होते हैं। इसके लिए आपको उनके टीचर्स या दोस्तों से जानना है, उनसे बात करनी है कि क्या उनका मूड स्विंग स्कूल में भी दिख रहा है कि सिर्फ घर में है। उनकी भावनाओं को दूर ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो चीजें और खराब हो सकती हैं। बच्चों के साथ जितना भी आप समय बताएं, उनके साथ बात करें और उनकी समस्याओं को सुनें। आप अपने बच्चों को शिक्षित करें कि सही गलत क्या है और उन्हें ये समझाएं कि आगे के जीवन में कैसे फैसले लिए जाते हैं
और नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे जाया जाता है। अभी तक के लिए इतना ही। हम अगले सेशन में फिर से किसी हेल्थ टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।

0: दादा रूपचंद रीड इंडिया ज्ञान केंद्र गांव मेहंदीपुर डाबोदा कला प्रस्तुत करता है कार्यक्रम फिटनेस मंत्र।
1: प्रोग्राम फिटनेस मंत्र सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा यानी रवि शाह का प्यार भरा नमस्कार। फिटनेस मंत्र में आज हम क्लैपिंग करेंगे, मतलब क्लैपिंग से होने वाले फायदों के बारे में बातें करेंगे। आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए हमारे गांव की जानी मानी डॉक्टर जिया दलाल और हिमांशी दलाल हमारे साथ हैं। वो 15 सालों से गांव में सेवार्थ हैं। क्लैपिंग करना या तालियां बजाना भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब हम किसी का उत्साह बढ़ाते हैं, जब हम किसी को बधाई देते हैं, तब हम क्लैपिंग करते हैं। भजनों कीर्तनों में भी देखने को मिलता है कि भगत भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर तालियां बजाता है, मतलब हम अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए तालियां बजाते हैं। तालियां केवल अपने उत्साह को जताने के लिए ही बजाई जाती हैं या इसमें भी कोई सेहत का फिटनेस मंत्र छुपा हुआ है? कई बार हम छोटे छोटे बच्चों को भी तालियां बजाने को कहते हैं। शायद हो सकता है उनके हाथों के व्यायाम के लिए, उनके हाथों की मजबूती के लिए या उनके मानसिक विकास के लिए। हो सकता है हम उनमें बातों की पकड़ विकसित करने के लिए भी ऐसा करते हैं। लेकिन क्या बड़ों पर भी इसका कोई असर पड़ता है? उनकी सेहत भी तालियां बजाने से प्रभावित होती है? जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: अरे आशा दीदी, ये कैसा पोस्टर है? आशा दीदी,
3: ये बच्चों को आत्मकृमि यानी कीड़े साफ करने की दवा खिलाई जाएगी।
4: क्या बच्चों के पेट में कीड़े?
3: हाँ, बच्चों के पेट में कीड़े होने से उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है।
5: कृमि संक्रमण की दवाई निशुल्क हर आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में उपलब्ध है।
6: कृमि से मुक्ति
7: बच्चों की शक्ति।
1: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे अपने कार्यक्रम फिटनेस मंत्रा में। हम बात कर रहे थे कि आखिर तालियां बजाने का क्या महत्व है, क्यों हम तालियां बजाते हैं, तालियां बजाने से हमारी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में जिया दलाल व हिमांशी दलाल हमारे साथ रहेंगी। ये दोनों बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं, हमारे गांव में बहुत से लोग इनसे इलाज कराते हैं। जिया जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आई।
8: जी धन्यवाद।
1: हिमांशी जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई?
9: जी बिल्कुल नहीं।
1: आप दोनों का हमारे अपने स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है। जिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तालियां बजाना आखिर विज्ञान की दृष्टि से है क्या?
8: देखिए रविशा, होता क्या है कि जब दोनों हाथों की हथेलियां और उंगलियां आपस में टकराती हैं तो इसे हम ताली बजाना कहते हैं, और जब ताली बजती हैं तो ध्वनि के साथ साथ ऊर्जा तरंगे हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले तो इन तरंगों से हमारे रक्त बहने की गति में तीव्रता आती है।
1: यानी कि तालियां बजाने का डायरेक्टली संबंध, जो रिलेशन हम बोलेंगे, वो हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, आप यही कहना चाहती हैं?
8: जी हाँ बिल्कुल।
1: और ये जो ऊर्जा तरंगे हैं, आपने बताया कि ये बहुत सी बीमारियों का निदान करने में हमारी मदद करती हैं। हिमांशी जी, क्या आप हमें बताएंगे कि ये जो तरंगे हैं हमारी किस तरीके से मदद करती हैं और क्या क्या ये हमारे शरीर से हटाने में मदद करती हैं एज अ बीमारियों के रूप में?
9: जी हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। इतना ही नहीं, इससे बहुत सी बीमारियों का निदान भी होता है। देखिए, ये ऊर्जा तरंगे बैड कोलेस्ट्रॉल घटाती है। इतना ही नहीं, हमारी आंखों की रोशनी तेज करती है। ये तरंगे हमारी बहुत ज्यादा फायदेमंद है।
1: यानी कि ये जो तरंगे उत्पन्न होती हैं तालियां बजाने से, मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना अच्छा काम कर सकती हैं। हम तो बिना किसी मतलब के ऐसे ही तालियां पीट देते थे, लेकिन अब आगे से जान के तालियां मैं तो जरूर पीटूंगी, और मेरे श्रोताओं आप भी जरूर इसको ट्राई करना। हिमांशी जी, क्या इससे और भी कुछ होता है?
9: जी हाँ, इससे हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में रुकावटें नहीं आती। इससे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, तनाव बालों का झड़ना, सिर दर्द आदि प्रॉब्लम में राहत मिलती है।
1: कहते हैं काम वही पूरा होता है जो नियमानुसार किया जाए। अगर हम ताली सही से नहीं बजाएंगे तो हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा। जिया जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तालियां बजाने के लिए भी कोई नियम कायदा होता है?
8: जी हाँ बिल्कुल। ताली बजाते समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना करना पड़ता। खास बातें क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे?
6: जी हाँ, ताली बजाते समय हमारे दोनों हाथ सामने की ओर होने चाहिए और बाजुएं ढीली होनी चाहिए। कई बार इसके लाभ से परिचित लोग इसे व्यायाम की तरह लेते हैं। वो तालियां बजाते समय हाथों पर सरसों या गोली का तेल लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे दो गुना फायदा मिलता है। और एक बात, महत्वपूर्ण बात और, कि तालियां बजाते समय हमारे पैरों में जूते या चप्पल होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऊर्जा की तरंगे हमारे शरीर से बाहर चली जाएंगी।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशी जी। क्या आप हमें बताएंगे कि जो तालियां हैं हम बजाते हैं, लेकिन कितना बजाएं, इसकी कोई लिमिट है? इसे जिया जी ने बताया कि एज अ व्यायाम लेना चाहिए हमें, तो इसे कितने समय हम कर सकते हैं और कितने समय तक करने से हमें लाभ मिलेगा?
9: विशेषज्ञों का मानना है कि कम से कम 500 बार बजाने से ही मिलता है।
1: 500 बार तालियां बजाना?
9: हाँ, इस काम को करने के लिए कम से कम 5 मिनट ही लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी।
1: जैसा कि श्रोताओं आपने सुना कि तालियां बजाने से बैड कोलेस्ट्रॉल और जो हमारी वेन्स में रुकावटें होती हैं, यानी रक्त का संचार ठीक से नहीं हो पाता है, वो भी होने लगता है, आईसाइट मजबूत होता है और बहुत सी बीमारियां जो अभी हमारी डॉक्टर हिमांशु जी ने बताया, आज से ही आप इसे अपनी एक्सरसाइज का हिस्सा बना लीजिए। वक्त हो चला है अलविदा कहने का, और एक बात और कहना चाहूंगी मैं कि कम से कम 5 मिनट में सेहत बनाने का इससे अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता। हमारी और आपकी मुलाकात तो हर रोज होती है, लेकिन अलग होता है हमारे फिटनेस मंत्र। अगली बार मैं फिर से आपसे बातें करूंगी लेकर नई नई जानकारियां। याद रखें, हेल्थ इज वेल्थ। आप स्वस्थ तो मेरा देश स्वस्थ। धन्यवाद।
0: कार्यक्रम फिटनेस मंत्र, इसका प्रस्तुतिकरण दादा रूपचंद री इंडिया ज्ञान केंद्र गांव मेहंदीपुर डाबोदा कला से हो रहा है।

नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट खेती में। मैं आपको लेकर आया हूं आज चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप यहां पर देखेंगे बैम्बू फार्मिंग। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रॉकेट की गति से तेजी से बढ़ने वाला बांस है जगेंडिस, और आप देख करके आपको लगेगा कि ये कहीं अमेजन के जंगलों में खड़े हुए इतने मोटे बांस है, लेकिन नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है, ये चंडीगढ़ है और ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। हम आपको बता दें कि बांस की करीब 1600 वैरायटी हैं पूरे हिंदुस्तान में, कुछ वैरायटी कहीं भी हो सकती हैं। और इस तरह से ये जगेंडिस जो है, यहां पर हमें पता लगा कि इसकी उम्र मात्र 3 महीने है, 3 महीने में भी ये इतना ऊंचा चला जाता है। उसके बाद जैसे ही वो ड्राई होता है, सूखता है, उससे पहले उसको काट लिया जाता है। उसके क्या उपयोग हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। बांस को लेकर जो सरकार ने जो अपना प्रोजेक्शन दिया था, उसे जो एक तरह से लकड़ी से घास में की कैटेगरी में उसको रखा, और बांस की खेती पर किसी तरह का प्रतिबंध, उसे काटने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध न हो, ये एक नियम बना दिया गया, तब से पूरे देश में बांस को प्रमोट किया जा रहा है।

0: हमारे साथ चंडीगढ़ में जो एनवायरमेंट सोशियोलॉजी के हेड हैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, आप यहां पर हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब से सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो बांस है उसका इस एनवायरमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद आगे चलेंगे।
1: देखिए, बांस एकमात्र ऐसा पौधा है जो आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। बाकी पौधों से अगर कंपेयर करें तो 135% तक ज्यादा ऑक्सीजन देता है।
0: क्या बात।
1: और ये बढ़ता इतनी तेजी से है कि आप जैसे देख रहे हैं कि 3-4 महीने में ये 90-100 फीट तक चला जाता है।
0: रॉकेट साइंस है।
1: रॉकेट है। और ये एक दिन में 3-3 फीट तक बढ़ सकता है। आमतौर पे 1 फीट तो रेगुलर बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन 3-4 फीट तक भी बढ़ सकते हैं। और इसमें 1600 के करीब वैरायटी है जो नॉर्थ इंडिया में है, वो अभी लगभग 30-35 वैरायटी अच्छे से चल रही है।
0: ये आपने सिर्फ यहाँ पर डैमो के लिए, यहाँ पर ही ये हम सब देख रहे हैं कि इसका एक्सपेंशन भी किया गया है?
1: हम सैकड़ों एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं, मैं अपने खेत में भी कर रहा हूँ, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े इलाकों में हम लगा रहे हैं।
0: एक्यूरेट कितने एकड़ में किया होगा?
1: लगभग 500 एकड़ में पहुंच चुका होगा।
0: क्या बात। कौन कौन से एरिया स्पेशली कवर किए हैं?
1: इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से हैं जो तेजी से लग रहे हैं, और हिमाचल में भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो लगा रहे हैं। और इसको लगाने के पीछे कारण ये रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी घोषित किया, जो बांस पहले पेड़ की कैटेगरी में था उसको अभी घास की कैटेगरी में लगा दिया है। इससे क्या हुआ कि जो नॉर्थ इंडिया के किसान थे उनको भी बांस में इंटरेस्ट जागा है। पहले हमें ये लगता था कि बांस को कल्टिवेट करना, इसको आगे बढ़ाना ये इलीगल है, तो अभी इसको लीगल कर दिया है सरकार ने, उसकी वजह से ये बहुत तेजी से अभी फैल रहा है। ये CNG, चारकोल, एथेनॉल इससे बनना चालू हो चुका है, और इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही सुपीरियर होता है, और ये बर्निंग के लिए काम आता है, जो बड़ी बड़ी भट्टियां चलाने के लिए, तो ये डीजल, पेट्रोल और कोयले का एक अच्छा रिप्लेसमेंट है।
0: बिल्कुल। जैसा कि यहाँ पर आपको पता है कि अब बांस लकड़ी नहीं है, वो घास की कैटेगरी में है, उसको उगाना, उसको काटना, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, और इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में भी किसानों ने इसको उगाना शुरू किया है। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस इलाके में भी करीब 500 एकड़ जमीन पर तो उनके अकेले के प्रयास से ये शुरू हो चुका है, और इसके अलावा भी किसान अलग अलग तरीकों से उसे पहले से ही कर रहे हैं। यहां पर जो वैरायटीज हैं, हम उन वैरायटीज को जानेंगे, उनकी खासियत क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस रॉकेट बैम्बू से।
1: जी, इसको नाम जाइगेंटस है और चाइनीज बैम्बू भी बोलते हैं, लेकिन चाइनीज बैम्बू थोड़ा डिफरेंट होता है। चाइनीज बैम्बू में क्या होता है, 5 साल तक वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और 5 साल के बाद वो तुरंत 90-100 फीट का चला जाएगा विद इन 3 महीने में, और ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन उसके जैसा ही है। ये जाइगेंटिस बोलते हैं इसको, और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत मोटा होता है। इसकी जो फर्नीचर बनने का, घर बनाने के लिए, पैलेट्स बनाने के लिए, और एक जो खूबसूरत फर्नीचर होता है उसके लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत महंगा भी बिकता है। अगर प्रोसेस करके बेचा जाए तो किसान कई गुना ज्यादा मुनाफा इससे कमा सकते हैं।
0: यहाँ पर हम देख रहे हैं इससे उतर उतर कर इस तरह के प्लेट्स गिर रही हैं, आप इनको नेचुरल प्लेट कह सकते हैं, इनका क्या उपयोग?
1: देखिए, इसके हजारों उपयोग हैं। ये इसका पैकिंग मटेरियल बनता है, गत्ता बनता है, पेपर बनता है, कटोरियां बनती हैं, चम्मच बनते हैं, डिस्पोजल आइटम बनते हैं, ये सीधे भी पैकिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं अभी, इसकी पैलेट्स भी बनती हैं, खाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, और ये हर पोरी पे एक गिरता है। तो किसान मान लो कि एक बैम्बो है उसके पास और 50 पोरियां, तो 50 ऐसे गत्ते उसके पास गिरने वाले हैं, तो ये एक्स्ट्रा इनकम है किसान की। और इसका मल्चिंग के लिए भी किसान अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं।
0: हम यहां से कुछ और वैरायटीज हैं उधर चलते हैं, और डॉक्टर साहब से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सामने हम एक और वैरायटी देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, और ये क्या उतनी ही तेजी से बढ़ता है जिस तेजी से जगंडिस बढ़ता है? जी डॉक्टर साहब।
1: देखिए, लगभग सारे बांस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और ये न्यूटन, टोल्डा और बालकोआ, ये 3-4 वैरायटी हैं जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चलती हैं, उन्हीं में से ये एक है। और इसका भी बढ़ने का जो रफ्तार है वो बहुत तेज होता है, और इसमें आप देखेंगे जैसे हमने जाइगेंटिस में देखा, एक ही पौधे में हजारों डंडे निकले हुए हैं, इसमें भी उसी तरीके से हजारों निकलते हैं, और इसको संभालना और इसको मैनेज करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, और आप जितना चाहें इसको जिस तरफ चाहें बढ़ा सकते हैं।
0: आमतौर पर हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया की जो मार्केट है, जिसमें बल्लियों की, जब आप बल्लियों की बात करते हैं, तो उसमें ये बांस जो है ज्यादा इस्तेमाल में आता
1: जी, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है। और ये भरा हुआ निग्गर बांस जिसको बोलते हैं वो है, वो खोल अंदर से खाली होता है, ये पूरी तरह भरा होता है, तो इसमें वजन जाता होता है। तो अगर किसान इसको पर किलो के हिसाब से या पर टन के हिसाब से बेचे तो इसमें मुनाफा ज्यादा होता है।
0: बांस की तीसरी वैरायटी आइए हमारे साथ, और ये आप पीछे देख रहे हैं ये कुछ पतला बांस है, इसका क्या नाम है, इसकी खासियत क्या है? जी डॉक्टर साहब ये भी बताइए।
1: इसको टुल्डा रॉक्स बोलते हैं, और इसकी खास बात यह है कि ये भी बहुत तेजी से बढ़ता है, और ये बंच में बढ़ने वाला बांस है, इसको जितना काटेंगे उतना ज्यादा फैलता रहेगा ये। और जिस मान लो कि आपको कच्चा बांस है उसमें 50% आपने तोड़ के अगर उसका अचार मुरब्बा बना लिया तो 50% डंडे और ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, तो तुरंत आपको पैसा मिल गया अचार मुरब्बा से, और जो 50% बाकी बचा वो आपके डंडे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के तैयार हो जाते हैं।
0: यहाँ पर बांस की उपयोगिता जो है वो बांस की वैरायटीज के साथ में बदलती रहती है, और इस उपयोगिता में आप कुछ और बांस देखेंगे। बांस खेतों की बाढ़ लगाने के भी काम में आता है, आपको बाढ़ लगाने में नेट पर अवेलेबल है कि इतने हजार रुपया लगेंगे पर एकड़, लेकिन यहाँ पर आप ये देखेंगे क्या शायद ये बाढ़ के लिए उपयोग आने वाला बांस है?
1: ये अर्बन हाउसेज में जो दीवारों के साथ में लगाते हैं, हैज बेम्बो बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ही खूबसूरत हैज बनाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको धूप नहीं मिल रही है तो बहुत कम बढ़
0: खेतों की भी हैज बना देता है।
1: खेतों की बना सकते हैं, लेकिन खेतों की हैज बनाना चाहिए आपको टुल्डा न्यूटन या बालकुआ से, और या एक डी स्टिक्टस बेम्बो है उसके पीछे लगा हुआ है उस तरीके से, क्योंकि वो पैसे ज्यादा देते हैं, ये केवल देखने के लिए काम आता है। इसके चटाई वगैरह मैट और ये सब चीजें बनती हैं। जो पीछे हमारा लगा हुआ है उसको बुद्धा वैली बोलते हैं, उसका इससे पीछे वाला उसका डेकोरेशन के लिए।
0: बुद्धा वैली ये है, हम बुद्धा वैली के पास में आते हैं, ये बुद्धा वैली है जो गांठदार बांस है जी, इसके बारे में आप बता रहे हैं।
1: इसको बैम्बूसा वल्गरिस या बुद्धा वैली बोलते हैं, इसमें गांठें होती हैं छोटी छोटी, और ये देखने में खूबसूरत लगता है, अर्बन हाउस होल्ड में भी लगाते हैं इसको। इसी तरीके से इसको व्हाइट बैम्बो भी बोलते हैं, पॉलीमार्फा बोलते हैं इसको वैसे अंग्रेजी में, तो ये व्हाइट कलर का रहता है, और इसकी जो यूज है वो फर्नीचर में सीढ़ियां बनाने के लिए।
0: इसकी खास बात ये है कि इसमें जो है स्मूथनेस ज्यादा है।
1: हाँ, स्मूथनेस ज्यादा है, इसमें फालतू जो कांटे होते हैं जो डंडियां होती है वो नहीं निकला होता है। टुल्डा में, न्यूटन में और बालकुआ में थोड़ी बहुत डंडियां निकलती हैं।
0: बांस की एक और वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसका बनता क्या है स्पेशली, ये भी हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब,
1: ये बैम्बूसा न्यूटन वॉल बोलते हैं इसको। वॉल इसलिए क्योंकि इसके कांटे आपस में फंस के और एक दीवार बना लेते हैं, जैसे किसान ने अपनी मेड पे चारों तरफ लगा दिए, तो उसका फायदा क्या होगा कि कोई जानवर इंसान अंदर नहीं आ पाएगा।
0: आप कह रहे हैं कि किसान को अगर अपनी मेड तैयार करनी है तो बैम्बूसा सबसे अच्छा है।
1: हाँ, इसको बोलते हैं लाइव फेंसिंग या लाइव वॉल, तो ये पशुओं को भी रोकता है, इंसानों को भी रोकता है, और इससे पैसे भी आते हैं। ये दुनिया की एकमात्र बाउंड्री है जो पैसे खर्च नहीं करवाती, पैसे देती रहती है।
0: और स्पेसिफिक यही वाला बांस है वो?
1: हाँ, यही वाला है, और इसके अलावा भी दूसरी वैरायटी लगा सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह आपकी जो बाउंड्री है उसको कवर कर लेगा।
0: तो क्या ये ऐसे फैलता नहीं है जैसे जगेंडिस वगैरह फैलता है इतना इस तरह से चूड़ा?
1: फैलते सारे हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जिस साइड से आपको नहीं फैलाना उसके साइड से ट्रैक्टर निकाल देंगे तो वो नहीं फैलेगा। और आप एक पीढ़ी लगाएगी इसको बांस को, मान लो कि मैं लगा रहा हूँ तो मेरी 3-4 पीढ़ियों के लिए मौज है। ये लगभग 60 से 70 साल चलता है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है।
0: मतलब ये घास जरूर है लेकिन ये घास 70 साल तक आपके लिए उपयोगी रहती है। यहाँ पर ये भी पेड़ है, ये इसका नाम क्या है, ये भी हैज की तरह दिखता है कुछ कुछ, लेकिन इसे भी समझेंगे।
1: हाँ, ये वाइल्ड बेम्बो हैं, और इनको भी न्यूटन के आसपास की ये वैरायटी हैं, जैसे वहां पे काट के भी हमने डाले हुए हैं। तो ये सारे बेम्बो ऐसे हैं जिनको कहीं पे भी लगाया जा सकता है, खारा पानी, मीठा पानी, अच्छी जमीन, खराब जमीन का भी इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बार लगाने के बाद में 70 साल तक ये नॉन स्टॉप चलते हैं।
0: राजस्थान में जैसलमेर जैसी जगहों पर जहां खारा पानी नीचे बहुत है वहां पर भी?
1: अभी BSF का एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के जो बाउंड्री है हमारी उसके साथ साथ में 1 किलोमीटर चौड़ाई और लगभग 200 किलोमीटर लंबाई में वो लगा रहे हैं बेम्बो। हाँ, वो दुनिया
0: स्पेशली राजस्थान के बॉर्डर पर,
1: बिल्कुल, ताकि उससे एक तो फेंसिंग हो जाए, एक डेजर्ट ना फैले, दूसरा जो हमारे BSF के जवान हैं उनके लिए भी आसान रहे डिमार्केशन करना, और उससे पैसा भी निकलता रहे, और जो BSF या बाकी जो आर्म फोर्सेज हैं उनको जो बांस के डंडे चाहिए जो हजारों लाखों की संख्या में चाहिए होते हैं वो भी उनको वहां से मिल जाएंगे, और वो एरिया भी हरा भरा होना चालू हो जाएगा।
0: मतलब आप ये जो बैम्बू है, जो बांस है, इसकी आप जो महिमा है उसको आप समझ सकते हैं। 1600 तरह की वैरायटीज हैं। यहाँ पर एक और वैरायटी है और इस तरह की वैरायटी जो नॉर्थ इंडिया में आसानी से हो सकती हैं, और मैंने पहले बताया ये जो घास है ये 60-70 साल तक चलेगी और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ ना कुछ और बहुत कुछ लाभ देती रहेगी। ये वैरायटी जो है बहुत स्मूथ दिख रही है, इसका क्या नाम है, ये किस उपयोग में आती है, ये भी हम देखेंगे।
1: ये व्हाइट बेम्बो है, इसको टूल्डा व्हाइट भी बोलते हैं, इसको और भी दो तीन नामों से जानते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके कोई कांटा नहीं है, बिल्कुल सीधा होता है ये, और इसकी जो हाइट है वो बढ़ती रहती है और ये चारों तरफ भी फैलता रहता है जितना हमें चाहिए, और ये बहुत ही नजदीक नजदीक ग्रो करते हैं, और इसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में, केन बनाने में, या फिर जो सजावटी सामान है उसमें, और पशुओं के लिए बाड़ा वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। वैसे बेम्बो की किसी भी वैरायटी को किसी भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनका स्पेसिफिक फीचर की वजह से किसी पर्टिकुलर काम में उनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर मान लो कि पशुओं के बाड़ा बनाना है या फिर आपको उससे सीएनजी निकालना है या फर्नीचर बनाना है, तो उसके हिसाब से वैरायटी में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। जैसे अभी हम ब्लैक बेम्बो देखेंगे, उसकी वैरायटी थोड़ी डिफरेंट है, हैमिल्टोनी बेमिल्टोनी करके तीन चार वैरायटी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बांस से लगभग 25,000 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो वो कैसे बनाएं और उसके बारे में हम बात कर सकते हैं।
0: यहाँ पीछे कम से कम 4-5 तरह के बांस के झुंड दिख रहे हैं, इनके नाम क्या हैं, इनकी खासियत क्या है, यहीं से एक बार डॉक्टर विनोद से हम जानने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ में फिर बांसों के अधिकतम उपयोग क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर साहब,
1: ये डंडा बांस है, लाठी बांस है, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं और हर क्षेत्र में इनके नाम बदल जाते हैं, साइंटिफिक नाम सेम रहते हैं, लेकिन जो डंडा बांस है उसकी खासियत, जैसे पुलिस वाले डंडे रखते हैं या फिर मच्छरदानी लगाने के लिए रखते हैं, या बायोमास में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हैमिल्टोनी बेमिल्टोनी और टूल्डा न्यूटन बालकोआ, इस तरीके से इनके एक पूरी फैमिली है, और इन फैमिली में दो तरीके के स्पेसिफिक बांस होते हैं, एक वो हैं जो दूर दूर फैलते हैं और एक वो हैं जो बिल्कुल बंच में एक साथ में निकलते हैं। तो इसमें दो मेजर वैरायटी हैं और ये कोई भी वैरायटी कहीं पे भी पैदा हो सकती है। जो ऐसी जगह है जहां पे बर्फ गिरती है वहां पे थोड़ा वैरायटी सोच के लगाना पड़ता है, और बहुत गर्म इलाकों में, उसके अलावा लगभग सभी वैरायटी सभी जगह पे चल जाती है।
0: बिल्कुल, यहाँ पर आखिर में मैं आपको ब्लैक बैम्बू की तरफ ले जाऊंगा और वहीं से फिर बांस का पूरी जो खासियत है, बांस की जो उपयोगिता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे।
1: इसको सिमेंसिस बोलते हैं। इस बांस की खास बात यह है कि ये पूरा बंच में उगता है और ये बहुत ही गहरा होता है। आप देखेंगे एक पौधा लगाया था ये, और इस एक पौधे के कई हजार बन चुके हैं।
0: ये भी वॉल बनाने के काम आ सकता है।
1: हाँ, वॉल बनाने के लिए भी काम आ सकता है, लेकिन इसका ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है फर्नीचर में, अगरबत्ती की काड़ी बनाने में, या जो आपके चॉपस्टिक्स हैं, ऐसी सीधी चीजें जिनको मार्केट वैल्यू ज्यादा है उनमें इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये वाले जो बेम्बो हैं, इसके खास बात ये है कि ये हजारों की संख्या में उग जाता है, और जिस साइड में इसको पानी मिलेगा, जिस साइड में इसको नमी मिलेगी, उस साइड में बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो ये भी जैसे व्हाइट बेम्बो का एक वैरायटी है। इसका जो खास बात है ब्लैक बेम्बो का, ये इसको दो वैरायटी हैं, हैमिल्टोनी बेमिल्टोनी, इसको ब्लैक बेम्बो भी बोलते हैं, और इसकी खास बात ये है कि इसके पत्ते चौड़े होते हैं, और इसकी जो बॉटनिकल जानकारी है वो हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पे। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल ब्लैक कलर है, और इस ब्लैक कलर की खास बात यह है कि जो ही वो ग्रीन उगता है वो ताजा प्लांट है, और जो ही वो काला हो जाता है
0: तो काट
1: ये
0: चाहिए।
1: काट लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसको बजा के देखते हैं कि अच्छा। जितना पुराना हो गया उतना अच्छा है। और इसको काटने के लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए कि वो इसको तीन जनरेशन में डिवाइड कर ले, कि एक तो दादा है, एक बाप है, और एक पोता है। तो जो दादा है, मतलब 3 साल पुराना जो हो गया, उसको काटेंगे तो वो पूरी तरह पका हुआ है, तो पिछले साल वाले अगले साल तैयार हो जाएंगे, अगले साल तैयार हो जाएंगे। तो साल में एक बार इसकी अच्छे से कटाई करते रहें।
0: तो हमेशा आपको दादा को
1: निकालता रहना है, क्योंकि उसकी उम्र हो गई है, उसको नहीं निकालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो बांस एक ऐसा पौधा है जो जबरदस्ती पैसा देता है। अगर आप नहीं भी लेंगे तो बोलेगा कि भाई काटो मेरे को, मेरे पास पैसे रखने का अभी टाइम नहीं है। तो किसान के लिए एक जबरदस्त चीज है ये, अपने आप बढ़ता रहता है, कोई देखभाल नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगता है, कोई बीमारी नहीं लगती है, तो ये किसान के लिए बहुत ही अच्छा एक चीज है।
0: शुरू में डॉक्टर साहब जब बांस की खेती करनी होती है किसी किसान को, उस समय तो कुछ समय के लिए उसका पानी, उसकी देखरेख, इस सब को थोड़ा सा समझना होता है।
1: इसमें ये घास की वैरायटी है, जैसे हरियाणा पंजाब राजस्थान में झुंडा एक उगता है, सरकंडा जिसको बोलते हैं, लगभग वही चीज है ये। ये इसकी हाइट और जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत है नहीं। जब स्टार्टिंग में लगाएंगे तो अच्छे से इसको सोच समझ के, इसके बारे में जान के लगाना चाहिए, और आपके लोकल मार्केट में किस चीज की डिमांड है उसके हिसाब से लगाना चाहिए, फिर किसान को बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी सरकार की तरफ से भी और गैर सरकारी बहुत सारी संस्थाएं इसका चारकोल, सीएनजी पैलेट्स और तमाम सारी दूसरी चीजें बनाना चालू कर चुकी हैं, तो बेचने के लिए वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी ऐसी वैरायटी लगाएं जो लोकल मार्केट में जल्दी बिक जाती है, जैसे टूल्डा, न्यूटन, हैमिल्टोनी, बेमिल्टोनी, जैगेंटिस, तो ये फटाफट बिकने वाली वैरायटी है। और इसके साथ साथ में जब पहला एक से दो साल मान लें किसान की, उसको बेसिक देखभाल करनी चाहिए।
0: एक एकड़ में कितने पौधे,
1: ये डिपेंड करता है कि फार्मर कितना जल्दी प्रोडक्शन चाहता है। तो कुछ फार्मर इसको 500 पौधे लगाते हैं, कुछ 600 लगाते हैं, कुछ 750, कुछ 1000 भी लगाते हैं। तो
0: आपका रिकमेंडेशन?
1: मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 600 से 750 के बीच में लगाने चाहिए, ताकि उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और आपके पास साइजेबल क्वांटिटी हो बेचने के लिए।
0: कुछ छोटी जोत के किसान इस देश में ज्यादा है, उनके लिए भी क्या ये लगाना जरूरी है, या फिर आप उनको यही सलाह देंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री पर लगाएं? तो
1: बाउंड्री से चालू करें, और जब उनको बाउंड्री से पैसे आने चालू हो जाएं तो वो अपनी बाकी सारी फसल से ज्यादा पैसा देना चालू करें।
0: कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़े,
1: बिल्कुल, जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए तो फिर अंदर भी लगाना चालू कर दें। और ये इसकी खास बात ये है कि मान लो कि कोई छोटा जोत का किसान है, मात्र एक एकड़ का किसान है, उसने खेत के चारों तरफ बैम्बो लगाया, बीच में एक पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर का सिस्टम है जिसको PQNK भी बोलते हैं, तो उस मॉडल पे उसने फल सब्जियां लगा दिया, बीच में थोड़ी बकरियां छोड़ दी या बाकी जानवर छोड़ दिए, तो उसके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बन जाएंगे और उसकी दीवार भी उसको पैसा देना चालू करेगी। आपने और कोई दीवार नहीं सुनी होगी जो पैसा देती हो, लेकिन बैम्बो की दीवार पैसा देती है। इसके साथ साथ
0: दीवार के लिए ब्लैक बैम्बू भी अच्छा है,
1: कोई भी बैम्बो लगा सकते हैं। आपके खेतों में पशु का नुकसान कितना है उसके हिसाब से सोचना चाहिए।
0: आपने 500 एकड़ जमीन में किसानों को बांस लगवाया है अभी तक, इसको लेकर के आप कितना उम्मीद से हैं?
1: यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा गया है कि पानी की भयंकर कमी होने वाली है हमारे देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, और हम पहले से ही ब्लैक जोन और डार्क जोन में, रेड जोन में आ चुके हैं, तो पानी आगे मिलेगा ही नहीं खेती करने के लिए। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जितना भी पानी अभी हमारे पास है उसका इस्तेमाल करते हुए बैम्बो लगाए जाए, और एग्रीकल्चर की टेक्निक को समझ के पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर पे खेती की जाए, तो कम से कम पानी में किसान जिंदा रहेगा। इसके साथ साथ में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बांस भी जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी जड़ें लगभग 50,000 लीटर पानी को पकड़ के रखती हैं, और हर बरसात में पानी ज्यादा पकड़ के रखती हैं और बाकी पानी जमीन में छोड़ती रहती हैं। जमीन को ये ऑर्गेनिक करते हैं, फर्टाइल करते हैं, इसके आप देख रहे हैं हर जगह पे पत्ते जो गिरे हुए हैं, ये पत्ते जमीन को ढक के उसको ज्यादा नेचुरल बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम जनरेट करता है, और इससे रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, आप जो सोच सकते हैं वो सब बनता है। तो किसान को ये एक एटीएम मशीन जैसा है, जैसे बकरी को किसान का एटीएम बोलते हैं, वैसे ही ये भी एटीएम है। जब मर्जी उसको काटा और 200-300-400 रुपए का एक डंडा बिक जाता है, तो उसकी इनकम का एक स्टेबल जरिया ये रहेगा। इसके बाद में आपने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत सारी सरकारों का और इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में जो हल्ला मचा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी बांस है, क्योंकि कार्बन सिंक करने में बांस का कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। ये हवा से धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सबको कंज्यूम करके अपने अंदर संभाल लेता है।
0: बाकी पौधों के अलावा ज्यादा CO2 को कंज्यूम करता है
1: जी, लगभग 130-135% ज्यादा लेता है ये, और उसका फायदा ये होता है कि हवा बहुत जल्दी साफ हो जाती है, और ये ऑक्सीजन भी ज्यादा छोड़ता है क्योंकि इसकी ग्रोथ भी अनलिमिटेड है।
0: कार्बन क्रेडिट को लेकर के आपने डॉक्टर साहब कुछ काम किया है? मान लिया एक एकड़ में अगर 750 पौधे किसी किसान ने लगाए हैं, तो वो उसका कैलकुलेशन की भाई ये इतना CO2 कंज्यूम कर लेगा, और जो फैक्ट्री चलाने वाला आदमी है वो उसे इतना पैसा उसको मिल सकता है, ठीक है, क्या कंपनसेशन है उसका?
1: इसके लिए अभी यूरोप में चालू हो चुका है और इंडिया में भी कुछ कंपनियों ने चालू किया है और लगभग $75 पर टन के हिसाब से कंपनियां इस पे स्पेंड करेंगी। ये कंपलसरी उनके लिए हो चुका है और जो इनकम है कार्बन क्रेडिट सेल करके वो काफी अच्छा होने वाला है किसान को। एक मोटा मोटा अंदाजा मैं दूं तो 10-15 हजार से लेके और 60-70 हजार पर एकड़ उसको मिल सकता है बिना कुछ और एक्स्ट्रा किए,
0: अकेले कार्बन क्रेडिट से।
1: और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल इसको लॉन्च किया है 15 अगस्त को कि कार्बन क्रेडिट हम सेल परचेज कर सकते हैं जैसे हम शेयर मार्केट में सेल परचेज करते हैं ठीक उसी तरीके से। तो ये कार्बन क्रेडिट का जो बिजनेस है इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ
0: से। मैं आपको बता दूं कि भारत में, जबकि उन्होंने डॉक्टर साहब का कहना है और हम भी मानते हैं कि कार्बन क्रेडिट जैसी बातें यूरोप में, पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में ज्यादा होती हैं, फिर भी भारत के अंदर 4,000 करोड़ रुपया जो है कार्बन क्रेडिट के मार्केट में वहां से वो उठाया गया है। तो एक बात यह है कि जमीन से लेकर के और पूरे इकोसिस्टम को कैसे डील करता है अकेला बांस, ये एक बात यह है। एक साथ में बहुत बड़ी बात है जिसको हर किसान समझना चाहता है क्योंकि वो अपने वॉलेट की तरफ देखता है। आपने बैंबू की इकोनॉमी को समझा है, एक एकड़ में अगर वो 750 पौधे लगाता है तो एक एकड़ से वो साल भर में कितना पैसा वो अपने घर में ला सकता है, इसका कुछ अंदाजा?
1: जी देखिए, लगभग 3 साल बाद में चौथी साल में कटना चालू हो जाता है और ये एक पौधा लगाया गया था, आपके सामने है, ये हजारों की संख्या में निकल चुके हैं। इसमें हम मान लें कि वो 10 से 15 डंडे ही काट पाएगा, तो अगर वो 10 डंडे भी काटेगा 7,500 डंडे उसके पास होते हैं। पर डंडा अगर 100 रुपए का भी बिक रहा है तो 7,500 रुपए का बनता है। तो आप 7,500 छोड़िए 6 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा उसको। तो उसकी इनकम ये स्टार्टिंग है और वो हर साल बढ़ता रहेगा और कार्बन क्रेडिट भी मिलने की संभावना अभी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा सब्सिडी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल बैम्बो मिशन के अंडर दे रही है, कुछ राज्यों में हम चालू करवाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो जल्दी ही सब जगह चालू होने की संभावना है। तो किसानों के लिए एक ये परमानेंट ATM जैसा है और वो लगाएंगे तो इससे मल्टीपल फायदे उठाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ज्यादातर किसान सब्जी की खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, सब्जी की खेती में एक एकड़ में वो लगभग 20,000 के जो बांस के डंडे होते हैं वो खरीद के लगाते हैं। तो अगर उसके खेत में 2 बांस भी लगे हुए हैं तो उसको अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं उससे पूरा कर लेगा। अगर उसने थोड़ा ज्यादा लगाया तो मान लो 20,000 रुपए वहां पे सेव कर रहा है, पशुओं के बाड़े बनाने पे सेव कर रहा है, बाउंड्री को अच्छे से बना लेता है ताकि आवारा पशु उसके खेत खराब नहीं करें, तो उसको एक कंटिन्यूअस इनकम का स्ट्रीम चालू हो जाता है। इसके बीच में वो पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन और तमाम सारे दूसरे कार्य भी कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को बढ़ई का काम आता है, इसका फर्नीचर बनाए, इसकी कटलरी बहुत अच्छी बनती है और डिस्पोजल आइटम बहुत अच्छे बनते हैं, तो अनलिमिटेड चीजें इसकी बना सकते हैं। और ये छोटे हथकरघा जो उद्योग होता है इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसका भी वो फायदा उठा सकता है और ज्यादा से ज्यादा वो स्वरोजगार की तरफ जाएगा। तो हर रोज उसके घर में बैठ के उसको अच्छे खासे पैसे आते रहेंगे जितना वो किसी नौकरी में नहीं कमा पाए।
0: कई बार बांस के ट्रीटमेंट को लेकर के बात होती है कि ट्रीटमेंट अगर उसका नहीं किया गया तो उसकी जो एज है वो कम रह जाएगी, वो उतना ज्यादा सक्सेस नहीं होगा।
1: इसमें बोरोक्स पाउडर वगैरह से इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो उस वजह से करनी पड़ती है। अगर आपको मान लो कि फर्नीचर बनाना है, घर बनाना है, तो आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज अगर कुछ और काम कर रहे हैं इसका, जैसे चारकोल, पैलेट, CNG, एथेनॉल, CD ये सब बना रहे हैं, तो कोई खास जरूरत है नहीं उसके करने की, क्योंकि बांस की जो लाइफ है आप उसको अगर हल्का सा वार्निश या पॉलिश करते रहे और हल्का सा ट्रीटमेंट भी कर लिया और उसका घर बना लिया तो वो सैकड़ों साल में चला जाता है, है ना। तो बांस एक ऐसी चीज है जो रिन्यूएबल है, आप इसका घर अगर टूट भी गया तो दोबारा से आप बनाएंगे तो आपको सारी चीजें बांस से दोबारा मिल जाएंगी और ये कार्बन नेगेटिव फुटप्रिंट वाला घर होगा। इसके साथ साथ में नेचुरल है, ब्रीदिंग हाउस होता है। आप नॉर्थ ईस्ट में अभी मेरे साथी जाके आए हैं, उन्होंने देखा कि बांस से खूबसूरत घर बना के अंदर से वो लिपाई कर देते हैं मिट्टी की।
0: नॉर्थ इंडिया में भी बांस से घर बनाने के कुछ मॉडल जो है, कुछ स्टार्टअप शुरू हुए हैं,
1: हाँ बहुत सारे हुए हैं, आप चंडीगढ़ में भी देखेंगे सेक्टर 15 में वो रेडी वगैरह लगा रहे हैं, पूरा बांस से डेकोरेशन किया है, बांस का ही बनाया है। फाइव स्टार होटलों में मैंने कई सारी जगह पे देखा उन्होंने बांस से बहुत अच्छा डेकोरेशन और जो रूफ टॉप है उसके ऊपर हट्स वगैरह बांस की बनाई है। इसके अलावा चंडीगढ़ के आसपास में बहुत सारे ऐसे जगह बनी हुई है जहाँ पे बांस से घर बने हुए हैं, और पटियाला में और भी कई सारी जगह पे लोगों ने फुल फ्लैज घर बनाए हुए हैं बांस के, और टूरिज्म इंडस्ट्री नेचुरोपैथी सेंटर कई बार खेतों में लोग हट्स बनाते हैं इसकी खूबसूरत वाली, तो इसकी दुनिया भर की चीजें ऑलरेडी बन चुकी हैं और बन रही हैं। पहले दिक्कत ये थी कि बांस अवेलेबल नहीं था, इसकी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत हाई है अगर आप नॉर्थ ईस्ट से लेके आएंगे तो उसकी वजह से इतना लोग ज्यादा एनकरेज नहीं फील कर रहे थे। अभी लोकल में जब हम बांस लगाएंगे तो इसकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो हजारों की संख्या में आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अगर सरकार भी सिग्नल दे चुकी है कि अब आपको बांस को काटने में, खरीदने में, ट्रांसपोर्ट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी जो है बैम्बू वॉल जो है वो राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पर वो करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, और सबसे खास बात यह है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को डील करता है, सबसे खास बात यह है कि ये पानी से डील करता है, अगर आपका स्लाइन वाटर है तो भी ये उस पानी में भी ये हो सकता है, आपके नमकीन पानी में भी ये हो सकता है, उसे बिल्कुल 7 PH का वाटर ही नहीं चाहिए, तो इसको लेकर के, और दूसरा उसकी जो इकोनॉमी है पर एकड़ है, बाउंड्री को लेकर के है, ये सब इतना ज्यादा है कि अगर आपने बांस को अपना मिशन बनाया तो ये बैम्बू मिशन केवल सरकार का मिशन नहीं बल्कि हर परिवार का मिशन भी बन सकता है। तो स्मार्ट खेती में मुझे इजाजत दीजिए, अगर आपने किसी तरह का कोई बीड़ा उठाया है, अगर आपने अपने यहां पर किसी तरह की स्मार्टनेस दिखाई है खेती में, तो आप हमें जरूर बताइए, हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहां की स्मार्ट खेती।

हमारे देश में कृषि पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। देश में कुल 6.50 लाख गांव हैं। इसमें 14 करोड़ से ज्यादा किसान रहते हैं और इनमें लगभग 70% से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में कृषि पर्यटन गांव में रहने वाले लोगों के लिए आय का अच्छा जरिया साबित हो सकता है। वैसे तो गांव की सुंदरता को रोजगार से जोड़ने के लिए कृषि पर्यटन का अच्छा जरिया साबित हो सकता है की शुरुआत की गई, लेकिन कृषि पर्यटन शुरू करने के पीछे और भी कई कारण समझ आते हैं। जैसे कृषि जोत का आकार छोटा होना, युवाओं का शहर की तरफ पलायन और जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में आने वाली परेशानियां, इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि पर्यटन खासकर उन शहरी लोगों के लिए अच्छा है जिनका बचपन आम तौर पर घर की चार दीवारी में ही बीत जाता है। वे अनाज, सब्जियां और दूध उत्पादन की प्रक्रिया को भी नहीं जानते। ऐसे लोगों को कृषि पर्यटन खेती के पारंपरिक तरीकों को देखने समझने का मौका देता है। कृषि पर्यटक स्थल पहाड़ी इलाकों में बनाए जा सकते हैं। अगर मैदानी इलाके में कृषि पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं, तो वहाँ की संस्कृति, पार्क और देसी तरीके से मिट्टी और बांस के बने आवास और खाने की सुविधा करनी चाहिए। कृषि पर्यटन स्थल बनाते समय कुछ जगहों को दृश्य स्थल में बदलकर वहाँ पर खेती के पुराने तरीकों और मशीनों का म्यूजियम बना सकते हैं। इसके अलावा कृषि पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों के लिए खेती, बागवानी और पशु उत्पादन से जुड़े कामों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पिछले काफी समय में लोगों की आय भी बढ़ी है और घूमने का शौक भी बढ़ा है। ऐसे में आने वाले समय में कृषि पर्यटन बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है, जो न सिर्फ प्रकृति की गोद में जाने का मौका देता है, बल्कि ग्रामीण आबादी को रोजगार भी देता है।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूँ इंदु सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियाँ। किसान न सिर्फ अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था करता है, बल्कि वो खेतों में जीतोड़ मेहनत करता है ताकि आपकी और हमारी थाली तक भी भोजन पहुंचता रहे। हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जो कि आज के दौर में नवाचार, नई तकनीक को अपनाकर कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। ये किसान कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और कृषि में नए नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे किसान भी हैं जो कि अपनी मेहनत के चलते आज अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। ये किसान इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी थाली तक जो भोजन पहुंचे वो रसायन मुक्त हो और पोषण से भरपूर हो। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से संबंध रखने वाले शिव कुमार से, जो कि मुख्य रूप से जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती के लिए जाने जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की।
1: गाजियाबाद भारत की राजधानी से सटे ऊपरी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसी जिले के गांव चोलस से आते हैं हमारे सफल किसान शिव कुमार, जो दूसरे किसानों के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने साधारण खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती

0: और पशु पालन दोनों को एक साथ चुना। शिव कुमार जैविक खेती से मिले फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वो कैसे, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग करता हूं और नेचुरल फार्मिंग भी तो मैं अब से करने लगा हूं। पहले मैं जैविक खेती करता था। 2005-06 से मैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के संपर्क में आया, जहां से ये केंचुए पालन मुझे सीखने को मिला और मैंने इनसे ट्रेनिंग लेकर के विधिवत तरीके से अपने यहां पर केंचुए पालन शुरू किया, जिससे मुझे केंचुए पालन के साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट भी मिलता था और वर्मी वास भी मिलता था। इससे क्या हुआ कि जब मैंने अपने खेतों में विधिवत तरीके से अप्लाई किया तो मैंने वर्मी कंपोस्ट से कुछ किसानों को बेचा भी कि इस विधि से हम जैविक पे आ सकते हैं। और जो हम जहरीली खेती कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं या ये केमिकल फार्मिंग से पेस्टिसाइड से जो हम खेत में लगा रहे हैं, इससे हम लोगों को निजात मिल सकता है, जिससे हम जहर मुक्त भोजन ले सकते हैं।
0: आज भले ही शिव कुमार अपने गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन रहे हों, लेकिन ये सब करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें मदद मिली गाजियाबाद के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से, जिनकी मदद और सही सलाह अपनाने के बाद शिव कुमार आज एक सफल किसान बनने की राह पर अग्रसर है। कैसे शिव कुमार और उनके जैसे हजारों लाखों किसान खेत की मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के उप निदेशक जगत सिंह।
2: कुमार जी, वर्ष करीब 2005 से ही एक इनोवेटर के रूप में उभरे हैं और वर्ष 2014 से ये राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से जुड़े। तो जब इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो इनसे मुझे पता चला कि इनके खेत की मिट्टी का पीएच हाई है और खेत में मोटे मोटे ग्रेवल्स हैं, माने कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर हैं, जो निशानी है ऊसर भूमि की या हाईली सैलाइन एल्किली की। तो उसी समय से हमने इनको जैविक खेती के परिपेक्ष में दो तीन चीजें बताई थी कि एक तो कंटिन्यू आपको ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करना है, पकी और पची हुई खाद का इस्तेमाल करना है, जहां जहां पे सैलाइन एल्कली के पैचेज हैं वहां पे गोबर डाल के और थोड़ा मीठा डाल के उसको गलाना है, और जहां पे ज्यादा खारी सॉइल है वहां की मिट्टी उठा के उसमें मीठी मिट्टी और गोबर डालना है। तो पहले बार में इन्होंने ये काम किया। दूसरी बार में हमारे केंद्र से कुछ कल्चर दिए जाते थे जो डिकम्पोज करने का काम करते थे। शिव कुमार जी ने उस कल्चर का अपने खेतों में प्रयोग किया और उस कल्चर के प्रयोग से जो खेत का जो सैलाइन एल्कली का जो नेचर था हाई पीएच, वो लो पीएच में कन्वर्ट हो गया और साथ ही साथ जो खेत में 1.5 से 2 इंच मोटे पत्थर थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए।
0: अब ये जैविक खेती है क्या जिससे हमारे सफल किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जैविक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है, जिसमें फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध कई तरह के खनिज पदार्थों के जरिए पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ऐसी खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने के साथ ही भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। जैविक खेती का मतलब एक ऐसी कृषि प्रणाली से है जिसमें फसलों के उत्पादन में रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती को लेकर शायद हमारे सफल किसान शिव कुमार ये जानते हैं कि जिस तरह जैविक खेती बीते कुछ समय में लोकप्रिय हुई है, उसी हिसाब से आने वाला समय जैविक खेती का ही है, इसलिए उन्होंने जैविक खेती को चुना।
1: जैविक हर किसी को चाहिए और नेचुरल उत्पाद हर किसी किसान को, हर किसी उसको चाहिए जिनको खाना है। तो उसको लेकर के जितना मेरे पास में उत्पाद था उससे डिमांड अत्यधिक थी मेरी, तो इसलिए मैं बंसी गोल्ड पहले से लगा रहा था। बंसी गोल्ड गेहूं मैंने एमपी वाला गेहूं लगाया था, उसका उत्पादन बहुत अच्छा आया और उसकी जो हमारी पैदावार थी वो थोड़ी सी इससे कम थी, लेकिन जो हमारा खाने में बहुत अच्छी गुणवत्ता देता था एचडी 226 उसका विकल्प एचडी 3226 वैरायटी करके मुझे राष्ट्रीय नेशनल सीड कारपोरेशन से प्राप्त हुई। केवल 6 क्विंटल बीज मुझे मिल पाया था, तो मैंने विधिवत तरीके से अपने खेत में नवम्बर में यानी 17-18 नवंबर को मैंने इसको अपने खेत के अंदर लगा दिया था और इसको मैंने विजय सुपर सीडर से की, उसका सीड ट्रीटमेंट मैंने अपने जीएल खाद से वही 1 चम्मच लेकर के और थोड़ा एक उसमें 1 लीटर पानी डाल करके और मैंने लगभग 3 क्विंटल गेहूं को पर्याप्त मात्रा में उससे बीज शोधन किया था और थोड़ा सा उसमें मैंने हल्का सा 250 ग्राम गुड़ घोल कर भी उसको मिला लिया था। उसका मैंने विधिवत तरीके से उसका उपचार किया और उपचार करने के बाद में जो मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट था तो मैंने अपने उर्वरक की फर्टिलाइजर की जगह वर्मी कंपोस्ट अगले टापे में भर करके पिछले में सीड डाल करके और मैंने अपने सुपर सीडर से इन खेतों की बिजाई कर दी है और यील्ड शायद इस बार बहुत अच्छा आएगा। सर मुझे रेट बहुत अच्छा मिल रहा है।
0: शिव कुमार का मानना है कि गांव में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा। तो वहीं सह फसली जैविक खेती पर सोने पर सुहागा का काम कर रही है जिससे शिव कुमार को 2 गुना लाभ हो रहा है। इस तरह सह फसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी खाद उर्वरक बीज और कटाई का खर्चा निकल आता है।
1: पहले जैसे हम खेती कर रहे थे अभी भी और अच्छे तरह से उसको खेती को कर रहे हैं, हम फसल चक्र में लेके आए हैं। एक तो फसल चक्र से फायदा क्या है कि जो हमारा ये जो वीड है ये वीड अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है फसल चक्र से। जैसे हमने अब तिलहन यानी तिलहन लगाया है तो तिलहन के बाद में फिर हमने इसके तिलहन के बाद में जैसे मक्का लगाया है, मक्का के बाद में हम और सब्जी वर्गीय यानी कद्दू वर्गीय फसल इस तरह से घिया तोरई ककड़ी खीरा ये इस तरह से ले रहे हैं और इससे जो है किसान भाई समझें कि इससे अत्यधिक बेनिफिट है। सब्जी से जो आदमी उस किसान को जो मिलता है उससे बहुत ज्यादा कुछ मिलता है।
0: इन फसलों में धान और गन्ना जैसी फसल मुख्य है। गन्ने के साथ सह फसली करने के एक नहीं कई फायदे हैं। जहां गन्ने की फसल को पकने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं वहीं 60 से 90 दिनों में दूसरी फसलें पक जाती हैं। इस दौरान बीच बीच में सब्जियों और दलहनी फसलों की खेती करने से 2 से 3 महीनों में दूसरी फसलों की उपज से पैसे मिल जाते हैं। अच्छी बात ये भी है कि ऐसा कर हमारे सफल किसान अपनी जैविक खेती से दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।
3: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे जैविक खेती से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान।
4: आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं फ्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होश खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा।
3: के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से संबंध रखने वाले शिव कुमार के बारे में जो कि जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती की बात करें तो वो आज के समय की मांग भी है। जी हाँ, हमने दशकों रसायन युक्त खाना खाया यानी ऐसे फसलें उगाई गई जिनमें रसायनों का उपयोग किया गया, इसकी वजह से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई और ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफी हानिकारक है। वहीं अगर हम जैविक खेती करें या फिर ऑर्गेनिक खेती करें तो उससे रसायनों को हम दूर कर सकते हैं, यानी ये रसायन मुक्त खेती होती है और इसीलिए ये हमारे लिए काफी लाभकारी भी है, पर्यावरण के अनुकूल भी है और मानव स्वास्थ्य पर भी इसका कोई विपरीत असर नहीं है। आइए देखते हैं जैविक खेती से जुड़ी कुछ खास बातें।
0: जैविक खेती को लेकर शिव कुमार का मानना है कि जैविक खेती पशुपालन के बिना मुश्किल है। शिव कुमार ने जैविक खेती को और बेहतर तरीके से करने के लिए ही पशुपालन करना शुरू किया था। किसान शिव कुमार अपने खेतों के लिए जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकम्पोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाद का इंतजाम भी पशुओं के अपशिष्ट से ही हो जाता है, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम।
1: ये हमारे पास एक गिर गाय है जो हमारी देसी नस्ल की गाय है और इसका दूध बड़ी गुणवत्ता युक्त है। देखने में आया है कि यदि हम कितनी भी पूरे दिन की मेहनत, हमने हार्डवर्क कितना भी परिश्रम किया हो, यदि एक गिलास दूध हमें शाम को मिल जाता है तो सुबह को पुनः हम कोई भी हार्डवर्क करने के लिए, पूरे दिन के कार्य करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और जैविक खेती ऑब्लिक प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती है, बगैर गाय के या बगैर पशुधन के हमारी खेती संभव नहीं है। तो हम ये गाय पालन भी कर रहे हैं और भैंस पालन भी कर रहे हैं। इसी के गोमूत्र से हम जो अपना इंसेक्ट है उसको भगाने का कार्य करते हैं और जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू है इसी से हम कर लेते हैं। गाय के गोबर से इसी की झिल्ली को उतार करके हम जो सफल खाद है और सरल खाद है उसका प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, ये हमारी पशुशाला है और गायों को और भैंसों को हम अलग अलग रखते हैं, और क्योंकि गाय की गुणवत्ता बहुत अत्यधिक होती है, भैंस की थोड़ी सी कम होती है, इसका दूध भी भारी होता है, और जैविक खेती बिना पशु के संभव नहीं है। तो इसीलिए किसान भाइयों, पशुपालन से भी हम लोगों को बहुत आमदनी होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हमारे घर में यानी भैंस या गाय होनी चाहिए, कई पशु होने चाहिए, 10 पशु किसान को कम से कम रखने चाहिए, जिसमें से 6 पशु कम से कम हर समय मिल्क पीरियड में होने चाहिए, तो किसान की आमदनी में इजाफा होगा।
0: जैविक खेती वाकई सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसके बावजूद किसानों के लिए एक दिक्कत जैविक फसल को बाजार में सही दामों पर बेचने की है, क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ी अधिक होने के चलते जैविक फसल दूसरे फल सब्जियों से थोड़ी महंगी होती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जैविक खेती से उपजी फसल आपको सेवन के लिए फायदेमंद कितनी है।
1: जैसे मैंने देखा है, सुना है कि जैविक के दाम बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो अच्छा है शुद्ध खाना हर कोई चाहता है। मैं तो इसको नॉर्मल रेट पर बेचना चाहता हूं, क्योंकि अब उत्पादन, पहले जब हम जैविक खेती में आए थे तो हमारा उत्पादन घटा था, अब हमारा उत्पादन पहले से भी अधिक होने लग गया है, और मैं इसको नॉर्मल रेट पर मैं चाहता हूं कि जो गरीब आदमी है वो भी इसको खाए, वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत है। ऐसा नहीं कि भाई जिनके पास सब कुछ है, दाता का दिया हो, कुदरत की मौज है, वही ऑर्गेनिक भोजन है, नेचुरल जो हमारा उत्पाद है उसको खरीद पाए। मेरी ये ललक होती है कि हम डोर टू डोर हर किसी के घर से, जो भी मतलब जिनको भी चाहिए या जिनको नहीं भी चाहिए उनको भी हम तो ऐसे ही दे के आ जाते हैं कि सर आप हमारे सैंपल है, इसको आप चेक करके देखिएगा, जिनको पसंद आता है सर दोबारा से हम लोगों को कॉल करते हैं, दोबारा से उनको दरवाजे खटखटाते हैं, सर जो भी आपने उत्पाद की डिमांड की थी वो उत्पाद आपके सामने है।
5: यहाँ पर जो हमारे बड़े भाई श्री शिव कुमार जी हैं, जो आजकल पूरे जनपद में जैविक का काम कर रहे हैं, इनके फार्म पर हम लोग आते रहते हैं, पूरी हमारी टीम आती रहती है, हमारे हेड भी आते रहते हैं। मैंने इनके वार्ता से ये यहाँ पर देखा है कि जो इनकी जो फार्म की जो मिट्टी थी पहले कुछ ऊसर टाइप की थी और कुछ रेहयुक्त थी, और इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से पूरा ऑर्गेनिक ट्रेनर लेकर के और इन्होंने अपने फार्म को आज बहुत अच्छा बना रखा है, और यहाँ पर इन्होंने काफी ऑर्गेनिक पर काम कर रखा है इन्होंने, जिसको हम देखते हैं इनके नेट ऑफ कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, और इन्होंने वर्मी वास के द्वारा इनकी बहुत अच्छी खेती होती है, और हम कृषि विज्ञान केंद्र साइंटिस्ट की टीम इनके खेत पर भ्रमण करती रहती है, और आज ये जनपद के अंदर बहुत अच्छा अपना जैविक उत्पाद कर रहे हैं। इनके पास में काफी मधुमक्खी पालन का भी इनके बॉक्स हैं, और इन पर इनके पास अपना जैविक का अपना नींबू भी है, काफी अच्छा इनका काम रहता है यहाँ पर, और मिट्टी की जांच के कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर अपने इस फार्म की कराते रहते हैं, और इनके साथ में पूरा जनपद क्या पूरा सभी विभाग का इनका इनका कोरिलेशन रहता है। मिस्टर शिव कुमार जी बहुत अच्छी जैविक पर काम कर रहे हैं, और समय समय पर हमारे जो जैविक केंद्र है गाजियाबाद में, वहां भी अपना प्रशिक्षण समय समय पर जैसे लेते रहते हैं, और इनको बहुत अच्छी जानकारी है जैविक के ऊपर, और ये बहुत ही अच्छा अपना काम कर रहे हैं।
6: जैविक खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होना बेहद जरूरी है, लेकिन इन दिनों रसायनों का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ चुका है। नतीजा ये हो रहा है कि इनसे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और खेत की मिट्टी भी कमजोर पड़ रही है। रासायनिक पदार्थ पानी के साथ मिलकर जमीन के नीचे स्थित पानी तक भी पहुँच रहे हैं और उसे भी प्रदूषित कर रहे हैं। यही वजह है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र।
3: इसी के साथ ही यहाँ वक्त है थोड़ी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान किस तरीके से इस दिशा में प्रयास कर रहा है। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सफल किसान। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान के बारे में। जी हाँ, इस संस्थान का मुख्य मकसद यही है कि किसानों को बताया जाए कि कैसे वो जैविक या फिर प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, इसके लाभ के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाए और साथ ही ये भी बताया जाए कि कैसे जैविक खेती को अपना कर भी वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बाजार में इसके अच्छे दाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
6: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र और इससे जुड़े वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किस तरह से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है और कैसे, ये केंद्र किसानों की मदद के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के निदेशक डॉक्टर जगनीश शर्मा। साथ ही संस्थान के उप निदेशक जगत सिंह बता रहे हैं कि कैसे किसान सही जानकारी के जरिए अपने खेत में बढ़िया उपज पा सकते हैं।
7: हमारा जो संस्थान है वो देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखतया यहाँ पर कार्यरत है और हमारे जो संस्थान है इसके चार मुख्य मैंडेट्स हैं, जो कार्य हैं हमारे। सबसे पहला जो है हमारा कार्य वो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है किसान भाइयों से लेके और सभी जितने भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन सब के साथ मिलके जो है हम कृषि के जितने भी जैविक कृषि के ट्रेनिंग्स हैं, हमारे जो प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं वो चलाते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग करना सभी स्टेक होल्डर्स की, ये हमारा सबसे पहला दायित्व है। दूसरा जो है हमारा प्रमाणीकरण है कि प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है देश में। आपको पता ही है कि दो प्रकार की प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएं हैं देश में। पहली तो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जो अपेडा एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उनके द्वारा चलाई जाती है, जो एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए कार्य करती है। हमारे यहाँ पर पीजीएस सेक्रेटरिएट है जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेशन ग्रुप बेस्ड सर्टिफिकेशन है और जैसे कि आपने नाम सुना पार्टिसिपेटरी, मतलब किसानों द्वारा खुद का निरीक्षण खुद करके और खुद ही अपना पीयर इंस्पेक्शंस पीयर अप्रेजल्स के द्वारा डिक्लेयर करना कि हाँ हम जो है केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं और हमारी जो है जैविक खेती हम जो है केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं और हमारी जो है जैविक खेती हम जैविक कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स और जो मानक हैं उनके आधार पर जैविक खेती कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो भी हमारा दूसरा दायित्व है। और तीसरा जो हमारा मैंडेट है वो है टेस्टिंग का। हमारे यहाँ पर हमारे संस्थान के साथ हमारे पांच और संस्थान हैं जिनका हम क्षेत्रीय संस्थान कहते हैं और जो रीजनल सेंटर हैं हमारे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर गाजियाबाद से शुरू करें यहाँ पर। तो ये जो संस्थान है यहाँ पर लेबोरेटरी भी है जो ऑर्गेनिक जो इनपुट्स हैं जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 है उसके तहत हमारी लैब्स जो हैं वो नोटिफाइड हैं और हमारी जो हेडक्वार्टर की लेबोरेटरी है वो तो NABL एक्रेडिटेड भी है। और इसके अलावा बेंगलोर की लेबोरेटरी है RCNF बेंगलोर और RCNF नागपुर है। हाँ, और इसके अलावा जो है हमारी RCNF भुवनेश्वर है, इसके अलावा हमारे RCNF मणिपुर है। तो हमारी पांच संस्थान हैं क्षेत्रीय जो ट्रेनिंग भी करते हैं टेस्टिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ में सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से चलाने में सहायक है।
2: जैविक खेती के लिए जो इम्पोर्टेंट इनपुट हैं, आज इसके ऊपर मैं चर्चा करेंगे। और जब जैविक खेती की बात करते हैं तो जैविक खेती में जो सॉइल हेल्थ या मृदा स्वास्थ्य जैविक खेती का मेरुदंड है।

0: मृदा स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है इसको इसका नर्वस सिस्टम कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैविक खेती में भूमि स्वास्थ्य की एक अहम भूमिका है और भूमि स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है या ऑर्गेनिक मैटर है ये एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि पिछले 60-70 सालों में भारत वर्ष की मृदाओं में जो मृदा कार्बन जो कंटेंट है, जैसे जैसे फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन बढ़ा है वैसे ही वैसे जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है या मृदा में जो जैवांश पदार्थ है इसमें कमी आने लगी है। तो कमी आने की वजह से जो फर्टिलाइजर का रेस्पॉन्स भी कम होने लगा है। और जहां तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ऑर्गेनिक कार्बन का या ऑर्गेनिक मैटर का इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। हमारे देश में ऑन एन एवरेज जो सॉइल का जैवांश कार्बन स्तर है वो 0.2 से 0.3 के बीच है। और एक सफल जैविक खेती करने के लिए हमारी जमीनों का जो ऑर्गेनिक कार्बन है या जैवांश कार्बन है वो करीब करीब 0.5 से तो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। ये कन्वेंशनल फार्मिंग के लिए है। और अगर बढ़िया आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना है तो हमारी खेती का जो जैवांश कार्बन है वो करीब करीब 0.7 के ऊपर होना चाहिए, 0.7 से लेके 1.2 के बीच होना चाहिए। यदि इतना हमारा जैवांश कार्बन है तो हमारी जैविक खेती जो है उसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
1: कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर शुरू की गई खेती के बाद शिव कुमार की आमदनी साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2017 के बाद से जब उन्होंने अपने खर्च और मुनाफे का लेखा जोखा रखना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगातार घट रही है जबकि मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है।
2: किसान भाइयों, पहले से तो हिसाब किताब नहीं लगाया था लेकिन 2017 से मैं थोड़ा अपने खेतीबाड़ी के बारे में लेखा जोखा रखता हूँ। उससे पहले क्या था कि मेरा खर्चा आ जाता लगभग 4-4.5 लाख खर्चा आ जाता था मेरे पास में। अपनी तो केवल 10 एकड़ जमीन है लेकिन 5-6 एकड़ जमीन में लीज पे लेकर के उसमें कार्य करता था, अभी भी करता हूँ। तो उससे क्या होता था कि मेरा जो है लगभग 4-4.5 लाख रुपए उसमें खर्चा आ जाता था और लगभग 5-6 लाख रुपए मुझको टोटल आमदनी होती थी। तो जिसमें शुद्ध बचत मुझको सालाना मुश्किल से 1-1.5 लाख मुश्किल से निकल आती थी और जिसमें परिवार का भरण पोषण पालन बड़ा मुश्किल होता था। 2017 से जैसे मैं अब हिसाब किताब लगाने लगा हूँ तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया था तो मेरी जो बिक्री थी वो मेरी लगभग 7.5 लाख के आसपास में पहुंची थी और खर्चा मेरा वही था लगभग 4-4.25 के समथिंग में हो गया था। उसके बाद में मैंने 2018-19 में डाटा निकाला था तो तब मेरी आमदनी बढ़ करके लगभग 8.5-9 लाख हो गई थी और मेरा जो खर्चा है वो थोड़ा सा और डाउन चला गया था, लगभग मैं 2.25 लाख के आसपास में चला गया था। और 2021-22 के सेशन में भी मैंने अपने हिसाब का कैलकुलेशन किया है तो उसी स्थिति में देखने में आया तो मेरी आमदनी लगभग 11-11.5 लाख के करीब पहुंच गई और मेरा जो खर्चा है वो 1.25 लाख मुश्किल से रह गया। और अभी का जो हिसाब है, अभी का हिसाब मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है लेकिन मुझे परिपूर्ण विश्वास है कि मेरी जो आमदनी है वो 23-24 लाख पार कर गई है और मेरी जो खर्चा है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मुश्किल से 60-65 हजार रुपए प्रति वार्षिक होगी। तो इस तरह से मेरी आमदनी में इजाफा हुआ और बहुत खुशहाली से मैं खेती कर रहा हूँ।
1: शिव कुमार आज के समय में नजीर बन दूसरे किसानों को प्रेरित तो कर ही रहे हैं, खुद भी अच्छा मुनाफा कमाकर गांव के कई और परिवारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो वहीं जैविक खेती को अपनाकर समाज के कल्याण के लिए भी एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमारे सफल किसान शिव कुमार आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं।
3: आज का सफल किसान जिसमें आपने जाना कि कैसे ऑर्गेनिक खेती आज के समय की मांग भी है और इस क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत तरह के अवसर भी हैं। बस आवश्यकता है कि आप इसे करने की ठाने और शुरुआती चुनौतियों से डरे नहीं, जैसा कि शिव कुमार जी ने किया। आशा करते हैं कि उनके जीवन से आप कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। आज के सफल किसान में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम सफल किसान लेकर आए, किसी किसान की कहानी को कार्यक्रम में दिखाएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। हम ऐसे किसानों की कहानियां जानना चाहते हैं जिन्हें आप हमें बताएं, ताकि उन्हें भी एक मंच मिल सके। सफल किसान में सफलता की कुछ और कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।

0: नहीं, गली में कूड़ा है, पार्कों में कचरा, दुनिया हमारी अब स्वर्ग नहीं। ए भाई
1: जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों की बीमारियों का कारण आपके मोहल्ले का कूड़ा भी हो सकता है? पर यह कूड़ा आता कहाँ से है? अरे जनाब, आप ही के तो घर से। आपने कूड़े को निकाला, भरा और फेंक दिया, और बदले में आपको क्या मिला? बदबूदार नालियाँ, मक्खियाँ जो लाती हैं बीमारियाँ। आपका बच्चा घर से बाहर जाए और बीमारियाँ घर लाए।
2: तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। कर सकते हैं कूड़े का विभाजन। कूड़े को दो तरह के थैले में बांट लें। एक में गीला कूड़ा, जैसे कि फल व सब्जियों के छिलके, बचा खाना, और दूसरे थैले में सूखा कूड़ा, जैसे कि पेपर और प्लास्टिक डाल दें।
1: सरकार ने आपके मोहल्ले में दो प्रकार के कूड़ेदान रखे हैं, हरा गीले कूड़े के लिए और नीला सूखे कूड़े के लिए। यदि आप कूड़ा अलग अलग करके इसमें डाल देते हैं तो गीले कूड़े में खाद बनाई जा सकती है और सूखे कूड़े को तैयार कर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है।
2: इससे दूर रहेंगी बीमारियां और सुंदर होगा वातावरण। तो अब जब आपका बच्चा घर से बाहर जाए तो बीमारी घर में लेकर ना आए।
1: याद रखिए,
3: कूड़ा निवारण स्वस्थ जिंदगी।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: റീഡ് ഇന്ത്യ മാനെ റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീൺ ശിക്ഷ എവം വികാസ് ഹമാരാ കാം തോ ലൈബ്രേരീസ് ബനാന ഹൈ ഓർ ആജ് കെ സമയ മേ ജോ ചർച്ച ഹോ രഹി ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഖാലി കിതാബ് പഢ്നെ കെ ലിയേ നഹീ ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഏക ഐസീ ജഗഹ ഹൈ ജാ ഹം ബഹുത് കുഛ അപ്നെ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ ഓർ സമുദായ കെ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ മാനെ പഢ്െ തോ ഹം അപ്നെ ബച്ചോ കോ ഭി പഢായെ ഹം ബഡോ കോ ഭി പഢായെ ഹം ഛോട്ടെ ബച്ചോ കെ സാഥ് ഭി ആക്ടിവിറ്റീസ് കരെ കി കിതാബ് ക്യാ ചീസ് ഹൈ ഓർ കിതാബ് ഉൻകെ ജീവൻ മേ ക്യാ മഹത്വ രഖ്തി ഹൈ ബട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജർണി ഇസ് സമയ കെ സാഥ് സാഥ് ഹംനെ യേ സോചാ കി ഹമേ മഹിലാഓ കെ ലിയേ ഭി കുഛ കാര്യക്രമ കർനെ ചാഹിയെ അഗർ മഹില അപ്നെ ആപ് കോ നിഖാർ സക്തി ഹൈ അപ്നെ ആപ് കോ സക്ഷം ബനാ സക്തി ഹൈ ഓർ ജിമ്മേദാരി അപ്നെ ഷോൾഡേഴ്സ് പേ ലേ സക്തി ഹൈ കി അപ്നെ ബച്ചോ കാ വികാസ് കൈസെ കർനാ ഹൈ വോ ഭി റീഡ് ഇന്ത്യ അപ്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈബ്രേരീസ് ഓർ റിസോഴ്സ് സെന്റേഴ്സ് മേ കർതി ഹൈ ഹംനെ ഔരതോ കെ ലിയേ ബഹുത് ഹി അച്ഛേ അച്ഛേ കാര്യക്രമ കിയേ ജൈസെ സിലായി സിഖാനാ ബ്യൂട്ടി പാർലർ കി ട്രേനിംഗ് ദേനാ ഓർ ഭി ബഹുത് സാരി ഐസി ട്രേനിംഗ്സ് ഹൈ ജോ ഹം അപ്നെ സെന്റേഴ്സ് മേ കർതെ ഹൈ പർ ഉസ്കാ जो आउटकम है जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों वह महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: हेलो, मैं पूजा शाबाद मोहम्मदपुर से। मैं रीड इंडिया से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने रीड इंडिया से सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर सीखा, उसके बाद मैंने टीचर ट्रेनिंग की, फिर मैंने सिलाई की। सिलाई करके फिर काफ़ी टाइम तक मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहने लगी। लेकिन मेरे एक दिन एक लेडीज़ मेरे पास आई कि बेटा मेरे को सूट सिलवाने हैं, अगर यहाँ पे कोई आसपास में सूट सिलता है तो मुझे बता दो। वो भी फर्स्ट टाइम मेरे घर आई थी, वो भी यहाँ पे नहीं जानती थी किसी को, क्योंकि वो यहाँ पे किराए पे रहने वाली थी। उसने वो मेरे पास आई, फिर मैंने उनको बोला कि आंटी मैं सिल सकती हूँ। बोले कि बेटा आप सिलना जानते हो? मैं बोले कि हाँ आंटी मैं सिल सकती हूँ, मेरे को सिलाई आती है। उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे सूट सिलवाया, उन्होंने जो सूट सिलवाया था उन्होंने मेरे को सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया था, और मैंने उनको 2 घंटे में सूट तैयार करके उनके पास फ़ोन किया कि आंटी आपका सूट कम्प्लीट है, आप ले जा सकते हो। तो वो मेरे घर आई, उन्होंने सूट देखा, उन्होंने सूट मेरा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि बेटा आप ऐसे ही सूट सिलते रहोगे तो हम आपसे और सिलवाएंगे। नेक्स्ट डे आई, फिर उन्होंने मेरे से एक ब्लाउज सिलवाया, मैंने उनका ब्लाउज सिलवाया, उन्हें वो भी अच्छा लगा कि बोला कि बेटा तुमने फिटिंग बहुत अच्छी मतलब बिठा रखी है कि सूट की और ब्लाउज की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बोले कि थैंक यू आंटी। बोले कि नहीं बेटा आप सिलते रहो, हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे ही सिलवाएंगे। मैंने कहा ठीक है आंटी आपकी मर्जी है। उस टाइम मेरे पास हाथ की मशीन थी, वैसी पैर वाली मशीन नहीं थी। धीरे धीरे करके मैंने सिलाई की, सिलाई करके अपना पैसा जोड़ा, इकट्ठा किया। सबसे पहले मैंने अपनी एक गुल्लक खरीदी 5 रुपए वाली, मैंने उस गुल्लक में जितना मैं सिलाई करती थी सारा पैसा उस गुल्लक में डालती रहती थी। मैक्सिमम मुझे 1 साल हो गया था जब मैंने अपनी गुल्लक को फोड़ा, तो मेरे गुल्लक में मैक्सिमम 3,000 रुपए निकले। मैं यहाँ से घर से निकली, मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे सिलाई मशीन के पैर लेके आने हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। फिर अपनी सास को बोला, वो बोली कि क्या करेगी आंखें खराब होती हैं। फिर मैंने पापा को बोला, ससुर को, उन्होंने कहा बेटा नहीं कोई सिलाई विलाई नहीं करनी है, अपने घर में रहो, बच्चों को देखभाल करो, उनको खाना पीना खिलाओ। किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। एक दिन मैं खुद पालम गई, फिर मैं वहां से अपनी मशीन के पैर लेके आई। आके मैंने घर पे एक मशीन वाले को बुलाया, उन्होंने मेरी मशीन उस पे रखी, उसको स्टार्ट किया। उसके बाद मैं अपनी सिलाई करना शुरू किया। सब मेरे को टोकते थे कि बेटा नहीं तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, मत सिल, और फिर यही है कि तेरे को दिखना बंद हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा। मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं सिलूंगी, मेरा मन करता है कि मैं सिलाई करूं। उस दिन के बाद मेरे को इतना प्राउड हुआ कि मैं खुद सिलाई करती हूं, और आज है मेरे अंदर इतना प्राउड कि मैं बाहर के सिलती हूं और अपना सारा पैसा इकट्ठा करती हूं। मेरे बच्चों को जो भी जरूरत होती है, जैसे कि हस्बैंड कोई हेल्प नहीं करता, उनको किसी भी हेल्प बुक की ज़रूरत होती है, किसी भी पेन की, पेंसिल की, मैं सारी चीज़ें अफोर्ड करती हूँ उनके लिए। हस्बैंड तो सुबह के ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं, वो मेरे को कोई खर्चा भी नहीं देके जाते, लेकिन जब भी पीछे से बच्चे बीमार होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि सास ससुर को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं एक बार भी ये नहीं सोचती कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं उनके लिए भी हर टाइम तैयार रहती हूँ, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे बीमारी के लिए कोई पैसा हुआ, या खाने पीने की चीज़ हुई, या कि कोई भी चीज़ पसंद आए कि हमें ये सूट चाहिए, मैं वो सारी चीज़ें दिलाती हूँ। लेकिन एक बार भी उनको अब तक ये नहीं है कि हाँ वो हमारे लिए इतना कर रही है कि हम उसको सपोर्ट करें। रीड इंडिया से फिर मैं दोबारा से जुड़ी हूँ, क्योंकि रीड इंडिया में कंप्यूटर और सिलाई और ब्लॉक पेंटिंग और पार्लर का कोर्स किया जाता है। अब मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ और मैंने बेसिक कंप्यूटर भी सीख लिया है, और पार्लर का कोर्स करने के बाद अब मैं घर पे जाके मेरी 2 देवरानियाँ हैं उन पर ट्राई करती हूँ, मेरी सास है उन पर ट्राई करती हूँ, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड है, मेरे को अपने मतलब खुद मेरे हाथ से खुद अपनी हेड मसाज करवाते हैं, फुट मसाज करवाते हैं। वो बहुत बोलते हैं कि मुझे बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन अब तक उन्हें भी मेरा 1% भी सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैं निकली हूँ घर से और मैं सीख रही हूँ कि मैं भी कुछ करूं और मेरी भी एक अलग पहचान हो। जब फर्स्ट टाइम मैंने सिलाई की थी, जो मेरे पास सबसे पहले पैसा आया था, सबसे पहले तो मैंने भगवान के मंदिर में जाके उनका प्रसाद बांटा था, और सबसे पहले मैंने अपना एक सूट लिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं रीड इंडिया से भी जुड़ी हूँ, उससे मैंने सिलाई भी सीखी है, उस बेस पे मैं अपने पैरों पे स्टैंड हुई हूँ। तो मैं थैंक यू करती हूँ पूरी रीड इंडिया के टीचर्स का कि थैंक यू आप सबने मेरे को इतना सपोर्ट किया और मुझे इस काबिल बनाया कि ठीक है मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन घर में एक पूरी फैमिली के सामने मैं स्टैंड हूँ कि कल को अगर मेरे पर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो मैं किसी की तरफ देखूंगी नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ अपना। तो थैंक यू।

0: प्रयासों की बुनाई, सम्मान की कमाई। खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। हजारों की उम्मीद और उनकी जीविका के मार्गदर्शक हैं खेमराज सुंदरियाल, जिन्हें सब स्नेहवश गुरुजी कहते हैं। खेमराज जी का जन्म 1943 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया।
1: मैं जब पढ़ रहा था तो एक दिन संत कबीर जी के बारे में जाना, उनका बड़ा नाम है और हम इतनी किताबें पढ़ती हैं उनके, तो मैं तो उन्हीं के जैसा काम सीखूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं बुनकर बनूंगा।
0: हैंडलूम टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने के बाद खेमराज सुंदरियाल जी की काम की तलाश ने उन्हें यह बता दिया कि रोजगार के लिए उन्हें दिल्ली जाना ही होगा। लेकिन खेमराज जी के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक दिन उनके चचेरे भाई को चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। उनकी देखभाल के लिए इन्हें भी साथ भेजा गया और यही सफर खेमराज जी को पहली बार दिल्ली ले आया। दिल्ली क्लॉथ मिल में काम करने के बाद खेमराज सुंदरियाल बुनकर सहायता केंद्र में कार्यरत हो गए। 9 से 10 साल गुजर गए। काशी के बुनकर सेवा केंद्र में खेमराज जी की मुलाकात एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट एसवी निकम जी से हुई। उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें केंद्र से लौटने के बाद आर्टिस्ट लोगों के लिए टैपेस्ट्री बनाने की सलाह दी।
1: उन्होंने मुझे 175 रुपए दिए लूम खरीदने के लिए।
0: इसी दौरान खेमराज सुंदरियाल बुनकर सेवा केंद्र की पानीपत शाखा में आ गए और जल्द ही देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों के लिए टैपेस्ट्री बुनने लगे। जिस लड़के के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, उनका काम उन्हें देश विदेश ले गया। जामदानी तकनीक पर खेमराज जी की पकड़ देखते ही बनती थी और साथ ही उन्होंने हत्ता तकनीक और पॉलिएस्टर की बुनाई भी शुरू कर दी। अपनी इसी लगन से उन्होंने पानीपत की दरी और खेस को एक बार फिर से प्रसिद्ध कर दिया। रिटायर होने के बाद खेमराज जी ने विष्णु हैंडलूम कोऑपरेटिव शुरू किया, जिसमें वो अब तक 10,000 से ज्यादा युवाओं को काम सिखा चुके हैं। भारत के कई प्रख्यात संस्थानों के छात्र भी खेमराज जी से बुनाई की कला सीखने आते हैं।
1: इस कला ने मुझे मान सम्मान और पहचान दिलाई। अब लगता है मैंने इस कला को नहीं, इस कला ने मुझे अपना है।
0: खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।
2: भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी, लेकिन शायद कम ही लोगों को मालूम होगा कि 1857 से करीब 77 बरस पहले भारत की एक रानी थी, जिसके युद्ध कौशल और बहादुरी ने न सिर्फ अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि उनको परास्त कर कई बरसों तक राज किया। हम बात कर रहे हैं शिवगंगा की रानी वेलु नाचियार की, जिनको आज भी तमिलनाडु के लोग वीर मंगई या बहादुर रानी के नाम से जानते हैं। 3 जनवरी 1730 तमिलनाडु के रामनाथपुरम के राजा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा और रानी ने प्यार से इस कन्या का नाम वेलु रखा। बचपन से ही वेलु न सिर्फ अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थीं, बल्कि इन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और बिना हथियारों के युद्ध में भी महारत हासिल थी। वेलु अपनी मातृभाषा के साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू में भी पारंगत थीं। 16 बरस की आयु होते होते वेलु के लिए सुयोग्य वर की खोज शुरू हुई। राजा और रानी को उनके लिए शिवगंगा के राजा मुतुवटुगनाथ पेरिया के रूप में जीवन साथी मिला। करीब 20 बरसों तक रानी वेलु और राजा पेरिया ने शिवगंगा पर राज किया। इसी बीच वेलु ने एक सुंदर कन्या विलच्ची को भी जन्म दिया, लेकिन खुशियों के ये पल ज्यादा दिन नहीं चल सके। सन 1772 में अरकोट के नवाब मोहम्मद अली खान वालजा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर शिवगंगा पर हमला किया। भीषण युद्ध चला और राजा की हार हुई। रानी वेलु से पति और शिवगंगा दोनों छिन गए। उन्हें अपनी दुधमुही बच्ची की जान बचाने के लिए जंगलों में भागना पड़ा। रानी वेलु को संरक्षण मिला डिंडीगुल के विरुपची में, जहां इन्होंने गोपाला नायकर के संरक्षण में करीब 8 वर्ष बिताए। इतने दिन रानी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगी रही। इस बीच इनकी मुलाकात टीपू सुल्तान के पिता और मैसूर के सुल्तान हैदर अली से हुई। कहते हैं रानी वेलु ने उनसे शुद्ध उर्दू में बात की थी, जिससे प्रभावित होकर हैदर अली ने न सिर्फ इनकी मदद की बल्कि इनको अपनी बेटी की तरह माना। इस तरह अब वेलु के पास न सिर्फ एक मजबूत साथी था बल्कि मरुदू भाइयों और उदयाल जैसे शक्तिशाली सिपहसालार भी। अगले 8 वर्षों तक वेलु नाच्चियार धीरे धीरे अपने खोए हुए इलाके वापस पाने में लगी रही। और एक दिन वो भी आया जब वो अपने किले के सामने खड़ी थी। ये साल था 1780। रानी को मालूम था कि इस किले को भेदना आसान नहीं है, लेकिन इनके पास उस मुश्किल का तोड़ था। इन्होंने अपनी कमांडर कुइली के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना ये थी कि किले के अंदर विजयदशमी को प्रवेश किया जाए, जब आम दिनों के विपरीत किले में आने जाने पर उतने प्रतिबंध नहीं होते थे। कमांडर कुइली ग्रामीण औरतों के भेष में किले के अंदर प्रवेश कर गईं, और जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को कुछ समझ में आता, वो उन पर कहर बनकर बरसने लगी। इस बीच अपने गुप्तचरों की मदद से कुइली को अंग्रेजों के गोला बारूद के भंडार का पता चला। उनके पास बस यही मौका था। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर मंदिर के दिए में जलने वाला घी लगाया और आग लगाकर बारूद के भंडार में घुस गईं। जबरदस्त विस्फोट हुआ और इसी धमाके के साथ शिवगंगा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। लिखित इतिहास का शायद ये पहला आत्मघाती हमला था। रानी वेलु ने अगले 10 बरस तक शिवगंगा पर राज किया और अपनी बेटी वेलच्ची को उत्तराधिकारी बनाया। 1796 में 66 बरस की उम्र में रानी वेलु का स्वतंत्र शिवगंगा में निधन हो गया। इनकी वीरगाथा दक्षिण भारत की कला और नाट्य का हिस्सा है। भारत सरकार ने सन 2008 में रानी वेलु नाच्चियार की याद में एक डाक टिकट जारी किया।

0: मैनेजर आज से 5-600 साल पहले एनवायरमेंट को साफ रखने के लिए बोला था, जब पवन गुरु पाने पिता माता तर्थ महत, अपनी माता पर कुछ गंदगी फैले तो सबसे बुरा इंसान हमसे कोई नहीं। शर्म का कम था कूड़ा फैलाना, इज्जत मान का कम है कूड़ा संभालना, और लोग कूड़ा फैलाने से शर्म नहीं करते, सफाई करने से शर्म करते।
1: ये है पंजाब पुलिस के रिटायर्ड DIG इंदरजीत सिंह सिद्धू, जिन्हें चंडीगढ़ के लोग रोज सड़कों की खुद सफाई करते देखते हैं। 6 जून 1938 को पंजाब के संगरूर जिले के एक फौजी परिवार में जन्मे इंदरजीत सिंह सिद्धू को विरासत में मिले थे देश प्रेम और अनुशासन। एक मेधावी छात्र रहे इंदरजीत सिंह सिद्धू 1961 में पंजाब पुलिस में शामिल हो गए। अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं निस्वार्थ सेवा से इन्होंने राष्ट्रपति पुलिस मेडल भी प्राप्त किया। ये जहाँ भी जाते सफाई की जिम्मेदारी सहजता से अपने कंधों पर ले लेते।
2: तो शादियों में जाना तो कभी वो डिस्पोजेबल कप्स में लोग बस पीपी के ऐसे ही फेंक देते थे, यूजुअली उनको बोलते थे कि इसको उठा के डस्टबिन में फेंको, भाई यहाँ पे क्यों रखा है। दैट इज हिज नेचर, शुरू से ऐसे ही है।
1: 1996 में सेवानिवृत्ति के बाद इंदरजीत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ आ गए। इंदरजीत सिंह सिद्धू ने देखा कि एक समय में देश का सबसे सुनियोजित माना जाने वाला शहर स्वच्छता में भारत के सर्वोच्च 10 शहरों में भी नहीं गिना जा रहा है। उनके लिए ये बेहद खेदपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ में घर नहीं बनाया था, उन्होंने चंडीगढ़ को घर बनाया था। इंदरजीत सिंह सिद्धू ने बेझिझक रास्तों की गंदगी को अकेले ही नियमित रूप से साफ करना शुरू कर दिया।
0: धीरे धीरे यह बात बढ़ती गई, कूड़ा उठाने के लिए ज्यादा टाइम लगा लिया, शहर के लिए कम। अल्टीमेटली हुआ कि मैंने शहर तो बिल्कुल बंद कर दी, सिर्फ कूड़ा उठाना याद रह गया।
1: एक रिटायर्ड DIG को सड़कों पर खुद सफाई करते देखना लोगों को अटपटा लगा, किसी ने उपहास किया तो कोई चौंक गया।
2: मेरे दोस्त हैं अभी आते हैं मिलने के लिए, तो वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे नेबरहुड में ना हो तो हम तो इधर ही फेंकते हैं। अब हमें लगता है कि आपके फादर उठा रहे हैं तो हम इधर फेंकते नहीं।
1: इन्हें कूड़ा उठाते देख हाथों में दस्ताने पहनने की सलाह देने तो कई आए, मगर हाथ बटाने के लिए कोई नहीं आया। पर ये बिना किसी दिखावे या हिचकिचाहट के सफाई को अपना कर्तव्य समझ कर करते रहे हैं।
0: मैं ये सड़कें और ये पार्क ये पब्लिक प्लेसेस साफ करने की कोशिश करता हूँ, ताकि बाकी लोग भी देख लें कि भाई ये खाली हाथ से काम कर रहा है, हम भी लग जाए इनके साथ और पब्लिक प्लेसेस को साफ कर दें।
2: लेकिन जब पद्मश्री मिला है तो वही लोग जो मुझे बोलते थे कि ये क्या कर रहा है या व्हाट इज योर डैड डूइंग, उनका एटीट्यूड में चेंज मैंने देखा है। मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम।
1: सरदार इंदरजीत सिंह सिद्धू, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
3: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी उनकी जुबानी।
4: हेलो, मेरा नाम नीलम है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बार रीड इंडिया वाले हमारे उधर सर्वे करने आए थे, उनके थ्रू मुझे रीड इंडिया के बारे में पता लगा, फिर मैं इधर आने लग गई, मैं रीड इंडिया से जुड़ गई। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से पार्लर भी सीखा है और कंप्यूटर भी। इस टैग के कोर्स में मैंने IT बनाना और किसी की लोकेशन सेंड करना, और पहले मैं घंटों उसकी लाइन में बैंक की लाइन में खड़ी रहती थी, बट जब से फ़ोन मतलब इसकी नॉलेज मुझे हुई है कंप्यूटर की, तब से मैं अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकती हूँ। पैसे भेज सकती हूँ और उससे मतलब कैब करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीड इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लगी थी, अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होकर सोच सकती हूँ और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन ही रहने लग गया था। अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए, आपको नहीं सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे। मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो कुछ अच्छा ही पता लगे अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, बहुत कुछ आप यहाँ आके जान सकते हैं। थैंक यू रेड इंडिया।
5: Hello everyone, my name is Lancy and I passed 10th class. Then I think to join Read India Academy to improve my condition. मैंने Academy join की Read India और उसमें हमारा course start हुआ TEG, Technology Empowering Girls. ये एक course है जो women और girls के लिए है। ये women और girls की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये प्रोग्राम चला है तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और आगे भी ये प्रोग्राम चल रहा है। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज का भी और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है। पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सबकी ज़रूरत होती थी, लेकिन आज कल मैं खुद कर रही हूँ ये सब और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती। बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी।
6: गुड आफ्टरनून, माय नेम इज तनु तनवर। आई पास 10th क्लास एंड आई जॉइन रीड इंडिया एकेडमी इन शाहबाद मोहम्मदपुर। दिस इज ओनली वन एकेडमी हु टीच अस कंप्यूटर। दिस एकेडमी हेल्प्स टू बी अ वुमेन इंडिपेंडेंट। रीड

0: किसी को बता रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है, और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं है, जैसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, या कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है। और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो। और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली, टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, कुछ भी हो, जिससे लड़कियां घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इसमें लाइन में आने से, क्योंकि इसमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए। इसमें नॉर्मली होता है फाइनली, मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है, और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे मतलब भाई होती है कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनका आगे, तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा, मतलब चेंजेस आ जाते हैं। और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे ये, कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में, और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं। तो इससे हमें हमारे लाइफ में भी चेंजेस आते हैं, और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं। एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में। मतलब जितना बढ़ो आगे उतना कम है, और हर किसी को बढ़ना चाहिए, किसी एक को नहीं, हर किसी को, जहाँ से जैसी हेल्प मिलती है, जो मिलती है वो करनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यही कर सकता है, यही बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सबको है मतलब एक फ्रीडम होती है अपने आप में, लाइफ अपनी है, किसी का प्रेशर नहीं होता कोई के, मतलब हम किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर दे, या मतलब बोल ले नहीं, कुछ नहीं करे, आगे नहीं बढ़े। एक दो बार मतलब होता है भाई, डर होता है एक, लेकिन बार बार निकलने से ना सब डर खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है, ख़त्म करने से ख़त्म होएगा, ऐसे डरने से तो डर बढ़ता ही है, कोई मतलब दूसरा उसको ख़त्म नहीं कर सकता आके। अब हम हैं जैसे कुछ होती हैं लड़कियाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को फ्रीडम होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था ट्वेल्थ कर लिया, पास आउट हो गया, स्कूल शादी कर दो, ये वो, लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है, तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करें, ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े, और वो अपने पैरों पर खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें, और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो। तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है, उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए, कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए, चलो भाई कोई नहीं, उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से, ऐसे भी नहीं कि लड़ लो, ये कर दो वो कर दो, नहीं, प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है। तो इसलिए हमें जितना हो सके ना अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए, लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड और दुनिया में अपनी पहचान हो।
1: रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीते रहो वंस अगेन।
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम
0: इसे
1: है।
0: क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बबलू?
1: ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ है। एनीवेज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस कोकिला एमबीबीएस। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
0: तुम्हें तो रातों रात ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं।
1: हाँ, एक्चुअली लाइफ में पहली बार मुझे

0: एहसास हुआ है कि किसी के काम आने में कितना आत्मिक सुख मिलता है।
1: अच्छा,
0: एक्चुअली मेरे एक दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुँच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
1: ओ तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गेस कर रही हूँ तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
0: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट।
3: बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा।
2: ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है।
3: हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है।
2: इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है। गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है, और एक वक्त आता है जब शरीर में हड्डियों के ये जोड़ जवाब देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और किस्म की आर्थराइटिस भी हैं, जो किसी भी उम्र के लोगों में पाई जा सकती हैं।

0: वेलकम बैक। एपिसोड के इस भाग में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के टाइप्स की। हालांकि आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन
1: कोकिला मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई, आखिर आर्थराइटिस होने की वजह क्या है?
0: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू। एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं।
2: आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है। जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी। हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की, और फिर तय किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान। आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्थराइटिस 4 तरह से हड्डियों पर हमला बोलती है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा गॉटी आर्थराइटिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसे बुढ़ापे की बीमारी भी कहते हैं। बुढ़ापे में जॉइंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं। वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे का जॉइंट्स, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है। लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है। कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं। और अब बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। ये आर्थराइटिस हमारे मेटाबॉलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है। इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है। अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है। जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की। इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो और, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है, लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का असर बढ़ता है, कार्टिलेज खिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि आर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर ये रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को दर्द कहां पर हो रहा है और दर्द कितना सीवियर है और कितने वक्त से है, ये अच्छे से समझा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर दर्द वाली जगह की त्वचा, जोड़ और मसल स्ट्रेंथ का सही सही आकलन करते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस में एक खास तरह के ब्लड टेस्ट की भी मदद ली जाती है। दरअसल रिमेटॉइड फैक्टर, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। हालांकि बीमारी की शुरुआत में ये आर फैक्टर एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रिमेटॉइड आर्थराइटिस होने के कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रिमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
0: अब तो आप समझ ही गए होंगे, आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं, तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ ना होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। और मांसपेशियां अगर अच्छी होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखें, और इस प्रकार का आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएं और वो जोड़ों को घिसने से बचाएं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपका बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी।
1: गौटी अर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गौटी अर्थराइटिस के पेशेंट्स को NS8 के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कॉल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NS8 जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NS8 दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NS8 दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। आर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। ज्यादातर इसका असर बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे और घुटने के जोड़ों पर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ज्यादातर इसका असर शरीर के छोटे जॉइंट्स जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स पर होता है। संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और वजन को नियंत्रण में रखकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट का सामान्यतः NSAID और स्टेरॉयड से इलाज किया जाता है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं, जैसे नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
3: कोकिला, आर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस, बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
3: बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: अमृत काल में प्रवेश कर चुके हमारे देश के लिए यह आजादी बेशकीमती है,
1: जिसका सपना संजोए ना जाने कितने जांबाजों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कितनों ने तो बेहद कम उम्र होने के बावजूद स्वाधीनता की लड़ाई में ऐसा किरदार निभाया जिसे भुला पाना बेहद मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक वीरांगना रानी गादिल्ल्यू की, जिन्होंने महज 13 बरस की उम्र में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर ब्रिटिश सरकार की नींदें उड़ा दी थीं। अपने बगावती तेवरों के कारण अंग्रेजों की आंख का कांटा रही रानी गादिल्ल्यू देश की वो अकेली महिला क्रांतिकारी भी हैं जिन्होंने 15 बरस का लंबा समय ब्रिटिश कैद में काटा। रानी गादिल्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 में मणिपुर के जोलियांगलोंग कबीले के रोंगमई खानदान में हुआ था। बचपन से ही स्वतंत्र और स्वाभिमानी गादिल्ल्यू 13 बरस की आयु में नागा नेता जादव नांग, जो रिश्ते में उनके चचेरे भाई थे, उनके संपर्क में आई। जादव नांग हिरका आंदोलन के जरिए मणिपुर से अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयत्न में लगे हुए थे। आंदोलन आगे बढ़ पाता इससे पहले ही 29 अगस्त 1931 को अंग्रेजों ने जादव नांग को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया। आंदोलन का नेतृत्व बालिका गादिल्ल्यू के हाथों में आ गया। गादिल्ल्यू ने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अपने 4000 सशस्त्र नागा सिपाहियों के साथ गादिल्ल्यू भूमिगत होकर अंग्रेजों को लगातार टक्कर देती रही। हतोत्साहित अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के प्रयास शुरू कर दिए और आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों के कई गांव जलाकर उनका उत्साह कम करने की कोशिश की। घटना से सशस्त्र नागा आक्रोशित हो गए और उन्होंने एक दिन खुलेआम असम राइफल्स की सरकारी चौकी पर धावा बोल दिया। रानी गादिल्ल्यू की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव ब्रिटिश सरकार को खटकने लगा था। तय किया गया कि गादिल्ल्यू को पकड़ने के लिए खास बटालियन तैनात की जाए, लेकिन गादिल्ल्यू भी अंग्रेजों से 2 कदम आगे ही थी। वो लगातार अपनी जगह बदलती और छापामार तरीके से अंग्रेजों पर प्रहार करती, लेकिन उनकी चिंता अपने साथियों को लेकर भी थी। अपने साथियों को सुरक्षित करने के लिए गादिल्ल्यू ने असम के पुलोमी में एक लकड़ी का किला बनाने का फैसला किया, जिसमें वो अपने 4000 साथियों के साथ रह सके। किला बनाने का काम शुरू हो गया। इस पर काम चल ही रहा था कि असम राइफल्स ने कैप्टन मैकडोनल्ड के नेतृत्व में अचानक हमला कर दिया और गादिल्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया। साल था 1932। गादिल्ल्यू को इम्फाल ले जाया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। रानी गादिल्ल्यू ने अगले 15 बरस गुवाहाटी, शिलोंग, तूरा और आइजोल की जेल में बिताए। गादिल्ल्यू तभी मुक्त हो सकी जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। कोहिमा में रहने के दौरान सन 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 1982 में समाज में अभूतपूर्व योगदान के लिए रानी गादिल्ल्यू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1983 में उन्हें विवेकानंद सेवा सम्मान से भी नवाजा गया। 1991 में रानी गादिल्ल्यू अपने जन्म स्थान लोंगकाव लौट गईं, जहां 17 फरवरी 1993 को 78 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया। साल 1996 में रानी गादिल्ल्यू को मरणोपरांत बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी बरस उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया गया। वही साल 2015 में रानी गादिल्ल्यू के जन्म के 100 बरस पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष स्मारक सिक्के जारी किए गए। देश के इतिहास में वो एकमात्र महिला क्रांतिकारी थीं जिन्होंने 15 बरस का लंबा समय कारावास में काटा। रानी गादिल्ल्यू को आज भी नागा समाज एक देवी के रूप में याद करता है, जिसने अपना सारा जीवन मातृभूमि और लोगों के कल्याण को समर्पित कर दिया।

0: परिवर्तन की शांत लहर, श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026। कुछ लोग बदलाव की बातें करते हैं और कुछ लोग बदलाव लाते हैं। मध्य प्रदेश के श्री मोहन नागर जी को प्रकृति और पानी से प्रेम संस्कार में मिले थे।
1: हमने अपने काम की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से की। भारत भारती के माध्यम से 500 गांवों में एकल विद्यालय प्रारंभ किए।
0: पर असल समस्या और थी।
2: जमीन बेकार हो गई थी, खेती बंद हो गई, लोग गांव छोड़ रहे थे।
1: पदयात्रा के समय अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि दिवाली के समय पानी की बहुत समस्या हो जाती है और लोग पलायन कर जाते हैं। पर्याप्त बारिश होने के बाद भी कुएं, बावड़ी, तालाब और स्टार डैम की कमी के कारण अधिकांश पानी बह जाता था।
0: श्री मोहन नागर जी ने नदी नालों में बहते पानी को रोकने का एक अनोखा रास्ता निकाला।
1: हमने सीमेंट की खाली बोरियों में रेत भर के नदी नालों में बोरी बंधान बनाए, जिसके कारण पानी की समस्या कम हुई और पलायन बंद हुआ।
0: इसके बाद बारी थी जमीन के जल स्तर को बढ़ाने की।
1: हमने गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से जन भागीदारी से सोना घाटी की पहाड़ी पर 8,000 कंटू टेंच बनाए और 32,000 पौधे लगा करके ताप्ती उपन उगाए, जिसके कारण उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ गया। लैंड माफिया, रेत माफिया, इसका हमको विरोध का सामना करना पड़ा। हमने अपने काम को नहीं रोका, हमने लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे जो हमारे विरोधी थे वो भी हमारे सहयोगी बन गए।
0: प्रकृति और पानी बचा के मोहन जी ने वर्तमान बचाया और अब उनका लक्ष्य था एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना।
1: भारत भारती विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देकर आने वाले कल के लिए एक संस्कारी, प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता वाले युवा तैयार करते हैं। हमने बाचा गांव को ग्रामवासियों के सहयोग से एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। बाचा गांव शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बन गया है।
0: लेकिन अनगिनत बदलाव लाने वाले श्री मोहन नागर जी की एक चीज कभी नहीं बदली, उनके परिवार का अटूट भरोसा। मोहन जी को कई सम्मान मिले पर उनका असली सम्मान तो भरे हुए तालाब, लहराते पहाड़ और मुस्कुराते चेहरे हैं।
1: पानी बचाना एक काम नहीं या वचन है आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि जल है तो कल है।
0: श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026।
3: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
4: मेरा नाम प्रियंका है, मैं शाबान मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मेरा जन्म यही हुआ है। हम परिवार में 5 सदस्य हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और 3 बहन भाई। मेरा भाई 9th क्लास में है, बहन मेरी जॉब करती है, पापा टूरिज्म में है और मम्मी ने यहाँ से रीड इंडिया सेंटर से नर्सिंग का कोर्स किया था। आज वो जॉब कर रही है हॉस्पिटल में। मैंने 5 साल पहले रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, उसके बाद मैंने एनटीटी किया और आज मैं एज अ लाइब्रेरियन रीड इंडिया सेंटर में जॉब कर रही हूँ। मेरा जो एम था वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था। अब मैं रीड इंडिया सेंटर की मदद से यहाँ से कोर्स करने के बाद मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के साथ काम करना बहुत

0: अच्छा लगता है। यहाँ काम करने के साथ साथ मैं अपने घर पे भी बहुत सारे काम करती हूँ। जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी घर पे निभाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ रीड इंडिया सेंटर के साथ निभाती हूँ। अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से करती हूँ। मेरे परिवार में सभी वर्किंग है, तो छोटे भाई की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हूँ। मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ। उसके अलावा मैं उसकी स्टडी में हेल्प करती हूँ, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ, और उसके अलावा उसकी सारी जिम्मेवारियां मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनके काम भी करती हूँ।
1: हेलो, मेरा नाम निशा सैनी है। मैं जब छोटी थी, 10 साल की थी और 6th क्लास में थी, तो मैं शुरू से ही यहीं पे आना शुरू किया है। और एनजीओ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से पसंद रहा है मेरे लिए, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मैं ना पिछले 7 साल से आती रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब एनजीओ में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं कर लूँगी, अगर कर सकी तो कर लूँगी, अगर जो मुझे इंटरेस्ट रहा जिस चीज़ में, मैं वो करूँगी। और एनजीओ में आऊँगी, शुरू से आती रही हूँ, आती रहूँगी। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ा भी है, लेके भी गई हूँ घर, बहुत अच्छी बुक्स हैं। और टीचर्स भी अच्छे हैं, यहाँ के मैम सब अच्छे हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब जो बॉयज होते हैं ना, पेरेंट्स ना सिर्फ बॉयज की ही मानते हैं, आजकल के ना बॉयज की बहुत डिमांड वगैरह है, और गर्ल्स से जो कुछ कर दे, जैसे बॉयज के तरह जॉब करना चाहती हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स पता नहीं क्यों पीछे रोकते हैं, क्यों मना करना चाहते हैं। आखिर लड़की भी तो है, करके दिखा सकती है वो लड़की, जो लड़के काम कर सकते हैं ना वो करके दिखा सकते हैं। लड़की को सब लोग कमजोर पता नहीं क्यों समझते हैं आज के देश में, नहीं समझना चाहिए। और वो लड़की ताकतवर होती है, वो अच्छी भी होती हैं और वो समझ सकती हैं, वो पेरेंट्स को खुद अच्छे से कमा के खिला सकती है, जितने बॉयज कमा के नहीं खिला सकते। और बॉयज है ना बहुत मतलबी होते हैं, बड़े होते होते ना अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे बॉयज बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बॉयज है ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, और ना ही गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना जानते। जो अच्छे से बात करते हैं पता नहीं कैसी नज़रों से देखते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। वो बॉयज है ना बहुत गंदे होते हैं, बॉयज की तरफ तो बहुत ही कमी, जितना होता है उतना ही तक बात रखें, फ्रेंड है तो फ्रेंड ही तक रहें, उससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बॉयज से ना एकदम जैसे आगे आगे अपना करियर करते हैं, वैसे वैसे ना लोग नए नए मिलते हैं, और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया। शादी हो जाती है तो उसके बाद अपनी वाइफ की ही सुनते हैं, पता नहीं क्यों सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया हमारे पेरेंट्स ही है, जो कुछ है उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे हमें बचपन से पेरेंट्स ने रखा, हम उनकी तरह बड़े होके अच्छे से रखें। मैं एक महिला और लड़की के ऊपर एक कविता है, मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि जींस पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं जो सूट पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं सब सारी ज़िंदगी जीऊँ, पर पेरेंट्स ने मेरे को ये सब करने नहीं दिया। जो बॉयस होते हैं उन सबको आज़ादी दी। शादी होने के बाद ससुराल में गई, शादी होने के बाद मैं ससुराल में गई, सास ने बोला ये करो वो करो, लेकिन कुछ भी करने ना दिया। जो कुछ था सब उसके नाम का था, सिंदूर उसके नाम का, चूड़ी उसके नाम की, पायल उसके नाम का, और साड़ी उसके नाम की, बिछिया उसके नाम का, नाम प्लेट भी उसके नाम का, नेम भी उसके नाम का, आखिर मेरा क्या है मेरे नाम का। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: भगवान ने अगर बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे और बड़ा करके तुम सामने वाले को घूरते रहो।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम?
0: मैं कह रहा हूँ कि अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को थोड़ा छोटा कीजिए और प्रोग्राम शुरू कीजिए।
1: राइट। फिर आज किस बारे में जानना चाहोगे तुम बबलू?
0: ये आंखें, उफ युम्मा।
2: खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, मगर आंखें खोलते ही देखने की प्रक्रिया जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। इसके पीछे विज्ञान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट या अपवर्तित होकर कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया के बाद लाइट एंटीरियर चेंबर से होकर गुजरती है, जिसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये तरल पदार्थ इंट्राऑक्युलर प्रेशर पैदा करता है, जिससे आई बॉल्स की शेप बनी रहती है। कॉर्निया के बाद लाइट आयरिस पर पड़ती है, जो लाइट की तीव्रता के हिसाब से कम या ज्यादा खुलता है। कैमरे का अपर्चर कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर रोशनी ज्यादा होती है तो कैमरे का अपर्चर और हमारी आंख का आयरिस कुछ बंद हो जाता है, और कम रोशनी में अपर्चर और आयरिस ज्यादा खुल जाते हैं। आयरिस से होकर लाइट प्यूपिल और लेंस से होती हुई रेटिना पर पड़ती है, और इससे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है। इन इमेजेस को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनकी मदद से रेटिना पर बनने वाले इमेज को ब्रेन पढ़ता है। ब्रेन इमेज को सीधा करके देखता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि आंखें सामने देखते वक्त अपने दोनों तरफ भी देख पाती हैं, और इसे आंखों का फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। अक्सर जब आंखों के देखने की क्षमता कम हो जाती है तब फील्ड विजन कम हो जाता है। कई बार आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं, जिससे देखने की प्रक्रिया में मुश्किल होने लगती है। कभी लेंस में दिक्कत आने से रेटिना तक रोशनी पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। कई बार इमेज रेटिना पर ना बनकर उसके आगे और पीछे बनने लगती है, जिससे हमें चीजें साफ नहीं दिखती और चश्मा लगवाना पड़ता है। कई बार आंखों के इन्फेक्शन या आंख में चोट लगने से भी हमारी दृष्टि पर असर पड़ता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस बीमारी में धीमी लाइट में और अंधेरे में दिखना बहुत कम हो जाता है। इसके इलाज के लिए जरूरी है कि मरीज को विटामिन ए से भरपूर भोजन दिया जाए। इन बीमारियों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लापरवाही करने से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। वजह कुछ भी हो, पर आंखों की बीमारी यदि गंभीरता से ना ली जाए तो नतीजा एक ही निकलता है, दृष्टिहीनता। गंभीरता से ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इन बीमारियों का हीनता। गंभीरता से ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इन बीमारियों का धीरे धीरे बढ़ना।
1: ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक चमत्कारिक शक्ति है सेल रिपेयर करने की, यानी किसी भी अंग द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर या रिप्लेस करने की क्षमता। मगर आंखों की स्थिति जरा भिन्न है। इसके लेंस की कोशिकाओं को ना तो रिपेयर किया जा सकता है और ना ही रिप्लेस। इसलिए अगर लेंस को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो ये धीरे धीरे जमा होकर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। ये बीमारी है कैटर।

0: यानी मोतियाबिंद। इस बीमारी में आंखों से धुंधला दिखाई देता है। आइए देखते हैं ये बीमारी होती कैसे।
1: मोतियाबिंद की बीमारी में लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है और लेंस क्लाउडी यानी कि धुंधला होता जाता है। इसकी वजह से लेंस से होकर जाने वाली रोशनी रेटिना तक पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस के प्रोटीन में बदलाव आता है जो लेंस को अपारदर्शी बना देता है। इसे अंडे के उबलने और ऑमलेट के बनने जैसी साधारण प्रक्रिया से समझा जा सकता है। अंडे की सफेद जर्दी प्रोटीन से बनी होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब अंडे को उबाला जाता है या पकाया जाता है तो अंडे के प्रोटीन में बदलाव आ जाता है जिससे वो अपारदर्शी हो जाता है। कैटरेक्ट में भी लेंस के प्रोटीन में आया बदलाव उसे अपारदर्शी बना देता है। कैटरेक्ट के बहुत अधिक बढ़ जाने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। मोतियाबिंद के सामान्य लक्षण हैं धुंधला दिखना, और ये धुंधलापन बीमारी के साथ बढ़ता जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो पूरी तरह दिखना बंद भी हो सकता है। रात में रोशनी वाली जगह पर चमकीले स्पॉट्स दिखना, चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव आना और डबल विजन यानी हर चीज दो दिखना। बढ़ती उम्र के साथ होने वाला मोतिया सिनाइल कैटरेक्ट कहलाता है। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति में लेंस के प्रोटीन में बदलाव के कारण प्रोटीन के क्लंप यानी थक्के रेटिना तक पहुंचने वाली इमेज की शार्पनेस को कम कर देते हैं। प्रोटीन के क्लंप के कारण लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है जिससे रेटिना तक समुचित मात्रा में रोशनी नहीं पहुंच पाती। दूसरी स्थिति में पूरे लेंस की पारदर्शिता धीरे धीरे खत्म होने लगती है जिससे दृष्टि में धुंधलापन आने लगता है। जैसे जैसे लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है वैसे वैसे धुंधलापन बढ़ता जाता है। जब आंख की किसी दूसरी बीमारी की वजह से आंख के लेंस में होने वाले इन्फेक्शन से कैटरेक्ट होता है तो इसे सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। अगर कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद हुए इन्फेक्शन से दोबारा कैटरेक्ट हो जाता है तो इसे भी सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में किसी चोट जैसे फायर क्रैकर के स्प्लिंटर्स या चिंगारियों से हुआ घाव और बिजली के झटकों से होने वाले कैटरेक्ट को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में गहरी चोट जो कॉर्निया से होते हुए लेंस को भी नुकसान पहुंचा दे उससे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है।
2: ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं और कुहू आपका स्वागत करते हैं। ये आंखें उफ युम्मा। अरे कोकिला, तुम मुझे दो क्यों दिख रही हो?
0: पता नहीं एपिसोड के अंत तक दिखूंगी भी कि नहीं। जाओ जाकर अपना इलाज करा लो, वरना आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें शुरुआत में इलाज ना कराने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है।
2: वो तो मैं करा लूंगा, मगर आपने तो सिर्फ बीमारी के बारे में बताकर छोड़ दिया मैडम कुहू MBBS। इलाज नहीं है क्या?
0: बबलू, मैं इलाज के बारे में ही बताने जा रही थी। जानते हैं फ्रेंड्स, पुराने जमाने में मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए उसके पूरे पकने का इंतजार करते थे, मगर आज किसी भी स्टेज में उसका इलाज किया जा सकता है। असल में इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। शुरुआती दौर में इसे ट्रेस कैटरैक्ट कहते हैं, फिर माइल्ड या मॉडरेट, और जब मोतियाबिंद पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो उसे पक्का मोतिया कहते हैं।
2: अब इलाज की बात करें।
1: मोतियाबिंद का डिटेक्शन व्यापक जांच के बाद होता है। इनमें आते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट, डायलेटेड आई एग्जाम और अल्ट्रासाउंड। विजुअल एक्यूटी टेस्ट में एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से चार्ट के अक्षरों को पढ़ता है। इसकी रीडिंग फ्रैक्शन में लेते हैं। फ्रैक्शंस के आधार पर आंखों के पावर का निर्धारण ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ये टेस्ट आंखों की दूसरी बीमारियों की जांच के लिए भी किया जाता है। जांच के दौरान डायलेशन में आंखों में ऐसे आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं। इससे प्यूपिल के पीछे का हिस्सा जांचना आसान हो जाता है। पिछला हिस्सा देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आंख की बीमारी पकड़ में आ जाती है। ओपेक लेंस को सर्जिकली रिमूव करके ही कैटरेट का पूरा इलाज किया जाता है। कैटरेट के शुरुआती दिनों में डॉक्टर कई बार चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। इसके पश्चात सर्जरी की जाती है, जिसके जरिए लेंस को हटाकर उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ये सर्जरी दो तरह की होती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी और फैको इबल्सिफिकेशन सर्जरी। एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी में कॉर्निया में चीरा लगाकर खराब हो चुके लेंस को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद निकाले गए लेंस की जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। जहां लेंस नहीं लगाया जाता, वहां मरीज को सर्जरी के बाद चश्मा लगाया जाता है। दूसरी सर्जरी है फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, जो एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। इसमें कॉर्निया में एक बहुत छोटा सा सुराख किया जाता है, फिर इस सुराख के जरिए अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रवाहित की जाती हैं। इन अल्ट्रासाउंड वेव्स के कारण मोतिया यानी कि अपारदर्शी लेंस मुलायम होकर टूट जाता है और उस जगह पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मदद से लेंस लगाने से पहले लेंस का पावर और साइज तय किया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी आजकल लगभग आधे घंटे का मामूली ऑपरेशन है, जिसमें मरीज को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स. मोतियाबिंद तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें अगर एक बार आंखों की रोशनी चली गई तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता. ये बीमारी है ग्लॉकोमा. आइए देखते हैं ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है.
1: ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद, ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाने से ऑप्टिक नर्व्स के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है. ऑप्टिक नर्व ही इमेज को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाती है. दरअसल कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर नामक एक तरल पदार्थ मौजूद होता है जो कि आई बॉल का आकार मेंटेन रखने के लिए एक दबाव आंखों में पैदा करता है जिसे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर कहते हैं. प्राकृतिक रूप से एक्वस ह्यूमर आंख के एक हिस्से में लगातार बनते रहते हैं और दूसरे हिस्से से लगातार निकलते भी रहते हैं. इससे आई प्रेशर संतुलित रहता है, लेकिन कभी कभी एक्वस ह्यूमर का निर्माण जरूरत से ज्यादा होने लगता है या इनका निकलना बाधित होने लगता है. ऐसी स्थिति में आई प्रेशर बढ़ जाता है. एक्वस ह्यूमर के बहाव में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ग्लूकोमा दो तरह का होता है. पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा, ट्राबेक्युलर मेशवर्क जिससे होकर एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है उसमें धीरे धीरे आने वाली रुकावट से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है तथा दोनों आंखों को प्रभावित करता है. दरअसल ट्राबेक्युलर मेशवर्क टिश्यूज कॉर्निया के पास होते हैं और इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालते हैं. अगर इनमें कोई रुकावट आ जाती है तो एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ने लगता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है. दूसरी तरह का ग्लूकोमा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, जिसमें आयरिस एक्वस ह्यूमर के फ्लो में रुकावट पैदा करता है. नतीजतन एक्वस ह्यूमर के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है.
2: क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण आंख की नस को नुकसान पहुंच जाता है जिसके कारण आपकी आंख की रोशनी जा सकती है. इसमें एक तो आंख में दर्द होता है, रेडनेस हो जाता है, सिर में दर्द होता है. जब आप लाइट को देखोगे कलर्ड हेलोस दिखेंगे, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है. अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो आपको जल्द से जल्द आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए.
1: ये एक इमरजेंसी की अवस्था है और अगर मरीज के इलाज में 24 से 48 घंटे की देरी हो जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है. कोई भी इसका शिकार हो सकता है, बेशक वो अपने आंखों के डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवा रहा हो और आंख इससे पहले बिल्कुल ठीक हो. और अब बात सेकेंडरी ग्लूकोमा की. इन्फ्लेमेशन, आंखों का ट्यूमर और वेनस प्रेशर के बढ़ने से होने वाले ग्लूकोमा को सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं. आमतौर पर क्रॉनिक ग्लूकोमा में कोई निश्चित लक्षण नहीं दिखाई पड़ते और ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो, जिनके परिवार में ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज, माइग्रेन या हाइपरटेंशन के मरीज हों, लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे लोग या जिनकी आंखों में चोट लगी हो. ग्लूकोमा के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें प्रमुख है टोनोमेट्री. इसमें मोतियाबिंद के टेस्ट की ही तरह एक विशेष इंस्ट्रूमेंट द्वारा आंखों के प्रेशर को नापा जाता है. दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है ऑप्थेल्मोस्कोप टेस्ट, जिसके जरिए आंखों के पीछे ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है. तीसरा टेस्ट है विजुअल फील्ड असेसमेंट. इस टेस्ट में एक स्क्रीन पर रोशनी की छोटी छोटी स्पॉट्स डाली जाती है और मरीज को रोशनी वाले स्थान को पहचानने के लिए कहा जाता है. इससे पता चलता है कि मरीज के विजन पर कितना असर पड़ा है. ग्लूकोमा का इलाज उसके वर्ग पर निर्भर करता है. ओपन एंगल ग्लूकोमा का आई ड्रॉप्स या खाने वाली दवाओं से इलाज किया जाता है. यदि दवाओं से इलाज न हो सके तब सर्जरी से इसे कंट्रोल करते हैं. सर्जरी में एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो के लिए एक नया रूट बनाया जाता है, इसको ट्रैबेक्यूलोक्टोमी कहते हैं। क्लोज एंगल ग्लूकोमा का इलाज कारगर रूप से सर्जरी के द्वारा होता है। सर्जरी में आयरिस की बाहरी सीमा पर एक छोटा छेद करते हैं, इससे एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाता है। इसके लिए ज्यादातर लेसिक सर्जरी या फिर मामूली ऑपरेशन किया जाता है और एक्वस ह्यूमर के निकलने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया जाता है।
3: यो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद हम लाए हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। चलिए बताइए कि हम एक मिनट में कितनी बार पलकें झपकाते हैं। कोकिला, तुम शुरू करो।
0: यही कोई 15 बार।
3: क्या आप जानते हैं कि आंसू क्यों बहते हैं?
0: बबलू, तुम वही बताओगे जो सबको पता है, कुछ नया नहीं बता सकते।
1: विजन लॉस का एक और कारण है कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल डैमेज। दरअसल कॉर्निया शीशे जैसा एक पारदर्शी टिश्यू है। इसका व्यास लगभग 11 से 12 मिलीमीटर होता है। ये आंख के काले हिस्से का आवरण है। किसी भी प्रकार की चोट, इन्फेक्शन या अधिक ताप से कॉर्निया डैमेज हो जाने पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। अगर कॉर्निया के उस हिस्से में डैमेज हुआ है जहां से विजन पर असर नहीं पड़ता तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। चूंकि कॉर्निया का पोषण रक्त से नहीं होता है बल्कि आंख के गोले के भीतर द्रव से होता है, इसलिए मृत्यु के पश्चात भी इसे ट्रांसप्लांट के लिए निकाला जा सकता है। आई डोनर की मृत्यु के 3 से 4 घंटों के भीतर कॉर्निया को निकाल लिया जाता है। सर्जन केवल कॉर्निया बदलता है, न कि आंख का

0: ज्यादा फैलता है। ये इन्फेक्शन अक्सर वहाँ होता है जहाँ गंदगी फैली होती है और साफ सफाई के लिए पानी की कमी होती है। ड्रायर क्लाइमेट्स यानी अति शुष्क जलवायु वाले इलाकों में ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।
1: So, कैसा रहा? खूब सारी बातें बता दी, नहीं?
2: अब बातें ही करते रहोगे या कुछ कंक्लूजन भी होगा?
1: ओहो, मेरे डायलॉग की चोरी। खैर, बच्चों को भी कभी कभी छूट दे देनी चाहिए।
2: बबलू,
1: बाय फ्रेंड्स,
2: तुमसे मैंने
1: नेक्स्ट वीक मिलेंगे, बाय।
2: सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना इसके बड़बोलेपन पर रोक लगानी पड़ेगी, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय
3: बबलू।
0: आइए अब एक नजर इस एपिसोड की कुछ खास बातों पर। आंख में लाइट कई जगह पर फोकस होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कॉर्निया पर पड़ती है। रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनती है। मस्तिष्क में हमें सीधा दिखाई देता है। मोतियाबिंद में धुंधला दिखने लगता है। ऐसा आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन के आकार में परिवर्तन के कारण होता है। मोतियाबिंद का इलाज एक छोटे से ऑपरेशन से किया जाता है। ग्लूकोमा में आंखों की ऑप्टिक नर्व्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ग्लूकोमा काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

प्रीति लता वादेदार, एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें अंग्रेजों के शासन में जीना तो दूर, उनके या उनकी पुलिस के हाथों मरना तक गवारा नहीं था। प्रीति लता का जन्म सन 1911 में चटगांव में हुआ था, जो कि आज बांग्लादेश में है। कोलकाता के बेथुन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वो चटगांव के बालिका विद्यालय में पढ़ाने लगी। यहाँ उनका परिचय प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन से हुआ, जिन्हें लोग मास्टर दा कहते थे। मास्टर दा से ही उन्हें पिस्तौल चलाने का विधिवत प्रशिक्षण मिला। जून 1932 में चटगांव के एक मकान में अंग्रेजी सेना ने मास्टर दा, प्रीति लता और दूसरे क्रांतिकारियों को घेर लिया। घमासान मुठभेड़ में कई क्रांतिकारी शहीद हो गए। प्रीति लता सूर्य सेन के साथ बच निकलने में सफल हो गईं। पुलिस ने प्रीति लता की सूचना देने वाले को मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा कर दी। अखबारों में जब उनकी तस्वीर छापी गई, तब उनके माता पिता को उनके क्रांतिकारी होने का पता चला। इस घटना के बाद प्रीति लता का कद क्रांतिकारियों के बीच बढ़ गया। सूर्य सेन ने अपने साथियों का बदला लेने की योजना बनाई। 24 सितंबर 1932 को मास्टर दा ने प्रीति लता को एक जोखिम भरे कार्य की जिम्मेदारी सौंपी। ये कार्य था पहाड़ताली यूरोपियन क्लब पर हमला। पुरुष वेश में प्रीति लता अपने युवा साथियों के साथ पीछे की गली से क्लब में घुस गईं। क्लब के लगभग 50 सदस्य नाचने गाने में मस्त थे। प्रीति लता और उनके साथियों ने बम फोड़ने शुरू कर दिए। हमला इतना घातक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक यूरोपियन महिला मारी गई और कुछ लोग घायल हो गए। दोनों तरफ की गोलीबारी में जैसे ही एक गोली प्रीति लता को लगी, वैसे ही उन्हें ब्रिटिश पुलिस अफसरों ने घेर लिया। वो जिंदा पुलिस के हाथों नहीं आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने तुरंत साइनाइड की गोली खा ली। इनकलाब जिंदाबाद का उद्घोष किया और हमेशा के लिए धरती की गोद में सो गईं।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: प्रियंका चंदेलिया, बाय प्रोफेशनली मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैगजीन शूट्स करती हूँ ग्रह शोभा के, एंड रीड इंडिया से मैं कोर्स कर रही हूँ, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग ले रही हूँ, जहाँ मैं दीक्षा मैम से मिली हूँ। दीक्षा मैम बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, सिलेबस भी काफ़ी अच्छे से रीड करा रही हैं मैम, एंड प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे से समझा रही हैं मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एक्चुअली सर, मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, शाहबाद मोहम्मदपुर विलेज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, एंड मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब पे हैं, एमसीडी डिपार्टमेंट में क्लर्क है। मैं मदर भी एमसीडी डिपार्टमेंट में ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर, मुझे मॉडल बनना था बट मैं अभी उस लेवल तक जा नहीं पाई, बट मुझे लगा अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं मॉडलिंग लाइन में, बट मुझे इतना उसमें कुछ नहीं लग रहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग से कुछ सीख सकूं, अच्छा कर सकूं। बट यहाँ पे आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है, एंड दीक्षा मैम ने बताया है मुझे कैसे क्या होगा, और एक्चुअली मैं यहाँ पे आने के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई कर चुकी हूँ, पासवर्ड रेस्टोरेंट द्वारका सेक्टर 23, कुछ टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पर। एक्चुअली सर, रीड इंडिया से मैंने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था, कुछ टाइम आई थी मैं यहाँ पे 4-5 ईयर्स से पहले, तब से ही मैं रीड इंडिया को जानती हूँ, एंड रीड इंडिया बहुत बेस्ट है। रीड इंडिया से सीखने को काफ़ी कुछ है, अगर हमें उस लायक बनना है तो हम किसी को, मैं बाहर जाके किसी को बता भी सकती हूँ रीड इंडिया से मुझे क्या क्या मिल रहा है, एंड मुझे क्या क्या सिखाया जा रहा है। जॉब के, अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एंड रीड इंडिया की जो कोर्सेज है वोकेशनल्स वगैरह के, वो बहुत बेस्ट है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
2: मैं पूनम तनवर, शाहबाद गांव में रहने वाली, दिल्ली में, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मुझे अपने पेरेंट्स पे इतना प्राउड है, उन्होंने मेरे लिए आज तक जो किया, सीरियसली उन्होंने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, और मैं अब उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, जो लोग बोले कि ये उनकी बेटी है। मैं अपनी पहचान अपने पेरेंट्स के साथ बनाना चाहती हूँ, उनके लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि लोग देख के बोले कि यहाँ इन्होंने इनके लिए कुछ किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने मेरा एडमिशन पूर्णिमा स्कूल, इशावाद गांव के पूर्णिमा स्कूल में कराया, वहाँ यहाँ पर मैं बचपन से पढ़ी 5th क्लास तक, फिर उन्हीं के साथ मैं हर काम, ऐसा एक काम नहीं था जो मैंने उनके बिना आज तक किया, हर चीज़, स्कूल भी, यहाँ तक कि स्कूल लेने जाना, मुझे छोड़ने जाना, मेरे स्कूल सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा मिल्क शेक भी वही बनाते थे, मतलब स्टडीज करना, अपने स्कूल से आके जो स्कूल में मैं पूरे दिन मस्ती करती थी, पढ़ाई करती थी, टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ हर बात आके उनसे शेयर करती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले अपने पा के पास जाके अपनी शेयर करती थी। आज भी अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। मुझे अपनी मम्मी से भी बहुत लगाव है, बट लेकिन पा से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने, मतलब सारा दिन मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा रहती हूँ। मम्मी मतलब स्कूल में, स्कूल के लिए अगर ट्यूशन छोड़ाना या फिर और कुछ कर देना, बट लेकिन मैं पा के साथ जो मैं करती हूँ, सीरियसली वो बेस्ट मोमेंट मेरे पापा के साथ जो है, बहुत अच्छे मोमेंट है। मैं अपने लाइफ टाइम अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम, उनके लिए जितना करूँ मैं, जितना करूँ उतना ही कम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, गर्ल पावर जो होती है, वुमेन पावर, वो एक सबसे बेस्ट पावर होती है, वो गॉड ही उनको पावर देके भेजता है। अगर गर्ल्स बनाई है, वुमेन बनाई, तो उनके लिए भी स्पेशल पावर भी उनको दी है। ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, बाहर जाके पढ़ नहीं सकती है, कॉलेज नहीं जा सकती, या फिर ये वाला काम उनके लिए नहीं बना है, हर काम गर्ल्स के लिए बना है। अगर भगवान ने गर्ल्स को, वुमेन्स को बनाया है, तो उनके लिए भी हर काम बनाया है, वो पावर उनके लिए उनको दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गाँव की लड़कियाँ ये नहीं कर सकती है, शहर की लड़कियाँ ये कर सकती है, हर काम लड़कियाँ कर सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ, रीड इंडिया सेंटर पे आके मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाए मैंने, टीचर्स के साथ बहुत मस्ती की। यहाँ पे आके मेरा कोई एम नहीं था कि मैं ये सीख के जाऊँगी, बस मस्ती के लिए आ गई थी। बट लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ सीखने को भी मिला, इतनी अच्छी टीचर्स मिली। उनके साथ जब मतलब वो डांटती भी है तो भी अच्छा लगता है। एक दिन बात ना करो तो टीचर भी परेशान हो जाती है, जिसको क्या हो गया। मतलब हर चीज़ यहाँ की, हर चीज़ अच्छी है।
3: आई एम प्रियंका जायसवाल, आई बिलोंग यूपी इलाहाबाद एंड लिविंग शाहबाद मोहम्मदपुर। मैं यहाँ पे दिल्ली में कोर्स करने के लिए आई हूँ, फैशन डिजाइनर कोर्स। एंड वहाँ पे यूपी में अप्लाई नहीं था जॉब, मतलब कोर्स करने के लिए। हमारे पापा यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं उसके उन्हीं के साथ रहती हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलाई इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने गाँव वाली लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती ना, मैं उनको घर के बाहर निकालने के लिए सिलाई सेंटर खोलना चाहती थी, और भी फ्री कोर्सेज के लिए। मैं इतना ही कहूँगी अपने हर लड़की माँ बाप को कि प्लीज उन्हें बाहर भेजें, कुछ करने के लिए उनको भेजें। अधिकतर यहाँ पे उसके हस्बैंड यही सोचते हैं कि ये बोझ है, तो ऐसे ना करें, उसे मतलब समझे कि ये बोझ है। कम से कम अगर वो कुछ करेगी बाहर जाके तो कम से कम उसके घर में हेल्प ही होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। मेरी बचपन से यही हॉबी थी कि मैं पुलिस बनूं, लेकिन मेरी लंबाई छोटी होने के कारण मैं पुलिस नहीं बन सकी। इसलिए मैं ऐसे ही अपने गांव में ही हेल्प करना चाहती हूँ छोटा मोटा। और मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, जो अभी तक नहीं मिली ना, शायद न मिल पाएगी कभी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी लाइफ अच्छे बनाने के लिए, कोर्स करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही अच्छा मौका है। अपने माँ बाप से कहें हमें घर से बाहर करने के लिए, कोर्सेज के लिए जारी रखें। दिल्ली में पहले हमारे पापा लोग रहते हैं, हम तो बचपन से गांव में थे। तो इंटर मतलब 12th क्लास पास होने के बाद हम दिल्ली आए। जब दिल्ली यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज थे, अच्छे अच्छे भी थे, तो इसलिए मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्सेज अप्लाई कर लिया।

0: मृदंगम ही उनकी धड़कन है। श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026। तिरुवारूर 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, संगीत ममूर्ति की जन्मस्थली।
1: मैं एक संगीत के वातावरण में पला बढ़ा। मेरी माँ तिरुवारूर तंजावुर क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थी। जब मैं केवल 2.5 वर्ष का था तब मुझे पिता की अनुपस्थिति महसूस हुई। कहा जाता है माँ एक पवित्र मंदिर के समान होती हैं, और मेरे जीवन में यह बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। मेरी माँ ने अपने 3 भाइयों और हमारी जिम्मेदारी उठाई छोटे छोटे संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर।
0: हर सुबह बालक भक्त वत्सलम अपनी माँ आनंद वल्ली की प्रार्थना और भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों के साथ जगता था। वो संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाता। माँ ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। यही प्रारंभिक शिक्षा उनके जीवन भर की संगीत यात्रा की मजबूत नींव बनी। कुछ ही समय में वे अपनी माँ और मामा के साथ स्थानीय संगीत कार्यक्रमों में संगत करने लगे।
1: मेरे मामा तिरुवारूर कृष्णमूर्ति, मैंने उनसे जिद करके मृदंगम सीखना शुरू किया। वे मुझे सिखाना तो चाहते थे लेकिन हिचकिचाते थे। संगीतकारों की आय नियमित नहीं होती थी। वे नहीं चाहते थे कि मुझे भी उन्हीं संघर्षों का सामना करना पड़े जिनसे वे गुजरे थे।
0: उस समय चेन्नई भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र बन चुका था। देश भर के महान विद्वान और कलाकार वहीं आकर बस रहे थे।
1: जब मैं मद्रास आया तब मैं किसी को नहीं जानता था और न ही कोई सहारा था। मेरी माँ मेरे साथ आने में हिचकिचाई। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और बहुत आग्रह करके माँ को अपने साथ ले आया। मेरे लिए उन्होंने जो त्याग किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने मेरी खातिर उसी छोटे से कमरे में स्वयं को ढाल लिया। हम एक ऐसी बस्ती में रहते थे जहाँ छोटे छोटे घर एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाकर कमरे को ध्वनि निरोधित करता और घंटों मृदंगम का अभ्यास करता। लगातार 10 वर्षों तक यही मेरी दिनचर्या रही।
0: एक बार प्रसिद्ध गायिका M.L. वसंत कुमारी के साथ व्हाइट हाउस में प्रस्तुति के दौरान आयोजकों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने माथे पर लगा पारंपरिक विभूति चिन्ह हटा दें, लेकिन भक्त वत्सलम ने इनकार कर दिया। उनके लिए वो उनकी पहचान और आस्था का प्रतीक था और उन्होंने गर्व के साथ अपनी प्रस्तुति दी। वर्ष 1992 में उन्होंने बार्सिलोना ओलंपिक में अपनी प्रस्तुति की। इसके बाद महान कलाकार मैंडोलिन श्रीनिवास के साथ विश्व पटल पर संगत की। भक्त वत्सलम को प्रख्यात संगीतकारों के साथ ने भारतीय संगीत जगत की विशिष्ट पहचान बना दिया। एक नवाचारी कलाकार के रूप में उन्होंने विशाल तालवाद समूहों की ऐसी अनूठी प्रस्तुतियों की संरचना की जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया था। अपनी संस्था लय मधुरा स्कूल ऑफ म्यूजिक के माध्यम से वे 1000 से अधिक शिष्यों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। जो ज्ञान सीखने योग्य है उसे पूरी निष्ठा से सीखो और फिर जीवन भर उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करो।
1: संगीत मेरी सांस है, मैं अगले जन्म में भी मृदंगम ही बजाना चाहूंगा।
0: श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
1: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
0: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
1: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
0: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा इस बुद्धू की तरह, बीमारी और बढ़ जाती है।
1: तुम इतना पैरानॉइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
0: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
2: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं।
3: हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकल कर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
4: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
3: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है।
2: ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है।
3: एक्जिमा के मूल कारण और रैशेज के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
1: देखो ना, जहाँ मुझे खुजली हो रही थी वहाँ कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओ, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
1: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
1: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
0: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
2: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है, जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंग करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
5: देखिए, एंटी फंगल दवाइयां जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं। एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहां पर भी क्रीम लगाई है वहां पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयां आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीजें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोके फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
2: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना

खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्नान घर में नंगे पाव ना चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीस यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिए, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर यह इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स हैं तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो है, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर किसी आदमी को वॉट्स हैं तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहाँ जहाँ वो नर्व निकलती है उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से ये अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं। अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलानिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है तो इसका पूरा इलाज संभव है, लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौर तलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलानिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलानिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीज की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीज सिंप्लेक्स और हर्पीज जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

विविधता में एकता वाला हमारा देश भारत, ये पूरे देश की एकजुटता ही थी जिसने सालों की गुलामी से उबरने में अहम भूमिका निभाई। उन दिनों उत्तर भारत में जहां क्रांति की ज्वाला प्रबल थी, वहीं दक्षिण भारत में क्रांतिवीर ब्रिटिश शासन की नींवें हिलाने का काम कर रहे थे। इन्हीं में से एक थी वीरांगना अकम्मा चेरियन। ट्रावणकोर की झांसी की रानी के नाम से मशहूर अकम्मा का साहस ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े थे। कांजीरपल्ली ट्रावणकोर में जन्मी अकम्मा चेरियन ने 1931 में शिक्षा पूरी कर सेंट मेरीज अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में बतौर शिक्षिका शुरुआत की। प्रतिभाशाली अकम्मा जल्द ही स्कूल की प्रिंसिपल बन गई, लेकिन दिल में आजाद भारत का सपना था। 1938 में अकम्मा नौकरी छोड़कर ट्रावणकोर कांग्रेस की सदस्य बन गई। राज्य कांग्रेस ने ट्रावणकोर के लोगों के साथ एक उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किया। आंदोलन को दबाने के लिए राज्य के दीवान ने कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। विरोध में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद राज्य कांग्रेस के एक एक करके 11 अध्यक्ष गिरफ्तार कर लिए गए। 12वीं अध्यक्ष अकम्मा चेरियन बनी। अकम्मा ने कोडियार राजमहल तक रैली निकालने का फैसला किया और तय दिन प्रदर्शनकारियों का एक दल ट्रावणकोर शाही महल की तरफ मार्च करने लगा। ब्रिटिश अफसरों ने रैली को रोकने के लिए आगजनी करने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही अकम्मा आगे आ गईं और दूसरों से पहले खुद को गोली मारने के लिए ललकारने लगी। अकम्मा के साहस ने अंग्रेज अफसर को आदेश वापस लेने पर मजबूर कर दिया। एक बड़ा नरसंहार टल गया। समाचार सुनकर महात्मा गांधी ने अकम्मा को ट्रावणकोर की झांसी की रानी कहकर सम्मानित किया था। अंग्रेजों के लिए लगातार खतरा साबित हो रही अकम्मा को 24 दिसंबर 1939 को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहाई के बाद आजादी के लिए जारी संघर्ष में अकम्मा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गिरफ्तार हुई। 1947 में देश की आजादी के बाद अकम्मा चेरियन ट्रावणकोर से विधानसभा की सदस्य चुनी गई। अन्याय का आजीवन विरोध करने वाली उच्च नैतिक मूल्यों वाली इस वीरांगना ने 5 मई 1982 को आखिरी सांस ली।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: वो खिलाड़ी जिसने जानवरों की भलाई की राह चुनी, डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026। तंजावुर जिले के एक सुंदर गांव बल्लम में 1960 के दशक में एक युवा लड़का किसान परिवार में पला बढ़ा। उसे खेल बहुत पसंद थे। उसका सपना एथलेटिक्स और हॉकी का स्टार खिलाड़ी बनना था। वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वो अपने दादा के बहुत प्रिय थे।
1: कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब मैं अपने दादाजी के पास आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा, कुछ ऐसा सीखो जो किसानों के काम आए। वह मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। तब मैं सिर्फ BSc एग्रीकल्चर के बारे में जानता था, मुझे वेटनरी साइंस की जानकारी नहीं थी। मेरे दोस्त और सहपाठी वीर पांडियन ने मुझे वेटनरी साइंस से परिचित कराया।
0: युवा पुण्यमूर्ति 70 के दशक के मध्य में मद्रास वेटरनरी कॉलेज पहुंचे। वो न केवल पढ़ाई में होशियार थे बल्कि वो लगातार 2 साल तक कॉलेज एथलेटिक्स चैंपियन भी रहे। कुछ वर्षों बाद वे इरोड के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हुए। वहीं एक घटना ने उनकी सोच को नई दिशा दी।
1: मैं इरोड में एक युगल द्वारा चलाए जा रहे पोल्ट्री फार्म पर गया। मुर्गियां स्वस्थ दिख रही थी, अच्छा खा रही थी, फिर भी अंडे नहीं दे पा रही थी। रिकॉर्ड से पता चला कि उन्हें कॉक्सिडियोसिस यानी परजीवी रोग के लिए सल्फानामाइड दवा 10 हफ्ते तक दी गई थी। इसका दीर्घकालीन असर उनके प्रजनन पर पड़ा और वे अंडे नहीं दे पाई। अगर हमें भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स बचानी है तो उनका समझदारी से उपयोग करना चाहिए या फिर उनके विकल्प खोजने होंगे। मुझे ये एहसास हुआ।
0: पौधों के औषधीय गुणों की मदद से डॉक्टर पुण्यमूर्ति ने पशु रोगों के उपचार और रोकथाम में औषधीय पौधों का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने एथनो वेटरिनरी को विकसित और प्रमाणित किया, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित पशु चिकित्सा पद्धति।
1: पशुपालकों के लिए मास्टाइटिस एक गंभीर बीमारी है। इसके उपचार के लिए 1 चम्मच एलोवेरा, 2 मुट्ठी हल्दी और थोड़ा सा चूना मिलाकर दवाओं के बिना सफल उपचार किया जा सकता है। ये पारंपरिक सिद्ध आधारित इलाज के असर को दिखाता है।
0: उनके इलाज से लाखों गायों और किसानों को फायदा हुआ। उन्होंने जानवरों की 34 बीमारियों के लिए 5 आसान इलाज विकसित किए।
1: एक जिम्मेदार पशु चिकित्सक के रूप में जितना जरूरी स्वस्थ दूध, अंडे और मांस मुहैया कराना है, उतना ही जरूरी गायों का स्वस्थ गोबर और मूत्र भी है, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स को बचाए रखना भी जरूरी है, जो हम एथनोवेटनरी चिकित्सा के जरिए कर रहे हैं।
0: डॉक्टर पुण्यमूर्ति की सभी खोजें सबके लिए निशुल्क हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उनके काम को लाखों किसान तक पहुंचाया, जिससे उन्हें बहुत फायदा मिला।
1: मैं दिल से खिलाड़ी हूं, इसलिए अपने काम से पूरा प्यार करता हूं।
0: डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026।

0: एंड वेलकम टू जीते रहो।
1: हाय फ्रेंड्स।
2: कुहू, मैं बहुत दिनों से एक बीमारी के बारे में जानना चाह रहा था, पर
1: ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके बारे में जानने से तुम झिझक रहे हो?
2: एक्चुअली थोड़ा पर्सनल हो जाता है। इस बीमारी के बारे में सोचते ही मुझे मासी का दर्द याद आ जाता है।
1: ओ, यू मीन कैंसर? आई नो, ये बीमारी एक साथ कई जिंदगियां बदल देती है।
2: हाँ, हमेशा सुनता रहता हूँ, रेगुलर आर्टिकल्स भी निकलते रहते हैं, पर मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये है क्या और इसका नाम कैंसर कैसे पड़ा।
1: आइए देखते हैं।
3: कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका संबंध हमारे शरीर की मूलभूत इकाइयों से है। हमारे शरीर की ये मूलभूत इकाइयां हैं कोशिकाएं यानी सेल्स। शरीर में इनकी संख्या अरबों में होती है। ये कोशिकाएं शरीर के हर एक अंग के आधार पर अलग अलग होती हैं, जैसे लिवर सेल्स, ब्रेन सेल्स, ब्लड सेल्स इत्यादि। इन्हीं कोशिकाओं के विकास के आधार पर हमारा शारीरिक विकास होता है और इन्हीं से बनते हैं उत्तक यानी टिश्यूज। टिश्यूज असल में कोशिकाओं का एक समूह है। हम सबके शरीर में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, जो विभाजित होकर अलग अलग ऑर्गन्स की सेल्स में बदल सकती हैं और उस ऑर्गन का विशेष काम करने लगती हैं, जैसे किडनी और लिवर की सेल्स। कुछ स्टेम सेल्स किडनी सेल्स में परिवर्तित होती हैं तो कुछ लिवर सेल्स में। वहीं कुछ स्टेम सेल्स ब्रेन सेल्स में बदल जाती हैं तो कुछ मसल्स की सेल्स में। सामान्य स्थिति में कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कोशिकाओं के विकास चक्र में जब संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। इस परिस्थिति में कोशिकाओं का विभाजन बहुत तेजी से होने लगता है और इसी वजह से नई कोशिकाएं भी बहुत तेजी से बनने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोशिकाओं के नष्ट होने की प्रक्रिया पर लगाम कस जाती है। इससे टिश्यूज में अतिरिक्त कोशिकाएं जमा होने लगती हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। जहां तक इस बीमारी के नामकरण का सवाल है तो इसके पीछे भी इन्हीं ट्यूमर्स का हाथ है। आज से हजारों साल पहले हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें मेडिकल साइंस का जनक कहा जाता है, ने जब एक ममी के ट्यूमर को देखा तो उन्हें जो आकृति दिखी वो केकड़े यानी क्रैब के पैरों से मिलती जुलती थी। लैटिन में केकड़े को कैर्सिनोस कहा जाता है, लिहाजा उन्होंने इसका नाम रखा कैर्सिनोमा, जो आगे चलकर कैंसर कहलाने लगा। कैंसर दो तरह से शरीर में फैलता है। इनमें एक तो इन्वेजन है और दूसरा मेटास्टेटिस। इन्वेजन के तहत कैंसर सेल्स अपने ओरिजिनेटिंग यानी उत्पन्न होने वाले अंग के पड़ोसी टिश्यूज में घुस जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में बनने वाली गांठ इसका एक उदाहरण है। लेकिन मेटास्टेसिस में कैंसर सेल्स ओरिजिनेटिंग अंग के साथ साथ दूसरे अंगों के सेल्स में भी प्रवेश कर जाते हैं। मेटास्टेसिस में कैंसर सेल्स पहले लिम्फ यानी लसिका और ब्लड वेसल्स में प्रवेश करते हैं। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाते हैं। कैंसर के सिम्टम्स यानी लक्षण कई बार कैंसर से प्रभावित अंग की ओर इशारा करते हैं, इसलिए इन्हें स्पेसिफिक सिम्टम्स कहा जाता है। जैसे कोलन कैंसर में दस्त, कब्ज और मल के साथ खून का आना, और ब्लैडर कैंसर में पेशाब में खून आ सकता है। लेकिन कुछ सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये सिम्टम्स कैंसर से प्रभावित अंग की ओर इशारा नहीं करते। जैसे हमेशा थकान लगना, क्योंकि कैंसर सेल्स शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करने लगते हैं। इसके अलावा वजन का घटना, भूख न लगना, बुखार आना, त्वचा का काला हो जाना, खुजली होना और असहनीय दर्द होना नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के उदाहरण हैं। लेकिन शुरुआती दौर में इन सिम्टम्स का या तो पता नहीं चलता या फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।

0: वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के सिम्टम्स की। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि कैंसर शरीर में फैलता कैसे है। लेकिन शायद आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे पाचन तंत्र, हड्डियां या फिर कोई और अंग।
1: मोटे तौर पर कैंसर को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मसलन कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा ये कैंसर का सबसे सामान्य रूप है। शरीर के किसी भी अंग की बाहरी या अंदरूनी सतह यानी एपिथेलियल टिश्यूज में होने वाले कैंसर इस श्रेणी में आते हैं। लंग्स, ब्रेस्ट, कोलन कैंसर, सर्वाइक्स यानी बच्चेदानी का कैंसर और माउथ कैंसर कार्सिनोमा के प्रमुख उदाहरण हैं।
2: कैंसर की दूसरी कैटेगरी है सार्कोमास। इस कैटेगरी में कैंसर सपोर्टिव या कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाओं में होते हैं, जैसे हड्डी, कार्टिलेज, वसा और मांसपेशियां। कैंसर की अगली कैटेगरी है लिम्फोमास। लिम्फ नोड्स में होने वाले कैंसर को लिम्फोमास कहा जाता है।
1: लिम्फोमा के बाद आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है।
2: अब सवाल उठता है कि कैंसर होता कैसे है। आम धारणा तो यही है कि इसका कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है। कुछ प्रमुख कारणों के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। इनमें एक तो शरीर के अंदरूनी कारण है, जैसे हेरिडिटी, असंतुलित भोजन और हॉर्मोन्स। कुछ बाहरी कारण भी हैं, जैसे सिगरेट और तंबाकू का सेवन, शराब, कुछ कार्सिनोजेनिक रसायन, अल्ट्रावायलेट किरणें और न्यूक्लियर रेडिएशन इत्यादि। इन दोनों वर्गों के अलावा कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ खास किस्म के कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं।
0: अब बात आती है इनके डायग्नोसिस की। कैंसर के केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अर्ली स्टेज में इसका पता लगाया जा सकता है।
3: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर अर्ली स्टेजेस में सिर्फ पता ही लगाते हो या फिर ठीक भी करते हो तुम लोग?
0: जी हाँ बबलू जी, अर्ली स्टेजेस में पता चलने पर कैंसर काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन आइए पहले ये तो देख लें कि कैंसर का पता कैसे चलता है, यानी क्या है इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट्स।
2: कैंसर का पता अगर शुरुआती अवस्था में ही लग जाए तो इलाज में काफी फायदा होता है और इसे जड़ से भी मिटाया जा सकता है। अक्सर कैंसर के मरीज डॉक्टर के पास एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं, जब किसी अंग में कैंसर के कारण सूजन हो जाती है या कोई अल्सर जब लंबे समय तक ठीक नहीं होता या ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे में इलाज के विकल्प सीमित हो जाते हैं, मगर अब कुछ ऐसे स्क्रीनिंग मेथड्स उपलब्ध हैं जिनसे अर्ली स्टेजेस में ही कुछ खास तरह के कैंसर का पता चल जाता है। ऐसा ही एक टेस्ट है पैप स्मियर। ये एक ऐसी स्क्रीनिंग टेक्निक है जो सर्वाइकल कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस प्रोसेस में एक छोटे ब्रश या स्क्रेपर से सेल्स का सैंपल ले लिया जाता है, फिर इन सेल्स को एक स्लाइड में रखकर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर यदि किसी तरह की असामान्यता यानी एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो ये कैंसर का इंडिकेटर हो सकता है। ठीक इसी प्रकार मैमोग्राफी भी एक तरह की एक्सरे तकनीक है जो खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में काफी कारगर है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई के जरिए भी कैंसर का पता चल जाता है। अगर पेशेंट को नॉन हीलिंग ओरल इन्फेक्शन है तो माउथ कैंसर के लिए उसकी जांच की जाती है। लंग कैंसर में मरीज को लंबी खांसी हो सकती है, बलगम के साथ खून भी आ सकता है और मरीज की सांस भी उखड़ी रहती है। ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने पर मरीज की लंग कैंसर के लिए जांच की जाती है। अगर बार बार दस्त या कब्ज हो जाए जो 3 सप्ताह से ज्यादा चले तो बाउल कैंसर के लिए जांच जरूरी हो जाती है। उल्टी के साथ खून आने पर लिवर कैंसर की जांच जरूरी होती है।
1: अगर 2 और 3 सप्ताह से ज्यादा लो ग्रेड फीवर हो और उसकी वजह का पता न चले तो ब्लड कैंसर के लिए टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि लो ग्रेड फीवर कई तरह के कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। इसके अलावा बार बार किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या बगैर किसी वजह से वजन घटे तो भी ब्लड कैंसर के लिए जांच करवाई जा सकती है।
2: अगर पेशेंट में कैंसर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो FNAC करते हैं। FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें एक बारीक पतली सी सुई ट्यूमर स्थित जगह पर डालकर कुछ कोशिकाएं निकालते हैं। पैथोलॉजिस्ट फिर इसका परीक्षण करते हैं। ट्यूमर, लिम्फ नोड और बोन मैरो कैंसर का पता लगाने के लिए FNAC या बायोप्सी की मदद ली जाती है। बायोप्सी के लिए कैंसर वाली जगह से टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है, फिर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। माइक्रोस्कोप में देखने पर कैंसर टिश्यूज नॉर्मल टिश्यूज से एकदम अलग दिखते हैं। नॉर्मल टिश्यूज जहां सुव्यवस्थित होते हैं वहीं कैंसर टिश्यूज का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये टेढ़े मेढ़े अव्यवस्थित से लगते हैं। कैंसर सेल्स जितने अव्यवस्थित होते हैं कैंसर उतना ज्यादा जानलेवा होता है।
4: एक बार डायग्नोसिस हो जाए कि ये गांठ, जैसे गले में गांठ है और गांठ के अंदर कैंसर का डायग्नोसिस आया है, तो ये गांठ का कैंसर कहां से आया है इस विषय में हम फिर कुछ और जांचें की जाती हैं, जैसे हम CT स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि ये कैंसर किस स्टेज का है, कहां तक गया है। पहले कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद उसका स्टेजिंग किया जाता है, स्टेजिंग के लिए कुछ जांचें होती हैं जो मैंने अभी बताई वो की जाती है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है।
1: कैंसर को मोटे तौर पर 4 भाग में बांट सकते हैं। कैंसर जिस अंग में हुआ है अगर उसमें ही रहे और उसका फैलाव और गहराई थोड़ी हो तो इसे फर्स्ट स्टेज का कैंसर कहते हैं। कैंसर का फैलाव अगर बढ़ जाए और आसपास के अंगों में फैल जाए तो इसे सेकेंड स्टेज का कैंसर कहते हैं। कैंसर फैलकर आसपास के रीजन और लिम्फ नोड्स में फैल जाए तो इसे थर्ड स्टेज का कैंसर कहा जाता है। फोर्थ स्टेज में कैंसर भयानक रूप ले चुका होता है। अब कैंसर सेल्स लिम्फ नोड्स के जरिए शरीर के दूसरे अंगों जैसे लिवर, हड्डी और फेफड़ों तक फैल जाते हैं।
4: यदि कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो इससे पूरे बचने की पूरी पूरी संभावना है। अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ने के बहुत से फायदे हैं। एक कि आप बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं, तो इसका इलाज बहुत सरल है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, खर्चा इलाज का, वो भी बहुत कम हो जाता है। तीसरा, डिसफिगरमेंट यानी कि अगर बड़ा ट्यूमर होगा तो उसको निकालने के लिए उतना बड़ा ऑपरेशन की जरूरत है, उतना ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। और यदि छोटा सा ट्यूमर है तो उसका छोटा सा ऑपरेशन है, 2 दिन 2-3 दिन अस्पताल में रहना है, उसके बाद घर चले जाना है, नॉर्मल लाइफ आपकी जल्दी आ जाती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं आता। आजकल कई टेस्ट आ गए हैं जिससे हम कैंसर को बड़ी अर्ली स्टेज में, इवन स्टेज 1 से पहले की स्टेज में भी हम पकड़ सकते हैं। जैसे कि आजकल हम मैमोग्राफी करते हैं, मैमोग्राफी में छोटा सा छोटा लीजन भी हमें दिखाई दे जाता है, जब तक गांठ बनी ना हो उससे पहले भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है। दूसरा, हम स्त्रियों में करते हैं पैप टेस्ट, जो गर्भाशय यानी बच्चादानी के मुंह के कैंसर

0: एक सवाल का जवाब खत्म नहीं होता, तुम दूसरा सवाल दाग देते हो। खैर आइए देखते हैं क्या है कैंसर का इलाज।
1: कैंसर का मरीज कितना ठीक होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर किस तरह का है और किस स्टेज में पहुंच चुका है। कैंसर के शुरुआती स्टेज में इलाज का मुख्य उद्देश्य होता है पूर्ण उपचार। एडवांस स्टेज में पहुंच जाने के बाद प्राथमिकता होती है बीमारी की रोकथाम कर मरीज की जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाना। इसी आधार पर कैंसर के इलाज को चार वर्गों में बांटा गया है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी। सर्जरी में ट्यूमर और उसके आसपास जिन जगहों पर कैंसर सेल्स होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। कुछ कैंसर के एडवांस स्टेजेस में सर्जरी का इस्तेमाल रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साथ भी किया जाता है। रेडियोथेरेपी लगभग 6 दशक से कैंसर के इलाज का एक प्रमुख विकल्प बन गया है, चाहे कैंसर फर्स्ट स्टेज में एक अंग तक सीमित हो या एडवांस स्टेज में शरीर के कई अंगों तक फैल चुका हो। और शायद यही वजह है कि आज कैंसर के 50% मामलों में रेडियोथेरेपी का उपयोग हो रहा है। रेडिएशन एक खास तरह की ऊर्जा है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मशीनों के जरिए बीम के रूप में प्रवाहित की जाती है। गामा रेज कैंसरस सेल्स को मार देती हैं।
2: इसमें ना ऑपरेशन की जरूरत है ना कोई डिसफिगरमेंट होता है, सिर्फ रेज आती हैं और ट्यूमर को बर्न करती हैं और ट्यूमर जब खत्म हो जाता है। रेडियोथेरेपी का उपयोग मुंह के कैंसर्स, गले के कैंसर्स, टट्टी के मार्ग का कैंसर, स्वर पेटी का कैंसर, इनमें बहुत ज्यादा, और कभी कभी छाती स्तन के कैंसर में भी यूज किया जाता है। रेडिएशन बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में भी यूज की जाती है। रेडिएशन के अपने बहुत से फायदे हैं, बिना ऑपरेशन बिना किसी के आप ट्यूमर को ट्रीट करते हैं। दूसरा, ऑर्गन सेव होता है, जैसे कि स्वर पेटी आपकी बच सकती है, आप आवाज बोल सकते हैं, मगर इसके साथ साथ कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म में मुंह में लार बननी बंद हो जाती है, पेशेंट को सॉलो करने में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी खाने का स्वाद नहीं आता है, और लंबे टर्म में ये फाइब्रोसिस वगैरह करती है जिससे पेशेंट को बाल, जहां जहां रेडिएशन लगती है वहां बाल चले जाते हैं, जो आजीवन चले जाते हैं, दोबारा कभी नहीं आते वो लाइफ में बाद।

0: जीते रहो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के इलाज की। तो कैंसर के विरुद्ध हमारी लड़ाई कई फ्रंट्स पर जारी है और यकीन मानिए इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं।
1: कैंसर के इलाज की अगली कैटेगरी है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी असल में एक ड्रग थेरेपी है। इसके तहत मरीज को जो दवाइयां दी जाती हैं, वो मैलिग्नेंट सेल्स के विकास यानी ग्रोथ और विभाजन यानी डिवीजन को प्रभावित करती हैं। कीमोथेरेपी की दवाइयां किसी भी स्टेज में कैंसर की कोशिकाओं को मारकर उनका विभाजन रोक देती हैं। इस प्रक्रिया की वजह से कई बार कैंसर सेल्स के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाएं भी खत्म हो जाती हैं। तुरंत दिखने वाले साइड इफेक्ट्स हैं वॉमिटिंग टेंडेंसी, चक्कर आना, कमजोरी, कभी डायरिया या कभी कब्जियत, बालों का झड़ना, मुंह आना, मुंह में छाले पड़ना। ल्यूकेमिया, लिम्फोमास और टेस्टिकुलर कैंसर के मामलों में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल सर्जरी और रेडिएशन के मुकाबले ज्यादा किया जाता है। कुछ खास परिस्थितियों में सर्जरी या रेडियोथेरेपी के बाद मरीज को कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि कैंसर फिर से ना हो। हार्मोन थेरेपी भी कीमोथेरेपी का एक प्रकार है। कुछ कैंसर्स जैसे ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में हमारे शरीर के हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ही कैंसर सेल्स को बढ़ने में मदद करने लगते हैं। इसलिए

0: हार्मोन थेरेपी में ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो उन हार्मोन्स के बनने को कम करती हैं जो कैंसर को फैलाने में मदद कर रहे होते हैं।
1: जानती हो कोकिला, मुझे अंकुश फिल्म का वो गाना याद आ रहा है।
2: अच्छा, कौन सा गाना? जरा हम भी तो सुने।
1: इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
2: तुमने ठीक कहा बबलू। दोस्तों, इस बीमारी के विरुद्ध जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है पेशेंट का आत्मविश्वास। इसीलिए अपना विल पावर स्ट्रांग रखिए और हाँ, एक अच्छी जीवन शैली अपनाइए। अपने खान पान में हरी सब्जियों के साथ साथ फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि हाल ही में ये स्पष्ट हो चुका है कि एक अच्छी जीवन शैली, अच्छे खान पान से हम काफी हद तक इस भयावह बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
1: बाय एंड डू टेक केयर। जीते रहो।
3: हमारे शरीर में लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। कोशिकाओं के विकास चक्र में जब संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। मोटे तौर पर कैंसर को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मसलन कैर्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। कैंसर का पता अगर शुरुआती अवस्था में ही लग जाए तो इसे जड़ से भी मिटाया जा सकता है। अगर पेशेंट में कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं तो FNAC या बायोप्सी करते हैं। कैंसर का इलाज चार तरीकों से किया जाता है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी।

0: 나니 까리비아로 다친 황이 파리디아오 Little things are not fine
1: पर्वतों की गान कोकिला श्रीमती कोकिला लेक देवी पद्मश्री 2026 कार्बी अंगलोंग असम का एक सुंदर गांव जहां रहता है कार्बी समुदाय और पोकिला लेक देवी। गुमंतु कलाकारों के परिवार में जन्मी पोकिला को कार्बी संगीत न सिर्फ विरासत में मिला बल्कि उन्होंने उसे जिया। बचपन से ही उनकी असाधारण प्रतिभा झलकने लगी थी। संगीत के इस स्वरूप से गहरे जुड़ाव ने उन्हें महसूस कराया कि ये विरासत संकट में है। कार्बी संगीत केवल बुजुर्गों तक सीमित था।
2: उन दिनों कार्बी गीत तो थे पर लोगों को उन्हें पेश करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था।
1: बाधाएं अनेक थी, लगातार निर्धनता की छाया थी और परंपरा ने महिलाओं को सार्वजनिक मंचों से दूर रखा। वर्षों तक पोकिला पृष्ठभूमि में रही, लुप्त होती कला की मौन प्रहरी बनकर। किंतु उनकी आवाज एक दायरे में नहीं बंध सकती थी। बंधन तोड़कर उन्होंने चर्च में अपना मंच पाया, समविचारी लोगों को साथ लिया और महिलाओं को साहस देकर अपने साथ जोड़ा। वे दुर्गम इलाकों में घूमी, बुजुर्गों से मिलकर लुप्त होती कला का दस्तावेजीकरण किया।
2: आप गीत के बोल लिखिए, उन्हें धुन में डालिए, हम हर संभव मदद करते थे और अपने सांगरी म्यूजिक सोसाइटी के माध्यम से हमने इन गीतों को पेश किया।
1: स्थानीय आकाशवाणी केंद्र के प्रसारणों से लेकर अपने पहले कैसेट कांधोन के साहस भरे निर्माण तक उन्होंने कार्बी आत्मा को राष्ट्रीय ताने बाने में पिरोना शुरू किया। महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब जुबिन गर्ग के साथ उन्होंने अपनी कला प्रदर्शित की। आधुनिक ऊर्जा के साथ प्राचीन मंत्रों को पेश करके नई पीढ़ी को आकर्षित किया। 50 वर्ष, 300 गीत, उन्होंने कार्बी संगीत को पहाड़ियों से निकालकर लोगों के हृदय तक पहुंचाया। आज पोकिला कार्बी संगीत की कुल माता है, लेखक, मार्गदर्शक और प्रस्तुति द्वारा अतीत सहेज कर सुनिश्चित कर रही है कि कार्बी आंगलोंग की महिलाएं अपना भविष्य स्वयं स्वरबद्ध करें।
2: मुझे आशा है कि हमारा कार्बी आंगलोंग और प्रगति करेगा। कार्बी आंगलोंग की महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही मेरा सपना है।
1: श्रीमती पोकिला लेक देवी, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमन।

0: गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम स्मिता है। लास्ट टाइम हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारे लाइफ स्किल के सेशंस होंगे वो लीडरशिप सेशंस के पैरेलल चलेंगे। जो जो टॉपिक्स मैम कवर करेंगे, हम उसको एक एक टॉपिक को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ लीडर तो ठीक है कि हमें वो चीजें समझनी, एज एन इंडिविजुअल भी हम उससे कैसे शुरुआत कर सकते हैं। मैम की प्री कमिटमेंट की वजह से इस बारी जो हमारा सेशन है वो अभी अगले वीक पोस्टपोन हो गया है। सो आई थॉट कि एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीम वर्क का, हमने पहले भी ये वाला सेशन लिया था, बट कुछ नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं, नए बेनिफिशरीज जुड़े हैं। सो मे बी वी कैन स्टार्ट विथ टीम वर्क, कि टीम वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कि हमें एक साथ जुड़ के काम करना क्यों जरूरी है। सो आई होप जिनको ये रेपिटेटिव लग रहा होगा, इसका मतलब है आपने टीम वर्क में काम करना शुरू कर दिया है। और कुछ अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो टुवर्ड्स द एंड, छोटा सेशन है ये, वी विल हैव अराउंड 30 मिनट्स ऑफ माई स्पीकिंग एंड देन वी कैन शेयर योर व्यूज। तो टीम वर्क से क्या समझ में आता है, किसी को कुछ पता है ये टर्म टीम वर्क क्या होती है? टीम वर्क इंग्लिश की टर्म है, इसका मतलब है कि एक साथ जुड़ के एक होता है कि अकेला चलता है, एक इंसान अकेला काम करता है, और दूसरा होता है कि हम आते दुनिया में अकेले हैं लेकिन रहना तो हमें सबके साथ है। और घर में हो गया, प्रोफेशनली हो गया, पर्सनली हो गया, हम कोई भी काम अलग से नहीं करते, अकेले नहीं करते, कुछ लोगों के साथ जुड़ के, कुछ लोगों की मदद से करते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ के करते हैं, उसको हम टीम वर्क कह सकते हैं। रीड इंडिया में जो काम करते हैं लोग, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टीम वर्क है, क्योंकि हम समुदाय के साथ काम करते हैं, समुदाय के लिए काम करते हैं और समुदाय में रह के काम करते हैं। हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वो कम्युनिटी के अंदर हैं, कम्युनिटी के लिए हैं, और कम्युनिटी ही उनसे हमारे हम उनसे सेंटर्स के थ्रू इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि वो, अगर हमारे सेंटर्स पे कोई आता नहीं है तो हमारे सेंटर की कोई वैल्यू नहीं है। वो मशीनें, वो किताबें, वो जितनी हमने आपको रिसोर्सेस दिए हैं, चाहे वो मशीनें हैं, चाहे ब्यूटी का सामान है, इसीलिए हमारे सेंटर्स आज, जो जो 15 15 साल पुराने सेंटर्स भी हैं, आज भी वो लोग क्यों काम कर पा रहे हैं, क्योंकि नया नया समुदाय जुड़ रहा है और जो पुराना समुदाय है, जो पुराने बेनिफिशरीज हैं, जो पुराने बच्चे हैं जो सीख के गए हैं, वो आज भी आते हैं। शायद कुछ बच्चे किताबें पढ़ना शुरू किया था उन्होंने और आज वो कोई ना कोई लघु उद्योग की ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे भी बच्चे होंगे जो हमारे साथ पिछले 5 10 सालों से जुड़े हैं, तो उनको हम क्यों जोड़ के रख पा रहे हैं? क्योंकि हमारा काम जो है वो समुदाय का है, और हम अपनी सर्विसेज अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं देंगे तो कोई हमारे सेंटर पे नहीं आएगा। कभी कभी हम ऐसा भी सुन देंगे, अब एनजीओ तो बहुत सारे हैं लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं वो हमारे सेंटर पे आके सीखना चाहते हैं। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या क्वालिटीज हैं हमारे सेंटर में, स्पेशली लड़कियां क्यों आके सीखना चाहती हैं? आप सभी लोग करीबन 10 साल, 8 साल, 5 साल, 2 साल से सेंटर चला रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है कि जब हम टीम वर्क की बात करते हैं या टीम की बात करते हैं, टीम वर्क तो छोड़ दीजिए, टीम वर्क से हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि वो 4 लोग जिनके साथ हम रीड में जुड़े हैं, यानी कि आप हो गए, लाइब्रेरियन हो गया, ट्रेनर हो गया, लेकिन हम अपने बेनिफिशरीज को नहीं भूल सकते। वो लोग जो हमारे साथ आके हमारे लिए जुड़ के काम कर रहे हैं उनको हम नहीं भूल सकते। मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल दूंगी, जो हम रामपुर में विजिट किया था उसका मैं अभी अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आपको क्यों लगता है कि समुदाय हमारे साथ जुड़ के क्यों रहता है, बार बार क्यों आता है, साल दर साल, 10 साल, 15 साल तक क्यों आता है हमारे पास, हमारे सेंटर्स में? फ्री दे रहे हैं क्या, इसलिए आता है या कोई और रीजन है?
1: मैम, हमारा कमिटमेंट, जो हमारी कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट है, जिस
0: क्या
1: तरह से हम
0: कमिटमेंट
1: कम्युनिटी
0: है?
1: को लेकर चलते हैं अपने साथ, मैम, जो कनेक्शन हमने उनके साथ बिल्डअप किया है, जो कॉन्फिडेंस कम्युनिटी को हमारे ऊपर है, हमारे साथ सीखने में है, वो चीज उन्हें अलग जगह नहीं मिल रही, इसलिए वो हमारे साथ कनेक्टेड है। 5 साल से हम
0: ओके
1: उन्हें रिटेन कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द गुड कॉज। और उन्हें भी पता है कि वी आर डूइंग इट, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वी आर डूइंग इट विदाउट एनी प्रॉफिट। तो दिस इज आर डेडिकेशन टुवर्ड्स अ वर्क विच इज कनेक्टिंग द कम्युनिटीज।
0: तो आवर डेडिकेशन को हम एक पॉइंट रखते हैं कि हम जो एज ए टीम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम डेडिकेटेड है, यानी कि वो चार पांच लोग जो सना के सेंटर में हैं, और सना के पास दो सैटेलाइट सेंटर्स भी थे, जो इनकी टीम है वो एक क्वालिटी सर्विस दे पा रही है अपनी कम्युनिटी को, इसीलिए उनकी जो कम्युनिटी है वो लगातार साल दर साल इनसे जुड़ी हुई है। सिंस वी प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ट्रस्ट फैक्टर, दीक्षा ने मैसेज में लिखा है। थैंक यू दीक्षा। और कोई बताना चाहेगा? इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारी एज ए टीम, एज ए रीड इंडिया, आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हैं, क्या 80 लोग एक टीम है या हम अलग अलग सेंटर से जुड़े हैं? अगर हम एक हैं तो हमारी एक कॉमन क्वालिटी क्या है एज ए टीम? अगर हम अलग अलग हैं तो हमारे अलग अलग क्या क्वालिटीज हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। एनीबडी एल्स कोई कोशिश करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा?
1: गुड आफ्टरनून
0: गुड आफ्टरनून
1: मैम।
0: स्वाति जी।
1: मैम, एक तो सेफ इन्वायरमेंट है फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड बॉय स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड सेकंड ये है कि हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट होता है उनके साथ वो भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे एरिया के होते हैं। उसके साथ साथ ही जो 3 महीने वो हमारे पास रहते हैं, तो उन 3 महीनों में हम भी उनको ज्यादा अच्छे से मतलब पहचान सकते हैं, और वो भी हमें अच्छे से जानते हैं, तो एक अटैचमेंट बन जाती है। छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, तो हमारे पास 3 to 6 ईयर एज ग्रुप से लेकर मतलब अडल्ट तक के सारे लेवल का कुछ ना कुछ सबको सीखने का चांस है, सीखने के लिए साधन है हमारे पास, तो इसलिए वो हमारे पास मतलब सालों तक अटैच रहते हैं।
0: राइट राइट। थैंक यू स्वाति। और कोई कुछ बताना चाहेगा? बिल्कुल ठीक बोला है स्वाति ने कि जो क्वालिटी सर्विस है, जो डेडिकेशन है, और जो हम उनको जानने की कोशिश करते हैं, एक एक रिलेशनशिप बना के रखते हैं उनसे, उनकी तकलीफें जो हैं या उनके जो चैलेंजेस हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं।
2: लाइट ऑफ हो जाएगी, मतलब देखिए लाइट्स आ गई है ना, ये यूपीएससी का यूपीएससी का।
0: तो वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड। ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जैसे कि सना हो गई, स्वाति हो गई, एवरी ईच वन ऑफ अस, जितने भी लोग हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर्स हैं, सालों से जो जुड़े हुए हैं, हम लोग एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं। फर्दर जा रहे हैं एज इन हम लोगों के घर में जा जाके उनको निकाल के लेके आते हैं कि नहीं, आप आइए हमारे सेंटर पे सीखिए। सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ वेरी गुड टीम, जहाँ पे हम बियॉन्ड आवर कमिटमेंट जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वी बिलीव इन आवर मिशन। हम बिलीव करते हैं कि कोई हमारे सेंटर पे आएगा तो वो हमारे सेंटर से कुछ सीख के ही जाएगा, कुछ लेके ही जाएगा, और ऐसी चीज लेके जाएगा जो हमेशा साल दर साल उसके साथ रहेगी। क्योंकि अगर हमने किसी को कोई स्किल दे दिया तो वो स्किल हम वापस तो नहीं ले सकते ना। आपने किसी को 100 रुपए दे दिए तो वो 100 रुपए तो खत्म हो जाएंगे, वो शायद खाना खरीद लेगा उसका, या कपड़ा खरीद लेगा, या अपनी कोई भी जरूरत की चीज खरीद लेगा। लेकिन जिसको हमने कला दे दी एक बार, चाहे वो स्टिचिंग की स्किल है, ब्यूटी की स्किल है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की स्किल है, या फिर सॉफ्ट स्किल है, यानी कि बातचीत करने का तरीका, या अपना आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सॉफ्ट स्किल हो गई, टेक्नोलॉजी स्किल हो गई, तो वो स्किल तो कोई वापस नहीं ले सकता। बट वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड, हम लोग एज ए टीम काम करके एक और दरिया जो है वो पार करते हैं, जो कि है सोशली। सोशली जो दबाया जाता है कि नहीं, आपको नहीं जाना है सेंटर पे, नहीं जाना है, बाहर नहीं निकलना है, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उस बांध को भी हम तोड़ें। दिस इज वन ऑफ द कोर क्वालिटी ऑफ आवर टीम, जो रीट की जो टीम है ये कोर क्वालिटी बन गई है। एनीबडी एल्स, कोई और कुछ, किसी ने कॉमेंट में लिखा है कुछ, लेट मी जस्ट रीड दैट। पॉजिटिव एनवायरमेंट, ज्योत्सना जी लिख रहे हैं पॉजिटिव एनवायरमेंट, वेरी गुड। कैन यू डिफाइन पॉजिटिव एनवायरमेंट?
1: गुड आफ्टरनून मैम। गुड
0: गुड आफ्टरनून,
1: आफ्टरनून
0: गुड
1: मैम।
0: आफ्टरनून।
1: हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग यहाँ पे आते क्यों, कि एक उनको ट्रस्ट होता है रीड इंडिया के नाम से ही, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं, और लड़कियों को भेजते हैं हमारे यहाँ पे कि उनको पता है कि यहाँ पे बच्चियां जा रही है या लेडीज, हमारे घर से कोई भी लेडीज जा रही है तो यहाँ पे सेफ है इस चीज के लिए। और जो भी सिखाया जाएगा, जो भी चीज होगी यहाँ पे अच्छे से ही सिखाया जाएगा, उनकी ग्रोथ ही होगी, कभी वो डाउन नहीं होगी किसी चीज के लिए। तो कुछ
0: बिल्कुल
1: बेनिफिशियरीज मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, उनसे आपसे बात भी करना चाहते हैं।
0: डायरेक्टर आप उन्हीं से बात करिए, वो लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, क्या उनको आने से फायदा है, वो क्यों सीखते हैं यहाँ पे आने के बाद, बताओ
2: राइट
0: बेटा आप बता
2: राइट
0: सकते हो कोई भी? गुड आफ्टरनून.
1: पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, हमें यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ हम आगे भी बढ़े और इससे हेल्प मिले उसके लिए हम आते हैं।
0: ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू
1: दामिनी
0: सो
1: आप
0: मच.
1: बोलना, बोल कुछ बोलो। गुड आफ्टरनून,
0: गुड आफ्टरनून.
1: हाँ मुझे ना सिलाई करना बहुत पसंद है इसलिए मैं आती हूँ।
0: तो रीड के सेंटर भी क्यों आते? सिलाई सेंटर तो बहुत सारे खुले हुए हैं,
1: हाँ
0: बहुत सारे
1: सीख
0: खुले.
1: भी रहे हैं उसके साथ नए नए डिजाइन में, मतलब सीख रहे हैं जो बन रहा है वो सीख रहे हैं, मैं अच्छे से बताती हूँ इसके साथ।
0: अच्छा
1: बताओ प्रोडक्शन में आप काम करके पैसे भी कमा रहे हो उस टाइम? हाँ काम
0: अच्छा
1: करके पैसे भी मिलते हैं।
0: अच्छा पैसे भी मिलते हैं, इसलिए आप आपको यहाँ आना अच्छा लगता है कि सीख भी रहे हैं और प्रोडक्शन का काम भी
1: हाँ
0: आ रहा है.
1: हाँ
0: वेरी
1: जी
0: गुड वेरी गुड. थैंक यू ज्योत्सना जी. यू वर ट्राइंग टू से समथिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बारे में, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे. हेलो
1: हाँ जी मैम, हेलो मैम, हेलो
0: आप
1: मैम,
0: बोलिए,
1: बोलो बोलो
0: हेलो
1: सर, नहीं याद है जो
0: सुमन
1: स्टूडेंट्स जब यहाँ आते हैं वो
0: जी, सुमन जी आप म्यूट. हाँ
1: हम जब आते हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉपर क्लियर नहीं होता उनके माइंड में, बहुत कुछ चीजें होती हैं और थोड़ा सा ऐसे एनवायरनमेंट से आता है जो वो बहुत पॉजिटिव साइड पे सोचते नहीं है, तो यहाँ पे आके जब उन लोगों को हर चीज पॉजिटिवली सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है तो उनके माइंड्स काफी क्लियर हो जाते हैं और पॉजिटिव सोचा। और सबसे अच्छी चीज है कि हम जो एनवायरमेंट है स्टडी वाला रखते हैं, और चीजों पे बातें करना, डिस्कस करना या कुछ ऐसी चीजें करना, उसमें हम लोग बच्चों को इंटरेस्ट लेने ही नहीं देते, जिससे क्या होता है वो लोग पॉजिटिव सीखते भी हैं और साथ साथ बात भी पॉजिटिव करते हैं। और एक
0: राइट
1: ही जगह हमें 3 3 4 चीजें सीखने के लिए यहाँ पे मौका भी मिलता है। जैसे मैम कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेकअप सीख रहे हैं या वो कंप्यूटर सीख रहे हैं लेकिन उनका बाद में इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हम थोड़ा सा और भी कुछ सीख लें और आगे सीखें, तो ऐसे भी वो सीख सकते हैं।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस. थैंक यू जसना जी. सो मैंने कहा था मैं एक एग्जांपल दूंगी कि किस तरीके से हमारी टीम एक कदम आगे ही चल के काम करती है. अभी हम रिसेंटली रामपुर में गए थे और करीबन मेरे को लगता है 50, बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी उस दिन, और 50 से भी ज्यादा लड़कियां उस सेंटर में बैठी हुई थी. नया सेंटर जो रिलोकेट किया है हमने, हमारा रामपुर में जो सेंटर है, बहुत गर्मी थी एकदम. लेकिन एक एक बच्चा जो था, एक एक स्टूडेंट्स जो था, वो कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ ना कुछ एक उमंग थी उनके अंदर कि हाँ हम रीड सेंटर पे आए हैं तो रीड सेंटर से कुछ सीख के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे. इतना एनर्जी था. पहले शुरुआत में वो बहुत घबरा रहे थे बोलने में, बहुत ज्यादा. पहली बारी मिले थे, मैम थी हमारे साथ, तो बहुत ज्यादा उनको हिचकिचाहट हो रही थी बोलने के लिए. लेकिन 5 10 मिनट के बाद वो लोग कंफर्टेबल हुए, और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कोई भी लड़कियां, इतना उनके पास था शेयर करने के लिए. तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी आई जब हमारी टीम ने उनको ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं आप आइए सेंटर पे, आइए सीखिए. यहाँ पे सीखने के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल, यानी कि आपस में जब आता है लोग, इंसान मिलते हैं, तो उनको लगता है कि हम और भी कुछ सीख सकते हैं. देखो सिलाई तो कोई भी सिखा देगा, कोई भी सेंटर पे जाएंगे आप सीख जाएंगे, ब्यूटी भी आप कहीं ना कहीं सीख जाएंगे, आप हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग भी सीख जाएंगे. लेकिन एक माहौल जो हम क्रिएट करके रखते हैं अपने सेंटर में, जिसमें जो आप ही ने मुझे बताया कि हम पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं, हम एक अच्छे तरीके से सिखाते हैं, जो सना ने बोला कि जो भी हम सिखाते हैं हम बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग देते हैं, हम सेफ एनवायरमेंट रखते हैं कि ताकि अगर लड़कियां आ रही हैं या उनके पेरेंट्स को कोई ऐसा हिचकिचाहट ना हो. ज्योत्सना जी ने बोला कि हम फोकस करते हैं जिस काम के लिए आए हैं, पहले हम वो काम करें, उस पे फोकस रहें, इधर उधर गॉसिप नहीं करें, नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं फैलाएं. तो ये सारी चीजें जो कंपोनेंट्स है ना, ये मिलके ही किसी टीम को सक्सेस करा पाती है. तो यही कुछ चीजें आज मैं एक छोटी सी, मैंने पीपीटी बनाई है, आई विल जस्ट ट्राई एंड शेयर विद यू. ऑल राइट. सो टीम वर्क, यानी कि एक ग्रुप में एक साथ होके हमें जो एक कॉमन गोल, अब हमारे केस में कॉमन गोल क्या है कि हमारे सेंटर को इसी तरीके से ग्रोथ मिलती रहे. हमारा सेंटर कभी भी ऐसा ना हो कि हमारा सेंटर तो खुला है लेकिन कोई वहां सीखने ही नहीं आना चाहता. तो एक कॉमन गोल जो है, हम आज जितने 89 पीपल जुड़े हुए हैं, हम सबका एक कॉमन गोल है कि आपका छोटे दर पे गोल ये है कि आपका सेंटर जो है वो साल दर साल चलता रहे, उसमें बढ़ोतरी होती रहे और थोड़ा थोड़ा करके हम उसको सेल्फ सस्टेन कर सकें। ऐसे ही अगर हम सारे सेंटर्स को ले लेंगे और इन सबका जो एक कॉमन गोल होगा वो यही होगा कि हमारे सेंटर्स चलते रहें, इनमें कोई रुकावट नहीं आए, और जो हम मिशन है जो हमारा, जो कि कम्युनिटी को सर्विस देने का हमारा गोल है, वो हम एक साथ अचीव करें। अगर आप में से कोई भी एक सेंटर वो गोल अचीव करने में नाकाम हो जाता है, किसी एक सेंटर पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो उंगली किसके ऊपर उठेगी? सीधा रीड इंडिया के ऊपर। तो जो टीम है हमारी, जो हम टीम वर्क की आज बात कर रहे हैं, तो अगर एक भी पुर्जा उस टीम का कमजोर हो जाता है या उसकी वैल्यूज मैच नहीं होती या वो किसी और रास्ते पे निकल जाता है, तो जो हमारी टीम है, जो एक माला है, अगर उसमें से एक मोती निकल जाता है तो माला टूट जाएगी। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि लगातार हम सेंटर से जुड़े रहें, हम सेंटर्स को अपनी कोर वैल्यूज से जोड़ के रखें, क्योंकि हम टीम वर्क की इम्पोर्टेंस समझते हैं। और इसीलिए रीट जो है, मैम भी है, हम सबको नर्चर करती हैं कि हम सबका जो कॉमन गोल है वो हमेशा एक ही रहे और लाइव रहे, यानी कि हम उसे चेंज कर सकते हैं ग्रोथ की तरह, लेकिन ऐसा ना हो कि अलग ही दिशा में चला जाए। मान लीजिए कोई सेंटर बोलता है ठीक है, अब तो मुझे ये करना ही नहीं है, अब मैं इसमें जिम खोलना चाह रहा हूँ, अब मैं अपना सेंटर में जिम खोलूंगा, जी अब तो ये सेंटर हमारे को दे दिया गया, अब मैं इसमें जिम खोलूंगा, जिम की बहुत डिमांड है। क्या ये हमारा गोल है? नहीं, हमारा गोल है स्किलिंग का, हमारा गोल है एजुकेशन का, हमारा गोल है सॉफ्ट स्किलिंग का, हमारा गोल है कि हम महिलाओं को या लड़कियों को या जो कम्युनिटी है ऐसे एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उनकी ऑल्टरनेट इनकम हो सके, जिससे हम सेंटर भी सेल्फ सस्टेन कर सके। यही 5-6 गोल है, इसके अलावा तो और कोई गोल नहीं है हमारा। तो ये कॉमन गोल को डिफाइन करना और सभी पूरी टीम जो है, जो जितने भी लोग एक टीम में जुड़े हैं उसकी तरफ काम करने से ही वो हमारा गोल अचीव हो सकता है। कभी भी टीम में हम ये नहीं कह सकते अच्छा मैं तो अच्छा कर रही हूँ। कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, या आपके फाइनेंशियल डेटा नहीं आया, या आपकी रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं आ रही। बोले नहीं मैंने तो दे दिया था, आगे उन्होंने नहीं दिया, या आधी ही आई या आधी रिपोर्ट ही आई, बट हमारा अचीव तो नहीं हुआ ना। तो टीम में जो लीडर होता है या जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, या चलिए मुझे ज्यादा तजुर्बा है, या कभी कभी लीडर जो होता है हम चुनते नहीं है लेकिन वो इतना रिस्पेक्ट कमांड करता है कि उसको मान लेते हैं कि हाँ ये लीडर है, तो ये एज ए लीडर या एज ए कोर मेंबर ऑफ एनी टीम, आप हम सबका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम कभी भी आई विन यू लूज, मतलब मैं तो जीतूं और तुम हार जाओ, कि दूसरे को नीचे खींच के हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। ये टीम अच्छी टीम के कॉम्पोनेंट नहीं है। अच्छी टीम की कॉम्पोनेंट है कि मैं भी जीतूं तुम भी जीतो, यानी कि हम दोनों मिलके प्रोग्रेस करें। मेरी प्रोग्रेस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तुम्हारी कम हो सकती है, कि तुम्हारी कभी ज्यादा हो सकती है, मेरी कम हो सकती है, राइट? सो टीम में सबका मिल बांट के काम करना, सबके रोल्स डिफाइन होना। अगर रोल्स सही से डिफाइन नहीं होंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन में कोई भी ढंग से काम नहीं कर सकता। घड़ी जो होती है, घड़ी में पीछे हमको सिर्फ 3 सुइयां दिखती हैं, राइट? लेकिन कभी अगर हम उसको पलट के खोल के देखें तो पीछे बहुत सारे छोटे छोटे छोटे छोटे पुर्जे हैं जो काम करते हैं। अगर उनमें से एक भी पुर्जा काम करना बंद कर देता है तो घड़ी सही टाइम नहीं दिखाएगी, या टाइम दिखाएगी ही नहीं, राइट? वो 3ों सुइयां शायद मूव नहीं करेंगी या गलत मूव करेंगी। तो हम जो पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के आगे हमारी लीडरशिप है, हमारी ट्रस्टीज हैं, हमारी रिपोर्ट्स हैं, हमारी वेबसाइट है, लेकिन इसको बनाता कौन है? बनाते तो हम लोग हैं। तो जब हम आपसे रिपोर्ट्स लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, फोटोज लेते हैं, आप ये सोचिए आप वो घड़ी का वो छोटा पुर्जा है जिसको टाइम तो देखेगा कोई कोई होगा कॉर्पोरेट, उसने देखना है कि हाँ ये लोग क्या काम कर रहे हैं, तो वो टाइम दिखाना हो गया, लेकिन पीछे का काम तो हम सब मिलके कर रहे हैं ना। तो अपने काम को हम कभी भी छोटा नहीं सोचेंगे। कुछ भी अगर रीड में कुछ काम चल रहा है तो आप ये सोचिए कि ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी तो मुझे दिया गया है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, कि कभी भी मत सोचिए कि आई एम अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग टीम, अगर मैं ये नहीं भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अगर मैं 100% नहीं दूंगा इसका या नहीं दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फॉर अ गुड टीम सारे कॉम्पोनेंट्स का एक साथ जुड़ के अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है। अभी हमने बात करी कि रोल्स डिफाइन होने बहुत जरूरी होते हैं एक टीम में। अगर रोल्स डिफाइन नहीं होंगे कि भाई किसने सुबह सफाई करनी है, किसने स्विंग की क्लासेस लेनी है, किसने रिपोर्ट भेजनी है, किसने फाइनेंस का हिसाब रखना है, किसने देखना है कि भाई चाय पत्ती दूध चीनी सेंटर में है कि नहीं, किसने देखना है कि किताबें सही से लगी हुई हैं, मशीनें ठीक से काम कर रही हैं। अगर ये रोल्स ठीक से डिफाइन नहीं होंगे तो हमारा जो लाइब्रेरी है, हमारा जो सेंटर है, वो नहीं चलेगा, वो सही से नहीं चलेगा। देर इज सम जोक गोइंग ऑन, जो हमारा ये सेंटर है जूम यूजर वाला, आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू हियर दैट जोक। आप याद रखिएगा, वी विल कम बैक टू यू एंड वील हियर योर जोक। सो इस जो जो टीम वर्क होता है उसमें ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अभी सना ने और जो दो तीन लोगों ने बोला, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम फुल डेडिकेशन के साथ अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं, उसी तरीके से एक अच्छी टीम का काम करने के लिए टीम में आपस में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। हम समय समय पे आपको पूरी आई वुड रिक्वेस्ट जूम यूजर, इधर आप चले जाएं बिकॉज देर इज सम गॉसिप गोइंग ऑन, या फिर आप अपनी स्क्रीन बंद कर दीजिए बिकॉज मेरे लिए बहुत अटेंशन डाइवर्शन हो जाता है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। आई कैन हियर यू लाफिंग एंड आई कैन हियर यू, यू नो इट इज वेरी इरिटेटिंग। आई एम श्योर आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आप स्क्रीन बंद कर लीजिए, सिर्फ नाम वास्ते आप ऑनलाइन रह सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज विद यू, राइट? प्लीज स्विच ऑन योर स्विच ऑफ योर स्क्रीन। आप अपने जोक्स कंटिन्यू करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, राइट? ऑनेस्टी के साथ काम करना बहुत जरूरी है एक टीम में, बिकॉज अगर हम ऑनेस्ट नहीं होंगे तो दैट मीन्स हम टीम में इक्वली ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आ रहे, तो कहीं ना कहीं हम चीजों को छुपा रहे हैं, और ये हमारी टीम की हेल्थ के लिए और हमारी टीम की ग्रोथ के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आज आप यहाँ पे हैं, हो सकता है आप आगे जाके किसी और कंपनी में जाएंगे या किसी बड़ी संस्था के साथ काम कर सकते हैं। तो एज ए लीडर, क्योंकि हम लीडरशिप के भी सेशन लेते हैं, एज ए लीडर और एज ए मेंबर ऑफ द टीम, बहुत जरूरी है कि हम कोई चीज अगर हमें पता चली है और हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो हमें सब मेंबर्स के साथ वो शेयर करना चाहिए। सो ऑनेस्टी इज वन ऑफ द कोर कॉम्पोनेंट ऑफ अ गुड टीम। ऑलराइट, आई विन यू विन आई विन हमने बात कर ली है, इसके इसके लिए कोई एग्जाम्पल्स अगर किसी के पास हैं तो वी विल बी हैप्पी टू नो अबाउट दैट। टीम में ना तीन, जो हम जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, आपकी लाइब्रेरीज में बहुत किताबें होंगी टीम वर्क के ऊपर, हाउ टू विन पीपल, अच्छे जो टुगेदरनेस के ऊपर जो किताबें हैं, उसमें तीन चीजें बहुत जरूरी हैं कि ट्रस्ट, टॉलरेंस एंड टुगेदरनेस। यानी कि ट्रस्ट मतलब हमें पूरा ट्रस्ट होना चाहिए अपनी टीम के ऊपर, बट ट्रस्ट आएगा कैसे? वो ट्रांसपेरेंसी से आएगा, जिसकी बात हमने पहले वाली स्लाइड में करी। टॉलरेंस, अब टॉलरेंस सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान को अलग चीज मोटिवेट करती है, हर इंसान के लिए अलग चीज जो है वो अच्छी है या बुरी है। तो हम एक टीम में एक जैसे तो नहीं होते, हर टीम में अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 90 लोग हैं, तो हर कोई अलग अलग होगा, तो टॉलरेंस बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो जनाब यहाँ बैठे हुए थे, 3-4 लोग, उनके लिए कुछ और इम्पोर्टेंस था, बट हमें हमें उनके लिए भी टॉलरेंट होना है। मे बी आज वो सुन रहे हैं, ये चीज हो सकता है कल उनके काम पे आए, आज नहीं इम्पोर्टेंट लग रहे, बट वो आगे जाएंगे किसी कंपनी में काम के लिए जाएंगे, तब शायद ये बात मेरी उनको याद रहे या याद आ जाए जब उनको कहा जाएगा कि टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। सो हमें हर किसी को टॉलरेट करना सीखना पड़ता है, और जिनके पॉजिटिव्स हैं, जो नेगेटिव्स हैं, उस पे काम करना चाहिए एज ए गुड टीम। अगर एक टीम में किसी की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो और लेकिन अगर उनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो एज ए टीम लीडर हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं लेकिन स्पीकिंग स्किल्स तो अच्छी नहीं है, तो हम यू नो वी वोंट गिव यू अ रोल। हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें स्ट्रेंथ्स देखनी है कि हमारे टीम में जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स क्या है। किसी की फाइनेंस में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की क्रिएटिविटी में बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी फाइनेंस में अच्छी है, लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि कुछ बोर्ड पे लिख दो या ड्रॉ कर दो तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है और ड्रॉइंग तो उससे भी बुरी है, लेकिन कोई बोले कि इसका फटाफट एक्सेल में कुछ बना दो, इसका जोड़ तोड़ कर दो, इसको बताओ कि इसका क्या इसकी एक रिपोर्ट बनानी है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो मेरे लिए बहुत आसान है। तो मुझे ये पता है, तो मैं अपनी जो मेरे लीडर है, मैंने उनको पहले ही बताया कि अगर इस तरीके का काम करेंगे तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी, और अगर इस तरीके का काम मुझे दिया जाएगा तो शायद मेरी कैपेबिलिटी उसमें नहीं है। सो वी हैव टू बी टॉलरेंट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्किल्स बट ऑल्सो टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत विनम्र होते हैं, कुछ लोगों को जल्दी मतलब एकदम से वो घबरा जाते हैं, टेंशन आ जाते हैं, और काम करने में उनका दिमाग नहीं लगता, डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वी हैव टू एज अ टीम लीडर हमें उनको फीडबैक देना है। आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा अटेंशन डाइवर्ट कर लेता है हम लोगों की। बार बार हम फोन देखते हैं, बार बार हम फोन पे देखते हैं कि क्या चल रहा है, अच्छा क्या न्यूज है। हम लोग भी न्यूज आज सुबह, कल से तो मैं भी न्यूज बार बार देख रही हूँ कि दिल्ली में क्या हो रहा है, अच्छा फ्लडिंग कहाँ पे हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टीम में हमें टॉलरेट करनी, लेकिन हमारा गोल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिपोर्ट आज जानी है, अगर कोई इंफॉर्मेशन आज जानी है, तो एज ए लीडर हमें ये देखना है कि टीम में टॉलरेंस की जगह तो है, लेकिन कॉम्प्लेसेंसी यानी कि काम ना हो इस चीज की जगह नहीं है, क्योंकि फिर हमारी टीम फेल हो जाएगी। ट्रस्ट टॉलरेंस टुगेदरनेस तो होगी, लेकिन टीम फेल हो जाएगी, है ना। सबसे ऊपर गोल है, गोल के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है वो हम पहला कंपोनेंट था कि टीम में सबका एक साथ मिलके चलना बहुत जरूरी है फॉर अ सक्सेसफुल टीम। टीम में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की कमियों को टॉलरेट करना कुछ हद तक हमें सीखना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ आके भी बोल जाए तो हम बोले नहीं नहीं ये तो हमारा टीम मेंबर है, और ये नहीं नहीं हम तो इसको कुछ कहेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। टॉलरेंस एज फार एज इट इज एडिंग टू आवर गोल, राइट, एंड टुगेदरनेस। हम अकेले तो कुछ, अकेले तो टीम है ही नहीं, अकेले तो फिर हम इंडिविजुअल है, राइट। एक ये खरगोश और कछुए की कहानी हम सबने सुनी है बचपन में, हमने ये कहानी छोटे बचपन से सुनते आए हैं कि एक खरगोश था और एक कछुआ था, और ये दोनों ही रेस लगाते हैं, और खरगोश सो जाता है क्योंकि उसे लगता है अरे मैं तो इतना तेज भाग रहा हूँ और इतनी तेजी से मैं फटाफट कर लूंगा, और मैं सो जाता हूँ, थोड़ी देर सो भी जाऊंगा। उसने पेड़, एक पेड़ ढूंढा और उस पेड़ के नीचे सो गया। इतने में जो कछुआ था वो अपने गोल पे कायम रहा, धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो गोल की तरफ बढ़ता रहा, और उसने देखा कि कछुआ तो उसने देखा कि खरगोश तो सो रहा है, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं इसको जगाता नहीं हूँ, ये तो सो ही रहा है, इन एनी केस मुझे जीतना है, ये रेस जीतने के लिए है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कछुआ जो था धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अंत में वो रेस जीत गया। जब खरगोश उठा तो उसने देखा अरे मैं तो सो गया था और मैं ये रेस हार गया। ये स्टोरी सुनी है किसी ने पहले, या इससे अलग कोई स्टोरी सुनी है किसी ने कछुए और खरगोश की? आप
1: हाँ जी सर,
0: सबने
1: अभी सबने पास किया है मैंने।
0: सुनी है। इस स्टोरी में एक ट्विस्ट लेके आते हैं। इस स्टोरी को अगर एज ए टीम सुनाना है हमको तो हम कैसे सुनाएंगे? अगर खरगोश और कछुए की टीम है, अभी क्या था कि कछुआ अलग भाग रहा था, खरगोश अलग भाग रहा था, वो एज ए टीम नहीं भाग रहे थे। कछुए की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी और खरगोश की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी। अभी वो तो जंगल में रहते हैं, लेकिन हम लोग तो इंसान है, हमें तो एक साथ जुट के काम करना है, और हम हमारी क्वालिटीज कछुए और खरगोश जैसी ही है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग अलग है। हाँ, हम सबकी जो शक्तियां हैं या सबकी जो वीकनेसेस हैं वो सबकी अलग अलग हैं। अगर ये स्टोरी थोड़ी सी टीम वर्क में सुनाई जाए तो उसमें हम ये डाल सकते हैं कि कछुआ और खरगोश एक रेस में थे। उस रेस में कई रुकावटें थी। पहले तो बहुत रास्ता जो था वो पथरीला था, बहुत उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता था, और आगे जाके नदी आती है और फिर पहाड़ आता है। ये रेस उनको पार करनी थी। तो जब कछुए और खरगोश ने देखा कि ये रेस तो इम्पॉसिबल है पार करना, अलग अलग अगर हम करेंगे तो एक पड़ाव तक जाके हम रुक जाएंगे, हम ये रेस नहीं पार कर सकते। तो फिर कछुए और खरगोश ने बोला कि ठीक है क्यों ना हम टीम वर्क में काम करें। जब हम टीम वर्क में काम करेंगे तो जो पथरीला रास्ता है वो खरगोश फटाफट पार कर लेगा और मैं खरगोश के ऊपर चढ़ जाऊंगा, और जो पानी का रास्ता है वो कछुआ फटाफट पार कर लेगा और खरगोश उसके ऊपर चढ़ जाएगा। जो पहाड़ का रास्ता है वो फिर खरगोश कवर करके ऊपर पहुंच जाएगा और कछुआ उसके साथ चला जाएगा। तो अगर रेस पार करनी थी तीनों दोनों को तो ये तीनों पड़ाव पार करने थे। अब अकेले तो वो शायद नहीं कर पाते, खरगोश पानी में डूब जाता और ये दोनों ही हार जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारी इज्जत का सवाल है और हम एज ए टीम काम करेंगे। सो एज ए टीम हमें ये देखना है कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, क्या हमारे टीम वर्क करने से वो इश्यूज पार हो सकते हैं। क्योंकि हमारा गोल क्या था कि वो रेस को पार करना, गोल ये नहीं था कि जीतेगा कौन, राइट? अगर गोल रीडिफाइन कर दिया जाए, अगर गोल कॉमन हो, जो कि रीट का गोल है, कॉमन गोल है, हम कोई कंपनी नहीं है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, हम एक संस्था है जो समाज समुदाय के साथ काम कर रहे हैं, समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या हमारे गोल में इंडिविजुअल का जीतना जरूरी है या एक टीम का एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ना ज्यादा जरूरी है? कठिनाइयां उसमें भी आएंगी, हो सकता है कछुआ जो है खरगोश का भार ना सहन कर पाए, बट धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो एज अ टीम शायद वो रेस पार कर लेंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म्ड है कि अकेले वो नहीं पार कर सकते। हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लियर रोल्स हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो। आप देखेंगे बार बार मैम हमें कम्युनिकेट खुद से करती हैं, जहां भी चैलेंज आता है वो खुद से फोन उठाती हैं, हर एक से बात करती हैं, और जो प्रॉब्लम एरियाज है उसको वहीं के वहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो एज ए लीडर हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, जो कम्युनिकेशन है वो लगातार सही तरीके से चलती रहे इन इन अ ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्पल्स हम आसपास अपने, जैसे कि यहाँ इस फोटो में दिखाया गया है, चींटियां जो हैं बड़े से बड़ा पहाड़ उठा लेती हैं, अपने भार से कई गुना ज्यादा भार वो उठा लेती हैं एज ए टीम जब काम करती हैं। इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आप देखें हनी बीज, हनी बीज जैसे काम करती है ना, उनका रोल्स बहुत डिफाइंड होता है। रानी मक्खी कौन सी है और वर्कर बी कौन सी है, शहद कौन इकट्ठा करके लाएंगी, और रानी मक्खी की जो क्या कहते हैं सोल्जर बीज होती है वो कौन सी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन क्लियरली कि किसका क्या रोल है एक टीम में, क्योंकि जो कॉमन गोल है हमें वो अचीव करना है, राइट? और ज्यादातर टीम्स, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां आप देखोगे, ज्यादातर टीम्स जो है ना वो फेल इसलिए करती हैं क्योंकि शायद उनकी लीडरशिप अच्छी नहीं होती। शायद लीडर अच्छा है लेकिन लीडर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, शायद कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही है लेकिन उनके गोल्स ही डिफाइन नहीं है। भाई बहुत अच्छे से किया लेकिन पता ही नहीं जाना कहाँ है, पता ही नहीं है करना क्या है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कम्युनिकेशन अच्छे रखें, अपने लीडर को इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, गोल्स क्लियर होने चाहिए कि टीम किस लिए काम कर रही है, ये जो सेंटर हमने खोला है इतनी जगह पे, जो हमारा सेंटर है किस लिए क्यों काम कर रहा है। और
1: हेलो,
0: हर,
1: मैं स्मिता
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: जी, मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन स्टोरी. अभी मैंने
0: मैं एक मिनट अपना
1: अर्जेंटली
0: कैमरा ऑफ करती हूँ क्योंकि मेरे को ना आवाज थोड़ी कम आ रही है, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ जी आप बोलिए, आप कंटिन्यू करिए।
1: आई हर्ड कि समबडी वाज सेइंग कि हम शुड वर्क लाइक सनफ्लावर्स. तो व्हाई सनफ्लावर? तो सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ देखता है टू गेट एनर्जी, और वो पूरा दिन सन की तरफ देखता है, सन की तरफ ही जैसे साइड पे सन मारा जाता है, सनफ्लावर उधर ही मुड़ जाता है एनर्जी के लिए, ताकि वो अपना बाकी का जो उसका प्रोसेस है वो पूरा कर सके. एंड एट द टाइम्स जब सन नहीं होता है, वेदर की वजह से या कोई और रीजन की वजह से, तो सन के ना होने पे सनफ्लावर का, मैंने सुना कि वो सनफ्लावर्स एक दूसरे की तरफ फेस कर लेते हैं टू एक्सचेंज एनर्जी. तो जब हम अपनी टीम के साथ काम करते हैं, हमारा है, हमारे मेंटर्स हैं, वो लोग हमारी हेल्प करते हैं जहाँ तक वो कर सकते हैं वो करते हैं. जब वो लोग अपने किसी और काम में हैं तो वी शुड ऑल्सो वर्क लाइक सनफ्लावर्स, एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी टीम को हमें हर तरह से, हर हर सिचुएशन हम लोग को आगे लेके जाने के लिए वी शुड वर्क. आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड.
0: इट इज अ ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेशन सीमा जी। अगर आप अलाउ करेंगी तो मैं ये स्लाइड अपने जो हमारा पीपीटी है इसमें ऐड करना चाहूंगी। आई हैव नेवर हर्ड सच अ ब्यूटीफुल थिंग। मतलब डेफिनेटली ये वर्थ ऐड करने का है कि जब जब सूरज चमकता है, यानी कि जब पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तब तो हम एज ए टीम काम कर रहे हैं। बट जब कठिनाइयां आ जाती हैं, तो हमें एक दूसरे की तरफ देखना है, एक दूसरे का साथ जो है वो एज सनफ्लावर, एज ए गुड टीम मेंबर हमें वी शुड नॉट यू नो लेट गो कि अगर आज कठिनाइयां हैं तो आज हम टीम नहीं है, अब हम अलग अलग काम करेंगे। जब तक कि सब कुछ अच्छा था, तब तक हम एक अच्छी टीम की तरह काम कर रहे थे। आज क्योंकि प्रॉब्लम आ गई, सन नहीं है, अब हमें रोशनी नहीं मिल सकती, तो रोशनी हमें एक दूसरे से लेनी है। वेरी गुड, थैंक यू सीमा मैम। सो दैट वाज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन आई हैड क्रिएटेड जस्ट ऑन टीम वर्क, वो हम आपसे शेयर कर देंगे। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, चाहे आज यहाँ पे हैं आप, चाहे कल बड़े हो किसी कंपनी में जाएंगे, चाहे हम ये प्रोफेशनली बात करें तो ज्यादा मतलब ये स्लाइड्स रहेंगी, पर्सनली भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्सनली भी हम घर में अकेले नहीं होते, हमारे माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, और जब अगर शादी हो जाती है, स्पेशली फॉर लेडीज महिलाओं के लिए, हम दूसरे घर जाते हैं तो सास ससुर हो सकते हैं, वहां पे पूरी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, तो उनको भी हम कैसे एक परिवार को एक टीम की तरह देखें, ये भी शायद सोचने की हमें जरूरत है। क्योंकि आजकल इतने मनमुटाव हैं, इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि वही वाला एटीट्यूड है ना कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, लेकिन हम सबको तो ये नहीं समझा सकते, सिर्फ खुद को ये समझा सकते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को हम आप तक इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हो सकता है ये छोटी सी चीज किसी की लाइफ में कोई बदलाव लेके आ सके। मुझे मेरे काम का ये पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे करने में मजा आता है आपसे सीख, जैसे आज मैंने नई चीज सीखी है सीमा मैम से, ऐसे ही मैं चाहूंगी जो लोग लगातार जुड़ रहे हैं वो कोई ना कोई नई चीज, कोई एक नई सीख हम सबके साथ शेयर करें। बिकॉज सिर्फ मेरा बोलना अच्छा नहीं है, सब सबके पास वो नॉलेज है, सभी पढ़ रहे हैं, सभी के पास वो एग्जाम्पल्स हैं। और कुछ भी एग्जाम्पल सही या गलत नहीं होता, क्योंकि हम सब लाइफ से सीख रहे हैं। अगर हम सभी शेयर करने शुरू करेंगे तो आप सोचिए कितना कुछ हम सीखने को मिलेगा। इस सेशन में आना कोई जबरदस्ती नहीं है, जिनको लग रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट काम है या कुछ और प्रायोरिटी है, आप प्लीज मत आइए इस सेशन में। ये सेशन इन एनी केस आपसे शेयर कर दिया जाएगा जब आपको लगेगा कि आपके पास वक्त है और आपका दिमाग इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, आप तभी भी सुन सकते हैं। सो देर इज नो मैंडेटरी, यहाँ कोई अटेंडेंस नहीं है, रिकॉर्ड किया जाता है जस्ट क्योंकि ये सेशन हम आपसे शेयर करेंगे ताकि वो आप जब चाहें सुन सकते हैं। ये जूम जूम यूजर का जोक तो हम सबको सुनना है, राइट? वो क्या जोक चल रहा था? फतेहपुर सेंटर, फतेहपुर, राइट?
2: आई एम सो सॉरी, जो ये चला था कि आपने वहां पे एक पॉइंट रखा था कि सब जो लीडर होता है वो ये चेक करता है कि किचन में चीनी है या नहीं, या फिर चाय की पत्ती है या नहीं, ठीक है मैम। बट लीडर मैं ऐसा कुछ मैंने गलती की, तो मुझे हंसी आई अपने ऊपर कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, आज मैम जो बात कह रही है वो रियलिटी में मेरे साथ ऐसा हो रहा है,
0: राइट,
2: इसलिए
0: हमने
2: मुझे
0: खेल,
2: मैम, या मैम डर
0: बहुत
2: नॉट
0: अच्छा
2: जोक मैम,
0: पॉइंट,
2: या मैम
0: बहुत
2: ये
0: अच्छा
2: जोक नहीं
0: पॉइंट
2: करा,
0: है।
2: यस सर, क्योंकि
0: नहीं,
2: मैंने
0: मैंने
2: ये
0: ये
2: गलती फील की कि मुझे
0: ना,
2: इन्हें किया है, सो मुझे थोड़ी सी हंसी आई अपने ऊपर आई इस बात को लेकर के, और मेरे
0: नो
2: जो मेंबर्स
0: प्रॉब्लम,
2: हैं उनको भी लगा कि तो सो सॉरी मैम, मैंने ऐसा कोई
0: नो नो, सॉरी की
2: गलत
0: बात ही नहीं है,
2: रिस्पॉन्स,
0: मुझे लगा कोई अच्छी बात चल रही है तो
2: नो
0: हमें
2: नो
0: भी
2: मैम,
0: बोला
2: नहीं
0: जाए। तो
2: नहीं
0: मैंने
2: मैम,
0: ये नहीं बोला था कि लीडर जो है वो ये देखेगा चाय पत्ती है कि नहीं, मैंने
2: या
0: बोला
2: मैम
0: था,
2: या मैम,
0: मैंने ये
2: अच्छा
0: कहा
2: अच्छा
0: था कि रोल्स बहुत जरूरी हैं डिफाइन होना, हमारे सेंटर में या हमारी टीम में किसका क्या रोल है, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था। जैसे हमारे ऑफिस में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुछ चीजों का हिसाब रखना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे जो और 10 लोग हैं उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर वो मान लीजिए
1: कि जो स्प्रिंगवुड स्कूल शीतला कॉलोनी का है, इतना प्रोग्रेस कर रहा है, टीम वर्क की वजह से ही कर रहा है। कहाँ, लास्ट सेशन जुलाई में मेरे पास 11 एनरोलमेंट्स थे और अभी मेरे पास 75 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं
0: वेरी गुड, वेरी गुड,
1: और पेरेंट्स आ रहे हैं, और इसके लिए मुझे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ रहा है, और ये रिजल्ट है हमारे टीम वर्क का और आपके सेशंस का, और जो भी मेरी हेल्पर्स हैं, मेड हैं, और जो भी मेरी टीचर्स हैं वो मुझे पूरा सपोर्ट करती है। अगर टीम वर्क ना होता तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते।
0: नहीं
1: थैंक यू
0: कर
1: सो मच।
0: पाते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे टीम्स अच्छी नहीं थी और वो नहीं कर पाई, क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे थे कि भाई हमारी सैलरी आई कि नहीं आई, फोकस यही था कि इस मंथ हमारी सैलरी आई नहीं तो अब हम काम नहीं करेंगे. ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमारे पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने आए. सैलरी इज नॉट एन इश्यू, बट अगर हमारा स्कूल चल ही नहीं रहा है, अगर हमारे बच्चे आ ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं तो कमी हमारे अंदर है ना. उस कमी को तो हम समझेंगे ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे. वरना अगर बच्चे ही नहीं है, बच्चे हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे हैं ही नहीं, तो फिर स्कूल सिर्फ किताबें चेयर टेबल रखने से तो कोई फायदा ही नहीं है ना, अगर 10 ही बच्चे हैं. सो वेरी गुड एग्जाम्पल सुनीता जी, आपकी टीम इतने अच्छे से 75 बच्चों को मोबिलाइज कर पाई, अपनी अपने आप को आप सेल्फ सस्टेन कर पा रहे हैं. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टीम, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं था.
1: यस मैम, यस मैम। हेलो मैम,
0: हेलो हेलो, हाउ आर यू?
1: आई एम फाइन मैम।
0: गुड दैट आपने ज्वाइन किया है.
1: क्या मैम?
0: अच्छा लगा आपका देख के कि आपने ज्वाइन किया है.
1: मैम, हमारे सेंटर में बहुत सारी लेडीज ऐसी थी कि उनके घर वाले मतलब उनको यहाँ भेजते नहीं थे। तो जब नई नई लेडीज आती थी तो बोलती थी हमारे घर वाले नहीं भेज रहे। तो हमने घर वालों के साथ बात की तो अब खुद घर वाले आके यहाँ छोड़ देते हैं लेडीज को। देखते हैं कि खुद लेडीज इतना अच्छा टीम बना के सीख रही है तो उनको बहुत अच्छा लगता है मैडम। और लेडीज को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम एक जगह पे आके इतना अच्छा सीख रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं मैम, आप उनके साथ भी बात कर लीजिए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं।
0: हेलो हेलो एवरीबॉडी, आपको कैसे?
3: वही हम बता रहे कि हमें इधर रीड इंडिया में आके बहुत अच्छा लगता है. रीड इंडिया, रीड मीन्स पढ़ना सीखना. यहाँ पे आके हम जो पढ़ते सीखते, मतलब पार्लर हुआ, जो जो इधर है वो सब हम पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है. हमारे घर वाले हमें ना इनक्रीज करते कि लेडीज है, सिर्फ लेडीज है इधर, कि आप जाओ पढ़ो, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ो, आगे पढ़ो ऐसा. और फिर इधर सोना मैडम भी हमें इंक्रीज करते कि ना आप आइए, और लेडीज होंगे, स्टूडेंट होंगे, कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट है, वो भी इधर आते हैं, स्कूल से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में हमें अच्छा लगता है. थैंक
0: अच्छा
3: यू
0: ठीक है,
3: सर.
0: आपको सबको मैं देखती हूँ काफी सारे यंग बच्चे हैं.
1: हाँ
0: अगला सेशन अगर हम इंटरव्यू स्किल्स पे रखें या फिर रेज्यूमे राइटिंग पे रखें, अगर जो जो लीडरशिप से लिंक्ड होगा वो तो हम करेंगे ही, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यूथ हियर. तो यूथ के लिए अगर एक सेशन आप चाहेंगे तो हम रख सकते हैं. ये काफी इम्पैक्टफुल रहेगा मुझे ऐसा लगता है, बट आप बता सकते हैं. इफ यू नीड, हम रेज्यूमे राइटिंग या इंटरव्यू स्किल्स पे एक सेशन कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन. ठीक है जी, ऑल राइट. सो सभी अगर किसी को और कुछ इनपुट देना है, कुछ शेयर करना है तो प्लीज करिए, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन.
1: जी मैम, समझ
0: हाँ जी सुमन जी.

0: मैं सबसे पहले आपका थैंक यू, रीड का थैंक यू कि हम लोग इतना कुछ सीखते हैं रीड से, और टीम वर्क में आप लोगों से सीखा है टीम वर्क में कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है। और शीतला बलून जैसे भी स्कूल हमारा टीम वर्क में बहुत अच्छा चल रहा है, उसी तरह से सेंटर में भी हम लोग टीम वर्क में ही काम कर रहे हैं। जो टीम है यहाँ की बहुत कोऑपरेटिव है, जैसे स्वाति जी है, मास्टर जी हैं, और सभी लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं और नए भी आ रहे हैं, टीम वर्क हुआ तभी हम लोग जो लेडीजों को रोजगार देने का एक मिशन है इसको हम लोग चला पाए और इसको हम लोग आगे लेके जाना चाह रहे हैं इसीलिए। और आज वाले सेशन से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो थैंक यू मैम इस चीज के लिए। थैंक यू।
1: थैंक यू, मुझे भी सीखने को मिला क्योंकि मुझे सीमा मैम ने एक बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई है, और डेफिनेटली जो स्लाइड्स आपके पास पहुंचेंगी ये स्टोरी उसका पार्ट होगी। सो थैंक यू मेरी नॉलेज भी बढ़ाने के लिए, एंड आई होप ऐसे एग्जाम्पल्स और भी आए आगे। सो आप लोग सब सेफ रहेगा, स्पेशली जहाँ बहुत बारिश हो रही है। सीमा मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: स्मिता जी, मैं आप सबको शायद पता भी है, मैंने कॉर्पोरेट के साथ भी बहुत साल तक काम किया है, तो एक बहुत ही मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत रिनाउंड कंपनी, उसके सीईओ, उनके साथ मेरी मीटिंग थी रिगार्डिंग माय कैफेटेरिया सॉर्ट ऑफ। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग, वो मैं मेरे को इतना अजीब लगा। मैंने बहुत बहुत बार बहुत लोगों से सुना था कि कॉर्पोरेट सेक्टर इज लाइक एक दूसरे को क्रश करके ही आप ऊपर जा सकते है ना, टीम वर्क का तो कोई सवाल ही नहीं होता होगा। वो
1: बिल्कुल
2: इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ से मेरी बात हो रही थी, एंड ही स्ट्रेट अवे सेड ऑन माय फेस, ही सेड कि 10 में से आपको आगे बढ़ना है तो 9 को तो यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, उसके बाद ही आप नंबर 1 पे आ सकती है। मैम बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, तो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आपने आपको सर्वाइव करना है, तो आप अपने आप को यूनिक रखिए, 9 को हटाइए, तब आप पहले नंबर पे आए। वो मेरे लिए बहुत खराब था सुनना, बिकॉज मैंने ऐसा सुना था लेकिन अपने सामने मैंने ये देखा कि वो खुद मुझे कह रहे हैं कि आप अपने आप को सबसे अलग रखिए, सबको पीछे छोड़ के ही आपकी तरक्की। लेकिन आज मैं रीड इंडिया के साथ काम कर रही हूँ, एंड वी आर टेकिंग सेशंस ऑन लीडरशिप, ऑन टीम वर्क, एंड सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट, सो लकी कि हम लोग टीम वर्क के बारे में सेशंस ले रहे हैं, टीम वर्क में और कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने अपने सेंटर्स पे हम टीम बना के काम कर रहे हैं, और एक बिग फैमिली, बिग टीम इंडिया की फैमिली जो कि महाराष्ट्र और कहाँ कहाँ तक पूरे इंडिया में पहुंची हुई है, उस पे हम लोग सब काम कर रहे हैं। वी आर नॉट क्रशिंग एनीबडीज हेड, वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर। थैंक यू सो मच इंडिया, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सीमा मैम, इट इज अ रियल थिंग। ऐसा ऐसा कॉर्पोरेट में ऐसा ऐसा हर रोज हर घड़ी होता है कि हम किसी को दबा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पे ही हम देखेंगे कि हमें आगे बढ़ना है तो किसी को तो दबाना ही पड़ेगा, किसी को साथ लेके। सिर्फ हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ही चाहते हैं कि शायद मतलब माँ बाप ही हैं जो एक एक तरीके से चाहते हैं कि मतलब बच्चे हमसे भी आगे बढ़ जाएं। शायद और कोई इस दुनिया में नहीं चाहेगा कि कोई और मुझसे आगे बढ़ जाए, बट एज ए टीम जब हमें काम करना है, मैम ने मुझे कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका। वो हमेशा बोलेंगी अच्छा तुम ये भी कर लो, अच्छा वो ये भी कर लो, अच्छा ये भी कर लो। अब वो करना है नहीं करना है वो मेरे ऊपर है, राइट? सो हमने मैम से सीखा है कि एज ए लीडर किस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं विद आवर टीम। अकेले तो वो शायद मेरे को लगता है यूएन की भी हेड, मतलब यूएन में, यूनाइटेड नेशन में किसी हो सकता है, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सब पार्ट में वो किसी लीडरशिप रोल पे होती है, बट उन्होंने ये अपने ऊपर रखा है कि मुझे सबको साथ लेके चलना है, रीड में काम करना है। अगर वो अकेले निकल जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी किसी मतलब सबसे आगे ही निकल जाएंगे, बट हम 5 लाख लोगों से जुड़ के हम कहते हैं कि हम आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हुए हैं, 80 लोगों के साथ शायद 10 10 लोग बैठे होंगे तो हम 800 लोग

0: हैं, जो बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे आगे लाइफ में, आप ये देखेंगे कि हर कोई इसमें बिलीव नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आई विन यू लूज एटीट्यूड पे ही काम करते हैं। हमें कैसा होना है ये हमारी चॉइस है। जैसे सीमा मैम ने बोला, शायद वो उस कंपनी में काम नहीं करना चाहती थी, बट वो कंपनी में कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा, और वो अगर लीडर कह रहा है कि यू हैव टू विन, तो ही और शी हैज टू विन अगर उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें अपने अंदर कौन सी वैल्यूज लानी है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये चॉइस हमारे हाथ में है। तो जो लोग रीड में जुड़े हैं उनको तो हम यही कहेंगे कि प्लीज आप टीम वर्क में काम करिए। आई विन यू विन, मतलब हो सकता है विन थोड़ी छोटी हो, लेकिन सबकी विन हो, इसी में ही हमारा यही हमारा कॉमन गोल। सो थैंक यू मुझे बर्दाश्त करने के लिए 1 घंटे के लिए, एंड लिसनिंग टू मी एंड शेयरिंग सो मेनी नाइस थिंग्स। सो कोई कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: देखो मैम,
0: हाँ जी,
1: क्या
0: हाँ जी,
1: मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने टीम वर्क के बारे में मुझे बताया, हम लोगों को अच्छा लगा, और कि ये नॉलेज बढ़ती है कि हम कैसे टीम वर्क करेंगे, कैसे लोगों के साथ मेंटेन होकर के अपने वर्क को आगे बढ़ाएंगे। बट मैम, एक इन्फ्लुएंस करना होता है, किसी को बताना होता है कि कई बार हम ऐसी जगह पे स्टे करते हैं, रहते हैं, जहाँ पे हमने अपना सेंटर ओपन कर रखा है, कुछ करना चाहते हैं। वहाँ की जो आसपास के लोग हैं ना, वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं। अब वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं तो वो निकल ही नहीं रहे उससे, तो उन्हें कैसे, किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करें? मैम ये तो समझ, हम लोग क्या है कि अभी कम एज के हैं, कुछ इतनी नॉलेज नहीं होती है, अभी जस्ट है, ग्रो में यूथ है,
0: तो
1: तो इतना कम।
0: इसका, हाँ, इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगी। मेरे पास तो महारथी है इसका जवाब देने के लिए। मेरे पास सीमा जी हैं, फरा है। नहीं नहीं 1 मिनट आप रुकिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट फरा, सीमा जी, मीना, सना, ये तो आप कंजर्वेटिव कम्युनिटी की बात कर रहे हैं।
1: हाँ जी मैम,
0: सो
1: कंजर्वेटिव
0: बिल्कुल बिल्कुल आपको जवाब यहीं पे मिलेगा। सो प्लीज प्लीज बी माई सपोर्ट। मैं इसमें वीक हूँ, मेरी टीम मुझे सपोर्ट करेगी।
2: यस मैम, एक्चुअली मैम आदित्य इज फ्रॉम माय सेंटर ओनली फतेहपुर। तो मैम अभी न्यूली लॉन्च सेंटर है, तो इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। ये मैंने आदित्य को भी बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, बिकॉज इतनी जल्दी कम्युनिटी बाहर नहीं आती है। वी रियली नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस।
0: राइट। सो फरा, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी फतेहपुर सेंटर को? आप बताएं कि कंजर्वेटिव कम्युनिटी में कैसे लोगों को बाहर निकालते हैं।
2: पहले तो मैं थोड़ा सा हिंदी में जानना चाहूंगी क्योंकि इंग्लिश मेरे इतनी जल्दी समझ में नहीं
0: तो
2: आता।
0: वो ये कह रहे हैं फरा कि उनकी कम्युनिटी में लड़कियों, उनकी जो समुदाय है वो इतना खुले दिमाग का नहीं है। अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो प्लीज मुझे माफ करेगा, बट आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि वो लड़कियों को नहीं निकलने दे रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि सेंटर पे लड़कियां आएं या महिलाएं आएं या कोई भी आए सेंटर पे सीखने के लिए।
2: जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी इनका नया सेंटर खुला है, और अगर इनका नया सेंटर खुला है तो इतनी जल्दी वो लोग बाहर नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे। इनको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, उन लोगों को समझाना पड़ेगा। और अगर इन्होंने एक दो लड़कियां या 5 लड़कियों को भी बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छी वहां पर सेंटर की बातें पहुंची, तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियां खुद आना शुरू हो जाएगी, इनको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट ये है कि हम समझा कैसे रहे उन्हें, हम किस तरीके से बता रहे हैं, क्या चीज उन तक पहुंच रही है, कि सिर्फ हम सिखा रहे हैं। 1 मिनट, सॉरी, ऐसा लग रहा है मैं खुद से बात कर रही हूँ। तो हम वहां पर क्या चीज पहुंचा रहे हैं, पहले हम उनके उनको बताएंगे कि हमारा सेंटर किस लिए खुला है। लाइब्रेरी है, सिलाई है, पार्लर है, कंप्यूटर है, बट खुला है लेकिन लड़कियों के लिए क्यों खुला है, लड़कियां आगे इससे सीखे क्या करेंगी, उनके लिए ये किस तरीके का प्रॉफिट हो सकता है, किस तरीके से वो सक्षम बन सकती है। तो वो थोड़ा सा आप उनको समझाइएगा, और अगर वो आपकी बात नहीं समझे तो दो तीन टीचर्स को लड़कियों को लेके जाइए, उनसे थोड़ा सा बात करवाइए। जब तक आप अच्छे से नहीं समझाएंगे तब तक वहां के लोग नहीं निकल पाएंगे।
0: थैंक यू फरा
2: जी, नमस्ते स्मिता जी।
0: नमस्ते नमस्ते। थोड़े आप हेल्प करेंगे हमारे दोस्त को यहाँ पे, इनका
2: जी
0: नया
2: जी
0: सेंटर खुला है।
2: जी मैम। हाँ देखो, सबसे पहले हम जिस गांव में भी हाथ सेंटर निकालते हैं, नई कम्युनिटी होती है, तो सबसे पहले लोगों के साथ हम एक रिश्ता बनाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जैसे हम लोग किसी गांव में जाते हैं और हमारी मीटिंग लेके जाते हैं कि हम रीड इंडिया में ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसके घर पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कभी किसी का कोई बीमार है या उसके बच्चे को कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले हम उसकी बात सुने। हो सकता है कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हम हल कर दें। कभी कभी स्कूल में अपनी पहचान होती है कि चलो तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हम कर

0: देते हैं। कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल तक ले गए, तो एक बार हमने जिस बंदे का काम कर दिया तो वो हमेशा हमारा फ्रेंड बन जाता है। फिर उसको आप कहीं कहीं पे भी बोलो कि तुम इस सेंटर में आ जाओ तो वो तुरंत आने को तैयार है। और उसी गांव में जो हमारे सेंटर से जो लड़कियां सीख के गई हैं, जब 10 लड़कियां दूसरी होती हैं और 5 लड़कियां हमारे जो सेंटर से निकल के जाती हैं उनमें एक अलग ही चेंज होता है। तो उन्हीं के माध्यम से वहां पे जाके कम्युनिटी में उनकी मीटिंग करवाएं कि देखो ये आपके यहाँ से लड़कियां नहीं थी और इनमें इनसे पूछो कि इन्होंने वहां पे क्या क्या देखा, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो शुरुआत में ये चीजें अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे कम्युनिटी का एक रिश्ता बन जाता है हम लोगों के साथ, तो वो बहुत हेल्प करता है। जैसे अभी भी हम लोग नए नए और गाँव को जोड़ रहे हैं तो उसमें भी हम यही प्रोसेस कर रहे हैं। 5-7 लड़कियों को जिन्होंने ट्रेनिंग ली है मैं उनको लेके जाते हैं, उनसे बात कराते हैं, तो ऑटोमेटिक 10-10 20-20 रजिस्ट्रेशन डेली होते हैं।
1: थैंक यू
0: आप
1: मीना
0: अच्छा
1: जी।
0: लगाइए सर कि वहां लड़कियां निकलना क्यों नहीं चाह रही है, क्या वो स्कूल नहीं जाती या फिर वो पेरेंट्स मना कर रहे हैं या वो कुछ कुछ से खुद से कुछ सीखना नहीं चाहती, कैसा माहौल है वहां का क्योंकि हमने तो नहीं
1: एक्चुअली
0: देखा ना।
1: एक्चुअली मैम टाउन एरियाज में क्या है कि जब थोड़ा जो पिछले होते हैं ना, थोड़ा सा जब थोड़ा सा ग्रो करते हैं, तो आजकल आपको पता है ना सोशल मीडिया जो बहुत बच्चों को टाइम जो है वो खराब करवा रहा है, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो उनका मन ही नहीं करता है कि कुछ स्किल डेवलपमेंट करें, कुछ सीखें, या आते भी हैं तो कुछ नए तरीके से, या फिर लोग जॉब के लिए करते हैं कि हाँ ये ऑप्शन है तो मुझे सिर्फ जॉब सीधे मिल जानी चाहिए, वो स्किल डेवलपमेंट के लिए बढ़ ही नहीं रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आते हैं क्लास में बैठे, कोई कॉलेज भी जा रहा है, पढ़ रहा है, फिर वहां से निकल रहा है, उनको मार्क्स की चिंता भी नहीं है, उनके पेरेंट्स को उनकी जो बिहेवियर है या जो उनकी आजकल जो टाइम का चल रहा है उसकी भी कोई चिंता नहीं है, कोई गेम खेल रहा है तो कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, तो ये सारी चीजें लोगों के अंदर बनती जा रही है। एक्चुअली वो कंजर्वेटिव है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, अंदर से वो एकदम शांत है क्योंकि वो बच्चों को कुछ कहते ही नहीं है कि यहाँ पे ये सेंटर ओपन हुआ है, यहाँ पे आप स्किल डेवलपमेंट कर लो। तो इसके लिए मैम कोशिश की जा रही है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंस करने का क्या और भी रीजन हो सकता है, जब मैंने अच्छे अच्छे सारे उनको चीजें बताई कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, एजुकेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, एजुकेशन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से आप बैठ के, ढेर सारी बुक्स हैं आपके पास, कोई भी बुक आप बैठ के पढ़ सकते हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, तो लोग आते हैं, लोग विजिट करते हैं, फिर चले जाते हैं, उसके बाद बात ही नहीं करते, भूल जाते हैं। तो ये चीज करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन
0: आप
1: रखा।
0: एक चीज कर सकते हैं, आप देखिए कि किस तरह की स्किल्स की जरूरत है उस वाले एरिया में, आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी स्किल्स के लिए आप ज्यादा उनसे बात करेंगे तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे हम लोग तो बिल्कुल एकदम टिपिकल गांव में बैठे हुए हैं जहाँ पे इलिटरेट लोग चलते हैं, तो उनको तो हम ऐसी चीजें सिखाते हैं जैसे स्टिचिंग हो गया या और कोई स्किल्स जो जो अनपढ़ औरतें भी कर सकती हैं उसमें फोकस करते हैं। आपके वहाँ देखिए कि किस टाइप की स्किल्स पे वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसी के फोटोग्राफ्स आप दिखाइए उनको, तो अपने सेंटर के फोटोग्राफ दिखाइए और
1: थैंक
0: लेडीज
1: यू
0: को
1: मैम।
0: लेडीज स्टाफ को लेके जाइए उनके साथ,
1: और
0: दैट विल बी
1: आपकी
0: मोर इम्पोर्टेंट।
1: किडनी ज्यादा डेवलप है तो फिर आप एडवांस कोर्स वहाँ स्टार्ट करिए, जैसे कि अगर बच्चे बेसिक कंप्यूटर नहीं सीखना चाह रहे कि बेसिक तो हमें आता ही है, तो थोड़ा टेली सी टेट मतलब ये चीजें स्टार्ट करिए, ट्रिपल सी का कोर्स वगैरह, कि जिससे बच्चों को सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट आए, वो लगे कि हाँ हमारे लिए सेंटर खुला, ये नहीं कि हमने बेसिक चीजें रख दी है, बेसिक कंप्यूटर सिखा रहे हैं, बेसिक सिलाई सिखा रहे हैं, बेसिक पार्लर सिखा रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं सिखा सकते, तो बच्चों को लगता है कि ज्यादा जहाँ एरिया डेवलप होता है कि ये चीजें तो हमें बेसिकली घर में आती है, हमारी किस काम आने वाली चीजें, तो एक्चुअली
0: थोड़ा सा
1: मैम
0: एडवांस भी रखिए।
1: मैंने ये भी बताया कि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को,
0: फ्रेंडली
1: मैंने ये
0: माहौल
1: भी कहा
0: चाहिए।
1: कि 10th और 12th तक के बच्चों को मैं एजुकेशन भी दे सकता हूँ, आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ ऐसे ही आपके अंदर कुछ फीलिंग्स टाइप की प्रॉब्लम्स है तो मुझे बताइए, शेयर कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं ट्यूशन के लिए भी कह रहा हूँ स्पेशली बताने के लिए कि हाँ मैं
0: हाँ,
1: अलग से,
0: और
1: आप
0: बताइए।
1: म्यूट हो
0: ओके,
1: गए, आप म्यूट हो गए हैं।
2: थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी हेल्प किया, हम लोग ट्राई करेंगे और बेटर करेंगे। ओके
1: तो
2: मैम,
1: थैंक यू, ये
2: और
1: टीम वर्क का बहुत
2: थैंक
1: अच्छा एग्जाम्पल था मेरे सामने सामने, सभी लोग चाह रहे थे कि इनका सेंटर जो है वो किसी तरीके से चल चल पड़े, और शायद हम लोग कभी मिले भी नहीं हैं और शायद हमने अभी आपका सेंटर देखा भी नहीं है, बट एवरीबडी वांटेड कि ये टीम, ये रीड का सेंटर है और ये चल नहीं रहा है। सो मतलब कितने पैशन के साथ सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, तो आई थिंक इससे ज्यादा लाइव एग्जाम्पल नहीं हो सकता था टीम वर्क का। आई एम सॉरी, मैं आपका नाम नहीं जान पा रही, फतेहपुर से जो है।
2: आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य।
0: आदित्य, आपके ना ये जो सना का सेंटर है, यहाँ पे कुछ बच्चों ने, आपका जो सना का ये जो सेंटर है, यहाँ पे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से सीख के अभी वो कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको भी बुला सकते हैं अपने सेंटर पे, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और वो बच्चे भी शुरुआत में शायद उतना ध्यान नहीं देते थे और शायद वो इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन आज 5 साल के बाद वो जहाँ पे है, मैंने, हमने खुद सुना है उनके मुंह से कि कितना फायदा हुआ है सेंटर को। सना, प्लीज हेल्प हिम टू मोबिलाइज, एंड आप कोशिश करिए कि जो आपका
2: यस
0: जो जो स्टोरीज थी, जो जो बच्चे वो पीछे बोल रहे थे, हम जब आए थे ज्ञानेश सर के साथ, दोज
2: जी
0: पीपल गो टू हिज सेंटर एंड वो मोबिलाइज करने में थोड़ा मदद करें, ये बताते हुए कि उनको कैसे फायदा हुआ है। शायद किसी को देख के हम सीख जाएं कि हाँ, यू नो, दिस सेंटर कैन बी एड वैल्यू टू अस।
2: यस
0: गुड
2: मैम, हम लोग वर्क
0: आफ्टरनून।
2: कर रहे हैं उस पर।
0: ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, थैंक यू। हाँ जी रितु
3: मैम,
0: जी, हाँ
3: मैं भी एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ।
0: जी,
3: अभी मैम हमें जब टारगेट मिला था, तो हमने नूना माजरा, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है मैम, तो वो लोकेशन हमने ली थी। वहाँ के सरपंच इतने हठी थे कि मतलब वो मान ही नहीं रहे थे कि भाई आप लोग एनजीओ चला रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो हमने उनको मतलब अपना पूरा डिटेल दिखाया, ऑनलाइन भी दिखाया उनको सारा। तो वो उनको डाउट्स थे जो उनके वो क्लियर हो गए। पैम्पलेट्स भी हमने दिखाई। फिर हमने सर को कहा कि आप हमारे सेंटर पे विजिट करिए, और
0: जी
3: आइए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो सर आए यहाँ पे, सर ने देखा कि हमें जो XDCP सर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रेडी हो गए। और फिर उन्होंने खुद ही, आशा वर्कर हैं और आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनके साथ हम लोगों की मीटिंग करवाई। क्योंकि पहले वो हमें गांव में जाने ही नहीं दे रहे थे, बात ही नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा विजिट था वो सरपंच के साथ था कि हम सरपंच से बात करें कि वहां का कैसा माहौल है, हमें कहाँ बिल्डिंग लेनी चाहिए। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था कि, तो हम भी इतने हताश हो गए थे कि भाई पता नहीं यहाँ पे सेंटर चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन सर के विजिट से, क्योंकि हमने इतना उनको पूरा प्रूफ दिखाया कि हमारे कितने सारे सेंटर्स हैं, सारा उनको डिटेल दिखाया, तो वो एग्री हो गए। फिर अब वो इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि पानी की हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने हमें फ्री जो जो गांव में पंचायत घर होते हैं वो हमें दिलाया है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सपोर्ट करवाया उन्होंने, और बहुत सारा सपोर्ट करवाया है। क्योंकि जो ये हमारा कम्युनिकेट है वो देख के कि मतलब कम्युनिटी में हम कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिले, बात की उन्होंने, तो मैम ऐसे भी उनके डाउट्स क्लियर होते हैं लोगों के। तो जब हम विजिट करवाते हैं, कम्युनिटी से मिलवाते हैं, तो जो डाउट होते हैं जिस बंदे के वो क्लियर हो जाते हैं यहाँ
0: बिल्कुल
3: पे
0: सर,
3: आके। तो हमें
0: बिल्कुल
3: हमने
0: बिल्कुल
3: अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही वर्क अगले बंदे को दिखाने पड़ते हैं कि हमारे आगे कैसे सपोर्ट मिल रहे हैं हमें और हम लोग क्या कर रहे हैं। थैंक
0: बिल्कुल
3: यू।
0: ठीक, बिल्कुल, क्योंकि एनजीओ बहुत सारे चल रहे हैं और शायद सभी एनजीओ का अपना अपना कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगा। हमारा स्ट्रेंथ जो शुरुआत में बताया था कि हम जो कमिट करते हैं वो कम्युनिटी को डिलीवर करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। सो थैंक यू वंस अगेन, टाइम बहुत हो गया है, लोग छोड़ के मतलब बैठे हैं अपना काम। सो आई विश एवरीबडी सेफ, बहुत
3: हेलो,
0: बातचीत कहीं हो रही है। सो कौन बोलना चाह रहा है? फरजाना, फरजाना,
3: नमस्ते
0: हाँ जी नमस्ते।
3: मैम। मैं सर के लिए एक थोड़ी सी बात मैं भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही एरिया से बिलोंग करती हूँ। वो सर से, सर आप ना टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हमको पता है अभी आपका सेंटर नया नया है, और क्योंकि ऐसे एरिया में बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो एक दूसरे को कामयाब होते देखते हैं ना, तो उनके उनको देखा देख तो वो खुद को, उनके मन में एक एहसास उठता है कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि बहुत से लोग देखा देख भी आते हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, स्ट्रीट इंडिया हमेशा बड़ा है और बढ़ता रहेगा, देखना एक
0: वेरी
3: दिन बहुत
0: गुड,
3: अच्छा से
0: थैंक
3: बढ़ेगा।
0: यू
3: जी
0: फरजाना,
3: थैंक
0: थैंक यू। राइट,
3: यू मैम।
0: ऑल राइट, थैंक यू एवरीबॉडी, स्टे सेफ, एंजॉय, बाय बाय।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: हेलो, मेरा नाम नीलम है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बार रीड इंडिया वाले हमारे उधर सर्वे करने आए थे, उनके थ्रू मुझे रीड इंडिया के बारे में पता लगा। फिर मैं इधर आने लग गई, मैं रीड इंडिया से जुड़ गई। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से पार्लर भी सीखा है और कंप्यूटर भी। इस टैग के कोर्स में मैंने IT बनाना और किसी की लोकेशन सेंड करना, और पहले मैं घंटों उसकी लाइन में, बैंक की लाइन में खड़ी रहती थी। बट जब से फ़ोन, मतलब इसकी नॉलेज मुझे हुई है कंप्यूटर की, तब से मैं अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकती हूँ, पैसे भेज सकती हूँ, और उससे मतलब कैब करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीड इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है, वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लग गई थी। अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होकर सोच सकती हूँ, और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी, और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन ही रहने लग गया था। अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए, आपको नहीं सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए, ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें, और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे। मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो कुछ अच्छा ही पता लगे अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, बहुत कुछ आप यहाँ आके जान सकते हैं। थैंक यू रेड इंडिया।
2: Hello everyone, my name is Lancy and I passed 10th class. Then I think to join Read India Academy to improve my condition. मैंने अकेडमी ज्वाइन की रीड इंडिया, और उसमें हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ TEG, टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स। ये एक कोर्स है जो वुमेन और गर्ल्स के लिए है। ये वुमेन और गर्ल्स की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी, और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ये प्रोग्राम चला है, तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, और आगे भी ये प्रोग्राम चल रहा है। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज का भी, और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ। और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है, और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है। पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सब की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज कल मैं खुद कर रही हूँ ये सब, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती। बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी।
3: गुड आफ्टरनून, माय नेम इज तनु तनवर। आई पास 10th क्लास एंड आई जॉइन रीड इंडिया एकेडमी इन शाहबाद मोहम्मदपुर। दिस इज ओनली वन एकेडमी हु टीच अस कंप्यूटर। दिस एकेडमी हेल्प्स टू बी अ वुमेन इंडिपेंडेंट। रीड इंडिया स्टार्ट्स टैग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स ओनली टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन फॉर वुमेन्स, and it helps us in form filling, and also we helps our parents, then we also reserve tickets. Thank you.
4: I'm Shweta. I study in IGNU University, or I done NPTT course for Polytechnic Institute Rajouri Garden. और हमारे जो यहाँ पे शाहबाद में ये है ना NGO, मैं यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ टैग की, तो इससे मेरे को काफ़ी चेंजेस आए हैं, और थोड़ा सा लगा के भाई यहाँ पे आके हाँ बाकी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी हेल्प है, मतलब टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और दूसरा फिर इससे ये है कि नॉलेज बढ़ती है यहाँ पे आके एक दूसरे को, मतलब हम जाके जैसे हम आ रहे हैं किसी को बता रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है, और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं, ऐसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है। और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो। और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली, टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, कुछ भी हो, जिससे लड़कियां घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इसमें लाइन में आने से, क्योंकि इनमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए। इसमें नॉर्मली होता है फाइनली, मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है, और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे मतलब भाई होती है कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनको आगे, तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा मतलब चेंजेस आ जाते हैं। और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे ये कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में, और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं। तो इससे हमें हमारे लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं। एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में। मतलब जितना बढ़ो आगे उतना कम है, और हर किसी को बढ़ना चाहिए, किसी एक को नहीं, हर किसी को, जहाँ से जैसी हेल्प मिलती है, जो मिलती है वो करनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यही कर सकता है, यही बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सबको है मतलब एक फ्रीडम होती है अपने आप में, लाइफ अपनी है, किसी का प्रेशर नहीं होता कोई के मतलब हम किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर दें, या मतलब बोल ले नहीं, कुछ नहीं करें, आगे नहीं बढ़े। एक दो बार मतलब होता है भाई, डर होता है एक, लेकिन बार बार निकलने से ना सब डर खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है ख़त्म करने से ख़त्म होएगा, ऐसे डरने से तो डर बढ़ता ही है, कोई मतलब दूसरा उसको ख़त्म नहीं कर सकता आके। अब हम हैं जैसे कुछ होती हैं लड़कियाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को फ्रीडम होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था ट्वेल्थ कर लिया, पास आउट हो गया, स्कूल शादी कर दो, ये वो। लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है, तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करें, ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े, और वो अपने पैरों पे खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें, और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो। तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है। उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए, कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए, चलो भाई कोई नहीं, उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से, ऐसे नहीं कि लड़ लो, ये कर दो वो कर दो, नहीं, प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है। तो इसलिए हमें जितना हो सके ना अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए, लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड और दुनिया में अपनी पहचान हो।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं स्नेहा। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए विचार, नए विषय के साथ, और मेरे साथ हैं सपना।
1: मेरी तरफ से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम छायसा की आवाज में।
0: आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके प्रति समाज में जागरूकता बहुत आवश्यक है, और आज का विषय है धूम्रपान।
1: हाँ स्नेहा, सही कहा तुमने। धूम्रपान के प्रति जागरूकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी नशे के आदि बनते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सपना, आजकल के बच्चे बहुत जल्दी नशे की चपेट में आते जा रहे हैं, और उनको नशे के नुकसान के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है।
1: स्नेहा, क्या तुम्हें पता है कि बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, चरस, गांजा आदि का सेवन करने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?
0: हाँ सपना, मुझे पता है। धूम्रपान करने से कैंसर, हृदय रोग, हृदयघात, फेफड़ों का रोग और क्रॉनिक पुरानी प्रतिरोधी फुसफुसीय बीमारी, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD होती हैं। तो चलिए दोस्तों, धूम्रपान पर और लोगों की राय जानने के लिए हम चलते हैं छायसा गांव में।
2: नमस्ते, मेरा नाम पूनम है, मैं छायसा गांव से हूँ। जो मतलब ये बीड़ी सिगरेट का सेवन है, ये बहुत ही खराब होता है, और जैसे कि इनसे बीमारी भी होती है दिन पे दिन, बीमारी भी, कैंसर और TB वगैरह जो फेफड़ों को गला देती है। ये धूम्रपान नहीं करना चाहिए।
3: मेरा नाम सुखबीर है, और मेरे विचार से जो धूम्रपान है इसके बहुत ही कमियां हैं, जैसे जान की भी और माल की भी। देखो, जान से तो जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और माल से यह है कि हमारा जो धन संपत्ति है वो भी बेकार नष्ट होती है। इसे हमारे जो बच्चे, जो आर्थिक स्थिति है, जो बेचारे इन पे भूखा पेट रहते हैं, और लोग पैसे को बर्बाद कर देते हैं नशे में, नशीली चीज़ खरीद लेते हैं, शराब खरीद लेते हैं, है ना, तो उनसे हमें बहुत ही नुकसान होता है। इसलिए हमें ऐसी ओर ध्यान नहीं करना, ऐसी ओर नहीं जाना चाहिए जिससे कि हमारे जान और माल दोनों को नुकसान हो। मेरा विचार से तो यही है कि हमें इस ओर ध्यान मत करना नहीं चाहिए, कि हमें केवल अपनी ओर ऐसे अच्छे विचारों को लाना चाहिए।
4: नमस्ते, मैं रचना हूँ छायसा गांव से। हम आपको धूम्रपान के बारे में समझाते हैं कि ये धूम्रपान करना ठीक नहीं है। इससे अन्य लोग भी परेशान होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। इससे कई बीमारी होती हैं, जैसे कैंसर, फेफड़ों में गड़ावट, ये अन्य। इससे हमें बहुत ही बचाव चाहिए, और अन्य लोगों को भी समझाना चाहिए कि धूम्रपान से बिल्कुल दूर रहें। यह बिल्कुल भी सेहत के लिए सही नहीं है, और इसे रोकने के लिए हमारी सरकार बहुत

0: से बचे रहें।
1: तो आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद है आज के कार्यक्रम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी और धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी मिली होगी।
0: कल हम फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। बचे रहें।
1: तो आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद है आज के कार्यक्रम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी और धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी मिली होगी।
0: कल हम फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

आज का जो हमारा सेशन है वो आपके ट्वेल्थ के बाद कुछ आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज है ना उनके बारे में आज हम बात करेंगे। अभी से पहले हमने इन पे बात नहीं किया, अभी तक हमने मेडिकल के बारे में बात किया, नॉन मेडिकल के बारे में देखा, बीबीए एमबीए आपको मैंने बताया। आज का जो सेशन हमारा है उसमें हम होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, एफडीडीआई एक तरह से जो फुटवेयर डिजाइनिंग, मतलब इस तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो बच्चे ट्वेल्थ के बाद अपीयर करते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको कई ऐसी चीजों का पता चलेगा, कई ऐसे कोर्सेज का आपको आइडिया हो पाएगा जो इन फ्यूचर आप अगर नहीं भी कर पाए तो आपके छोटे भाई बहन जो है या हमारे और जो लोग हैं जो अभी टेंथ क्लास में है, इलेवेंथ में है और आगे वो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल सेशन है आज का हमारा। देखिए जो हम बात करेंगे करियर गाइडेंस, करियर गाइडेंस आफ्टर ट्वेल्थ क्लास, ठीक है। वैसे तो हमने ट्वेल्थ क्लास के बाद होने वाले बहुत तरह के एग्जाम्स के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 12 सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो उन 12 सेशन में हमने कई तरह के एग्जाम्स के बारे में बात किया। ये आप सबको पता है कि ट्वेल्थ के बाद लाइफ में कंफ्यूजन आ जाता है, एक बार तो ऐसा कंफ्यूजन होता है कि अब क्या किया जाए, ठीक है। उसमें कई बार पेरेंट्स प्रेशर भी होता है, फैमिली प्रेशर भी है, या हमारे साथ के जो बच्चे हैं उनका प्रेशर भी होता है कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले लिया तो हमको भी कहीं ना कहीं एडमिशन तो चाहिए, तो हम कई बार उनको देखम देखा एडमिशन ले लेते हैं किसी भी कोर्स में और बाद में फिर हमें फील होता है कि नहीं वो हमारी लाइन नहीं थी। तो कन्फ्यूजन ट्वेल्थ के बाद जनरली सभी के सामने आता है और वही बच्चा कामयाब हो पाता है जो उस कन्फ्यूजन को दूर करके और एक सही जो निर्णय ले वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे चीजों के बारे में अवेयरनेस हो, ठीक है। तो आज जो मेरी बात करने का जो मेजर पोर्शन है, देखिए लॉ के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, बीबीए के बारे में आपको मैं पहले हम सेशंस में हम बात कर चुके हैं, तो आज हम होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, जैसे जो मीडिया चैनल्स वर्क करते हैं, रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, ठीक है, आज उनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कैसे अपना एग्जाम लेते हैं और कब एग्जाम होता है, ठीक है। इसके साथ साथ फुटवेयर डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे, तो ये आज के सेशन का हमारा इंपॉर्टेंट एजेंडा रहेगा कि और इन सब कोर्सेज को आप ट्वेल्थ के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, काफी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा जिनकी आप थोड़ी सी तैयारी करके अपना अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। और दूसरा क्या है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें रिजर्वेशन भी है, अगर आप एससीज एसटीज या बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर उसमें रिजर्वेशन भी मिल जाता है और फीस स्ट्रक्चर भी कम है। तो आज के जो है सेशन उसमें पहला टॉपिक जो मैं लूंगा, पहला एरिया और जो मैं लूंगा दैट इज होटल मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए जनरली हमारे मन में अभी तक क्या रहता था कि होटल मैनेजमेंट का मतलब हमारे माइंड में ऐसा आता है कि हम किसी होटल में एज ए वेटर वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं। होटल मैनेजमेंट एक बहुत ही वाइड स्ट्रीम है, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी मेहनत करके आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, होटल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि हम खाने पीने पे काफी पैसा स्पेंड करते हैं। आप देखिए कहीं भी चले जाइए, चाहे आप किसी छोटे से छोटे शहर से बिलोंग कर रहे हैं, वहां भी आप देखेंगे इतने फूड कॉर्नर्स होते हैं। तो अगर थोड़ा सा मतलब एक तरह से हम प्रोफेशनली अपना भी काम करना चाहें तो अगर हमारी होटल मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन है, अगर हमारी डिग्री होटल मैनेजमेंट में है तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है इस फील्ड में अपना करियर बनाना, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे इसके अंदर होटल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है और कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, ठीक है, जैसे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, क्लब्स में, क्रूज में जिसमें शिप्स हैं, आपके एयरलाइंस में, मतलब काफी वाइड एरिया रहता है, ठीक है। मतलब नाम होटल मैनेजमेंट है बट जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपकी काफी इंडस्ट्रीज में है। आप देखते हैं एयरलाइंस के अंदर भी काफी बड़ा स्टाफ होता है तो उसमें मैक्सिमम बच्चे जो है वो होटल मैनेजमेंट से लिए जाते हैं। स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम रहती है, 10 to 15,000 से स्टार्टिंग होता है,
बट आप बहुत जल्दी 2-4 साल काम करने के बाद में आप काफी अच्छी ग्रोथ पा लेते हैं होटल मैनेजमेंट के है, बट आप बहुत जल्दी 2-4 साल काम करने के बाद में आप काफी अच्छी ग्रोथ पा लेते हैं होटल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, क्या क्या करियर्स हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, अपना खुद का होटल ओपन कर सकते हैं, कोई आप फूड जंक्शन ओपन कर सकते हैं, सबसे पहली चीज एंटरप्राइज बिल्डिंग है। सेकंड, आपको जॉब मिल सकती है होटल्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, और ऐसे ही आप किचन मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, मतलब एक अच्छा एरिया है होटल मैनेजमेंट का। अब मेरा कंसर्न जो है वो ये आपको समझाना है कि अगर आप अपने अगर लाइफ में होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो 12th के बाद ही आपको एडमिशन लेना होता है। ठीक है, मतलब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, एम तो उनका होता है कि वो होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि होटल मैनेजमेंट में जाने के लिए आपका 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, और फॉर्म आपको अप्रैल में ही एग्जाम हो जाता है, जैसे मार्च में आपके 12th के एग्जाम खत्म होते हैं, अप्रैल एंड में होटल मैनेजमेंट का एग्जाम होता है। ठीक है, और इसके जो पेपर का नाम है वो NCHMCT है, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, JEE का एग्जाम होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है। इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, IHM, जैसे हम अलग अलग फील्ड्स की बात करते हैं, हमने आपको मैंने आपको IIT के बारे में बताया था, आपको मैंने IIM के बारे में बताया, आपको मैंने एम्स के बारे में बताया था, तो ऐसे ही अगर हमें होटल मैनेजमेंट में जाना है तो हमें IHM में जाना होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में एक एक IHM जरूर है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में 1 IHM इज देयर, और IHM में जो होता है एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपने 12th के बाद देना है। ठीक है, और वो जो एग्जाम ऐसा आता है जिसमें आपका जो एलिमेंट्री टॉपिक्स होते हैं, जैसे हमने हर तरह के एग्जाम्स में हम बात करते हैं, जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, GK है, इंग्लिश है। ठीक है, और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं होटल मैनेजमेंट के जो फिर अपना इंटरव्यू और GDB कंडक्ट कराते हैं। जो IHM है उसमें ओनली टेस्ट आपका होता है और टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है IHM के अंदर। 3 साल का कोर्स रहता है। ठीक है, और उसमें आपको BSc मिलती है, BSc की डिग्री मिलती है होटल मैनेजमेंट के अंदर, और उसके बाद आपको मतलब वैसे तो कैंपस प्लेसमेंट भी हो जाता है, जहां से भी आपने किया है वहां के आसपास जो होटल्स हैं तो उसमें कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, और 2-4 सालों में फिर आप अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर सकते हैं, किसी बड़े होटल में ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप IHM का पेपर दे सकते हैं 12th के बाद। ये कुछ कॉलेजेस के नाम है, जैसे IHM दिल्ली है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, मुरादाबाद में भी है, भोपाल है, ग्वालियर है, दुर्गापुर है, मतलब ये कुछ जो टॉप कॉलेजेस है इंडिया के उनके नाम है IHM के। ठीक है, और एक ही एंट्रेंस एग्जाम है, कोई अलग

कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, तो 12th के बाद ही आपको, अगर आप होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो 12th के बाद ही आपको टारगेट करना पड़ेगा इसमें। इसमें जो डिग्रीज है आपकी, आपकी BHM का डिग्री होता है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का, BA इन होटल मैनेजमेंट भी है, BBA भी होटल मैनेजमेंट में है, आप इसमें मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जो टीचर टीच करते हैं तो उनकी मास्टर डिग्री होती है, मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट होता है। ऐसे ही आप टूरिज्म होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, तो मतलब स्कोप ज्यादा है, थोड़ा सा उसको सीरियसली अगर वर्क किया जाए तो। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा था होटल मैनेजमेंट। ऐसे ही फैशन डिजाइनिंग, अब जो फैशन डिजाइनिंग है आप देखते हैं काफी बच्चों का एम होता है, ठीक है, कि फैशन टेक्नोलॉजी में हमें जाना है 12th के बाद, इसमें भी एडमिशन 12th के बाद में है। अगर हम 12th के बाद मिस कर जाते हैं तो फिर हमें ग्रेजुएशन के बाद एक तरह से डिप्लोमा कोर्सेज देखने पड़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज होते हैं। अगर 12th के बाद ही एडमिशन हो जाए हमारा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 3 साल का 4 साल का आपका कोर्स रहता है और उसके बाद फिर प्लेसमेंट हो जाती है। तो फैशन डिजाइनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे टॉप कॉलेज की बात जो होती है वो NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। मतलब इंडिया में जैसे हर लाइन के कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे आपको मैंने होटल मैनेजमेंट में बताया तो IHM है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है। ऐसे ही अगर हम फैशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो फैशन टेक्नोलॉजी में जो कॉलेजेस हैं वो हमारा NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो सबसे टॉप पे आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका पेपर ना 12th के बोर्ड के एग्जाम से पहले ही हो जाता है। मतलब देखो इस टाइम तो COVID-19 के कारण सभी पेपर आपके डिस्टर्ब हो रखे हैं, अदरवाइज अगर हम एक रेगुलर शेड्यूल की बात करें तो फैशन टेक्नोलॉजी का पेपर जो होता है वो जनवरी में हो जाता है आपका, ठीक है। तो मतलब अगर बच्चों को पहले से ही पता है तो वो इनकी तैयारी करके अपने 12th के साथ साथ ही, जैसे ही 12th पूरी होगी उनको साथ साथ ही एडमिशन मिल जाता है। कोई भी जो फैशन टेक्नोलॉजी का आपका पेपर है, जैसे NIFT होता है, तो उसमें आपके दो पेपर रहते हैं मेन। पहला आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये आपके कॉमन टॉपिक आते हैं। फिर आपका क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होता है जिसे हम कैट कहते हैं। अब ये क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट क्या है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है, आपकी ड्राइंग कैसी है, पेंटिंग कैसी है, क्योंकि उसमें आपका ड्रॉइंग टेस्ट आता है, ठीक है। तो और वैसे भी आपको पता ही है कि अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी में, फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ड्राइंग पे आपकी कमांड होनी चाहिए, नए नए आइडियाज आने चाहिए आपको, तो उसका टेस्ट रहता है आपका, जिसका नाम होता है कैट, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें अंडर ग्रेजुएट मतलब जो आपके ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी होते हैं, इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी होते हैं, ठीक है। फैशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि ओनली आपने फैशन डिजाइनिंग की बात करनी है, इसमें बहुत स्ट्रीम्स हैं। जैसे आप देखेंगे ये मैंने अलग अलग कोर्सेज के नाम लिखे हैं जो NIFT ऑफर करता है, जैसे बैचलर इन डिजाइनिंग है फैशन डिजाइन में, लेदर डिजाइन में, टेक्सटाइल में, निटवियर में, ठीक है, फैशन कम्युनिकेशन में, अपैरल प्रोडक्शन में, तो ये सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, जो NIFT ऑफर करता है 12th के बाद। और ऐसे ही अगर आपने 12th के बाद मान लीजिए नहीं आप एडमिशन ले पाए तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप देख सकते हैं, तो उसमें फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, जैसे MDES है, मास्टर ऑफ डिजाइन है, मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, या ठीक है। तो इस तरह से मतलब काफी कोर्सेज अवेलेबल है, और जो बच्चे इस लाइन में जाना चाहते हैं तो वो इन इन में से किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप बैचलर डिग्री से करिए, चाहे आप उसके बाद मास्टर में जा सकते हैं, जो NIFT ऑफर करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। और अगर हम NIFT की बात करें तो ये एक जगह नहीं, मतलब इंडिया में कई जगह पर इसके इंस्टीट्यूट हैं। NIFT आपका दिल्ली में भी है, बेंगलोर में भी है, चेन्नई में भी है, पटना में है, गांधीनगर में है, हैदराबाद में है, इसके अलावा और भी काफी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, MET नोएडा है, पर्ल अकेडमी है, सिम्बायोसिस का है, तो मतलब काफी इंस्टीट्यूट है, चाहे आप उसमें प्राइवेट कॉलेजेस में भी है इसके अंदर, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें आपको मैंने बताया NIFT,
और एनआईएफटी जो है वो एक तरह से ऑटोनोमियस वर्क करता है और अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेता है। तो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं इस लाइन में जाने के लिए या आपके आसपास में कोई बच्चा जाना चाहता है इसके लिए, तो जब ट्वेल्थ में आप हैं तो उसी में ही आपने जनवरी में आपका मतलब आप ये कह सकते हैं कि नवंबर के आसपास फॉर्म निकलते हैं और जनवरी में एग्जाम हो जाता है, जिसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है एनआईएफटी के लिए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस भी काफी ज्यादा है। थोड़ा सा ये हमें ध्यान देना पड़ता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन में जाना चाहते हैं तो हमें अपनी एबिलिटी भी देखनी चाहिए, चाहे हमारी योग्यता उसके लिए है या नहीं है। ठीक है, जैसे जो बच्चा फैशन टेक्नोलॉजी वाली लाइन में जाना चाहता है तो थोड़ा ये जरूर देखे कि वो क्रिएटिव माइंड है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपको नए नए डिजाइन के बारे में सोचना, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो वही आपको फिर आगे लाइन पे अच्छे करियर ऑप्शंस आपके बन जाते हैं। अगर मैं इसमें करियर ऑप्शंस की बात करूं तो एक तो आपको देखो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जॉब्स मिल जाती हैं, क्योंकि आप देखेंगे आज के टाइम में फैशन इंडस्ट्री अपने आप में टॉप पर है। रोज नए नए अपेरल्स आते हैं, नए नए टाइप के डिजाइन आते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप वर्क कर सकते हैं। फिर इसमें सेल्स मार्केटिंग में भी काम रहता है काफी ज्यादा। उसके साथ साथ आप अपना भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने कोर्सेज है ना ये एंटरप्राइज बिल्डिंग के लिए ज्यादा है। मतलब आप देखेंगे कि इसमें आपने अगर कोई भी, जैसे पहले आपको मैंने होटल मैनेजमेंट के बारे में बताया या फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में है, तो इसमें आप बहुत जल्दी अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आजकल तो ई मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि इंटरनेट के थ्रू आप कहीं से बैठ के कहीं का सामान बेच सकते हैं। ठीक है, बस क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तो थोड़ी सी मेहनत हो, थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर हो, तो आप बहुत इजीली अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी। फिर जर्नलिज्म, देखिए जर्नलिज्म भी फ्यूचर का करियर है। आज भी आप देखिए, आप किसी भी शहर से आप बिलोंग करते हैं चाहे, तो आप देखते हैं हर शहर में न्यूज़पेपर्स होते हैं, हर शहर में आजकल मीडिया चैनल्स भी आपके बन गए हैं। जैसे एक तो आपके वो चैनल्स हैं जो नेशनल चैनल्स होते हैं, फिर स्टेट लेवल पे भी काफी चैनल्स आ गए हैं, और आजकल फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू लोकल लेवल पे भी काफी लोगों ने अपने मीडिया चैनल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जब जहां भी मीडिया की बात होगी वहां पर जर्नलिज्म की बात रहती है, जिसे हम कॉमन सेंस में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। कि अगर आपको जर्नलिज्म में कुछ भी करना है तो आप क्या करते हैं, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं। ठीक है, अब उसमें ट्वेल्थ के बाद भी ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास में। अगर ट्वेल्थ के बाद नहीं तो आप अपना ग्रेजुएशन के बाद में मास्टर्स इन जर्नलिज्म या मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको जर्नलिज्म के बारे में बताऊंगा कि जर्नलिज्म में क्या क्या स्कोप है और कहां कहां पर आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। ठीक है, और उसमें कैसा एग्जाम होता है और क्या क्या स्किल आपके अंदर चाहिए इनमें करियर बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा भी, जैसे एक जो जर्नलिस्ट होता है, देखो आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि उसमें पहले हम अपने आप को देखते हैं, अभी हमारे अंदर क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारे पास में उस फील्ड के लिए जो स्किल चाहिए, जो योग्यता चाहिए, जो कैपेबिलिटी चाहिए, क्या वो हमारे अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए पहले तो कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर वो आपके अंदर है तो फिर आप इस कोर्स में जाएं तो आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। राइटिंग स्किल आपकी अच्छी हो, रिसर्च की आदत हो आपको, कोई भी बात है तो आप उसके अंदर तक जाने की ट्राई करें। ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स हो आपको, टाइपिंग आती हो, इंटरनेट स्किल्स आपकी अच्छी हो, आपको कुछ सर्च करना है तो नेट पे आप सर्च कर पाए इन डेप्थ जाके, इंटरव्यू लेने की स्किल अच्छी हो आपकी। देखिए, आप कभी भी किसी जर्नलिस्ट की बात करेंगे तो जर्नलिस्ट को क्या होता है कि अलग अलग सवाल पूछने पड़ते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतने ही उनको चीजों के बारे में ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, तो आपको लोगों को इंटरव्यू लेना आपको आना चाहिए भी, कैसे कौन कौन सी बातें पूछी जाए ताकि उनसे पूरा चीजों के बारे में पता चल पाए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की क्षमता हिंदी में, इंग्लिश में या आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, ताकि आप बहुत इजीली लोगों के साथ में संवाद पैदा कर सके, कम्युनिकेशन बना पाए, अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पाए राइटिंग में भी और बोलने में, साथ में संवाद पैदा कर सके, कम्युनिकेशन बना पाए, अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पाए राइटिंग में भी और बोलने में भी। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की मीडिया में जाना चाहते हैं। अगर आप प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं तो आपको लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए,
अपने बात को आर्टिकल फॉर्म में लिखने का आप में योग्यता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट

क्योंकि आप देखेंगे कि जो जर्नलिस्ट होता है उसकी मैक्सिमम न्यूज जो है वो एक तरह से पॉलिटिक्स के बारे में होती है, क्योंकि लोकल लेवल पे या नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हैं तो आप भी एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, फिर हमें ये देखना है कि जर्नलिज्म में क्या क्या कोर्सेज होते हैं। आप 12th के बाद में ग्रेजुएशन कर सकते हैं जर्नलिज्म के अंदर। जैसे आपने 12th किया तो वैसे तो आप 12th के बाद जैसे बीए करते हैं, तो आजकल आप देखेंगे कई कॉलेजेस हैं इंडिया में काफी जगह पर जो आपको जर्नलिज्म में बीए कराते हैं। बीए इन जर्नलिज्म जिसे हम कहते हैं, ये आपकी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होता है। तो इसमें लोकल लेवल पे भी आपके आसपास जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी जर्नलिज्म का कोर्स आपको मिल सकता है, नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई कॉलेजेस में जर्नलिज्म का कोर्स है, तो जिसमें आपका बीए इन जर्नलिज्म है। ठीक है, या आपका मास मीडिया इन जर्नलिज्म है, या कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है। तो इस तरह से ये अलग अलग कोर्सेज के नाम है जो सभी में एक ही तरह की आपकी टीचिंग रहती है, जो आपको एक अच्छा मीडिया रिपोर्टर बनने में हेल्प करती है। और दूसरी बड़ी चीज कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपको 12th के बाद आपने नहीं एडमिशन लिया था, तो आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं जर्नलिज्म में। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी में एक जर्नलिज्म डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो उसमें आप एमए इन जर्नलिज्म कर लेते हैं, एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है, आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है और उसके बाद में आपका जर्नलिज्म में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अब स्कोप क्या है, स्कोप भी काफी वाइड है, मतलब जर्नलिज्म का जो स्कोप है काफी वाइड स्कोप है। जैसे आप एज ए एडिटर काम करते हैं न्यूज़पेपर में, कार्टूनिस्ट भी काम कर सकते हैं, कई लोगों की जो डिजाइनिंग स्किल काफी अच्छी होती है तो आप देखते हैं हर न्यूज़पेपर में कार्टून्स बने होते हैं। आप एज ए फोटो जर्नलिस्ट भी काम कर सकते हैं, प्रूफ रीडर, ठीक है, राइटर है, एंकर है, रिपोर्टर है, कॉलमनिस्ट है, स्पेशल रिपोर्टर है, मतलब फील्ड बहुत वाइड है। जैसे किसी भी फील्ड की हम बात करें तो उसमें एक ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं कि आपने ये कोर्स किया तो उसके बाद एक ही जॉब है, नहीं, काफी तरह की जॉब है, डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है और दूसरा आपको स्टार्टिंग कहाँ मिली है, किस इंडस्ट्री में किस जगह पर आपको स्टार्टिंग मिली है, उसके हिसाब से आप अपना करियर बना सकते हैं। पर आज के टाइम में आप सभी जानते ही हैं कि जो जर्नलिस्ट होता है, जो पत्रकार होता है, उसकी एक अपनी ताकत है, मीडिया की अपनी ताकत है। आप सबको पता है कि मीडिया चौथा स्तंभ है। अभी कई केसेस में, जैसे हाथरस का केस था या और भी काफी केसेस ऐसे हुए हैं जहां मीडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर मीडिया वहां नहीं होता तो आप ये मान के चलिए कि शायद वहां पर केस वहीं खत्म हो जाते, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रिक्टर एक्शन नहीं हो पाता। तो मीडिया एक अपना रोल प्ले करता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। आप देखेंगे जैसे अभी जो रिया चक्रवर्ती वाला केस है तो वहां पर मीडिया ने काफी नेगेटिव रोल प्ले किया। तो मतलब हर तरह की बातें हैं, पर ये कुल मिला के ये है कि एक अच्छा आपका करियर है, ब्राइट करियर है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और अगर आप में स्किल सेट है, और मेन थिंग तो ये है कि बोलने की स्किल सेट होनी चाहिए। अगर आप में बोलने की क्षमता है और आपकी एक्सप्रेशन एबिलिटी है तो इसमें भी बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हैं। इसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें एंट्रेंस में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। जनरली क्योंकि आजकल बहुत कम जगह पर ऐसा है कि जहां एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, आपका बीए बीकॉम में तो आपके 12th बेस पे ही एडमिशन होता है, पर उसके अलावा आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की बात करेंगे तो सभी प्रोफेशनल कोर्सेज में हमें कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने आपको आज जैसे आपको मैंने होटल मैनेजमेंट के बारे में बताया या आपने फैशन डिजाइनिंग के बारे में बात किया, तो इन सब में एंट्रेंस एग्जाम ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। ठीक है, मतलब उसमें आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, ये कुछ आपकी बेसिक चीजें आती हैं जिनको आप मतलब ट्राई कर सकते हैं और जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, इंडिया में जो टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करें जर्नलिज्म के, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है दिल्ली के अंदर, सबसे टॉप पे इसका नाम आता है IIMC के नाम से। इसको हम आई स्क्वायर एम स्क्वायर भी कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, आपका सिम्बोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, माइका है, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है,
डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म BHU है, पुणे है, ठीक है, भारतीय विद्यापीठ है, तो मतलब काफी कॉलेजेस है। ये तो मैंने कुछ कॉलेजेस के नाम लिखे हैं, पर अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि इसमें तो अभी जो जितने बच्चे हमारे पास पर है, तो उसमें कोई हो सकता है एक या दो ही बच्चे इंटरेस्टेड होंगे इस तरह के कोर्सेज के अंदर, पर अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में काफी नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर जो जर्नलिज्म में डिग्री ऑफर करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप अपना एज ए करियर स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है इसके अंदर कि मतलब बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ता। कई बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे कुछ फैमिली समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाते अपनी पढ़ाई के ऊपर, तो इसमें कई कॉलेजेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर काफी कम फीस में आप अपना पूरा कोर्स कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि अगर आप मास्टर्स करते हैं जर्नलिज्म के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो मतलब बहुत ही नॉमिनल फीस पे आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। हाँ, दिक्कत वहां पर है जहां किसी प्राइवेट कॉलेज से अगर कोर्स करेंगे तो वहां थोड़ी फीस ज्यादा है, बट अगर हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो कम फीस में एडमिशन हो जाता है और करियर आप अपना बना सकते हैं। जर्नलिज्म का एक दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप अपने आप में पावरफुल भी फील करते हैं। जैसे हम लॉयर्स की बात करते हैं तो लॉयर भी क्या होता है कि एक अपने आप में पावरफुल फील करता है, ठीक है, क्योंकि पाव से पता है कि उसकी क्या ताकत है। तो ये सारे फायदे हैं आपके जर्नलिज्म में अगर आप इस फील्ड में जाना चाहे तो। ऐसे ही आजकल एक नया स्ट्रीम भी काफी फैशन में है, फुटवेयर डिजाइनिंग का, ठीक है। इसमें इंस्टीट्यूट है फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, FDDI जिसे हम कहते हैं, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। देखिए, आप जो शूज डालते हैं, चप्पल डालते हैं, ठीक है, उनके जो डिजाइनिंग है, ठीक है, उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है उसके लिए एक अलग से कोर्स होता है और उसके बाद आपको उसी इंडस्ट्री में जॉब्स मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका फुटवेयर डिजाइनिंग का कोर्स रहता है, ये भी काफी डिमांड में है, बहुत बच्चे मतलब इसकी तरफ भी जाते हैं क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत आपको मिल जाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसी कोई भी चीज जो हम डे टू डे रूटीनली यूज करते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो एवरीवन यूजेस, तो उसमें उसकी डिमांड ज्यादा है। जैसे किसी भी पर्सन की अगर हम बात करें तो वो पैरों में चप्पल या जूते तो उसने डालने हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके फॉर्मल शूज है, इनफॉर्मल शूज है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है, फुटवेयर जो डिजाइनिंग है ये भी एक तरह का फैशन डिजाइनिंग का पार्ट है और इसमें काफी जो एक तरह से जो क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं शूज के लिए, ठीक है। और इसमें मतलब नंबर ऑफ जितने फैशन हाउसेज है, आपकी जो नंबर ऑफ फुटवेयर ब्रांड्स है, तो वहां पर आपको जॉब्स मिलती है। उसमें कई तरह के एरियाज हैं, ठीक है, जैसे आपका स्पोर्ट्स वियर के लिए अलग है, फुटवेयर के लिए अलग है, भी टाइप ऑफ फुटवेयर में क्या क्या होता है, ठीक है, उसकी फिर उनकी डिजाइनिंग करना, कस्टमर से कम्युनिकेशन करना, सप्लायर से कम्युनिकेशन करना, स्केच करना, जो भी मान लीजिए किसी ने नया टाइप का शू सोचा है तो उसकी डिजाइनिंग प्रिपरेशन करना, तो मतलब ये काफी वाइड वो है, ठीक है। तो ये FDDI का प्रोग्राम रहता है। इसमें क्या रहता है कि 12th में आपके पास में कोई भी स्ट्रीम अगर है, चाहे आपने कॉमर्स लिया हुआ है, चाहे आर्ट्स है, चाहे मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने कोई भी आपके पास में डिग्री है तो आप उसमें 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इसका एक अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है FDDI के लिए, ठीक है, और उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। इसमें जनरली आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रहता है, ठीक है, जिसमें डिप्लोमाज भी अवेलेबल है और इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी रहते हैं FDDI मतलब इन फुटवेयर डिजाइनिंग। ये इतना है जरूर कि अगर आप इस कोर्स में जाते हैं तो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्यों, आप देखेंगे मार्केट में इतने टाइप के मतलब फुटवेयर कंपनीज है, ठीक है, मैंने कुछ नाम लिखे हैं जैसे एडिडास है, कैंपर है, क्रॉक्स है, नाइक का है, प्यूमा है, बाटा है, स्केचर्स है, फ्लैक्स है, मतलब मार्केट में इतनी सारी शू कंपनीज है और ये जितनी भी शू कंपनीज है ये सभी शू कंपनीज जो है वो FDDI से ही बच्चों को रिक्रूट करती है, चाहे उन्हें चैनल में बच्चे चाहिए, चैनल मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग में चाहिए, या उन्हें प्रोडक्शन एक्टिविटी में चाहिए, या डिजाइनिंग में चाहिए, ठीक है। तो वो उसमें क्या रहता है कि जब आपको पता है कि इतनी सारी इंडस्ट्री में
इतनी सारी कंपनीज है, तो फिर एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है। आप एक देखिए, आप किसी भी, चाहे आप छोटे या बड़े, किसी भी सिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, हर सिटी के अंदर मतलब जिसको हम एक चप्पल जूते की शॉप की बात करें तो काफी बड़ी क्वांटिटी में होती है, ठीक है। और हमें जो दिखता है, हमें तो ओनली शॉप दिखती है, बट आप कभी शॉप के पीछे जाके देखिए कि उनका जो सामान आता है कहाँ से सप्लाई होता है, कहाँ से वो लेके आते हैं, नए नए टाइप के डिजाइन आते हैं। तो सेल्स में, मार्केटिंग में तो काफी ज्यादा स्कोप होता है अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। तो FDDI से भी आप अपना डिग्री कर सकते हैं 12th के बाद में। तो इस तरह से मतलब चीजें तो बहुत हैं। अब देखिए इसमें ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कराते हैं, NIFT नवी मुंबई भी आपको मतलब एक तरह से ये कोर्स कराती है, ठीक है। और आपका नोएडा में इंस्टीट्यूट FDDI का, रोहतक में भी है, YMCA फरीदाबाद में भी इसका एक आपका ब्रांच है। तो मतलब है, काफी कॉलेजेस है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की बात है। देखिए सबसे पहली चीज होती है इंटरेस्ट बनाना। हम बहुत कोर्सेज के बारे में बात करते हैं आपके साथ में, उसका रीजन एक यही होता है कि आपको जब तक किसी चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, आपको किसी चीज के बारे में जब तक पता नहीं होता, तब तक हम उसके बारे में कुछ भी अपना लाइफ के बारे में सोच नहीं पाते। अब जैसे आपको, मान लीजिए आपको 5-6 नई चीजें पता चली, पहले पता चलेंगी तभी तो आप उसके बारे में सोचेंगे भी हाँ मुझे उसमें कैसे तैयारी करनी है या कौन सा मुझे एग्जाम देना है, ठीक है। तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है अलग अलग चीजों के बारे में पता करना। ऐसे ही जो गर्ल्स के लिए एयर होस्टेस का भी एक अच्छा स्कोप रहता है। एयर होस्टेस मतलब हम ये बात नहीं कर रहे कि जो एरोप्लेन्स के अंदर ही, मतलब जिन गर्ल्स ने एयर होस्टेस का कोर्स किया हुआ है उसके बाद वो किसी होटल्स में एज ए रिसेप्शन पे वर्क कर सकती हैं या और भी काफी एरियाज में वर्क कर सकती हैं। और देखिए आजकल तो अभी कुछ टाइम, मतलब आफ्टर कोरोना के बाद तो जो आपकी ट्रैवलिंग एजेंसी है या एक तरह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है अभी आज के टाइम में। बट अगर हम जनरल बात करें, पहले बात करते कोरोना से पहले की, तो कोरोना से पहले आप देखेंगे कि टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री काफी बूम पर है। आप किसी भी शहर में चले जाओ, मतलब आज के समय में आप किसी भी सिटी में चले जाइए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसमें आपको होटल मिलते हैं, अच्छे अच्छे होटल्स मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए है क्योंकि मतलब अब लोग इन चीजों पे भी पैसा स्पेंड करते हैं। तो करियर इन एयर होस्टेस के बारे में हम करेंगे डिस्कस। ये बेसिकली गर्ल्स के लिए होता है, मतलब दैट इज प्राइमली फॉर द गर्ल्स। उसकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और किस किस तरह की जॉब्स होती है इसमें। तो एयर होस्टेस में सबसे पहली चीज होती है प्लेजेंट डिस्पोजिशन, मतलब अपियरेंस, ठीक है। तो इसमें आपको स्टीवर्ड की जॉब मिल जाती है, एयर होस्टेस की जॉब मिलती है, और एयर होस्टेस के पास में कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे टू ग्रीट एवरी पैसेंजर, उनको गाइड करना, उनकी सीट पे बिठाना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना सिक्योरिटी के साथ में। तो मतलब काफी सारे काम होते हैं।

स्किल्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आप में, यू मस्ट हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, पेशेंस होना चाहिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स का, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज, ठीक है, प्लेजेंट वॉइस, पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड फिजिक, मतलब काफी चीजें हैं एयर होस्टेस के लिए जो क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपीयरेंस, 18 से 26 ईयर तक का एज है इसमें मिनिमम, 12th क्लास आपने किया होना चाहिए। उसके बाद कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं जो आपको एयर होस्टेस का कोर्स कराते हैं। हाइट जनरली 157.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, ठीक है, अनमैरिड है, परफेक्ट आईसाइट है, गुड हेल्थ है, ठीक है, फेयर टू क्लियर कम्प्लेक्शन है, मतलब कुछ एक रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी एलिजिबिलिटी है एयर होस्टेस के लिए। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जैसे आपने नाम सुना होगा के एरिया में फ्रैंक सिंह बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट हुआ है जो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कराता है, लाइव वेल है, एप्टिमा एयर होस्टेस अकेडमी है, पैसिफिक एयरवेज है, तो काफी अकेडमीज हैं जो ये कोर्स कराती हैं, ठीक है। इसमें आपका जो केबिन क्रू ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी होता है, तो इसमें करने के बाद में आपको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एयरपोर्ट्स पे या जो आपकी एरोप्लेन कंपनीज है या होटल्स में आपको इजिली जॉब मिल जाता है। यस, बिल्कुल, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं एयर होस्टेस में भी, इसमें भी जैसे आप अगर आप करते हैं तो उसमें कई सारे स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग नंबर ऑफ ब्रांचेस आर देयर, तो वो से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक एरियाज है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट ये है कि हम जब भी अपना करियर चूज करें तो करियर चूज करते समय हम ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं। आप देखिए, आप चप्पल खरीदने जाते हैं, अपने कपड़े खरीदने जाते हैं, तो आप शॉपकीपर के पास जब आप जाते हैं तो उसमें आप क्या कहते हैं, उसे अलग अलग टाइप के आप डिजाइन देखते हैं, उसके बाद कोई एक फाइनल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर है, जब हम अपने करियर के बारे में बात करें तो करियर के बारे में जब हम अपने करियर के बारे में फैसला लें, सोचें हमें क्या करना है, तो वहां भी हमें उतनी ही मेहनत से, उतने ही मतलब उतने ही अलग अलग करियर्स को एनालाइज करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमें क्या स्किल है, क्या हमारी स्किल उस करियर के लिए ऑप्टिमम है या नहीं है, तो उसके बाद ही हमें कोई फैसला लेना चाहिए कि किस फील्ड में जाके हम अपना करियर बनाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे लिए एक अच्छा करियर बनाने में काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो ये हमारा आज का था सेशन, जिसमें हमने ये आफ्टर 12th के बाद में जो इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए थे, तो आज हमने इनके बारे में डिस्कस किया है।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: ज्ञानवाणी लखनऊ प्रस्तुत करता है कार्यक्रम जीवी ऑनलाइन।
1: स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का एफएम 105.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ज्ञानवाणी लखनऊ पर, और आज मैं ज्योत्सना हूं आपके साथ लेकर आपका अपना फोन इन कार्यक्रम बात पते की। श्रोताओं, युग परिवर्तन के साथ विचारों के मापदंड ही नहीं बदलते बल्कि रीति और नीतियां भी करवट ले जाती हैं। एक समय था जब स्त्रियों के विषय में कहा जाता था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र

0: देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन श्रोताओं, आज का युग ऐसा नहीं है। विधि की ये कैसी विटंबना है कि एक ही वृक्ष पर लगे दो पुष्पों में से जो एक अधिक सुरभित और सुरम्य होता है उसको अभिशाप समझ लिया जाता है, वहीं दूसरी ओर दूसरे को कष्टमय होते हुए भी वरदान। पुत्र के जन्म पर घर में तवे ढोलक और नपीरी बजने लगती है, लेकिन वहीं जब एक कन्या का जन्म होता है तो माता पिता के चेहरे पर उदासी की छाया क्यों छा जाती है। आज इन्हीं सब प्रश्नों को अपने मन में रखते हुए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर गीता मेहरोत्रा को, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं इग्नू के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह जी। तो मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी ज्ञानवाणी के स्टूडियो में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञानवाणी के स्टूडियो में। और अपने श्रोताओं को एक बार हम अपना विषय फिर से बता दें, हमारा आज का विषय है महिला सशक्तिकरण। तो अगर आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें फोन कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522-2987847 यानी 0522-2987847। और मैम, आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आपसे है वो ये है कि महिला सशक्तिकरण क्या है।
1: महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं लगता है महिला सशक्तिकरण का नापदंड करने के लिए। ये सबसे बड़ी बात जो इसके पीछे है, और मैं बहुत बार इस बात के ऊपर चर्चा भी करती हूँ कि ये हमारा अपनी सोच है, अपना एटीट्यूड है जो हमारे बिहेवियर में बदल जाता है, और हम अपने बिहेवियर को थोपने की कोशिश करते हैं समाज पे। तो अगर हमारी सोच बदल जाए, हमारा एटीट्यूड बदल जाए, हमारे एक्शंस बदल जाए और हमारा बिहेवियर बदल जाए तो हम इक्विटी की बात कर सकते हैं, हम बराबरी की बात कर सकते हैं, हम महिलाओं को उतना ही दर्जा दे सकते हैं जितना हम पुरुषों को देते हैं।
0: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात। और मैम, जैसा कि हम महिलाओं को ढेर सारे नाम देते हैं, देवी, सती, सीता, दुर्गा, है ना, न जाने कितने सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिवेश में ये कहाँ तक चरितार्थ होता है?
1: माने तो भगवान, नहीं माने तो मिट्टी, है ना। बिल्कुल, ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर इंसान को दूसरे इंसान की इज्जत करनी आ जाए और उसकी रिस्पेक्ट करनी आ जाए तो ये जो अंतर है महिला और पुरुष में ये एकदम खत्म हो जाएगा।
0: बिल्कुल मैम, और जैसे प्राचीन काल में तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी और महिलाएं शास्त्रार्थ भी करती थी, हर क्षेत्र में वो थी, लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति कह सकते हैं कि उसमें बहुत अंतर अब आ गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है?
1: देखिए, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात भी नहीं करूंगी और बहुत रिसर्च की बात भी नहीं करूंगी। जो हम कहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों के हाथ में शस्त्र थे, या जैसे झांसी की रानी की बात करें या कुछ और महिलाओं की बात करें, पर आप देखिए कि मदर टेरेसा भी थी। मदर टेरेसा के हाथ में कोई शस्त्र नहीं थे, पर मदर टेरेसा ने साइलेंटली कैसे औरतों को सपोर्ट किया और अपने कार्यक्रम करते हुए दिखाया, अपने जीवन की पूरी रचना के बारे में लोगों को बताते हुए बताया कि एक महिला भी इस लेवल तक पहुंच सकती है। तो मैं उसमें कहूंगी कि महिलाओं को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती तो स्काई इज द लिमिट फॉर अ वुमेन, बहुत ऊंचा उठ सकती हैं वो। और अगर परिवार उनको सपोर्ट करे तो समाज भी कहीं पीछे हट जाता है।
0: बिल्कुल मैम, और लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हमें महिला सशक्तिकरण जैसे दिवस मनाने की जरूरत पड़ी?
1: महिला सशक्तिकरण का दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने समाज को बार बार बार बार रिमाइंड करें कि जो आपका इक्वल पार्टनर है, हकदार है इस समाज का, उनका राइट है अपनी जिंदगी जीने का, अपना इवन जन्म लेने का, जिंदगी जीने का, माँ बाप से उतना ही प्यार लेने का जितना हम बेटों को करते हैं, उनको भी उतनी ही एजुकेशन चाहिए जितना हम बेटों को देते हैं, उनको भी उतने अधिकार चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रिसर्च की बात करती हूँ तो आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है और महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। और आप देखिए अभी समय में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, इंजीनियरिंग भी कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें वो काम करती हैं, पर स्टिल अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो 48% जो हमारा पोर्शन है महिलाओं का, उसमें से मैं कहूंगी कि 40% भी उस लेवल तक नहीं है जो फुल्ली एजुकेटेड है और टेक्नोलॉजी में आगे अपने कदम बढ़ा रही हैं। तो ये जो फर्क हम देख रहे हैं आधुनिक समाज में और पिछड़े समाज में, इस गैप को भरने की जरूरत है। और जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और अगर हम इस गैप को नहीं समझेंगे, ये जो इतनी बड़ी विनम्रता हमारे सामने आके खड़ी हुई है कि हम जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम खाली शहरों की बात करते हैं, हम गांव को भूल जाते हैं। और गांव में अगर महिला से आप चर्चा करें तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी उसकी सोच बड़ी है, पर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक रिमाइंडर देने की जरूरत है समाज को कि उन महिलाओं की तरफ भी देखिए जिनको कुछ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती हैं। तो सोच और अपॉर्चुनिटी का आपस में बहुत गहरा तालमेल है, इस तालमेल को समझने की जरूरत है।
0: और मैम, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है?
1: ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और शिक्षा अपने में ही एक संपूर्ण, मैं बोलूंगी कि एक टॉपिक है, और सशक्तिकरण एक अलग है। हम कहते हैं कि महिला पढ़ जाएगी तो वो एम्पावर्ड हो जाएगी, पर ये बात नहीं है। बहुत सारी महिलाएं पढ़ के भी अपने परिवार में बहुत ही डिफरेंस महसूस करती हैं। और जब हम चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्स रेशो महिलाओं की बच्चों की जो गर्ल चाइल्ड है उसकी बहुत कम है, और 2011 के जो आंकड़े हैं, आज हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और मैं आंकड़ों के ऊपर अभी थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ कि जो हमारे देश में अलर्ट हुआ था कि 2011 में जब हमारी सेंसस हुआ और हमें पता चला कि चाइल्ड सेक्स रेशियो, हमारा जो गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत ही डाउन है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हमारे सामने आए थे जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड देवर अदर स्टेट्स आल्सो, पर उसमें क्यों गिरा हमारा सेक्स रेशो? क्योंकि ये अर्बन एरिया में जो बहुत ही सक्षम थे, पैसे वाले थे और पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने एबॉर्शन अपना एक राइट समझ लिया था, जो बहुत ही गलत था। इसीलिए चाइल्ड सेक्स एबॉर्शन पे भी सरकार ने कानून बनाया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो गैप है ये पढ़ाई की वजह से आया। पढ़े लिखे लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स किए हैं जिसमें लड़कियों की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही कम हो गई, और उनको वो राइट भी नहीं मिला कि वो इस लड़कियों की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही कम हो गई और उनको वो राइट भी नहीं मिला कि वो इस समाज में अपना जीवन व्यतीत कर सके, और उनके पैदा होने से पहले ही उनको एबॉर्शन से खत्म कर दिया गया।
0: बिल्कुल। और जैसा कि हमारे साथ सर भी हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे इग्नू से जुड़ी हुई कुछ जानकारी कि इग्नू का एडमिशन सत्र कब से शुरू हो रहा है।
2: जी मैडम, इग्नू के अगर हम जुलाई 2021 सेशन की बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे एडमिशन इस साइकिल के लिए ओपन है, और जिन लर्नर्स को इग्नू से यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो उनके पास अवसर है कि वो 15th ऑफ जुलाई तक ऑनलाइन मोड से फॉर्म्स भर सकते हैं। जो विश्वविद्यालय का लिंक है एडमिशन का, वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर उसको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, नॉलेज को अपग्रेड करना है, तो वो इग्नू के प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकता है। और अभी बहुत सारे नए प्रोग्राम्स विश्वविद्यालय ने लॉन्च किए हैं, जैसे एमए इन उर्दू, एमए इन ज्योतिष और जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज पे तमाम कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, फिर डेवलपमेंटल स्टडीज पे पीजी डिप्लोमा

0: इग्नू ऑफर कर रहा है, सीएसआर में इग्नू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नया कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है डिप्लोमा लेवल पे, और उर्दू लैंग्वेज में पीजी हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं समझता हूं कि लर्नर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होंगे, और जो डिस्टेंस मोड में अभी तक नहीं ऑफर हो रहे थे उनको विश्वविद्यालय डिस्टेंस मोड में ऑफर कर रहा है। कुछ पाठ्यक्रम हमारे खास तौर से सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड में भी इस समय ऑफर हो रहे हैं। तो जिन लर्नर्स के पास समस्या है कि वो डिस्टेंस से भी नहीं कर पाते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम घर बैठे अपनी पढ़ाई करें अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए, अपने लैपटॉप्स को यूज करते हुए, तो उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज जो इग्नू के हैं वो काफी अच्छा ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि लर्नर्स को समय नहीं गंवाना चाहिए और एडमिशन के लिए जो लिंक हमारा खुला है उसमें उसका लाभ उठाना चाहिए और अपना एडमिशन लेना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, और टर्म एंड एग्जामिनेशंस जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए थे
0: जी,
1: तो उसके बारे में सर।
0: जी, टर्म एंड एग्जामिनेशन हमारा जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था वो 3rd ऑफ अगस्त से शुरू होने वाला है। तो जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको इस एग्जाम में बैठने का अवसर मिलेगा।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी। और मैम, हम बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण की, तो इसमें आपने बताया कि शिक्षा की क्या भूमिका है, अब इसमें परिवार का क्या योगदान होता है?
2: सबसे बड़ा योगदान परिवार का है, और उससे बड़ा योगदान है कि जो मैरिड कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, और एक हस्बैंड को स्टैंड लेना है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बैन क्यों हुआ कि हमें स्क्रीनिंग नहीं करानी बच्चे की कि वो लड़की है या लड़का, जो सेक्स सेलेक्टिव स्क्रीनिंग है वो भी नहीं करानी, अबॉर्शन भी नहीं कराने, और जब परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर उनकी सोच अभी नहीं बदली है, तो एक हस्बैंड और वाइफ मिलके अगर स्टैंड लेते हैं तो ये बहुत बड़ा स्टैंड है माइंडसेट को चेंज करने का, क्योंकि हम बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हस्बैंड वाइफ मिलके डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और हमें ये स्टेप्स लेने हैं, तो क्यों नहीं इस संदर्भ में भी। और जब शिक्षा की बात है तो अब बहुत समय बदल गया है, बहुत परिवारों की सोच बदल गई है, यंग कपल्स की सोच बदल गई है, वो डिफरेंस है जो लड़की और लड़के की शिक्षा में, अभी मुझे शहरों में तो इतना नजर नहीं आता है, पर हाँ उसका बहुत बुरा हाल है गांवों में। गांवों में अगर हमने अभी भी इस चीज को नहीं पकड़ा और नहीं शिक्षा की तरफ पेरेंट्स की सोच बदली, तो ये गैप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के आने से टेक्नोलॉजी उनके लिए एक ड्रीम है, एक सपना है, उसको हाथ से छूना भी उनके लिए बहुत दूर की बात है, और टेक्नोलॉजी को यूज करना तो आई थिंक मैं इसके बारे में पिछले 15 साल से चर्चा कर रही हूं, और अभी भी वो गैप एक ड्रॉप इन द ओशियन की लेवल पे फिल हुआ है, और उसमें भी ड्रॉप का जो साइज है वो डिफाइन करना मेरे लिए इतना मुश्किल है कि जस्ट अ सिंपल ड्रॉप। तो अगेन आई वुड से कि ये सब माइंडसेट की बात है, और जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हैं आज, और अपने पैरों पे खड़े होके जब उनको मौका मिलता है कि वो अपने आप को इतना सक्षम समझती हैं कि वो अपने परिवार की देखभाल कर सकती हैं और उनके जो हस्बैंड्स हैं वो भी इस बात को समझते हैं, तो द ओनली थिंग इज दैट कि कैसे हम जो एक्सपीरियंसेस हैं, देखिए पीयर लर्निंग भी बहुत बड़ी एजुकेशन है हमारे देश में, और अगर एक महिला अपने एक्सपीरियंसेस दूसरी महिला के सामने शेयर करती है कि कैसे उसने अपने बच्चों की देखभाल की और अपने गर्ल चाइल्ड को उन्होंने हायर एजुकेशन दी, और उसको हायर एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि 12th पास करा दी, हायर एजुकेशन की पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, तो ये सोच आस्ता आस्ता शहरों में तो बहुत सीख आ रही है, पर गांवों में सोच है, सपना है, पर उस सपना को पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहां तक तो हम पहुंच गए हैं।
1: बहुत अच्छी बात। और जैसे आपने कहा कि गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इसी तरह महिला सशक्तिकरण में स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ आप बताइए।
2: बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम सरकार भी चला रही है जहां पे वो स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, और गुड़गांव में तो मैंने एक यूनिवर्सिटी भी देखी है जिस यूनिवर्सिटी का नाम ही स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, और इग्नू जैसे भी ऐसे बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और अगर मेरा आप एक्सपीरियंस जाने तो जिस संस्था की मैं कंट्री डायरेक्टर हूं रीड इंडिया, हमने 30,000 से ज्यादा औरतों को सक्षम बनाया है लाइवलीहुड ट्रेनिंग पे, जो वो आज अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। और इससे आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन मैं ये जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको बताना चाह रही हूं कि लड़कियां, क्योंकि ये महिलाओं के लिए कार्यक्रम था और मैं दावे से इस बात को कह सकती हूं कि 30,000 औरतों को अगर हमने सक्षम बनाया है तो 15,000 औरतें तो अपने पैरों पे आज खड़ी हैं, जिनका डिले इन मैरिज भी हुआ है, अभी 25 साल की लड़कियों ने भी शादी करने की थोड़ी सी रोक लगाई है, अपने पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज किया है, क्योंकि पहले हमने अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तभी हम शादी करेंगे। तो डिले इन मैरिज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्टिलिटी ऑफ अ वुमेन, कि वो बच्चे नेचुरली सोच बनेगी कि कम पैदा करने हैं, और इतना प्रेशर नहीं होगा कि अगर कम बच्चे करने हैं, और लड़की भी चाहिए और लड़का भी चाहिए एक बैलेंस्ड परिवार के लिए, तो ये सोच अपने आप बदल जाएगी। तो शिक्षा का और रिलेशन जो है, जब हम एम्पावरमेंट का करते हैं तो इस तरह से हमें उनको कंपेयर करना है और लोगों को समझाना है।
1: बिल्कुल मैम, और जैसे कि भारतीय समाज में स्त्रियों की जो घटती संख्या है इस समय, उसके क्या दुष्परिणाम हैं?
2: देखिए, हमारे यहाँ पे हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, तो 2011 का जो सेंसस था उन्होंने हमारे सामने अलार्म खड़ा किया कि सेक्स रेशियो में बहुत डिफरेंस आ रहा है, और अभी 2021 में सेंसस होना चाहिए और मुझे नहीं पता कि कोविड की वजह से सरकार इसको कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, पर चाहे सेंसस हो या ना हो, सरकार को नॉन गैर सरकारी संस्थाओं का साथ देकर लोगों का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, जहां पे हम कहें कि लड़की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना लड़का। और मैं हरियाणा में रहती हूं, हालांकि मैं पैदा और पढ़ी और बड़ी तो दिल्ली में हुई हूं, पर आज के समय मैं हरियाणा में रहती हूं, और हरियाणा में अभी भी सोच बदलने की बहुत बहुत जरूरत है, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, सही बात है, लेकिन शिक्षा बहुत ज्यादा रिलेटेड है इन सारी चीजों से, क्योंकि केरला में देखिए ज्यादातर लोग जो हैं एजुकेटेड हैं, तो वहां पे मतलब गर्ल चाइल्ड का रेशियो भी ज्यादा है ना, तो शिक्षा तो मैटर बहुत ज्यादा करती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि लोगों की जो सोच है ये कैसे, क्योंकि परिवेश जो हमारा माहौल होता है, परिवेश होता है, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे परिवार में रह रहे हैं जो बहुत कंजर्वेटिव माइंड है, और लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे लिए बेटा इम्पोर्टेंट है, और पहले यही चाहिए, लड़की बहुत ज्यादा एजुकेटेड है लेकिन उसके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक लड़की को या एक स्त्री को क्या करना चाहिए?
2: मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं दोबारा से ये रिट्रेट कर दूं बात, क्योंकि शिक्षा का अपना महत्व है, और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं और हम उस एज ग्रुप को लेते हैं जो 35 to 55 है महिलाओं का, या हम 40 से 65 तक की महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एम्पावरमेंट का मतलब भी नहीं समझा, उनको जो महिला सशक्तिकरण है उसके बारे में किसी ने बात भी नहीं करी, और ये मैं रूरल एरियाज की बात कर रही हूं, तो उस संदर्भ में मैं कह रही हूं कि अगर हम उनको इस बात के, उनके साथ बैठ के इस बात की चर्चा करें, और वो तो अब स्कूल भी नहीं गई हैं, एजुकेटेड ही नहीं है, तो मेरा ये कहने का मतलब है जो वर्ग एजुकेटेड नहीं है उनके साथ हम कैसे उनका माइंडसेट बदलें कि महिला को उतना ही दर्जा अपने परिवार में देना है जितना हम पुरुष को दे रहे हैं, तो वो चीज बातचीत करने पे आएगी, पीयर लर्निंग पे आएगी और समाज में जब हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे तभी आएगी। और यहाँ पे गैर सरकारी संस्थाएं बहुत ज्यादा काम कर रही हैं गांव में जाके लोगों के माइंडसेट चेंज करने के लिए। जहां पे मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ, जब शिक्षा बहुत जरूरी है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ कि शिक्षा जरूरी नहीं है, पर शिक्षा अभी जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है, जो आप कह रहे हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, उसमें मैंने बोला कि वो भी करते हैं, पर जो माइंडसेट वुमेन एम्पावरमेंट की बात है वो एजुकेशन का उसका डायरेक्ट लिंक है, वो तो है ही है, तभी समाज बदलेगा। पर हमारा समाज बटा हुआ है जहां पे 70% ऑफ और हमारा जो पॉपुलेशन है अभी यूथ है, क्योंकि हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से निकल रहे हैं, जहां पे 65% यूथ है और हमारी 70% पॉपुलेशन गांवों में रह रही है। और जब तक हम यूथ का माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, यूथ को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, यूथ के बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे, तभी हमारा ये जो गैप है महिला सशक्तिकरण का, ये कम नहीं होगा।
0: जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और आपकी जानकारी के माध्यम से हमारे श्रोता लाभान्वित हुए और उन्होंने ये समझा कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की आवश्यकता है। चाहे वो शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जागरूकता की बात करें तो जागरूकता भी इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरह हमें समाज को भी सशक्त बनाना पड़ेगा, समाज में ये मैसेज देना पड़ेगा कि महिलाएं इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उनके भी अपने अधिकार हैं, खासतौर से अगर हम रूरल सोसाइटी की बात करते हैं, और हमें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और जहां तक रीड इंडिया के विषय में मैं जानता हूं तो रीड इंडिया की जो अप्रोच है वो काफी मैं समझता हूं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच है, जिसमें आप विभिन्न आयामों पर काम कर रहे हैं और विमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रयासरत हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम रीड का जो है, रीड महिलाओं जहां भी महिलाओं से रिलेटेड सेंटर्स हैं या स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करा रहा है, वहां पर लाइफ स्किल्स की चर्चा जरूर होती है, लाइफ स्किल्स के बारे में महिलाओं को बताया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं चाहता हूं कि श्रोताओं को आप बताएं कि लाइफ स्किल्स क्या हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है।
2: लाइफ स्किल्स तो एक जीवन को व्यतीत करने की शिक्षा है, और जब हम आम जिंदगी में, ये जो आपने आज महिला सशक्तिकरण की बात करी है या एजुकेशन की बात करी है, ये लाइफ स्किल्स के एक आई शुड से दैट एक कॉइन के दो साइड्स हैं। हम एजुकेट तो कर देते हैं, एकेडमिक एजुकेशन दे देते हैं, पर बच्चों को कभी लाइफ स्किल्स के बारे में नहीं सिखाते हैं। जो संस्कार हैं, जो वैल्यूज हैं, वो उनको फैमिली से मिलती हैं, और फैमिली अगर उन संस्कारों को, उन कल्चर को पीछे ही छोड़ देती है तो वो लाइफ स्किल्स की बात समझते नहीं हैं दूर दूर तक। तो आज हमारे देश में जहां पे कल्चर इतना रिच है, आप कह रहे हैं कि औरतों के हाथ में शस्त्र थे और हमारी हिस्ट्री ये कहती है,
0: शास्त्र दोनों
2: थे, और अभी हमारी हिस्ट्री ये कह रही है, और पर आज के टाइम पे अगर हमारा कल्चर ही हमारी वैल्यू सिस्टम बनता है और वैल्यू सिस्टम ही हमारी लाइफ स्किल्स बनती है, तो कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को पीछे छोड़ते आ रहे हैं, अपनी लाइफ स्किल्स को भूलते आ रहे हैं। तो आज स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्यों हमें जरूरत पड़ रही है कि हम लाइफ स्किल्स के बारे में बात करें। और लाइफ स्किल्स क्या है, आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनालिटी क्या होती है उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, और वो जानना, होलिस्टिक डेवलपमेंट कोई साइंस नहीं है, उसके पीछे लाइफ की, जिंदगी को, अपनी जिंदगी को कैसे जीना है उसकी शिक्षा दी जाती है। कैसे माँ बाप की इज्जत करनी है, कैसे एक महिला की इज्जत करनी है, कैसे अपनी बहन की इज्जत करनी है, कैसे अपनी पहचान बनानी है सोसाइटी में, कैसे अपने आप को सक्षम बनाना है शिक्षा के द्वारा और स्किल्स के द्वारा कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। और इसके संदर्भ में मैं एक युवा पीढ़ी को ये भी मैसेज देना चाहूंगी कि उड़ान भरना तो बहुत आसान है, पर उड़ान की अगर डोर मजबूत नहीं है तो गिरना उससे भी आसान है।
0: जी, बिल्कुल
2: तो
0: सही।
2: इस चीज को, अपनी जिंदगी की उड़ान संभाल के चलने से, संभाल के उड़ने से, वैल्यू सिस्टम से, स्किल से अगर हम चलें, तो मुझे लगता है कि हम अपने देश को सोने की चिड़िया कहने में बहुत दूर नहीं रहेंगे।
0: जी मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। और इस समय भारत सरकार इस विषय पे काम कर भी रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और बहुत ही मतलब प्राइमरी सेक्शन से ही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इम्पार्ट करने की बात है और मैं समझता हूं कि आगामी एकेडमिक सत्र से ये चीजें शुरू भी हो जाएंगी, तो ये बहुत शुभ संकेत है। मुझे लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके मन में ये सारी चीजें नहीं होंगी और महिलाओं को वो समान मतलब बराबर का दर्जा देगी। मैडम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फील्ड पे काम करती है, आपने महिलाओं को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग्स दिलाई, उनको लाइफ स्किल्स के विषय में अवगत कराया है और खासतौर से आपका जो मॉडल है रीड का, कम्युनिटी लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर का, तो वो भी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को फोकस करता है। तो मैम, मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे कि जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है महिलाओं का, कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग्स जो आप लोग दिलवाते हैं या सरकार दिलवा रही है कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल साबित होती है, तो आप अपने कुछ एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करना चाहेंगी जहां पर आपने कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी दिलवाई और महिलाओं ने समाज में एक अच्छा काम किया, अपना एंटरप्राइज शुरू किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
2: जो रीड का मॉडल है, हम एक गांव में जाते हैं, बात करते हैं, सीधा कम्युनिटी के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि रीड आपके लिए किताबें लेकर आ रहा है, कंप्यूटर्स लेकर आ रहा है, आपकी महिलाओं को कुछ स्किल्स की ट्रेनिंग देना चाह रहा है, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं, तो हम यहां पे एक कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर बना देते हैं। जो लोग संस्कारी हैं और इसके वैल्यू समझते हैं, विजनरी हैं, वो हमें कहते हैं ये हमारा घर खाली पड़ा है, आप इसमें बना दीजिए और यहाँ पे हम सारे समाज को बुला के, जो हमारे गांव के लोग हैं वो यहाँ पे आके इस सेंटर को चलाएंगे, लाइब्रेरी को चलाएंगे। तो ये प्रयास मैंने 2007 में शुरू किया था और आज 2021 है, अभी तक तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मैं जिस गांव में जाती हूँ उस गांव में मुझे बहुत ही सहानुभूति कह लीजिए या इज्जत कह लीजिए या रिस्पेक्ट कह लीजिए वो मिलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी देना चाहूंगी, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर हैं हरियाणा के, उन्होंने जब देखा कि मैं मेवात में काम कर रही हूँ और मैंने 2012 में या 2013 में उनको बुलाया एक हमारी लाइब्रेरी को इनॉग्रेट करने के लिए, तो उन्होंने तब से मुझे बोला कि मेरी हवेली खाली पड़ी है मेहंदीपुर गांव में, हरियाणा में झज्जर में, तो आप उसको सेंटर बना दीजिए। और 2014 से उस हवेली में हम काम कर रहे हैं। तो जो विजनरी लोग हैं, जिनको पता है कि हाँ अगर समाज ने हमें कुछ दिया है तो हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को कुछ वापस करें, तो वो लोग बहुत आगे बढ़कर आते हैं। और जहां तक कीर्ति जी आपने पूछा है कि महिलाओं ने कुछ किया है या नहीं किया, तो उत्तर प्रदेश का ही मैं एग्जांपल देती हूँ। हम एक कार्यक्रम चलाते हैं जो हम कहते हैं एम्बाइबिंग ग्रास वुमेन लीडर्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स, वो हर हफ्ते हमारा कार्यक्रम आता है। आज भी 4 से 5 था, हमने महाराष्ट्र की एक लड़की को उस कार्यक्रम में बुलाया था और यूपी से पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते में 2 महिलाओं को हमने प्रोग्राम में बुलाया था। और एक लड़की जो मुस्लिम लड़की है, फर्रा उसका नाम है, और आज वो 25 साल की है और वो कहती है मैंने अभी भी शादी नहीं करनी है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। जहां वो 16 साल की थी, उसके पेरेंट्स शादी करना चाह रहे थे उसकी, आज वो 10वीं पास होने के बाद उसने कहा कि मैं ये कम्युनिटी लाइब्रेरी को चलाऊंगी और अपने गांव वालों को शिक्षित करूंगी। और उसने एक प्री स्कूल भी चलाया जिसमें 300 से ज्यादा छोटे बच्चे पढ़ते हैं और सेंटर भी चलाती है जिसमें महिलाएं सिलाई सीखती हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस का कार्यक्रम करती हैं, कंप्यूटर्स सीखते हैं बच्चे और प्रोफेशनल कोर्सेस भी करते हैं। और जब पिछले हफ्ते मैं उससे चर्चा कर रही थी तो उसने कहा कि मैंने अपनी कमाई से अपने माँ बाप के लिए घर भी बनाया है, क्योंकि मुझे, मेरे पेरेंट्स कहते थे, जो समाज के लोग थे कहते थे कि आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा घर इतना टूटा फूटा था कि हम रात को सोते थे तो पानी छत से गिरता था। तो मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि आपका अगर दामाद घर में आएगा और पानी गिरेगा छत से तो आपकी क्या इज्जत रहेगी। आज आपकी बेटी इतनी सक्षम है कि आपको घर बना के दे रही है और कल को मैं शादी करती हूँ और दामाद आएगा तो आपको इज्जत की नजर से देखेगा। तो पहले मैं खुद सक्षम हूं, फिर मैंने अपने परिवार को सक्षम किया, फिर मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को सक्षम किया, आज मैं शादी के लायक हूं और मैं शादी कर सकती हूं।
0: बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई, और ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मैं समझता हूं कि हमारे युवा साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तमाम महिलाएं सुन रही होंगी, तो उनके लिए भी बहुत मोटिवेटिंग रहेगा ये। हाँ, और मैडम इसी क्रम में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कुछ सक्सेस स्टोरीज हमसे शेयर करी, आपने कमिश्नर साहब का एग्जाम्पल बताया, तो ये मॉडल रेप्लीकेट करें और महिलाओं के जो अधिकार हैं या महिलाओं से रिलेटेड जो तमाम सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या आपका ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यक्रम चला रहा है वो जनमानस तक पहुंचे, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
2: हम ये जितनी भी महिलाओं के प्रति स्कीम्स हैं
0: जी,
2: हम सारा अपने सेंटर के थ्रू महिलाओं को इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं वाद का एक एग्जांपल देती हूं कि महिलाएं तो खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके बच्चों की हायर शिक्षा के लिए सरकार पैसा देती है और 70 महिलाओं के अकाउंट में वो पैसे डाले कि वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दें, और 70 से ज्यादा महिलाओं को सिलाई मशीन लेके दी सरकार के पैसे से कि वो अपने घर का कार्यक्रम चलाएं, और बहुत सारे ऐसे महिलाओं को पैसा भी दिया गया कि वो अपने बेटियों की शादी करें। तो स्कीम बताना एक बात है, पर स्कीम को प्रैक्टिकली लागू करके उनको बेनिफिट दिलाना ये अलग बात है। और बेनिफिट कौन दिलाएगा? वो समाज में जो लीडर्स हैं वो ही दिला सकते हैं। अगर हम सरकार के अगेंस्ट ही चलते रहेंगे तो हम कैसे महिलाओं को सक्षम बनाएंगे और कैसे हम उन तक ये जो कार्यक्रम है लेके जाएंगे? तो बहुत सारी ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं कहती हूं आज का ये युग है, आप सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी अच्छा कर रही हैं, बट आज का समय हमें फिर हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, हमें एक गांव में एक पुरुष और एक महिला की जान पहचान, जो जान पहचान है उनकी पूरे गांव के साथ होनी चाहिए, और गांव की जान पहचान एक परिवार के साथ होनी चाहिए। अगर वो उनके साथ खड़े हैं, उनकी सहानुभूति उनके साथ है और उनको सक्षम बनाते हैं, यही एक मैसेज है आज के युग में सक्षमता की बात करने का। कोई भी इंडिविजुअल लीडर, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये रोल प्ले नहीं कर सकती है उस हद तक जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हम इतनी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, पर जो ज्ञानी हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको टेक्नोलॉजी आती है, वो हैंड टू हैंड अपनी कम्युनिटी में, अपने समुदाय में उनका हाथ पकड़ के चलें, तभी इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है।
0: जी मैम, और इस क्षेत्र में भी मैं समझता हूं कि सरकार काफी काम कर रही है। डिजिटल इंडिया की जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं आपके इस विजन को सपोर्ट करती है। मैम इसी क्रम में ये जानना चाहूंगा मैम कि जैसे अभी कोविड का समय आया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे, मगर उन्होंने वेबिनार्स आयोजित करने शुरू कर दी, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आयोजित करनी शुरू कर दी, जूम ऐप और तमाम बहुत सारी एप्स ऐसी हुई जिसका ऊपर यूज करना शुरू कर दिया गया, तो टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ा और बहुत अच्छे से यूज किया जाने लगा। तो मैम रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और उपयोगी कैसे साबित हो सकती है हम सभी लोगों के लिए, इसकी जानकारी हमें दो।
2: 5 चीजें हैं जो मैं पिछले बहुत सारे सालों से ये बोलती हूं सबको। एक तो एक्सेसिबिलिटी इज अ बिग गैप, क्योंकि एक्सेस नहीं होगा टेक्नोलॉजी को तो वो समझेंगे कैसे। फोन खरीदने के लिए भी अगर पैसे नहीं है तो हम कैसे बात करेंगे कि हम टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हैं गांव में, और शहरों में तो लोगों के पास 5-5 फोन है बिकॉज दे कैन अफोर्ड। और अफोर्डेबिलिटी दूसरी बात है कि पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए। तीसरी बात है एडेप्टेबिलिटी, जो हम पॉपुलेशन के वर्ग को अगर हम डिवाइड करें, यूथ के पास फोन है पर 30-40 उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक टेक्नोलॉजी को यूज करना भी आना चाहिए। मैं यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं मलेशिया की कम्युनिटी लाइब्रेरीज में गई थी जहां पे ओल्ड पॉपुलेशन के लिए अलग से एक सेक्शन है जहां पे वो ओल्ड पॉपुलेशन आती है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता पर वो सीखना चाहते हैं, और वहां पे टाइम डेडिकेटेड किया हुआ है कि आप 2 घंटे आइए, हम आपकी क्लास लेंगे, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान देंगे और कैसे मोबाइल को यूज करना है, कैसे मोबाइल बैंकिंग को यूज करना है, ये सारी जानकारी भी हम उनको देंगे। तो कौन कर रहा है ये? लर्नेड पीपल आर डिवोटिंग देयर टाइम कि वो दूसरे लोगों को सिखाएं। तो टेक्नोलॉजी की लर्निंग भी एक बहुत बड़ी बात है इसमें। और पांचवा जो पॉइंट है जो मैं यहां पे सबसे जरूरी कहना चाहूंगी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, लर्निंग स्किल्स और उसकी कॉन्टिन्यूटी। उसकी कॉन्टिन्यूटी भी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि पिछली टेक्नोलॉजी को सीखते ही वो डिप्लीट हो जाती है, और जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, क्योंकि इट्स अ मार्केट ट्रेंड, अगर हम मार्केट ट्रेंड को अलग कर लें और सिखाने की कला को अलग कर लें, तो मुझे लगता है कि जो मैंने 5 पॉइंट्स यहां पे बताया हम उनको बहुत अच्छे से लागू कर सकते।
1: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। और क्योंकि आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो क्या उससे जुड़े कुछ कानून हैं ऐसे जो आप हमारे श्रोताओं को बताएं? और जैसा कि समय भी है बहुत कम रह गया है, तो एक बार अपने श्रोताओं को हम पुनः बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गीता मल्होत्रा को। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए, और अब तक जितने भी श्रोताओं ने सुना होगा वो अवश्य ही बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। तो अब
0: मैं, आपने जो सवाल पूछा उसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि अगर जैसे अगर अपने प्रदेश सरकार की हम बात करते हैं, तो महिलाओं के लिए जो यूपी पुलिस है उसने काफी काम किए हैं, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो विंग है, महिलाओं के लिए तमाम हेल्पलाइंस उन्होंने लॉन्च करी है, डायल 112, विमेन पावर लाइन 1090, तो इस तरह की हेल्पलाइंस हर स्टेट में है। तो अगर महिला इन हेल्पलाइंस को यूज करती है तो मैं समझता हूं कहीं भी जो क्राइम है उनके अगेंस्ट वो अगर हो रहा है या नहीं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति बन रही है, तो ये हेल्पलाइंस कहीं ना कहीं उनके लिए उपयोगी साबित होंगी। और जो लीगल लिटरेसी की बात कर रही हैं आप या कानून से रिलेटेड जो भी सवाल आपने पूछा, तो मैं समझता हूं बहुत कम समय में इसका जवाब दे पाना मुश्किल है। तो वो लोग इस हेल्पलाइन से अगर हेल्प लेते हैं तो उनकी जो कानून के प्रति जो जिज्ञासा है या जानकारी वो करना चाहते हैं उनको जरूर मदद मिलेगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई।
2: ज्योत्सना जी, जब आपने कानून की बात करी है तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी।
1: जी मैम,
2: हम कानून की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? मैंने सबसे पहले कार्यक्रम में ये बोला है कि हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच, एक महिला रात के 10 बजे के बाद सड़क पे अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है। क्यों? कौन है समुदाय कौन बना रहा है, एक महिला और एक पुरुष? अगर पुरुष की सोच ठीक है तो महिला को डर की बात नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है। हमने समुदाय में ऐसी सुरक्षा लानी है महिलाओं के लिए कि उनको कानून की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर हम कानून के पीछे भागते रहेंगे तो हम कानूनी शिक्षा के बारे में ही जानकारी दे पाएंगे, जो लाइफ स्किल्स हैं, जो हमने वैल्यू सिस्टम की बात करी है, जो कल्चर की बात करी है। मुझे लगता है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड, और जो शिक्षा शुरू होती है वो परिवार से शुरू होती है। और अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा दें कि एक लड़की और लड़का समान है, और अगर आपको समाज में इसका कहीं पे ये नजर आता है कि रिलेशनशिप क्या है, अगर उसको संभाल के आगे चलना है, तो उतनी नॉलेज तो पेरेंट्स भी दे सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी आपने बात कही, और कुल मिला के बस यही है कि अगर हमें सशक्त होना है तो शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जरूरी है कि हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का संचार हो, हमारे अंदर सभी सद्गुणों का संचार हो। और जैसा कि कहा, माँ पहली पाठशाला होती है बच्चों की, तो बिल्कुल ये एक माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाले। और सर, जैसा कि हम आज वेमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, तो इसमें इग्नू का क्या रोल है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ
0: जी इस, क्योंकि समय कम बचा है तो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। ये जानकारी मैं खास तौर से अपने लर्नर्स को देना चाहूंगा जिन्हें एडमिशन लेना है, जो ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। जैसा कि डॉक्टर गीता जी ने भी अपने अपने अपने फीडबैक के दौरान, अपने सेशन के दौरान बताया कि सबसे जरूरी है कि महिलाओं को उनके विषय में जो भी कदम उठाए गए हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो विश्वविद्यालय का भी ये प्रयास है कि जो भारत सरकार या राज्य सरकार जो महिलाओं को तमाम सहूलियतें दे रही हैं, तमाम योजनाएं उनके बेटरमेंट के लिए लागू हो रही हैं, उनके विषय में हम लोग बताएं। तो इसके लिए हम लोग तमाम अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसमें ग्रामीण महिलाओं को सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि वो इग्नू के कार्यक्रमों में जुड़ें। इसके लिए हम लोग कम्युनिटी मीटिंग्स आयोजित करते हैं और वहां पर हम लोग जो वहां उस समुदाय के जो नॉलेजेबल्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको आमंत्रित करते हैं और उनके द्वारा ये मैसेज देने का प्रयास किया जाता है कि शिक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे जो है सोशल डेवलपमेंट किया जा सकता है, महिलाओं का उत्थान हो सकता है, महिला पुरुष मिलजुल के देश की उन्नति में, देश की प्रोग्रेस में समान रूप से भागीदार हो सकते हैं। तो ये हम लोग बताते हैं और उसके बाद जो इग्नू द्वारा जो महिलाओं से संबंधित जो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जो उनके स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हमारे जो महिलाओं के लिए यूजफुल हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इग्नू फ्री ऑफ कॉस्ट संचालित कर रहा है उसके विषय में जानकारी दी जाती है। और मैं समझता हूं 50-60% केसेज में लोग कन्विंस होते हैं और एडमिशन लेते हैं। महिलाओं के लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक सेंटर्स भी बना रखे हैं जहां पर केवल महिलाएं ही पढ़ाई करती हैं और उनसे संबंधित कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं जिससे उनका अध्ययन और जो उनके नॉलेज का लेवल है हम लोग उसको बढ़ा सकें। और जो वर्क प्लेस पे महिलाएं काम कर रही हैं, जो हमारी विमेन स्टूडेंट्स हैं, उनको सहूलियत मिले। तो जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस इस समय इम्प्लीमेंट कर रखी है, इग्नू उसको पूरा फॉलो करता है, वैसे ही सारे कानून जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों का ये प्रयास है कि महिलाओं को हम लोग ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करें जैसे कि वो शिक्षित हो सकें और सशक्त हो सकें।
1: बिल्कुल सर, आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी और मैम हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैं आपके कार्यक्रम का बहुत बहुत आई शुड से कि थैंक्स टू यू एंड डॉक्टर कीर्ति की जिन्होंने मुझे बुलाया। और मैं वैसे तो गुड़गांव में रहती हूँ, आज मैं लखनऊ में थी तो एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए अपनी बात कहने की। और मुझे लगता है कि जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो भी मैंने छोटी बात बोली अगर उसका अमल करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट उनको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, आज जो बात निकलकर सामने आई है वो यही है कि शिक्षा हमारे जीवन में सबसे बड़ा हथियार है। तो अगर आप शिक्षित होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन सब के साथ, जैसा कि मैम ने बताया, मानवीय गुणों का होना बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों में ये संस्कार आप बचपन से डेवलप करिए कि बच्चे सुबह उठते ही करें सबसे पहले अपने ईश्वर का ध्यान, साथ ही साथ बड़ों का सम्मान करें और अपने बच्चों को एक अच्छा और नेक और सच्चा इंसान बनाएं, तो जीवन में हम सब प्रगति की ओर जरूर अग्रसर होंगे। और इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करने की अनुमति दीजिए अपनी दोस्त ज्योत्सना को। लेकिन सुनते रहिए ज्ञानवाणी लखनऊ FM 105.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, जहां कार्यक्रमों का सिलसिला रहेगा जारी रात्रि 10 बजे तक।

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज का जो सेशन है वो रेलवे में जॉब्स के ऊपर सेशन है कि रेलवेज में जो रेलवे डिपार्टमेंट है, आप सब जानते ही हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, मैक्सिमम मतलब इतना बड़ा एम्प्लॉयर है कि इतने एम्प्लॉयर्स हैं रेलवेज के अंदर कि जो एक किसी कंट्री की पॉपुलेशन के इक्वलेंट है, ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है काफी बड़ा है। कोई मुझे आप में से ये बता सकता है कि इंडिया में पहली बार ट्रेन कब चली थी? एनीवन आउट ऑफ यू? हाँ, 1853 में ट्रेन चली थी पहली बार, ठीक है। और आप देखेंगे कि इंडिया की डेवलपमेंट में रेलवे का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आप देखेंगे, आप किसी भी कॉरिडोर पे चले जाइए, बहुत ही लो प्राइस में ट्रेन जो है वो आपको एक तरह से ट्रैवलिंग के लिए या जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इतने स्टेशन हैं, हर स्टेशन पे स्टाफ है, तो मतलब रेलवे के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्लॉय लोग किए जाते हैं, तो एक रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो आज के सेशन में हम यही समझेंगे कि रेलवे जो एम्प्लॉयर है सबसे बड़ा, तो उसमें किस किस टाइप्स की जॉब्स होती हैं और उन जॉब्स के लिए कौन कौन से एग्जामिनेशंस होते हैं, किस लेवल पे होते हैं, तो वो हम आज के सारे सेशन में डिस्कस करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक थोड़ा बहुत ये बताऊं भी क्या क्या चीजें हैं रेलवे के अंदर। अभी तो हम रेलवेज मतलब हम इंडियन रेलवेज जानते हैं। रेलवेज के अंदर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, मतलब चारों ग्रुप्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जॉब्स प्रोवाइड करता है। आपको ध्यान हो, मैंने आईएएस की क्लास जब लिया था यूपीएससी का, कैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन किया जाए, तो उसमें आपको मैंने इंडियन रेलवे सर्विसेज के बारे में बताया था। तो रेलवे में आप देखेंगे आईआरटीएस, आईआरपीएस, आईआरएएस, ईएससी, ये सारी उनकी फुल फॉर्म्स है। तो ये मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग। रेलवे पुलिस फोर्स है, रेलवे स्टोर सर्विसेज है, रेलवे मेडिकल सर्विसेज है, रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स है, मतलब इतने डिपार्टमेंट्स है रेलवे के अंदर, तभी ये एक तरह से हम ये कहते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, ठीक है। तो ये हमारा आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव रहेगा, भी कैसे आप इसमें जा पाए, कैसे आप इसमें जॉब्स ले पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी रेलवेज की ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाती है, मतलब कोई अलग से आपको प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है। आप चाहे एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो रेलवे में भी एग्जाम पैटर्न जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है। बट रेलवे में दो टाइप की इंपॉर्टेंट जो डिवीजन किया जाता है, एक रहता है टेक्निकल जॉब्स के लिए और सेकेंड रहता है नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए। जो टेक्निकल जॉब्स हैं, उन टेक्निकल जॉब्स में जनरली जो क्वालिफिकेशंस बच्चे की मांगी जाती हैं, उसमें इंजीनियरिंग या उसने डिप्लोमा किया होना चाहिए। और वहीं अगर हम नॉन टेक्निकल जॉब्स की बात करेंगे, तो नॉन टेक्निकल जॉब्स में 12th या आपके ग्रेजुएशन के बेसिस पर वैकेंसीज निकलती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कैडर में, किस ग्रुप में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि जो बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो रेलवेज में जब भी वैकेंसीज निकले तो आप उनको जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि रेलवेज में जोन वाइज भी वैकेंसीज आती है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, देखिए आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, ऐसी बॉम्बे का मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, जयपुर का है, तो जहां जहां मेट्रो जा रही है तो वो भी एक तरह से रेल कॉरपोरेशन है, तो उनमें भी काफी तरह की वैकेंसीज आती है। तो मतलब अगर आपका रेलवेज में जाने का इंटरेस्ट है तो आप इन सभी वैकेंसीज को परस्यू कर सकते हैं, आपको ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि इम्पोर्टेंस क्या इन चीजों की, भी हम जैसे बात कर रहे हैं कि रेलवेज में जॉब्स काफी ज्यादा होती हैं, तो ये जो गवर्नमेंट जॉब्स रेलवेज की होती है उसका फायदा क्या है, थोड़ा मैं इस चीज पे बात करूंगा आज की क्लास में, फिर हम अलग अलग टाइप की वैकेंसीज पे आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज होती है ना कि जब हम कभी भी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो आपकी रहती है जॉब सिक्योरिटी और एज वेल एज जॉब सेटिस्फेक्शन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। आप देखिए, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो जॉब सिक्योरिटी का एक कंसर्न रहता है। वहीं अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो जॉब सिक्योरिटी इज ऑलवेज देयर। इसके साथ साथ काफी फायदे होते हैं, मैं एक एक करके सबकी बात करूंगा कि जॉब सेटिस्फेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फिक्स टाइम ओवर है आपका, ठीक है। दूसरा, जेन्युइन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन,
देखिए आज के टाइम में अगर आपके मन में ये है कि मुझे आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन, आई वॉन्ट टू सर्व द कंट्री, तो आप किसी भी जगह जहां भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जॉब पे, तो अगर आप अपना काम पूरा कर दें तो ये एक तरह से दैट इज सर्विस टू नेशन है। इसके साथ साथ रेलवेज बहुत बड़ा सिस्टम है, तो इंडिया में रेलवेज है 17 जोन्स है, तो उसमें डिविजन्स है, फिर तो आपको मौका मिलता है हर जगह जाके काम करने का, ट्रांसफरेबल जॉब रहती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो सैलरी है वो आपकी कलीग के साथ सेम रहती है, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसे ज्यादा सैलरी मिल जाएगी, जिस कैडर में आपने ज्वाइन किया है उसी कैडर में आपकी सैलरीज मिलती है और एक सेम लेवल पे इंक्रीज होती है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा चीजें हैं जो रेलवेज में आपको हेल्प करती हैं, आपको काफी नंबर ऑफ फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। तो मतलब एक तरह से फिर इंश्योरेंस है आपका, मेडिकल प्रॉब्लम में दे हैव द हॉस्पिटल्स, तो एक काफी ज्यादा चीजें हैं जो आपको असिस्ट करती हैं, एक तरह से अट्रैक्ट करती हैं फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स जो आप रेलवेज में ट्राई कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले जो बात करूंगा बेटे, जो आजकल आप में से काफी बच्चे तैयारी भी कर रहे होंगे एनटीपीसी के, ठीक है। 2019 के अंदर रेलवेज ने एनटीपीसी, जिसका नाम होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, अब ये एनटीपीसी आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नहीं है, ये आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज है। मतलब जैसे रेलवेज में मैंने आपको पहले ही बताया कि जॉब्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक आपका टेक्निकल जॉब्स है और सेकंड नॉन टेक्निकल जॉब्स है। तो ये रेलवेज में 2019 में वैकेंसीज आई थी जिसमें 37,000 की अप्रोक्सीमेट जॉब्स आई थी, अभी एग्जाम भी है उसका, दैट इट इज नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जिसको हम कहते हैं। तो इसमें नॉन टेक्निकल जॉब्स है, तो नॉन टेक्निकल जॉब्स है तो उसमें क्या है कि आपकी कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो 12th के बेसिस पर है उसके अंदर, और कुछ जॉब्स आपकी ऐसी है जो ग्रेजुएशन के बेसिस पर है, और कुछ जॉब्स में डिप्लोमा मांगा गया है, तो उसमें बेसिकली ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, सीनियर टाइम कीपर, तो ये काफी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं जो एनटीपीसी के अंदर है, और एनटीपीसी का आगे एग्जाम भी है। और आप देखेंगे कि ये जो 35,000 वैकेंसीज थी, इन 35,000 वैकेंसीज के लिए 2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया हुआ, मतलब आप देखिए, मतलब 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी, अब इसमें एग्जाम है, अब एग्जाम जो है, हाँ अभी ये बता रहे हैं कि नवंबर में एग्जाम होगा, तो वो स्टेज वाइज है, उसमें 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज जो है आपकी, वो आपकी है एनटीपीसी पैटर्न जो है, फर्स्ट स्टेज है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक तो आपका ये, और जिसको हम प्रिलिमिनरी कहेंगे, प्रिलिम स्टेज है। सेकंड स्टेज है मेंस, ठीक है, और फिर उसके बाद टाइपिंग और स्किल टेस्ट है, तो कुछ जॉब्स में टाइपिंग भी मांगा हुआ है, तो उसमें एक स्किल टेस्ट या टाइपिंग जॉब, जैसे आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसमें क्या है, जैसे इसकी सेकेंड स्टेज है मेन्स की, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट है कुछ पर्टिकुलर जॉब्स में, जैसे आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन है। अब हमारे लिए सबसे पहला सवाल ये है कि जो प्रिलिमिनरी का एग्जाम है उसमें क्या आएगा, क्या उसका पेपर पैटर्न है, वो हम समझेंगे। कंप्यूटर बेस्ड है, ये आप मान के चलिए, मतलब आप ये कह सकते हैं कि COVID-19 का ये इफेक्ट मान लो, या पहले भी काफी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो चुके थे, अब COVID-19 के बाद में तो आप देखिए, मान के चलिएगा कि कोई भी एग्जाम आप दें, चाहे आप किसी भी लेवल का दें, वो ऑलमोस्ट कंप्यूटर बेस्ड ही आपका रहेगा। अब देखो, जैसे ये एग्जाम पैटर्न क्या है, जो RRB NTPC है स्टेज वन और स्टेज टू का, पहले हम स्टेज वन की बात करेंगे। स्टेज वन में आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, और वो 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स है 30 क्वेश्चंस है 30 मार्क्स के, और फिर इंटेलिजेंस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, ठीक है। 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा और 100 क्वेश्चंस आपने करने हैं, 100 मार्क्स के आप करेंगे। मैथमेटिक्स जो है वो मैथमेटिक्स है जो जनरल आप 10th स्टैंडर्ड तक आप पढ़ते हैं, ठीक है, और 10th स्टैंडर्ड तक के जो टॉपिक्स हैं जिसमें नंबर सिस्टम है,
आपका मतलब अर्थमेटिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं, मैं उन पे बात करूंगा। ऐसे ही जनरल इंटेलिजेंस के टॉपिक्स हैं, ऐसी आपके जनरल अवेयरनेस, इसमें वेटेज ज्यादा है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके, जिसको

बार इंग्लिश मीडियम में भी होगा, वही क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में रहेगा। तो आपके पास में दो कैटेगरीज हैं जिसमें हमने वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। अब अगर आप उसको यूज करते हैं, चैप्टर वाइज यूज करते हैं, क्योंकि उसमें तो हमने एसएससी बैंकिंग के हिसाब से सारे चैप्टर कवर किए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स, कुछ बेसिक चैप्टर्स आप एक एक करके वहां से अगर स्टडी करेंगे तो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज होगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पर ऐसा टाइम तो है नहीं कि आप कोचिंग ज्वाइन करिए कहीं जाकर, ठीक है। तो अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, लैपटॉप या फोन से आप यूज करते हैं, तो आपको सारे वीडियोज वहां से मिल जाएंगे, और मार्केट से आप कोई भी एनटीपीसी की बुक परचेज कर सकते हैं मार्केट से, और चैप्टर वाइज आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम अपनी ओर से जैसे आपको हेल्प कर सकते हैं इसके अंदर तैयारी करने के अंदर। अब देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, क्या मैथमेटिक्स में आपसे पूछा जाएगा, तो मैथमेटिक्स के अंदर हमारे जनरल टॉपिक्स हैं जिसमें नंबर सिस्टम है, डेसिमल, फ्रैक्शन, बहुत बेसिक टॉपिक जो आप सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स है। तो आप देखेंगे ये सभी चैप्टर्स हमने कवर किए हुए हैं हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे वैसे आप इसे कर सकते हैं, और जल्दी हम उसमें बाइलिंगुअल वाला भी ऐड करने वाले हैं। मैं उसमें हम मतलब एक टाइप से बाइलिंगुअल वाला कोर्स भी ऐड करने वाले हैं। बाइलिंगुअल मतलब कि आपको समझा हमने हिंदी में रखा है, बट जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो हम इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं, तो जल्दी हम उसे भी ऐड करने वाले हैं। काम चल रहा है तो जल्दी उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए मैथ्स का इसमें सिलेबस है। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है। देखिए रेलवे में रीजनिंग की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, स्पीड आपको मेंटेन करनी रहती है। एडवांस मैथ आप कहिए कि देखो एडवांस मैथ में ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, अल्जेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स है, ये कुछ पोर्शंस हैं। ज्यादा रेलवे का जो ज्यादा फोकस जनरली जो रहता है वो अर्थमेटिक पे रहता है। बाकी अभी कुछ ऐसा सेग्रीगेट नहीं किया इन्होंने, क्योंकि कई सालों बाद पेपर हो रहा है। मतलब जैसे अगर हम रेलवे की बात करें तो इतनी ज्यादा वैकेंसीज रेलवे कई सालों के बाद में निकाल रहा है, पहली चीज। और दूसरा क्या है कि पहले जो पेपर हुआ करते थे वो जोन वाइज होते थे, जोन वाइज में भी उसमें आपका पेपर पेंसिल बेस्ड रहता था, तो अब पहली बार ये ऑनलाइन होगा। और देखिए कई सारे वो बनेंगे, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कई स्लॉट्स में जाके पेपर होगा। तो ये है कि आप तैयारी करिए, अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए, एलिमेंट्री भी पढ़ लेंगे वो भी काम चल जाएगा। मतलब इसमें बहुत इनडेप्थ, जैसे हम एसएससी मेंस के लिए तैयारी करते हैं काफी ज्यादा उसमें टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, तो इसमें ये है कि अगर आप एलिमेंट्री अलजेब्रा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की सॉल्विंग है, तो ये भी अगर आप कर लेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा और आप उससे अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी रीजनिंग का सेक्शन जो है आप देखेंगे बहुत ही जनरल से टॉपिक्स है रीजनिंग के अंदर, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग, कुछ ग्राफ, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें हैं। और आप देखेंगे अगर आप थोड़ा सा हमारा ई स्टडी प्रोग्राम यूज करें, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने उसमें सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। मतलब इसमें आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जो उसमें हमने वहां पर कवर नहीं किया हुआ है। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी मिलता है तो आप अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर के थ्रू हमारे पास अगर कोई मैसेज आता है कि सर ये टॉपिक उस पर नहीं अवेलेबल है, तो हम उस पर जल्दी ही वीडियो बना के उसे अपडेट कर देते हैं। अभी तक वैसे ऐसा कोई मैसेज आया नहीं है, मतलब ऐसी कोई हमारे पास कोई ऐसा फीडबैक नहीं आया है कि सर ये टॉपिक ऐड करा दीजिए। बाकी हम तो चाहेंगे आपसे कि कमलेश जी के पास में ऐसा पहुंचे और फिर हम उसे ऐड करें, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका 40 मार्क्स का पेपर जो है वो जनरल अवेयरनेस का आएगा। इसमें करंट अफेयर्स पिछले 6 से 8 महीने का, ठीक है, उसके लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन कवर कर सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स, ठीक है, मतलब हम तो ये कहेंगे अगर आप 10th लेवल तक का एनसीईआरटी पढ़ पाए तो उससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी आपको समझाया था जब आपको मैंने स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया था, अभी कैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, तो वहां पर आपको मैंने इस बात के बारे में बताया था कि 10th क्लास तक का जो एनसीईआरटीज है, चाहे आपका मैथमेटिक्स का है, चाहे आपका एसएस का है या आपका साइंस का है, तो ये तीन सब्जेक्ट का अगर आप एनसीईआरटी भी कर लेंगे तो जीएस का पेपर आपका बहुत इजीली कवर हो जाता है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, यूएन, ये सारी चीजें 10th क्लास तक

0: आपको मिल जाती है। या अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप कोई भी जीके का बुक खरीद सकते हैं या रीड की लाइब्रेरीज में आप देखते हैं, अगर आप जाते हो, आजकल तो चलो कई सेंटर में शायद नहीं ओपन होंगी, पर पहले जैसे आप जाते थे तो सेंटर्स पे लाइब्रेरी के अंदर जीके की काफी बुक्स अवेलेबल है, तो आप उन बुक्स को भी यूज कर सकते हैं। या आप उपकार पब्लिकेशन की या अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी जीके की बुक आप खरीदिए, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत करने वाली बात है, थोड़ा टाइम लगाने वाली बात है, अगर आप थोड़ा टाइम लगा लेंगे तो आप ये प्रिपरेशन इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनटीपीसी का प्री का पेपर ऐसा होगा। तो प्री के पेपर में आपको जैसे मैंने बताया कि तीन ही सेक्शन रहेंगे, मैथ्स 30 मार्क्स का, फिर आपका रीजनिंग का 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चंस, और ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस। तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा एनटीपीसी का प्री का। फिर जिन बच्चों का प्रिलिमिनरी क्लियर हो जाएगा फिर वो मेंस का पेपर देंगे। अब मेंस का जो पेपर है, ऑल्दो सब्जेक्ट मेंस में भी सेम है, वही आपके तीन सब्जेक्ट रहेंगे, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और थर्ड इज जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब मेंस में क्या होगा, मेंस में लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्वेश्चंस का, या क्वांटिटी ज्यादा हो गई। जैसे प्री में आपको 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में करने थे और मेंस में वही आपको 120 क्वेश्चंस जो है 90 मिनट्स में करने हैं, तो बेटर है कि अगर आपको जॉब चाहिए चाहिए तो आप प्री और मेंस की तैयारी एक ही लेवल पे होती है, सेम तैयारी आपकी, सेम सब्जेक्ट्स आपके प्री और मेंस के अंदर, ठीक है। तो आप उन्हीं को डेप्थली पढ़िए ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपका सीबीटी 2 है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया जैसे स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट का मतलब क्या है कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब आपकी एनटीपीसी के अंदर है, ठीक है। और मतलब आज के टाइम में आप देखिए कि जिन बच्चों ने आप में से एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 4 से 5 महीनों में जो बच्चे पहले तैयारी कर भी रहे थे तो एक तरह से उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। जैसे पहले तो क्या था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे थे, क्लासरूम चलती रहती थी, तो अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ दैट काफी टाइम से बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे एक ही लेवल पे हैं, ठीक है। जब आप एक ही लेवल पे हैं तो आप अगर आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें, और होपफुली नवंबर में एग्जाम है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, तो अभी वो भी एक तरह से एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि रीजन क्या है कि इतने ज्यादा बच्चों का एग्जाम कराना सिंपल टास्क नहीं होता। आप देखिए 1.5 से 2 करोड़ बच्चों का एनटीपीसी का पेपर होगा, तो इट्स नॉट सिंपल थिंग। तो उसमें आपको हो सकता है आगे भी एक्सटेंड हो जाए, बट आप अपनी तैयारी अभी से करना स्टार्ट करिए, और उसका मेथड बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपके बेसिक टॉपिक्स हैं, ये वही टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। आप देखो एक बहुत बड़ी चीज क्या है कि इंग्लिश इसमें नहीं है। आप सबको पता ही है कि इंग्लिश में तो हम वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इंग्लिश सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो एनटीपीसी में इंग्लिश कहीं भी नहीं है। तो उसमें इट्स बेटर कि आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इन तीनों सेक्शंस को टारगेट करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। और जिन बच्चों ने टाइपिंग टेस्ट की कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो बेटे अपनी टाइप टेस्ट की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें, क्योंकि काफी टाइम, कई बार ऐसा होता है कि टाइप टेस्ट का, जब आपका सारी स्टेजेस क्वालिफाई हो जाती हैं तो टाइप टेस्ट में माकिया अटक जाते हैं, तो वो भी एक रेगुलर प्रैक्टिस का काम होता है, और टाइपिंग तो आपको हेल्प ही करती है, तो वो आप उसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद में अगला पॉइंट जो हमारे पास है, ये रेलवेज में नॉन टेक्निकल जॉब्स भी आती हैं। नॉन टेक्निकल जॉब मतलब जैसे SCRA है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का रहता है, या इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर जिसको हम IRSME कहते हैं, ठीक है। तो जैसे रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, मतलब उसमें आप देखेंगे कि इंजन बनने से लेकर ट्रेन की फंक्शनिंग तक, या आप देखें कई बार इंजन में प्रॉब्लम आती है, ट्रेन के चलने में प्रॉब्लम आती है, कोच फैक्ट्रीज होती हैं, तो काफी बड़ा एरिया है। तो उसमें SCRA एक बहुत बड़ा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। SCRA जो होता है उसमें 12th क्लास में साइंस मांगी जाती है। तो मैं आपको एक चीज यहां पर एड कर दूं, जो बच्चे रेलवेज के टेक्निकल जॉब्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, टेक्निकल जॉब्स में जाने के लिए उनके लिए ट्वेल्थ में नॉन मेडिकल होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और या उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है जिसमें मैकेनिकल का डिप्लोमा की काफी ज्यादा वैकेंसी रहती है, इलेक्ट्रिकल की काफी वैकेंसी रहती है। आप देखेंगे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स अलग चीज है और इलेक्ट्रिकल अलग चीज है, तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है तो उनकी रेलवेज में काफी वैकेंसीज निकलती है, ठीक है। बट उसके लिए यही है कि आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि आजकल वैकेंसीज काफी कम होती हैं और एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, तो वो तभी आप उस कंपटीशन को अगर आप क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आपका जॉब लग पाता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में, रेलवेज में काफी ज्यादा स्कोप है। रीजन क्या है कि जॉब्स भी काफी निकलती हैं और उसके बाद सैलरीज भी आपको काफी मिलती है इसके अंदर, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है या इसके अलावा डिप्लोमाज किए हुए हैं। तो आप थोड़ा सा रेलवेज की साइट पे अगर आप ध्यान रखें, जैसे जैसे वैकेंसीज निकलती हैं तो आप उसे अप्लाई करिए, चाहे वो किसी भी जोन में निकले, क्योंकि रेलवे में जोन के हिसाब से वैकेंसीज आती हैं, 17 जोन्स हैं, ठीक है। तो उसमें कई बार जैसे हम रहते हैं नॉर्थ जोन के अंदर, तो जैसे साउथ के जो जोन्स हैं उनका हमें पता ही नहीं चलता वैकेंसीज कब निकली। तो थोड़ा सा अगर आप बहुत सीरियस हैं रेलवे की तरफ तो आपको हर तरह के जोन में किस टाइप की वैकेंसीज है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना रहता है। ऐसे ही रेलवे में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकलती हैं, जिसको हम आरआरबी जेई कहते हैं। जो आरआरबी है वो बेसिकली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। अगर हम आरआरबी की बात करें तो आरआरबी जो है इज प्राइमली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। तो रेलवेज में जो वैकेंसीज निकलती है वो आरआरबी कंडक्ट कराता है। तो ये मैंने कुछ वैकेंसीज डाली है, ये 2019 में निकली थी, 13,000 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज आई थी, जिसमें जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ठीक है, तो मतलब जिसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपसे मांगी हुई थी, बीटेक बीई, ठीक है, या इंजीनियरिंग में डिग्री मांगी हुई थी जो कंसर्न फील्ड से है, तो ये सारा आपसे, मतलब ये सारी चीजें आपको चाहिए, मतलब वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक है। तो कई बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बीटेक किया होता है और उनका मन होता है कि वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, तो उस केस में वो रेलवे के बारे में सोच सकते हैं। बट थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि हम इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते, तो इसलिए कई बार काफी जॉब्स हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो आप रेलवेज को टारगेट कर सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आरआरबी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपकी जॉब्स के लिए। ऐसे ही रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी भी आती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक हम जिन वैकेंसीज की बात कर रहे हैं वो वैकेंसी जो है हमारी वो ग्रुप ए, वो हमारी जो ग्रुप बी और सी की वैकेंसीज है। ऐसे ही रेलवे में आपकी ग्रुप डी की वैकेंसीज भी आती है। जो ग्रुप डी से हमारा मतलब होता है कि असिस्टेंट वर्कशॉप, ठीक है, या एक तरह से आपके असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम लोको शेड होते हैं, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। तो ऐसी आपके जैसे ट्रैक मशीन जो होती है, जैसे ट्रैक होती है, ट्रैक के ऊपर काम लोग करते हैं, तो ग्रुप डी की वैकेंसीज भी आती हैं रेलवेज में। हाँ, इसका एग्जाम भी अभी नहीं हुआ, आगे होगा। ये 2019 में फॉर्म निकला था और 1,00,000 के आसपास वैकेंसीज आई थी, 1,03,769 वैकेंसीज आई थी, ठीक है। तो इसका एग्जाम भी आगे होगा, अभी कुछ इसके बारे में डिटेल्स नहीं आई है। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 10th क्लास होती है, या अगर आपने ITI किया हुआ है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहां अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सारा इसी बात के ऊपर है कि प्रिपरेशन करते रहिए अपनी, ठीक है। बाकी इट डिपेंड्स भी आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, किस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, इसका भी एग्जाम होगा। मतलब जो आरआरबी आपका ग्रुप डी है, ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा, ठीक है। और जो ग्रुप डी का एग्जाम, अभी कुछ उसके बारे में डेट्स नहीं आई है। बाकी एक बात और है कि रेलवे की जो वैकेंसीज आती हैं वो आप मतलब एक तरह से रेगुलर वैकेंसीज नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि SSC है, चाहे आपका बैंकिंग है, तो उसमें रेगुलर वैकेंसी है, हर साल के बाद फॉर्म निकलेगा। रेलवेज में आती हैं तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है, लाखों में वैकेंसीज आती हैं। तो उसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना उसमें स्थान बना सकते हैं उन वैकेंसीज के अंदर, ठीक है। और मतलब पेपर में जो आएगा वो सेम है, मैथमेटिक्स आएगा आपका 10th लेवल तक का, रीजनिंग आपकी आएगी, जनरल इंटेलिजेंस आएगी, और उसके साथ साथ आपका जीके आएगा। तो ये तीन सेक्शंस में आप अपना रेगुलर कमांड बनाते चलिए, ताकि आप फ्यूचर में इनकी प्रिपरेशन कर सके और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सके। देखिए रेलवे में ग्रुप ए की पोस्ट में इंटरव्यू होता है, देखो ग्रुप सी और जो डी पे तो कोई इंटरव्यू नहीं होता। आप देखिए जो एनटीपीसी में जितने भी वैकेंसीज निकली है उसमें कहीं भी इंटरव्यू की बात नहीं की गई है, स्किल टेस्ट की बात की है। मतलब मैंने आपको जैसे अभी बताया कि एनटीपीसी में आपके टाइपिंग टेस्ट का इश्यू है, जैसे कुछ वैकेंसीज के ऊपर टाइपिंग टेस्ट है। रेलवे में जो ग्रुप ए की वैकेंसी होती है जो आपकी आईएएस के थ्रू आती है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, वो मैं बताऊंगा एंड में आके, तो उसमें इंटरव्यू आपका होता है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। अदरवाइज ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में रेलवेज के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है। पहले इंटरव्यू हुआ करते थे, एक टाइम ऐसा भी था कि जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हुआ करती थी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, बट आज के टाइम में डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होता है। आज के टाइम में आपका टेस्ट के बाद फिर आपका स्किल टेस्ट रहता है और जो ग्रुप ए की वैकेंसीज है उनमें आपका इंटरव्यू रहता है। इसके बाद आपका मेट्रो रेलवे रिक्रूटमेंट है, चाहे वो जयपुर में है, मैंने आप बताया, चाहे आपका दिल्ली में है, दिल्ली मेट्रो है। कुलदीप तंवर दसवीं कैसे पास करें इसका तो हमारे पास कोई सलूशन नहीं है, ये तो पढ़ना पड़ेगा तभी पास हो पाएगा। हमने तो अपनी ई स्टडी प्रोग्राम के थ्रू वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं, उसमें मैथमेटिक्स के तो है ही सारे, तो पढ़ के ही पास होती है। बाकी आजकल तो 10th पास करना बहुत ही आसान है, आप बिना किसी समस्या के पास कर सकते हैं, सरकारी पास कर देती है मतलब ज्यादातर तो। हाँ, हम बात कर रहे थे बेटे जो मेट्रो रेलवे रिक्रूटमेंट है, जितने भी जहां जहां पर मेट्रो बनती जा रही है सभी जगह पे मेट्रो की रिक्रूटमेंट होती है और उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल जॉब्स आती हैं। तो अगर आपने रेलवे की प्रिपरेशन कर रखी है तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ मेट्रो की जॉब्स जो पिछले साल दो साल में निकली हैं वो मैं शेयर कर रहा हूं, ये बताने के लिए कि ऐसी ऐसी जॉब्स आती हैं। जयपुर मेट्रो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग से है, मतलब हर जहां मेट्रो बन रही है उनका अलग से रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ठीक है, और उस रिक्रूटमेंट बोर्ड की वो अपनी वैकेंसीज निकालते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट है, ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स कोटे की भी काफी वैकेंसीज होती हैं। आप देखिए अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे की काफी वैकेंसीज होती हैं, चाहे ग्रुप ए में है, चाहे ग्रुप बी में है, चाहे ग्रुप सी में है, तो हर ग्रुप में मतलब स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसीज होती हैं, तो वो भी टारगेट की जा सकती हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया कि जोन वाइज वैकेंसीज आती हैं, तो हमें हर जोन पे ध्यान रखना रहता है। डीएमआरसी के अंदर वैकेंसीज आई थी लास्ट ईयर, जिसमें मैनेजर, इंजीनियर, फायर इंस्पेक्टर, मतलब आपने अगर एमबीए किया हुआ है, डिप्लोमा है, सीए है, एलएलबी है, सीए है, मतलब हर तरह की जॉब्स निकलती हैं, ठीक है, तो आपको अपना कंटिन्यूएशन में रखिए तैयारी, और अगर आप प्रिपरेशन कंटिन्यूएशन में रखेंगे तो नॉन टेक्निकल जॉब्स जो आते हैं, अगर आपकी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है तो कम से कम नॉन टेक्निकल जॉब्स को तो आप टारगेट कर सकते हैं। तैयारी जो गवर्नमेंट जॉब्स की है वो सेम है। ऐसे ही ईस्ट कोस्ट रेलवे रिक्रूटमेंट है, मुंबई मेट्रो रेलवे रिक्रूटमेंट है, इसके साथ साथ आप देखेंगे आईआरसीटीसी है रेलवे का जो कैटरिंग सर्विसेज है, तो उसमें भी अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है किसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फूड साइंस से रिलेटेड, तो उसमें भी उनकी वैकेंसीज आती हैं, क्वालिटी कंट्रोल में वैकेंसीज आती हैं, राइट। तो रेलवे इसलिए बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया में क्योंकि रेलवे में इतनी सारी विंग्स है रेलवे की और उनमें अलग अलग वैकेंसीज आती है। तो ये तैयारी आपके लिए है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं लास्ट में आऊंगा कि आपको मैंने ग्रुप ए के बारे में जैसे हम बात करते हैं, देखिए ये अभी तक मैंने आपको जितना बताया ये आपको मैंने ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में बताया, ठीक है। फिर ग्रुप ए भी होता है रेलवे में। ग्रुप ए मतलब जो हम आईएएस के थ्रू आते हैं, आपका जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने एक सेशन लिया था कि यूपीएससी की कैसे प्रिपरेशन किया जाए, तो अगर आप ग्रुप ए में जाना चाहते हैं तो आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना रहता है, ठीक है, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। तो उसमें आपका पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जिसे हम प्री का एग्जाम कहते हैं, जिसमें आपके दो पेपर होते हैं। अभी जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो कल ही एग्जाम था, मतलब ऑन संडे इट वॉज द प्री पेपर, प्री का पेपर था, कल ही पेपर था प्रिलिमिनरी का। तो उसमें आपके दो पेपर रहते हैं, पहला आपका जनरल स्टडीज का पेपर रहता है 2 आवर्स का, और सेकंड आपका सी सेट का पेपर रहता है जिसे हम एप्टीट्यूड पेपर कहते हैं। अब जनरल स्टडीज में आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स का एग्जाम रहता है 2 आवर्स का। ऐसे ही आपका सी सेट का पेपर रहता है जो एक तरह से एप्टीट्यूड पेपर है। अगर आपका प्रिलिमिनरी क्वालिफाइड होता है तो फिर आप मेंस का एग्जाम देते हैं। मेंस का पेपर सब्जेक्टिव होता है जिसमें आपके 10 पेपर्स होते हैं टोटल। कंपल्सरी पेपर है एक इंग्लिश का और एक इंडियन लैंग्वेज का। इसके साथ साथ 2 एसेज के पेपर होते हैं, 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं और 2 पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। ठीक है, मतलब ये भी एक तरह से पैटर्न है अगर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो रेलवेज में हर तरह की वैकेंसीज है। ग्रुप ए कैटेगरी में वैकेंसी है, ग्रुप बी कैटेगरी में वैकेंसी है, ग्रुप सी में है और ग्रुप डी में है। तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंगली आप उसमें वर्क कर सकते हैं। जैसा आपका लेवल है उसी हिसाब से आप उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि आप में से जितने बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कोई किया हुआ है या उन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो वो जरूर रेलवे को टारगेट करिए। आप उसमें थोड़ा देखिए भी आपने किस स्ट्रीम में किया हुआ है और उस स्ट्रीम में रेलवे में किस किस तरह की वैकेंसीज आती हैं। तो अगर आप उनको भी टारगेट कर लेंगे तो होपफुली आपकी कहीं ना कहीं सेटलमेंट रेलवे में अच्छी हो सकती है। फिर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको पीछे बताया भी था। हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर रेलवे जो है, जैसे प्रिलिमिनरी का जो पेपर है, वो आगे आने वाले समय के अंदर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू कंडक्ट कराए। तो उसमें क्या है कि अभी जो आप, जैसे अभी हम एनटीपीसी में प्री का पेपर देंगे तो वो प्री का पेपर नहीं होगा आपका, तो वो आपका एनआरए का जो स्कोर है उसी के बेस पे हो जाएगा। तो अभी तो एनटीपीसी का एग्जाम होगा, बट हम बात कर रहे हैं आगे की। हाँ नहीं, जो रेलवे का एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट नहीं कराता। रेलवे का अलग से बोर्ड है, आरआरबी कहते हैं जिसे हम लोग, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवेज के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपके टेक्निकल हैं चाहे वो आपके नॉन टेक्निकल हैं, तो वो सभी एग्जाम्स जो है वो आरआरबी कंडक्ट कराता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराता है। ठीक है, और जो आपके लेवल 1 एग्जामिनेशन है जिसको हम ग्रुप ए कहते हैं, तो ग्रुप ए के जो एग्जाम्स है वो फिर आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अपना पेपर कंडक्ट कराएगी तो उसमें आपका रेलवे का जो प्रिलिमिनरी अभी जो होगा वो आगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंड में बात सारी इतनी सी है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज का सेशन हमारा स्पेसिफिकली रेलवे का था तो हमने रेलवे से रिलेटेड जॉब्स के बारे में बात किया। हाँ, रेलवे में इतना डिफरेंस है कि इंग्लिश का पेपर अभी तक नहीं आता, अभी तक वो मैथ्स, रीजनिंग और जीके, तो 3 सेक्शंस आपके रहते हैं। इंग्लिश उसमें नहीं आता है रेलवेज के अंदर, बट जब एनआरए के थ्रू हो जाएगा तो आप मान के चलिएगा जो एनआरए का एक जनरल पैटर्न है वही पैटर्न फॉलो होगा ऑल ओवर इंडिया में, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसके अलावा रेलवे में काफी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज आती हैं, वो डिपेंड करते हैं। देखिए उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि अगर आपका कोई लिंकेज है रेलवे के अंदर, कोई आपके पेरेंट्स या आपके कोई फैमिली में कोई लोग रेलवेज में काम करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रेलवे काफी वैकेंसीज निकालता है। तो उनको फिर वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अभी आज के समय में तो रेलवे एक तरह से मैक्सिमम जॉब्स जो परमानेंट जॉब्स ही निकालता है। बाकी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन पे काफी बड़े सेक्शन रेलवे के ऐसे हैं जिनको धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन का एक सबसे बड़ा लॉस यही है कि वो परमानेंट वैकेंसीज नहीं आएंगी, तो दैट वुड बी अ लॉस इन रेलवे। ठीक है, तो बेटे दैट इज फ्रॉम माय साइड। ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया कर दिया है रेलवे में टेक्निकल नॉन टेक्निकल की अलग अलग तरह की जॉब्स का। अब आप जो भी इसमें क्वेरी पूछना चाहें कुछ भी रिलेटेड किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी किसी भी क्वेरी का जो रेलवे से रिलेटेड है उसका आंसर करेंगे। बाकी हम इससे पहले एक टाइप से जो गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर चुके हैं, पूरी एक पूरे सेशन के अंदर हमने एसएससी बैंकिंग का कंप्लीट बात किया था, और उससे पहले हम एक बार आईएएस की बात भी कर चुके हैं। तो अब ये रेलवे एक स्पेशल सेक्टर था जिसको हमने टच नहीं किया था। रेलवे में आर्मी ट्रेन होती है, उसमें भी भारतीय प्रक्रिया रेलवे करती है। हाँ मतलब हाँ, क्या है कि वो रेलवे की अलग अलग डिवीजन्स हैं, जैसे आरपीएफ भी होता है, आप सबको पता है रेलवे पुलिस फोर्स है। अब आरपीएफ की वैकेंसीज आती हैं, बट इनमें दिक्कत क्या है कि ये कई कई सालों में वैकेंसीज आती है, ये नॉर्मल वैकेंसीज नहीं है। देखो जैसे आप देखें भी एसआई की वैकेंसी आती है दिल्ली में, दिल्ली पुलिस की तो साल दो साल में वैकेंसीज आती है, रेलवे पुलिस फोर्स की कई कई सालों में वैकेंसीज आती है। ठीक है, जब आती है तो उसमें फिर पूरा प्रोसेस होता है उसमें। जी सर।
1: हेलो।
0: हाँ जी, जी सर।
1: दिनेश जी, मेरा एक क्वेश्चन है
0: सर। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा या मतलब माइक को पास लेके बोलेंगे। हाँ जी।
1: हाँ, अब आ रही आवाज?
0: हाँ अब आ रही है सर। हाँ जी
1: दिनेश जी, मेरा रेलवे से बहुत ही खास नाता है, इसलिए मेरा एक क्वेश्चन है।
0: जी सर।
1: एससीआरए का जो है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का है, शायद उसमें जो मैंने थोड़ी जो मैंने पीपीटी देखा है, शायद उसमें जो उसमें शायद इन लोग को भी थोड़ा सा बताना है कि एससीआरए की एग्जाम जो होती है बहुत टफ होती है। एक जब आप देखेंगे आईआईटी लेवल का, क्योंकि एससीआरए रेलवे कंडक्ट करवाती है वो, और ये फोर इयर्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे प्लस टू पास करके जाते हैं, फर्स्ट क्लास इनका होता है, वो अप्लाई करते हैं। प्लस इनका इसमें थोड़ा सा ये है कि क्राइटेरिया इनका बहुत ही डिफरेंट होता है, मतलब उनका तो जिनका रिटेन तो होता ही है जिस तरह आईटी का होता है, बट सीट सर बहुत कम होती है इसमें अवेलेबल।
0: सर एक्चुअली क्या है ना, ये स्पेशलाइज्ड हो गया ना थोड़ा सा, वो तो उसमें अब इंस्टीट्यूट के नाम है, जैसे आपका बिट्स मिश्रा है वो उसमें सीट्स है, तो थोड़ा सा वो तो प्रॉब्लम रहता है सर उसमें। बट ये है कि एक मतलब बच्चे तैयारी तो करते ही है। बाकी स्कोप तो है सर, देखिए अब बहुत लोग जाते हैं। अब ये है कि अगर एससीआरए में मान लो नहीं भी गए तो फिर भी काफी रेलवे में आपकी टेक्निकल जॉब तो रेलवे में काफी आती है। आपने कहीं से डिप्लोमा डिग्री कुछ भी किया हुआ है,
1: ये लोग करके निकल सकते हैं।
0: हाँ तो मतलब आपने कहीं से भी कुछ किया हुआ है तो उसके बाद रेलवे मतलब मेरे हिसाब से इंडिया में अगर हम किसी भी एक टाइप से जो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा जॉब रेलवे में ही आती है, इनसे ज्यादा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतनी जॉब नहीं निकाल पाता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर मैंने सर ये भी देखा सर, नॉर्थ जोन में तो सर कम ही, लेकिन साउथ जोन वाले बहुत रेलवे का निकालते हैं।
0: बिल्कुल सर, साउथ देखोगे, हैदराबाद साउथ जोन, और आपका सर जो एक तरह से जैसे बिहार वाला एरिया जो है, मतलब वो जो जोन उसमें जोन आते हैं वहां तो मतलब बहुत वैकेंसीज आती है और बहुत बच्चा तैयारी करता है, बहुत ही रेगुलर तैयारी करता है। हमारे यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे कम मिलेंगे, बट भाई अगर आप बिहार साइड में चले जाएं तो बहुत बच्चा आपको ऐसा मिलेगा कि जो स्पेशली रेलवे की ही तैयारी कर रहा
1: वो तो है।
0: जोन वाइज भी काफी वैकेंट, मतलब ये है कि अगर रेलवे के पैटर्न पे प्रिपरेशन किया जाए, थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गए किया जाए तो मतलब वैकेंसीज बहुत है जी। और किसी का कोई क्वेरी, कोई भी बच्चा आप में से एनीथिंग यू वांट टू आस्क?
1: जो लोग बैंक का प्रिपरेशन करते हैं उसे तो मिलता जुलता है रेलवे जो भी?
0: हाँ मिलता जुलता है बिल्कुल, जो आपकी रीजनिंग आती है बैंकिंग में वही ऑलमोस्ट वही टाइप की है, मैथ्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, और जो आपका बस थोड़ा सा एक आपको जो जीके के पोर्शन में थोड़ी मेहनत करनी रहती है रेलवे में, क्योंकि उसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस पे काफी फोकस है, मतलब साइंस का फोकस रहता है ज्यादा। हाँ बिल्कुल, रेलवे का मेडिकल डिपार्टमेंट भी होता है, उसमें भी जैसे आपको मैंने पिछले क्लास में हमने उसके बारे में बात किया था, मेडिकल के बारे में बात किया था, तो उसमें डायरेक्ट वैकेंसीज आती हैं, डॉक्टर्स की वैकेंसीज आती हैं, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आती हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं रेलवेज के अंदर। रेलवे के अपने हॉस्पिटल्स भी हैं, डिस्पेंसरीज भी हैं, तो मतलब हर तरह की वैकेंसीज रेलवे निकालता है, तो इस तरह से टारगेट किया जा सकता है रेलवेज को। और कुछ पूछना चाहे कोई भी? स्टडी प्लान सर देखो वैसे तो बहुत बेसिक्स आया है कि मतलब आप एनटीपीसी के लिए ना देखिए कोर्स आपका डिफाइंड है, चैप्टर्स आपके फिक्स्ड हैं, आप कोई भी एक पहले स्टार्टिंग स्टेज पर अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी एक लेकर ना स्पेसिफिकली एनटीपीसी की बुक ले लें, चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन करते चलिए। चैप्टर वाइज जैसे आपने आज कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया तो आपने कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन कर लिए, ऐसी एक एक चैप्टर करके करते चलिए। बस ये है कि कोर्स कंप्लीट करने में रहिए, जैसे नवंबर में एग्जाम है अगर, तो ये हमारा टारगेट होगी नवंबर मंथ तक हम एक बार सारा कोर्स कर पाए, क्योंकि जनरली एग्जामिनेशन में यही होता है कि कुछ चैप्टर्स बच्चे छोड़ जाते हैं और वही उसी में से क्वेश्चन मिल जाते हैं उसे, तो वो कर नहीं पाता है। तो अकबर जी, कोई स्पेसिफिकली पोर्टल्स की बात करें, उसका सर एक क्या है कि काफी आजकल तो पोर्टल्स हैं आपके जहां पर अपडेट होते रहते हैं, ठीक है, बाकी उसमें एक चीज आप ऐसा कर सकते हैं कि गूगल में अलर्ट में डाल सकते हैं कि जॉब्स डाल दिया, जॉब्स इन रेलवेज, तो उसमें क्या है कि इंडिया में कहीं भी रेलवे की कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो उसका आपको मेल आ जाता है वीकली, मतलब हर रोज आपको मेल आता रहता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपके गूगल में ऑप्शन होता है अलर्ट का ऑप्शन होता है, तो गूगल अलर्ट पे आप अपना जॉब्स इन रेलवेज अलर्ट में डाल सकते हैं, या काफी आजकल साइट्स ऐसी हैं जो फ्री जॉब अलर्ट करती हैं, तो उसमें तो आप इजीली मतलब जॉब्स के बारे में पता किया जा सकता है।

0: सो अभी तक किसी को किसी सेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लास्ट टू सेशंस जो हमने करे थे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
1: मैम अंजुम का जो कि स्टूडेंट है ब्यूटी की, उनका सवाल है, वो एक बार एक सवाल करना चाहती है। मैम आप प्लीज उनका आंसर दीजिए।
2: मैम अंजुम बोल रही हूँ। यस
0: आप टीवी के बारे में पूछना चाह रही हैं?
2: मैम, यस मैम।
0: क्या पूछना चाह रही है टीवी के बारे में?
2: मैम वो जो आपने कल बताया था ना, तो वो थोड़ा समझने क्लियर समझ नहीं आया। उसके लक्षण क्या है, उनके जैसे क्या कर सकते हैं उनसे बचने के लिए, थोड़ा क्लियर समझ नहीं आया।
0: टीबी जो है आपके फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, और टीबी के जो लक्षण होते हैं वो खांसी होती है लगातार 3 से 4 हफ्ते तक, उसके साथ अगर ब्लड आता है और चेस्ट में जकड़न होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, बुखार चढ़ना, थकावट होना, ये सब उसके लक्षण हैं। इससे कैसे बचा जाए कि आपके एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए टीबी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए, और घर में रहना है, अगर किसी को भी टीबी होता है उसको घर में रहना है, मास्क पहनकर रहना है, बार बार अपने हाथ धोने हैं, खांसते छींकते वक्त अपने मुंह को कवर करना है। टीबी जो है उसमें आपको जो दवाई दी जाती है टीबी अस्पताल से उसको पूरी लेनी है, उसका कोई डोज मिस नहीं करना है। अगर हम मिस करते हैं तो टीबी हमको ठीक नहीं होता है और फिर से हो सकता है, या बहुत टाइम लग सकता है उसको ठीक होने में, पर टीबी की दवाई कोई मिस नहीं करनी होती है। सिर्फ इसका जो मतलब आपके अब कैसे पता चलेगा, अगर खांसी ज्यादा लंबे तक महीना 2 महीना चल रही है, जकड़न भी है आपके फेफड़ों में और आपका सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो और चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, जिससे आपको पता चलता है कि टीबी आपको है या नहीं। और ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसकी मेडिकेशन है, जो आपको दवाइयां मिलेंगी उसको दवाइयों को लेना है, टाइम से टाइम लेना है, अपना अलग रहें, अपना अलग कमरे में जो भी टीबी का मरीज है उसको अलग कमरे में रखें, और उनके जो भी उनका देखभाल कर रहा है उनको भी सावधानी बरतनी है, कहीं इन्फेक्शन उन्हें ना हो जाए, इसलिए उन्हें भी सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जिसका प्रश्न था उसको समझ आ गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडोलेसेंस और प्यूबर्टी पे। एडोलेसेंस और प्यूबर्टी जो किशोर अवस्था जो स्थिति होती है, जो हर बच्चे के दौरान, हर बच्चे की जिंदगी में आती है, हर इंसान की जिंदगी में मैं बोलूंगी आती है, हम भी उस स्टेज से गए हैं जिसमें एडोलेसेंस और प्यूबर्टी की जो स्टेज होती है, जिसमें बॉडी में चेंजेस आते हैं, मानसिक स्थिति में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो पीरियड होता है लाइफ का, ये बच्चा बच्चा नहीं रहता है और हम उसको बड़ा भी नहीं कर सकते, ये बच्चे और बड़ा होने के बीच का पीरियड होता है, जो हम कहते हैं 10 से 18 या 19 साल का पीरियड होता है। इसमें बहुत ज्यादा मानसिक और मानसिक चेंजेस होते हैं, और आपके हाव भाव में आपका बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत ज्यादा हमें दिखने को मिलते हैं, हर हर किसी में दिखने को मिलते हैं। तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं, अर्ली, मिडिल और लेट। अर्ली की उम्र होती है 10 से 13 साल, मिडिल 14 से 16 साल, और लेट की होती है 17 से 19 साल की उम्र। तो अर्ली जो एडोलेसेंस होता है, अर्ली मतलब जल्दी जो आता है हमारा 10 से 13 साल की उम्र में आता है, इसमें मूड चेंजेस बहुत होते हैं, मतलब आपकी बच्चे के मूड चेंज बहुत होगा, बच्चा जो है अपनी चैलेंज अपनी इंडिपेंडेंट मांगता है, चैलेंजेस को फेस करता है, जो उसकी लाइफ में आते हैं चैलेंजेस उसको फेस करता है, फैमिली मेंबर्स लोगों से दूर जाना पसंद करता है, अपनी प्राइवेसी चाहता है कि उनके काम में कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, उनके काम में कोई उसको बोले ना, तो ये सब चेंजेस दिखते हैं। अर्ली एडोलेसेंस में, फिर मिडिल एडोलेसेंस में क्या होता है, जब 14 से 15 साल की होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस ये लोग बच्चे लेना शुरू कर देते हैं, एंड इसमें बहुत ज्यादा ख्वाब भी लेने शुरू कर देते हैं, बहुत ऐसे ख्वाब होते हैं जो कभी पॉसिबल हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाएंगे, और खासकर दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा शुरू करते हैं कि दोस्त कैसे हैं, उनके दोस्त दोस्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट है कि ये अच्छा है ये बुरा है। बहुत आपने सुना होगा कि बच्चे, आज मेरा ये नया दोस्त बना, कल वो आकर बोलेंगे कि नहीं आज मैं उससे नहीं बात करा, उसने ये कर दिया तो आज मैं दूसरे दोस्त बन गया। तो दोस्तों पे एक्सपेरिमेंट रिस्क हो जाता है, किस संगति में वो जा रहे हैं, किस फ्रेंड से वो मिल रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत होता है। खासकर ये स्टेज जो होती है लड़कों की या लड़कियों की, जो भी है, गलत संगति में जाकर गलत आदतें शुरू हो जाती हैं, ड्रग्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली ये स्टेज होती है। फैमिली के साथ लो, पेरेंट्स से दूर होना, पेरेंट्स से बातें छुपाना शुरू हो जाना, एक अपनी वैल्यू बनाना, किसी को कुछ ना बताना, शायद ये स्टेज आती है। फिर लेट एडोलेसेंस जो होती है, 17 से 18 या 19 साल, उसमें वो लोग प्लान करते हैं कि उनको बड़े होकर क्या बनना है, तो उस गोल की तरफ वो लोग पढ़ाई भी और अपनी सोशल जिंदगी भी उस गोल की तरफ लेकर जाते हैं। अपनी फिजिकल चेंजेस जो उनकी बॉडी में आए हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनकी जो शारीरिक चेंजेस बॉडी में आए हैं उसको एक्सेप्ट कर लो। उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों का। और अपनी हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना और अपनी एडल्ट लाइफ की तरफ आगे बढ़ना, ये एक एडल्ट लेट एडोलेसेंस में होता है। अब हम प्यूबर्टी की बात करते हैं, जिसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं। किशोर अवस्था क्या होती है कि हमारी जो शारीरिक चेंज बच्चों में दिखते हैं उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी आपकी फिजिकल चेंजेस, आपकी शारीरिक चेंजेस बॉडी में जो होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको हम शारीरिक चेंजेस को प्यूबर्टी बोलते हैं। जब एक बच्चा बॉर्न होता है और जब जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ये चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं। कुछ के जल्दी आ जाते हैं, कुछ के लेट आते हैं। कोई जात नहीं देखी जाती, कोई रिलीजन नहीं देखा जाता, कोई नेशनैलिटी नहीं देखी जाती। हर बच्चे के, हर इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, उनकी जिंदगी में ये चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं। लड़कियों में जो चेंजेस होता है, सबसे ज्यादा जो बड़ा चेंज है, वो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना, पीरियड्स का शुरू होना 8 से 9 साल या 10 साल की उम्र में होता है। अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि लड़कियों को 12 से 13 साल की उम्र में भी पीरियड्स नहीं शुरू होते। ऐसा है, ये हर एक की अपनी अपनी एक बॉडी होती है। आपकी, आपको शरीर जो भगवान ने दिया है और मुझे जो शरीर भगवान ने दिया है, हम दोनों को अलग अलग शरीर दिया है। चाहे चीजें अंदर सेम हैं, पर जो अंदर की फंक्शंस हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म, मेरा मेटाबॉलिज्म, आपकी इम्यूनिसिटी, मेरी इम्यूनिटी, बहुत फर्क करती है। तो हर किसी की बॉडी पे ये फर्क पड़ता है कि कब पीरियड शुरू हो रहे हैं और कब जल्दी हो रहे हैं या लेट में हो रहे हैं। बहुत सी लड़कियों को ये पीरियड 8-9 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में हो जाते हैं, किसी किसी को 13-14 साल की उम्र में भी होते हैं। फिजिकल चेंजेस दिखती हैं, ब्रेस्ट का बढ़ जाना, मतलब चेस्ट बढ़ना, हेयर ग्रोथ होना, आपका फेस पे पिंपल्स होना, बॉडी ऑडर, शरीर से स्मेल आना, और क्रैम्प्स पड़ना, शरीर में दर्द होना, ये सब हमें दिखते हैं। हार्मोनल चेंजेस जब अंदर बॉडी में होते हैं तो ये सब चीजें हमें शरीर में दिखने को मिलती हैं। वेट में गेन होना भी एक मेजर शारीरिक चेंज है। प्यूबर्टी इन बॉयज क्या होता है, लड़कियों, लड़कों में क्या चेंजेस हमें दिखते हैं? आवाज जो है उनकी, वो भारी हो जाती है, उनके वेट गेन हो जाता है, उनके भी शरीर में एक्ने, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ, फेस पे हेयर ग्रोथ, दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस दिखने हैं, शरीर में बॉडी ऑर्डर भी आना शुरू हो जाता है। तो ये लड़के लड़कियों में अलग अलग चेंजेस होते हैं, पर ये हर एक किसी की जिंदगी में आता है। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है हर एक औरत को, हर एक लड़की को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। आप सबको ही पता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब आती हैं तो एक औरत प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है, और ये हमारे हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं। बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं, और हर महीने ये साइकिल आती है। किसी का 25 दिन का साइकिल होता है, किसी का 30 दिन का साइकिल होता है, कि उनको 30th डे पे ही आता है, किसी को आगे भी बढ़ जाता है। पर मैं यही सबको एडवाइस करूंगी कि अगर किसी को मेंसेस में प्रॉब्लम है तो गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं इसके लिए, उससे ही संपर्क कर कोई मेडिकेशन शुरू करें, अपने आप से कोई मेडिकेशन नहीं शुरू करें। अब मेंस्ट्रुअल जब पीरियड्स के दौरान हमें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो हाइजीन होता है उसका ध्यान रखना है, और सैनिटरी नैपकिन्स, प्लीज सैनिटरी नैपकिन्स का बहुत ज्यादा ध्यान। आज भी बहुत सी औरतें जो हैं कपड़ा यूज करती हैं जिससे इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइज, कौन सा डिजाइन, और किस चीज कंफर्टेबल है, कौन सा सैनिटरी नैपकिन आपके लिए कंफर्टेबल है, उससे आपको उसी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और फर्स्ट टू डेज, पहले दो दिन जो हैं, हमें 3 से 4 घंटे के बाद सैनिटरी नैपकिन को चेंज करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट टू डेज बहुत ज्यादा फ्लो होता है, और जब फ्लो होता है तो बहुत गंदी स्मेल भी आती है बहुत लोगों के में से। तो फिर हमें हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, इन्फेक्शन हमारे यूट्रस में ना जाए दोबारा से, उसको मेंटेन करने के लिए हम 3 से 4 घंटे के बाद अपने सैनिटरी नैपकिन को चेंज कर सकते हैं। और सैनिटरी नैपकिन को चेंज करने के बाद उसको रैप कर डस्टबिन में थ्रो करना है, न्यूज़पेपर में रैप करके डस्टबिन में थ्रो करें। मेक श्योर डस्टबिन जो है आपके रूम में ना हो, किचन में ना हो, ऐसी जगह हो जहां पर स्मेल उस सैनिटरी नैपकिन में से स्मेल किसी भी घर के अंदर ना आए। और जो फ्रेश पैड लगाकर अपने हाथों को, सैनिटरी नैपकिन लगाकर अपने हाथों को पानी से और साबुन से वॉश कर लेना है। ये हमें हाइजीन मेंटेन करनी है। साथ ही साथ हमें नहाना भी है, रोज नहाएं, ल्यूकवॉर्म वाटर गुनगुने पानी से जरूर नहाएं, लूज कपड़े पहने, जितना हो सके लूज कपड़े पहने, टाइट कपड़े ना पहने, रैशेस पड़ने का डर रहता है। और बहुत सारा पानी पीना है, 8 से 10 ग्लास पानी पिएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितना खाएंगे, आयरन खाएंगे, क्योंकि आयरन हमारे ब्लड में, ब्लड जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, अगर हम हाइजीन नहीं रखते हैं तो हमें एक सबसे बड़ी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जो सबसे बड़ी डिजीज हो जाती है, वो होती है यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन होता है, ये एक बैक्टीरियल टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि सैनिटरी नैपकिन हर 3 से 4 घंटे के बाद हमें चेंज करना चाहिए। चाहे आप कॉटन का यूज करो, चाहे आप दूसरा कोई भी मटेरियल का यूज करो, यूटीआई इन्फेक्शन जो बहुत सेंसिटिव होते हैं लोग, जो बहुत जिनको बहुत ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन होता है, तो उनको यूटीआई इन्फेक्शन होने का डर होता है। ये यूटीआई इन्फेक्शन क्या है? जो बैक्टीरिया है वो आपके यूरिनरी ट्रैक में एंटर करता है, तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स से ही ये ठीक हो पाता है, और हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यूटीआई इन्फेक्शन में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको जितना हो सके पानी पीना है, ताकि यूरिन के थ्रू वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी से बाहर जाए। अगर हम पैड्स नहीं चेंज करेंगे तो बैक्टीरियल पैड में इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो हमारे यूट्रस में जाकर इन्फेक्ट कर सकता है। और यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो अगर हम हाइजीन भी नहीं मेंटेन करेंगे तब भी हो सकता है, तो इसलिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, क्या यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है वो इरेगुलर साइकिल, मतलब बहुत लोगों को साइकिल डिले होते हैं या बहुत टाइम के बाद होते हैं, ऐसा भी प्रश्न होता है। यूटीआई इन्फेक्शन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई लेना, मतलब आपस में लेना देना नहीं है। अगर आपने मिस किया है तो कहीं आपको स्ट्रेस है, एक एंजाइटी है, पर यूटीआई इन्फेक्शन से कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेना देना नहीं है। बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस या इमोशनल चेंजेस होते हैं तो हम लेट, हमारे जो पीरियड्स हैं वो लेट होने शुरू हो जाते हैं, तो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी और इमोशनल, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इस दौरान बहुत होते हैं, तो हमें अपने आपको स्ट्रेस नहीं करना है, एंजाइटी नहीं लेनी है, ताकि हम जो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलरली होती रहे। क्या सिम्टम्स हमें दिखते हैं जब यूटीआई इन्फेक्शन होता है? बर्निंग सेंसेशन होता है जब आप यूरिन करेंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, सडन मतलब एक अर्ज होती है यूरिन करने की पर आपको यूरिन नहीं आता है, और यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, इचिंग होती है बहुत ज्यादा उधर, तो ये सब लक्षण दिखते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ यही यूटीआई का ट्रीटमेंट यही है कि हमें एंटीबायोटिक्स लेनी है और अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है। अगर हम अपनी हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो हम इन्फेक्शन, हमारा इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और इट कैन बी डेंजरस, ये एक यूटीआई इन्फेक्शन डेंजरस भी हो सकता है। किसी को कुछ पूछना है?
1: हेलो मैम,
0: हाँ जी शशि जी।
1: मैम मेरी यहाँ पे काफी सारी गरिमा ग्राम में बहुत सारी लड़कियां हैं और ये
0: हाँ
1: सेशन आज का जो है बहुत अच्छा है मैम। और सभी लड़कियों के सवाल है वो वन बाय वन पूछना चाहती है मैम, उनके क्वेश्चंस के मैम आंसर वो क्लियर कीजिए प्लीज। मैम सबसे पहले पूछना चाह रही है अंजुम। हेलो मैम,
0: हाँ जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
1: मैं पूछना चाहती हूँ कि मैम हमारे जब पीरियड्स आते हैं ना, तो मतलब कमर इतने तेज दर्द होते हैं, तो उसका मतलब क्या कर सकते हैं?
0: देखिए जो पीरियड्स में पेन होता है, क्रैम्स आते हैं, ये एक नॉर्मल हर एक लड़की को होता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें आप दवाई भी, मैं तो कहूंगी उसमें दवाई भी नहीं लेना चाहिए। ये जो पीरियड्स क्रैम्स या पेन होते हैं ये एक नॉर्मल बॉडी का साइकिल है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है।
1: हेलो मैम, हाँ
0: हाँ
1: जी
0: जी
1: मैम, ऐसा होता है ना कि मतलब कई एक मतलब इस महीने मतलब पीरियड नहीं आता है 1 महीने तक, वो क्यों होता है ऐसा?
0: देखिए मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अपनी अपनी शरीर है, अपना अपना बॉडी है, अगर मिस हुआ है पीरियड तो
1: हाँ मिस हो जाता है कई बार।
0: मिस हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, डॉक्टर से बात करनी है। आपका वो अगर ज्यादा मिस होता है तो अल्ट्रासाउंड होकर आपके जो
1: नहीं
0: प्रॉब्लम्स,
1: मैम, नहीं होता, एक ही
0: हाँ
1: महीने
0: जी,
1: मतलब मिस होता है, उसके अगले महीने आ जाता है।
0: तो वो आपकी बॉडी का जो, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, मैंने बताया किसी को 15 दिन में भी दोबारा शुरू हो जाते हैं, किसी को 25 दिन में होते हैं, किसी को 30 दिन में होते हैं, किसी को 35 डेज में होते हैं। सो ये अपनी बॉडी पे डिपेंड होता है, पर अगर
1: डॉक्टर के
0: आप
1: पास जाना चाहिए?
0: इसको एक बार ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
1: ठीक, थैंक यू
0: हाँ
1: मैम। हेलो मैम, मैम
0: जी
1: आप कि इसमें हमें साफ सुथरा मतलब नहाना चाहिए, तो मैम
0: हाँ
1: हम
0: जी
1: बोलते हैं कि इसमें रोज नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो
0: नहीं
1: सर
0: नहीं
1: पर।
0: आपको रोज नहाना है, रोज नहाना है, हाइजीन मेंटेन करना है, नहीं तो बीमारियां लग सकती हैं
1: मैम
0: शरीर
1: बोलते हैं
0: में।
1: सर धोने से वो फिर से ज्यादा हो जाता है।
0: ये सब बातें हैं, इनको प्लीज आप, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप रोज नहाए ऐसा नहीं है, सिर भी धो सकते हैं, रो काम तो सारे ही करने हैं, ऐसा नहीं है ना, तो नहाना तो चाहिए, रोज नहाना चाहिए और सिर भी धोना चाहिए।
1: अब मैम वो जब इस टाइम पर इचिंग होता है तो क्या हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
0: इस टाइम पे अगर आपको ईचिंग होती है तो इसका मतलब आप जो सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं या आप अगर कपड़ा यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसको बंद कर दें। अगर आप सैनिटरी नैपकिन को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके जो सैनिटरी नैपकिन हैं वो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, तो आप स्विच कर सकते हो सैनिटरी नैपकिन को। और हाइजीन मेंटेन कर कर रखना है क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं।
2: ओके मैम, मैम थैंक यू मैम। हेलो मैम।
0: हाँ जी
1: मैम अगला क्वेश्चन सोनी का है जो थोड़ा सा पूछने में शर्मा रही है, तो मैं उसका क्वेश्चन मैं आपको मैं बता देती हूँ। मैम उनका क्वेश्चन है कि जैसे कपड़ा वो यूज कर रही हैं उस टाइम पे वो धो के इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या उससे भी इन्फेक्शन का खतरा होता है?
0: शशि जी, सबसे पहले तो सोनी को बोलिए कपड़ा इस्तेमाल करना बंद कर दे,
1: ओके मैम।
0: क्योंकि कपड़ा धोकर इस्तेमाल करेंगे उससे तो 101% इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं।
1: ओके मैम।
0: तो कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना है।
1: मैम वो बोल रही हैं कि पैड हम इस्तेमाल करते हैं तो पैड से उन्हें थोड़ा सा जैसे जलन के टाइप में या रैशेज हो जाते हैं, तो
0: तो
1: वो
0: इसका
1: उसके
0: मतलब उनको जो सैनिटरी नैपकिन वो यूज कर रहे हैं वो उनको सूट नहीं कर रहा है। आप कॉटन बेस्ड सैनिटरी नैपकिन भी यूज कर सकते हैं।
1: हेलो मैम,
0: हाँ जी
1: गुड आफ्टरनून, मैं सरोज बोल रही हूँ मैम। क्या कहते हैं,
0: हाँ
1: मेरा जो पीरियड शुरू होता है ना तो डेट से पहले ही हर बार ही आता है, 6 दिन 10 दिन पहले ही आता रहता है रेगुलर।
0: ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। 25 दिन की साइकिल होती है, लोग
1: मेरी
0: कहते हैं
1: मैम
0: महीने की साइकिल है
1: हो
0: पर
1: जाता
0: पच्चीस
1: है। हेलो
0: दिन की साइकिल है ये।
1: मैम,
0: हाँ जी
1: मैं मंजू शर्मा बोल रही हूँ। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम बच्चों की मतलब प्रेगनेंसी के लिए कुछ यूज करते हैं, जैसे कॉपर्टी हो गया, जैसे मैंने फ्रीडम 5 यूज कर रखा है, तो मुझे ना डेट के दौरान मतलब काफी ब्लैडिंग होती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं आप?
0: आपने जो भी ये यूज किया है तो उसके लिए आपने डॉक्टर से संपर्क किया है या डॉक्टर्स ने आपको एडवाइस किया है?
1: हाँ जी मैम, डॉक्टर से ही मैंने लगवाया था प्राइवेट क्लिनिक से, तो मुझे और कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बस डेट के दौरान ना पहले तो ब्लीडिंग कम होएगी, फिर उसके बाद अगर फ्लो बढ़ेगा तो मतलब लगातार मतलब 8-9 दिन तक चालू रह जाता फिर
0: ये इसका एक साइड इफेक्ट है, मेजर साइड इफेक्ट है इसका, तो
1: जी।
0: इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आप डॉक्टर से संपर्क, जिससे आपने लगवाया है या कराया है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत
1: जी
0: ज्यादा,
1: मैम,
0: इसका मेजर साइड इफेक्ट यही है कि मेंसेस बहुत ज्यादा, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होने लगता है,
1: हाँ जी हाँ जी, मुझे ब्लड फ्लो
0: पेन
1: ही
0: भी
1: ज्यादा
0: होता है
1: हो रहा है।
0: बहुत।
1: जैसे हाँ पहले तो मेरा मतलब प्रॉपर्टी लगी थी सफदरजंग से एम्स से, तो मतलब उसमें मेरे को क्या था कि बीपी की प्रॉब्लम, मतलब मोटापा बढ़ना और मतलब कई सारे साइड इफेक्ट थे, लेकिन मैंने वो हटवाया तो ये यूज करा है, तो इसमें मुझे और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी और चीज नहीं होता, बस यही होता कि डेट के दौरान पहले तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दिखेगा 3-4 दिन तक, उसके बाद फ्लो बढ़ता है तो 10-11 दिन ले लेता, तो 5-6 दिन
0: तो ये
1: नॉर्मल
0: इसका
1: रहता
0: साइड इफेक्ट है मैम, तो आप प्लीज डॉक्टर से संपर्क करें इसके बारे में भी।
1: है जी मैम। एक बार डॉक्टर मैम ने मुझे दवाई भी दी थी तो उससे भी कोई कमी नहीं हुआ, ये फिर मतलब वैसे ही है सेम टू सेम
0: हाँ जी, ये जो
1: वैसे चलता है।
0: आप हम लोग ये IUD लगा लेते हैं, कॉपर्टी लगाते हैं, तो वो उससे ये साइड इफेक्ट्स शरीर में आते हैं।
1: मैम इसे आगे के लिए कोई दिक्कत हो सकती है या फिर मतलब कोई जैसे ये साइड इफेक्ट है इसे कोई कल को कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी इसमें?
0: अब देखिए, ये अगर आपने लगवाया है ये साइड इफेक्ट से जरूर शरीर में तो कोई प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, ऐसा तो नहीं है
1: जी
0: कि नहीं आएंगी, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो एनीमिक भी हो सकते हैं
1: जी जी मैम,
0: आप।
1: पहले तो मतलब जैसे ब्लड पतला आता था डेट के दौरान, अब गाढ़ा गाढ़ा ब्लड आता है मैम मेरे को। ठीक
0: तो ये सारी साइड इफेक्ट्स ही हैं उसके।
1: है मैम, तो मैं उन्हीं मैम से फिर जाके मतलब कंफर्म
0: हाँ
1: करती
0: जी
1: हूँ।
0: डिस्कस कर
1: हाँ
0: लीजिएगा।
1: जी, उनसे डिस्कस करती हूँ। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू।
3: हेलो मैम, मेरा नाम सुनीता है।
0: हाँ जी
3: मैम मेरी एज 25 साल है। मेरे दो बच्चे हैं, लेकिन मेरे पीरियड्स में बहुत मतलब पेन होता है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सिर में ज्यादातर दर्द है, चिड़चिड़ापन रहता है मेरे।
0: क्योंकि हमारे शरीर में जो इस दौरान हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे होते हैं, वो हमारे शरीर में हमारे बॉडी में चेंजेस जो आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, किसी से
3: कमजोरी,
0: बात
3: हाँ
0: बात नहीं करना, पेन होना, ये एक आम है। ये हर हर औरत की जिंदगी में ये इस दौरान 6 दिन के दौरान जरूर होता है।
3: मैम, कमजोरी बहुत रहता, थकान ऐसे थकी थकी से
0: हाँ
3: रहते हर
0: जी,
3: टाइम।
0: हाँ जी, क्योंकि हमारे शरीर से, बॉडी में से ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से कमजोरी होती है। तो इसलिए आयरन हम लें, अच्छा
3: मैम
0: डाइट
3: खाने के लिए
0: लें,
3: क्या क्या इस्तेमाल करें इसमें?
0: प्रोटीन रिच डाइट जितना हो सके प्रोटीन खाएं, रोटी खाएं, दालों का इंटेक करें, अनार का जूस लें, अनार खाएं। आजकल तो अच्छा सैलेड आ रहा है, जो चुकंदर होता है वो ले सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए।
3: मैम परहेज क्या करें इसके लिए? मैम
0: परहेज ये है कि आपको स्पाइसी खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, मिर्ची वाला नहीं खाना है, ऑयली खाना नहीं खाना है, ये सब परहेज हम कर सकते हैं।
3: थैंक यू मैम।
1: अगर सर में दर्द होता है तो पेन किलर लेना पड़ जाता है, तो इसमें ले सकते हैं क्या हम दवाई वगैरह?
0: हाँ जी, आप ले सकते हो, पर ज्यादा ना लें तो ज्यादा अच्छी बात है।
1: मैम मेरा तो ऐसा
0: अपने
1: होता है पीरियड के दौरान कि मतलब 2-3 दिन लगातार हो जाता है सर दर्द, तो वो मुझे मतलब ड्यूटी पे आना पड़ता है तो पेन किलर, नाश्ते के बाद पेन किलर लेनी पड़ जाती है,
0: आप ले
1: क्योंकि
0: सकते
1: थोड़ा
0: हैं।
1: सर में प्रॉब्लम है ना, माइग्रेन की प्रॉब्लम है मेरे को, तो मेरे राइट साइड में नस में कुछ मतलब क्लॉक बता रखा है, गांठ वगैरह नॉर्मल, तो उसके लिए मेरी दवाइयां चलती हैं। बट पहले मेरे को सर दर्द नहीं होता था, मतलब हर एज में अलग अलग रूल हुए हैं मेरे साथ। पहले जैसे पैरों में दर्द होता था, फिर कमर और पेट में दर्द हुआ, फिर जैसे शरीर में दर्द हुआ और टांगों में दर्द हुआ, मगर जो है ये अभी जो है कुछ टाइम से मेरे सर में दर्द शुरू रहने लग गया है। ये सर में बहुत दर्द हो जाता है मैम, मुझे 2-3 दिन तक पेन किलर लेनी पड़ जाती है लगातार, कभी तो रोज रोज लेना पड़ जाता है।
0: हाँ, ये माइग्रेन के पीछे ही है आपका। माइग्रेन
1: हाँ
0: में
1: जी
0: जब अटैक आता है तो फिर वो 2-3 दिन तक लगातार हमें पेन किलर्स लेनी पड़ जाती हैं।
1: जी जी और मैम
0: हाँ
1: सर ने मतलब डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आपको ये नहीं सोचना कि अभी मेरा सर दर्द थोड़ा है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, आपको जैसे ही दर्द शुरू हुए तो आपको दर्द की गोली लेनी ही लेनी है, तो मुझे
0: हाँ
1: तुरंत
0: क्योंकि
1: लेनी पड़
0: माइग्रेन में
1: जाती है।
0: डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अगर आपने दर्द की गोली नहीं ली तो फिर वो ब्रेन, मतलब सर बहुत तेज दर्द हो सकता है, तो ब्रेन
1: हाँ हाँ
0: भी
1: जी हाँ जी
0: हो
1: तो वो बोलते हैं कि फिर रोकना मुश्किल हो जाता है दर्द को,
0: सकता है। हाँ
1: इसलिए
0: जी,
1: आपको जैसे लगे कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो आपको पेन किलर लेना ही लेना है। तो
0: हाँ जी, हाँ जी, वो तो माइग्रेन में का है ही है, लेना ही है।
1: हाँ तो मैं मतलब अगर डेट के दौरान ले रही हूँ मैम, इसका कोई वो तो नहीं होगा ना साइड इफेक्ट आगे को मेरे
0: नहीं
1: को?
0: नहीं नहीं नहीं
1: ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू।
4: नमस्ते मैम, मैं संगीता बोल रही हूँ। मैम मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2-3 साल से ना, मैं पहले तो सही आती थी पीरियड से 4-5 दिन लगातार, लेकिन अब पिछले साल से, 2 साल से ना, मैं बस 2 ही दिन होती हूँ, तीसरे दिन मेरा पीरियड खत्म हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है मैम?

0: दर्द, पेट में दर्द, हर किसी को होता है, बॉडी टू बॉडी
1: मजदूर को भी
0: डिपेंड
1: होता
0: करता
1: था।
0: है। तो अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो आप डॉक्टर से इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं।
1: जी मैम, थैंक यू मैम।
2: किसी और को कुछ पूछना है? नो मैम, नो
0: नामिका, इफ नोबडी हैज एनी क्वेश्चन, वी कैन कंक्लूड द सेशन।
2: मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ऑल।

अपने समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, पर पूरे पूरे जहान में मैं सबसे अच्छी हूँ, क्योंकि मैं रोज रात को सोने से पहले ये सोचती हूँ कि आज मैंने अच्छा काम किया क्या। और अगर मैं 10 काम भी रोज अच्छे कर लेती हूँ, तो साल के एंड में अगर मैं अपनी डायरी देखूंगी, जो मैंने पहले कभी बहुत बार ही बोला है कि अपनी डायरी लिखनी चाहिए, तो एंड ऑफ द ईयर मेरे पास इतने अच्छे कामों का खजाना हो जाएगा कि मैं कभी कुछ गलत करना ही नहीं चाहूंगी। मेरी सोच में से ही निकल जाएगा कि मुझे कुछ गलत करना है, तो नेचुरली देन आई एम द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। यू कैन सी हाउ वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड टू रीचिंग अप टू दीस पॉइंट्स। दिस इज पॉसिबल इफ यू हैव अ पैशन। और पैशन क्या है? कंटेजियस है, एक बीमारी है छूत की। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आज पैशनेट हूं कुछ करने के लिए, और जब तक मैं उसको कर नहीं लूंगी, मेरे को अंदर इरिटेशन होएगी, मुझे अंदर ये फीलिंग आएगी कि वाई आई एम नॉट एबल टू डू। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। वॉचिंग ए पैशनेट लीडर एनर्जाइजेस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो लीडर होता है वो दूसरों में भी पैशन की वो आग लगा देता है कि यू शुड ऑल्सो बिकम पैशनेट। और जो पैशनेट नहीं है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो लीडर है वो इतना एनर्जाइज करता है सबको कि वैल्यूज की बात करेगा, गोल्स की बात करेगा, परफेक्शन की बात करेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बात करेगा, अपने ये जो एटीट्यूड्स हैं और जो अपनी वैल्यू सिस्टम है वो सबको बार बार बार बार शेयर करेगा। तो ये क्या है, एक कंटेजियस भी हो जाता है, और वो जो पैशन है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को, जो लीडरशिप है सारी ऑर्गेनाइजेशन को एनर्जाइज कर देती है। तो लीडर्स सेंस ऑफ पैशन एंड जॉय सेंस ए टिंगल डाउन टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टिंगल डाउन का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो हमेशा पोक करता रहता है कि यू जस्ट मूव टुवर्ड्स परफेक्शन, यू जस्ट मूव टुवर्ड्स आई शुड से दैट कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्रंट लाइन। उसकी प्रोग्रेस के लिए हम बात करते रहे, द रिजल्ट इज प्योर मैजिक। व्हेन यू विल डू दिस यू विल नॉट रियलाइज कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अब आप देख लो, रीड इंडिया को देख लो, अगर हमारे में पैशन नहीं होता, अगर मेरी टीम एनर्जाइज नहीं होती, तो

0: क्या हम 1 करोड़ की बैलेंस शीट से 13 करोड़ तक पहुंच जाते या 10 करोड़ तक पहुंच जाते 13 साल में? पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज काम ने अपने आप को दिखाया, हमने काम किया, हम एक्सपैंड हुए, हमने इतने सारे सेंटर्स बनाए, तो जो रिजल्ट अभी हमारे सामने आया है तो हम उसको डॉक्यूमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। वो इतना मैजिक आउटकम आ गया हमारे सामने। हमें जो भी कोई कहता है कि आप इतना काम कैसे कर रहे हो, पर हम कर रहे हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है, काम तो नजर आ रहा है ग्राउंड पे, आपके सामने है जो आप काम कर रहे हो। और अगर आप लोग भी डॉक्यूमेंट हमारे लिए, तो इट्स टू लेट टू डॉक्यूमेंट नाउ कि आप मुझे पिछले 13 साल का वो लिखना पड़ेगा, पर आप लोग तो अभी से लिखना शुरू कर दो। आप क्या कर रहे हो, लिखना क्या है? आप लोगों के टच में हो, कोई भी स्टोरी आपको अच्छी लगती है आप अपनी डायरी में लिख लो, कोई भी काम आपको अच्छा लगता है आप अपनी डायरी में लिख लो, किसी की भी लाइफ आपने ट्रांसफॉर्म करी है जो आपके सामने आके बता रहे हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये चेंज आ गया, आप उसको लिख लो। आपने जो ट्रेनिंग करी उसके बारे में लिख लो, जो भी आपने काम किया उसका क्या आउटकम आया, अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप उसको लिखते जाओ। तो ये क्या होगा, आपका एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि आप किसी भी ऑथर को दोगे वो बोलेगा अच्छा मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको, ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी है जो ग्रास रूट से उभर के आई है, जो एक्चुअली द नेक्टर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, आई शुड से द एसेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो है वो आप लोग कर रहे हो। एंड इट्स अ फैक्ट, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जो सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो काम करते हैं, जो फंड रेज करते हैं, पर मैं उन सबको एक साइड पे रखूंगी, पर जो काम आप लोग कर रहे हो उसको मैं बहुत ही हाइट पे रखूंगी, बिकॉज डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ काम करना ही एक सोशल डेवलपमेंट का मकसद है। ठीक है, जो रिजल्ट्स नेचुरली दे विल बी मैजिकल रिजल्ट्स, तो हमें उस सिचुएशन तक अपने आप को लेके जाना है। नेगेटिविटीज आती हैं, गुस्सा मुझे भी आता है, मैं भी बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, पर मैं इमीडिएटली अपने आप को करेक्ट कर लेती हूँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके कि नहीं, मुझे राइट स्टेप लेना है, मुझे नेगेटिव नहीं जाना। और अगर इस चीज को मैं डिले कर देती हूँ ना, तो उतना ही जो मैजिकल रिजल्ट्स हैं वो वापस आने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है नेगेटिविटी कितनी स्पीड से चलती है, पर पॉजिटिविटी को पकड़ के हाथ में रखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ये सबको पता है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड नेगेटिव हाईएस्ट स्पीड से भागता है, पर उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये पैशन और जो मैं बात कर रही हूँ, हंगर और डिसिप्लिन, ये बहुत तीनों चीजें लिंक करती हैं। आर यू एमिंग टू बी बेस्ट यू? ठीक है, तो चलो हम हंगर की बात करते हैं। यू वॉन्ट टू विन एंड यू हैव टू विन, ये सबको पता है। ये तो मैं अभी पिछली स्लाइड्स में भी मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि हमें विन तो करना ही है। इफ यू वॉन्ट टू विन यू मस्ट फर्स्ट फील हंगरी फॉर यू। हंगर जब तक नहीं आएगी हम कैसे विन करेंगे? When we swim, we keep our mouth out of water to breathe. We cannot put our head in water for long time as we need air to breathe. अगर हम अपना सिर पानी में डुबो के ही तैरते जाएंगे तो हमें सांस कैसे आएगा? इवन फिश भी अपना मुंह थोड़ा सा बाहर करती है पानी से, कभी कभी उसको हवा चाहिए होती है। When you want to win and need wisdom as badly as you need the air when you are under water, you will get it because you struggle to get the air and relaxed when you got it. तो ये बहुत एग्जाम्पल डायरेक्टली रिलेटेड है आपके विजडम से। जब आपको कुछ चाहिए और आप बैडली उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि जब अपना सर आप पानी में डुबा के तैरते हो तो आपको उस समय क्या चाहिए, हवा चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, तो आप डेस्परेटली अपना सिर बाहर करते हो एयर लेने के लिए. और जब आप चल रहे हो एंड यू वॉन्ट टू विन, यू वॉन्ट टू अकॉम्प्लिश, एंड वेन यू आर स्ट्रगलिंग टू अकॉम्प्लिश एंड यू गेट द रिजल्ट्स, देन यू फील रिलैक्स. उसमें गैप क्या था, जब हम स्विम कर रहे हैं एयर का गैप था, और जब हम अपना काम करते हैं तो हमारे सामने कोई भी गैप आ सकता है, और उस गैप को फिल करने के लिए, उस चीज तक पहुंचने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है. और जब हम स्ट्रगल करते हैं तो हम रिलैक्स्ड फील करते हैं कि मैंने एक मकाम या दो मकाम या तीन मकाम अपने पार कर लिए अपनी हार्डशिप से, अपने स्टेप्स से. सिमिलरली व्हेन यू वांट टू रियलाइज योर पैशन यू नीड हंगर, एंड व्हेन यू आर एबल टू गेट द फूड यू रैलिश यू रिलैक्स. अगर सिंपलेस्ट वर्डिंग में मैं बोलूं, हम रोज सुबह उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, किसके लिए? लेबर को देख लो, हमें देख लो, बड़ों को देख लो, एक्सेप्ट जो माल फंक्शनल है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ. हम सब लोग अपने घर से निकलते हैं एक गोल के लिए कि हमें पैसा चाहिए सर्वाइवल के लिए. पैसे से हमने खाना खरीदना है, अपनी फैमिली को चलाना है, अपने परिवार को चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है. हम ये सब अचीव कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं. किसी को नौकरी नहीं मिलती, वो भी स्ट्रगल करता है. किसी को कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो उनके लिए स्ट्रगल करता है. पर जब हम उनको अचीव कर लेते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं. यही पैशन हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होना चाहिए, ठीक है? तो ये मैं फिर ये मैं पैशन और हंगर को कोरिलेट कर रही हूँ. तो लास्ट में मेरा एक ही पॉइंट है कि डू नॉट गिव अप. कोई भी चैलेंज आता है तो प्लीज डू नॉट गिव अप, जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व इट. अब तीसरा पॉइंट क्या है? डिसिप्लिन. हमने हंगर की बात कर ली, पैशन की बात कर ली. द मैजिक इन योर हेड फॉर एक्शन. वंस यू हैव द पैशन एंड हंगर, यू विल सी अ रोड एमर्ज इन फ्रंट ऑफ यू लीडिंग यू टू योर गोल. ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था. देयर विल बी ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे, देयर विल बी रोड ब्लॉक्स. You need discipline to do right things at right time again and again. जितने भी लीडर्स हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में एक ही बारी काम करके सक्सेसफुल नहीं हो जाते. उनको बार बार एक्शन लेना पड़ता है, बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है, बार बार अपने रोड ब्लॉक्स को रिमूव करना पड़ता है. पर जब हम राइट एक्शन एट राइट टाइम लेते हैं तो हमारे जो रोड ब्लॉक्स हैं वो क्लियर हो जाता है. सो यू नीड डिसिप्लिन टू स्टे ऑन द राइट ट्रैक. दोज हु विन द गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद डिसिप्लिन. वो ये तो नहीं कहते अच्छा आज तो नींद नहीं खुल रही, आज हम नहीं जॉगिंग के लिए जाते. वो ये भी नहीं कहते कि आज तो मैं पिक्चर देखने चला जाता हूँ, आज अपने फुटबॉल की क्लास मिस कर देता हूँ. कितना वो डिसिप्लिन रखते हैं अपनी लाइफ में, कितना उनके अंदर पैशन होता है, कितना उनके अंदर हंगर होता है उस गोल्ड मेडल को लेने के लिए. सिमिलरली जो बच्चे ब्राइट हैं, जो स्कूल में स्कॉलरशिप्स और आगे बढ़ते हैं, उनकी मेहनत और जनरल एक किसी भी बच्चे की मेहनत को हम कंपेयर करें तो फर्क होता है. बिकम अ पैशनेट हंगरी एंड डिसिप्लिन पर्सन. Success is calling. Are you ready? You have to ask this question to yourself. ये तीनों points पे passion, hunger और discipline में कोई कोई सुझाव और देना चाहते हैं? किसी के दिमाग में कोई और बात आ रही है या कोई suggestion देना चाहते हैं या कोई question पूछना चाहते हैं? हम ऐसा करते हैं, 5 मिनट devote करते हैं इस पे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? तो आप अपना mic on करके बोल सकते हैं.
1: गुड आफ्टरनून मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से. मैम पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपका जो ये प्रेजेंटेशन थी जो आपने हमें समझाया, एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल थी, इनलाइटनिंग थी. हमें बहुत ज्यादा मतलब एक मोटिवेशन फील हो रहा है कि डिसिप्लिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है और इसको मेंटेन करना आदमी के लिए बहुत मुश्किल है. एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ डिसिप्लिन में अपनी लाइफ लाने की, लेकिन कभी ना कभी ऐसा मुझे हो जाता है कि वो फिर ब्रेक हो जाता है और फिर उसको रीगेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, मतलब ट्रैक पे वापस आने के लिए. वो कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं प्रे करूँ, मैं नमाज के लिए अगर बोलता हूँ कि मैं अपनी एक स्पेसिफिक टाइम से नमाज पढ़ता रहूँ, वो नहीं होता है, बीच बीच में छूट जाता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है. लेकिन आपने जैसे बोला कि इसको कंटिन्यू रखो, एक कंसिस्टेंसी में अगर लाना है तो उसको मेंटेन रखना पड़ेगा. लेकिन मेरा एक आपसे सवाल भी है, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास पैशन भी है, हंगर भी है, हम डिसिप्लिन में मेंटेन आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन और बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं कि यार हमने इतना कुछ करा और फिर भी हमें ये चीज नहीं हासिल हुई, तो उसके लिए हम क्या करें फिर?
0: एक तो जो मैंने पॉइंट बोला है ना कि आप लिखो जरूर आप क्या कर रहे हो, दैट इज reference back, reflection on what you have been doing in the past. और जब हम नहीं analyze करते, स्मिता मेरा session attend कर रही है, हम दोनों एक ही कमरे में बैठते हैं और स्मिता आपको बता सकती है कि कितनी बार मैं ऑफिस में कोई गलती होती है और वो गलती मैं अपने ऊपर लेती हूँ और मैं introspect करती हूँ और इंट्रोस्पेक्ट करके अगले दिन सुबह ही 6 बजे या 7 बजे ऑफिस आने से पहले उसके ऊपर मेल लिखती और मैं डिस्कस करती हूँ स्मिता से, शिवम से, और मैं इनको भी बोलती हूँ कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट मतलब कि खुद सोचना है कि हम कहाँ गलत थे, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि द अदर्स वर रॉन्ग. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, I'm not saying that you correlate with your thing, but this is the practice I do every day, almost every day. और जो मैं बात करती हूँ ऑफिस में वो कोई illogical नहीं होती है, उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक होते हैं. और मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं ये आपके सामने रख रही हूँ, आप बताओ कि ये ठीक है कि. So what I am doing, A, I am realizing where I have gone wrong. That's why I say that we should write, right?
1: Yes.
0: Second point, I am discussing my mistake with everyone. Please tell me whether I was wrong or not. और क्या मैं अपने आप को introspect करने के लिए मैं दूसरों को भी involve कर रही हूँ अपने साथ. फिर मैं उनसे पूछती हूँ, फिर हम कलेक्टिवली एनालाइज करते हैं कि हम ठीक है या गलत है, फिर उसके ऊपर जो कलेक्टिव डिसीजन आता है हम उसको आगे लेके जाते हैं. नाउ इन योर केस, पैशन इज देयर, हंगर इज देयर, डिसिप्लिन इज देयर, बट समवेयर वी आर पुशिंग आवरसेल्फ्स बैक. और वो क्या चीज है? हमारा ब्रेन, हमारा माइंड. क्योंकि हम ये पैशन, हंगर और डिसिप्लिन को अपने माइंड और ब्रेन के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं, राइट? मैं भी ये गलत करती हूँ. मैं बहुत बार ही सोचती हूँ कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मैं नहीं कर पाती हूँ. मे बी बिकॉज लैक ऑफ टाइम, मे बी आई एम नॉट एबल टू सिंक्रोनाइज ऑल दीज थ्री थिंग्स विद माई ब्रेन एज वेल एज माई माइंड. और मैंने अभी बोला है ब्रेन और माइंड नेगेटिव बहुत स्पीड से भागता है, पॉजिटिव की लेस स्पीड होती है और इसकी रेशियो होती है 80:20. 80% तो नेगेटिव चला जाता है, हमारा माइंड सेकेंड्स में नेगेटिव चला जाता है. पर हमें साथ साथ वो भी प्रैक्टिस अपनानी है कि हम अपने नेगेटिव माइंड को कैसे कंट्रोल करके रहे. और ये प्रैक्टिस से आता है, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है. मैं आपको इसके ऊपर बता भी नहीं सकती कुछ, क्योंकि आपका अपना माइंड है, हर एक का अपना अपना माइंड है, हर एक का अपना अपना ब्रेन है. तो उसको कैसे सिंक्रोनाइज करना है इन तीनों चीजों के साथ और कैसे उसको डिसिप्लिन में लाना है, ये आपके हाथ में. एम आई एबल टू आंसर योर क्वेश्चन?
1: यस मैम, वेरी राइट, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल, थैंक यू।
0: प्रैक्टिस से आएगा अकबर, ये अभी तो 3 हफ्ते हुए आपको ये सेशन अटेंड करते हुए, और आपको ये चीजें शायद पहले, हम अपनी रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि इन चीजों के ऊपर हम बात भी नहीं करते हैं, तो ये इसीलिए हफ्ते में 2 सेशन रखे गए। ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस भी सिंक्रोनाइज हो रहा है हर एक चीज के साथ, राइट? और किसी का कोई क्वेश्चन? और जो मैंने अभी बताया है, आप लोग सहमत हैं उस चीज के साथ या हवा में लग रहा है कुछ? गीता मैम हवा में बात कर रही है कि आपका लिंक इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए कि हर एक लिंक आपके साथ आगे बढ़ता जाए, तो ये मेरी कोशिश होती है, तो इसलिए मैं इधर रुक गई पैशन हंगर और डिसिप्लिन में। अब आगे मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ठीक है? जैसे आप टी बैग नहीं भूल पाए, जैसे माउंटेन की क्लाइंबिंग नहीं भूल पाए, ऐसे आप ये स्टोरी भी रखेंगे और बहुत सारे लोगों को सुनाएंगे, और सबसे पहले घर के लोगों को भी सुनाएंगे। तो हम ये स्टोरी सुनते हैं, ठीक है? मैं क्यों ये स्टोरी हाईलाइट कर रही हूँ कि वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बीइंग अ मदर आई कैन वेरी वेल कोरिलेट माई सेल्फ विद दिस स्टोरी, एंड बीइंग अ फादर ऑल्सो in future you can also very well correlate with this story. To ek jo baby giraffe hota hai gaon mein, Seema can very well correlate kyunki wo ek forest ke sath rehti hai. To hum ek baby giraffe ki mother se ye story sunte hain, aur jab baby giraffe paida hota hai na, to giraffe to bahut uncha hota hai, to jab baby womb se nikalta hai to wo patak karke zameen pe girta hai. चोट तो उसको तब लगती है जब वो पटैक करके जमीन पे गिरता है। उसकी मदर उसको प्यार करती है, उसके फोरहेड पे अपनी गर्दन नीचे करके किस करती है, पर इमीडिएटली वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है और वो उसको जोर से नीचे उठा के ऊपर हवा में फेंकती है न्यू बॉर्न बेबी को, और वो फिर पटैक से गिरता है। और वो कांपता हुआ जब जमीन पे गिरता है, उसकी मदर को अंदर बहुत पीड़ा होती है, पर वो उसको बार बार रिपीट करती है, बार बार रिपीट करती है, जब तक उसके हाथ और टांगे उसके वो जो गोल बॉडी, जैसे वो गिरता है बच्चा जब पैदा होता है, एवरीबॉडी नोज कि जब उसके हाथ और पैर खुल नहीं जाते, तब वो इतनी खुश होती है कि मैंने अपनी एक सीढ़ी क्लाइंब कर ली, अपने बच्चे को पैक करके उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दिया। Seeing the child standing on its feet, another kick is given till the child starts running. फिर वो उसको दोबारा से किक करती है ऊपर उठा के, you can imagine the giraffe height. वो इतना ऊपर हवा में फेंके, वो फिर newborn baby को नीचे फेंकती है, जिससे वो बच्चा दौड़ना नहीं शुरू कर देता। पर उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ी सोच होती है जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। और हम क्या करते हैं कंट्रारेरी, जब हमारा बच्चा पैदा होता है और जब तक बड़ा नहीं हो जाता, हम उसको इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं, इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं हर एक चीज से, कि उसकी जो सेल्फ लर्निंग है हम कहीं ना कहीं उसको किल कर रहे हैं। यही एक लीडरशिप क्वालिटी को जब मैं कोरिलेट करती हूँ, तो हमें सबको ग्राउंड पे काम कैसे करना है उसकी एक सैक्रिफाइसिंग नेचर होनी चाहिए। कैसे हमने ग्राउंड में लोगों को एम्पावर करके आगे लेके जाना है, और इस स्लाइड से मैं आपको एक स्टेप आगे लेके जाऊंगी कि अगर हमें मुश्किलों में भी काम करना हो और दूसरों को भी मुश्किल में डाल के काम करवाना हो, उसमें हिचकना नहीं चाहिए, आप हमेशा उनको जिराफ की स्टोरी सुनाएं, ठीक है? और वो क्यों ऐसे करती है, उसके पीछे उसकी कोई गलत इंटेंशंस नहीं होती है, उसकी कोई गलत भावना नहीं होती है। नेक्स्ट स्टोरी में हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द गोल ऑफ मदर जिराफ। मदर जिराफ कहती है कि वो सोचती है कि मेरा बच्चा पैदा हो रहा है, ये जैसे ही पैदा होगा, अगर ये भागा नहीं, अगर ये चला नहीं, तो इसको लायन या लेपर्ड्स खा जाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट मीट है, मीट बहुत डिलीशियस है, और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से भाग जाऊंगी। पर वो अगर कंपैरिजन करेंगे, मैं अगर लायन को कहती हूँ या लिपर्ड को कहती हूँ तो मेरे बच्चे को छोड़ दे तो मेरा मीट खा ले, तो वो बच्चे का मीट ही प्रेफर करेगा, बिकॉज दैट इज सॉफ्ट, दैट इज फ्रेश, एंड उसको वो टेस्टी लगता है। तो मदर जिराफ कंसीव करने से पहले ही ये हैबिट डाल लेती है कि जैसे ही मेरा बच्चा पैदा होगा उसको मैंने कैसे सड़क पे दौड़ाना है, कैसे जंगल में दौड़ाना है। तो अनलेस द बेबी जिराफ क्विकली लर्न्स टू स्टैंड एंड रन, इट हैज नो चांस ऑफ सर्वाइवल। जिराफ की पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज ये सब लोग आपको पता है फॉरेस्ट में इकट्ठे रहते हैं, और ये जिराफ जो है मदर जिराफ का एक कमिटमेंट होता है अपने बेबी की तरफ कि जैसे ही पैदा होगा मुझे इसको दौड़ाना है, राइट। सो द टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी इज द लेसन्स वी लर्न अर्ली बिकम पार्ट ऑफ आवर हैबिट, आउट इंस्टिंक्ट एंड हेल्प अस स्टैंड इन बेटर पोजीशन ऑल थ्रू आवर लाइफ्स। तभी कहते हैं ना कि बच्चे का 8 साल तक ब्रेन चलता है, हम अपने मॉन्टेसरी स्कूल्स में भी कहते हैं कि अगर हम बच्चे को 8 साल तक अच्छा अच्छा पढ़ा दें, अच्छा सिखा दें, उसकी हैबिट्स बना दें, तो उसका ब्रेन नई चीजें एडॉप्ट करने के लिए तैयार रहता है, और 8 साल के बाद जब वो बुकिश नॉलेज तो वो उसी को ग्रहण करता है। तो ये हमारा लेसन है कि हम दूसरों के साथ जब काम कर रहे हैं, हम उनको उनके पैरों पे खड़े होने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनको उनके पैरों पे खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये सब ट्रेनिंग दे रहे हैं। रीड का मॉडल यही है, अगर उनको सेटबैक्स लगते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है, हमें औरतों को उनके जो ककून्स में है, जो अपने आप को कोजीनेस में रखती है, उनको हमेशा पहले यही, तभी ये क्वेश्चनर क्यों बनाया था कि आप उनसे पूछो कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहो, तभी आप ज्वाइन करो, उसको हॉबी नहीं समझो। तो ये कितनी स्टोरी कोरिलेट करती है इन सब बातों से, आप प्लीज ये सबको सुनाइए स्टोरी। वी नीड टू लर्न टू गेट बैक टू ऑन आवर फीट, वी लिव सच प्रोटेक्टेड cocoon low risk lives in our early years that we are not quite prepared for the big bad world then we enter it. आप समझ के, हमने एज रखी हुई है लड़कियों के 20 से 45 साल तक। अब गांव की औरत जो है, लड़की जो है, वो 20 साल तक तो इतनी प्रोटेक्टेड रहती है कि उसके घर वाले भी उसको बाहर नहीं जाने देते। और रीड क्या कोशिश कर रहा है कि उनको घर में ही रख के उनको ट्रेनिंग दे रहा है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, हम उनके कल्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम उनको स्लोली एंड स्टेडीली बाहर आने की कोशिश करवा रहे हैं, और हम उनको फैमिली से अलग भी नहीं कर रहे हैं, हम उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके डायनामिज्म को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करते हैं, तभी तो हम उनके पास जाके आप लोगों को सबको सेंटर्स खोल के दिए कि आप उनकी लाइफ में बदलाव लाइए। यू हैव टू एक्ट एज अ जिराफ मदर, उनको किक करिए, किक इन द सेंस नहीं उनको मारना नहीं है, पर उनको बोलो कि आपको टाइम निकालना है, ये आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। शायद सीमा जी की किस्मत में वापस जाना इसलिए लिखा था गुड़गांव से कि आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को बदलना था, राइट। आप इस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए, अपने अंदर जो वो मैं पैशन की बात कर रही हूँ, हंगर की बात कर रही हूँ, आप उसको लिखिए कि आप क्यों गए। सीमा जी, यू विल डू द बेस्ट वर्क व्हेन यू विल राइट द डे यू वेंट बैक टू योर विलेज, द डे यू ओपन द सेंटर, the day you started working with this woman and you transformed their lives. So we need to convert our habits to our strong culture and values. Akbar, this sentence is for you. This is the answer for your question. हमारा जो 80% माइंड नेगेटिव चला जाता है, उसको हम पॉजिटिव कैसे करें, उसको वैल्यूज के साथ कैसे कन्वर्ट करें, और विद इन आवर कल्चर how we can focus on values, keeping in view the passion, hunger and discipline. Is it okay? आगे बढ़े। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। लेसन्स लर्न फ्रॉम द स्टोरी को रिलेटेड विद लीडर्स। स्टडी द लाइफ ऑफ सक्सेसफुल पीपल। अब वो जिराफ मदर तो सक्सेसफुल हो गई ना, उसने अपने बच्चे को दौड़ना पहले दिन ही विद इन वन आवर ऑफ हिज और हर बर्थ उसने सिखा दिया कि चलो भाई दौड़ना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो कितना बड़ा रिस्क से वो अपने बच्चे को दौड़ना सिखा रही है। और जो हम अगर सक्सेसफुल लोगों की लाइफ पढ़े तो वो भी ऐसे ही एडवर्सिटी में आगे बढ़े हैं। अगर मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दूं, मैं बहुत प्रोटेक्टेड थी जब मैंने 23 साल तक 24 साल तक पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में काम करा था। बहुत सारे स्टालवर्ड्स या डिटाटा एस पी गॉडरेज सिंघानिया ये वो सब बहुत लीडर्स मेन भी वुमेन भी वी वर जस्ट प्रोटेक्टेड चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ देम। बहुत हमें प्यार करते थे नर्चर करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज 30s। शादी में मेरी शायद PFI से पहले हो गई थी उषा इंटरनेशनल नहीं PFI में पता नहीं आई डोंट रिमेम्बर दैट इयर्स नाउ। बट मैं जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया इवन PFI में भी मैं ट्रैवल करती थी पर हम इकट्ठे करते थे। पर जब मैंने वनवर्ड साउथ एशिया में ज्वाइन किया तो मुझे अकेले ट्रैवल करना था एंड माय फर्स्ट ट्रैवल वाज टू नेपाल। फाइन नेपाल में कंट्री ऑफिस था बट श्रीलंका हमारी वो कंट्री डायरेक्टर थी पर कोई ऑफिस नहीं था। अब रात को 12:30 बजे यहाँ से फ्लाइट जा रही है, मैं अकेले जा रही हूँ, कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया, डर लग रहा है एयरपोर्ट पे भी। फ्लाइट 2:30 बजे श्रीलंका पहुंचती है और श्रीलंका एयरपोर्ट से जो सिटी है वो 2.5 घंटे का डिस्टेंस है। मैं अकेली टैक्सी में रात को ड्राइव कर रही हूँ। यू कैन इमेजिन द स्टेट ऑफ माई माइंड। आई वॉज सो स्केर्ड पर भगवान को याद कर करके मैंने अपने ऑफिस में मैं अपने आप को वीक भी नहीं शो करना चाह रही थी। ठीक है भाई अब पोजीशन लिया है तो ट्रैवल तो करना ही है। ट्रैवल कर रहा और वहां पे मैंने बोला मुझे ना होटल नहीं चाहिए, मुझे कोई गेस्ट हाउस बुक कर दो जो कम्युनिटी स्टे वाले गेस्ट हाउस श्रीलंका में बहुत हैं बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। एंड दे बुक मी इन अ हाउस ऑफ ए तमिलियन फैमिली वेयर वन लेडी वॉज स्टेइंग अलोन। दैट लेडी वॉज ओल्ड लेडी। ओके फाइन आई रीच देयर बाय 3:34 अर्ली मॉर्निंग। खोला दरवाजा सामने इतना बड़ा शेर बब्बर जैसे डॉग और मैं तो डॉग से इतना डरती हूँ कि ओ गॉड मैं तो पूरी रात अपनी खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बार बार देख रही थी कहीं खुला तो नहीं है, कोई पक्का दरवाजा है या वो डॉग टांग मारेगा तो दरवाजा खुल जाएगा, कुंडी मजबूत है या नहीं है। तो these were adversities for me. I'm sharing the live example with you. वो औरत मैं सुबह 6 बजे उठने वाली लड़की अपने कमरे से 8 बजे तक बाहर नहीं निकली क्योंकि मुझे यही डर था कि मेरे दरवाजे के बाहर ही वो डॉग बैठा होगा। Then I called my director there कि see I'm stuck in this situation. I'm scared of the dogs. So please call the owner of the house and tell her to keep the dog in the backyard so that I can have my breakfast and leave this place. That's how I solved my adversities. और बहुत सारी ऐसी situations, ये तो एक example, मैंने बहुत light example दिया है. To reach to this level to manage an organization, I can write books and books on the adversities I faced. Many adversities, many, many adversities, including some politics within the organization also. So it's not, the journey is not easy. So were they always successful in all they did? No, big no, capitals. हमेशा तुम गलतियां करके ही सीखते हो। Did success come to them quick and easy? No, not at all. आज मैं क्यों मैनेज कर पा रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन को कि मेरे पीछे कोई थ्योरी की नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज है कम्बिनेशन विद कम्बिनेशन ऑफ माई एकेडेमिक नॉलेज तभी मैं कर पा रही हूँ। तो एक्सपीरियंस सेटबैक्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो हमें कभी भी हारना नहीं है. सो देयर इज अनदर फेदर इन योर कैप दैट यू आर गोइंग टू रजिस्टर योर एनजीओस. फ्यू ऑफ द सेंटर्स, दोज हु हैव कंप्लीटेड बियॉन्ड 5 years एंड रेस्ट ऑफ द सेंटर्स वी विल डिस्कस वन टू वन. तो यू आर गोइंग टू फेस मैनी मैनी चैलेंजेस, बट थिंक ऑफ योर सेल्फ आफ्टर 10 years, यू विल बी द लीडर्स. मुझे तो ये ट्रेनिंग किसी ने दी नहीं जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, फिर भी हमने सीखा, पर आप तो आधे सीख के चले हो आगे, बिकॉज आप यू आर वर्किंग डायरेक्टली विद द कम्युनिटी, आधा आप सीख रहे हो, और आपके लिए जर्नी तो बहुत ईजी है क्लेम करना कि आप लीडर बन गए, राइट? वॉट मेड देम सक्सेस इज देयर एबिलिटी टू स्टैंड अप एवरी टाइम दे फॉल. ये सेंटेंस बहुत, आप अपने इसको बिल्कुल माइंड में बिठा लो कि गिरना तो है ही है, पर गिर के कैसे खड़े होना है, ये लीडरशिप की क्वालिटी है. द एबिलिटी दैट द बेबी जिराफ एक्वायर्स. द रोड ऑफ सक्सेस इज नेवर एन इजी वन. देयर आर रोड ब्लॉक्स, यू बाउंड टू फॉल. ठोकर तो लगेगी लगेगी, इसको तो आप समझ लो, बट सक्सेस लाइज इन बीइंग एबल टू गेट अप एवरी टाइम यू फॉल. किसी के ऊपर भी इतना निर्भर नहीं रहो कि कल को अगर आप गिरो तो आप इधर उधर देखो कि मेरा कोई हाथ पकड़ के मुझे उठा ले. वो सिचुएशन ना तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में लाओ और ना ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लाओ. लीडर खाली प्रोफेशनल नहीं होता, लीडर सारे स्पेयर्स में होता है, ऑल ओवर होता है. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फैमिली मेंबर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हस्बैंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, विद ड्यू लव विद ऑल ऑफ देम, ऑलवेज ट्राई कि हमारा हाथ हमें किसी की तरफ नजर जो उठा के ना देखना पड़े कि मैं गिर गया हूं या गिर गई हूं, मुझे प्लीज कोई उठाने आ जाए. अपने में इतनी हिम्मत रखो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तभी नेचर भी हेल्प करती है, तभी जो एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी है वो भी हेल्प करती है. दैट इज द क्रिटिकल लाइफ स्किल दैट ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव इंटरनलाइज्ड. और जो ये सेशन ले रहा है उसने तो बहुत ज्यादा इंटरनलाइज की हुई है ये बात कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पूरी लाइफ. अपनी अपनी लाइफ को ऐसे आगे बढ़ाओ कि हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो. बहुत ही किस्मत खराब होगी तो यू कांट हेल्प इट, मैंने लक वर्ड भी यूज किया था पहली स्लाइड में, पर अगर हम पैशनेट हैं, हम स्किलफुल हैं, हम हंगर है हमारे में, हम डिसिप्लिन है कुछ हद तक. मैं भी डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगी कि मैं डिसिप्लिन हूँ, बट यस मैं एडवर्सिटीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ. मैं इमीडिएटली इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ अपने आप को, और क्रिटिकल सिचुएशन से ऐसे एक एक को रिजॉल्व करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हूँ, तभी मैं इन सब चीजों को इंटरनलाइज भी कर सकती हूँ, कर रही हूँ और आगे भी कोशिश करूंगी. और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको भी ये लेसन दूंगी. दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू से. आई एम लुकिंग एट द वॉच और मेरा ये टाइम का एक थोड़ा सा है कि मैं सेशन को टाइमली कंक्लूड करती हूँ. और मैं आप सबको ये बोलूंगी कि जिराफ की स्टोरी याद रखना अपनी लाइफ में हमेशा.

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं वीर क्रांतिकारी गणेश दामोदर सावरकर जी को।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

अंगारों पर चलना होगा, युग में परिवर्तन लाने को, झंझावातों के आघातों में स्वच्छंद गीत गाने को। पराधीनता के उस दौर में अंगारों पर चलने वाले तमाम कठिनाइयों और खतरों के बावजूद बुलंद स्वर में स्वतंत्रता के गीत गाने वाले अनेक क्रांतिकारी हुए हैं, जिनके त्याग और बलिदान की बदौलत भारत भूमि स्वाधीन हुई। ऐसे ही महान राष्ट्रभक्त थे गणेश दामोदर सावरकर, जिन्हें हम बाबा राव सावरकर के नाम से भी जानते हैं। उनकी एक पहचान ये भी है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर उनके छोटे भाई थे और दोनों ही भाइयों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई थी। गणेश दामोदर सावरकर का जन्म 13 जून सन 1879 को नासिक के निकट भागुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। चार भाई बहनों में गणेश सबसे बड़े थे। उनके दो छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर थे और एक छोटी बहन थी मैनाबाई। बाबा राव का बचपन भागुर गांव में ही बीता। शुरुआती शिक्षा के दौर में बाबा राव का मन औपचारिक पढ़ाई से अलग हटकर धर्मयोग और जप तप में लगने लगा। वो लगातार इन विषयों को पढ़ने लगे और इन विषयों के जानकार जब पधारते तो उनसे मिलकर ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। उधर पिता दामोदर पंत सावरकर की देखरेख में बाबा राव ने तलवार और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी मिल गया। पिता के सानिध्य में ही उन्होंने तप और अध्ययन का गुण पाया था और उनका मन घर छोड़कर संन्यास लेने का बनने लगा था। इसी बीच प्लेग फैलने के कारण उनके पिता का निधन हो गया। इसके 7 वर्ष पूर्व माँ का भी महामारी में देहांत हो चुका था। घर की परिस्थितियों और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण बाबा राव ने मैट्रिक तक की पढ़ाई ही की, लेकिन योग और चिकित्सा विज्ञान में गहरी रुचि होने की वजह से बाबा साहब ने स्वाध्याय किया तथा आगे चलकर उन्होंने स्वयं कई तरह की दवाइयां भी बनाई। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष शास्त्र तथा वेदांत का भी गहरा अध्ययन किया। संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। वो न केवल अच्छा गाते थे बल्कि तबला और सितार बजाने में भी सिद्धस्थ थे। सन 1896 में गणेश दामोदर सावरकर का विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी का नाम यशोदा रखा। उनकी 2 संतानें हुई, लेकिन वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकी। देश के हालात उन्हें परेशान करते थे और वो आजादी के लिए क्रांति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते थे। उसी समय सन 1899 में तात्या राव और उनके दोस्तों ने राष्ट्रभक्त समूह नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। जब गणेश दामोदर सावरकर को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उस संगठन के लिए काम करना आरंभ कर दिया। इस तरह अटल संकल्प के साथ उनका क्रांतिकारी जीवन आरंभ हो गया।

क्रांतिकारी दल किसी भी नए सदस्य की भर्ती से पहले उसकी मानसिक तत्परता और सर्वस्व बलिदान की इच्छा शक्ति को परखते थे, जिसमें गणेश दामोदर सावरकर खरे उतरे। 1 जनवरी सन 1900 को गणेश और विनायक दामोदर सावरकर ने एक संगठन खुले तौर पर शुरू किया, जिसका नाम था मित्र मेला। यही संगठन आगे चलकर अभिनव भारत सोसाइटी बना, जिसका संबंध नासिक षड्यंत्र केस से था। इस संगठन के कार्यवाहक गणेश दामोदर सावरकर ही थे। गणेश दामोदर सावरकर ने गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती जैसे अनेक अवसरों पर सार्वजनिक भाषणों और काव्य गोष्ठियों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। साथ ही युवाओं के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सहित कई विभूतियों को नासिक में आमंत्रित किया। इसके साथ ही गणेश दामोदर सावरकर ने संगठन के लिए पैसा जुटाने का काम अपने हाथ में ले लिया था, ताकि उससे बंदूकें, पर्चे आदि खरीदे जा सके और देश की आजादी की अलग जगी रहे। इसी बीच उनके छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर, जो कि वीर सावरकर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन चले गए। लंदन में वकालत के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जो इंग्लैंड जाकर पढ़ने वाले छात्रों के परस्पर मिलन एवं विविध विचार विमर्श का एक प्रमुख केंद्र था। लंदन में श्यामजी से मिलकर वीर सावरकर ने इस क्रांति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार कर विदेशों से भी मदद ली। छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर कविताएं, भाषण और लेख आदि लिखकर समुद्र के रास्ते भारत भेजा करते थे और गणेश दामोदर सावरकर इन्हें संपादित करके प्रकाशित करवाते थे। ये काम तलवार की धार पर चलने जैसा था, लेकिन गणेश सावरकर इस कार्य में निरंतर संलग्न रहे। गणेश दामोदर सावरकर स्वयं भी एक उम्दा लेखक थे। उनके लेखन में देश प्रेम और शोध साफ देखा जा सकता था। बहुत शोध के बाद उन्होंने अंग्रेजी में एक किताब लिखी, इंडिया एज अ नेशन। ये किताब जब्त न हो जाए और आंदोलन ठप न हो जाए, इस विचार से उन्होंने दुर्गानंद के छदम नाम से ये किताब लिखी थी। हालांकि इस बात की भनक अंग्रेजी हुकूमत को बहुत जल्द लग गई, किताब बैन कर दी गई, रातों रात सारी प्रतियां दुकानों से उठा ली गईं और गणेश दामोदर सावरकर की खोजबीन का काम शुरू हो गया। उधर लंदन में रहते हुए वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति पर अपनी किताब 1857 का स्वतंत्र समर लिख चुके थे। इस तरह दोनों भाइयों पर अंग्रेजों की कड़ी नजर थी, लेकिन आजादी के इन दीवानों की नजर तो भारत देश की दुर्दशा पर थी, इसीलिए वो क्रांति पथ पर निर्भय आगे बढ़ते रहे।

सन 1909 में नासिक के कलेक्टर एएमटी जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कान्हारे नामक क्रांतिकारी ने मौत के घाट उतार दिया। नासिक षड्यंत्र कांड ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। देश भर में इस कांड की चर्चा हुई। पुलिस ने छानबीन शुरू की। मालूम हुआ कि अनंत लक्ष्मण कान्हारे का अभिनव भारत सोसाइटी से संबंध है। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई। अनंत लक्ष्मण कान्हारे के साथ कृष्णजी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे सहित 34 से अधिक लोग पकड़े गए। उधर गणेश दामोदर सावरकर देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखने के आरोप में सन 1909 में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। चूंकि वो अभिनव भारत सोसाइटी से संबंधित थे, इसीलिए नासिक षड्यंत्र केस से जोड़कर उन्हें देखा जा रहा था। जांच में ये तथ्य सामने आया कि अनंत लक्ष्मण कान्हारे ने जिस पिस्तौल से जैक्सन की हत्या की थी वो ब्राइनिंग पिस्तौल थी, जो लंदन से भारत भेजी गई थी। एक नहीं बल्कि 20 पिस्तौलें आई थीं। इस तरह विनायक दामोदर सावरकर का नाम सीधे तौर पर उस कांड से जोड़कर देखा जाने लगा और वो लंदन में गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन से वो भारत लाए गए और मुकदमा चला। अनंत लक्ष्मण कान्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे का हत्याकांड में सीधा हाथ होने के कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया, जबकि हथियार उपलब्ध कराने के जुर्म में वीर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान की सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। 8 अप्रैल सन 1911 को कालापानी की सजा सुनाई गई और वीर सावरकर को जेल की तीसरी मंजिल की छोटी सी कोठरी में रखा गया था। कोठरी के कोने में पानी का घड़ा और लोहे का गिलास था। पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां थीं। जेल में क्रांतिकारियों से कड़ा परिश्रम करवाया जाता था। नारियल छीलकर उसका तेल निकालना होता था। कोल्हों में बैल की जगह क्रांतिकारियों को जोता जाता था। साथ ही जेल के बाहर लगे हुए जंगलों को साफ कर दलदली भूमि और पहाड़ी क्षेत्र को समतल भी करना होता था। रुकने पर बैंत और कोड़ों से पिटाई की जाती थी। ऐसे कठिन हालात में अंडमान की सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर दिन काट रहे थे। गणेश दामोदर सावरकर पर भी देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था। आजीवन कारावास की सजा देकर इसी जेल में उन्हें भेज दिया गया था, किंतु दोनों भाई इस बात से अनभिज्ञ थे। गणेश दामोदर सावरकर सन 1921 में वहां से भारत लाए गए। वो एक वर्ष साबरमती जेल में बंद रहे और सन 1922 में रिहा हो गए। उनका स्वास्थ्य जेल यातना के कारण बहुत बिगड़ गया था, लेकिन उन्होंने क्रांति की लौ जलाए रखी। उनका लेखन और प्रकाशन का काम जारी रहा। अब वो डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में आ गए, जिन्होंने देश को एक राष्ट्र एक सूत्र में पिरोने की महत्वपूर्ण पहल की। सन 1925 में गणेश दामोदर सावरकर के लेख राष्ट्र मीमांसा ने इसे और बल दे दिया। निरंतर राष्ट्र सेवा में रहते हुए गणेश दामोदर सावरकर ने 16 मार्च सन 1945 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्रभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिव शेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: कैसे हैं सभी लोग? सब
1: गुड मैम, गुड
0: अच्छे?
1: है मैम। गुड
0: गुड आफ्टरनून
1: है मैम। बहुत गर्मी के बाद बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ठीक
0: और सब कैसे हैं? ठीक
1: है मैम। गुड
0: है। कोई और कैसे हैं?
1: आफ्टरनून मैम, सब ठीक है? आप कैसी हैं मैम? गुड
0: सब ठीक है जी। और कैसे हैं सब?
2: आफ्टरनून मैम। हम
1: मैम अच्छे।
2: अच्छे
1: गुड
2: हैं। अच्छे हैं। और
1: मैम,
0: कैसे हैं?
1: अच्छे हैं। आपको देख के थोड़ी एनर्जी फील होने लगी अब।
0: एनर्जी है। और कैसे हैं सब? ठीक
1: ठीक है मैम। अच्छे
0: हैं। और कैसे हैं सब? क्या इमोशन है इस
1: हैं
0: वक्त?
1: मैम, बहुत बढ़िया।
0: बढ़िया है। और कैसे हैं?
1: मैम को आज सबकी वॉइस सुननी
0: मुझे ये जानना है सब हैं कैसे। अभी तक मुझे ये पता है कि पांच छह लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं।
2: मैम। सब कुछ ठीक है, बट मौसम खराब है तो गला खराब हो जाता है मैम
0: ठीक है,
2: सबका।
0: लेकिन गला खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वैसे ठीक है ना?
2: मैम
0: आपको सिर्फ सुनना है, ज्यादा बोलना तो है ही नहीं, तो कम से कम वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना? कैसे हैं? मेरे को अभी भी जवाब नहीं मिला है, सिर्फ ठीक है, अच्छे हैं। चार पांच लोगों ने बोला है यहाँ पे, तो 30 से ज्यादा लोग हैं। कुछ तो और महसूस कर रहे होंगे, कुछ कोई तो होगा जो अच्छा नहीं फील कर रहा है कि सब अच्छे हैं।
1: सब अच्छे हैं मैम। हाँ
0: सब अच्छे हैं। यहाँ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्वर्णा जी आपके साथ, मेरे ख्याल से आपका ही आंखें दिख रही हैं शायद, है ना?
2: अच्छे
0: हाँ जी। बच्चे कैसे हैं आप लोग?
2: मराठी में बात
0: सांगले, सांगले का क्या?
2: करते मैम वो।
0: हाँ, तो सांगले का क्या मतलब होता है? अच्छे
2: अच्छे हैं हम सब।
0: हैं, सब अच्छे हैं। और कैसे हैं? मतलब
2: बड़ा
0: आपके पीछे मुझे
2: बोला
0: है तो सब अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे के अलावा और किसी को नहीं पता कि वो कैसे हैं, उनका फीलिंग कैसा है, आज मन में क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं अच्छा और कैसे हो, तो हम बोलते हैं सब ठीक है, या फिर जैसा ऋतु जी ने बताया सब ठीक है लेकिन मौसम खराब है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, देर से पहुंचे कि जहां पहुंचना था, खांसी जुकाम हो गया। बट हम कैसे फील कर रहे हैं ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता, या तो अच्छे हम बोलते हैं कि हम अच्छा ही फील कर रहे हैं, है ना? अभी ये सवाल मैंने कम से कम 15 से 20 बार ही पूछा और सिर्फ यही जवाब मिला कि हम अच्छे हैं। सब मानते हैं यही जवाब मिला हमको, यस।
1: यस मैम,
2: यस मैम,
0: तो
2: यस
0: आज
2: मैम।
0: इसी चीज पे बात करेंगे जिस पे मैम ने कल छोड़ा था। मैम ने कल अपने सेशन में 10 E's की बात करी थी। जो लोग इस सेशन में थे कल, हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैम ने बताया था कि हम किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे, इन डेप्थ हम जानना चाहेंगे हर एक चीज का मतलब क्या है हमारी जिंदगी से। ये जो सेशंस हैं इसमें हम कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ सीख नहीं रहे, बस कोशिश ये है कि अपने आप को थोड़ा बेहतर हम पहचान सके और थोड़ी जो हमारी शक्तियां हैं, जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम उसको और पॉलिश कर सके, ताकि हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके, सोशली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली। क्योंकि सभी यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में या तो कुछ कर रहे हैं या तो कुछ करना चाहते हैं। जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी राह ढूंढ रहे हैं। सही बात है, या कोई और भी जुड़े हैं किसी और रीजन से? सही
2: सही बात है मैम, बिल्कुल।
0: बात। चुप तो रह नहीं सकते ना, मैं पांच बार बार पूछती रहूंगी ताकि खुद देखू सो तो नहीं गया कोई, है ना? तो आज का हमारा ये 40-45 मिनट होंगे, हम उस चीज पे बात करेंगे जो पहला ई था। पहला ई क्या था? किसी ने सुना था ना कल, सबने 10 E नोट किए होंगे। पहला ई क्या था बता सकता है कोई?
1: एम्पावर
0: पावर ऑफ व्हाट?
1: मैम, इमोशनल स्ट्रेंथ।
0: एब्सोल्युटली। मैं तब से यही बात कर रही हूँ कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हम कैसा फील करते हैं, हमारी जिंदगी में इमोशंस क्या रोल फील करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। हम सुबह उठने से लेके जब तक सोने जाते हैं और सोने के बाद भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे सपनों में भी हमारे इमोशंस प्ले करते हैं, हाँ कि ना? अगर आप उदास हैं, अगर आप दुखी हैं और उस फॉर्म में हम सो जाते हैं, तो हमारे सपने भी हमें उसी तरीके के आते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? अगर हम खुश हैं, हमारा दिन अच्छा बीता है, हमने जो चाहा था हमें मिला है, या जो हम अचीव करना चाहते थे, अच्छा सा परिवार भी सुखी है, तो हम अच्छी नींद अगर सोते हैं तो हमें सपने भी अच्छे आते हैं, ऐसा होता है? तो इसका ये मतलब है कि इमोशंस का रोल हमारी जिंदगी में सबसे बढ़ के है। जितना जरूरी खाना पीना, अपने कपड़े, हमारे रहन सहन, हमें अपने फिजिकल नीड्स, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं उनको पहचानना है, उतना ही या शायद कभी कभी उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें हमारी इमोशनल नीड्स को पहचानना। मुझे कोई बता सकता है कि कितने इमोशंस हैं, ह्यूमन एक इंसान में कितने इमोशंस हैं, आपको क्या पता है इस बारे में? कोई गूगल नहीं करेगा इस वक्त, ये नहीं कि जो लोग स्क्रीन पे नहीं है आप गूगल करना शुरू, गूगल में सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप सच्चे हैं तो प्लीज गूगल मत करिए, क्योंकि सबकी स्क्रीन ऑन नहीं है। आप, ये कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं, बस आप अपनी समझ से जितना हम पढ़े हैं, कोई यहाँ पे 20 साल का है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50 साल का है, इन 50, 20, 30 सालों में आपने कितने इमोशंस महसूस करे होंगे, कोई भी बोल सकता है। और जो नहीं बोल रहे मैं इनकरेज करूंगी वो भी बोले, क्योंकि यहाँ कोई गलत और सही जवाब नहीं है। कितने
2: मैम बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लाइक खुशी
0: होते
2: हो,
0: हैं? 5, 6। खुशी होती है, और बताइए। हेलो,
2: जैसा फील कर रहे हैं वैसा इमोशनल हो जाते हैं हम,
0: जैसे कि दुखी हो गए, खुश हो
2: जैसे
0: गया, गुस्सा
2: हम
0: हो
2: गुस्सा आ
0: गया।
2: जाते हैं, कभी कभी अंदर से
0: पांच,
2: नाराजगी होती है, बोल नहीं पाते हैं तो
0: छह,
2: वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी कभी
0: सात,
2: कभी
0: खुश,
2: देखिए भी होता है।
0: 8, 8 इमोशंस हो गए, तो बिल्कुल ठीक। 7 या 8 कोर इमोशंस होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमें रूल करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, होस्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन प्लीज। तो अब कायदे से तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन ही नहीं अलाउ हो रही आज शेयर करने के लिए, है ना? मेरा इमोशन इस वक्त क्या होना चाहिए, मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई और होस्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहे स्क्रीन शेयर करने को, या मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए कि अब मैं आगे क्या बोलूंगी, मैंने तो स्क्रीन से देख के पढ़ना था और अब तो मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मैं आगे क्या बोलूंगी, लेकिन मैं फोन करके स्क्रीन शेयर के लिए बोलती हूँ। सो राहुल ने मुझे अलाउ करा है स्क्रीन शेयर करने के, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं,
2: यस मैम, यस
0: फुल स्क्रीन
2: मैम,
0: दिख रहा है। सो आज हम पहले ई पे बात करेंगे, जो मैम ने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम EQ भी बोलते हैं। जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ये एक प्रॉपर स्टडी है साइकोलॉजी में, इमोशनल क्वोशेंट इसको बोलते हैं, लेकिन हम इस पे बहुत ही बेसिक लेवल पे बातचीत करने जा रहे हैं। ये कोई साइकोलॉजी का सेशन नहीं है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट प्रैक्टिकली इस चीज के क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम इस पे आपस में बात करेंगे। मैं कुछ आपको सिखा नहीं सकती क्योंकि आपके इमोशंस आपके हैं, मेरे इमोशंस मेरे हैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि इमोशंस का रोल क्या है और इसको पहचानना और इसको मैनेज करना। हम इमोशंस चेंज तो कर नहीं सकते, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन गुस्से में क्या मैं किसी को थप्पड़ मार रही हूँ, क्या मैं किसी पे चीख चिल्ला के बात कर रही हूँ, या मैं समझ बूझ के, समझ से सिचुएशन को हैंडल करके बातचीत कर रहे हैं। और हर बार ही जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन होता है, हर एक सिचुएशन में हमारे इमोशन अलग होते हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा, हम ये सेशंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई हमारे एक ख्वाब है, हमारा एक गोल है लाइफ में, उसको हमें अटेन करना है, बट उस गोल को अचीव कैसे करना है। तो हमने सोचा चलो हम वो ईज की बात कर रहे हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस से बात करते हैं। जैसा कि सना ने बताया, हमारे कुछ 8 या 9 जो कोर इमोशंस हैं वो हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि हो गया हैप्पी हूँ, सैड हूँ, वरिड हूँ, नर्वस हूँ, गुस्से में आ गई मैं। ये सारे इंग्लिश के, मैंने जो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ 12-14 अलग अलग इमोशंस हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इसके हमारे को हर भाषा में कोई ना कोई इसका एक वर्ड जरूर मिल जाएगा। तो हम आमतौर पे, हमें लगता है कि हमारे करीबन 12 या 13 अलग अलग इमोशंस होते हैं जो हमारी लाइफ, कुछ इमोशंस नेगेटिव होते हैं और कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिहेवियर को दर्शाते हैं। अगर मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसको कहते ना, अरे इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इससे ज्यादा बात मत करो, ये तो एकदम बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी, इससे ज्यादा ज्यादा इससे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारा बिहेवियर हो गया है। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को बहुत उस पे, हमारे हमारे जो एक्शन है उसको हमारे को गाइड करता है। कुछ लोग होते हैं इससे कितना भी बात कर लो ना, इसे गुस्सा नहीं आता, अब ये तो कहना गलत है कि गुस्से वाला इंसान ठीक नहीं है और जो प्यार से बात कर रहा है वो ही ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है जो गुस्से वाला इंसान है वो ज्यादा समझदारी की बात कर रहा हो, लेकिन उसका बताने का तरीका ऐसा है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इमोशंस को दो भागों में बांटा है, आमतौर पे नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस बोला जाता है। नेगेटिव इमोशंस में गुस्सा आ गया, शर्मिंदा हूँ, उदास हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे नफरत है किसी से, मुझे अफसोस है, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव इमोशन में मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने ऊपर मुझे प्राइड है, यानी कि मुझे गुरूर है अपने काम पे, मुझे गर्व है अपने काम पे, मुझे आशा है, होप है, खुशी है, जॉय है, लव है, ये हमारे अच्छे इमोशंस होते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका यहाँ मैंने नाम दिया है रॉबर्ट, इन्होंने जब स्टडी किया, ये साइकोलॉजिस्ट माननीय साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, इन्होंने ये प्रूफ किया अपनी थ्योरी से कि जो ये 7 या 8 इमोशंस होते हैं ये करीबन 34,000 इमोशंस ह्यूमन बीइंग में कॉम्बिनेशन में पैदा कर सकते हैं। हमें ये सब जानने की जरूरत इस वक्त पे नहीं है, हम कोई स्टडी नहीं कर रहे, हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इमोशंस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे एक्शंस इन्हीं से दर्शाए जाते हैं। इसलिए हमें इनको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी और आप अपने इमोशंस मैनेज करना शुरू करोगे, लेकिन हम सबको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरा प्राइम इमोशन क्या है। कोई भी चीज अगर खराब होती है दिन भर में तो क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या मैं उदास रहती हूँ, या मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूँ उस सिचुएशन के, मैं कोशिश करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकूँ। मकसद यही है कि हम अपने इमोशंस को पहचाने, इसको हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में या फॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन जब हम उठते हैं, उठने से सोने तक, सोने के बाद भी हम इसी 34,000 के जो चक्र है इसमें फंसे रहते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहता है या किसी को कुछ लग रहा है कि गलत है या सही है? हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसकी फीलिंग कैसे होती है, हम इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, नर्वसनेस होती है हमें, जैसे एग्जाम देने जाना है और नेगेटिव इमोशन है, डर है हमारे अंदर, तो डर से क्या होगा, वरी होगी, नर्वसनेस होगी, तो क्या कोई फायदा होगा हमें एग्जाम देने में? नहीं। लेकिन अगर हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, हमने बार बार अपना रिविजन किया है, तो उस नेगेटिव इमोशन को हम पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं, वरी को हम कॉन्फिडेंस में लेके आ सकते हैं, हम वरी जो है हमारी उसको बदल के हम कॉन्फिडेंस में डाल सकते हैं। क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं पहले से तैयारी करो, आखिरी मोमेंट पे कुछ मत छोड़ो, लिखित में प्रैक्टिस करो, बार बार उसका रिविजन करो, ताकि जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो हमारा एक्शन क्या होगा कि हम आधा पेपर भूल जाएंगे, पेपर देख के डर जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा आंसर क्या लिखना है, हो सकता है गलत मलत लिखा है। लेकिन अगर हमने उस नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में अपने एक्शन से बदला हो तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए उसकी तैयारी हमने नहीं करी, तो भी चैप्टर्स तो हमने सारे पढ़े हैं, तो अपनी समझ बूझ से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ना कि रिएक्ट करेंगे। घर से निकलने से पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पे भी हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती, पूरा दिन खराब हो जाता है, या रास्ते में जा रहे हैं, आजकल बारिश का मौसम है, गाड़ी तेज निकली, कपड़े खराब हो गए, कीचड़ कीचड़ हो गया, गुस्सा आ गया, बस इतना अच्छे से मैं बन ठन के जा रही थी और सारा खराब हो गया, मेरी तो मीटिंग थी, मेरा मेरा तो अच्छा काम होने जा रहा था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हो गया, ये तो सिचुएशन सामने आ गई, अब ये मेरे ऊपर है, मैं अपना इमोशन कैसे संभालूंगी, गाड़ी वाला तो निकल गया, हो सकता है उसकी भी कोई इमरजेंसी हो, तो हम एम्पैथी में बदल सकते हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि भाई अब तो ये हो गया ना, अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ, अब अगर मेरे को अच्छे मीटिंग में जाना है तो मुझे सॉल्यूशन निकालना है ना उसका, हो सकता है मैं रुक के धो लूँ उसको, मेरे चलते चलते तक शायद वो सूख जाए, लेकिन उससे जो मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम करना है उस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम इमोशनल क्वोशन्ट बोलेंगे कि सिचुएशन आने के बावजूद हम उसको मैनेज कर पाए। ये कोई गुट्टी नहीं है कि हमने घोली पानी में डाली और पी गए, ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा। और अगर हम चाहेंगे तभी ये होगा। अगर हमें लगेगा कि इसके कोई फायदे हैं हमारी जिंदगी में, अगर हमें लगेगा कि नहीं जैसे हम हैं हम वैसे ही ठीक है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे हम आज तक रिएक्ट करते आए हैं ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लीडरशिप के सेशंस ले रहे हैं और अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू दे रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है और उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम को ना समझ के, प्रॉब्लम को पर्सनलाइज ना करके, सिचुएशनलाइज करके हमें उसके कैसे आंसर्स ढूंढने चाहिए। कई बार बहुत गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। किसी ने तेरे नाम पिक्चर देखी होगी तो देखा होगा ना सलमान खान उसमें वो 10 तक गिनती करता है। किसी ने देखी है वो मूवी? उसमें उस पिक्चर में सलमान खान को बहुत गुस्सा आता है, वो मारना मारता रहता है सबको, लेकिन बाद में शायद जो हीरोइन होती है वो बोलती है कि तुम 10 तक गिनती करो तो शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। देखी है किसी ने ये मूवी, या मैं ही सबसे पुरानी हूँ यहाँ पे? ठीक
2: मैंने देखी है मैम,
0: है मैम, सबने देखी है। तो वो क्यों करता है, उसको
2: मैम
0: उसने एक मैनेजमेंट टेक्निक बना ली कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में रिएक्ट कर जाता हूँ, तो रिएक्ट ना करके मैं कैसे उसे कंट्रोल करूँ और उसको मैं पॉजिटिव। मैंने ये एज ए एग्जाम्पल ही दिया है, लेकिन ये कोई सिंगल तरीका नहीं है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इमोशनल क्वोशंट के ऊपर हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारा मेटीरियल अवेलेबल है, जिनको कि लगता है उनकी जिंदगी में नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाएं और कुछ कुछ स्पीकर्स हैं या कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं, आप पढ़ने की कोशिश करिए उनको। वो आपको शायद एक बेहतर सोशली एंड पर्सनली वो आपको हेल्प करेगा। और जहां तक लीडरशिप की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी है। आपने मैम को कभी रेयरली गुस्से में देखा होगा, आपने हमेशा देखा है कि वो कितनी बारीकी से इमोशंस को, सिचुएशंस को सिचुएशन पे रखती हैं, पर्सनलाइज नहीं करती। ये बहुत मेहनत से आता है, बहुत एक्सपीरियंस से आता है, ओवरनाइट नहीं आ सकता। बट एज ए लीडर ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोल पे फोकस करना है, इमोशन पे नहीं। मेरे को कैसे बोल दिया इसने, अरे मैं तो ये हूं मैं तो वो हूं, मुझे बोल कैसे दिया इसने। बट वो आप उसे पर्सनलाइज ना लीजिए। अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियां अपनी वीकनेस को पहचानिए एज ए लीडर और उस पे वर्क करिए। अगेन आई वुड से इट इज अप टू अस कि हम इसकी वैल्यू पहचानना चाहते हैं कि नहीं पहचानना चाहते। इस स्लाइड में हम ये बोल रहे हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, इसके ऊपर हम कई चीजें बात कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव इमोशंस खराब होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा भी स्टडी किया है कि जरूरी नहीं है हर बार और हर नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए नेगेटिव ही रिजल्ट लेके आए। कभी कभी आपने सुना होगा ये इंसान ना स्ट्रेस में बड़ा अच्छा काम करता है, ऐसे सुना है किसी ने कि भाई इसको जब बिल्कुल सर पे आ जाती है ना तब इसकी, ये किसी की नहीं सुनता, ये देखना बहुत अच्छा काम करता था, क्योंकि उनको मैनेज करना आ गया है ये आर्ट कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। पूरा दिन कुछ, कई हमारी फ्रेंड ऐसी होती थी कुछ नहीं पढ़ती थी, सारा साल ऐसे ही इधर उधर डोलती रहते थे, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आता था तो दिन रात पढ़ाई करके, क्योंकि उनको डर था कि मैं पीछे ना रह जाऊं, तो उस डर को उन्होंने पॉजिटिव इमोशन बनाया और दिन रात पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट लेके पास हो गए, है ना। और कुछ लोग हैं पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बना लेते हैं, हाय मतलब प्रैक्टिस करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि डर आ गया है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसी को बैलेंस करने की जो कला है उसको इमोशनल क्वोशंट हम कहते हैं। तो हमें हर बार नहीं सोचना कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, कई बार ही नेगेटिव इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में हमें सीख देने के लिए, ये समझाने के लिए कि शायद हम कहीं गलत जा रहे हैं, शायद हमें जरूरत है अपने कोर्स करेक्शन की। कभी कभी फेलियर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब फेलियर ही नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम राह पे, किसी राह पे चल भी रहे हैं कि नहीं, ऐसे अंधाधुंध चले जा रहे हैं, एक रैट रेस में सब सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो हमने ईक्यू समझा, इमोशनल क्वोशंट समझा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो पजल है जो हम 10 E's की बात कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा हमारा गोल डिफाइन करने में, हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन को अब हम लिंक करेंगे कि हम गोल्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम हमने बात करी कि यहाँ सभी लोग किसी ना किसी गोल से या किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए ही यहाँ पे जुड़े हैं। किसी को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी को ग्रेजुएशन करना है, किसी को कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, नर्सिंग का करना है, पार्लर का करना है, स्टिचिंग का करना है, कोई एम्ब्रॉयडरी करके कुछ करना चाहता है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वो कुछ क्या है वो भी तो हमें डिफाइन करना है ना। लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस में घिरे रहेंगे, मेरे घर में तो बहुत परेशानी है, मेरे को तो निकलने नहीं दिया जाता, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अरे जाके भी मुझे काम करना पड़ता है, मुश्किल से 1 घंटा निकालती हूँ, अगर हम इन सब चीजों में फंसे रहेंगे तो हम लाइफ में गोल ही सेट नहीं कर पाएंगे, और अगर गोल ही सेट नहीं होगा तो हम उस राह पे चलेंगे कैसे। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन, कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम अपना गोल डिफाइन कर कैसे सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, ये स्लाइड हम आपसे शेयर कर देंगे। अगर हम इन 10 क्वेश्चन के आंसर करने शुरू करें तो हो सकता है हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये हम खुद से पहचान पाए। ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं ये वो ही डिफाइन करे, तभी वो लाइफ में खुश रहेंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि गोल उनका होना चाहिए। हम गाइड कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उस राह पे चलने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर तो हमें ही पता है ना, क्योंकि हम सच्चाई से आंसर देंगे इन इन सब क्वेश्चंस का। मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे खुश क्या करता है? किसी को सिलाई खुशी देती है। अभी हम पीछे किसी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला मुझे, मैं सीख तो सुइंग रही हूँ लेकिन मुझे बनना पार्लर का काम करने में बहुत मजा आता है, तो मैं स्विंग सीख के पार्लर भी करूंगी। ठीक है, आप स्विंग सीख लो, बट वो बहुत क्लियर थी कि मुझे ब्यूटी का काम करने में बहुत मजा आता है, बट हो सकता है उनके परिवार वाले इस वक्त अलाउ ना कर रहे हो या सीट खाली ना हो ब्यूटी एंड वेलनेस में, तो इसलिए उन्होंने अभी अपना ब्यूटी का बाद में रखा। तो उनको बहुत क्लियर था कि उनको मजा किस चीज में आता है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को एडवांटेजेस में कैसे बदल सकती हूँ, मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए फाइनेंसेस क्या क्या चाहिए होंगे और इन फाइनेंसेस को मैं अरेंज कैसे कर सकती हूँ। क्या कभी कभी हमारा गोल ऐसा होता है कि हमें लगता है ये फुलफिल नहीं हो सकता, कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन वो तो महंगी होती है, मैं पायलट बनना चाहती हूँ लेकिन वो तो बहुत महंगी होती है। उसको आप पहले डिफाइन करेंगे तभी तो, आप पहले पहचानेंगे तभी तो आप उसको ब्रेक डाउन करके उस लेवल तक लेके आएंगे कि उसे पूरा किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको पहचानना कि वो ऐसा काम क्या है जो आप रोज उठ के करीबन 30, 40, 50 साल तक आगे करना चाहते हैं। जो बच्चे आज 20 साल के हैं वो कम से कम 60 साल तक काम करेंगे, तो 20 से 60 साल की जो जर्नी, यानी कि 40 साल अगर आपको काम करना है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, आजकल तो 80, 90 साल के भी जो हमारे मेंटर्स हैं वो भी हमें गाइड करते हैं अभी तक, तो आप सोचिए काम करने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। तो अगर आपको 40, 50, 60 साल तक आगे काम करना है तो ऐसा क्या काम है कि रोज सुबह उठेंगे तो उतने ही खुशी से आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस रोज आएंगे, ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी का काम होगा तो चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज तो रोज आएंगे, क्योंकि चैलेंज के बिना तो आई थिंक लाइफ का सर्कल पूरा नहीं है। लेकिन उन चैलेंजेस को हम तभी एंजॉय करेंगे अगर काम हमारी पसंद का है। अगर आज वो काम हम नहीं कर सकते तो मैं उनकी तरफ आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, उनको भी हमें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। बट ज्यादातर लोग जो है ना, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, अगर मैं सिलाई सीखने गई और मेरी सिलाई सबसे अच्छी नहीं हुई तो शायद मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा, अगर मैंने अचार बनाना सीखा और मेरे अचार खराब हो गए तो हो सकता है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, हो सकता है मैंने बिजनेस करना शुरू किया और मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया तो मेरे पैसे तो खराब हो जाएंगे, तो मैं नहीं करूंगी। ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है, और फियर ऑफ फेलियर हम सब में ही है। ये लाइफ स्किल के सेशन देने से पहले मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर था, अगर लोगों को मेरे सेशन में नींद आने लग गई तो मैं क्या करूंगी, अगर उनको मेरे सेशन अच्छे नहीं लगे, अगर मेरी बातें समझ नहीं आई, अगर वो सिर्फ स्क्रीन ऑन करके बैठे रहे और मेरी बात का कोई मतलब नहीं समझे तो मुझे कैसे लगेगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर था मेरे अंदर, पर मैंने अपना काम पूरी जस्टिफिकेशन से किया, जो टॉपिक था उसे समझा, उसमें जितनी मेरी समझ थी उसके सारे जो पॉइंट्स थे मैंने लिखे। हो सकता है एक बच्चे को भी या एक बेनिफिशियरी को भी उससे फायदा हो जाए, तो वो जो फियर ऑफ फेलियर है ना मेरे, उससे मैं मोटिवेट हुई कि चलो एक शायद मेरी 4-5 घंटे की मेहनत से हो सकता है एक इंसान को कुछ मोटिवेशन मिल जाए और वो अपने इमोशंस को पॉजिटिव की तरफ मोड़ना चाहे और हो सकता है वो अपना गोल डिफाइन करने में सक्षम हो सके। तो इसलिए फिर वो फियर ऑफ फेलियर को मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो मुझे अच्छे से करना है, फियर ऑफ फेलियर से उसको बांध के नहीं रहना। बट हम सभी आगे बढ़ने से डरते हैं, कुछ नया काम करने को बोलो तो हमें डर लगता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, हमारे ऊपर हमारे लिए ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। सो नेवर बी शाय, नेवर बी अफ्रेड, मतलब कभी डरिए मत कि हम हार जाएंगे, हमें हमें लोग हंसेंगे, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। फेल होंगे ही होंगे, आप कितनी बड़ी कंपनी के लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, हमारी लाइब्रेरी में इतनी बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा। बड़ी कंपनी उठा लीजिए जिसके जो बायोग्राफी है उसमें ये नहीं लिखा होगा, ये ऑटोबायोग्राफी में, कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ या मैं कभी फेल ही नहीं हुई। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ कदम तो गलत हुए ही होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बन गए और एक छोटी सी गलती से भी वापस नीचे आ गए। ऐसे बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं कि कैसे बड़े बड़े एम्पायर्स जो हैं वो नीचे आ गए। तो फेलियर तो पार्ट ऑफ सक्सेस है ही, अगर आप सक्सेस का कर्व पढ़ेंगे तो सक्सेस में फेलियर कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन क्या हम उसे डर के रुक जाए, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको डर के रुकना है तो आप डर के रुकिए, बट अगर आपने हमारे सेशन ज्वाइन किया है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप फियर ऑफ फेलियर से रुक जाएं, थम जाएं। कोशिश करिए उसको आइडेंटिफाई करें, उन जो फेलियर्स हो सकते हैं पहले से उसकी तैयारी करके हम चले आगे। रास्ते में अगर रुकावटें आएंगी तो उसको मैनेज करना हमें सीखना है। आप जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं, मैम ने भी सबको बताया, एक डायरी जरूर मेंटेन करिए, जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं। हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में अगर तोड़ेंगे, यानी कि हमें एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं अपनी बुटीक खोल लूंगी, तो उसको मुझे ये स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बुटीक खोलूंगी तो आज से 3 महीने तक तो पहले मैं बेसिक स्टिचिंग सीखूंगी। बेसिक स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे 10 या 15 लोगों के फ्री में बनाने पड़ेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है। हो सकता है मुझे पैसे मिले उस चीज के, हो सकता है मुझे मेरे मुंह पे आके फेंक दे कि ये क्या क्वालिटी तुमने दिया है। क्या मैं रुक जाऊंगी तब, ये आपकी मर्जी है। अगर आप सीख के आप बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं दोबारा ठीक करके देती हूँ, मैं इसके कोई पैसे भी नहीं दूंगी, ये आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा ही करिए। लेकिन अपने लक्ष्य को ब्रेक करिए कि अगर 1 साल में बुटीक खोलना है तो पहले 3 साल में मेरे को बेसिक स्टिचिंग सीखनी है। अब मैं बेसिक स्टिचिंग पे करके सीख रही हूँ कि रीड के सेंटर पे जाके सीख रही हूँ, जहाँ पे मैं सेफ भी हूँ, मुझे अच्छे टीचर मिले हैं। बेसिक के बाद मैंने 3 मंथ्स का एडवांस स्टिचिंग लिया, उसके बाद मैंने छोटा बुटीक खोला, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बड़ा बुटीक खोला। 1 साल में नहीं खोल पाई, हो सकता है 1.5 साल में खोला। अपने गोल को रीएडजस्ट करिए। तो मेरा मतलब यह है कि अपने गोल को पहले डिफाइन करिए और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, और हमेशा उसे रिविजिट करिए कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई कि नहीं कर पाई। जहां फेलियर हुआ उस फेलियर को एक्सेप्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए, उसे कुछ सीखिए। एवरी टाइम वी हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, फ्रॉम द ऑब्स्टिकल्स, फ्रॉम द रोड ब्लॉक्स। जो भी बीच में रोड ब्लॉक्स आए हैं, अनहैप्पी सिचुएशंस आई हैं, कोविड आ गया, कोई प्रॉब्लम और आ गई, तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए हमें उसको पॉजिटिव में ही बदलना है। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल की बात करें, बार बार इमोशन आ जाते हैं कि हमें घबराना नहीं है, उनको नेगेटिव इमोशंस में नहीं बदलना है। सॉरी मैंने टाइम भी नहीं देखा। यहाँ पे कुछ किताबें हैं जरूरी नहीं है ये सारी किताबें हमारे लाइब्रेरी में हो, लेकिन इसके कई कई जो एक्सर्ट्स हैं, यानी कि जो जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं, वो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। बाकी किस लैंग्वेजेस में है मैं रिसर्च कर सकती हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हम चाहें तो उनको पढ़ के हम और अच्छे से अपना गोल डिफाइन करके आगे खुद से बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट नॉट टू फॉलो योर ड्रीम्स, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, कि अपना गोल आइडेंटिफाई करिए और अपने पॉजिटिव इमोशंस को पहचानिए। नेगेटिव इमोशंस को हम किस तरीके से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेशन ऑन द 10 ईज। जो पहला ई था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का, आज हमने वो कवर किया है। अगले सेशन में मैम का लीडरशिप का सेशन होगा, सेकेंड ई पे हम उसके बाद बात करेंगे, राइट? अब इसके साथ कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है या कोई गोल, या अब जिसने डायरी रखनी शुरू करी है कोई फीडबैक देना चाहता है? बिकॉज क्या है ना, हम सुन के बंद कर देंगे ये जूम सेशन और कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहां थे वहीं पे ही रहेंगे। इसलिए वी शुड बी एनकरेजिंग ईच अदर टू इंटरैक्ट। सो आई एम स्टॉपिंग नाउ एंड आई एनकरेज एवरीबडी, आपके साथ बेनिफिशरीज भी अगर हैं तो उनको भी एनकरेज करिए कि कुछ इस इन सेशन से अगर समझ में आया या कुछ सीखा, और मुझे भी फीडबैक दीजिए कि अगर ये सेशन बहुत वर्बोस था, यानी कि वर्ड्स बहुत ज्यादा थे, तो मैं इसे और कम और सरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी।
3: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली.
0: हेलो संगीता जी।
3: यस मैम, जो आपने अभी इमोशंस के बारे में बताया, आई डोंट रिमेम्बर कोविड टाइम पे मैंने एक चैप्टर था घृणा का महत्व, हिंदी में किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना था. दैट वाज अ डिग्री स्टूडेंट, मुझे याद नहीं है. बट वो इमोशंस जो हमारा हेट्रेड इमोशंस है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रही थी, उसको बहुत डिटेलली उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम घृणा नहीं करेंगे तो जो बुराई है उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं तो उससे डर के, अरे लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, इससे डर के गलत काम नहीं करेंगे. वो पूरा बहुत अच्छे से था. तो आप जब समझा रहे थे तो वो चैप्टर में रिकॉल कर रही थी मैम.
0: एब्सोल्युटली राइट। हम कभी कभी इतना डर जाते हैं नेगेटिव इमोशन से ना। जब मैंने पूछा, मैं 100% ये श्योर हूँ कि आज जो 60 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी अच्छा नहीं फील कर रहे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें परेशान कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी परेशानी। सबको ये टाइम सूट करता है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोग अपना वक्त निकाल के एग्जैक्टली 3 बजे आ गए और वो अच्छा भी फील कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हम नहीं बोला नहीं, क्योंकि हम डरते हैं कि हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही सोचा जाएगा। भाई मेरे को नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैंने सुबह खाना नहीं खाया वक्त से, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मेरा नहीं मन है सेशन अटेंड करने का, मेरा नहीं मन है वीडियो पे आने का, मेरा नहीं मन है कुछ बोलने का। तो वो हमारा मन है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। मैं आपकी जिंदगी में आके उसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये हम पे है कि हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। ये हम पे है कि दिन भर में जो हमारे सामने आता है हम उसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सब हमारे हाथ में, क्योंकि ये हमारी लाइफ है।
3: नाउ फॉर दिस आंसर मैम, कि आप कैसी हैं? मैं खुश हूँ मैम.
0: आप खुश हैं? अच्छा, वेरी गुड। और आप खुश हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पॉजिटिव इमोशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है, मतलब इमोशन से हमारे एक्शन होते हैं। मैं जब ये सेशन बना रही थी तो मैंने कई वीडियोस और कई साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज थी उनको पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मेरे ब्रदर ने तो इस सब्जेक्ट पे पीएचडी, डबल पीएचडी करी है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे। तो वो अभी भी पढ़ रहा है, उसको करीबन 12 साल हो गए हैं ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए, और अभी भी वो पढ़ रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो हम आधे घंटे के सेशन में तो इस चीज पे बात भी नहीं कर सकते, और मैं तो इस चीज पे बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो जब हम इन चीजों पे मैं पढ़ रही थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई कि जो पॉजिटिव इमोशन है इमोशन जो बना है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेराइवेटिव है. इंग्लिश का जो वर्ड है इमोशन, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेरिवेटिव है. इमोशन यानी कि जो हम फील कर रहे हैं उससे हमारा मोशन होगा, उससे हमारा रिस्पॉन्स होगा. जो हमारा इमोशन है उससे हम रिस्पॉन्ड करेंगे. हम खुश हैं तो सब खुश हो जाएगा, हमारे आसपास के लोग खुश होंगे, हम खुशियां फैलाएंगे. अगर हम उदास हैं, गुस्सा है, अब ये इमोशन भी जरूरी तो है हमारे लिए, ये हमारी लाइफ से कोई ले नहीं सकता. तो अगर मैं चिड़चिड़े मूड में हूँ तो अगर कोई बच्चा आके, मेरा बेटा आके मुझे हग भी करता है, मेरे पीछे डर, मेरे को नहीं करना, मेरा मूड नहीं आता, तो उस बेचारे की क्या गलती है? दिन तो मेरा खराब गया है और चिड़चिड़ी तो मैं हूँ, इमोशन तो मेरा खराब था, मैंने अपना खराब इमोशन उसको भी पास ऑन कर. ऐसा ही सेम रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो इमोशन से ही पैदा होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बने ही इमोशन पे हैं. चाहे वो प्रोफेशनल इमोशन है, सोशल इमोशन है, फैमिली इमोशन है, घर के हैं, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, मदर डॉटर, मदर सन, जितने हैं रिलेशनशिप वो इमोशन पे ही बने. तो इसकी अहमियत तो हम हटा नहीं सकते, इसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं. आपके लिए मैं नहीं मैनेज कर सकती, आप मेरे लिए नहीं मैनेज कर सकते. अपने अपने पहचान के और अपने अपने मैनेज करने. मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोग प्लीज कुछ शेयर करिए. हेलो
3: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
0: स्वाति जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं?
3: मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे?
0: मैं अच्छी हूँ, मुझे खुशी हो रही है. इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठा किया था पिछले 1.5 दिन में, मैंने सारा शेयर कर दिया. कुछ कुछ चीजें बच गई हैं, मैंने बहुत सारा पढ़ा था लेकिन फिर भी काफी कुछ शेयर कर दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा है.
3: यस मैम, काफी टाइम ना, मतलब कुछ चीजों पे ऐसी धूल सी जम जाती है, तो वो सेशन के जरिए आगे चल के आता है हमारे सामने, और फिर से लगता है कि नहीं, हमें ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। और काफी टाइम पे तो मैम ऐसे होता है कि निगेटिव जो चीजें हमारे साथ घटती है सुबह से लेकर शाम तक, वो ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में घूमती रहती है, और जो कुछ अच्छी बातें होती है ना, तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। तो ऐसा कुछ बताइए कि हम निगेटिव चीजों के जल्दी से भूल जाए।
0: ये जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे, ये सबसे पहले उठ के आया था कि नेगेटिव इमोशंस जो है ना वो सबसे ज्यादा भारी हो जाते हैं. हो सकता है नेगेटिव इमोशन एक होगा, वो इमोशन या सिचुएशन हुई, मान लीजिए लड़ाई हो गई सुबह सुबह किसी से, तो वो हमारा इमोशन नेगेटिव हो गया, या कोई बीमार हो गया घर में तो नेगेटिव इमोशन हो गया हमारा. अब वो नेगेटिव इमोशन पूरा दिन हमारे साथ रहता है, पूरा दिन, पूरे दिन में चाहे 100 से भी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस आए हों, लेकिन जो उसका भार है, जो उसका बोझ है यहाँ पीछे दिमाग में, वो घर कर जाता है, उसको हम जाने ही नहीं दे सकते. अब ये डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने नेगेटिव इमोशन पे बहुत ज्यादा स्टडी करी है. इस पे आप काउंसलर्स जो होते हैं, जो आपने सुना होगा कि काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है. हमारे यहाँ तो इंडिया में मेंटल इलनेस को तो मतलब इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसकी इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करी जाती, लेकिन बाहरी देशों में ये एक कॉमन टॉपिक है. अगर मुझे डिप्रेशन है या मुझे दुख है या मैं नेगेटिव इमोशन से ही घिरे रहती हूँ, तो हम वो लोग डरते नहीं हैं अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में या फिर ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाने में जिनसे वो अपनी बात कर सके. एक एक घंटे का सेशन होता है और वो उनसे बात करते हैं. हम यहाँ पे अपनी सहेलियों से बात करके मन हल्का कर लेते हैं. ऐसा होता है, एक सहेली सबकी होती है जिससे इतना पूरे दिन की भड़ास निकाल दो, ऐसा ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अब ठीक लग रहा है, अब मुझे ठीक लग रहा है, अब ठीक. तो ये एक्चुअली हम रियलाइज नहीं करते, ये हमारा नेगेटिव इमोशन मैनेजमेंट का तरीका बन गया है. कुछ कुछ लोग होते हैं अपनी मदर से बात करके बहुत खुश होते हैं, या कुछ अपनी डॉटर से, क्योंकि वो एक ऐसा बॉन्ड है कि कोई चेंज नहीं कर सकता. तो हम किसी से बात कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. मैंने कई लोगों को देखा है कि वो भगवान की मूर्ति से बात करते हैं, कि भाई हम किसी से नहीं बात कर सकते. कभी कभी ना भगवान के पास बैठ के वो अपने मन की पूरी बात कह देते हैं कि अब मैंने आपको बता दिया, अब आप देखो कि क्या हो सकता है. वो और कुछ नहीं है, वो अपने दिल की जो बातें हैं वो बाहर निकाल रहे हैं. बाहर निकाल रहे मतलब उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये चीजें मुझे तकलीफ दे रही है. जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोझ कम होने लगता है. हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कई बार कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. वो एक सिचुएशन प्रॉब्लम है, ये क्या मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती? अगर मैं उसे नहीं सॉल्व कर सकती तो वैसे भी दुखी होने का मेरा कोई रीजन ही नहीं। अगर मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ तो मुझे ये देखना है कि परेशान होने की बजाय मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं अपने दिन भर की, जो भी दिन भर की परेशानियां हैं, अच्छी चीजें उसमें जरूर लिखते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो सीक्रेट डायरी मेंटेन करते हैं, वो किसी को भी पता नहीं होता, सीक्रेट डायरी होती है, आज के दिन की ये 4 बातें हैं वो उसमें मैंने लिख दी, और मेरी सीक्रेट डायरी सिर्फ मेरे पास रहेगी। ये भी एक तरीका होता है कुछ लोगों का। अब ये तरीका आपका क्या है ये तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, राइट। लेकिन नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देना एक वक्त से ज्यादा वो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ चारों को खराब कर सकता है। फिजिकल हेल्थ कैसे? आप परेशान रहेंगे, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, सिर में दर्द, चक्कर आना, डिप्रेशन होना। फिजिकल कैसे? भूख नहीं लगेगी आपको, गुस्से में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तो फिजिकल हेल्थ वैसे ही खराब हो जाएगी। इमोशनल हेल्थ कैसे? सब आप दुखी हैं, आपके बच्चे दुखी रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपके हस्बैंड, आपकी मदर सब आपसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा दुखी, क्यों तो दुखी रहती है, पता नहीं क्या है, बोलती भी नहीं है क्या प्रॉब्लम है ना। प्रोफेशनल कैसे? आप अपने काम पे ही ध्यान नहीं दे पाएंगे, अब आपके इमोशंस तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन उसे आइडेंटिटी उसको पहले अपनाना बहुत जरूरी है कि, और ये मानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ शायद कि जिसको इतनी बड़ी दिक्कत है, और भी लोग हैं दुनिया में जो शायद इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतों से, इसमें अमीर गरीब का कोई वो नहीं है। हो सकता है बहुत अमीर लोग हैं, पैसा भरपूर है, फिर भी नेगेटिव इमोशन बहुत सारे हैं। और एक इंसान है जो अपना काम करता है, सिंपल लिविंग है, रोजी रोटी है, घर परिवार है, और आप देखेंगे वो इतना खुश है कि पूछे ही मत। वो कोई मेटीरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं कभी कभी भी बंधी होती। नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस सारे हमारे अंदर हैं, कितनी तवज्जो हमें किसको कब किस वक्त पे देनी है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी, जैसा कि संगीता जी ने भी कहा कि जो नेगेटिव इमोशन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टू कम बैक टू से कि पॉजिटिव इमोशन की महत्व क्या है हमारी लाइफ में, उनसे दोस्ती करने के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होना भी बहुत जरूरी है।
3: एंड वन मोर थिंग मैम, मेरे साथ तो ऐसे होता है मोस्टली, आई थिंक सबके साथ, जब हम हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से जब दुख है किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो कम हो जाता है, एंड हैप्पीनेस वो डबल हो जाती है व्हेन आई शेयर विद समबडी एल्स।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये फॉर्मूला भी है कहीं पे, मैंने ये भी पढ़ा था, ऐसा हैप्पीनेस का फॉर्मूला एंड जो नेगेटिव एंगर का जो फॉर्मूला है, बिल्कुल आपने जो बोला ऐसा है, एक उन्होंने डिराइव करके लिखा हुआ। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ साइकोलॉजी में कि वो फॉर्मूला डिराइव कर दूं, लेकिन आई रेड अबाउट इट।
3: यस मैम, जब गुस्सा होता है बर्स्ट हो जाता है तो वो अपने आप कम हो जाता है, और दुख रहते हैं किसी से बोल के रो देते हैं तो भी वो इमोशन बस कम हो जाता है, और हैप्पीनेस किसी से
0: लेकिन
3: भी कितना भी शेयर करो डबल ट्रिपल होता जाता है।
0: हमें ये ध्यान रखना है कि गुस्से में हम गुस्सा कर किस पे रहे हैं, कहीं गुस्से में हम ऐसा गुस्सा किसी पे ना कर दें कि जो हमारा पूरा रिलेशनशिप उससे खराब है। उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, उस पॉइंट पे, उस ट्रिगर पॉइंट पे हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन यानी कि हमारा एक्शन क्या है, उसको पहला ई जो मैम ने कल बताया था, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशन्ट, उस बैलेंस को, कि नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन का जो वो बैलेंस है, कहाँ भाई नेगेटिव इमोशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा, या तो मैं रो के निकालूंगी, गुस्सा करके निकालूंगी, भड़कूंगी किसी पे, या लिख के, या किसी को बोल के, या किसी और तरीके से नेगेटिव इमोशन तो निकलेगा ही निकलेगा। नहीं निकलेगा तो वो प्रेशर कुकर हो जाएगा, फट जाएगा किसी दिन, तो उसको निकलना भी जरूरी है। बट उसको मैनेज कैसे करेंगे, और मैनेज करने का तरीका हम सबका अपना है, और उसका रिएक्शन का एक्शन भी हमारा अपना है, और उसका रिजल्ट भी हमारा अपना है, राइट। बट इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे को गोल डिफाइन करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव की तरफ कैसे लेके जाना है। तो आज हमने दो चीजों को रिलेट करा है, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, हम दोनों चीजों को अलग अलग भी समझ सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और गोल सेटिंग, कि हमें लाइफ में गोल कैसे सेट करना चाहिए।
2: हेलो मैम,
0: हाँ जी ज्योत्सना जी,
2: मुझे भी आज ये फील हुआ है कि मैं भी अपना जो नेगेटिव इमोशन है वो मतलब कैसे यूटिलाइज करती थी। आज तक पहले मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, जैसे मैं मुझे कभी बहुत ज्यादा किसी से लड़ाई हुई, गुस्सा हुआ तो मैं बहुत ज्यादा काम करती थी, जितने मेरे पेंडिंग्स काम होते थे मैं सारे कंप्लीट कर देती थी उस दिन, जबकि मैं वैसे भी बहुत अच्छा करती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे किसी से गुस्सा हो गया या किसी से फाइट हो गई या कोई बात हुई, तो मैंने उस दिन सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिए। तो मुझे आज पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जब मैं गुस्से में आती थी तो मैं ज्यादा काम करती थी। तो अब मुझे ये चीज और याद है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि मुझे अपने नेगेटिव इमोशन को और कैसे बैलेंस करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मैम जो लोग बहुत डरते हैं कुछ भी मतलब करने से पहले, करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और करने के बाद उन्हें ये डर लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे। वैसे तो ये डर सबके अंदर होता है,
1: हम सब
2: लेकिन सबके अंदर होता है, वन टू ऑल, अपने अपने लेवल पे मैम सबके अंदर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। पर ठीक है, आज हमें और गाइडेंस मिली है कि वो अपना स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन।
0: मैम,
2: थैंक्स टू यू
0: मेरी
2: एंड
0: मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर जब गुस्से में आती थी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो जिस दिन उसका खाना बहुत अच्छा बना होता था ना, तो हम उसको कहते हैं आज मम्मा गुस्से में थी क्या। ऐसा बहुत होता है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को भी पॉजिटिव में चेंज कर पाते, हमें पता नहीं होता लेकिन हम वो
2: जी
0: कर सकते हैं।
2: मैम जी।
0: हाँ जी, तुषार आप बोलना चाहते।
4: एक साल पहले आप हमारे जो कारेगांव का सेंटर था पुणे में, वहाँ आप चिंता मैम आई थी, तब आपसे जो बात हुई थी मैम, उससे जो पॉजिटिव वाइब्स हमें मिले थे, वो आज भी हमें काम करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। हर हमारा जो सेंटर है सर मैम, यहाँ पर इंडस्ट्री लेबर और माइन वर्कर्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो उन बच्चों में जो पुअर बैकग्राउंड होते हैं उनका कोई भी एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती उनके घर वालों को, तो यहाँ पर काम करने पर जो बच्चे आते हैं, तो उनको नहीं क्या पुराने जमाने में जो टीचर थे हाथ में लाठी लेकर बड़ा बड़ा चश्मा पहनते थे और गुस्से से बोलते थे, ऐसा ऐसा कंसेप्ट उनके दिमाग में बैठ गया था। लेकिन जब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड के साथ, तो जो तारे जमीन पर में जो आमिर खान सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, कि ऐसा भी टीचर होता है जो बच्चों के साथ उनका उनके जैसा रहकर काम करता है, और जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डरते हैं सभी चीजों से, नई चीजें करने में, तो उनके साथ वैसा रहकर इनकरेज करके उनके अंदर भी जो क्वालिटी होती है वो बाहर निकलने का काम आपके जो सेशंस होते हैं मैम, उससे हमें इनकरेजमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, आप जो मोटिवेट करते हैं हमें और गाइडेड करते हैं, इसलिए
0: थैंक यू तुषार। हमने ये देखा है कई बार बच्चे डरते हैं साइकिल चलाने से क्योंकि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, लेकिन पेरेंट्स जो है वो छोड़ तो नहीं देते ना, वो फिर भी इनकरेज करते नहीं आप साइकिल चलाओ, गिरोगे तो क्या हुआ, कोई वहां पे कुछ बांध देता, कपड़ा बांध देता, अच्छा घुटने नहीं छिलेंगे, कभी हेलमेट पहना देते, अच्छा चोट नहीं लगेगी, तो हम उसको मैनेज करने का तरीका, लेकिन हम रुक तो नहीं जाते ना। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम फियर ऑफ फेलियर नहीं लेके आएंगे, फेल तो होना ही है, लेकिन फियर ऑफ पहले से ही क्यों मान ले कि हम फेल होंगे। अभी पीछे कोई बातचीत चल रही थी तो हमने ये सुना था कि हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं क्योंकि अर्थ की जो रेडिएशन है वो खींच रही है हमको अपनी तरफ, ग्रेविटी खींचती है ना, तभी तो हम उड़ते नहीं रहते, हम अर्थ से चिपक के रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। तो हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और जो हम सोचते हैं पावर ऑफ माइंड, वो बात कभी कभी सच हो जाती है। हम कहते हैं ना कि हम आज ये सोच ही रहे थे, अरे और वो हो ही गया, क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी में या कई कई किताबों में आप देखोगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हम सोचते हैं वो हम खींचते हैं अपनी तरफ, वो रेडिएशंस हमारी तरफ आती हैं और हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पहले ही सोच लेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो वैसे ही नहीं कर पाओगे आप तो, है ना आप, मैं, कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, मैम ने मुझे बताया कि हम इस तरीके से करते हैं, हमने कल पढ़ाई करी थोड़ा सा तो कुछ मैं निकाल के ला पाई, मैं नहीं कह रही कि मैं एक्सपर्ट हो गई इस टॉपिक में, बट मुझे भी नहीं पता था कि 34,000 इमोशंस होते हैं हमारे अंदर। मुझे लगता था गुस्सा, हंसी, खुशी, यही 4, 5, 8, 10 इमोशन होते हैं, पर सोचो मुझे भी कुछ पता चला, मैं अब और पढ़ूंगी इस बारे में, हो सकता है मैं भी जान पाऊं कि मैं हमेशा हंसती तो नहीं रहती, गुस्सा मुझे भी आता है, लड़ती मैं भी हूँ, बट इन चीजों का हमारी जिंदगी पे क्या असर हो रहा है, वो चीज समझना बहुत जरूरी। तो आज पहला ई हम समझ के गए हैं, और अगर आप चाहें तो आज से लेके अगले सेशन तक आप ये लिख सकते हैं कि हर दिन के एंड सुबह आप कैसा फील करते थे और शाम को आप कैसा फील करते थे। जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं हम लिखते हैं। हम भी देखेंगे 34,000 इमोशन होते कैसे हैं, है ना। सो थैंक यू एवरीबॉडी मेरी बहुत सारी बातें सुनने के लिए। आई विश यू अ वेरी गुड वीकेंड, और आप एंजॉय करिए, अच्छा काम करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए। ये सेशन जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं करिए। हाँ
5: मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, 2 मिनट।
0: जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए सुमन जी।
5: जी मैम, सबसे पहले तो थैंक यू रीड इंडिया का और आप सबका, क्योंकि जो रीड से जुड़ जाता है तो मुझे नहीं लगता वो उसमें नेगेटिविटी इतनी रहती है, और हर वक्त रीड कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हम लोगों के साथ तैयार खड़ा रहता है, और इतना कुछ सिखाया कि कभी कुछ उदासी हो जाती है, कुछ नेगेटिविटी होती है हमारे साथ, तो हम उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी, मुझे नहीं पता ये क्या है, कि जब मैं कभी उदास होती हूँ, कभी नेगेटिविटी मेरे अंदर आती है, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ तो उस चीज में मुझे हैप्पीनेस दिखाई देने लग जाती है अपनी आप ऑटोमेटिक ही। और ये सब शायद मैंने रीड से ही सीखा है और आप लोगों से सीखा है। थैंक यू मैम इसके लिए।
0: थैंक यू सुमन जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। चलिए अब वक्त हो गया, आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट काम करने होंगे, तो अब हम सेशन क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, बाय टू एवरीबॉडी।

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार। आज का हमारा जो सेशन है जिसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो एक तरह से जो पुलिस में जॉब्स होती हैं आपकी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। वैसे तो हमने इससे पहले डिफेंस का या और भी कई टाइप के जो गवर्नमेंट जॉब्स को हमने पहले भी कवर किया है, तो आज का जो सेशन है वो प्राइमरी पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें चाहे आपकी ए क्लास जॉब्स है आईपीएस की, चाहे आपकी इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की या कांस्टेबल की, तो हम उस तरह की जॉब्स के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो लेटेस्ट में रिसेंट में जहां जहां पर ये वैकेंसीज निकली हुई है तो उसमें ये देखेंगे भी उसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी हुई है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, तो वो सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब अभी से पहले अगर मैं सेशंस की बात करूं तो हम काफी बहुत टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने हर तरह की जो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। और ये सारा इंफॉर्मेशन आपको, अगर इतना सारा इंफॉर्मेशन अगर है आपके पास में अलग अलग कोर्सेज के बाद अलग अलग कोर्सेज के बारे में, तो आप अपना करियर एक तरह से चूज कर सकते हैं। अगर आप 10th में है, 12th में है या बीए बीकॉम बीएससी जो भी आप कर रहे हैं, तो आपकी बिल्कुल राइट एज है एक करियर ऑप्ट करने की। और करियर ऑप्ट करने से पहले अगर आपको अलग अलग चीजों के बारे में पता है, अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में पता है, रास्तों के बारे में पता है, तो आप अपनी मंजिल सेट कर सकते हैं भी आपको इस लाइन में जाना है, और उसके बाद फिर आप उसे अचीव भी कर सकते हैं। चलिए, हम आज के सेशन से स्टार्ट करेंगे जिसका हमारा टारगेट है स्टेट पुलिस जॉब्स। देखिए, जनरली क्या होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है। इसमें मतलब आपका हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल कम है, क्योंकि स्टेट का डिपार्टमेंट रहता है पुलिस डिपार्टमेंट, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उस स्टेट में वैकेंसीज आती है। जो आपके बड़े बड़े स्टेट्स हैं जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो वहां पर जब भी वैकेंसी आती है तो हजारों की क्वांटिटी में आती है, मतलब बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है, कंपटीशन भी उतना ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर वैसे तो देखिए आप मान के चलिए एम होता है सबका, ठीक है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की एक तरह से बड़ी प्रेस्टीजियस ही जॉब है, क्योंकि पावर तो है ही है इसमें, पावर के साथ साथ पैसा भी है, सैलरी भी आपकी ठीक ठाक होती है, और प्लस में आप हर तरह से मतलब अपने आप को एक पावरफुल फील करते हैं, ठीक है। और पुलिस में अगर आप हैं तो आसपास में भी आपकी एक टाइप से हम कह सकते हैं कि रिस्पेक्टफुल जॉब हो जाती है, तो बच्चों का एम होता है कि उन्हें पुलिस में जाना है। बट पुलिस में जाने के लिए हमें एक टाइप से जो फिजिकल फिटनेस आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप सब इंस्पेक्टर का

बैचलर डिग्री रहती है। आपको ध्यान हो मैंने स्टार्टिंग में आपका सेशन लिया था जिसमें आपको मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में बताया था कंप्लीट कि, और ये एक तरह से सिविल सर्विसेज का ही पार्ट होता है जो हमारा आईएएस का एग्जाम होता है, उसी में ही आपकी आईपीएस की सर्विसेज होती है, जो एक टाइप का कैडर होता है आईपीएस का, इंडियन पुलिस सर्विसेज का। तो आज के सेशन में उसमें मैं बात करूंगा पूरा। ऐसे ही असिस्टेंट कमिश्नर या डीएसपी होते हैं, देखिए जो डीएसपी होते हैं ये बेसिकली स्टेट वाइज वैकेंसीज आते हैं, मतलब जो आईपीएस है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। वही अगर हम डीएसपी की बात करें तो ये स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, क्योंकि जो स्टेट सिविल सर्विसेज है, जैसे आप हरियाणा में देखते हैं तो एचसीएस है, हरियाणा सिविल सर्विसेज है, ऐसी राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है आपका पीसीएस है, तो उसमें क्या होता है कि डीएसपी की वैकेंसी होती है जो एक तरह से आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, तो उसका भी पैटर्न ऑलमोस्ट आईएएस के पैटर्न का ही होता है, बट वो स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है आपकी। फिर सब इंस्पेक्टर, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और सबसे नीचे कांस्टेबल, ठीक है। तो जो कांस्टेबल होता है वो एक तरह से एंट्री पॉइंट है, अगर आप पुलिस में बिल्कुल एक टाइप से अगर आपकी भर्ती लोअर एंड से हुई है तो आप कांस्टेबल ज्वाइन करते हैं। और ये जितने भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो एएसआई की है, चाहे वो पुलिस हेड कांस्टेबल की है, चाहे वो कांस्टेबल की है, वो सारी आपकी स्टेट लेवल वैकेंसीज होती है, ठीक है। वो स्टेट लेवल आपके रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अब जो लोअर वैकेंसीज है, चाहे वो कांस्टेबल है चाहे पुलिस हेड कांस्टेबल है, तो 12th बेसिस पर होती है इनकी जॉब ज्यादातर, ठीक है। तो एज भी इनकी 25 ईयर तक होती है, अपर एज जो है 25 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरली स्टेट वाइज आती है वैकेंसी, तो साल दो साल में एक बार वैकेंसी जरूर आती है। जैसे अभी आपने देखा हो कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी कांस्टेबल की, 5000 प्लस वैकेंसी आई है, ठीक है। तो जब भी आती है काफी ज्यादा क्वांटिटी में आती है, साल दो साल में एक बार वैकेंसी आती है इनकी, ठीक है। उसके लिए 12th क्लास आपकी मिनिमम एज है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो आज के सेशन में हम इन सब पर्टिकुलर जॉब्स के बारे में बात करेंगे, पेपर में क्या क्या आता है इनकी, ठीक है, क्या पैटर्न होता है। तो सबसे टॉप पे जो पहले एक बार मैं इनके बारे में और आपको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे हम यहां पर अगर देखें, हाँ मतलब पुलिस में हेड कांस्टेबल से भी पोस्ट, बिल्कुल वो क्या रहता है, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट में जब भी वैकेंसीज आती हैं तो वैकेंसीज आपकी दो तरह से फिल की जाती हैं। एक तो वैकेंसी होती है जिसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, और सेकेंड वैकेंसी होती है जो आपकी प्रमोशनल होती है। जैसे मान लो 100 वैकेंसी अगर आई है तो 100 में से 60-70 वैकेंसी होती है जो डायरेक्टली एग्जाम से लिए जाते हैं बच्चे, और 20-30% ऐसा होता है जो एक तरह से प्रमोशनल होता है। तो दोनों तरीके से वैकेंसी आती हैं, ठीक है। तो ये हमारी अलग अलग पोस्ट है जो पुलिस डिपार्टमेंट में रहती है और जिसके बेसिस पे आप पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए जॉब कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात क्लियर है बेटे। सबसे लोअर पे पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी होती है, उसके बाद हेड कांस्टेबल है, फिर एएसआई है, फिर आपकी एसआई हो गया, फिर इंस्पेक्टर है, फिर आपका डीएसपी है, और सबसे ऊपर आपका एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब देखिए, जब हम एसपी की बात करते हैं, जिसके लिए हमारा जो कैडर होता है, जो ए क्लास आपकी सर्विस होती है, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, जिसे हम आईपीएस कहते हैं। आईपीएस आपका एक तरह से आपको सिविल सर्विसेज का पेपर देना होता है, आईएएस का एग्जाम आपको देना है। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसकी जो मिनिमम एज है 21 ईयर है, 21 ईयर की एज से आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, 32 ईयर तक आपका एज रहता है। और इसमें आपको जो एग्जाम रहता है उसमें 3 पार्ट होते हैं आपके। फर्स्ट पार्ट आपका प्रिलिमिनरी होता है, सेकेंड आपका मेन्स होता है, और उसके बाद फिर हमें इंटरव्यू अपियर करना रहता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती है आपकी ग्रेजुएशन। एक बात और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सिविल सर्विसेज का पेपर होता है उसमें ग्रेजुएशन में आपको कोई भी स्ट्रीम आपकी हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने बीए बीकॉम बीएससी किया हो, और उसके साथ साथ आपने मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपका बीए बीकॉम बीएससी में कितने मार्क्स है, वो कहीं मैटर नहीं करेगा। हाँ, ये है कि आप पास होने चाहिए उसके अंदर।
अब ये जो आईएएस का एग्जाम होता है, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, जनरली मई के मंथ में होता है। अभी आपने रिसेंट में

यू हैव हर्ड इनटू द न्यूज कि अभी 5 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, क्योंकि कोरोना के कारण मई का एग्जाम एक्सटेंड हो गया था, तो प्री का एग्जाम अभी अक्टूबर में हुआ है और फॉर्म जो निकलते हैं आपके फेब मार्च में फॉर्म निकलते हैं आईएएस के एग्जाम के, ठीक है, तो उसमें आपको पहले प्री का पेपर देना है, जो प्रिलिमिनरी का पेपर है उसमें आपके दो पेपर रहते हैं अलग अलग, एक पेपर आपका एप्टीट्यूड का रहता है जिसको हम सी सेट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और सेकेंड पेपर जो आपका रहता है जनरल स्टडीज का जिसमें आपके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और जीएस आप कह सकते हैं कि 10th to 12th लेवल तक का सारा जो जीएस है जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रहते हैं, और अगर आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आप मेंस के लिए अपियर करते हैं, ठीक है, तो जिसका जो सेकेंड स्टेज होता है वो आपका मेंस होता है, मेन एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन एक तरह से डिस्क्रिप्टिव होता है इसमें, और इसमें हमारे पेपर्स होते हैं, जैसे आपका लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा, इंग्लिश का पेपर रहेगा, एशे राइटिंग है, आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, जनरल स्टडीज का एग्जाम रहेगा। तो ये आपको मैंने पहले भी जब मैंने आईएएस के बारे में आपको बताया था तो वहां मैंने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं, तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना रहता है, चाहे आपने वो अपना यू हैव स्टडीड इन द ग्रेजुएशन, या फिर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना रहता है और मास्टर डिग्री लेवल तक उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके बेसिस पे मेंस का एग्जाम रहता है। तो मेंस का जो एग्जाम रहता है वो रिटन टेस्ट रहता है, आपको लिखना होता है, और मेंस का जो रिजल्ट आ जाता है तो फिर उसके बाद आपको थर्ड स्टेज में जाना होता है जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। बट आईपीएस के लिए यहां पर आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है इन इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए, अगर आप आईएएस के लिए जा रहे हैं तो वहां आपका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, बट आईपीएस में होता है, और ये जो कैडर आपको मिलता है जब आप आईएएस का फॉर्म फिलअप करते हैं सिविल सर्विसेज का, तो उस टाइम पर आपसे ऑप्शन मांगा जाता है, आपसे च्वाइस मांगी जाती है, अभी आप किस उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वहां आपको प्रेफरेंस फिल करनी होती है, तो जिस प्रेफरेंस जिस ऑर्डर में आप अपनी फिल करेंगे उसी के हिसाब से ही आपको कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो वैसे सबसे टॉप पे तो आपका इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि अगर आप आईपीएस के थ्रू आते हैं तो आपकी स्टार्टिंग पोस्टिंग ही आपकी एसपी की पोस्टिंग होती है, और अगर हम एसपी की बात करें, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब किसी भी जिले की सारी जो कानून व्यवस्था है, या हम ये कहें कि सारी पुलिस जो है वो एसपी की गाइडलाइंस पे काम करती है, ठीक है। तो एसपी एक तरह से हम ये कह सकते हैं जिले का सबसे ऊंचा पुलिस ऑफिसर होता है, तो अगर आपकी स्टार्टिंग ज्वाइनिंग एसपी से हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कुछ ही सालों में आप बहुत ऊंची पोस्ट पे जाएंगे, तो टारगेट तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का इंडियन पुलिस सर्विस ही होता है और होना भी चाहिए, पर उसके लिए उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टारगेट बनाना आसान है बट ऐसे टारगेट्स को अचीव करने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, अपने आपको मतलब अपना काफी हार्डवर्क करके स्टडीज में फोकस करना पड़ता है, बट ये है कि एक बार आप ऐसा कोई एग्जाम क्वालिफाई कर दें तो उसके बाद फिर आपका लाइफ बहुत ही सेट हो जाता है, एक अच्छी लाइफ में आप अपने आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला था आईपीएस के बारे में। फिर ऐसे ही आपकी एएसआई एसआई की वैकेंसी आती है, मतलब सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, यहां जैसे मैंने अभी रिसेंट में आंध्र प्रदेश में वैकेंसीज आई है, एपीपीएससी ने वैकेंसीज निकाली है, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने, तो 123 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई है, ठीक है, जिसका फॉर्म जो फॉर्म निकला था 24 सितंबर को निकला, और फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर है, तो आप लोग भी फिल कर सकते हैं। सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश की है, सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया, अरुणाचल प्रदेश की। तो इसमें क्या रहता है, देखिए चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, क्योंकि ये वैकेंसीज आपकी सब इंस्पेक्टर की होगी या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है, ये एक तरह से स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, ठीक है, और मतलब क्वांटिटी में 100+ जनरली वैकेंसीज होती है, डिपेंड करता है कि स्टेट कितना बड़ा है। इनमें
रिजर्वेशन भी रहता है आपका जनरल कैटेगरी का, शेड्यूल्ड कास्ट का, ट्राइब का, अदर बैकवर्ड क्लासेस का, तो वो सारी चीजें इसमें ध्यान दी जाती है। अब इसमें देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब जो एसआई एएसआई, क्योंकि ये सारी एक ही आपकी जो कैटेगरी होती है, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम सबसे पहला आपका रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम के बाद फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होता है, और उसके बाद एंड्योरेंस टेस्ट का मतलब क्या है कि आपका एक टाइप से मेंटल चेकअप, ये सारी चीजें होती है। हाँ, इसमें देखिए स्पेशल कोटा तो नहीं होता है, जैसे आप जैसे हरियाणा में वैकेंसी निकली, सपोज हरियाणा में एसआई की वैकेंसी निकली, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ हरियाणा, ऐसा नहीं। बाहर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, पर जनरली क्या रहता है कि जो पेपर इस तरह का आएगा, जैसे मान लो हरियाणा में अगर पेपर है तो उसमें हरियाणा जीके का फोकस ज्यादा रहेगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि बाहर का बच्चा अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसी जैसे आपका महाराष्ट्र है, साउथ इंडिया है, तो वहां पर क्या रहेगा, जब भी वैकेंसीज आएंगी तो उसमें आपसे जो लोकल लैंग्वेज वहां की है वो आपसे मांगेंगे। जैसे महाराष्ट्र में मान लीजिए वैकेंसी आती है तो आपको लिखा होगा कि 10th क्लास तक आपने मराठी पढ़ी होनी चाहिए। अब देखिए ये बात तो क्लियर है कि हमारा हरियाणा पंजाब का तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने मराठी पढ़ी हो। हाँ, मतलब देखिए उसमें कॉन्स्टेबल में होता है, मतलब जैसे क्या रहता है ना, जो पीएस जो वैकेंसी आपकी पीएससी के थ्रू आती है ना, देखिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वैकेंसी आती है ना, उसमें कहीं कोटा नहीं होता। मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की वैकेंसी में कोई कोटा नहीं होता, उसमें स्टेट के लिए अलग से स्टेट का नहीं होता रिजर्वेशन, बट जो ग्रुप सी और डी की वैकेंसी होती है वहां स्टेट का थोड़ा बहुत रोल प्ले किया जाता है, क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी तो आपकी ऑफिसर वैकेंसी है। अब ये आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है तो सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी में आता है, तो ग्रुप अगर बी में आता है तो फिर उसका, अब जैसे मैं बहुत बच्चों को हम जानते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में लगे हुए हैं या जो दिल्ली पुलिस में है, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के अंदर 80% बच्चा जो है वो हरियाणा से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये बड़ा होता है, इफेक्ट होता है इस चीज का। हाँ, कोटा होता है बट उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब उसमें कोटा आपका इस तरह का तो होता है कि आपका एस सीज का है, एस टीज का है, बैकवर्ड क्लासेस का है, तो ये सारी चीजें उसमें होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो उसके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है, मैंने यहाँ इसलिए इनकी मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा कि आपको ये पता हो कि मतलब क्या क्या चीज चाहिए। देखिए जैसे क्या है कि 165 सेंटीमीटर एंड एपीएसटी, मतलब आप इन जनरली चाहे हम हरियाणा की बात करें चाहे हम कहीं की वैकेंसी की बात करें, तो मेल के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर की हाइट मांगते हैं और फीमेल के लिए 157 की, बाकी ये स्टेट वाइज वेरी भी करता है। तो उसमें देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं, पहली पैरामीटर आपका होता है बेटे हाइट, तो जिन बच्चों की हाइट कम है तो वो आप मान सकते हैं भी पुलिस सर्विसेज में, इस तरह के एएसआई में, या आप ये जैसे हम कॉन्स्टेबल की बात करें तो वहां पर जॉब मिलना मुश्किल है। सेकेंड होता है बेटे चेस्ट, भी चेस्ट हाइट के अकॉर्डिंगली आपकी मेजरमेंट होती है, फिर उसमें हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, उसके लिए आपका स्पेसिफाइड होता है कि हाई जंप इतना होना चाहिए आपका, लॉन्ग जंप इतना होना चाहिए, और उसके अंदर एक टाइप से रनिंग भी होती है, अभी इतने सेकंड में आपने इतना मीटर करना है, तो ये सारी चीजें इसमें मैटर करती है। तो अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि आप किसी भी पोस्ट के लिए जाना चाहें, अगर कॉन्स्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो, तो आपको अपने फिजिकल पे काफी ध्यान देना पड़ता है, उस पर आपको ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी पुलिस के एग्जाम के अंदर फिजिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब तो आजकल पहले टेस्ट होता है, नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, आज से कुछ साल पहले फिजिकल होता था फिर टेस्ट लिया करते थे, उसमें काफी बच्चा रिमूव हो जाता था, ठीक है। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा था कि अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस ने कॉन्स्टेबल की वैकेंसी निकाली थी, मेरे हिसाब से आप लोगों में से काफी बच्चों ने उसको फॉर्म को फिलअप भी किया होगा, कई बच्चों ने जो कॉन्स्टेबल का वैकेंसी निकला था 5,846 वैकेंसी आई है कॉन्स्टेबल की, आपने फॉर्म भी फिलअप किया होगा जो उस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं। तो इसका एग्जाम अब कब होगा, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा इसका, ठीक है,
और कॉन्स्टेबल की जो वैकेंसीज आई हैं इसमें आप देखेंगे तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अभी आपका पहले टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि पहले क्या होता था कि जनरली पुलिस के जो टेस्ट होते थे वो आपके पेपर पेंसिल बेस्ड होते थे, बट ये जो दिल्ली पुलिस का कॉन्स्टेबल का जो टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जो नवंबर दिसंबर में होगा आपका। और अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि टेस्ट में क्या आता है, क्योंकि पहली स्टेज तो आपकी टेस्ट है, अगर आपका टेस्ट ही वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर सेकंड स्टेज के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो पहली चीज तो आपके लिए क्या है कि आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा जो भी कॉन्स्टेबल का टेस्ट है। तो यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि ये तो मैं आपको दिल्ली के स्ट्रक्चर की बता रहा हूं, वही अगर आप यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो हर जगह पर ऐसे ही पैटर्न है। वैकेंसीज आती हैं, वैकेंसीज के बाद टेस्ट होता है, पहले एक तरह का आप ये कह सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन होता है। अब उसमें भी डिपेंड करता है स्टेट वाइज, ठीक है, जैसे अभी पहली बार यहां पर जैसे ऑनलाइन टेस्ट है दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो अब जो टेस्ट होगा उसमें देखिए क्या क्या आता है, ये टेस्ट का पैटर्न गिवन है, 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज 50 मार्क्स, तो मतलब जीके का एक बहुत बड़ा रोल है। और जीके भी आप ये मान के चलिए जिसमें स्टैटिक जीके का मतलब है कि वो सब्जेक्ट जो बच्चे 10th क्लास तक पढ़ते हैं, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीजें आती हैं पहली चीज। फिर उसके बाद में रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के अंदर अभी मैं इसका कोर्स भी बताऊंगा अभी क्या क्या है इसके कोर्स में। फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें आपकी टेस्ट में आती हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर आप पुलिस की बात करें तो आपको जीके में कमांड बनानी पड़ेगी, करंट अफेयर्स पे काफी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसीज है। सिलेबस को अगर हम देखें तो रीजनिंग सेक्शन में नॉन वर्बल ज्यादा आता है, मतलब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि रीजनिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है वर्बल पार्ट होता है, सेकेंड होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल सेक्शन जो होता है वो एक तरह से पिक्चर बेस्ड होता है, जिसमें आप देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं विजुअलाइजेशन के होते हैं, विजुअल मेमोरी के होते हैं, एनालॉजी टाइप होता है, ठीक है, कई सारे टॉपिक्स हैं। आप कोई भी बुक उठा लीजिए नॉन वर्बल रीजनिंग की या कोई भी एक जनरल बुक रीजनिंग की अगर आप फॉलो करते हैं, वैसे तो हम तो यही एडवाइस करते हैं कि अगर आपने 12th किया हुआ है या 11th में अगर आप है, मतलब 10th के बाद से आपको रीजनिंग की कोई ना कोई बुक लेके उसे सोल्व करना चाहिए। रीजनिंग बहुत ही आसान टॉपिक होता है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, और एक बार अगर आपने रीजनिंग के टॉपिक किए हुए हैं फिर आपका एक प्रैक्टिस है उसमें, मतलब आप प्रैक्टिस करते रहिए धीरे धीरे धीरे धीरे तो आप उसमें काफी इंप्रूव कर जाते हैं और उसमें स्पीड आपकी काफी इंप्रूव हो जाती है। चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, कुछ भी एनी एग्जामिनेशन, रीजनिंग उसमें आता ही आता है, चाहे आप रेलवे की बात करें, चाहे हम किसी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें या पुलिस की बात करें, तो रीजनिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो रीजनिंग में तो आपको मेहनत करनी भी चाहिए और ये आसान होता है इसलिए इजीली किया भी जा सकता है। ऐसी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, अब ये हम किसी भी सरकारी नौकरी की बात करें तो यही चैप्टर्स हैं, ये अर्थमेटिक है, नंबर्स है, ये 5 से 6 चैप्टर्स होते हैं आपके, ये चैप्टर्स आपने प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है तो लेवल कम आता है, वही अगर और कोई एग्जामिनेशन हो तो उसमें लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट चैप्टर्स तो आपके सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको तैयार करनी है। अब आपके साथ एक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि जैसे अभी कमलेश सर बता भी रहे थे कि हमने ई स्टडी प्रोग्राम जो लॉन्च किया हुआ है रीड इंडिया के साथ में, तो उसमें देखिए हमने मैथ्स का, रीजनिंग का हिंदी मीडियम में स्पेशली, क्योंकि हमारे पास बहुत बच्चा ऐसा है जो हिंदी मीडियम में है आप में से, कि जो आपका राजस्थान से है चाहे उत्तर प्रदेश से है, जो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने हिंदी मीडियम के, मैथ्स के, रीजनिंग के, आप देखेंगे उसमें पूरा मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में आपको गिवन है, चाहे कोई भी चैप्टर आपको परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशो है, वो सारी चीजें आपको हमने ई स्टडी प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप उसे अगर रेगुलरली यूज करते रहते हैं, हमने सारा जीके प्रोवाइड किया हुआ उसके ऊपर, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो
तो वो आपके पढ़ने के ऊपर है कितना आप उसे यूज करते हैं, वीडियोस को कितना आप देखते हैं। उसके अलावा भी आजकल तो आप एक टाइप से YouTube को यूज कर सकते हैं। YouTube के माध्यम से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, हर सब्जेक्ट पे आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाते हैं हर टॉपिक के ऊपर। थोड़ा आपको फोकस करने वाली बात रहती है क्योंकि चीजें बहुत कुछ है। आप देखेंगे पिछले 12 से 13 क्लासेस के अंदर हमने अलग अलग स्ट्रीम्स के बारे में बात किया, ठीक है। इन सब स्ट्रीम्स को सुनने के बाद में आपको ये तो फील हुआ भी चीजें बहुत कुछ है, नंबर ऑफ कोर्सेज आर देयर, कई तरह की जॉब्स आती हैं, कई तरह की वैकेंसीज आती हैं। तो हमें उन वैकेंसीज में, उन जॉब्स में अगर अपनी सीट पक्की करनी है तो उसके लिए हमें रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है सबसे पहली चीज, क्योंकि बिना टेस्ट के तो कोई आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा, ठीक है। तो ये मैथ्स के आपके बेसिक टॉपिक है, ये आपको जरूर तैयार करने हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर का भी कुछ पेपर आता है इसमें 10 मार्क्स का, जिसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल्स होते हैं, थ्योरी टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक्सेल का, वर्ड का, कम्युनिकेशन इंटरनेट का, वर्ड प्रोसेसिंग का, ठीक है। तो उसमें अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है और कुछ कंप्यूटर की आपने बुक स्टडी कर रखी है तो आप मल्टीपल च्वाइस में बहुत आसानी से उनके क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं अगर आप दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल का पेपर दे रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, नेगेटिव मार्किंग होती है हमेशा। देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसका सबसे बड़ी उसमें खासियत यही है कि नेगेटिव मार्किंग उसमें होती है, तो आप अपनी ओर से तुक्के नहीं लगा सकते। तो अगर आपका पहला स्टेज क्वालिफाई हो जाता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो उसके बाद में उसके जो भी आपके जो कट ऑफ आएंगे उसके बेसिस पे आपका सेकेंड स्टेज के लिए सिलेक्शन होगा। और आप जनरल मान के चलना जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो कट ऑफ इसका 65 से लेकर 75 के बीच में रहेगा। जनरली इस तरह के एग्जाम में 65 से 75 मार्क्स अगर आपका स्कोर हो जाता है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका पहला स्टेज आपका क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है फिजिकल टेस्ट। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुलिस के अंदर जितने भी एग्जाम है ना, चाहे वो किसी लेवल का है, ठीक है, डिपेंड करता है भी क्लास ए एग्जाम आईपीएस का जो है उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड कम होते हैं क्योंकि वो आपका ऑफिसर क्लास है। उसके बाद बी क्लास हो चाहे सी क्लास हो, उनमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स का काफी बड़ा रोल रहता है। जैसे ये मैं आपको जो दिल्ली पुलिस का है वो बता रहा हूं, मेल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर्स तक के अगर आपकी एज है, वैसे तो 25 ईयर एज होती है, बट उसमें क्या है कि कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो डिपार्टमेंटल होती है फिल, या अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 साल का, 4 साल का, वो जो भी एक तरह से वो जो भी इनका पैरामीटर होता है। तो आप ये मान के चलिए कि 1600 मीटर आपने 6 मिनट्स में पूरे करने हैं, ठीक है। अब आप ये देखो भी आपकी स्पीड मतलब एक तरह से एक टाइप से जो रनिंग की स्पीड कितनी है कि 1600 मीटर आप 6 मिनट में पूरा कर पाए। लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट की होती है, हाई जंप आपकी 3 फीट 9 इंच की है। तो ये दिल्ली पुलिस के लिए है। और जनरली हमारे पास जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं या आपके नॉन में भी जो अभी पहली बार ट्राई करेंगे तो जिनकी एज 25 ईयर से कम है तो ये पैरामीटर उन्हें पूरा करना है। फीमेल्स के लिए भी थोड़ा पैरामीटर में चेंज होता है कि 1600 मीटर जो है 8 मिनट में पूरे करने होते हैं, लॉन्ग जंप 10 फीट का होता है, हाई जंप 3 फीट का होता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि ये जो कॉन्स्टेबल की वैकेंसीज या एसआई या एएसआई की वैकेंसीज मेल्स के लिए होती है, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं इसमें, ठीक है। तो वो भी आपकी अलग से वैकेंसीज आती है। तो आपको दो चीजों पे ध्यान रखना है, पहला टेस्ट आपने क्वालिफाई करना है, बिना टेस्ट क्वालिफाई करे आपको जो हमारा सेकेंड स्टेज है उसके लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप सेकेंड स्टेज क्वालिफाई कर देते हैं जिसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जब पूरा हो जाता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, ठीक है। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें एक तरह से आपके सारे जो टेस्ट किए जाते हैं, आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब ये देखा जाता है कि कोई ऐसा डिसीज तो आपको नहीं है। तो मेडिकल टेस्ट के लिए दे हैव द मेडिकल बोर्ड और वो आपका टेस्ट करता है। और फाइनल स्टेज आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। ये तीनों स्टेज क्वालिफाई करने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट किए हुए हैं 12th के, क्योंकि 12th के बेसिस पर वैकेंसी है तो 12th के डॉक्यूमेंट लगेंगे वहां पर। अगर आपका ग्रेजुएशन के बेस पर है तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स प्लस में
कोई स्पोर्ट्स कोटा है या कोई आपकी जो कैटेगरी है उसका कोई भी जो डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाती है और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आप देखिए इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं भी इंटरव्यू नहीं है, पूरे प्रोसेस में कहीं भी इंटरव्यू नहीं है और सारी स्टेजेस आपकी क्वालिफाइंग है, सारी स्टेजेस आपकी क्वालिफाइंग है। जैसे पहली स्टेज आपकी टेस्ट है तो टेस्ट क्वालिफाई किया तो आपको किसी अप्रोच की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड स्टेज आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है तो वो आपको जो भी पैरामीटर्स गिवन है उसके बेसिस पे आपने करना है और अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी जॉब लग जाती है। तो थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ा फोकस चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद इन चीजों को क्वालिफाई किया जा सकता है। जैसे हम बहुत बच्चों को जानते हैं जो गांवों से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो अगर फिजिकली फिट है, फिजिकली एंड्योर है, ये टेस्ट पास कर सकते हैं, पर उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनका पेपर क्वालिफाई नहीं होता। हाँ, तो मतलब ये तो आपको हर चीज पर ध्यान रखना है। हम मेरिट लिस्ट निकलते हैं इसकी पूरी की पूरी, जब आपके सारी टेस्ट हो जाते हैं तो मार्क्स एड होकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंगली आपका फिर सिलेक्शन होता है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको हरियाणा पुलिस के बारे में बताया, दिल्ली पुलिस के बारे में बताया, ठीक है, क्योंकि ये तो स्टेट वाइज वैकेंसीज है, ठीक है। आप मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी स्पोकन पीपल है, आप हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ स्टेट्स में थोड़ा ये है भी स्टेट वाले बच्चे को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ये हमेशा ही होता है, बट फिर भी ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि स्टेट का बच्चा ही लगता है। बाहर के लोगों का भी ज्वाइनिंग तो होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, कितने टेस्ट आपने क्वालिफाई किया है उसके बेसिस पर, ठीक है। और जो दिल्ली पुलिस में तो वैसे भी बाहर के लोग ज्यादा है, अगर हम स्पेसिफिकली दिल्ली स्टेट की बात करें तो दिल्ली स्टेट के लोग तो काफी कम है, हरियाणा के, यूपी के, बिहार के तो काफी लोग हैं जो दिल्ली पुलिस में है। ऐसे ही रेलवे में भी वैकेंसीज आती हैं, रेलवे पुलिस फोर्स जिसको हम आरपीएफ कहते हैं, उसमें भी कांस्टेबल की वैकेंसी आती है। हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस इंडिया लेवल की है बिल्कुल, जो पैराम मैंने पीछे आपको बताया था, जो मैंने आर्मी के बारे में बताया था आपको, मैंने सीआरपीएफ का एक्सप्लेन किया था, तो वो आपकी इंडिया लेवल का टेस्ट होता है, बट जो आरपीएफ का टेस्ट होता है, रेलवे पुलिस फोर्स की वैकेंसी आती है, वो आपकी जोन वाइज आती है। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये रेलवे जो है ना वो आपका जोन्स में डिवाइडेड है, ठीक है, तो जो जोन अलग अलग है वो अपनी वैकेंसी अलग से निकालते हैं, ऑल्दो एक सेंट्रलाइज फॉर्म निकलता है, पर सेंट्रलाइज फॉर्म के बाद में वैकेंसी जो होती है वो आपकी जोन वाइज होती है, ठीक है, हर साल वैकेंसी नहीं आती है, साल दो साल में एक बार आरपीएफ की वैकेंसी आती है, तो वो भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में आती है क्योंकि रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। और आप देखेंगे कि रेलवे में इंडिया में इतने स्टेशंस हैं, सभी स्टेशंस में पुलिस चौकी होती है, उनका रेलवे पुलिस फोर्स होती है, ट्रेन में भी पुलिस आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो आरपीएफ के उसमें आता है, रेलवे पुलिस फोर्स के अंदर आता है। इसका भी जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है, मतलब उसी पैटर्न पे रहता है। इसमें आपका पहले टेस्ट होता है और टेस्ट जो होता है वो हमारा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, चार सब्जेक्ट उसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, फिर उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो गया जिसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, तीन चीजें जनरली होती हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग होती है। तो इनका प्रोसेस भी ऑलमोस्ट जैसे पुलिस का, जनरल पुलिस का प्रोसेस है, चाहे किसी स्टेट की हम बात करें, उसी पैटर्न पे रेलवे पुलिस फोर्स का भी, कांस्टेबल का सेम पैटर्न पे रहता है, ठीक है। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर है। अब कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अगर आप पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, अगर आप पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको दो चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो आपको अपनी हाइट देखनी है, पहले आपने ये देखना है भी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या पूरे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे की हाइट कम है तो फिर क्लियर है, अगर हाइट कम है तो वो फिजिकल स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो फिर उसे पुलिस में जॉब लेने का सपना लेना ही नहीं चाहिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेकेंड थिंग इसमें क्या है कि फिर अगर आपकी हाइट और चेस्ट और हम ये कहें कि ये सारी चीजें उसके स्ट्रक्चर में है,
फिर आप अपनी बात करिए कि उसके बाद में फिर आपको अगर पुलिस फोर्सेज में जाना है तो टेस्ट की और फिजिकल टेस्ट की दोनों की तैयारी आप साथ साथ रखें। मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो आप हरियाणा में या दिल्ली के आसपास के एरियाज में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एक टाइप से इसकी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं लग के, ठीक है, बट उनको फिर उसके साथ टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है। अगर टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप कितने भी स्पोर्ट्समैन हो, कितना भी फिजिकल आपका हो, तो वो बात नहीं बन पाएगी। तो दोनों चीजों पे आपने ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये टारगेट मेक करके करने वाली बात है, तो आप दो तीन स्टेट्स की पुलिस फोर्सेज में अपना ट्राई कर सकते हैं और थोड़ी सी मेहनत की जाए तो क्वालिफाई भी किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आर्मी का कोई भी भर्ती है या आर्मी के थ्रू किसी भी टाइप की रिक्रूटमेंट है तो वो भी आप उसको टारगेट कर सकते हैं साथ साथ, जिससे आपके चाहे आर्मी में हो जाए चाहे आपका पुलिस में हो जाए तो दोनों पे आपका फोकस हो सकता है। बाकी जितने भी हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में फिजिकल टेस्ट नहीं होता, बाकी में तो सब आपका टेस्ट प्री मेंस का स्ट्रक्चर रहता है, ओनली आर्मी और पुलिस में आपका ये सारा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज के सेशन में पुलिस फोर्सेज के बारे में बताया जिसको आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपने ट्वेल्थ किया हुआ है, क्योंकि कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए तो ट्वेल्थ ही मांगा जाता है और ASI या सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए आपको ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, ठीक है।

0: आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी।
1: यस मैम, शो हो रही है।
0: हाँ जी। आज का जो हमारा सेशन है, सामुदायिक स्वास्थ्य डेटा हम कैसे लेते हैं, जब हम किसी हम जब जाते हैं, हम जब जाएंगे अभी, आपको जो मैं सेशंस दूंगी, आप जाकर बाहर बोलेंगे, जब बाहर बताएंगे, या आप सर्वे जब करने जाते हैं, हम तब हम एक डेटा लेना होता है हमें लोगों का। उस डाटा में क्या-क्या लेना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फिर हाथ धोना, क्योंकि सारी जो बीमारियां हैं वो हैंड वॉश से ही शुरू होती हैं। मतलब अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हमारी बीमारियां बढ़ती जाएंगी। हम हैंड वॉश करेंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हम बीमारियों के चपेट में आते जाएंगे। हम मतलब बीमारियां हमें लगती जाएंगी। तो हैंड वॉश बहुत जरूरी है, और किस कैसे हैंड वॉश करना है। फिर हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन के बारे में, कि पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी साफ सफाई नहीं करते हैं तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और क्या क्या पर्सनल हाइजीन में जरूरी है, ये सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सामुदायिक का जो डाटा लेते हैं जब हम जाते हैं, जब आप लोग जाओगे, बाहर जाओगे, जब आप लोग करोगे सर्वे करोगे, तो उसमें क्या-क्या पूछोगे। सबसे पहले आप नाम पूछोगे, उसकी उम्र लोगे, लिंग पूछोगे, मतलब महिलाएं हैं या पुरुष हैं, पता, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, संपर्क कहाँ किया जाए, क्या केस हिस्ट्री है, मतलब क्या उनको कौन सी बीमारी है, क्या समस्या है, कब से ये समस्या चली आ रही है, क्या उन्होंने इस बीमारी के लिए किया है, कोई रिपोर्ट है तो उसको आप वो लगाएंगे, कोई जांच है तो आप उसको देखेंगे कि उसकी जांच में क्या है, उसकी फोटोकॉपी आप लगाएंगे अपनी डायरी में, ताकि आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो आपके पास उस मरीज का सारा डेटा हो, कि उस मरीज को क्या-क्या बीमारी थी, क्या-क्या उसने इलाज कराया, क्या रिपोर्ट्स हैं, उसका ताजा बीपी, मतलब प्रेजेंट में बीपी क्या है, उसका शुगर कितना है, ये सब आप एक अपनी डायरी में लिखकर जाएंगे जब आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर क्या वेट है, ये भी हम देखेंगे। बच्चे की जानकारी ले रहे हैं या बच्चे को बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या टीकाकरण करा है, कौन सा लगाया है, कब लगाया है, आंगनवाड़ी, आशा दीदी और ANM के साथ संपर्क है या नहीं है, ये सब भी हम उनसे जानकारी लेंगे। ये सब जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब जानकारी नहीं लेते हैं, बिना इन सब जानकारी के चले जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी। हमें नहीं पता चलेगा कि उनको क्या बीमारी है, उन्होंने क्या इलाज कराया है, और इसका आगे जाकर डॉक्टर्स से जैसे संपर्क करना है तो कैसे संपर्क करना है, उनको क्या बताना है, ये सब जानकारी देनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब हाथ धोना, मतलब हैंड वॉश किसको कहते हैं। हाथ धोना क्या है? हाथ धोना जैसे हमारे हाथों की स्वच्छता, मतलब हाथों को साफ रखना, हाथ धोने को कहते हैं। हमें हमारे हाथों में बहुत सारे वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया, गंदगी चिपकी होती है, जो हमें अपनी आंखों से दिखती नहीं है, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं। जब जब ये हमारे हाथों में चिपका होता है गंदगी, तो इसको हम साबुन और पानी से धोते हैं, साफ करते हैं। और जब हम साबुन और पानी से इसको धोने के बाद, जब आप साबुन और पानी से इसको 20 सेकेंड तक धोएंगे, इसको धोने के बाद आप इसको सुखाना भी उतना ही जरूरी है। टॉवल से या टिश्यू पेपर से आप इसको सुखा सकते हैं। अगर गीले हाथों को ही आप कहीं और किसी गंदगी चीज पे लगाते हैं या कहीं और चीज को छूते हैं तो हाथ और गंदे हो जाते हैं। तो अपने हाथों को धोने का एक प्रक्रिया है, आप उसको फॉलो करें। हर चीज को छूने के बाद या तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या हाथों को जरूर धोएं। तो 20 सेकेंड तक अपने हाथों को जरूर धोना है ताकि आपके हाथ जो हैं वो साफ रहें। हमें कब कब अपने हाथ धोने चाहिए? आप सबको पता है कि आपको कब कब अपने हाथ धोने हैं। तो खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के दौरान में और बाद में अपने हाथों को जरूर धोना है। हम सबको पता है, पर हम फिर भी कहीं ना कहीं इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। हम कहीं ना कहीं इसको करते नहीं हैं। तो खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के दौरान और बाद में अपने हाथों को जरूर धोएं। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी अपने हाथों को धोना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति की अगर आप देखभाल कर रहे हैं, और चाहे वो बुजुर्ग हैं चाहे वो बच्चे हैं, आप अगर उसकी देखभाल कर रहे हैं तो पहले भी और बाद में आप अपनी हाथों को जरूर धोना चाहिए। पहले इसलिए कहते हैं कि उस व्यक्ति को आपसे कोई इन्फेक्शन ना हो, और बाद में इसलिए कहते हैं कि उस व्यक्ति की इन्फेक्शन आपको और आपके घर वालों को ना हो। अगर कोई चोट लगी है, कोई घाव है, स्पेशली जब हम ब्लड के साथ, खून के साथ अगर हम फर्स्ट एड पे दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, या बच्चों को चोट लगती है, हम डेटॉल लगाते हैं या कुछ, तो उसके बाद अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए, क्योंकि ब्लड से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैलता है। वॉशरूम यूज करने के बाद अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए। बच्चे हैं घर में, डायपर्स बदलते हैं, बदलने के बाद अपने हाथों को जरूर, बच्चों का खांसते छींकते वक्त अपने हम अपने हाथों, वैसे हम यही बोलेंगे कि आप अपने हाथों को आगे रखें खांसते हुए भी और छींकते हुए भी। और फिर जब आप खांसते हैं और छींकते हैं अपने हाथों पे, तो जो वायरस और बैक्टीरिया आपके हाथ में आया है क्योंकि आप बीमार हैं, तो उसको आपको धोना चाहिए, अपने हाथों को धोना चाहिए ताकि वो किसी और को, किसी चीज को छूने के बाद ना लगे। किसी जानवर, आपके घर में कोई जानवर है, पशु है, कोई पालतू जानवर की अगर आप सेवा कर रहे हैं घर में, तो जब आप उसको देखते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को जरूर धोएं। कचरा छूने के बाद अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए। हम सबको ये पता है कि हमें अपने हाथ कब कब धोने चाहिए, पर हम बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, या हम जान कर भी अनजान बन जाते हैं। तो हमें ये इसको नहीं करना है, और हैंड वॉश जरूर करें। कुछ स्टेप्स हैं आपको वो फॉलो करने हैं जब आपको अपने हाथ धोने होते हैं। तो हाथ में जब कीटाणु जम जाते हैं, जब कीटाणु हमारे हाथों में होते हैं, उसको हम अपने शरीर के अंदर ना घुसने दें, इसलिए हम कहते हैं कि अपने हाथों को साफ करें। साफ हाथों को कीटाणु से मुक्त करने के लिए, मतलब एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है, अगर वो हाथ नहीं साफ करता है, तो उससे दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ता है और फिर कम्युनिटी भी बीमार पड़ती है, ऐसे रोग फैल जाता है। तो अपने हाथों को धोने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जब हम अपने हाथों को धोते हैं। 20 सेकेंड तक अपने हाथ को धोना है। थोड़ा सा साबुन, मैं आप सबको यही बोलूंगी कि डेटॉल, जो लिक्विड वॉश होता है, लिक्विड वॉश का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम जब केक का जो साबुन की टिकिया जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन उसमें रह जाता है। अगर आप साबुन की टिकिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप साबुन को अपने हाथों में मल कर ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो इन्फेक्शन किसी दूसरे को भी लग सकता है, क्योंकि उस साबुन के ऊपर इन्फेक्शन है। आप उसको धोने के अपने हाथ धोने के बाद साबुन को एक बारी पानी से निकाल कर रख देंगे, तो वो इन्फेक्शन भी निकल जाता है। पर द बेस्ट वे, जो बेस्ट साबुन है, वो हम डिटॉल लिक्विड को अगर हम इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अपने हाथों में थोड़ा सा साबुन लेकर, हाँ, पानी लेकर अपने हाथों को मलना है, अपनी हथेलियों को मलना है, हथेलियों के पीछे वाले हिस्से को मलना है, उंगलियों के बीच में, उंगलियों के पीछे पीछे वाले हिस्से को मलें, अंगूठे को मलें, और दोनों हाथ से को पानी से अच्छी तरह से धो लें। इसको धोने के बाद टॉवल या टिश्यू पेपर से अपने हाथों को सुखा लें। ये स्टेप्स हमें 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपने हाथों में साबुन लें, पानी डालें, हाथों में झाग बनाएं, हाथों को धोएं, हाथों के आगे वाले हिस्से को, हाथों के पीछे वाले हिस्से को, उंगलियों के बीच में, उंगलियों के पीछे, अंगूठे को रब करते हुए अपने हाथों को पानी से धो लें, और उसके बाद टॉवल और टिश्यू पेपर से उसको सुखा लें। ऐसा करने से हम अपने हाथों से कीटाणुओं को धो देते हैं और बीमारी फैलने से बच जाते हैं। तो ये अगर हम अपनाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हम बीमारी नहीं फैलाएंगे। और मैं आप सबको बोलती हूँ कि ये अपने घर में भी अपनाएं, अपने बच्चों को भी बताएं कि ऐसे करने से हम बीमारियों को फैलने से रोक रहे हैं। पर्सनल हाइजीन, अब हम पर्सनल हाइजीन पे बात करते हैं कि पर्सनल हाइजीन क्या है। पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी साफ सफाई, अपने आप को साफ रखना। प्रतिदिन स्नान करना बहुत जरूरी है, आप सब करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि बीमार हैं, ठंड बहुत है तो हम नहाएंगे नहीं आज, और बीमार हैं तो हम नहाएंगे नहीं आज। तो ऐसा नहीं करना है, रोज नहाएं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत गंदगी है। क्यों, हम बाहर अगर जाते हैं, बाहर जो लोग जाते हैं वो बाहर के कीटाणु अपने शरीर पे लगाकर आते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है। और हमारी स्किन ऑयली जब हो जाती है, जब हमारी स्किन नेचुरल जब सिक्रीट करती है ऑयल, तो वो हमारे शरीर के अंदर से जितनी भी गंदगी है वो ऑयल के थ्रू बाहर आता है। तो हमें नहाना चाहिए। दिन में 2 बारी दांतों को ब्रश करना है, एक बारी सुबह, एक बारी रात को सोने से पहले। सप्ते में 2 बारी बालों को जरूर साबुन या शैम्पू से धोना है। वॉशरूम जाने के बाद साबुन से अपने हाथ जरूर धोने हैं। खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के दौरान, खाना बनाने के बाद भी अपने हाथों को धोएं। हम लोगों को ये इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा बाहर से जब खेल कर आता है, माओं को खास कर ध्यान रखना है, जब बाहर से खेल कर आता है तो वो तुरंत अपने हाथों को धोए, क्योंकि बाहर से जब वो खेल कर आएगा उसके हाथों में गंदगी है, उसके हाथों में मिट्टी है, और वो आते ही अगर खाना खाएगा तो वो सारी मिट्टी और गंदगी उसके खाने के साथ उसके पेट में जाएगी, जिसकी वजह से उसको डायरिया जैसी बीमारी भी लग सकती है। तो खेलने के बाद अपने हाथों को बच्चों को जरूर बोले धोने के लिए। रोजाना साफ कपड़े पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों को धोकर उसको सूरज की किरणों में सुखाएं, सूरज पे सुखाएं। सूरज की किरण में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो आपके घर में या आपके कपड़ों में गंदगी या स्मेल जो भी होती है वो उसको खत्म कर सकते हैं। कपड़ों को धूप में जरूर सुखाना चाहिए। आजकल जैसे सर्दियां हैं, धूप नहीं निकल रही है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उन कपड़ों में कुछ गलन सी स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है। तो वो कपड़ों में जो स्मेल है वो डिटर्जेंट की है, वो पानी की है, तो वो जब मिक्स हो जाती है तो वो सीलन जैसी जो स्मेल है वो हमें आती है। अपने कपड़ों को धूप में जरूर सुखाना चाहिए, धूप नहीं निकल रही है तो प्रेस से जरूर उसको प्रेस कर कर अगली बार पहनना चाहिए। खांसते छींकते के समय नाक और मुंह को जरूर ढक कर रखें ताकि इन्फेक्शन किसी और को ना आए। हफ्ते में एक बार ही नाखूनों को जरूर काटें। नाखूनों के बीच में जो काली गंदगी आ जाती है उसकी वजह से आपके जब आप मुंह खाना खाते हैं तो वो आपके पेट में चली जाती है। तो हफ्ते में एक बार ही नाखूनों को जरूर काटें, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, हमें जरूर काटने चाहिए। फिर इसके साथ हमें और क्या करना है? ये तो कुछ टिप्स थे। तो जब व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या है, जब मैंने अभी आपको बताया कि स्वच्छता उसे कहते हैं शरीर का अपना देखभाल, इस अभ्यास में स्नान करना होता है, हाथों को धोना, दांतों की सफाई और जो हम रोजमर्रा में अपने लिए करते हैं साफ सफाई, उसको हम व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। हर दिन हम बहुत कीटाणुओं का सामना करते हैं और इससे संपर्क में आते हैं और इसी से हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। सो जब हमें बीमारियां लगती हैं, आसपास बहुत सारा इन्फेक्शन है, तो हम वो बीमारियां जब हमें लगेंगी तो हम आगे भी फैला सकते हैं। इसलिए अपनी साफ सफाई रखना भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब व्यक्तिगत स्वच्छता मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या थी। अब हम जैसे वॉशरूम यूज करते हैं, वॉशरूम यूज करने के बाद अपने हाथों को जरूर धोना है। 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन और पानी से जरूर धोएं। हथेलियों को उंगलियों के बीच में, जैसे अभी मैंने आपको सब बताया, उसको धोने के बाद टॉवल से सुखा लें। फिर नहाना रोज है। ऐसे करने से अक्सर स्नान करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, बट हमें साबुन और पानी से स्नान करना है ताकि हमारे जो शरीर में कीटाणु है, बैक्टीरिया है, बाहर जाते हैं। घर में रहते हैं तब भी हमें कीटाणु बैक्टीरिया लगते हैं। कुछ लोग बीमार होते हैं, बीमारी में तो स्पेशली स्नान करना चाहिए ताकि आप एक फ्रेश महसूस करें अपने आप को, और टॉवल से जरूर सुखा लें अपने बदन को और साफ कपड़े पहनें। अपने बालों को हफ्ते में 2 बार ही जरूर साबुन और शैम्पू से धोएं। ऐसे करने से हम अपने बालों की गंदगी, उसमें जो ऑयल सेक्रीट हो रहा है नेचुरल, उसको हम निकाल रहे हैं बालों से। फिर नाखूनों की स्वच्छता, अपने नाखूनों को छोटे रखें। बहुत लोगों की आदत होती है नेल बाइट करने की। नेल बाइट करने से भी हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन जाता है, तो नेल बाइट ना करें। हफ्ते में एक बार ही अपने नाखूनों को जरूर काटें। सबको अपने दांत सफेद, जैसे सफेद दांत चाहिए होते हैं, तो अपने दांतों और मसूड़ों की देखभाल करने के लिए, उसको रोकने के लिए तो हमें 2 मिनट तक ब्रश करना है दिन में 2 बारी, एक बारी सुबह एक बारी रात को सोने से पहले। अदरवाइज आपके दांतों में से दांतों की बीमारियां लग जाएंगी और दांतों का जो दर्द है वो बहुत बर्दाश्त के बाहर होता है, तो आपको दांतों को साफ रखना है। घर में कोई बीमार है तब भी आपको अपनी देखभाल रखनी है और उसकी भी देखभाल रखनी है, तो आप अपने हाथों को जरूर साफ रखें। अब जब हम नहीं अपनी ये साफ सफाई रखते हैं तो कुछ उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाते हैं, आदतें अपनाते हैं, तो हम बीमारियों को अपने आप से दूर रखते हैं। और अगर वही हम अगर अपनी आदतें नहीं अपनाएंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे, शरीर गंदा रहेगा, तो हम हमसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, हमारी पर्सनालिटी नहीं रहेगी, वो हम हमारा जो आत्मविश्वास है वो भी कम हो जाएगा, हम लोगों के सामना नहीं कर पाएंगे, लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। यदि आप अपने हाथ बार बार नहीं धोते हो तो आसानी से कीटाणु आपके शरीर के अंदर चले जाएंगे, चाहे आंखों के जरिए, चाहे मुंह के जरिए, चाहे नाक के जरिए, और आप बीमार पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप दांतों को नहीं साफ रखेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, तो पायरिया जैसी बीमारी हो सकती है, दांतों में कीड़े लग सकते हैं और दांत खराब भी हो सकते हैं, दांत हिल भी सकते हैं, दांत टूट भी सकते हैं। और स्वच्छता को अपना एक आदत बनाएं, प्रैक्टिस में लाएं। जैसे हम रोजमर्रा का में काम करते हैं, खाना खाना जरूरी है, काम करना जरूरी है, वैसे ही अपनी सफाई भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें इचिंग हो सकती है, शरीर में कीड़े लग सकते हैं, बालों में कीड़े हो सकते हैं, दस्त की बीमारी हो सकती है और रिंग वर्म जैसी बीमारी भी लग सकती है। रिंग वर्म एक गोल आकार होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो आपको कैसे अपने आप को, मतलब आप इसको कैसे धारण करें, कैसे इसको अपनाएं, रोजमर्रा, मतलब आपको इसको अपनाना चाहिए, हैबिट में लाना चाहिए, रोज टाइम टू टाइम इसको करना है। कब आपको हाथ धोने हैं, कब सफाई रखनी है, कब अपनी सफाई रखनी है, ये करना बहुत जरूरी है। और बच्चों को भी आपने प्रोत्साहित करना है। बच्चों के लिए हम एक साइन बोर्ड बना सकते हैं, हम इसको सेंटर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं कि साइन बोर्ड्स बनाएं बच्चों को, जब वो सेंटर में आते हैं या घर में आते हैं तो उनको सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं, और जैसे वॉश बेसिन के ऊपर अपना हैंड वॉश का स्टेप्स बना सकते हैं ताकि बच्चे इंटरेस्टली अपने हाथ धोएं। प्लेट्स को जब अंदर रखने जाएंगे, जूठी प्लेट्स अंदर रखते हैं तब अपने हाथ धोने खाने के बाद। तो ऐसे साइंस अगर हम हेल्प करें इम्प्रूव करने के लिए तो बच्चे भी अपने हाथ धो सकते हैं। और एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द माइंड परफेक्ट। जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी हम इसको अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो हम सफाई के उतने ही पास जाएंगे। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सफाई नहीं रखते, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्केबीज एक बीमारी है, जिसको हम छोटे छोटे दाने जिसको कहते हैं हमारे शरीर में लाल हो जाते हैं, ये भी एक कंटेजियस है, मतलब एक दूसरे से लगने वाली बीमारी है। ये स्प्रेड करती है बहुत ज्यादा जब एक बंदा एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है। और ये कहाँ होता है, हम अगर नहाएंगे नहीं तो जो दो शरीर के जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटना हो गया, आपके एल्बोज हो गए, कहीं पर भी जहाँ साफ सफाई नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, वहां पर ये दाने हो जाते हैं, वहां पर इचिंग होती है, खारिश करने का मन करता है, लाल कलर के दाने हो जाते हैं। तो लाल कलर के दाने ऐसे दिखते हैं आपको, जैसे स्क्रीन में दिख रहे हैं ऐसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स जैसे जिसको हम बोलते हैं वो स्किन में दिखते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से पे हो सकते हैं ये। और इसको हम अगर नहीं, ये किस लिए होते हैं, क्योंकि हम अपनी साफ सफाई नहीं रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए अगर जब हमें ये होते हैं तो सबसे पहले अपनी साफ सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिसकी स्किन सेंसिटिव है, बहुतों की स्किन साबुन से भी सेंसिटिव होती है, जिसको कोई साबुन नहीं सूट करता है तो उसको भी ऐसे दाने हो सकते हैं। तो इसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो लैक्टोकैलामाइन क्रीम होती है, लैक्टोकैलामाइन लोशन होता है, जिसको आप इस्तेमाल कर इस दानों को सबसाइड कर सकते हैं। पर सबसे जो फोरमोस्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि आप अपने साफ सफाई रखें, रोज नहाएं और साफ कपड़े पहने। ऐसे ही रिंगवर्म होता है, जिसको हम दाद बोलते हैं। रिंगवर्म जो है बॉडी में कहीं पर भी हो जाता है, ये फंगल इन्फेक्शन है, रिंग की तरह ये दिखता है, आसपास जब ये गोलाकार में होता है तो वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और बीच की जो सरफेस है वो बिल्कुल रेड हो जाती है। इसमें भी हमको इचिंग होती है, रैशेस हो जाते हैं। सिम्टम्स जो हैं ये हमें इचिनेस देते हैं, खुजली करने का मन करता है, कलर चेंज होता रहता है इसका, कलर रेड से वाइट भी हो जाता है क्योंकि फंगल इन्फेक्शन यूजली वाइट कलर का होता है, और उभरा हुआ ये इन्फेक्शन होता है, गोल शेप में होता है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि या तो आप डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो साफ सफाई रखें, लोशन लगाएं इसके ऊपर, लैक्टोकैलामाइन लोशन होता है, ये इन्फेक्शन को सबसाइड कर देता है। और एंटी फंगल अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो एंटी फंगल पिल्स भी होती हैं जो डॉक्टर्स देते हैं, वो आप ले सकते हैं इस इन्फेक्शन को हम साफ क्लियर करने के लिए। बट जो फोरमोस्ट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो यही है कि आप अपनी साफ सफाई रखें, नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है और साफ कपड़े पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूं, आप अपने घर में भी लागू करें, अपने आसपास भी लोगों को बताएं, ताकि वो लोग भी इस चीज को फॉलो करें। एंड आप अपने अब क्योंकि अब आपको CHW की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो चुकी है, आप ट्राई कर सकते हो, घर घर जाकर बात कर सकते हो कि आप ऐसे ट्रेनिंग ले रहे हो, और आप रिकॉर्ड ले सकते हो कि कितने लोग कितने घर में रहते हैं, उनमें आसपास क्या बीमारी चल रही है, साफ सफाई है कि नहीं है आपके घर के आसपास, ये सब आप रिकॉर्ड लेकर हमें रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई कुछ कहना चाहेगा या पूछना चाहेगा?
1: हेलो मैम, नमस्ते. मैं रजनी बोल रही हूँ.
0: हाँ जी
1: अभी जैसे मेरी मम्मी है, वो बेड पे है अभी,
0: हाँ
1: तो उनको ना ठंड बहुत ज्यादा लगती है. जैसे हम अभी ठंड में उनको भी जल्दी जल्दी